0: मिट्टी हमारा तैयार हो गया है, आप प्रोट्रे ले लें, प्रोट्रे में उन मिट्टी को भर दें। प्रोट्रे में मिट्टी भरने से पहले प्रोट्रे के जो जो बेस होता है, जो कटोरी नुमा संरचना होता है, उसके बेस पर हल्का बालू डाल दें। बालू डालने से क्या होगा कि आपका वो मिट्टी है जो आपके कप में सटेगा नहीं, और उस प्रत्येक में मिट्टी डाल दें और बीज की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जब तक हम लोग नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं तब तक हमें गुणवत्ता युक्त बीज का व्यवस्था करना चाहिए। टमाटर में भी, बैंगन, ये में इसका, गोभी का, पत्ता गोभी का, शिमला मिर्च का, इन सब का बीज का हम लोगों को तैयारी कर लेना चाहिए। और बीज को तैयारी करके बीज को उपचारित कर दें, रात में बीज को फूलने दे दें, और बीज को कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल करके, और क्लोरोपायरीफॉस 6 ml 1 लीटर पानी में डाल करके आप उस बीज को अच्छे से उपचारित कर लें। और अगर बीज को उपचारित करना, अगर पानी में नहीं फुलाना चाहते हैं हमारे किसान भाई, तो क्या करें कि कार्बेंडाजिम में किसी अलग रंग को मिला दें, कार्बेंडाजिम में अलग रंग का मतलब गुलाबी मिला दें या पीला मिला दें, और बीज को किसी प्लास्टिक वाले सतह पर फैला लें, और फैलाने के बाद उसमें हल्का सा पानी का छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद दवा का भुरकाव करके उसे अच्छी तरह से मिलाएं, ताकि बीज, एक एक बीज पर कुछ न कुछ दवा लग जाए। रंग मिलाने से क्या होता है कि बीज पर जब रंग दिखाई देता है तो लगता है कि हाँ, इस पे दवा मिल गया है। उसी प्रकार से अगले दिन क्लोरोपायरीफॉस से कर लें। दूसरा चीज़ है कि किसान भाई बीज को उपचारित करते समय उसमें गुड़ की मात्रा थोड़ा मिला देते हैं, तो गुड़ का एक कोट बन जाता है बीज पर, जो बीज को स्वस्थ रखता है और न्यूट्रिशन, पोषण देने का काम करता है। तो बीज इस न्यूट्रिशन, जब पोषण उसको मिलता है तो बीज की अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार से किसान हमारे बीज, एक एक बीज करके प्रोट्रे में डालें। और अगर नर्सरी में बीज वो डाल रहे हैं, जमीन में डाल रहे हैं, तो छिट्टा विधि को से नहीं डालना चाहिए हमारे किसानों को। छिट्टा विधि से क्या होता है कि कभी कभी बीज है का फैलाव एक तरीके से नहीं होता है, कुछ बीज एक जगह ज़्यादा पड़ जाते हैं, कुछ जगह एक बीज कम पड़ते हैं। तो आप गौर करेंगे कि जहाँ पे कम बीज पड़ता है वहाँ पे पौधा बौना और मोटा होता है, और जहाँ पर घना बीज पड़ता है वहाँ पर नर्सरी है जो आपका पौधा है जो लंबा, और उसका जो तना होता है वो पतला हो जाता है, जिसकी वजह से जब उसे हम मुख्य भूमि में देते हैं तो उस समय हमें गुणवत्तापूर्ण पौध नहीं तैयार होता है। तो किसान भाई, इसको नर्सरी में अगर जमीन में भी डाल रहे हैं तो बीज को हमेशा 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर दें, ताकि उनको पौधा अच्छा प्राप्त हो। दूसरा, किसान हमारे सावधानी बरतें कि लगाते समय वो कोशिश करें कि लगाने के एक दिन पहले उसमें सिंचाई करेंगे तो उसमें किसी कीटनाशक को अवश्य पानी में डाल करके उसका पटवन कर दे, ताकि प्रत्येक पौधा में कुछ न कुछ कीटनाशक का अंश आ जाए। दूसरा चीज़ है कि अगर वो लगाने जा रहे हैं पौधे को, तो ऊपर की पत्तियों को काट दें, जो बहुत सारी पत्तियां निकली रहती हैं लगाने में, सिर्फ उसके एपिकल कली का भाग को छोड़ दें और बाकी पत्तियों को हटा दें वो नर्सरी में ही। इससे क्या होगा कि जब आप उसे मुख्य भूमि में लगाएंगे तो लगाते समय आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि पत्तियां ही खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, और जब पत्तियों को सूर्य की रोशनी में जाएंगे तो पत्तियां हैं जो जड़ से आपको खाना मांगना, पानी मांगना प्रारंभ कर देगा, और आपका जड़ जो है अभी ज़मीन में स्थापित नहीं हुआ है। तो अपनी लगाए गए पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने के लिए किसान भाइयों को अग्रभाग को छोड़कर बाकी की पत्तियों को हटा दें। और इससे क्या होगा, पत्तियों को हटाने से आपका मुख्य तना ही निकलना प्रारंभ हो जाएगा। तना निकलना प्रारंभ हो जाएगा जहाँ जहाँ से आपने पत्तियाँ छोड़ी हैं, तो कलिका है जो तना में परिवर्तित हो जाएंगी। इससे पौधों में शाखाएँ की संख्या बढ़ जाएंगी, शाखाओं की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि फल लगने वाले कल्ले भी बढ़ेंगे। इस प्रकार से अगर किसान अपने पौधों का प्रबंधन करते हैं नर्सरी अवस्था में ही, तो वो उत्पादन में एक नया आयाम को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए मैडम। और श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आज की इस जानकारी से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अगले दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन, और मैं आप सभी को बता दूं कि अभी आप उन्नत कृषि कार्यक्रम सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हम खेती से जुड़ी बातें करते हैं, किसान भाइयों के खेती में आने वाली दिक्कतों के समाधान को हमारे वैज्ञानिक बताते हैं। तो आज हम विषय लेकर आए हैं रबी तिलहनी, राई, सरसों, तोरिया, इसके बारे में, और प्रमुख किस्में क्या क्या हैं इसकी, और इसकी प्रारंभिक तैयारी आप कैसे करेंगे, इस विषय पर आज हम आपको जानकारी देंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है।
2: किसान भाई नमस्कार। अभी हाल के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि बढ़िया मुनाफा के चलते किसानों के बीच जो हमारी रबी तिलहनी फसलों को लेकर काफ़ी दिलचस्पी बढ़ रही है। जैसा कि बाज़ार में तिलहन की फसल से निकाले गए खाद तेलों की मांग ज़्यादा हो रही है, यही वजह है कि जैसे कि अभी राई, तोरी, सरसों और मूँगफली के तेलों की कीमत में काफ़ी उछाल दिखाई पड़ रहा है।
1: जी,
2: यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में सरकार की भी तरफ से तिलहन फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी बहुत सा योजना चलाई जा रही है। परिणाम के तौर पर हम देख रहे हैं कि तिलहन की खेती का रकबा में भी बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है।
1: जी, तो इसमें से तिलहन की किन फसलों की खेती कर किसान भाई जो है आसानी से बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं? सर,
2: जैसे कि जिसे तिलहन जो है हमारी अर्थव्यवस्था में अनाज के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तिलहन के फसल से जो हम लोग तेल जो निकलता है उसको तेल में आहार कप में प्रयोग करते हैं। बहुत सारे अन्य उत्पाद भी बनते हैं, जैसे पेंट में वर्निशेस, वनस्पति तेल, साबुन, इत्र, ये सब के प्रयोग में कच्चे माल के रूप में हम लोग जानते हैं कि इसका इस्तेमाल होता है। तेलहन में तेल निकालने के उपरांत बची हुई खली का प्रयोग पशुओं को चारे और खाद के रूप में भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तिलहन फसल में जैसे अभी रबी मौसम है तो राई, सरसों, तिल, अलसी, जिसको हम लोग तीसी बोलते हैं, का महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हम जानते हैं कि तिलहन के उत्पादन में हमारा जो भारत है विश्व में तीसरा स्थान है। बिहार के रबी मौसम में उगाई जाने वाली तिलहनी फसलों में राई, तोरिया और सरसों का ही प्रमुख स्थान है। इसका उपयोग मुख्य रूप से खाद्य तेल या जानवरों के लिए खली के रूप में किया जाता है। किसान भाई, अधिक एवं गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि इसकी खेती हम वैज्ञानिक ढंग से करें, जिससे कि अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राई, तोरी, सरसों के उन्नत प्रभेद और कौन कौन सी है और खेत की विधि क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम तोरी के अनुशंसित प्रभेद उसके बारे में बात करेंगे। तोरी के का बुआई का समय मुख्य रूप से 25 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच है। तो इसके लिए जो अनुशंसित बिहार के जलवायु के अनुकूल जो हमारे लिए अनुशंसित प्रभेद है उसमें RUTS 17, ये इसकी परिपक्वता अवधि 90 से 95 दिनों की होती है। इसका औसत उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसमें तेल की मात्रा इसके बीज में 43% पाई गई है। इसी तरह दूसरा प्रभेद है पंचाली, यह 95 से 105 दिनों की प्रभेद है। इसका भी औसत उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और तेल की मात्रा 40% है। इसी तरह PT 303 और भवानी किस्म है जो 95 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी भी औसत उपज काफ़ी अच्छी है, 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और तेल की मात्रा 43% पाई गई है। इसी तरह किसानों के बीच में पीली सरसों बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो पीली सरसों के लिए जो उन्नत अनुशंसित प्रजातियां हैं उसमें राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो पहले था उसके द्वारा ये विकसित की गई थी, उसमें 66-197-3 और इसका राजेंद्र सरसों 1 और स्वर्णा। इसके बुआई का समय 10 से 20 अक्टूबर है जिसमें अच्छा उपज किसान भाई ले सकते हैं और परिपक्वता अवधि 120 से 125 दिनों की होती है। औसत उपज जैसे 66-197-3 की 14 से 16 क्विंटल है और राजेंद्र सरसों अभी वहां से अधिसूचित विमोचित हुई है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से, तो उसमें 15 से 16 क्विंटल इसका औसत उपज है और तेल की मात्रा 46% पाई गई है। और भी बहुत से अच्छे प्रभेद हैं, जैसे पीली सरसों के लिए अभी जो हाल के दिनों में जो प्रभेद विकसित की गई है उसमें NRCYS 0510 यह प्रभेद का औसत उपज 1317 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा इसका परिपक्वता अवधि जिसको हम मैच्योरिटी ड्यूरेशन कहते हैं वो 94 से 125 दिनों की है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें तेल की मात्रा 38.2 से 46.5% पाई गई है। ये वेराइटी 2009 में नोटिफाई की गई। इसी तरह दूसरी प्रभेद अच्छी प्रभेद है YSHO401। इस प्रभेद का भी औसत उपज 12 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा परिपक्वता अवधि 115 से 120 दिनों की होती है। इसमें तेल की मात्रा बहुत अच्छी पाई गई है जो 43 से 45% है। इसी तरह जैसे हम लोग पीली सरसों के बारे में बात किए उसी तरह राई के जो उन्नत और अनुशंसित प्रभेद है उसमें वरुणा, भूसा बोल्ड, क्रांति, राजेंद्र राय पिछात और राजेंद्र अनुकूल, राजेंद्र सुफलाम। तो वरुणा जो है उसको बुआई का उपयुक्त समय जो है 15 से 25 अक्टूबर है। इसकी परिपक्वता अवधि 135 से 140 दिनों की है और उपज बहुत अच्छी है 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसको 42% इसमें तेल की मात्रा पाई गई है। उसी तरह अभी राजेंद्र इसे अभी धान कटने में लेट हो जाती है तो इसके लिए जो किसी किसान बंधुओं को लगाना है तो इसके लिए राजेंद्र राय पिछात जो 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक हम लोग इसकी बुआई कर सकते हैं और इसकी परिपक्वता अवधि 105 से 115 दिनों की होती है और औसत उपज 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें तेल की मात्रा 41% पाई गई है। इसी के अनुरूप राजेंद्र अनुकूल ये भी पिछात किस्म है और इसको लोग किसान भाई 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक लगा सकते हैं। उसी तरह राजेंद्र सुफलाम ये भी बहुत अच्छी प्रभेद है राई की और इसको 15 नवंबर से 25 दिसंबर इसको बहुत लेट तक भी किसान भाई इसको ले सकते हैं। यदि विलंब से भी बुआई करें तो अच्छा उपज दे देती है 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और इसमें तेल की मात्रा 40% पाई गई है। इसी तरह पूसा IRI संस्थान से पूसा मस्टर्ड 27/2011 में अधिसूचित विमोचित की गई। इसका औसत उपज 1417 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है जो तेल की मात्रा 40 से 45% पाई गई है। उसी तरह पूसा मस्टर्ड 26, पूसा मस्टर्ड 28 अभी हाल के दिनों में 2020 में एक बहुत अच्छी प्रभेद आई है पूसा महक। इसका औसत उपज 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा तेल की मात्रा इसमें 42% पाई गई है।
1: जी और सर अभी यहाँ पर सरसों, तोरी और राय की बात हम कर रहे हैं तो वैज्ञानिक ढंग से कैसे खेती कर हमारे किसान भाई मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं?
2: सरसों का जैसे हम लोग जानते हैं कि बीज दर इसका 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है तो किसानों भाइयों को एकदम बीज दर हिसाब से लगाना चाहिए। ज़्यादा बीज दर रखने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो पंक्ति में बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति दूरी की दूरी हम लोग को 30 सेंटीमीटर रखनी है तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी है। इकाई क्षेत्रफल में जैसे पर्याप्त पौधों की संख्या होती है तो उपज भी अच्छी प्राप्त होती है और बीज को सबसे बड़ा है कि 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोने से जो जर्मिनेशन होता है, बीज का जमाव होता है, वह समान रूप से होता है। यह ध्यान देना चाहिए। और बीज उपचार के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कार्मेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज की दर से हिसाब से हम लोग करें तो बहुत अच्छा रहता है। जो भी मृदा जनित जो फंगस है उससे बचाव करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं खाद उर्वरक का प्रयोग। खेत की तैयारी करते समय किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि 10 टन कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें तथा 60 किलोग्राम नेत्रजन, 40 किलोग्राम सफोर जिसको फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास खेत में डालने से फसल के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता पूरी हो जाती है। जैसा कि नेत्रजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा जैसे कि हम लोग जुताई अंतिम जुताई करते हैं उस समय खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए और जो शेष नेत्रजन की आधी मात्रा है उसमें फूल आने के समय हम लोग को उपरिवेशन के रूप में दे देना ज़्यादा उपज देती है। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर यदि गंधक, जिंक और बोरोन का भी प्रयोग करना चाहिए। यदि कमी हो तो असिंचित अवस्था जैसे होती है तो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन, 20-20 किलोग्राम फॉस्फोरस तथा पोटास के रूप में प्रयोग करना चाहिए और पौधे की बछनी हम लोग को करना चाहिए। यदि बीज बुआई के 15 दिनों बाद बछनी की आवश्यकता यदि आपको दिखाई पड़ रही हो तो कर देना चाहिए। प्रत्येक पंक्ति में 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्वस्थ पौधे को छोड़कर अन्य सभी पौधे को निकाल देना चाहिए क्योंकि प्रॉपर पौधे को सनलाइट मिलना, सूरज की प्रकाश मिलना अति आवश्यक है। कतार में सही दूरी पर पौधे में होने से उपज में वृद्धि होती है। ये हम लोग को ध्यान देना है तथा इसमें जो निकोनी और कमोनी होती है तो बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद निकोनी अवश्य करनी चाहिए। इसमें खेत में खरपतवार मुक्त होना चाहिए, साथ ही साथ पौधों के जड़ों के पास प्रकाश एवं हवा ज़्यादा प्राप्त होनी चाहिए, जिससे कि फसल की बढ़वार काफ़ी अच्छी होती है। सिंचाई को यदि हम देखें तो राई और सरसों में दो सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई फूल लगने के समय करनी चाहिए तथा दूसरी सिंचाई फलियां बनते समय करनी चाहिए। खेत में पर्याप्त नमी न हो तो हल्की सिंचाई कर देना ज़्यादा हितकर होता है
1: जी। और अब इसमें लगने वाले रोग और कीटों के प्रबंधन के बारे में बताएं।
2: जो प्रमुख कीट और रोग इसमें सरसों में लगते हैं उसमें प्रमुख रूप से है जिसको हम लोग सफ़ेद रोली रोग या सफ़ेद रतुआ रोग हम लोग कहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो सिम्टम्स होता है या सरसों का अति इससे सफ़ेद रतुआ जो रोग है वह बहुत भयंकर रोग है। यह बीज और भूमि जनित रोग है। इस रोग के कारण बुआई के 30 से 40 दिनों के बाद जैसा कि हम लोग देखते हैं पत्तियां की निचली सतह पर सफ़ेद रंग का उभरे हुए फफोले दिखाई देने लगते हैं। फफोले को ऊपरी सतह पर पत्तियां पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। उग्र अवस्था में सफ़ेद रंग के उभरे हुए फफोलों पत्तियाँ के दोनों सतह पर फैल जाती है। और फफोलों को देखिएगा तो फट जाने पर सफ़ेद चून बाहर की तरफ फैलता है और पीले रंग के धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को पूरी तरह से ढक लेते हैं और फूल लगने और फलियां पूरी तरह से विकृत हो जाती है जिसमें बीज नहीं बन पाता है और काफ़ी क्षति होती है। तो इसके नियंत्रण के उपाय है कि सरसों की बुआई हम लोग को हमेशा अक्टूबर के पहले पखवाड़े में करना चाहिए और बीजों को जैव नियंत्रक आजकल बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है तो ट्राइकोडर्मा पाउडर 8 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम या फफूदनाशी मेटालेक्सिल की 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करके बुआई करें और फसल के बुआई के 55 से 60 दिनों के बाद या रोग के लक्षण दिखाई देने पर रिडोमिल एमजेड 2% का छिड़काव करें और आवश्यकता अनुसार 10 दिनों के अंतराल पर पुनः छिड़काव कर दोहरा दें। एक सरसों में अंगमारी रोग लगता है। इस रोग के पत्तियों पर कथई भूरे रंग के उभरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं जिनके किनारे पीले रंग के होते हैं। देखने में ये धब्बे आँख की तरह प्रतीत होते हैं और उग्र अवस्था में ये धब्बे आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं जिससे कि सरसों की पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती है। तो इसके नियंत्रण के लिए थायराम 75 WP 3 ग्राम या ट्राइकोडर्मा पाउडर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम की बीज दर से किसान भाई इसको बीज को उपचारित कर लगावें और तो ये समस्या से निजात पा सकते हैं। या 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम मिलाकर 15 दिन तक रखें और बुआई के पहले खेत में छिड़क कर हल्की सिंचाई कर दें। और दूसरा सबसे प्रमुख रोग है सरसों का तुला सीता रोग जिसको डाउनमिल्डी भी कहते हैं। इस रोग के कारण पत्तियां के निचली सतह में ये रोग दिखाई देता है। निचली सतह पर कपास की तरह उभरी हुई सफ़ेद भूरियां दिखाई देती है जिसमें पत्तियां के निचली सतह पर हल्के भूरे बैंगनी धब्बे पड़ जाते हैं जिनका ऊपरी भाग पीला पड़ जाता है और उग्र अवस्था आने पर तना और पुष्प अतिवृद्धि के कारण फूल जाते हैं और फलियां में दाना नहीं बनते जिसके कारण काफ़ी हानि होती है। इस रोग का प्रकोप सफ़ेद रोली के साथ दिखाई देता है तो फसल में ज़्यादा नुकसान होता है। इसका नियंत्रण के लिए किसान भाई को चाहिए कि सरसों की बुआई अक्टूबर के पहले पखवाड़े में कर दें और बीजों को मेटालेक्सिल 6 ग्राम या ट्राइकोडर्मा 10 किलोग्राम प्रति किलोग्राम के बीज की दर से बीजोपचार कर दें। अब फसल बुआई के 2 माह बाद या रोग के लक्षण दिखाई पड़े तो रिडोमिल एमजेड 2% का छिड़काव करें। और सरसों का जो प्रमुख जैसे जो कीट है वो माहू कीट है और सरसों का माहू कीट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छोटा लंबा और कोमल शरीर वाला कीट है। प्रौढ़ माहू 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, पहला पंख रहित दूसरा पंख सहित। पंख रहित प्रौढ़ 2 मिलीमीटर लंबा गोलाकार और हरे रंग या हल्के पीले रंग का होता है। तो इसमें जो माहू कीट लग जाने पर हम लोग को किसान भाई को काफ़ी हानि पड़ती लगती है होती है। तो हानि के ये कीट प्रायः दिसंबर के अंतिम सप्ताह में प्रकट होता है और मार्च के अंत तक सक्रिय रहता है और मार्च के अंत तक विभिन्न भाग जैसे सबसे पहले पुष्पक्रम पत्तियां टहनी तना फलियों में रस चूसकर नुकसान पहुँचाते हैं। यह कीट समूहों में रहते हैं और तीर्थों जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वंश वृद्धि करते हैं। माहू पहले फसल की वनस्पतिक कलिका को प्रकट होते हैं और धीरे धीरे पूरे पौधे को ढक लेते हैं। ये कीट मधुस्राव निकलता है और पौधे को काले कवक का आक्रमण हो जाता है, जैसा कि किसान भाई पहचानते हैं। तना और पत्तियां काली हो जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण में बाधा जाती है। इस प्रकाश यह कीट उपज और तेल की मात्रा में कमी होती है। बादल युक्त और ठंडा मौसम में वंश वृद्धि के अत्यंत उपयुक्त होता है। तो किसान भाई को चाहिए कि रोग और कीट के लिए हम लोग को समन्वित कीट प्रबंधन अपनाएं। जहाँ तक संभव हो, सरसों की बुआई 15 अक्टूबर तक कर देनी चाहिए, जिससे कि फसल माहों के प्रकोप से बच जाए। उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा का ही प्रयोग करना चाहिए और माहों के प्राथमिक आक्रमण पर 10 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार माहों ग्रसित टहनियों को तोड़कर नष्ट कर दें, या माहों के ब्रश वृद्धि को इसे के कम किया जा सकता है। फसल में कम से कम 10% पौधे माहों से ग्रसित हों तो प्रत्येक पौधे पर 26 से 28 माहों हो तभी छिड़काव कर देना चाहिए। जैसा कि इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL को 5 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव घोल बना लें और छिड़काव करें। यदि दोबारा से कीट का प्रकोप आ जाए तो 15 दिनों के अंतराल पर पुनः छिड़काव कर देना चाहिए। इस प्रकार यदि किसान भाई एक वैज्ञानिक ढंग से यदि खेती करें तो राई सरसों का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बाजार में भी अच्छा अभी मुनाफा देखा जा रहा है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रबी तिलहनी के प्रमुख किस्में और इसकी प्रारंभिक तैयारी खेती के लिए। तो अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आम की सघन बागवानी एवं छत्रक प्रबंधन। और इस विषय के साथ हमारे बीच हैं आज डॉक्टर कुमारी करुणा मैडम, और मैडम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उद्यान विभाग फल बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैडम, सघन बागवानी के बारे में थोड़ा बात करते हैं, तो किसे कहते हैं सघन बागवानी, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
3: सघन बागवानी जैसे नाम से ही है कि सघन मतलब घना, घना करना है, यानी कि जो परंपरागत तरीके से बागवानी की जाती है उससे और घना करना है। यानी कि आम का हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो आम के केस में 10 मीटर 10 मीटर में हम लोग कहते हैं लगाने की, ये परंपरागत विधि है लगाने का कि 10 मीटर पौधा से पौधा और 10 मीटर कतार से कतार की दूरी होनी चाहिए। जब सघन की हम बात करते हैं तो उससे नीचे जब हम डिस्टेंस लेते हैं, दूरी लेते हैं 8 मीटर 8 मीटर 7 मीटर 7 मीटर 6 मीटर 5 मीटर, तो ये सघन होते जाता है। सघन में भी बहुत तरह का है, जैसे कि कहते हैं कि कम सघन, मध्यम सघन, अति सघन, मतलब जब बहुत नंबर ऑफ संख्या जब बढ़ाते जाते हैं पौधा को, उस तरह से उसका नामकरण होते जाता है सघन का। तो इसको हम लोग नॉर्मल से जब हम कम दूरी पर पौधा को लगाते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं सघन बागवानी। इसकी उपयोगिता ये है कि प्रति हेक्टर उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि नंबर ऑफ पौधा बढ़ जाता है, फलों की गुणवत्ता भी अच्छी हो जाती है। इसमें अच्छी इसलिए हो जाती है कि इसमें छत्रक प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। छत्रक प्रबंधन किया जाता है और प्रॉपर फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, सिंचाई, निकाई, गुराई करने से इसकी गुणवत्ता अच्छी हो जाती है।
1: जी, अगर सघन बागवानी की बात करें तो हम ज़मीन की तैयारी कैसे करेंगे, गड्ढा बनाना, गड्ढा भरना, इसमें कैसे किया जाता है?
3: ज़मीन की तैयारी जैसे परंपरागत तरीके से करते हैं, 3 बार जुताई करते हैं, उसके बाद पाटा चलाते हैं। इसी तरह से सघन बागवानी के लिए भी अगर शुरुआत में हमको बगीचा लगाना है, किसान भाई को बगीचा लगाना है सघन बागवानी में, तो उसी तरह से ज़मीन की तैयारी करनी होगी, पाटा चला के उसके बाद लेआउट करना होगा, जिस विधि में किसान भाई लगाना चाहेंगे, जिस दूरी में लगाना चाहेंगे, 5 मीटर 5 मीटर में लगाना चाहेंगे या 6 मीटर 6 मीटर में लगाना चाहेंगे। सबसे अच्छा जो डिस्टेंस होता है, जो हम बिहार सरकार से भी प्रेस्क्राइब है और हम लोग भी कहते हैं कि 5 मीटर 5 मीटर की दूरी पर आम को लगाना चाहिए सघन में। और उसके बाद पाटा चलाकर जो दूरी हम लिए हैं जो पौधा से पौधा और कतार से कतार की दूरी लिए हैं, उसमें खूंटी बीच में लगा देना चाहिए उस डिस्टेंस पर। उसके बाद 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा, 1 मीटर ऊंचाई पर उसका मिट्टी मतलब गड्ढे की खुदाई करनी चाहिए। फिर गड्ढे को भरने के लिए ये काम, गड्ढे खुदाई का काम अप्रैल में करना चाहिए, अप्रैल मई में जब बहुत गर्मी रहती है उस समय करना चाहिए।

0: उसमें खाद और कंपोस्ट मिलाकर ऊपर में भरना चाहिए। इस तरह मॉनसून आने से पहले गड्ढे को भर देना चाहिए।
1: जी, आम का कौन कौन सा किस्म सघन बागवानी के लिए उपयुक्त है?
0: देखिए, सघन बागवानी के लिए हम लोग कहते हैं कि जो छोटा पौधा है, जिसका स्ट्रक्चर छोटा होता है, उसको लगाने से मेंटेन करने में सुविधा होती है। इसलिए सघन बागवानी के लिए जो वैरायटी प्रिस्क्राइब है वो है आम्रपाली है, मल्लिका है, दशहरी है, जरदालू है। ये सबका स्ट्रक्चर जो है, ढांचा शरीर का थोड़ा छोटा होता है, तो इसको मेंटेन करने में थोड़ा सुविधा होती है, जल्दी से इसका ग्रोथ उतना फैलता नहीं है, तो ये सब वैरायटी लगा सकते हैं किसान भाई।
1: जी, आम के अगात, मध्य एवं पिछात में पकने वाली किस्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें।
0: हाँ, अगात किस्म में किसान भाई भी जानते होंगे, बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि गुलाब खास है, ये अर्ली में आ जाता है, शुरू में आ जाता है, और मार्केट में लाल लाल दिखाई भी देने लगता है कि गुलाब खास, गुलाबी रंग का। बम्बई है, जरदालू है, अल्फांजो है, ये सब मई के अंत में पकने वाली वैरायटी है, ये अर्ली है। और मध्यम में तो जो हम लोग का चॉइसेस्ट वैरायटी है, लंगड़ा ये बीच में ही पकता है, जून के बीच में पकता है, तो लंगड़ा है, हुसनारा है, अमन दशहरी है, कृष्णभोग है, ये सब मध्य में पकने वाली वैरायटी है। और जुलाई में लास्ट में जाएंगे तो चौसा है, फजली है, सुकुल है, सिपिया है, ये सब लेट वैरायटी है।
1: जी, पौध रोपण कब और कैसे करना चाहिए?
0: बिहार में हम लोग के कंडीशन में रोपण का मुख्य समय हम लोग जुलाई अगस्त है, इसमें मॉनसून आ जाता है, तो किसान भाई को सिंचाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इस तरह लेबर का भी बचत हो जाता है और पौधे अच्छी तरह लग जाता है। उच्च गुणवत्ता युक्त पौधा हम लोग कहते हैं किसान भाई को पहले से खरीद लेना चाहिए, या फिर अच्छे संस्था में बुक करा लेना चाहिए कि मुझे इतना पौधा चाहिए गड्ढे के अनुसार से, और उसे जुलाई के मध्य में सावधानी पूर्वक जहाँ गड्ढा बनाए थे पहले वहाँ पर खोद कर, बस अब उतना खोदना नहीं है, जितना बड़ा बॉल है पौधा का जिसमें कि मिट्टी लगा रहता है, उतना ही बड़ा गड्ढा खोद कर उसमें बैठा देना चाहिए बीच में, और 50 से 60 सेंटीमीटर की गोलाई का थाला बना देना चाहिए, उसके बाद फिर उसमें तुरंत सिंचाई कर देना चाहिए।
1: सघन बागवानी में छत्रक प्रबंधन कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे मैडम।
0: हाँ, सही कहा, आज तो ये टॉपिक ही है कि आम की सघन बागवानी एवं छत्रक प्रबंधन। जब सघन बागवानी की बात करते हैं तो उसमें छत्रक प्रबंधन तो होना ही चाहिए और बहुत ही ज़रूरी है छत्रक प्रबंधन। तो कटाई छटाई का काम जो है, जब हम पहली साल लगाते हैं पौधा को तो उसका पहला कटिंग हम लोग कहते हैं कि दिसंबर जनवरी में करना चाहिए। पौधा कितना भी बड़ा हो उसको 90 सेंटीमीटर ऊंचाई का छोड़कर ऊपर से काट देना चाहिए। तनों की कटी सतह पर फफूंदनाशक दवा का पानी में लेप बनाकर उसके ऊपर लगा देना चाहिए। कटाई के बाद तो ठंडा आ जाएगा, जैसे कि दिसंबर में हम कह रहे हैं कि काटना चाहिए, तो फिर जनवरी में ठंडा आ जाता है, लेकिन फरवरी मार्च अप्रैल में बहुत सारा उससे कल्ला निकलने लगता है, तो उस कल्ला से चार कल्ला चारों दिशाओं में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में छोड़कर और जितने भी कल्ले शेष रहेंगे उसको काटकर अप्रैल महीने में हटा देना चाहिए। अब उन चार कल्लों को, चार जो बच गए उसको 30 सेंटीमीटर छोड़कर उसका भी फिर हेडबैक कर देना चाहिए आगे से। हेडबैक मतलब कि आगे जितना पुंछी टाइप का रहता है आगे उसको काट देना चाहिए, यानी 30 सेंटीमीटर छोड़कर बाकी जो है उसको काट देना चाहिए। फिर वो 30 सेंटीमीटर के नीचे से बहुत सारे कल्ले निकलेंगे, उसमें से दो या तीन कल्ले को छोड़कर फिर शेष जो कल्ले एक्स्ट्रा रहेंगे उसको हटा देना चाहिए। ये प्रक्रिया तीन साल तो करना ही चाहिए। करने से पौधे का आकार

0: एकदम से छतरी नुमान तैयार हो जाता है। ये करना अत्यंत आवश्यक है सघन बागवानी में, जिससे कि पौधे का ढांचा जो है बहुत ही मजबूत तैयार होता है। इस तरह करने से फलन का जो गुणवत्ता है वो बहुत ही अच्छा होगा और 20 से 25 वर्ष तक इससे अच्छी क्वालिटी का फसल तैयार हो सकता है। और 20-25 साल के बाद फिर इसमें हेडबैग की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो सूट था, जो टहनी था, टहनी को 1 से 1.5 मीटर छोड़कर पुनः बैक प्रूनिंग इसको बोलते हैं, यानी कि फिर से कटिंग करना। आम में 20-25 वर्ष के बाद शाखाओं की वांछित हेडबैक दिसंबर में करने के फलस्वरूप अप्रैल से स्वस्थ कलमों का सृजन होता है। सभी वृक्षों में एक बार यह हेडबैक की प्रक्रिया करना आवश्यक है। इसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फफूंदनाशक का पानी में घोल बनाकर लेप लगाना चाहिए या घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। प्रारंभ में 4 से 5 स्वस्थ कल्ले प्रति टहनी रखकर जुलाई में विधिवत विरलीकरण करना चाहिए, यानी जो एक्स्ट्रा सूट है उसको निकाल देना चाहिए। इस प्रकार कटे हुए वृक्ष में हवा और रोशनी आदि के समावेश से स्वस्थ कलों का सृजन होता है। कटे हुए वृक्षों में सभी सस्य क्रियाएँ, विशेषकर खाद और जल प्रबंधन, मल्चिंग आदि सामयिक करना चाहिए। फिर इन्हीं वृक्षों से गुणवत्ता युक्त भरपूर फसल 20 वर्षों तक पुनः ली जा सकती है।
1: तो श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे आम की सघन बागवानी एवं छत्रक प्रबंधन, और आपको इस वार्ता से जरूर कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं आपसे कल एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज यानी एफएम ग्रीन। मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तो आज हम पशुपालक भाइयों के लिए कुछ खास लेकर आए हैं। जी हां, पशुपालक भाइयों और साथ ही हमारे किसान भाइयों, आज जो हमारा विषय है वो है अजोला द्वारा पशु पोषण का प्रबंधन। तो आज इसके बारे में विशेष जानकारी के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ए के झा, जो कि मृदा वैज्ञानिक है सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो अजोला क्या है, भारत में पाए जाने वाली विभिन्न इसके प्रजातियों के बारे में जानना चाहेंगे।
2: अजोला, जैसा कि ये नाम ही बताता है, दो शब्दों से बना है, एजो और एलायो। एजो मतलब ड्राई और एलायो मतलब मर जाना, यानी एक खास प्रकार का जलीय फर्न है जो सूखे में मर जाता है। यानी कि ये सिर्फ आपको पानी के ऊपर ही पैदा होता है और ये बड़ा ही फायदेमंद है। आप इसको पशुपालन में भी प्रयोग कर सकते हैं, खेती के लिए प्रयोग कर सकते हैं, इवन जो मत्स्य पालन है उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ये बहुत सारी जो कृषि की विधाएं हैं उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो ये काफी फायदेमंद जलीय फर्न है और इसके पोषक मान भी काफी होते हैं, जिसके विषय में हम आगे जिक्र करेंगे कि पोषक मान के कारण ये यदि पशुपालन में प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूपेण जो हमारा पशु का स्वास्थ्य है वो भी ठीक होगा और साथ ही साथ जो दुग्ध उत्पादन है उसमें भी काफी वृद्धि होगी। अब आपका जो दूसरा प्रश्न था कि इसकी कितनी प्रजातियां हैं जो हमारे भारतवर्ष में पाई जाती हैं, तो भारतवर्ष में यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से 7 प्रजातियां हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं, लेकिन आजकल 6 ही प्रजातियां इसमें मिलती हैं। पहला है अजोला कैरोलिनियाना, दूसरा है अजोला फेलिकुलाइट्स, तीसरा है आपका अजोला मैक्सिकाना, चौथा है अजोला माइक्रोफिला और अजोला पिन्नाटा पांचवा हुआ, अजोला रुब्रा छठा हुआ, और पहले कहीं कहीं हमें मिलता था अजोला निलोटिका, लेकिन आजकल अजोला निलोटिका मिल नहीं पा रहा है। तो ये 6 प्रजातियां हैं जो कि आपको पाई जाती हैं भारतवर्ष में।
1: जी जी, और डॉक्टर साहब इसके बाद एक सवाल और आता है कि अजोला का पोषक मान जानना चाहते हैं सभी लोग।
2: बिल्कुल, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अजोला की बात हम पशु पोषण के लिए इसलिए करते हैं कि इसमें यदि हम प्रोटीन की बात करें तो इसमें 25 से 35% प्रोटीन पाया जाता है।
1: जी।
2: यदि हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस भी लगभग 1% जो यहाँ टेस्ट किया गया CFTRI में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में, तो इसमें देखा गया कि 0.86% इसमें फास्फोरस पाया गया, यानी मोटे तौर पर 1% इसमें फास्फोरस पाया जाता है, 4.5% तक इसमें पोटेशियम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप देखें तो इसमें विटामिन B12 भी काफी मात्रा में है, 1.14 मिलीग्राम, 100 ग्राम में यदि आप देखते हैं तो 1.14 मिलीग्राम इसमें विटामिन B12 पाया जाता है। कैल्शियम भी 100 ग्राम में 67 मिलीग्राम पाया गया। इसके बाद मैग्नीशियम 4.3 मिलीग्राम, गंधक भी 2.7 मिलीग्राम, जस्ता 4.1 मिलीग्राम, लोहा ये 7.3 मिलीग्राम, तांबा 0.9 मिलीग्राम। तो कहने का मतलब ये है इसके अतिरिक्त इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। और इसमें रेशे की बात करें तो रेशा भी इसमें आपको जो है वो 13-14% इसमें रेशा, यानी शुष्क भार आधारित यदि हम बात करते हैं तो रेशा भी पाया जाता है। तो इसीलिए चूंकि इससे प्रोटीन काफी ज्यादा है तो यहां पर विदेशों में इसको मानव आहार में भी यूज करने की बात क्या है, क्योंकि हर एक आदमी को रोज अंडा मछली दूध नहीं मिल पा रहा है। और पशु ये जो हमारा माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड वाइड है, तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए अब आवश्यकता इसको इसकी है कि पशु पोषण में तो प्रयोग करें ही, हम मानव आहार के रूप में इसको कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं इस पर भी काम करने की जरूरत है और इसको प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। लेकिन पशु पोषण की बात करते हैं तो निश्चित रूप में जो हम उसे आज पुआल खिलाते हैं या दूसरी चीजें खिलाते हैं उसमें उतना पोषक मान नहीं होता है। तो हम यदि इस ढंग की चीजें खिलाते हैं तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, साथ ही साथ जो दुग्ध उत्पादन है दुग्ध उत्पादन भी काफी बढ़ेगा।
1: जी तो ये कुछ फायदे हैं और पोषक मान जो डॉक्टर साहब ने बताया आपको पशुपालक भाइयों। और इसके बाद अगर डॉक्टर साहब पशुपालन के लिए अजोला का उत्पन्न करना चाहते हैं, पैदा करना चाहते हैं अजोला को, तो कैसे करेंगे?
2: अब देखिए अजोला को किसान खुद पैदा करता है, ये एक ऐसी चीजें हैं जो किसान खुद पैदा करके उसका प्रयोग कर सकता है। अब पहली बात हम आपको बताएं कि यदि आप पैदा करना चाहते हैं तो लगभग 10-11 मीटर चौड़ा गड्ढा खोद लीजिए और उसकी चौड़ा नहीं लंबा 10-11 मीटर लंबा और चौड़ाई इसकी 5 फीट के आसपास रखिए और गहराई आप 1.5 फीट इसमें रख सकते हैं। अब क्या है कि इस गड्ढे को आपने बना लिया तो चूंकि इसमें पानी में पैदा होता है तो पानी डालेंगे तो पानी रिस जाएगा, इसलिए नीचे आप प्लास्टिक बिछा दीजिए। अब प्लास्टिक बिछा के इसके ऊपर 3-4 इंच उपजाऊ मिट्टी की परत बना दीजिए। अब इसमें जब मिट्टी की परत आपने बना दिया उसके बाद अब क्या है कि इसके ऊपर लगभग 3-4 इंच ये सेलोफंड है, सेलोफंड कहने का मतलब कि कम पानी रहेगा, बहुत गहरा पानी रहेगा वहां पर ये अजोला नहीं चलेगा, तो आप वहां पर 3-4 इंच पानी मेंटेन कीजिए। और 3-4 इंच पानी मेंटेन करने के बाद उसके बाद आपको करना ये है कि 5-6 किलोग्राम जो गोबर है जो 4-5 दिन 6 दिन पुराना गोबर है उसको लगभग 10-15 लीटर पानी में घोल लीजिए और पानी में घोल करके वहां पर जो बालू चालने वाली जाली है उसी से छान करके उसमें आप मिला दीजिए। ये मिला देने के बाद, लेकिन बहुत जगह पर यह भी होता है जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है वहां पर कीड़े की समस्या होती है, तो आप नहीं भी गोबर डालना चाहे या पशु भी खाने में थोड़ी सी दिक्कत करता है तो बिना गोबर डाले भी आप पैदा कर सकते हैं। और ऊपर में जो झाग है उसको एक चलनी से उसको छान करके इस झाग को हटा दीजिए, उसके बाद आप इसमें 1 किलोग्राम लगभग अजोला एक गड्ढे में डाल दीजिए। अब क्या होगा कि पानी का लेवल आपको हर समय मेंटेन करना है, 3-4 इंच पानी हर समय मेंटेन रहे, इसके लिए आपको बीच बीच में पानी डालने की जरूरत पड़ेगी। ये कर देने के बाद अब क्या है कि इसमें ये बढ़वार होता रहेगा, आप तेज बढ़वार चाहते हैं तो थोड़ा फास्फोरस जो सिंगल सुपर फास्फेट है वो 2-2.5 ग्राम प्रत्येक हफ्ता 10 दिन के अंतराल पर 2-2.5 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसमें आप सिंगल सुपर फास्फेट मिला दीजिए, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पशु पोषण के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें एक चीज है कि यदि आप 10 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए और उसमें लगभग ये जो है 1.5 किलोग्राम ये जो आपका म्यूरेट ऑफ पोटास आता है, सॉरी मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट को मिला दीजिए और उसमें 0.5 किलो या 1 पाव उसमें आप म्यूरेट ऑफ पोटास को मिला दीजिए। अब पशु को जो दिया जाता है मिनरल मिक्सचर वो भी थोड़ा सा आप उसमें मिला करके और उसके बाद उसमें से 2-2.5 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे दीजिए तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि उसका अवशोषण पौधा ये करेगा अजोला करेगा तो जो जानवर को मिलेगा वो ज़्यादा पोषण वाला अजोला मिलेगा तो उससे उसका स्वास्थ्य और ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस ढंग से आप इसका प्रयोग कीजिए। अब ये जो है क्या कहते हैं जब पैदा हो गया तो पैदा हो जाने के बाद उसको आप आराम से छान सकते हैं। देखिए चलनी जो लीजिएगा लोहे की चलनी नहीं लीजिएगा, तांबे की या पीतल की चलनी लीजिए, क्योंकि लोहा वाला बार बार जंग खा जाएगा। तो उसी चलनी से आप चाल लीजिए और चाल करके उसके बाद उसको मतलब छान लीजिए, कहने का मतलब छान करके इसको साफ पानी में दो तीन बार आप इसको धो करके और उसके बाद जो कुछ भी इसे आहार देते हैं उस आहार में मिला करके इसको दे दीजिए। ये है तरीका आपको इसको पैदा करने का।
1: जी डॉक्टर साहब, अब इसके उत्तम बढ़वार के लिए जो अपेक्षित परिस्थितियां हैं उनके बारे में जानना चाहिए।
2: अब देखिए एक चीज है कि ये बड़ा ही सेंसिटिव क्रॉप है, टेम्परेचर सेंसिटिव क्रॉप है। यदि बहुत ठंडक है उस समय भी ये लाल हो जाएगा, पिगमेंटेशन हो जाएगा, एंथोसियानिन पिगमेंट इसमें आ जाता है। तो न इसको बहुत ठंडक चाहिए, यानी 3-4-5 डिग्री टेम्परेचर यदि है तो उस समय आपका बढ़वार नहीं हो पाएगा, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40-45 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर है उस समय भी इसके बढ़वार में दिक्कत आती है। तो टेम्परेचर इसका यदि 25 डिग्री के आसपास है, 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर, वहाँ पर इसका बढ़वार बढ़िया होता है। और यह है कि हमने पानी का तो स्तर बता ही दिया कि 5 से 10 सेंटीमीटर 3-4 इंच पानी जो है वो हर समय मेंटेन रहे, यह देखने की बात है। साथ ही साथ इसको जो है यदि छनी हुई धूप दी जाए यानी 60% 70% यदि आप छनी हुई धूप दें, यानी आप सेडनेट बना लीजिए, जहां 60% जाली वाला जो सेडनेट है उससे ढक करके यदि आप बनाते हैं तो उसमें अजोला का बढ़वार ज़्यादा बढ़िया होगा। तो आप इस ढंग की परिस्थितियां इसको देते हैं, और मिट्टी भी जो प्रयोग कर रहे हैं यदि आप न्यूट्रल पीएच वाला आपका है, यानी उदासीन पीएच मान वाला यदि आपकी मिट्टी है उसमें यदि आप दीजिए तो उसमें बढ़वार ज़्यादा बढ़िया होगा। तो इस ढंग की चीज़ें यदि आप दे रहे हैं तो उसमें आपका अजोला तेज़ी से बढ़ेगा, ये फायदा होगा।
1: जी तो ये पशुओं को हम कैसे खिला सकते हैं और इसके फायदे क्या होंगे?
2: अब जैसे हमने अभी बताया था कि अजोला आपने पैदा कर लिया, अब अजोला पैदा कर लिया उसको चूंकि थोड़ा सा स्मेल, यदि खास करके गोबर डाले हैं तो थोड़ा सा स्मेल रहेगा, तो इसको क्या करना है, साफ पानी आप ले लीजिए और साफ पानी में आप उसको धो दीजिए 3-4 बार या 2 बार, कम से कम 2-3 बार तो जरूर धोएं। वो धो करके उसके बाद आप जानवर को दीजिए 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम, क्योंकि ये हम लोगों ने काम करके देखा है कि यदि हम 1 किलो सुबह 1 किलो शाम देते हैं तो 8 से लेकर 15.6% तक दुग्ध उत्पादन बढ़ जाता है। तो यह यदि आप करते हैं तो यह आपको निश्चित रूप से जो दुग्ध उत्पादन है वो दुग्ध उत्पादन आपका बढ़ेगा। हाँ, प्रोटीन फैट SNF ये नहीं बहुत बढ़ता है, क्योंकि जो प्रोटीन फैट SNF है वह ब्रीड का कैरेक्टर होता है, लेकिन टोटल यदि प्रोडक्शन देखिएगा तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है। तो इसीलिए आप इसको जो है क्या करते हैं, इस ढंग से यदि करते हैं तो आपको जो दुग्ध उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन में काफी वृद्धि होती है। तो वह आपको सुबह में और शाम में खिलाना है, ये इसका तरीका है। तो
1: जी,
2: फायदा तो मैंने बताया है कि दुग्ध उत्पादन में आपकी वृद्धि हो रही है, तो सबसे बड़ा फायदा यही होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष जानकारी के लिए, हमारे श्रोता जरूर लाभान्वित होंगे इस जानकारी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से इसी कार्यक्रम और इसी फ्रिक्वेंसी पर हाजिर होंगी मैं, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर हमारा ये खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम, और आप सुनते हैं इसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन पर हर रोज। और हर रोज हम आपके लिए एक नए विषय के साथ हाजिर होते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत देश को, जी हाँ, मसालों का खजाना भी कहा जाता है प्राचीन काल से ही। और मसालों की बात करें और मेथी की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेथी की खेती के बारे में आज हम जानेंगे, बहुत ही ये नई जानकारी आप सभी के लिए आज होंगी। और शुरू से लेकर अंत तक जो वैज्ञानिक तरीके से आप इसकी खेती कैसे कर सकते हैं, कौन से उन्नत प्रभेद आपको अपनाने चाहिए, और खेत की तैयारी आप कैसे करें, खाद और उर्वरक किसमें कितना देना होगा आपको, कितने बीज की आवश्यकता होगी, सिंचाई के बारे में और बीज उत्पादन के बारे में, साथ ही जो कीट और रोग व्याधि हैं, यानी कि पूरी की पूरी खेती की जानकारी आपको आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में मिलेंगी। हमारे साथ आज इस विषय को लेकर हैं डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह, और सर वैज्ञानिक हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। तो सर आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार मैम।
1: सर, सबसे पहले तो हम अगर अपने दैनिक जीवन की बात करें और मसालों का उपयोग तो हमारे दैनिक जीवन में सब्जियों को बनाने में या फिर अन्य जो रेसिपीज़ हैं उसे बनाने में यूज़ होता ही है, तो थोड़ा इसके उपयोग के बारे में,

0: इसके महत्व के बारे में बताएं।
1: किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि किसान भाइयों और बहनों जानते हैं कि मेथी महत्वपूर्ण पत्ती वाली सब्जी के साथ साथ बीज मसाले फसलों की फसल है। मेथी को कोमल पत्तियां तनों के साथ सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है और यह मेथी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है देसी मेथी और एक होता है कसूरी मेथी। देसी मेथी का जनरली यूज ज़्यादातर लोग करते हैं क्योंकि कसूरी मेथी का ज़्यादातर उपयोग सुगंधित पदार्थों को बनाने और उसका यूज करने में ही किया जाता है। देसी मेथी के सूखे दाने का उपयोग मसाला, सब्जियों के छौंकने, अचार तथा औषधियों में किया जाता है। मेथी का सेवन मधुमेह से ग्रसित रोगी के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। जैसा कि किसान भाई जानते होंगे कि जब मधुमेह होता है तो उस मेथी का छोटा एक मुट्ठा दाना लेकर के एक गिलास पानी में डाल करके सुबह उसका सेवन करने से मधुमेह कम होता है, इसलिए मेथी का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में ज़्यादा उपयोगी है। मेथी की खेती मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कुछ हद तक हमारे बिहार में भी किया जाता है। मेथी दो भागों में बांटा गया है, सामान्य मेथी और कसूरी मेथी। सामान्य मेथी का जो फल की साइज होती है वो 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है और कसूरी मेथी का जो फल का साइज होता है वो होता है 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका उपयोग ज़्यादातर हम मसालों में ही करते हैं।
0: जी, अगर हम जलवायु और मिट्टी की बात करें तो किस प्रकार की जलवायु और किस प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती हम कर सकते हैं?
1: जलवायु की बात करें तो मेथी ठंडी जलवायु की फसल है तथा इसकी खेती रबी के मौसम में की जाती है। इसकी प्रारंभिक बढ़वार के लिए मध्य आर्द्र जलवायु तथा कम तापमान उपयुक्त होती है, विशेषकर फूल बनते समय। अगर अवकाश बादलों में आच्छादित हो तथा वायु में नमी बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में रोग एवं कीट के प्रकोप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसकी फसल पहले से पति काफ़ी सहनशील होता है। और मिट्टी की बात करें तो मेथी हर प्रकार के मिट्टी में उगाई जाती है, परंतु अच्छी उपज के लिए दोमट बलुई मिट्टी मृदा जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो वह उपयोगी होता है।
0: अगर मेथी के उन्नत प्रभेदों की हम बात करें तो जो उचित प्रभेद है उसका चुनाव हमारे किसान भाई करना चाहेंगे तो कौन कौन से उन्नत प्रभेद हो सकते हैं जिससे कि वो अधिक लाभ उठा सके इसकी खेती करके?
1: मेथी के उन्नत प्रभेद तो बहुत सारे हैं मैम। कुछ ऐसे उन्नत प्रभेद हैं जो हमारे विश्वविद्यालय से निकाले गए हैं, अलग अलग विश्वविद्यालय से निकाले गए हैं। उसमें से पहला है राजेंद्र क्रांति, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित ढोली केंद्र से निकाला गया है। इसकी फसल को 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है तथा इसका बीज उपज 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। दूसरी वैरायटी की बात करें तो नरेंद्र मेथी 19, जो नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या से निकाली गई है। इसका बुआई के 144 दिन में यह पककर तैयार हो जाता है, जिसका उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। इसमें एक बात करें तो कसूरी मेथी, कसूरी मेथी जो IRI नई दिल्ली से निकाली गई है, इसका उपज 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। यह बुआई के 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। और एक और वैरायटी है जो काफ़ी पॉपुलर और अच्छी वैरायटी है, पूसा अर्ली बंच, ये भी IRI नई दिल्ली से निकाली गई है। यह 120 से 125 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इसका उपज 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है।
0: जी, मेथी की खेती के लिए खेत की तैयारी, खाद और उर्वरक की मात्रा और बुआई के समय के बारे में भी बताएं।
1: खेत की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा शेष 2-3 जुताई कल्टीवेटर से करते हैं। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं ताकि खेत समतल एवं मिट्टी भुरभुरी हो जाए। ठीक ढंग से निकाई गुड़ाई तथा सिंचाई के लिए सुविधाजनक आकार का 5 से 6 मीटर लंबी तथा 2 से 2.5 मीटर चौड़ी क्यारी बना ले, जिससे किसान भाइयों को उसके प्रोडक्शन लेने में आसानी होगी। और खाद उर्वरक की बात करें तो कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद 25 टन प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 50 किग्रा, फास्फोरस 40 किग्रा तथा पोटास 30 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से

0: देना चाहिए। और इसमें मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि नाइट्रोजन की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की पूरी मात्रा खेत तैयार करते समय नहीं देना चाहिए। उसकी कुछ मात्रा, जैसे नाइट्रोजन की शेष मात्रा दो किस्तों में बुआई के 30 से 60 दिनों के बाद देनी चाहिए। हरी पत्ती के लिए उगाई जाने वाली फसल में हर कटाई के बाद नाइट्रोजन देना चाहिए।
1: जी, कितने बीज की आवश्यकता होगी इसमें, और बीज बोने का तरीका और सिंचाई के बारे में जानकारी दें।
0: बुआई का समय उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में मेथी बुआई लगभग मध्य सितंबर से मध्य नवंबर के बीच करते हैं जी। पत्तियों के लिए इसमें फरवरी माह में भी बुआई की जा सकती है। इसका बीज दर है, सामान्य मेथी का बीज दर 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। असामान्य मेथी जो इसका बीज दर, जिस जो बीज के लिए हम उपयोग करते हैं, जिसको कहते हैं हम सीड प्रोडक्शन के लिए हम जो यूज करते हैं, उसका बीज दर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और कसूरी मेथी की बात करें तो पत्ती के लिए जो साग बनाने के लिए हम करते हैं उसमें 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है। और इसमें बीज बोने का तरीका की आप बात कर रही थी मैम, तो हरी पत्तियों के लिए मेथी की बुआई तैयार क्यारियों में छिटकवा विधि से करते हैं, तथा मेथी के जब सीड प्रोडक्शन के लिए हम मेथी की बुआई करते हैं तो उसको कतार में पक्ती से पक्ती में करते हैं। कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं। बीज 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए। मेथी के पौधों की वृद्धि एक बीज की अधिकतम उपज के लिए राइजोबियम FL18 तथा FL14 द्वारा बुआई के पूर्व बीज और मृदा उपचार के उपयोग में 15-20% की वृद्धि पाई जा सकती है। और यहाँ इसकी सिंचाई के बारे में बात करें तो मेथी के अंकुरण के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। अगर खेत में नमी कम हो तो खेत की हल्की सिंचाई करके बीज की बुआई करें ताकि खेत में नमी बनी रहे
1: जी। और अब बारी आती है निकाई गुड़ाई, फसल की कटाई और बीज उत्पादन के बारे में जानकारी।
0: बीज फसल के लिए पौधे के विरलीकरण बुआई के 25 से 30 दिनों के अंदर करते हैं। बुआई के 30 से 60 दिनों पर दो निकाई गुड़ाई अवश्य करनी चाहिए। फसल की कटाई, साधारण मेथी की पहली कटाई बुआई के लगभग 4 सप्ताह बाद की जानी चाहिए। उसके बाद 15 दिनों के अंतराल पर 4 से 5 कटाई करें। अगर बीज लेनी हो तो 2 से 3 कटाई के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग उस पत्ती के साथ साथ बाद में सीड प्रोडक्शन भी करना चाहते हैं, जब आप सीड प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो बीज 2 से 3 कटाई करने के बाद उसको छोड़ देना चाहिए ताकि उसका हम सीड भी ले सकें।
1: और अंत में इसमें लगने वाले जो कीट हैं और रोगों के बारे में जानना चाहेंगे, और उन रोगों को का रोकथाम हम कैसे करेंगे उनके बारे में बताएं।
0: मेथी में रोग और रोकथाम जो है मैम 2 से 3 हैं, जैसे कि हमको पता है कि चुरड़िर आसिता, मृदरूप आसिता और एक है मूल गलन। इस मेथी में मूल गलन गंभीर बीमारी है जिसमें जड़ों के पास सड़न तथा बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद पौधा पीला होकर सूख जाता है। इससे हमें इस बीमारी से सुरक्षा हेतु कार्बेंडाजीम दवा का 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचारित बुआई करें। ये दूसरा है चुड़िल आसिता। इस रोग का लक्षण ये है कि रोग के प्रारंभ में पत्तियों पर सफ़ेद चुड़िल पुंज दिखाई देते हैं और उग्र रूप होने पर पूरे पौधों के ऊपर ये फैल जाते हैं। इससे किसान भाइयों को बचने के लिए इसमें दवा के लिए एक कैराथान दवा 0.1% या सल्फेक्ट 0.2% घोल कर छिड़काव करें। और इसमें कीट की बात करें तो दो हैं, एक माहो दूसरा दीमक। फर्स्ट जो माहो है, इसके कीट फूल एवं पत्तियों के रस चूसकर पौधों को हानि पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाप्लोर कीटनाशी दवा का 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर 10 दिनों के अंतर पर छिड़काव करें। दूसरा है दीमक, यह पौधों की जड़ों को काटकर फसल को हानि पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए खेत की जुताई के समय क्लोरिडा पाइराफास कीटनाशी दवा का 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर पूरे खेत में इसका छिड़काव करें।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मेथी की अवैज्ञानिक खेती, इसके बारे में आपने पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त की आज के इस वार्ता से। आशा करते हैं आपको आज का यह वार्ता जरूर पसंद आया होगा। अगले दिन मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आप सभी के बीच एक खास कार्यक्रम लेकर, उन्नत कृषि कार्यक्रम। इसमें खेतीबाड़ी की तो बातें होती ही हैं, लेकिन पशुपालक भाइयों के लिए उनके पशु के रखरखाव की भी बातें होती हैं। अब पशुओं के लिए जैसे हम संतुलित आहार खाते हैं मनुष्य, वैसे ही उनके लिए भी ज़रूरी है संतुलित आहार। तो आज जानेंगे हम पशुओं के लिए, खासतौर पर जो दुधारू पशु हैं उनके लिए संतुलित आहार कैसे तैयार करेंगे उसकी विधि के बारे में। इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अमित कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो पशुओं के लिए संतुलित आहार क्या है, इसके बारे में थोड़ा बता दें।
2: हाँ बिल्कुल, किसान बंधुओं को यह जानना जरूरी है कि पशु के लिए क्या आवश्यक है। हमारे लिए जैसे सबसे बेसिक चीज़ क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो सबसे पहले रोटी की बात आती है। इसी तरह हम देखते हैं पशुओं के लिए भी जो सबसे बेसिक ज़रूरत है वो है उसका आहार। तो संतुलित आहार वैसे आहार सामग्री को कहते हैं जो किसी विशेष पशु की 24 घंटे की निर्धारित पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, वैसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार पशुओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संतुलित आहार पशुओं को सिर्फ दूध उत्पादन की क्षमता को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि पशु स्वस्थ भी रहता है, इसका शारीरिक बढ़वार भी मेंटेन रहता है। ज़्यादातर पशुपालक अपने पशुओं को भरपूर पोषण नहीं देते हैं, ऐसी स्थिति में शरीर का विकास तो रुकता ही है पशु का, उसका मिल्क प्रोडक्शन भी पूरा नहीं हो पाता है, उसके शरीर की प्रतिरोध क्षमता भी नहीं बढ़ पाती है और धीरे धीरे पशु बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए पशुओं के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसको संतुलित आहार मिलना चाहिए, तभी उसका प्रोडक्शन मेंटेन रहेगा।
1: जी जी, तो ये संतुलित आहार क्या है आपने जाना श्रोताओं। और डॉक्टर साहब, ये जो पशुओं का आहार है, ये वर्गीकरण यानी पशुओं के आहार वर्गीकरण क्या होता है, और जो अलग अलग पशु हैं, पशु वर्ग हैं, उनके लिए अलग अलग आहार प्रणाली भी है, तो ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी।
2: हाँ बिल्कुल, जैसे आप पूछेंगे कि एक गाय कितना खाना खाएगी, तो ये यही सब चीज़ समझने के लिए हम इसके आहार का वर्गीकरण कहते हैं कि इसकी आवश्यकता के अनुसार इसको जो हम अलग अलग राशन तैयार करते हैं अलग अलग आहार, उसको हम वर्गीकरण में समझते हैं। सबसे पहले आता है मेंटेनेंस राशन। अगर कोई पशु ना दूध देता हो, ना उसका शरीर बढ़ रहा हो, ना वो कोई काम कर रहा हो, तो उसके शरीर के नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए जो खाने की मात्रा की आवश्यकता होती है उसको मेंटेनेंस राशन कहते हैं। इसमें शरीर ना बढ़ रहा है ना कमज़ोर हो रहा है, जैसे स्थिति है वैसी संतुलित अवस्था में बनी रहे, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। एक पशु को मिलने वाला वह आहार की आवश्यकता है जिसमें उसका शरीर का फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो और वो शरीर को मेंटेन रख पाए। इसके अलावा आता है जैसे कोई दूध दे रही है पशु, तो निश्चित रूप से वो दूध हर रोज़ उसके शरीर से न्यूट्रिएंट निकलता है। गाय का दूध खा के हम मजबूत हो जाएंगे, तो क्या गाय दूध दे रही है तो वो कमज़ोर नहीं हो जाएगी अगर उसकी पोषण की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाए तो? तो निश्चित रूप से जो दूध, जो मेंटेनेंस राशन है, उसके अतिरिक्त जो हम उसको दूध उत्पादन के लिए देंगे राशन, जो आहार देंगे, उसको प्रोडक्शन राशन या लैक्टेशन राशन में रखते हैं
1: जी।
2: और कभी कभी पशु प्रेग्नेंट होती है, तो निश्चित रूप से उसके शरीर में एक और जीव है, फीटस जो है, वो बच्चा बढ़ रहा है, तो एक तो गाय गर्भवती है, दूध भी दे रही है, तो एक तो निकल रहा है न्यूट्रिएंट्स मेमोरी ग्लैंड से, दूध से हमारे प्लेट में आ रहा है, और दूसरा जो बच्चा पेट में बढ़ रहा है उसकी भी आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से जो गर्भवती गाय है उसको हम प्रेग्नेंट हो तो 1 से 1.5 किलो 2 किलो तक अलग से कंसंट्रेट राशन, मेंटेनेंस राशन की अतिरिक्त देते हैं, तो वो उसका रिक्वायरमेंट पूरा करता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी राशन कहते हैं
1: जी।
2: और कुछ पशु आप काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, गांव में किसान खेत जोतते हैं, बैलगाड़ी चलाते हैं, तो वैसे एनिमल को वर्क एनिमल कहते हैं, और उसको वर्क राशन एक तरह से उसके काम के अनुसार जितना आप काम लेते हैं उसके अनुसार उसको भोजन कंसंट्रेट की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। और एक कैटेगरी आती है उसको कहते हैं सिक एनिमल राशन। सिक यदि पशु बीमार है, हम लोग में ही अगर पेट खराब हो जाए तो हम वो सारा चीज़ नहीं खा पाते हैं जो डेली खाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है अधिक पाचनशील खाना हम दें, ऐसा आहार जो शीघ्र ही पाचन हो जाए, शरीर में आसानी से पच जाए, तो बीमार पशुओं के लिए अलग से राशन तैयार करने की ज़रूरत होती है।
1: जी, तो ये थे जो पशुओं के आहार वर्गीकरण के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि कैसे कैसे आहार का वर्गीकरण किया गया है, कौन कौन से बेसिस पर। और डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि जो दुधारू पशु हैं, ऐसे तो जो गर्भवती पशुएं होती हैं उनके बाद भी हम दूध लेते हैं उनसे, तो उनके न्यूट्रिएंट्स निकल ही जाते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी बात करते हैं जो आमतौर पर जो हमारे पशु हैं उनमें अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो क्या कुछ बीमारी हो सकते हैं।
2: निश्चित रूप से जैसे हम इंसान खाना खाते हैं, यदि खाने में बहुत पोषक तत्व की कमी होती है तो वो बीमारी लगभग पशुओं में भी बहुत बीमारियां होती है। जैसे कि कैल्शियम, आप दूध लेते हैं पशु से तो दूध में कैल्शियम निकलता है, तो जो बहुत अधिक दूध देने वाली गाय है उसमें अक्सर मिल्क फीवर जैसी बीमारी देखी जाती है।
1: अच्छा।
2: बच्चा देने के बाद जब आप उससे लगातार दूध ले रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें कैल्शियम की कमी होते जाती है। ऐसी स्थिति में पशुओं का खाना पीना बंद हो जाता है, वो बैठ जाती है और एक तरह से वो एक बीमारी की अवस्था है। तो आपको उसको कैल्शियम अलग से इंट्राभीनस या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देना पड़ता है, इसलिए ये मिल्क फीवर जैसी बीमारी होती है। इसके अलावा है यदि उसको फास्फोरस की कमी हो जाए, तो आप सुने होंगे गांव में किसान कहते हैं कि पशु मिट्टी खाती है या ईटा खाने लगी है, खपड़ा खाने लगी है, तो वो उसकी बुरी आदत भाइसेस नहीं है, वो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी को बताता है, जो उसे आपके दिया हुआ खाना से नहीं मिलता है वो मिट्टी से सीधा लेकर के पूरा करना चाहता है। तो अगर पशु मिट्टी खा रहा हो तो उसमें फास्फोरस की कमी होती है, और इस बीमारी को पाइका कहते हैं। और जनरली पशुओं में इनफर्टिलिटी जैसी बांझपन की समस्या का भी ये कारण होता है जो फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो इसके बाद है यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी हो, एनर्जी की कमी हो, तो उस केस में हम कीटोसिस देखते हैं। एनिमल के मुंह से मीठा स्मेल आ रहा हो और वो बीमार पड़ा हुआ हो, निश्चित रूप से ऐसी स्थिति को कीटोसिस कहते हैं। और खास करके सीप गोट में एक बीमारी होती है उसको प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया कहते हैं। एनर्जी की कमी हो जाए और एनिमल प्रेग्नेंट हो तो उसमें एक कंडीशन, बॉडी कंडीशन होता है, उसको कहते हैं प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। इसके बाद एक मैग्नीशियम है, उसकी कमी से अगर खाने में मैग्नीशियम की कमी हो तो ग्रास टिटानी नाम की बीमारी होती है। आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया होता है, आयोडीन की कमी हो जाए तो ग्वाइटर होता है और मेटाबॉलिक डिस्टॉर्डर भी होता है। इसी तरह हम देखते हैं विटामिन ए का कमी हो तो नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियां होती है। तो सेलेनियम, विटामिन ई, ये सारी चीज़ न्यूट्रिएंट में निश्चित रूप से होना चाहिए ताकि उसके डेफिशिएंसी डिजीज को दूर किया जा सके।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं कि क्या कमी से, पोषक तत्वों की कमी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारे ग्रामीण किसान हैं वो अपने मवेशियों के लिए घर पर ही संतुलित पशु आहार तैयार करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे।
2: निश्चित रूप से हर किसान को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि उनके पास जो दुधारू पशु है, जो उनके पास बछड़े हैं, गाय है, बाछी है, सबके लिए उनको खाना तैयार करने की विधि आनी चाहिए कि कैसे हम खाना तैयार करें। तो सामान्य जो उसका नियम है, सबसे पहले कि 2.5 से 3% बॉडी वेट का उसको ड्राई मैटर, शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। जैसे 100 kg का बाछी है तो उसके लिए हम कितना खाना की ज़रूरत होती है, तो निश्चित रूप से 2.5 से 3% बॉडी वेट का है, मतलब 2.5 से 3 kg, ये शुष्क पदार्थ है, ये ऐसा खाना है जिसमें कि बिल्कुल पानी की मात्रा नहीं है। अब ये टोटल ड्राई मैटर में 1/3 कंसंट्रेट देते हैं, अनाज दाना मिश्रण देते हैं, और 2/3, 2/3 हिस्सा इसका हम चारा देते हैं। चारा में भी हम 1/3 देते हैं हरा चारा और 2/3 देते हैं सूखा चारा। और हरा चारा जो देते हैं उसमें भी 1/3 देते हैं लेगुमिनस और 2/3 देते हैं नॉन लेगुमिनस। तो इस तरह से हम उसका बैलेंस राशन घर पर बनाना सीख जाएंगे। हमारे लोकल अवेलेबल मटेरियल से तो हम देखते हैं मक्का हो, चोकर हो, गेहूं हो, खल्ली हो, खनिज मिश्रण हो, ये सब को मिला करके हम प्रतिदिन पशु के लिए अपने स्तर पर खाना तैयार कर सकते हैं। और बछड़े या बछड़ियों के लिए कम से कम 1 किलो से लेकर के 1.5-2 किलो तक प्रतिदिन उसके बढ़ते उम्र के अनुसार उसके आहार में हम दाना डाल सकते हैं। ऐसा बनाना सीखिए कि अगर 100 किलो अनाज का दाना मिश्रण तैयार कर रहे हैं तो इसमें मक्का, जौ, गेहूं, बाजरा ये सब की मात्रा लगभग 50% हो, और एक अनाज अगर डालना हो तो वो आप 35%, कभी कभी मक्का बहुत कम रेट पे मिलता है तो उसको ज़्यादा डाला जाता है, कभी गेहूं का ही दाम कम हो जाता है तो गेहूं को भी आप अधिक मात्रा में डाल सकते हैं। इसके बाद आता है कुछ प्रोटीन का सोर्स। प्रोटीन के सोर्स में हम जनरली खल्ली डालते हैं या दाल डालते हैं, तो ये कम से कम 25-30% हिस्सा होना चाहिए। और इसके बाद हम चोकर है जो गेहूं का राइस ब्रान, व्हीट ब्रान ये सब आता है, इसको भी 15-20% तक हम पशु के खाने में डाल सकते हैं। इसके बाद सबसे आवश्यक चीज़ है उसमें मिनरल मिक्सर की मात्रा 2-3% तक देनी चाहिए, और 1% नमक की मात्रा ज़रूर होनी चाहिए। और जब गाय दूध दे रही है तो एक गाय के लिए प्रति 3 किलो दूध में वृद्धि के लिए हम 1 किलो अनाज डाल सकते हैं, और भैंस के लिए प्रति 2.5 किलो दूध में वृद्धि के लिए 1 किलो अनाज की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इस तरह हम पशु का खाना अपने घर पर तैयार कर सकते हैं।
1: जी, तो ये विधि हो गई संतुलित आहार आप कैसे बना सकते हैं पशुओं के लिए घर पर, और संतुलित आहार के फायदे के बारे में जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब।
2: बिल्कुल, जब आप अपनाएंगे संतुलित आहार पशुओं के लिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको एक सबसे बड़ा फायदा होगा कि कम लागत पर स्थानीय रूप से उपलब्ध फीड संसाधनों का आप सही इस्तेमाल कर पाएंगे। होता क्या है, हमारे पास जब भूसा अधिक हो तो हम भूसा ही सिर्फ खिलाते हैं, दूसरा चीज़ नहीं खिलाते हैं, तो पशु का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। लेकिन भूसा में कुछ आप अनाज मिला करके भूसा को पानी में भिंगा करके ऐसे खिलाएंगे तो निश्चित रूप से पशु को फायदा होगा। इसके बाद है कि अधिक वसा और SNF की मात्रा को मेंटेन किया जा सकता है। जो दूध देते हैं पशु उसमें दूध में वसा की मात्रा के अनुसार कभी कभी उसका दाम निर्धारित किया जाता है, तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद है आपके आय में वृद्धि होती है निश्चित रूप से। अगर आपका प्रोडक्शन अधिक होगा तो आपको आय अधिक होगा। और पशुओं में एक समस्या देखी जाती है अक्सर बांझपन की। पशु एक बच्चा देता है तो दूसरे बार उसको गर्म होना और उसको कंसीव कराना एक मुसीबत सी होती है। लेकिन अगर आप संतुलित आहार देते हैं, संतुलित आहार अपने पशुओं को खिलाते हैं तो ये प्रजनन क्षमता में सुधार होता है और पशु में जो बांझपन की समस्या है उसको दूर करता है। इसके बाद है अंतर ब्याने की अवधि, अंतर ब्यांत अवधि, दो बच्चा देने के बीच की अवधि को ये कम करता है। पशुओं में सामान्य सुधार होता है, स्वास्थ्य का सुधार होता है, और जो बछड़ा है, जो बाछी है नए, उसके शरीर में वृद्धि होती है, तेज़ी से उसका शरीर विकसित होता है।
1: जी, तो ये कुछ फ़ायदे हैं संतुलित आहार के पशुओं के लिए। और तो सभी श्रोताओं से मैं आग्रह करूंगी कि आप अपने पशुओं को संतुलित आहार, पशु आहार ज़रूर दें, उनके अच्छी वृद्धि के लिए, उनके शरीर के अच्छे विकास के लिए, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। उन्नत कृषि कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच एक खास विषय को लेकर मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर AK झा सर हैं, और आज का जो टॉपिक है, हमारा विषय है, वो है रबी फसलों की जैविक खेती। तो आज इससे संबंधित बहुत सारी बातें जानेंगे हम। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं तो क्यों ना सबसे पहले ये जैविक खेती होता क्या है उसके बारे में जान लें।
3: बिल्कुल सही। ऐसा है कि जैविक खेती का अभिप्राय होता है विषमुक्त खेती, यानी ऐसी खेती जिसमें हम किसी तरह के ऐसे रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे पशु के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। एक्चुअली देखिए, हरित क्रांति के बाद हम उत्पादन निश्चित रूप से हमारा बढ़ा है, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे अन्य फसलें हैं, उसमें हमारा उत्पादन बढ़ा है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा रासायनिक उर्वरक है या कीटनाशी है या व्याधिनाशक रसायन है, इनका प्रयोग भी काफी बढ़ा है। और इसके चलते हुआ ये है कि हम बीमारियों का बड़ा ही प्रकोप बढ़ा है। यहां पर मैं बताऊं कि कैंसर जैसी बीमारियां भी इन रसायनों के कारण होता है। यहां से पंजाब से एक ट्रेन चलती है, लोग उसको कैंसर ट्रेन कहते हैं, क्योंकि वहां पर रसायनों का बहुत प्रयोग किया जाता है। तो रसायन के ज्यादा प्रयोग के कारण उसके जो हमारे खाद्यान्न हैं, या यहां तक कह लें कि जो चारा है, जो जानवर हमारा खाता है, उसमें उसकी काफी मात्रा आ जाती है, काफी अंश आ जाता है। और उसको जब हम खाते हैं तो कई तरह की बीमारियां, चाहे नस संबंधी बीमारी हो, मस्तिष्क संबंधी बीमारी हो, हृदय संबंधी हो, किडनी संबंधी हो, बहुत तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसीलिए आज एक बार पुनः लोगों को ध्यान इस बार आया है कि क्यों नहीं हम रसायन विहीन खेती करें और ऐसी चीजें खाएं जिससे कि हमें बीमार न होना पड़े। अब मैं बताऊं कि हमारे देश में तो ठीक है, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, हम उतना खर्चा नहीं कर पाते हैं जैविक के उत्पाद पर, लेकिन आज जो हमारे दूसरे देश हैं जहां पर पैसा है, वह चाहते हैं कि हमें काफी मिले। तो जो किसान हमारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकें उतने ही उत्पादन करके, तो वह यदि जैविक खेती की तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो अब मैं, आपका प्रश्न था कि जैविक खेती है क्या, तो हम इसको बड़ा संक्षेप में किसान की भाषा में ये कहें कि जो रसायन विहीन या विष विहीन खेती है, यानी हम उसमें पोषक तत्व का प्रबंधन भी करेंगे तो ऐसे चीजों के माध्यम से करेंगे कि जिससे कि किसी तरह का उसको हानि ना पहुंचे। हम कीट का भी प्रबंधन करेंगे तो ऐसे ही चीजों के माध्यम से करेंगे जिससे हमें हानि ना पहुंचे। साथ ही साथ हम यदि कीट प्रबंधन भी करते हैं तो उसी ढंग से करेंगे। यदि हम खरपतवार नियंत्रण ही करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण भी चाहे मैनुअल करें चाहे ऐसे विधि से करेंगे जिससे कि उसका दुष्प्रभाव, उस रसायन का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं हो। क्योंकि आप जानती हैं आजकल खरपतवार नाश करने के लिए बहुत तरह के रसायन का प्रयोग होता है, कीट के नियंत्रण के लिए, व्याधि के नियंत्रण के लिए बहुत तरह के रसायन बाजार में उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उसके प्रयोग को रोकने की आवश्यकता है।
1: जी, तो अगर इसके वैश्विक बाजार की हम बात करें तो जैविक खेती का वैश्विक बाजार अभी कितना बड़ा है और आगे इसके बढ़ने की कितनी संभावना है?
3: बहुत समसामयिक आपने प्रश्न किया। ऐसा है, देखिए यदि वैश्विक बाजार की बात करें तो ये अभी लगभग 64 खरब रुपए का बाजार यहाँ पर है, वैश्विक बाजार। और उम्मीद ये की जाती है कि 2025 तक 164 खरब रुपए का बाजार हो जाएगा। अच्छा। यानी कि काफी स्कोप है कि हम अपने उत्पाद को बेच सकें और उससे हम पैसा कमा सकें। देखिए यदि आप सिंपल एक लौकी की ही बात ले लें, कद्दू की बात ले लें, तो लौकी कद्दू यदि आप सीधे रासायनिक विधि से पैदा करते हैं, यदि उसका 10 रुपया कीमत है, तो उसी को यदि आप जैविक विधि से उत्पादन करते हैं तो आप उसका 2 गुना 3 गुना यहां तक 10 गुने तक आप उसका फायदा कमा सकते हैं। लेकिन अब दो तरह से आप बेचते हैं, एक तो लोकल बाजार में बेचते हैं तो वहां पर उतना पैसा नहीं मिलता है, लेकिन यदि आप सर्टिफिकेशन करवा लिए हुए हैं कि आपको यह है कि हाँ भाई ये सर्टिफाइड है, जैसे एपडा या बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको इसका सर्टिफिकेशन करती है, तो आपको सर्टिफिकेशन यदि हो गया हुआ है तो उससे आप और ज्यादा कमाई प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप काफी ज्यादा इसका वैश्विक बाजार है। यदि हम 15-16 की बात करें तो हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो 2.63 लाख टन जैविक उत्पाद निर्यात किया गया और जिसकी कीमत लगभग 298 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। यानी कहने का मतलब यह है कि यह हम अभी ही इतना ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं। यदि 2017-18 की बात करें तो 35.6 लाख हेक्टेयर पर हमारी जैविक खेती होती थी जिससे लगभग 17 लाख टन जैविक उत्पाद पैदा होता था और यह दिनानुदिन बढ़ता जा रहा है। और मैं तो किसानों से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करूंगा, किसान भाइयों एक चीज बताओ कि यदि एक मिठाई का दुकानदार है, वह जलेबी और समोसा बनाता है, यदि उसका पूरा नहीं बिकता है तो दूसरे दिन यदि उसको अपने परिवार के लिए ले जाना होगा तो ले जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वह भी जानता है कि यदि बासी हम अपने बच्चों को खिलाते हैं तो उसे वो बीमार हो सकते हैं। लेकिन हम किसान भाई कितने समझदार हैं कि हम यदि जानते हैं कि रसायन खाने से हम इतना ज्यादा हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हमारे बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उसी रसायन को पैदा करके हम अपने लिए भी उत्पादन कर लेते हैं।
1: बिल्कुल।
3: और उत्पादन करके उसको अपनी पत्नी से, एक किसान कहता है कि ए मेरी पत्नी जाओ जरा इस जहर को मसालेदार बना करके ले आओ, और जब मसालेदार बना करके लाती है तो वह अपने बच्चों को बुलाता है कि आ मेरा बेटा, आ मेरा नाती, आ मेरा पोता, मेरे हाथों से इन जहर को खा करके जिंदगी भर के लिए बीमार हो जाओ। इसीलिए किसान भाइयों, आपसे मेरी एक सलाह है, एक मेरा निवेदन है कि भाइयों, आप दूसरे के लिए भलो ही पैदा करें ना करें, आप यह चिन्हित कर लीजिए कि 10 कट्ठा जमीन जो है क्या कहते हैं हम इसी के लिए रखेंगे कि हम अपने लिए रसायन विहीन उत्पाद पैदा करेंगे और हम अपने बच्चों को बीमार नहीं होने देंगे। क्योंकि एक टाटा बिरला भी यदि कहता है कि हम जैविक उत्पाद खा रहे हैं तो उनको कोई कहता है कि जैविक उत्पाद है तब, लेकिन आप तो पैदा करते हैं, आप तो जानते हैं कि यह जैविक है या नहीं है। तो इसीलिए मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप अपने लिए 10 कट्ठा, अरे कितना आप धान खाते हैं, चावल खाते होंगे 2-3 क्विंटल खाते होंगे, गेहूं 3-4 क्विंटल खाते होंगे, दलहन तिलहन 1-1 क्विंटल खाते होंगे, आलू 1-2 क्विंटल 4 क्विंटल की जरूरत होती होगी। आप यदि 10 कट्ठा जमीन यदि आप चिन्हित कर लीजिए और उसमें आप बर्मी कंपोस्ट या दूसरे जो जैविक पदार्थ हैं उसी का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूपेण आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा और कम से कम आपके बच्चे तो बीमार नहीं होंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। इसीलिए मेरा निवेदन है किसान भाइयों कि आप अपने लिए ये प्रण बना लीजिए, प्रण कर लीजिए कि हमको अपने परिवार में जैविक उत्पाद ही प्रयोग करना है, जैविक उत्पाद ही खाएंगे।
1: जी, अगर डॉक्टर साहब, अगर रवि फसलों की बात करें, उसमें दलहनी फसलों की हम बात करें, तो कैसे पोषक तत्व प्रबंधन हम कर सकते हैं?
3: बहुत आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया, क्योंकि देखिए जो जैविक खेती की बात करते हैं, फसल चक्र की बात यदि करें तो उसमें दलहनी फसल यदि आप उत्पादित करते हैं अपने फसल चक्र में तो आपकी मिट्टी की उत्पादकता, उसकी उर्वरता स्वतः ही बढ़ती जाती है। और दलहनी फसल हम चूंकि वह बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नत्रजन का स्थिरीकरण करता है, और नत्रजन का स्थिरीकरण करने के कारण यह वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को वह ऐसे रूप में परिवर्तित कर देता है जो पौधों के लिए वह पोषक तत्व उपलब्ध हो। धान आप नहीं खाते, आप धान को कूटते हैं, चावल बनाते हैं, भात बनाते हैं तब खाते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन वायुमंडल में है लेकिन यह पौधे के लिए किसी काम का नहीं है। तो यदि हम देखें तो उस नाइट्रोजन को यदि ऐसे रूप में बदल दें, नाइट्रेट के रूप में, अमोनियम आयन के रूप में, तो वह पौधों को उपलब्ध होने लगता है। तो अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि यहां यदि हम रबी की बात करें तो दलहन तिलहन ये सब ज्यादा प्रयोग करते हैं, और उसमें पोषक तत्व प्रबंधन की आपने बात किया। पोषक तत्व प्रबंधन के लिए देखिए आप गोबर का खाद का प्रयोग कर सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। हम तो ये कहेंगे इनरिच्ड बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कीजिए, जो हमारा विश्वविद्यालय बनाता है वो इनरिच्ड बर्मी कंपोस्ट बनाता है।
1: जी, जी।
3: उसमें फास्फोरस भी ज्यादा है, उसमें गंधक भी ज्यादा है, और मैं आपको बताऊं सिर्फ गंधक वाला बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं तो 10-15% तो दलहन और तिलहन का उत्पादन स्वतः बढ़ जाता है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो आप बर्मी कंपोस्ट प्रयोग करते खास करके इनरिच्ड बर्मी कंपोस्ट, तो मुश्किल से 2.5 से लेकर 5 टन प्रति हेक्टेयर का आपको प्रयोग करना है। साथ ही साथ यदि आपने अजोला का प्रयोग भी किया है तो इसमें नाइट्रोजन भी काफी मात्रा में रहता है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इसमें जैव उर्वरक का प्रयोग करें। अब ये जो है जैव उर्वरक, बर्मी कंपोस्ट, और साथ ही साथ कुछ बायोडायनेमिक खाद भी आया है, जैसे कि पंचगव्य का प्रयोग कर सकते हैं, काउपेट पिट का प्रयोग कर सकते हैं, नैपेड कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बर्मी कंपोस्ट में पोषक मान ज्यादा होता है, यानी कम मात्रा डाल करके आप उत्पादन कर सकते हैं, तो इसमें जो है क्या कहते हैं आप जैव उर्वरक का प्रयोग निश्चित रूपेण करें, साथ ही साथ जो जैविक खाद है जैविक खाद का प्रयोग करके उसके पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सकते हैं।
1: जी, तो इस प्रकार आप पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं दलहनी फसलों में। और जैव उर्वरक की बात अभी कर रहे थे आप डॉक्टर साहब, तो जैविक खेती में हम इसका कैसे प्रयोग करें? अभी आपने थोड़ी सी बातें बताई, तो और कुछ हम जानना चाहेंगे।
3: देखिए ऐसा है, जैव उर्वरक यानी ऐसा जीवित पदार्थ जो उर्वरक का काम करे उसको हम जैव उर्वरक कहते हैं। नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए एक तो दलहन फसल में आप राइजोबियम का प्रयोग करते हैं, लेकिन मान लीजिए दलहनी फसल नहीं है, आप गेहूं में प्रयोग करना चाहते हैं, तो वहां एजोटोबैक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो एजोटोबैक्टर है या एजोस्पाइरिलम है, ये सब जो है वो नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। और यदि फास्फोरस भी आपकी मिट्टी में कम है तो आप पीएसबी का प्रयोग कर सकते हैं, कई नाम से आता है फास्फेट का और कई नाम से आता है, तो पीएसबी का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो पीएसबी ये फास्फोरस देने का काम करता है, और ये जो हमने बताया राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, जो स्पाइरलम, यह सब सब नाइट्रोजन देने का काम करता है। इसी तरह से अब माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है उसकी भी आपूर्ति बढ़ाने के लिए, जैसे जिंक का है, जिंक ZMB करके, जिंक मोबिलाइजर के नाम से आता है, बाजार में आने लगा है, तो वह यदि आप करते हैं तो जिंक सबकी भी आपूर्ति कर सकता है। लेकिन अभी मैं मुख्य बात करता हूं नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास की। पोटेशियम के लिए भी KMB आया है, पोटेशियम मोबिलाइजर। तो यदि इस सब का प्रयोग आप करते हैं तो निश्चित रूप से नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास यह सब आपकी आपूर्ति वहां पर हो जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इसके इसका प्रयोग कैसे करें हम। जैसे देखिए, यदि आप इसका प्रयोग करते हैं राइजोबियम का, तो राइजोबियम जैसे 200 ग्राम राइजोबियम ले लीजिए और 250 ग्राम गुड़ को 500 ml पानी में आप उसको घोल दीजिए, गर्म करके घोल लीजिए, फिर ठंडा हो जाने दीजिए। ठंडा हो गया उसके बाद 200 ग्राम उसमें राइजोबियम कल्चर डाल दिया, राइजोबियम कल्चर डाल करके 10 kg बीज के ऊपर उसको डाल दीजिए और ठंडे हाथ, मतलब उसको आपने डाल दिया, डाल देने के बाद हल्के हाथ से उस बीज को मिला दीजिए, यानी कि उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाए। ये कोटिंग चढ़ गया उसके बाद आप उसकी बुआई 2-3 घंटा पहले रखिए और उसके बाद छाए में ही उसकी बुआई कर लीजिए। लेकिन अब प्रश्न यहां पर एक और है, मान लीजिए कोई आदमी है जो कि इसका भी प्रयोग करता है, राइजोबियम का भी प्रयोग करता है और PSB का भी प्रयोग करता है, और मान लीजिए सीड के उपचारित होने के लिए फफूंदनाशी वगैरह वगैरह नहीं लगे उसके लिए ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग कर रहा है, तो उसको कैसे प्रयोग करें? तो सबसे पहले इसमें FIR का प्रिंसिपल याद रखिए, यानी पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम, और सबसे राइजोबियम को सबसे लास्ट में, उसके पहले आपको PSB का उपचार करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ट्राइकोडर्मा को उपचारित करना है तो ट्राइकोडर्मा को आप पहले उपचारित कीजिए, उसके बाद आप फॉस्फेट सोल्वराइजर से कीजिए, सबसे लास्ट में आप राइजोबियम से उपचारित कीजिए, और उपचारित करके हर एक के बीच में 1-1.5 घंटा का आप अंतराल रखिए। तो यह तो हो गया कि यदि आप बीज उपचार करते हैं तब। लेकिन बहुत आदमी है कि बीज उपचार नहीं करते हैं, इसमें बहुत सारी आपकी सब्जी की फसल भी है, जो सब्जी की फसल आप उसमें क्या कहते हैं, या तो कंद उपचारित करते हैं या आप उसका पिछड़ा को उपचारित करते हैं, तो वहां पर क्या है कि यदि आप कंद का उपचार करना चाहते हैं तो वहां पर आप 2 kg राइजोबियम कल्चर ले लें, या जो भी एजोटोबैक्टर ही करना चाहते हैं तो एजोटोबैक्टर ले लें, और एजोटोबैक्टर या राइजोबियम कल्चर ले रहे हैं उसको लेकर के उसमें आपने कंद को भिगा दिया और उसको छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के बाद, उसके बाद आप निकाल करके 1/2 घंटा बाहर में रखिए, फिर छाए में उसका बुआई कर दीजिए। यदि मान लीजिए आपको बिचड़ा उपचारित करना है तो बिचड़ा उपचारित करने के लिए आप 2 kg राइजोबियम कल्चर या जो भी आपको बायो फर्टिलाइजर है उसको 15 लीटर पानी में घोल लीजिए और घोल करके उसके बिचड़ा का जो जड़ है उसको डुबा करके छोड़ दीजिए। अब 10-15 मिनट आप उसमें भिगा करके रखें, उसके बाद आप खेत में उसकी रुपाई कर देते हैं। बहुत किसान ऐसे हैं कि ये सब नहीं कर पाए, मान लीजिए वो मिट्टी में उपचार करना चाहते हैं, तो मिट्टी में उपचार करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा लगभग 5-6 किलो आपको कल्चर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उतना तो मान लीजिए किसान के पास नहीं होगा, तो उसका तरीका ये है कि आप 1-2 किलो आप उसमें कल्चर ले लीजिए, जो भी राइजोबियम कल्चर कर रहे हैं या एजोटोबैक्टर कल्चर कर रहे हैं तो वह आप कल्चर कर लीजिए, और उसमें आप 50 kg गोबर की खाद मिला दीजिए, और गोबर की खाद मिला करके इसको ढक करके रख दीजिए, उस पर हल्की सिंचाई कर दीजिए, और जो जूट का बोरा है उसे आप ढक दीजिए। ढक देने के बाद उसके बाद आप ढक करके कुछ दिन रखें, और उसके बाद आप क्या करेंगे तो उसको 5-10-15 दिन पर 5-10 दिन के अंतराल पर उसको पलट दीजिए थोड़ा बहुत और सिंचाई कर दीजिए, और 15 दिन के बाद जब आपका बन गया तो वो जितना आपका कल्चर था वह पूरे में फैल गया, उसमें है क्या जीवाणु है ना, तो वो जीवाणु की संख्या इतनी बढ़ गई कि पूरे में बढ़ गया। अब बढ़ करके उसके बाद आप खेत में प्रयोग कर दीजिए, तो यानी जो 2 ही किलो आपने कल्चर लिया था उसी से आपको 1 हेक्टेयर जमीन में हो जाएगा। तो इस ढंग से आप चाहे ट्राइकोडर्मा में प्रयोग करना चाहते हैं, राइजोबियम कल्चर करना चाहते हैं, चाहे एजोटोबैक्टर करना चाहते हैं, चाहे PSB करना चाहते हैं, तो ये इस ढंग से आप उसको फैला करके बढ़ा करके आप पूरे खेत में आप प्रयोग कीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा उसकी लगेगी। तो ये तरीका है जिस ढंग से आप जो बायो फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक है, उसका प्रयोग आप खेत में कर सकते हैं, चाहे बीज उपचार, लेकिन बीज उपचार सबसे बढ़िया है, बीज उपचार सबसे बढ़िया है, तो बीज उपचार करके कीजिए, वो सबसे बढ़िया है
1: जी। तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आपने जाना कि रवि फसलों में जैविक खेती आप कैसे कर सकते हैं, जैव उर्वरक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और वैश्विक बाजार में कितनी इसकी मांग है वो बढ़ती जा रही है, आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके से अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, तो जैविक खेती करें, क्योंकि आप खुद जान रहे हैं कि आप उसमें रासायनिक जो चीज़ें हैं वो डाल रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा हानि पहुँचाता है। तो अगर जान बूझ कर आप ये गलती ना करें तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

0: तो एक बार फिर से हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी में, और साथ ही मैं आपको बता दूं ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। रवि फसलों की बात अभी करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें भी ज़रूरी है कि हम इन फसलों को इन खरपतवारों से कैसे बचाएं, यानी कि इनका प्रबंधन कैसे करें। तो जी हाँ, सही समझा आपने, आज का हमारा विषय है रवि फसलों में खरपतवार प्रबंधन। और आज हम डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें करने वाले हैं इस पर, और आपको मैं बता दूं कि रवि फसलों में जैसे कि गेहूं, मक्का, चना, मटर, मसूर और सरसों, इन सभी जो फसल हैं इनसे जुड़े बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब, अभी देखा जा रहा है कि गेहूं जो है फिलहाल तो हमारे क्षेत्र का एक प्रमुख फसल है, और हमारे किसान भाई भी काफ़ी मेहनत करते हैं इन फसलों के लिए। तो जहाँ तक गेहूँ की बात है, तो इसमें खरपतवार प्रबंधन कैसे किया जाए?
1: गेहूँ का जो उत्पादन है खरपतवार की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। देखा गया है कि गेहूँ की फसल में बुआई के 30 से 40 दिन तक खरपतवार मुक्त होना चाहिए, अर्थात बुआई से लेकर के 35 से 40 दिन तक खेत में किसी प्रकार का खरपतवार नहीं होना चाहिए। अगर खरपतवार बहुत ज़्यादा हैं तो इसे उत्पादन में गिरावट देखी गई है, और उत्पादन में गिरावट 35 से 40% तक महसूस की जाती है। गेहूं के जो मुख्य रूप से खरपतवार हैं, अगर हम इन खरपतवारों को तीन ग्रुप में बांटें तो सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार जिसमें प्रथम श्रेणी में आते हैं, तो सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार मुख्य खरपतवार जो है गेहूं का मामा और जंगली जई है। गेहूं का मामा जो है गेहूं की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन इसमें टिलरिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसमें कल्ले बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, और जो है गेहूं से मिलता जुलता होने के कारण शुरू की अवस्था में इसको पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वो थोड़ा सा पिंकिश कलर का होता है, और उससे हम उसको पहचान कर सकते हैं। फिर बाद में जब उसमें फूल आने लगता है तो वो फूल और उसकी बालियाँ अलग होती हैं, छोटी होती हैं, और दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं, उससे अलग आसानी से पहचान जा सकता है। लेकिन शुरू में केवल दो लक्षण हैं, एक उसका गांठ जो है पिंकिश कलर का होता है, और उसमें गेहूं की तुलना में ज़्यादा टिलर्स कर जाता है, शाखाएँ ज़्यादा निकलती हैं, इस तरह से उसको पहचान सकते हैं, झाड़ीनुमा दिखता है। दूसरा प्रमुख खरपतवार है जंगली जई। जंगली जई भी गेहूं की तरह ही मिलता जुलता रहता है, और बस इसका पहचानने का वही तरीका है कि शुरू के अवस्था में ये बहुत ज़्यादा शाखाएँ निकल जाती है, टिलरिंग कर जाता है, और बाकी जब मैच्योरिटी स्टेज में पहुँचता है, फ्लावरिंग स्टेज में पहुँचता है, तो उसमें इसकी जो जंगली जई जो फ्लावर आता है तो उसे हम अलग ढंग से पहचान लेते हैं। तो शुरू के अवस्था में पहचानना बड़ा मुश्किल है, किसान भाई लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं, इसलिए इनका खरपतवार, इन खरपतवारों को समय पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरे ग्रुप में अगर हम खरपतवारों को बांटें तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जिसमें बथुआ है, कृष्णनील है, पर्थेनियम है, और बहुत प्रकार की घासें हैं जो चौड़ी पत्ती वाली हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा हानि होता है। और तीसरा जो है पेरेनियल और जो है मोथा कुल का खरपतवार है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के मोथा इत्यादि हैं। तो देखा जाए तो सबसे अधिक जो हानि होता है वो सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार अर्थात गेहूं का मामा और जंगली जई से बहुत ज़्यादा हानि होता है। तो हम गेहूं को अगर हम खरपतवार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो ये ज़रूरी है कि हम देखें कि किस प्रकार का खरपतवार है। जैसे अगर हमारे गेहूँ के खेत में केवल और केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जैसा कि हमने पहले बताया चौड़ी पत्ती वाले में जंगली पालक है, कृष्णनील है, बथुआ है, पार्थेनियम है, ये सब प्रकार के घासें हैं, तो सिर्फ हमको सस्ती दवा 2,4-D, 2,4-D दो ग्रुप में आता है, 2,4-D थायलिस्टर भी होता है और 2,4-D जो है बेटेबल पाउडर भी होता है, दोनों में से जो भी हमारे पास दवा उपलब्ध हो उसको लिया जा सकता है। और इसका 600 ग्राम सक्रिय तत्व, 600 ग्राम से लेकर 800 ग्राम सक्रिय तत्व जो है प्रति हेक्टेयर की दर से हम प्रयोग करते हैं। इस दवा को 2,4-D को हम जो है 600 से 800 लीटर पानी में घोल लेते हैं, या हम 1,000 लीटर पानी तक भी घोल सकते हैं। तो जो 600 ग्राम सक्रिय तत्व 2,4-D दवा है, चाहे आपका लिक्विड वाला इथाइलिस्टर हो या बेटेबल पाउडर हो, कोई भी ले लीजिए, 600 ग्राम सक्रिय तत्व हम लेते हैं और इसको घोल करके जो है 800 से 1,000 लीटर पानी में घोल लिया जाता है। अब बुआई के करीब 20 से 25 दिन बाद, जब खेत में हल्की सी नमी होती है, या यूँ कहें पहली सिंचाई के ठीक बाद, हम इसका छिड़काव कर देते हैं। तो इस प्रकार जितने चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो लगभग 80% नियंत्रण में आ जाते हैं।
0: अच्छा।
1: फिर हम अगर बात करें गेहूं के दूसरे ग्रुप के खरपतवार को, तो सक्रिय पत्ती वाला खरपतवार है, जिसमें हमने बताया आपको कि जंगली जई है, गेहूं का मामा है, प्रमुख रूप से ये सब उसमें खेत में होते हैं। तो इनके सफल नियंत्रण हेतु एक बाजार में दवा आती है आइसोप्रोट्रान, आइसोप्रोट्रान केमिकल है, इसका

0: 750 ग्राम से 1000 ग्राम अर्थात 1.25 किलो से लेकर 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पर्याप्त होता है। तो आइसोप्रोटान बाजार में आइसोगार्ड, एरिलान, एरिटान इत्यादि नाम से मौजूद है, जो 75% का वेटेबल पाउडर है। तो इसका जो बाजार का प्रोडक्ट है वो 1 किलो से 1.25 किलोग्राम पर्याप्त होता है। इसको भी हम आवश्यकता अनुसार 800 लीटर पानी में घोल करके बुआई के 25 दिन बाद जो है हल्का नमी होने पर खेत में हम छिड़काव करते हैं। तो इससे जो है सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं, गेहूं का मामा है, जंगली चई है, ये नियंत्रण में आ जाते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि चूंकि हम लगातार फसल उगाते जा रहे हैं, तो किसी भी खेत में सिर्फ चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार या सकरी पत्ती वाला खरपतवार नहीं आता है, उसमें कॉम्प्लेक्स वीट फ्लोरा होते हैं। चौड़ी पत्ती का भी खरपतवार रहेगा, सकरी पत्ती का भी खरपतवार रहेगा, और मोथा कुल का भी खरपतवार होता है, और साथ साथ पेरेनियल खरपतवार जैसे हिरन खुरी है, मोथा है, दूब ग्रास है, ये सब भी होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का जो है खरपतवार नाशी दवा डालना चाहिए। इसके लिए मेट सल्फुरान एक दवा है, मेट सल्फुरान है, सल्फो सल्फुरान है, इन सब का व्यवहार करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सल्फो सल्फुरान अगर हम लेते हैं मार्केट में तो लीडर के नाम से उपलब्ध है, जिसका 25 ग्राम सक्रिय तत्व, क्योंकि ये लीडर जो है बाज़ार में लीडर के नाम से उपलब्ध है सल्फो सल्फुरान, तो ये करीब 87% का आता है। तो अगर हम 25 ग्राम सक्रिय तत्व की बात करते हैं तो बाज़ार का जो प्रोडक्ट है वो 33 ग्राम लग जाता है। तो बाज़ार का लीडर जो है 33 ग्राम मात्रा ले लिया जाए, उसको 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लिया जाए। अब बुआई के करीब 25 दिन बाद खेत में हल्की नमी होने पर हम छिड़काव करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, तथा साथ ही साथ जो ये आपके हिरन खुरी हैं, मोथा हैं, ये सब भी लगभग लगभग नियंत्रण में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम सल्फो सल्फुरान का भी व्यवहार कर सकते हैं। एक और नई दवा आई हुई है जिसको हम मेट सल्फुरान कहते हैं, मेट सल्फुरान इथाइल। इसका जो सक्रिय तत्व है वो मात्र 6 ग्राम लगता है प्रति हेक्टेयर। देखिए, दवा का मात्रा बहुत कम है, सिर्फ 6 ग्राम सक्रिय तत्व, जो कि बाज़ार में अलग्रिप के नाम से आती है। तो अलग्रिप जो प्रोडक्ट है इसका करीब 30 ग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है, केवल 30 ग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। इसको भी हम 30 ग्राम मात्रा लेकर के अलग्रिप का जो मेट सल्फुरान का प्रोडक्ट है, इसका 30 ग्राम मात्रा लेकर के हम क्या करेंगे कि 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके हम आवश्यकता अनुसार 20 से 25 दिन बाद जब हल्का खेत में नमी रहे उसी समय छिड़काव करते हैं। तो इससे भी जो विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स वीट फ्लोरा हैं वो नियंत्रण में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम केमिकल विधि द्वारा जो है खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। अब कुछ हमारे पास दूसरी विधियां हैं, अगर हम फसल चक्र अपनाते हैं तो भी हम कुछ हद तक गेहूं में खरपतवार का नियंत्रण कर लेते हैं। जैसा कि देखा गया है, बार बार धान गेहूं का फसल चक्र अपनाने से ये जो जंगली जई है और गेहूं का मामा है, इनकी संख्या बढ़ जाती है। इनका नियंत्रण करना के लिए हम क्रॉप रोटेशन अगर अपनाएं, हम धान के बाद आलू ले लें या मक्का और आलू का फसल चक्र अपनाएं, तो चूंकि मक्के आलू में जो है 2 बार गुड़ाई निकाई होती है, तो ये गेहूं का मामा जंगली जई नियंत्रण में आ जाते हैं 2 साल के बाद। तो इस तरह से फसल चक्र को अपना करके भी हम खरपतवारों का नियंत्रण गेहूं के खेत में कर सकते हैं।
1: तो ये तो बात हो गई गेहूं की, और इसके बाद अगर मक्के की बात करें डॉक्टर साहब, अभी तो मक्का काफ़ी आप देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का एक प्रमुख फसल बन चुका है, और मुझे लगता है कि मक्का की बिक्री भी अभी फ़िलहाल हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हुई है, और मक्के के लिए हमारे क्षेत्र को एक उपलब्धि भी मिली है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी की ओर से हमारे कृषि मंत्री को बिहार क्षेत्र के लिए मक्के के लिए उपलब्धि मिली है। तो अभी फ़िलहाल किसान भाइयों के लिए जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।

0: कल्चर था वह पूरे में फैल गया। उसमें है क्या, जीवाणु है ना, तो वो जीवाणु की संख्या इतनी बढ़ गई कि पूरे में बढ़ गया। अब बढ़ करके उसके बाद आप खेत में प्रयोग कर दिए, तो यानी जो 2 ही किलो आपने कल्चर लिया था उसी से आपको 1 हेक्टेयर जमीन में हो जाएगा। तो इस ढंग से आप चाहे ट्राइकोडर्मा में प्रयोग करना चाहते हैं, राइजोबियम कल्चर करना चाहते हैं, चाहे एजोटोबैक्टर करना चाहते हैं, चाहे पीएसबी करना चाहते हैं, तो ये इस ढंग से आप उसको फैला करके बढ़ा करके आप पूरे खेत में आप प्रयोग कीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा उसकी लगेगी। तो ये तरीका है जिस ढंग से आप जो बायो फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक है, उसका प्रयोग आप खेत में कर सकते हैं, चाहे बीज उपचार। लेकिन बीज उपचार सबसे बढ़िया है, बीज उपचार सबसे बढ़िया है, तो बीज उपचार करके कीजिए, वो सबसे बढ़िया है
1: जी। तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आपने जाना कि रबी फसलों में जैविक खेती आप कैसे कर सकते हैं, जैव उर्वरक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और वैश्विक बाजार में कितनी इसकी मांग है वो बढ़ती जा रही है, आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके से अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, तो जैविक खेती करें, क्योंकि आप खुद जान रहे हैं कि आप उसमें रासायनिक जो चीज़ें हैं वो डाल रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा हानि पहुँचाता है। तो अगर जानबूझकर आप ये गलती ना करें तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर आपसे मुलाकात होगी इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि 90.8 FM ग्रीन पर आप सभी का स्वागत है और मैं करती हूँ स्वागत, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त आरजे अनु, और आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम। हमारे किसान भाइयों के लिए हम कुछ उन्नत बातें लेकर हर रोज आते हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तो आज भी हाजिर हैं और हमारे साथ आज एक खास एक्सपर्ट, बिल्कुल हर रोज की तरह हम लेकर आते हैं खास एक्सपर्ट। तो एक बार फिर से हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी में, और साथ ही मैं आपको बता दूं ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। रबी फसलों की बात अभी करना बहुत जरूरी है, और उसमें भी जरूरी है कि हम इन फसलों को इन खरपतवारों से कैसे बचाएं, यानी कि इनका प्रबंधन कैसे करें। तो जी हाँ, सही समझा आपने, आज का हमारा विषय है रबी फसलों में खरपतवार प्रबंधन। और आज हम डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें करने वाले हैं इस पर। और आपको मैं बता दूं कि रबी फसलों में जैसे कि गेहूं, मक्का, चना, मटर, मसूर और सरसों, इन सभी जो फसल हैं इनसे जुड़े बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब, अभी देखा जा रहा है कि गेहूं जो है फिलहाल तो हमारे क्षेत्र का एक प्रमुख फसल है, और हमारे किसान भाई भी काफ़ी मेहनत करते हैं इन फसलों के लिए। तो जहाँ तक गेहूं की बात है, तो इसमें खरपतवार प्रबंधन कैसे किया जाए?
2: गेहूं का जो उत्पादन है खरपतवार की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। देखा गया है कि गेहूं की फसल में बुआई के 30 से 40 दिन तक खरपतवार मुक्त होना चाहिए, अर्थात बुआई से लेकर के 35 से 40 दिन तक खेत में किसी प्रकार का खरपतवार नहीं होना चाहिए। अगर खरपतवार बहुत ज़्यादा हैं तो इसे उत्पादन में गिरावट देखी गई है, और उत्पादन में गिरावट 35 से 40% तक महसूस की जाती है। गेहूं के जो मुख्य रूप से खरपतवार हैं, अगर हम इन खरपतवारों को 3 ग्रुप में बांटें, तो सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार जिसमें प्रथम श्रेणी में आते हैं, तो सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार मुख्य खरपतवार जो है गेहूँ का मामा और जंगली जई है। गेहूँ का मामा जो है गेहूँ की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा पतला होता है, लेकिन इसमें टिलरिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसमें कल्ले बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, और जो है गेहूं से मिलता जुलता होने के कारण शुरू के अवस्था में इसको पहचान पड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वो थोड़ा सा पिंकिश कलर का होता है, और उससे हम उसको पहचान कर सकते हैं। फिर बाद में जब उसमें फूल आने लगता है तो वो फूल और उसकी बालियाँ अलग होती हैं, छोटी होती हैं, और दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं, उससे अलग आसानी से पहचान जा सकता है। लेकिन शुरू में केवल 2 लक्षण हैं, एक उसका गांठ जो है पिंकिश कलर का होता है, और उसमें गेहूं की तुलना में ज़्यादा टिलर्स कर जाता है, शाखाएं ज़्यादा निकलती हैं, इस तरह से उसको पहचान सकते हैं, झाड़ी नुमा दिखता है। दूसरा प्रमुख खरपतवार है जंगली जई। जंगली जई भी गेहूं की तरह ही मिलता जुलता रहता है, और बस इसका पहचानने का वही तरीका है कि शुरू के अवस्था में ये बहुत ज़्यादा शाखाएँ निकल जाती है, टिलरिंग कर जाता है, और बाकी जब मैच्योरिटी स्टेज में पहुँचता है, फ्लावरिंग स्टेज में पहुँचता है, तो उसमें इसकी जो जंगली जई जो फ्लावर आता है तो उसे हम अलग ढंग से पहचान लेते हैं। तो शुरू के अवस्था में पहचानना बड़ा मुश्किल है, किसान भाई लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं, इसलिए इनका खरपतवार, इन खरपतवारों को समय पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरे ग्रुप में अगर हम खरपतवारों को बांटें तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जिसमें बथुआ है, कृष्णनील है, पार्थेनियम है, और बहुत प्रकार की घासें हैं जो चौड़ी पत्ती वाली हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा हानि होता है। और तीसरा जो है पेरेनियल और जो है मेथो मोथा कुल का खरपतवार है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के मोथा इत्यादि हैं, तो देखा जाए तो सबसे अधिक जो हानि

0: होता है वो सकरी पत्ती वाले खरपतवार अर्थात गेहूं का मामा और जंगली जई से बहुत ज़्यादा हानि होता है। तो हम गेहूं को अगर हम खरपतवार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो ये ज़रूरी है कि हम देखें कि किस प्रकार का खरपतवार है। जैसे अगर हमारे गेहूं के खेत में केवल और केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जैसा कि हमने पहले बताया चौड़ी पत्ती वाले में जंगली पालक है, कृष्णनील है, बथुआ है, पार्थेनियम है, ये सब प्रकार के घासें हैं, तो सिर्फ हमको सस्ती दवा 2,4-D, 2,4-D दो ग्रुप में आता है, 2,4-D इथाइलिस्टर भी होता है और 2,4-D जो है बेटेबल पाउडर भी होता है। दोनों में से जो भी हमारे पास दवा उपलब्ध हो उसको लिया जा सकता है। और इसका 600 ग्राम सक्रिय तत्व, 600 ग्राम से लेकर 800 ग्राम सक्रिय तत्व जो है प्रति हेक्टेयर की दर से हम प्रयोग करते हैं। इस दवा को 2,4-D को हम जो है 600 से 800 लीटर पानी में घोल लेते हैं या हम 1,000 लीटर पानी तक भी घोल सकते हैं। तो जो 600 ग्राम सक्रिय तत्व 2,4-D दवा है, चाहे आपका लिक्विड वाला इथाइल इस्टर हो या बेटेबल पाउडर हो, कोई भी ले लीजिए, 600 ग्राम सक्रिय तत्व हम लेते हैं और इसको घोल करके जो है 800 से 1,000 लीटर पानी में घोल लिया जाता है। अब बुआई के करीब 20 से 25 दिन बाद जब खेत में हल्की सी नमी होती है या यूँ कहें पहली सिंचाई के ठीक बाद हम इसका छिड़काव कर देते हैं। तो इस प्रकार जितने चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो लगभग लगभग 80% नियंत्रण में आ जाते हैं।
1: अच्छा
0: फिर हम अगर बात करें गेहूं के दूसरे ग्रुप के खरपतवार को, तो सकरी पत्ती वाला खरपतवार है जिसमें हमने बताया आपको कि जंगली जई है, गेहूं का मामा है, प्रमुख रूप से ये सब उसमें खेत में होते हैं। तो इनके सफल नियंत्रण हेतु एक बाजार में दवा आती है आइसोप्रोटरान। आइसोप्रोटरान केमिकल है, इसका 750 ग्राम से 1,000 ग्राम अर्थात 1.25 किलो से लेकर 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पर्याप्त होता है। तो आइसोप्रोटरान बाजार में आइसोगार्ड, एरीलान, एरीटॉन इत्यादि नाम से मौजूद है, जो 75% का वेटेबल पाउडर है। तो इसका जो बाजार का प्रोडक्ट है वो 1 किलो से 1.25 किलोग्राम पर्याप्त होता है। इसको भी हम आवश्यकता अनुसार 800 लीटर पानी में घोल करके बुआई के 25 दिन बाद जो है हल्का नमी होने पर खेत में हम

0: दूब ग्रास है, ये सब भी होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का जो है खरपतवार नाशी दवा डालना चाहिए। इसके लिए मेट सल्फुरान एक दवा है, मेट सल्फुरान है, सल्फो सल्फुरान है, इन सब का व्यवहार करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सल्फो सल्फुरान अगर हम लेते हैं मार्केट में तो लीडर के नाम से उपलब्ध है, जिसका 25 ग्राम सक्रिय तत्व, क्योंकि ये लीडर जो है बाज़ार में लीडर के नाम से उपलब्ध है सल्फो सल्फुरान, तो ये करीब 87% का आता है। तो अगर हम 25 ग्राम सक्रिय तत्व की बात करते हैं तो बाज़ार का जो प्रोडक्ट है वो 33 ग्राम लग जाता है। तो बाज़ार का लीडर जो है 33 ग्राम मात्रा ले लिया जाए, उसको 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लिया जाए। अब बुआई के करीब 25 दिन बाद खेत में हल्की नमी होने पर हम छिड़काव करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, तथा साथ ही साथ जो ये आपके हिरन खुरी हैं, मोथा हैं, ये सब भी लगभग लगभग नियंत्रण में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम सल्फो सल्फुरान का भी व्यवहार कर सकते हैं। एक और नई दवा आई हुई है जिसको हम मेट सल्फुरान कहते हैं, मेट सल्फुरान इथाइल। इसका जो सक्रिय तत्व है वो मात्र 6 ग्राम लगता है प्रति हेक्टेयर। देखिए दवा का मात्रा बहुत कम है, सिर्फ 6 ग्राम सक्रिय तत्व, जो कि बाज़ार में अलग्रिप के नाम से आती है। तो अलग्रिप जो प्रोडक्ट है इसका करीब 30 ग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है, केवल 30 ग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। इसको भी हम 30 ग्राम मात्रा लेकर के, अलग्रिप का जो मेट सल्फुरान का प्रोडक्ट है इसका 30 ग्राम मात्रा लेकर के हम क्या करेंगे कि 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके हम आवश्यकता अनुसार 20 से 25 दिन बाद जब हल्का खेत में नमी रहे उसी समय छिड़काव करते हैं। तो इससे भी जो विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स वीट फ्लोरा हैं वो नियंत्रण में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम केमिकल विधि द्वारा जो है खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। अब कुछ हमारे पास दूसरी विधियां हैं, अगर हम फसल चक्र अपनाते हैं तो भी हम कुछ हद तक गेहूं में खरपतवार का नियंत्रण कर लेते हैं। जैसा कि देखा गया है बार बार धान गेहूं का फसल चक्र अपनाने से ये जो जंगली जई है और गेहूं का मामा है इनकी संख्या बढ़ जाती है। इनका नियंत्रण करना के लिए हम क्रॉप रोटेशन अगर अपनाएं, हम धान के बाद आलू ले लें या मक्का और आलू का फसल चक्र अपनाएं, तो चूंकि मक्के आलू में जो है 2 बार गुड़ाई निकाई होती है तो ये गेहूं का मामा जंगली जई नियंत्रण में आते हैं 2 साल के बाद। तो इस तरह से फसल चक्र को अपना करके भी हम खरपतवारों का नियंत्रण गेहूं के खेत में कर सकते हैं।
1: तो ये तो बात हो गई गेहूं की, और इसके बाद अगर मक्के की बात करें डॉक्टर साहब, अभी तो मक्का काफ़ी आप देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का एक प्रमुख फसल बन चुका है, और मुझे लगता है कि मक्का की बिक्री भी अभी फ़िलहाल हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हुई है, और मक्के के लिए हमारे क्षेत्र को एक उपलब्धि भी मिली है, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी की ओर से हमारे कृषि मंत्री को बिहार क्षेत्र के लिए मक्के के लिए उपलब्धि मिली है। तो अभी फ़िलहाल किसान भाइयों के लिए जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें खरपतवार प्रबंधन कैसे किया जाए।
0: मक्का एक ऐसा फसल है जो कि अपने राज्य में खरीफ में भी उगाया जाता है और खरीफ से ज़्यादा प्रोडक्शन रबी में भी होता है, क्योंकि हमारे बिहार राज्य की जो जलवायु है वो मक्का के लिए बहुत अनुकूल होती है। मक्का के द्वारा किसानों को लाभ जो मिलता है वो गेहूं की तुलना में जस्ट दोगुना मिल जाता है, क्योंकि गेहूं जो है जब हम लगाते हैं तो प्रति हेक्टेयर 40 से 45 क्विंटल ही उत्पादन मिल पाता है, जबकि मक्का के द्वारा हम प्रति हेक्टेयर 100 क्विंटल से 125 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। और मार्केट में देखा जाए तो मक्के का भी एक अच्छा मूल्य मिल जाता है, आजकल 2000 रुपया क्विंटल मक्का भी आराम से बिक जा रहा है। इसलिए दिन प्रतिदिन जो है मक्के का जो एरिया है, जो मक्के का रकबा है वो बढ़ता जा रहा है। तो हाँ, स्वाभाविक है कि मक्के में हमें सब समय खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मक्का जो है शुरू में जो है 40 दिनों तक बहुत धीमी गति से ग्रोथ करता है, तो इसमें शुरू के समय में ही खरपतवार का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम शुरू के 45 दिन तक खरपतवार मुक्त रखते हैं खेत को तो उत्पादन में बढ़ोतरी मिल जाती है, और अगर खरपतवार ज़्यादा हैं तो मक्का का उत्पादन 40-50% तक घट जाता है। अतः ये ज़रूरी है कि मक्के के खेत को हम खरपतवार मुक्त रखें, समय पर ही खरपतवार नियंत्रण कर लें। तो मक्के में खरपतवार नियंत्रण के लिए हम बहुत सी विधियों को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि मक्का जो है 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई की जाती है, तो अब हमारे पास देखिए कि 50 सेंटीमीटर का कतारों के बीच में जगह मिल जाता है, तो हम निराई गुराई करके भी जो है खरपतवार का आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में चूंकि लेबर महंगा पड़ जाता है, इसलिए लेबर के द्वारा मैनुअल निकाई करना कुदाल से थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। अतः हम विभिन्न प्रकार के मशीन जो हैं, जो हमारे ड्राई लैंड वीडर्स हैं या सिंग हैंड है, शर्मा होंड है, या कोई रोटरी वीडर, इसमें हम कतारों के बीच में चला करके भी खरपतवार का नियंत्रण थोड़ा इकोनॉमिक रेट पर कर सकते हैं। फिर इसमें हम जो मक्का के कतारों के बीच में है, आजकल थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे जाएं तो फ्लूम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो है

0: गैस है जो बर्निंग गैस है उसका प्रयोग करके उसमें जो कतारों के बीच में चला देते हैं, तो वो भी जो है खरपतवार का नियंत्रण का एक साधन है। और सबसे सस्ता तो केमिकल विधियां हैं, जो रासायनिक विधियां हैं वो सबसे सस्ती साबित हो रही हैं। अगर हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है तो रसायन पर ही मजबूर होना स्वाभाविक है, तो कोशिश करना चाहिए कि ससमय रसायन का भी प्रयोग किया जाए। इसके लिए मक्के के खेत में बुआई के समय ही जो हमारा एट्राजीन एक खरपतवार नाशी दवा है, एट्राजीन का जो सक्रिय तत्व है वो 1 किलोग्राम पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर के लिए। बाजार में एट्राटॉफ, एट्रागार्ड इत्यादि नाम से मौजूद है, जो कि 50% वेटेबल पाउडर है।
1: जी
0: तो जो बाजार के प्रोडक्ट हम लेते हैं एट्रागार्ड या एट्राटॉफ, इसका जस्ट दोगुना मात्रा लग जाएगा। अर्थात एट्राजीन का जो डोज है वो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर है, लेकिन बाजार का प्रोडक्ट लेंगे उसका तो 2 से सवा 2 किलो तक जो है हमको देना पड़ता है। इस दवा को हम 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लेते हैं और बुआई के तुरंत बाद से लेकर 48 घंटे के भीतर तक हम इस दवा का छिड़काव कर देते हैं। तो क्या होता है कि जो खरपतवार उगने वाले होते हैं वो नहीं उग पाते हैं, इसको हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के नाम से कहते हैं। तो एट्राजिन का प्रयोग किया जा सकता है। कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में हम बुआई के तुरंत बाद पेंडीमिथिलीन का भी प्रयोग कर लेते हैं, तो पेंडीमिथिलीन जो है 33% का 30% का लिक्विड है, इसका हम जो है करीब 3.3 लीटर बाजार का प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल करते हैं। अर्थात पेंडीमिथिलीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर अप्लाई करते हैं। तो
1: जी
0: चूंकि पेंडीमिथिलीन स्टाम्प इत्यादि के नाम से भी मौजूद है, तो जो कि 33% का है, तो इसका 3.3 लीटर डोज जो है 1 हेक्टेयर में लगता है। तो बाजार का जो कमर्शियल प्रोडक्ट है स्टाम्प, इसका 3.3 लीटर लेकर के हम 800 लीटर पानी में घोल करके बुआई के तुरंत बाद से 48 घंटे के भीतर हम इसका भी व्यवहार कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है खरपतवार शुरू के 20 दिन तक नियंत्रण में रहते हैं, उगने नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद चूंकि अब हमारी फसल खड़ी अवस्था में है, किसान भाई लोग को बोए हुए करीब 30 से 35 दिन हो गया है, कुछ लोग लेट कंडीशन बोए हैं तो उनका भी 20 दिन हो चुका है। तो ऐसे अवस्था में जरूरी है कि जो हमारा पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है उसका हम व्यवहार करें। तो इसके लिए हम यहाँ भी एट्राजीन का प्रयोग कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इसके लिए हम एट्राजीन को लेते हैं 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व, या बाजार का प्रोडक्ट एट्राटॉफ एट्रागार्ड 2 किलोग्राम लेते हैं और इसको हम आवश्यकता अनुसार वहीं 800 से 1000 लीटर पानी में घोल लेते हैं और खेत में हल्का नमी होने की अवस्था में छिड़काव करते हैं। तो इससे जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार है वो नियंत्रण में आ जाते
1: आ
0: हैं।
1: जाते हैं।
0: फिर इसके बाद कुछ खेत मक्का में हमारा सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती यानी कॉम्प्लेक्स बीट फ्लोरा है, तो वहाँ के लिए सबसे अच्छा दवा आ रहा है हेलोसल्फुरान। हेलोसल्फुरान का जो मात्रा है वो 90 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। 90 ग्राम सक्रिय तत्व तो हेलोसल्फुरान का ले लिया जाता है और वो 800 से 1000 लीटर पानी में घोलिया जाता है और बुआई के वहीं 25 30 से 35 दिन बाद जो है हम खेत में पोस्ट इमरजेंस के रूप में छिड़काव करते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स बीट फ्लोरा है वो नियंत्रण में आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम मक्का के खेत में जो है इस तरह से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर गेहूं की बात हो गई, मक्का की बात हो गई, अब तिलहन के फसलों की ओर बढ़ें तो किसान भाइयों के लिए बेहद ज़रूरी है कि सरसों में हम कैसे खरपतवार
0: ये
1: प्रबंधन करें।
0: सरसों जो कि तिलहनी फसल आती है, तो सरसों में जो हमारे पास खरपतवार के लिए नियंत्रण की बात की जा रही है वो सरसों में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रबी फसलों में खरपतवार का प्रेशर सरसों खेत में बहुत ज़्यादा हो जाता
1: बहुत
0: है
1: ज़्यादा।
0: और इसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार एक साथ उगते हैं, चाहे वो चौड़ी पत्ती वाले हों या सकरी पत्ती वाले हों या मोथा कुल का खरपतवार हो, सभी प्रकार के कॉम्प्लेक्स बीड फ्लोरा जो है खेत में दिखाई देते हैं। तो सरसों को जब हम बुआई करते हैं उसी समय बहुत ज़रूरी है कि हम पेंडीमिथिलीन का उपयोग करें। इसके
1: जी
0: लिए आवश्यकता अनुसार पेंडीमिथिलीन जो बाजार में स्टॉम्प के नाम से भी उपलब्ध है, तो पेंडीमिथिलीन का 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व लेते हैं, या बाजार का स्टॉम्प जो है 3 लीटर जो है लगता है, इसको 800 लीटर से 1000 लीटर पानी में घोल लिया जाता है और बुआई के तुरंत बाद जो है छिड़काव करते हैं। तो इससे क्या होता है, शुरू के 20-25 दिनों तक खरपतवार का प्रेशर बहुत कम हो रहता है। जमाव होते ही ये पेंडीमिथिलीन की लेयर बन जाती है सतह पर, तो जमाव होते समय ही खरपतवारों को वो मार डालता है। तो इस
1: जी
0: प्रकार
1: जी
0: शुरू में हम पेंडीमिथिलीन से खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही साथ बुआई के समय ही हम फ्लूक्रोलालीन जो कि बेसालीन के नाम से बाजार में उपलब्ध है, इसकी भी हम 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व या बेसालीन का जो बाजार का मात्रा है उसका 2 किलोग्राम मात्रा लेकर के हम बुआई के तुरंत बाद हम खेत में अगर मिला देते हैं तो जो है ये भी अगले 15 दिन तक खरपतवारों को उगने नहीं देता है।
1: अच्छा
0: फिर उसके बाद सरसों में एलाक्लोर या लासो के नाम से भी खरपतवार निषेध दवा आती है, तो एलाक्लोर का जो सक्रिय तत्व होता है 2 किलोग्राम पर्याप्त होता है, या इसका जो ब्रांड है लासो के नाम से उपलब्ध है, तो लासो का चूंकि 50% का अवेलेबिलिटी है, तो लासो का 4 किलोग्राम मात्रा पर्याप्त होता है। 4 लीटर लासो ले लिया जाए और उसको बुआई के तुरंत बाद से 2 दिन के भीतर हम खेत में डाल सकते हैं, 800 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दिया जाता है। तो इससे भी जो है खरपतवार नियंत्रण में आते हैं। किसी कारणवश हम अगर बुआई के तुरंत बाद खरपतवारनाशी दवा का प्रयोग नहीं किए हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम खेत में 2 विधियों से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि सरसों की बुआई जो हम करते हैं कतारों में करते हैं, तो कतारों के बीच की दूरी हम 30 से 45 सेंटीमीटर तक रख लेते हैं, तो इसमें भी आसानी से हम निराई गुड़ाई करके खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। किसी कारणवश लेबर की उपलब्धता नहीं है या लेबर महंगे पड़ जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम आइसोप्रोट्रान नामक रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आइसोप्रोट्रान 1 किलोग्राम मात्रा पर्याप्त होता है, जो कि बाजार में आइसोगार्ड एरीलान के नाम से भी उपलब्ध है, जो कि 75% वेटेबल पाउडर है। तो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व लेने के लिए हमको करीब 1.25 किलोग्राम जो है आइसोगार्ड या एरीलान लेना पड़ता है, और उसको हम बड़े आराम से जो है 800 लीटर पानी में घोल लेते हैं, और बुआई के 30 से 35 दिन बाद हम खड़ी फसल में छिड़काव करते हैं। तो इससे जो विशेषकर सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं वो नियंत्रण में आ जाते हैं। फिर एक
1: जी
0: बहुत अच्छी दवा आई है जो कि अभी लेटेस्ट रूप में उपयोग किया, किलोफाविथाइल, जो उसका केमिकल बेस है किलोफाविथाइल कहते हैं। किलोफाविथाइल जो है आपके बाजार में टर्गा सुपर के नाम से उपलब्ध है। तो किलोफाविथाइल का 40 से 50 ग्राम जो सक्रिय तत्व है उसको हम ले लेते हैं, या बाजार में चूंकि ये किलोफाविथाइल 10% का आता है, तो बाजार की जब हम टर्गा सुपर की बात करते हैं तो 10 गुना ज़्यादा मात्रा लगेगा, अर्थात 40 ग्राम सक्रिय तत्व के स्थान पर 800 ग्राम जो है, चूँकि सॉरी ये 5% का आता है, तो टर्गा सुपर का मात्रा 800 ml लगता है। 800 ml टर्गा सुपर लेकर के हम बुआई के करीब 30 दिन बाद, 25 से 30 दिन बाद छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे विभिन्न प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स वीड फ्लोरा हैं वो नियंत्रण में आ जाते हैं। तो ध्यान रखें पोस्ट इमरजेंस में, यानी बुआई के 20 से 25 दिन बाद अगर हमको छिड़काव करना है सरसों में, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही खरपतवारनाशी दवा है। पहला आइसोप्रोट्रान जो कि आइसोगार्ड या रिलान के नाम से उपलब्ध है, जिसका जो सक्रिय तत्व है वो 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व लगता है, उसको हम आवश्यकता अनुसार 800 से 1 लीटर पानी में घोल करके बुआई के 25 से 30 दिन बाद छिड़काव कर सकते हैं, और ये मुख्यतः सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार पे को नियंत्रण में करता है। दूसरा हम दवा बताएं आपको किलोफाविथाइल, जो कि 40 ग्राम सक्रिय तत्व लगता है, जो बाजार में टर्गा सुपर के नाम से भी उपलब्ध है। तो टर्गा सुपर का 800 ml मात्रा लेकर के हम बुआई के 25 से 30 दिन बाद व्यवहार कर सकते हैं, 800 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से। तो टर्गा सुपर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वीट फ्लोरा को भी नियंत्रण में कर लेता है, इसलिए टर्गा सुपर देना ज़्यादा लाभदायक है आपके सरसों की फसल में।
1: जी
0: इस प्रकार से हम सरसों की फसल में जो विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स वीट फ्लोरा हैं उसका हम 75 से 80% तक नियंत्रण कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो किसान भाइयों, आपने अभी गेहूं, मक्का और सरसों के बारे में जाना, तो फिलहाल अब दलहनी फसलों की बारी आती है, और ये भी बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों के लिए जाना, दलहनी फसलों में कैसे खरपतवार नियंत्रण करें। तो दलहनी फसलों में सर, जैसे कि चना, मटर, मसूर है, इन फसलों के लिए हम खरपतवार प्रबंधन कैसे करें?
0: हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। जैसा कि दलहनी फसल है, चना है, मटर है, मसूर है, और खेसारी भी अपने बिहार राज्य में बहुतायत से लगाई जा रही है, और इन दलहनी फसलों में सबसे बड़ी समस्या है खरपतवार का।
1: जी
0: क्योंकि खरपतवार समय पे अगर नियंत्रण नहीं किया जाता है तो इनकी प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि दलहनी फसलों का उत्पादन जो है 40 से 50% तक गिर जाती है, और साथ ही साथ इसमें रोग बीमारियां भी खरपतवार की वजह से फैल जाती हैं और फसल बर्बाद होने लगती है। तो
1: अच्छा
0: दलहनी फसल में भी शुरू के 40 दिनों तक खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दलहनी फसल इतना फैलाव कर लेती है कि खरपतवार अगर उगते भी हैं तो उनको दबा देती है। तो दलहनी फसल चाहे आपका चना हो, मटर हो, मसूर हो, इन सब में ससमय नियंत्रण करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ स्टेप को फॉलो करें जिससे हम कर सकते हैं। जैसे दलहनी फसल में अगर संभव हो सके तो बुआई के समय ही हम खेत को पलेवा कर देते हैं, या मॉइश होने पर 1 सप्ताह के लिए खेत को छोड़ देते हैं, जिससे कि जो खरपतवार के बीज हैं वो जम जाते हैं। उसके बाद हम बुआई कर जुताई कर देते हैं। जुताई करते समय खरपतवार का जो जमा हुआ बीज है वो एक फ्लश उसका नष्ट हो जाता है, उसके बाद हम बुआई करते हैं। इस टेक्निक को हम स्टेल सीड बेड यानी बासी बीज सैया कहते हैं। इसको भी अपना करके खरपतवार का प्रेशर कम किया जा सकता है। उसके बाद हम जब बुआई करते हैं दलहनी फसल की, तो बुआई करने के तुरंत बाद फ्लूक्लोरालीन जो बाजार में बेसालीन के नाम से उपलब्ध है, तो फ्लूक्लोरालीन का 1 किलोग्राम मात्रा जो है पर्याप्त होता है जो है सक्रिय तत्व फ्लूक्रोलिन यानी बेसालिन का 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व पर्याप्त होता है, और इसको बुआई के समय ही जमीन में मिक्स कर जाता है। इसको हम प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो इससे क्या होगा कि शुरू के 15-20 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते हैं। ठीक उसी तरह से दूसरी दवा है बेसालिन हो गया, जिसे दूसरी दवा है पेंडीमिथिलीन। तो पेंडीमिथिलीन को जब हम बुआई कर लेते हैं उसके 2 दिन के भीतर हमें छिड़कना होता है। तो पेंडीमिथिलीन का जो सक्रिय तत्व है वो 1 लीटर पर्याप्त होता है, क्योंकि पेंडीमिथिलीन 30% की दवा आती है, स्टाम्प के नाम से भी आती है, तो इसका 3 गुना मात्रा लग जाता है। तो 3 लीटर करीब पेंडीमिथिलीन हम स्टाम्प जो बाज़ार में आती है, स्टाम्प 3 लीटर लेकर के उसको हम 1000 लीटर पानी में घोल करके और बुआई के तुरंत बाद से 3 दिनों के भीतर तक इसका व्यवहार कर सकते हैं। तो इससे जो जमीन में उगने वाले खरपतवार है वो नहीं उग पाते हैं। उसके बाद हमको अगर और दवा देना है तो हम वहाँ पर एला क्लोर यानी लासो का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए लासो का जो सक्रिय तत्व है वो 2 किलोग्राम रिकमेंडेड है, क्योंकि 50% की इसकी उपलब्धता है। तो बाज़ार में लासो जो है मिल जाता है, उसका 4 लीटर लेना पड़ेगा, और बुआई के तुरंत बाद हमको 2 दिनों के भीतर तक लेना होता है। तो लासो का भी प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद जो है, अगर विशेष करके हमारा दलहनी फसल है, तो इसमें हमने जैसे पहले बताया सरसों में, उसी तरह से यहाँ भी क्विजिला फाफिथाइल हम दे सकते हैं। क्विजिला फाफिथाइल जो है ये टर्गा सुपर के नाम से भी उपलब्ध है। तो टर्गा सुपर का मात्रा जो है 1 लीटर पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर के लिए।
1: जी जी
0: तो 1 लीटर टर्गा सुपर को लेकर के 1000 लीटर पानी में घोलिया जाए। अब बुआई के करीब 25 से 30 दिन बाद हम टर्गा सुपर का व्यवहार कर सकते हैं। थोड़ा अगर उस समय खेत में हल्की नमी रहे तो ज़्यादा उसका रिस्पांस मिलता है। तो हम 1000 ml यानी 1 लीटर जो है टर्गा सुपर लेकर के उसको 1000 लीटर पानी में घोल लेते हैं, और प्रति हेक्टेयर हम उसका छिड़काव कर देते हैं बुआई के 25 दिन बाद। तो इससे क्या होगा कि खरपतवार जो विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स बीट फ्लोरा हैं वो नियंत्रण में आ जाते हैं। ठीक इसी तरह से एक और अच्छी हर्बिसाइड है जिसको हम बोलते हैं इमेजाथाइपर, जो मार्केट में परस्यूट के नाम से उपलब्ध है। तो इमेजाथाइपर का थोड़ा सा 50 से 60 ग्राम सक्रिय तत्व मात्रा पर्याप्त होता है, क्योंकि 10% का आता है, तो 500 से 600 ml 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है परस्यूट। इसको भी हम आवश्यकता अनुसार 800 से 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं, और बुआई के 25 दिन बाद हम खेत में व्यवहार करते हैं। ध्यान रखना होता है कि अगर उस समय किसी कारणवश हल्की नमी मिल जाए, चाहे बरसात से या हल्का सिंचाई कर दें, क्योंकि सिंचाई का इसमें कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से अगर उस समय हल्की बरसात अगर हुई रहे, तब जो है क्विजलोफाफिथाई ये आपका इमेजाथाइपर यानी कि परस्यूट देना ज़्यादा लाभदायक रहता है।
1: जी
0: अगर सूखे खेत में हम परस्यूट को देते हैं तो वो काम नहीं करता है, बल्कि फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट देता है पौधों पर। तो इन सभी सावधानियों को बरतते हुए भी हमको खेत में हर्बिसाइड का प्रयोग करना होता है। तो बेहतर होगा कि हम सबसे पहले दलहनी फसलों की बुआई करने के तुरंत बाद हम जो है पेंडीमिथिलीन है या फ्लूक्रोलिन है इसका व्यवहार करें, एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जरूर दे दें। और उसके बाद अगर बुआई के 25 से 30 दिन तक एक हल्की सी बरसात हो जाती है, खेत का सतह जो है अगर नम हो जाता है, तो हम पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड, चाहे आपका क्विजलोफाफिथाइल हो जो टर्गा सुपर के नाम से है, चाहे आपका इमेजाथाइपर हो जो परस्यूट के नाम से है, इसका भी व्यवहार हम उचित डोज में दे करके कर सकते हैं, इसका रिस्पांस मिलेगा। लेकिन पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड जो हमने बताया, इनका व्यवहार तभी करें जब खेत में हल्का सा मॉइस्चर हो, खेत में हल्की सी नमी हो, क्योंकि नमी न रहने पर खेत पर जो है इसका खरपतवार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं दिखेगा, बल्कि फसल पे हानिकारक सिम्टम आने लगते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने विस्तार में जाना और इन फसलों का कैसे आप जो है देख रेख कर सकते हैं, इन फसलों में कैसे आप खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं, तो फिलहाल तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। आशा करती हूँ कि आप इनके दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे और अपनी फसलों से खरपतवार प्रबंधन करेंगे। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी से कल फिर से मुलाकात होगी। सुनते रहिए 90.8 FM। उन्नत कृषि। नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं अनु और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में रबी मक्का में लगने वाले कीटों के समुचित प्रबंधन के बारे में हम जानेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्याम बाबूसा और सर्वैज्ञानिक हैं कीट

0: विज्ञान बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका स्वागत है। और किसान अभी मक्का लगा रहे हैं और इस समय उनको क्या कुछ करना चाहिए, तो उसके बारे में पहले बता दें।
1: हाँ नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप मक्का लगा रहे होंगे, इसमें कुछ सावधानियां हैं। कैसे, आप मक्का तो आप लगाते ही हैं, लेकिन हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे जिसको आप कर करके आप ये कीट है, ये कीट का जो संक्रमण होता है जो, उसे आप बच सकते हैं और आप अपने पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो अभी आप खेत की तैयारी, जो लोग नहीं लगाया होंगे वो कर रहे होंगे, तो खेत की तैयारी में कुछ चीज़ें हैं, उस बातों पे ध्यान देना है। अब ये ध्यान देने वाली बात ये है कि हम जब जुताई करते हैं तो जुताई हमारा प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा है कि कल्टीवेटर से भी करते हैं तो एकदम ऊपर ऊपर ना हो करके उसको थोड़ी गड्ढा में उसको करना है। चूँकि अभी तो ये सीजन है, लेकिन आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जब भी हर तीसरे साल पे आप लोगों को अपनी ज़मीन का गहरी जुताई करना चाहिए। गहरी जुताई जनरली इस महीने तो नहीं संभव है, इस महीने करने से फ़ायदा भी नहीं हो पाता है। गहरी जुताई करना है आपको मई जून के महीने में, जब सूरज का तापमान बहुत ज़्यादा होता है उस समय आपको करना चाहिए। इसके करने से क्या होता है कि जितने भी रोग जो पौधे को करता है, जो शुरुआत में जो पौधा जब हमारा बहुत छोटा रहता है तो उसको संक्रमित करता है, तो उनसे रोग करने वाले कारक को सूरज के जो प्रकाश, तीक्ष्ण प्रकाश जो है उनको मार देते हैं, जिसके चलते ये संक्रमण नहीं हो पाता है। तो एक तो रोगों से बचाव होता है, दूसरा जो है कीट के जीवन चक्र का कोई भी जो स्टेज होता है वो अगर सॉइल में है, ज़मीन में है, तो वो ये ज़्यादा तापमान से, धूप के प्रकाश से वो मर जाते हैं। तो साथ ही साथ जो बहुत सारे जो कीट को जो चिड़िया हैं वो चुन करके उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये हो गए आपके गहरी जुताई के फ़ायदे। अब हम लोग चलते हैं उर्वरक के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि उर्वरक भी कहीं ना कहीं हमारे कीटों पर व्यापक प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले तो आपको जो उर्वरक है उसको कब कब देना चाहिए, इस पे भी बात करना बहुत ज़रूरी होगा। तो उर्वरक हम लोग देते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास के फॉर्म में, तीन फॉर्म में हम लोग देते हैं। तो इसमें किसान भाई क्या करते हैं कि कभी कभी खड़े फसल में भी वो फॉस्फोरस और पोटाश डालते हैं। तो ये खरीज फसल में जब फॉस्फोरस और पोटाश डालेंगे तो इनका जो उपलब्धता होता है, ये अगर आज हम उसको छींटते हैं प्लांट में तो इसकी उपलब्धता में होते होते महीनों लग जाते हैं। तो इसीलिए फर्टिलाइजर उर्वरक जो है देने का भी एक प्रोटोकॉल है, एक सही समय है। तो इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आधी मात्रा यूरिया का जो अनुशंसित है मक्का के लिए, क्योंकि ज़्यादातर किसान आजकल हाइब्रिड मक्का लगाते हैं, तो उनकी जो अनुशंसित मात्रा है उसकी आधा मात्रा खेत की अंतिम जुताई के समय और पूरी मात्रा फॉस्फोरस और पोटाश की। आपको खेत की जब अंतिम जुताई करते हैं उसके बाद पट्टा दे करके जब हम बीज लगाते हैं तो उस समय आपको दे देना है। इससे क्या होगा कि आपका जब पौधा शुरू में छोटा रहता है तो जितना उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो तो मिलेगा, लेकिन फॉस्फोरस और पोटास लगभग एक महीने के बाद जब उपलब्ध होगा तब तक आपका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और उसका उस समय में रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है, ऐसे आपको करना चाहिए। दूसरी बात, जो रेस्ट जो नाइट्रोजन है उसको जो आप यूरिया के फॉर्म में देते हैं तो उसको पुनः दो पार्ट में आधा आधा कर करके, एक जब नी हाइट होता है, मतलब नी हाइट कहते हैं जब आपके ठेहुने के हाइट का हो तब, और दूसरा जब उसमें धनवाल जब आने वाला होता है उस समय आपको प्रॉपर सिंचाई के साथ आपको उर्वरक का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो पोटेशियम जो होता है, अगर आप कम मात्रा में देते हैं या नहीं देते हैं तो ये आपके पौधे के जो रोगों से लड़ने या कीटों से जो लड़ने की क्षमता है उसको ये बढ़ाता है। अगर पोटेशियम आप कम मात्रा में देंगे तो आपके जो फसल होंगे उस पर कीटों का आक्रमण हो सकता है कि ज़्यादा हो और वो

0: अगर आप पोटेशियम जो समुचित मात्रा में देते हैं तो इस पे कीट वो पौधा जो होता है वो मजबूत होता है और उसके चलते जो है उसमें कीटों का आक्रमण कम होता है। तो ये आप पोटेशियम के बारे में आप समझ लीजिए, जो म्यूरेट ऑफ पोटाश के रूप में हम लोग अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं, उसके बाद जब आप उर्वरक जब दे दिए तब होती है कि भाई बीज का चुनाव कैसे क्या करना है। तो बीज आप अच्छी गुणवत्ता वाली बीज लेंगे, और बीज में भी दो तीन चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बीज एक तो हाइब्रिड होना चाहिए, क्योंकि अच्छी जो गुणवत्ता वाली जो अगर बीज होती है तो उसमें रोग और कीटों से भी लड़ने की क्षमता होती है। एक जो साधारण प्रकार का अगर बीज हम लगाते हैं वो, और एक जो अच्छी गुणवत्ता वाली बीज है, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक तो उत्पादन में ही अंतर होता है, और साथ ही साथ इसमें रोगों और कीटों से भी लड़ने की क्षमता होती है। तो बीज आपको हाइब्रिड और अच्छी गुणवत्ता वाली लेनी है। अब ये बीज आपको मिलेगी कहाँ से, इसके बारे में भी कुछ बात करनी है। तो बीज जो है अच्छे दुकान से ले, और वहाँ उनसे कैश मेमो का डिमांड करें, मांग करें। और कैश मेमो जो होता है, ओरिजिनल बिल जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसका लॉट नंबर रहता है, सारा डिटेल रहता है उसमें दिया हुआ। तो इन केस अगर कभी कोई आपको अगर बीज का शिकायत होता है, समय से अगर पहले उसमें अगर फ्लावरिंग हो गया, फूल आ गया, या दाना सेट नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है आपको, अगर आपका कैश मेमो होगा तभी कृषि विभाग या कोई भी आपको सपोर्ट कर पाएगा, अन्यथा आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वो ये होगा कि कहाँ से बीज लाएँ। तो ये आपको रसीद लेनी है ओरिजिनल कैश मेमो के साथ, और उसको आपको लगाना है। टाइमिंग का भी सही उपयोग करना चाहिए, अभी उपयुक्त टाइम चल रहा है, उसको आप लोग लगाइए। अब क्या है कि बीज जो आप लेते हैं उसको उपचारित करना है। अब उपचारित कैसे करें, उपचार करने से क्या फ़ायदा होता है? तो उपचार करने का दो, चूंकि ये मक्का है इसलिए दो चीज़ों से उपचार करने से ज़्यादा अच्छा होगा। पहले तो करना है कि रोगों से इसका कैसे बचाव हो। तो रोगों से जो बचाव होने के लिए इसका हम लोग कार्बेंडाजिम से हम लोग इसका बीज उपचार कर सकते हैं। इसका 2 ग्राम मात्रा जो है प्रति किलो सीड की दर से आपको कार्बेंडाजिम लेना है, और पानी उतना ही मिलाना है जितना कि जस्ट ये बीज आपको उसमें मतलब ये भींग जाए। और इसको आपको पक्का फर्श पे या पॉलीथीन जो आता है, पॉलीथीन सीट, उस पे करना है। ज़मीन पे कभी इसको ना करें। और ये जब भी बीज उपचार करते हैं आपको ठंडे में करना है, धूप में, कड़ी धूप में नहीं करना है। तो ये तो हो गया आपको रोगों से लड़ने। इससे क्या होता है, ये जो कार्बेंडाजिम है ये सिस्टमिक फंजिसाइड है, फफूंदनाशी है, और ये आपके पौधे को, जो पौधा आपका छोटा छोटा होता है उसको लगभग 21 दिन तक आपको विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। अगर आपके मिट्टी में मिट्टी जनित फफूंद भी होगा तो ये अप टू बहुत हद तक आपके फसल को ये बचाता है। तो ये हो गई। दूसरी बात है कि कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक से भी इसको जो है बीज उपचार करना चाहिए। तो मक्का के केस में, क्योंकि कहीं कहीं पे ये हम लोग रबी में लगा रहे हैं इसको, तो इसमें दीमक और इस सब की भी समस्या हो सकती है। दूसरे जो कीट है उनके भी जो शिशु है वो मिट्टी में हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्लोरपाइरीफॉस 50 EC प्लस साइपरमेथ्रिन 5 EC, ये जो द्रव के मात्रा में ये पाए जाते हैं कीटनाशी। तो इसका आपको जो मक्का का बीज है उसमें 2 मिलीलीटर प्रति की दर से इसको आपको किसी भी पात्र में, या जो पॉलीथीन का जो पैकेट आता है, मक्का का जो पैकेट आता है, दो 2 kg वाला जो आता है, तो उसी में डाल करके आप दोनों हाथ से उसको हिला दीजिए। और हिलाने के बाद पुनः जो है इसको पक्का फर्श पे इसको आप सुखाइए, और सुखाने के बाद तब जा करके आप इसको खेत में लगाना है। इसको पुनः अब खेत में कैसे लगाना है, तो कई किसान भाइयों को रहता है कि अगर जो लाइन से लाइन की दूरी है उसको हम कम करेंगे, और फिर लाइन में पौधे से पौधे की जो दूरी है उसको भी कम करके, अगर जो मक्का के जो पौधा है उसकी संख्या अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो हमारा उत्पादकता बढ़ जाएगा। लेकिन इसके उल्टा भी होता है। जब इस सारा एक अनुशंसित मतलब इसका जो दूरी होती है जो 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर आपको प्रॉपर मेंटेन करना है, और पुनः उसमें 20 सेंटीमीटर का जो होता है लाइन में पौधे से पौधे के बीच की दूरी रखना चाहिए, क्योंकि इसे अगर कम आप रखते हैं तो जो सूरज का प्रकाश है वो हमारे जो मक्के का पौधा है उसको सभी पार्ट में नहीं लगता है, और जिसके चलते रोग भी होने की समस्या रहती है, और कीटों के जो जीवन चक्र के विभिन्न जो अवस्थाएं हैं वो अवस्था नीचे में जाके कहीं ना कहीं वो छुप जाता है, और छुपने के बाद जो है वो आपके फसल को ज़्यादा ज़्यादा नुकसान करता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ करना चाहिए। और उसके बाद अगर आप लाइन से लाइन कर दिए, देन आपको जो पौधा है उसको हमेशा आपको खेत पे अपने जाते रहना चाहिए। खेत पे जाते रहने से क्या होता है कि आपको अगर कोई कीटों का अगर उस पर समस्या होगा, आक्रमण होगा, तो आप देख पाएंगे और उसका जो है समुचित आप उपचार कर पाएंगे।
1: जी, तो अगर हम बात करें कीटों की, तो इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं इसके बारे में बताएं।
0: हाँ, ये कीट एक तो कटवर्म जो मक्का में बहुत अभी जब आपका पौधा जब छोटा छोटा होता है तो वो आता है कटवर्म, और दूसरा है जब पौधा फिर आपका जब थोड़ा सा बड़ा होगा तब इसमें तना छेदक का प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, और उसके बाद तना छेदक के साथ साथ कभी कभी क्या होता है एक फॉल आर्मी वर्म जो कीट है जो पहले नहीं पाया जाता था लेकिन विगत कुछ सालों से उसकी आक्रामकता बढ़ गई है, तो वो मुख्यतः ये रहते हैं। उसके अलावा भी कई कीट है लेकिन इन ये तीन कीटों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके बाद जो है ग्रास हॉपर है जो आपको पत्तियों पे खाते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग इन तीनों तीन कीटों पे ज़्यादा हम लोग बात करेंगे कि क्या है, उनको कैसे आप पहचानें, उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो जिसको हम लोग कटवर्म बोलते हैं, ये कटवर्म का आप लोग अपने अलग अलग जगहों पे लोकल भाषा में उसका कुछ और भी नाम है हो सकता है, ये आपको बताते हैं कि ये कैसे आपके फसल को नुकसान करता है। तो आप जब अपने जो हम मक्का जब लगाते हैं तो शुरुआती कंडीशन में जब ये दो पत्तियों के फेज में होता है, ये जर्मिनेशन के अंकुरित होने के बाद के जो बात है उसके बाद ये जनरली आपको कटवर्म की समस्या हो सकती है। तो कटवर्म में क्या होता है कि इसके जो शिशु होंगे वो लंबा लंबा शिशु होते हैं, और वो जनरली ज़मीन का जो ढेला होता है और उसमें ये छुपा रहता है या दरार रहता है उसमें छुपा रहता है ये दिन को, लेकिन जो ही शाम होता है ये निकल करके आपकी जो फसल है उसको ये नीचे से ही कट कर देते हैं, मतलब जड़ के ऊपर से ये कट कर देते हैं। चूँकि पौधा बहुत छोटा होता है, मुलायम रहता है, जिसके चलते कभी कभार किसान भाइयों को क्या होता है कि जहाँ पे भी अगर ये काट दिए ये जो कीट है इसके जो शिशु है, तो आपको पुनः किसान भाइयों को वहाँ पे गैप फिलिंग करना पड़ता है मक्का के दूसरे बीजों से। तो ये कटवर्म है। तो अब इस कटवर्म से कैसे आपको निजात पाना चाहिए, तो अगर ये इसकी कहीं कहीं समस्या है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसकी समस्या ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको क्लोरपाइरीफॉस 50C प्लस साइपरमेथ्रिन 5EC की जो मात्रा है वो 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में इसको आपको पूरी तरह से इसको ज़मीन पे और जो आपका छोटा पौधा है उस पे शाम के समय शाम के 4 बजे के आसपास इसको छिड़काव करना चाहिए। इसके छिड़काव करने से आपका जो है वो रोकथाम हो जाएगा। तो ये तो हो गया जो शुरुआती कंडीशन है। उसके बाद पुनः इसके बाद क्या होता है कि जब पौधा आपका जो बड़ा होगा तो तना छेदक का समस्या हो सकता है। तो ये तना छेदक कैसा होता है, ये तना छेदक आप देखेंगे कि आपका जो मक्का है तो उनकी जो पत्तियां हैं उस पत्तियां में लाइन से तीन तीन गोला गोला छिद्र ये हो सकता है छिद्र मिले। तो पुनः छिद्र के साथ साथ होता है क्या कि जो उसका जो ग्रोइंग पोर्शन होता है, जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है, उस पोर्शन में जो है ये इसके जो है शिशु रहते हैं, और वहाँ पे वो उसको वो खा करके क्षतिग्रस्त करते हैं, साथ ही साथ स्क्रीटा भी उसमें वो डालते रहते हैं। तो ये है तना छेदक का। तो तना छेदक की जब समस्या हो, और इसमें भी आपको ध्यान देने की बात है, अगर 100 पौधे में अमूमन अगर 5 पौधे में ऐसा समस्या अगर 5 से ज़्यादा में देखा जाता है, तब आपको इसके उपचार के लिए समुचित इंतजाम करना चाहिए। अगर कहीं कहीं पे है 5 से इसकी संख्या कम है, तो ये उतना इकोनॉमिक लॉस नहीं कर सकता है, आपको इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसके कीटनाशी को छिड़कने में और ख़रीदने में और छिड़कने में जितना पैसा आपका लगता है, उससे कहीं ना कहीं उत्पादन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो, तब आपको इसके उपचार के लिए आपको आगे आना होगा। तो एक तो हो गया, अब इसके उपचार कैसे करें। तो इसके उपचार करने के लिए, अगर पौधा आपका छोटा है, आपका अगर पौधा आपके ठोने से नीचे कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में आप जो दानेदार जो कीटनाशी है, जो कटाप हाइड्रोक्लोराइड 0.4G के नाम से आता है, तो इसको एक जर्दे के डब्बा में डालना है, और जर्दे के डब्बा में छेद करके जैसे जर्दा पान पे डालते हैं लोग, उसी ढंग से आपको जो मक्का का जो गभा है, उस गभा में उसको डालना है, ऐसे छींटना है ताकि 2-3 उसके जो हमारा जो कीटनाशी है क्लोरोपाइरीफॉस दानेदार, उस ये दानेदार कीटनाशी है, उसका दाना जो है उसके कंठ में चला जाए। क्योंकि ये कीट जो कंठ में छुपे रहते हैं, तो ये कीट के बॉडी में ये स्पर्श करते ही, सटते ही ये कीट मर जाता है, और आपका जो है जिस पोर्शन में, जिस पॉकेट में, जिस क्षेत्र साइड में अगर ये समस्या, उधर ही सिर्फ छींटने से आपको काम हो जाएगा, आपके पूरे फसल पे छींटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके चलते क्या होता है कि एक तो हमारा जो कीटनाशी की मात्रा कम लगती है, और हमारे जो मित्र कीट है वो भी मरने से बच जाते हैं। तो ये हो गया आपको ये तना छेदक के लिए। लेकिन हाँ, अगर पौधा पर बहुत जब बड़ा हो जाता है, उस कंडीशन में आप ये जो दानेदार दवा जो है नहीं छींट सकते, तो उस कंडीशन में आपको जो लिक्विड वाला दवा है उसको आपको गटोर से स्प्रे करना चाहिए, और उस कंडीशन में आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 5-HG उसकी 10 लीटर पानी में 4 ग्राम मात्रा आपको डालना है। इमामेक्टिन बेंजोएट एक ऐसा कीटनाशी है जिसको पहले ये झिल्ली की तरह होता है, इसको पहले आपको किसी भी पात्र में घुला लेना है, और घुलाने के बाद तब आपको स्प्रेयर में डाल करके फिर पानी डालना है, और उसके साथ कुछ मात्रा में स्टिकर मिलाना है, और स्टिकर मिला करके अच्छी तरह से उसको तब आपको स्प्रे करना है, गटोर से पूरी अच्छा से स्प्रे करना है, और स्प्रेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें एकदम स्मॉल ड्रॉपलेट्स, छोटा छोटा बूंद आए, ऐसा नहीं कि पूरा पानी पूरा निकल रहा हो, इससे आपकी दवा भी ज़्यादा लगती है, और हमारा जो सॉयल और सारा हमारा जो सिस्टम है वो उस पर ख़राब प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया तना छेदक के लिए। अब एक आती है जो फॉल आर्मी बम। तो ये फॉल आर्मी बम हो सकता है कि सब कहीं पे आता है, कहीं पे नहीं भी आता है, लेकिन इसको ये बहुत आक्रामक है, ये तना छेदक से भी ज़्यादा बहुत जल्दी ये आपके फसलों को बर्बाद करता है, इसीलिए इसका नाम फॉल आर्मी बम रखा गया है। क्योंकि ये बहुत जल्दी आपका 2-3 दिन में आपके फसल को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त कर देता है। तो पहले तो इसको पहचानेंगे कैसे। तो ये आपको जो तना छेदक होता है, इससे ये ज़्यादा मोटा होता है, लंबा भी होता है, इसके बॉडी पे ये काला काला धारी होता है, और साथ ही साथ इसके जो टेल, जो पूंछ पोर्शन जिसको बोलते हैं, तो पूंछ पोर्शन में 4 छोटे छोटे बिंदु, काले काले बिंदु होते हैं, जो एकदम स्क्वायर के रूप में रहते हैं, जैसे कि अगर चारपाई या जो भी स्क्वायर होता है उसके चारों साइड पे ये बुंद रहेंगे। साथ में अगर आगे पोर्शन में देखिएगा तो इंग्लिश का जो वाई होता है वो उल्टा वाई का शेप उसके सर पे बना हुआ रहता है। तो ये फॉलर्मीवर्म है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो जनरल कीटनाशी है उसे ये कंट्रोल जनरली नहीं होता है। तो इसके भी छः इन स्टार है, इसके जो छः स्टेजेज हैं, अगर ये इनिशियल कंडीशन में है तो सिंपल कीटनाशी से भी ये इनका रोकथाम हो सकता है, लेकिन अगर ये इन स्टार अगर ये एडवांस इन स्टार में है, जैसे 4-5 और उसके आगे के इन स्टार में है, तो उस कंडीशन में आपको मतलब इससे जो हार्डी इंसेक्टिसाइड है वो देना है। तो जो शुरू वाला अगर फेज है जैसे स्टेज 1 और 2 में है, तो इमामेक्टिन बेंजोएट हमने जो बताया है उससे भी ये नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन अगर 3 या 4 स्टेज में है तब स्पाइनोटोरम 11.7% की आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके इसको, और साथ में स्टिकर लेकर के इसको छिड़काव करना है शाम के समय में। और अगर इसकी उपलब्धता नहीं हो तो थायोमेथक जम 12.6% और लैम्डा साइलोहेलोथ्रिन 9.5% की मात्रा जो है 4 लीटर पानी में इसका 1 ml दवा देना है। मतलब ये कहें कि अगर 16 लीटर का हमारा स्प्रेयर है तो इसमें जो है थायोमेथक जम प्लस लैम्डा साइलोहेलोथ्रिन का जो कीटनाशी है उसकी 4 ml दवा ही देनी है। तो ये सब इसके कीटनाशी हैं जिनको आप छिड़काव करके और समय समय पे आप उसको देख करके ये कर सकते हैं। फॉल आर्मी वर्म में क्या होता है, ये आपके पत्तियां को तो खाते ही हैं, जो बढ़ने वाले पोर्शन को खाते हैं, साथ ही साथ जब आपका जब मक्का का जब बाल लग जाता है और बाल का जो बाहर वाला पोर्शन है जिधर मोचा से अंदर की ओर जब हमारा इसका दाना लग जाता है तो उसको भी ये खाना उसको भी ये खा करके क्षतिग्रस्त करता है। तब उस समय में आपको क्या है कि हमने जो ये कीटनाशी बताया है इसको पूरी तरह ऐसा इसको गटोर मशीन से छिड़काव करना है ताकि ऊपर से आपको मोचा और समथिंग ये सब में भी जाए और इससे आपका इस से आप निजात पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप करिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपका मक्का का पैदावार बहुत ही अच्छा होगा।
2: उन्नत कृषि उन्नत कृषि
1: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं अनु और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बातें करेंगे रबी मक्के की खेती और खास तौर पर इसमें हम लेकर आए हैं जल और उर्वरक प्रबंधन की बातें। तो इस विषय के साथ आज हमारे बीच हैं, जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूं, डॉक्टर बीरेंद्र सिंह जो कि वैज्ञानिक हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में और बहुत सारी जानकारी आज आप सभी को देंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और अगर हम बात करते हैं रबी मक्के की तो इसकी बुआई कब हम कर सकते हैं, इसकी थोड़ी सी जानकारी दीजिए।
3: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मक्के की बुआई कब करें। तो हम जैसा कि पहले भी बता चुके हैं और भी आप लोग भी देखे हैं कि जो रबी मक्के की बुआई होती है उसका सबसे जो उपयुक्त समय होता है वो अक्टूबर माह की अंतिम सप्ताह से पूरे नवंबर तक बुआई का सही समय होता है। लेकिन अब चूंकि उस समय तो बीत चुका है, जो किसान भाई समय पे लगा लिए हैं उनका फसल निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा, तंदुरुस्त होगा। और वैसे किसान भाई जो किसी कारणवश या जहां धान की खेती होती है वहां भी अक्सर देर हो जाता है धान काटने में, तो वहां पे यदि खेत में नमी है तो वहाँ पर अभी भी आप मक्के की बुआई कर सकते हैं रबी मक्के की। लेकिन जो किसान भाई अक्टूबर या नवम्बर में लगाए हैं उनसे उपज आपको कम प्राप्त होगी। तो हमारा ये सलाह है कि अभी भी आप मक्का की बुआई कर सकते हैं। अभी मक्का की बुआई करेंगे तो समानतः जो जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा, वो 7 से 8 दिन ले सकता है, चूँकि रात का तापमान काफ़ी नीचे चल जा रहा है। तो उससे जर्मिनेशन तो आपका सब सही हो जाएगा, फिर पौधे जनवरी के बाद से सामान्य जो उसका ग्रोथ होता है, बढ़वार होता है, उस रूप में आ जाएंगे। तो अभी भी यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई सिर्फ में खेत में

0: ये ध्यान देना है कि पर्याप्त नमी हो।
1: जी, और किस प्रकार करनी चाहिए उसके बारे में, प्रक्रिया के बारे में बताएं।
0: किसान भाइयों, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि जो मक्के की बुआई है उसके एक लाइन से दूसरे लाइन जो कतार से कतार की दूरी होती है 50 से 60 सेंटीमीटर रखना चाहिए, तथा एक बीज से दूसरे बीज यानी एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी होता है वो 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप खेत की जुताई कर लें और भुरभुरी मिट्टी को काफ़ी भुरभुरी बना लें और उसमें लाइन से बुआई कर दें। और ये ध्यान रहे कि जो आपका कतार से कतार है वो पूरब से पश्चिम रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि पौधों की धूप काफ़ी मात्रा में मिलता है, तथा जब अप्रैल में या मार्च महीने में तूफान टाइप की जो हवाएं चलती हैं उससे भी पौधा आपका नहीं गिरता है। अब रही बात कि आपका खेत निश्चित रूप से अभी डिले हो गया है, देर हो गई है, तो आप चाहें तो बिना बुआई किए भी आप खेत में नमी है तो देखते हैं खेत में एक सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर मोटा एक लोहे का या लकड़ी का रॉड ले लीजिए और उससे छेद करते जाइए 50 से 50 सेंटीमीटर या 60-60 सेंटीमीटर पर एक लाइन से दूसरे लाइन को रखते हुए एक लाइन में 20-20 सेंटीमीटर पे छेद बनाते जाइए। करीब 1 से 1.5 इंच अंदर छेद बनाएं और उसमें मक्के का एक एक दाना डालते जाएं और ऊपर से आधी मात्रा बालू और आधी मात्रा कंपोस्ट से उस छेद को भरते जाएं। वो क्या होगा कि आपका समय भी बचेगा और आपका जो पौधा होगा सारे का अंकुरण बहुत सही समय पे और सही रूप में हो जाएगा।
1: जी डॉक्टर साहब, जो किसान भाई जो हैं वो अक्टूबर या नवंबर में बुआई कर चुके हैं, तो उनके लिए सिंचाई के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे, किस प्रकार, कब
0: हाँ,
1: करनी
0: किसान
1: चाहिए।
0: भाइयों जो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर में लगाए हैं वो निश्चित रूप से सही समय पे लगाए हैं, तो उनको एक सावधानी की ज़रूरत है कि सबसे पहले आप खेत में नमी की कमी नहीं होने दें, क्योंकि जानते हैं कि जब तापक्रम नीचे जाता है 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री तो पौधों की पैदावार रुक जाती है और ठंड लगने की डर लगती है, तो पौधे का जो प्रॉपर जो पैदावार है वो नहीं हो पाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि समय समय पे खेत में नमी बनाए रहें और ध्यान रखें कि जब भी सिंचाई करें तो हल्की सिंचाई करें ताकि वो पानी रात भर में सूख जाए। पानी खेत में काफ़ी देर तक नहीं लगा होना चाहिए, तो पानी निकल जाएगा, नमी बना रहेगा तो आपके पौधे का बढ़वार नहीं बन रुकेगा, बढ़वार प्रॉपर होते रहेगा। तो आप 20-20 दिन पे, 15-15 दिन पे या 21 दिन पे ज़रूरत के अनुसार मिट्टी के का जिस तरह से टेक्सचर है, बनावट है, उसके अनुसार आप हल्की सिंचाई करते रहें।
1: जी, और अब बात करते हैं जल प्रबंधन की सर।
0: तो जल क्या, जैसा कि हम बताएं कि जो सिंचाई करें हमेशा हल्की करें, और जो किसान भाई लाइन में बुआई किए हैं और मिट्टी भी पौधों के ऊपर चढ़ा कर यदि मेढ़ बना लिए हैं तो उनके लिए ये सलाह है कि आप चाहें तो आप एक एक नाली, जैसे पहली सिंचाई आप दे रहे हैं दूसरी सिंचाई दे रहे हैं तो उसमें जल का आप बचत कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो जितनी नाली है तो एक सिंचाई देने जा रहे हैं जो पहली, तो चाहें तो पहली तीसरी पांचवी सातवीं नौवीं नाली में दें और दूसरे चौथे और छठवें नाली को बंद कर दें, उससे कोई भी आपके फसल पे कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जब आप दूसरी सिंचाई करने जाएंगे तो जिस नाली को बंद कर दिए थे पहली बार दूसरे चौथे और छठवें नंबर को उसमें पानी दे दें, अब पहला तीसरा पांचवा सातवां को बंद कर दें, इससे आपके करीब 60% पानी में ही पूरा सिंचाई हो जाएगा और फसल भी जितना होना चाहिए उतना उपज आपको आवश्यकता के अनुसार मिलेगा।
1: जी, फसल प्रबंधन में क्या कुछ करना होगा उसमें।
0: अब ये ध्यान देना है किसान भाइयों की ठंड बढ़ती है, जाड़े में फॉल आर्मी वर्म विभिन्न प्रकार के कीट का आक्रमण होता है, तो आप सबसे पहले जैसे आपका जो पौधा 20 दिन 25 दिन या 30 दिन का हो गया है तो जो आप खाद की जो आधी मात्रा बचाए हुए हैं, जैसा पहले बताया गया था कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश आपको देना है, तो जो नाइट्रोजन की मात्रा फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा तो आप बुआई के समय दे दिए होंगे। अब जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बची हुई है उसका आधी मात्रा अभी आप खेत में दे दें, खेत में देने के बाद मिट्टी जो पौधों के जड़ के पास है उसको चढ़वा दें, कुदाल से चढ़ा लें या मशीन से चढ़ा लें और उसके बाद सिंचाई कर दें, तो ये कर लें। और जो किसान भाई ये सारी प्रक्रिया कर लिए हैं या नहीं किए हैं तो आप देखते होंगे कि खेत में कुछ कीड़ों का प्रकोप हो रहा है, पौधे मर जा रहे हैं, सूख जा रहे हैं, कुछ पौधों में आप ऊपर देखेंगे जाली जाली टाइप का छेद बना हुआ है जैसे खिड़की।

0: नुमा जाली बना हुआ है। ये सारे कीड़ों के प्रकोप के वजह से हुआ है। जो तनाचेदक कीट होता है वो पूरे पौधे को सुखा देता है, और जो फॉल आर्मी वर्म काफ़ी अभी भयानक रूप से पिछले 4-5 साल से चल रहा है, तो आप देखते होंगे कि वो जालीदार पत्तों के जो ऊपर वाली पत्ती होती है जालीदार बना देता है, और जो उसके छोटे छोटे उस पर दाने दाने दिखेंगे चाय का जो पत्ती होता है उस टाइप का, तो इसका जैसे ही आपके खेत में दिखता है एक दो पौधा भी दिख गया तो ये समझ लीजिए कि उस क्षेत्र में आक्रमण फॉल आर्मी वर्म का हो गया है। तो उसके बचाव के लिए करना क्या है कि एक बाज़ार में दवा आता है इमामेक्टिन बेंजोएट, वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी अपना अलग अलग नाम से बेचती है, लेकिन उसका जो बेसिक चीज़ है इमामेक्टिन है, बेंजोएट के नाम से आता है। वो 4 लीटर पानी में 1 ml दवा डालना है। उस दवा को डालने के बाद आप छिड़काव कर दें, तो ये छिड़काव पौधे जैसे ही 4-6 पत्ती का हो गया है उस पर या एक बार उस समय छिड़कें, फिर जब पौधे घुटने के ऊंचाई का हो जाए तब छिड़कें, और तीसरा जो है छिड़काव बाली और धनबाल दिखने के समय कर दें। इससे क्या होगा कि पौधे भी सुरक्षित रहेंगे, खेत में आपका बीमारी कीड़ा नहीं लगेगा, और जो भुट्टे बनते हैं ये फॉल आर्मी वर्म भुट्टे में भी घुस जाते हैं, तो उससे भी आपका बचाव हो गया। तो इस तरह से आप 3 छिड़काव तो ज़रूर करें ताकि आपका फॉल आर्मी वर्म और विभिन्न प्रकार के कीड़ों से आपके फसल को बचत हो सके
1: जी। और अंत में सर उर्वरक प्रबंधन के बारे में बता दीजिए। हाँ,
0: उर्वरक में जैसे जो किसान भाई बताए कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास देना था, तो बुआई के समय फास्फोरस और पोटास की सारी मात्रा तो दे दिए होंगे, यदि नहीं दिए हैं तो अभी भी मिट्टी चढ़ाने से पहले और नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास को मिला लें, और नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है, आधी मात्रा का आधा यानी आपको बताया गया था कि 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास देना है। तो आप यदि फास्फोरस और पोटास दे चुके हैं तो आपके पास बचा हुआ होगा 60 किलोग्राम नाइट्रोजन। उस 60 किलोग्राम नाइट्रोजन का आधा कर लीजिए यानी 30 किलोग्राम नाइट्रोजन को आप प्रति हेक्टेयर का हम बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं प्रति हेक्टेयर के लिए बता रहे हैं, तो आप जो आधी मात्रा बचा लें और 30 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है आपके पास उसको आप खेत में सिंचाई के पहले या सिंचाई के ठीक बाद दें और उस पर मिट्टी चढ़ा दें, और जो तीसरी जो मात्रा होगी, ये तीसरा आप दूसरा मात्रा दे रहे हैं नाइट्रोजन का, तीसरा के लिए जब अब धनबाल आपके खेत में आना शुरू होगा, पहले उसमें धनबाल आता है तब नीचे मोचा आता है जिसमें बाली बनता है, तो जैसे ही धनबाल के अवस्था में आता है तो उसके आने से पहले आप जो आधी मात्रा 30 किलोग्राम नाइट्रोजन बचाए हैं उसको आप खेत में पौधे के जड़ के पास लाइन से डाल दीजिए और सिंचाई कर दीजिए। तो इस तरह से आपका जो पौधे में भुट्टे आएंगे, धनबाल आएंगे, उसमें बहुत अच्छा बढ़वार होगा, भुट्टे भी बढ़िया होंगे और दानों में चमक भी बरकरार रहेगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं जिसको आपको करना है। अब किसान भाइयों, आप देखते होंगे कि आप दवा देते हैं तो एक ताना छेदक कीट भी बड़ा भयानक रूप से बाद में प्रकोप करता है। जैसे पौधे में जब बालियां बन जाती हैं या बनता है उस समय आंधी आता है, तो आंधी के साथ पौधे गिरने लगते हैं बीच बीच से टूट के, इसका मतलब कि उसमें पहले से कीड़ा अंडा दे चुका था जिसका वो लार्वा प्यूपा बड़ा हो गया, उसको खा गया, उसको कमज़ोर कर दिया। इसके लिए क्या कीजिए कि पौधे चाहे घुटना ऊंचाई का हो या उससे थोड़ा बड़ा हो या छोटा हो, कार्बाफ्यूरान बाजार में आता है, कार्बाफ्यूरान नाम का एक दवा, वो चाय पत्ती टाइप का होता है, काला पतला छोटा छोटा, उसको आप ले लीजिए, और धूप अभी जैसे धूप थोड़ा तेज हो तो 12 बजे के बाद 1-1.5 बजे जब खेत में ओस नहीं रहे तो हर एक पौधे के गाभे में यानी ऊपर वाले पत्ती पे 4-6 दाना डाल दें, पूरे खेत में डाल दें, छिड़के नहीं डाल दें, तो उससे क्या होगा कि जो भी अंदर में कीड़ा होगा वो गैस से मर जाएगा या भाग जाएगा, ज़्यादातर पौधे मर जाते हैं। तो ये भी ज़रूर आप करें, कार्बोफ्यूरान का छिड़काव ऊपर से पत्ती में गाभे में डाल दीजिए, और इमामेक्टिन का छिड़काव 3 छिड़काव निश्चित रूप से करें ताकि आपके पौधे और दाने स्वस्थ आपके खेत से आए।
1: इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और किसान भाइयों, आपसे उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं जल और उर्वरक प्रबंधन के बारे में रबी मक्के की खेती में, तो आपको ज़रूर ये फ़ायदा देगा, आपके लिए लाभदायक होगा। अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार किसान भाइयों, हाजिर हूँ मैं हर रोज की तरह आप सभी के बीच एक बार फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु, और आज हमारे साथ फिर से एक खास मेहमान है, खास एक्सपर्ट है आप सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए। तो आइए सबसे पहले आज यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ आज का हमारा विषय क्या है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है रबी मौसम में हरा चारा उत्पादन तकनीक। वैसे किसान भाइयों, आप सभी को पता है कि हरा चारा हमारे पशुपालक भाइयों के लिए खास तौर पर कितना ज़रूरी है, क्योंकि पशुओं को जब हरा चारा मिलेगा तभी उनमें वो ताकत आएगी कि वो काम करेंगे, और पशुओं को जब हरा चारा मिलेगा तभी वो दूध दे पाएंगे। और इसलिए ज़रूरी है हरा चारा उत्पादन के बारे में हम जानें, इसके तकनीक के बारे में जानें। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एस के गुप्ता जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और देखा जा रहा है जैसे कि आज का हमारा विषय है डॉक्टर साहब, रबी मौसम में हरा चारा उत्पादन, तो सबसे पहले तो हम डिटेल में जानेंगे इसके उत्पादन के तकनीक के बारे में। लेकिन जहां तक बात आती है हरे चारे की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि मौसम के आधार पर हरा चारा जो है या फिर चारा फसलों को किस तरीके से हम अलग अलग भाग में बांट सकते हैं।
2: जी, देखिए, भारत में कृषि के साथ साथ पशुपालन एक आमदनी का प्रमुख स्रोत है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। फसल उत्पादन से पशुओं को चारा एवं खाद्य सामग्री तथा पशुधन से बैल ऊर्जा, जैविक खाद एवं खेती के अन्य कार्यों में मदद मिलती है। आज के समय में बढ़ती हुई आबादी को और दूध की मांग को देखते हुए जो हरे चारे की मांग है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। साथ ही हरे चारे की जो फसलें हैं उनके क्षेत्रफल में वृद्धि की काफ़ी संभावना बहुत कम है। इसलिए अगर हम देखते हैं तो सघन चारा उत्पादन चारे की आपूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकता है। साथ ही जैसे मौसम की अगर बात करें तो प्राय बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर रोजाना की जरूरतें आसानी से किसान पूरा कर सकते हैं। दरअसल प्रदेश के डेयरी व्यवसाय में सबसे बड़ी समस्या वर्ष भर हरे चारे का उपलब्ध न होना है, क्योंकि कृषि जोत के आकार लगातार कम हो रहे हैं, जिसके कारण किसान की नकदी फसलें, अनाज की फसलें तथा सब्जियां, इस तरह की फसलें को वो उगाना चाहता है। अगर हम देखते हैं तो हमारे अकेले बिहार में वर्तमान समय में लगभग 272 पशुपालन होता है, लेकिन अगर हरे चारे के उत्पादन की बात करते हैं तो जो केवल बहुत ही कम है, जो लगभग 0.21% ही है। इस प्रकार जो प्रति पशु प्रति व्यक्ति अगर हरा चारे की हम उपलब्धता की बात करते हैं तो वो बहुत कम ही है, क्योंकि इस प्रकार डेयरी व्यवसाय व दुग्ध उत्पादन दर को बढ़ाने के लिए वर्ष भर हरा चारा उत्पादन कैसे करें ये किसानों को जानना बेहद जरूरी है। चारे की खेती की कमी को पूरा करने के लिए जो कृषिगत भूमि से चारे की खेती के लिए जगह निकालना तो संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो जितने भी हमारे अन्य राज्य हैं उनमें से अपना बिहार राज्य भी है, पूरे देश में बढ़ती हुई आबादी के लिए खाद्यान्नों, दालों एवं सब्जियों की खेती करना अति आवश्यक है। तो दूसरा, यहाँ जलवायु के बदलते परिवेश में यह भी आवश्यक हो जाता है कि कृषि में सघन कृषि प्रणाली, कम सिंचाई होने पर भी अधिक हरा चारा मिलता रहे एवं जो किसान के पास कम उपजाऊ या बेकार भूमि पड़ी हुई है उसमें कौन कौन सी ऐसी मौसमी चारा फसलों का वो
1: उत्पादन
2: करे। तो इस प्रकार किसान के पास पूरे साल में सूखे चारे के अलावा हरा चारा कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए हम जो पूरा साल है हमारा उसको एक मौसम के या सीजन के आधार पर हम अपनी चारा फसलों का चुनाव कर सकते हैं। जैसे हरा चारे के लिए अगर हम फसलों की बात करते हैं तो जो पूरा हमारा एक मौसमी चक्र है उसके लिए बिहार राज्य पूरे देश में, अपने राज्य सहित पूरे देश में विभिन्न मौसम में जो

0: समय है वो सितंबर माह के अंतिम सप्ताह से लेकर के और जो दिसंबर का महीना है इस अवधि में हम रबी की फसलें जैसे बरसीम है, रिजका है और जई है, खेसारी है, जो हमारी चारे के लिए कुछ फसलों का प्रभेद का हम चयन कर सकते हैं, जैसे सरसों है, मक्खन ग्रास है, इत्यादि फसलों का हम चुनाव करके आसानी से इस समय अवधि में बुवाई कर सकते हैं। और जो तीसरा और अंतिम मौसम होता है जिसको हम गर्मी का या बसंत या जायद मौसम कहते हैं, इस मौसम में बुवाई का जो उपयुक्त समय है वो जनरली फरवरी से मार्च के मध्य से लेकर के और मई तक भी हो सकता है, जिसमें कुछ इस प्रकार की फसलें हैं जैसे लोबिया है और हमारा ग्रीष्मकालीन बाजरा है, मक्का है, या कुछ विभिन्न प्रकार की बहुवर्षीय घासों का भी चयन करके हम फसलों का चुनाव करके और उनकी बुवाई करके आसानी से हरा चारा का उत्पादन कर सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे घासों के यहाँ पर प्रकार बताए जैसे कि संकर घास और नेपियर घास, तो क्या ये मतलब हमारे जो पशु हैं उनके लिए इनके अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, यानी कि अलग अलग गुण हैं उनके लिए?
0: जी जी जी बिल्कुल, देखिए आपका बड़ा वाजिब प्रश्न है। दरअसल ये जो हम मौसम की आधारित पर जो इसलिए कह रहे हैं कि किसान के पास वो सबसे पहले ये तो जानना होगा कि हमारे पास इस मौसम में मौसम खेत खाली है या नहीं है, उसके जो समकक्ष है, जो उपलब्धता है वो फसल की है या नहीं है, या प्रभेद हमारे पास है या नहीं है, तो उसके साथ साथ ही जो बहुवर्षीय हरे चारे की घासें हैं उनका भी चुनाव हम करके अंतर्वर्ती फसल के रूप में इनसे मिला करके हम लगातार अलग अलग मौसम में चयन करके फसलों को और हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो जब बीज की बात आती है डॉक्टर साहब, तो हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बीज किस मात्रा में और कैसे होने चाहिए?
0: जी जी जी, वो तो देखिए इसका अभी हम आज का जो हमारा विषय रखा गया है वो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा करके अपना सीधे मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो जो आज का विषय रखा गया है वो यही है कि जो मौसम की जानकारी तो सभी किसान भाइयों को इस के माध्यम से हो गई होगी, लेकिन जो रबी मौसम है इसमें हम जो विभिन्न प्रकार के चारा फसलें हैं उनका हम चुनाव करके उसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, जो अभी हम आपको बताएंगे।
1: तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं और खास तौर पर मौसम के आधार पर इन्होंने चारा फसलों को जो विभिन्न भागों में बांटा गया है उसके बारे में बताया, और इसके साथ ही आइए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब से जानते हैं कि रबी मौसम में हरे चारे के लिए ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जिनका चयन आप कर सकते हैं और वो भी आसानी से कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से।
0: जी देखिए, जहाँ तक रबी मौसम की बात है इसमें बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, जैसे चनों रबी मौसम में की अगर फसलों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जिनका चयन हम सितंबर के अंतिम माह से और दिसंबर तक कर सकते हैं, तो उसमें हम जैसे बरसीम है, रिजका है, जई है, सरसों है और मक्का भी है, जो हम रबी मौसम में आसानी से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हम विस्तार से सबसे पहले आपको हम जो बरसीम फसल है उसकी चर्चा करेंगे। दरअसल बरसीम उत्तर प्रदेश सहित जो विभिन्न राज्य हैं उसमें उगाई जाने वाली रबी की एक प्रमुख दलहनी चारा फसल है। बरसीम जो अगर हमारे देश के रबी मौसम में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण दालें की जो फसल है, इसके में दरअसल इसके चारे में प्रोटीन की मात्रा अन्य फसलों की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। दलहनी फसल होने के कारण यह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में भी वृद्धि करती है। इसका चारा पौष्टिक एवं पाचनशील होने के कारण जो दुधारू पशु हैं उनको खिलाने से दूध की मात्रा में भी लगातार वृद्धि होती है। इसके अलावा बरसीम से उत्तम किस्म का हम साइलेज जो चारे का बैंक या भी कहते हैं उसको भी तैयार कर सकते हैं। और बरसीम की जो खेती है वैसे तो ये बहुत पूर्व आदिकाल से हमारे देश में की जा रही है और अच्छे गुणों के कारण इसकी खेती बिहार राज्य के सभी जितने भी क्षेत्र हैं उनमें सुगमता पूर्वक हम कर सकते हैं। जहाँ तक जलवायु की बात है, बरसीम की खेती के लिए प्राय शरद ऋतु में जो अर्ध शुष्क एवं ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, प्राय उन क्षेत्रों में जहाँ लगभग 150 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है उन स्थानों पर आसानी से बरसीम की खेती की जा सकती है।

0: अधिक पानी भर जाने के कारण जो बरसीम के पौधे की जड़ें हैं उनमें जो पाए जाने वाले जीवाणु हैं उनकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है, जिससे पौधे की वृद्धि नहीं होती और वो मर जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बरसीम की खेती करने के लिए जो उपयुक्त तापक्रम है वो लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड से और लगभग 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम उपयुक्त माना जाता
1: मतलब
0: है।
1: मतलब 15 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 25 से 26 डिग्री ज्यादा नहीं होना, मतलब इस बीच होना चाहिए।
0: इस प्रकार का जो तापक्रम है वो दरअसल इसी महीने में अच्छा माना जाता है। जहाँ तक भूमि और उसकी तैयारी की बात है, चूंकि ये एक हम बता चुके हैं कि जो एक दलहनी फसल है इसकी जड़ों में सूक्ष्म जीवाणु भी पाए जाते हैं, तो उनकी क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए हम मिट्टी में जल निकास और उपयुक्त जो उचित वायु संचार है उसको बनाए रखते हैं। तो और वैसे भी इसका जो बीज है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए इसके खेत को अच्छी तरह हम तैयार कर सकते हैं। और बरसीम की जो खेती है वो मक्का ज्वार धान की कटाई के बाद जब मिट्टी पलट हल से सबसे पहले हम इसकी 2-3 जुताइयां कर देते हैं और इसके बाद जो खेत है उसकी ढेलों को बारीक करके और खेत को पाटा लगाकर समतल कर लिया जाता है।
1: अच्छा।
0: और इसकी बुवाई से पूर्व जो बीज होता है उसको हम बीज उपचार कर लेते हैं और बीज उपचार हमेशा स्वस्थ पीले रंग का तथा अन्य फसलों के बीज रहित होना चाहिए, क्योंकि बरसीम के बीज के साथ अक्सर कासनी के बीज आ जाते हैं और कासनी चूंकि उसके लिए एक दूसरा फसल होने के कारण उसको खरपतवार माना जाता है। तो इससे बचने के लिए जो हम बीज खरीदते हैं उससे 5% नमक के घोल में बीज को डालकर 1-2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कासनी के बीज हैं हल्का होने के कारण वो ऊपर आ जाते हैं और उनको आसानी से अलग कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो इसका बीज है उसको एक सबसे पहले जो किसान भाई हैं जो खेत में बरसीम की खेती पहली बार करना चाह रहे हैं तो अपने एक राइजोबियम कल्चर से उसको एक संवर्धन कर लेना चाहिए। इसके लिए हम बताएंगे कि जो 1 किलोग्राम राइजोबियम संवर्धन या कल्चर है उसको लगभग 1 लीटर पानी के 10% गुड़ के घोल में अच्छी तरह मिला लेते हैं। इसके बाद 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए बीज की मात्रा को इस कल्चर के साथ मिला करके छाया में सुखा देते हैं। तो इस प्रकार ये जो संवर्धन या कल्चर होता है इसमें जो बीज को मिला करके 24 घंटे के अंदर खेत में बुवाई कर देनी चाहिए। और जहाँ तक इसको राइजोबियम कल्चर को प्राप्त करने की बात है वो जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय है इसके मृदा विज्ञान विभाग से संपर्क करके वहाँ से आसानी से इसको प्राप्त किया जा सकता है। और लगभग 1 हेक्टेयर की बरसीम की बुवाई करने के लिए जो है लगभग सामान्य परिस्थितियों में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। और जो इसकी बुवाई की विधि है वो इस राज्य में बरसीम की बुवाई खेत को महीन व समतल करके लगभग 5-8 सेंटीमीटर पहले उसमें पानी भर देते हैं और फिर आवश्यकता अनुसार उसका छोटा छोटा क्यारी बना लेते हैं और उन क्यारियों को या तो किसी पटेला या किसी अन्य यंत्र से उसको कादो करते हैं और तुरंत बाद बीज को छिटक देते हैं। बस ये ध्यान में रखना होता है कि बरसीम के अच्छे अंकुरण के लिए बीज की बुवाई से 4 घंटे पहले पानी को भिगो कर रखते हैं, जिससे सभी बीजों का जमाव जो है वो शीघ्रता से हो जाता है। और जहाँ तक उन्नत प्रभेद की बात है इसमें बहुत सारे ऐसे प्रभेद हैं जो इस क्षेत्र के लिए उनकी अनुशंसा की जा सकती है, जिनमें प्रमुख हैं बरसीम लुधियाना, मेसकाबी, पूसा जायंट और इसके अलावा S991। ये प्रवादी जितने भी प्रजातियां हैं ये सब इस क्षेत्र के लिए आसानी से उपयोग करके
1: मतलब हमारे बिहार क्षेत्र
0: जी की जा सकती हैं। और जहां तक जो अंत में खाद की बात होती है और उर्वरक देने की बात होती है तो दरअसल बरसीम की खेती करने के लिए बुवाई से लगभग 15-20 दिन पहले जैसे ही पूर्व फसल की कटाई करते हैं उसके एकदम बाद अगर संभव हो सके तो उसमें लगभग 80-100 क्विंटल जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है उसको हम मिट्टी की ऊपरी सतह पर मिला
1: मतलब
0: करके
1: जैविक खाद ज्यादा
0: जी जी जी तो उसको मिला करके उसकी जुताई कर देते हैं और उसकी ऊपरी सतह पर वो आसानी से मिल जाता है। चूंकि बरसीम एक दलहनी फसल है तो इसके लिए हम जो अगर उर्वरक है उसमें नाइट्रोजन की बहुत कम सिफारिश की जाती है, जो लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तथा फास्फोरस को 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की हिसाब से और उसकी अंतिम जुताई के समय खेत में आसानी से दे करके मिला दिया जा सकता है। तो इस प्रकार अगर हम इन सब प्रबंधों का समुचित प्रयोग करते हैं तो हम बरसीम की खेती
1: आसानी से कर सकते हैं
0: और सामान्य परिस्थितियों में 6 से 7 कटिंग करने के बाद में लगभग इससे 600 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हरा चारे का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये तो एक बरसीम का है। इसी प्रकार जो रिजका है, जो इसका दूसरा
1: प्रकार
0: चारे की फसल है, तो उसका इसी मौसम में इसको बोते हैं। बस हमको बीज उपचार भी इसी विधि से करना होता है। बस इसके कुछ ऐसी उन्नतशील प्रभेद हैं जो लगभग जैसे चेतक है, पंजाब टाइप 8 है, 9 है एवं आनंद 2 है। तो इस प्रकार के कुछ रूसन और रिजका के ऐसे प्रभेद हैं जिनका हम प्रयोग करके और इसी विधि से और लगभग इसी समय इसका प्रयोग करके इन और इसी उचित प्रबंधन से भी हम लुसर्न और रिजका का चुनाव कर सकते हैं। जो एक तीसरा फसल है वो है जई। रबी मौसम में हरा चारा प्राप्त करने के लिए जरी एक महत्वपूर्ण फसल है और इसका जो भूमि की तैयारी जो सिंपल है उसमें एक जुताई पहले हम मिट्टी पलटने वाले हल से कर सकते हैं और तत्पश्चात हैरो से करा करके खेत को पाटा लगा करके समतल कर दिया जाता है। क्योंकि ये रबी मौसम में इसको हम उगाते हैं तो उसी मौसम में इसको हम लगभग 20 अक्टूबर से लेकर के और 10 से 15 नवंबर या मध्य नवंबर कहिए तक इस जई का हम बुवाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वो जहाँ तक बीज की मात्रा की बात है, लगभग एक हेक्टेयर में बुवाई के लिए जो इसके बड़े दाने की जो प्रजातियां हैं जो अच्छी मानी जाती हैं उसका लगभग 80 से 100 किलोग्राम बीज को प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें हम सीड ड्रिल द्वारा पंक्तियों में बुवाई कर सकते हैं, जो लगभग हमारी 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी लाइनों की दूरी होती है। और जहाँ तक पोषक तत्व प्रबंधन की बात है, बुवाई से पहले हम खेत में तैयारी करते समय लगभग 10 से 15 टन या कहें 100 से 150 क्विंटल जो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद होती है वो हम खेत को तैयारी करते समय डाल सकते हैं। और जो 2 या 2 से अधिक कटान वाली प्रजातियां हैं उसमें हम लगभग नत्रजन की अधिक सिफारिश की जाती है, जो लगभग 180 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश और जो कुछ ऐसे प्रभेद हैं जो एक ही कटिंग देते हैं उसके लिए हम केवल 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की सिफारिश की जा सकती है। और जहाँ तक सिंचाई प्रबंधन की बात है, सामान्यतः जो जई है उसमें लगभग हरे चारे के लिए 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो ये ध्यान में रखना होता है कि जो बहुकाट वाली प्रजातियां हैं उनको कटाई के पश्चात तुरंत उसमें सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि दूसरा जो कटाई है उसकी समय पर तैयार हो जाए। और इस प्रकार हम जई की जो कटाई है वो 50% पुष्प अवस्था आने पर आसानी से कर सकते हैं और जो बहुकाट वाली प्रजातियां हैं उसकी प्रथम कटाई लगभग 55 से 60 दिन पश्चात कर सकते हैं और इस प्रकार तीसरी लगभग 1.5 से 2 महीने के अंतराल पर कटाई कर सकते हैं। और बस ये ध्यान रहे कि कटाई करते समय 8 से 10 सेंटीमीटर के ऊपरी भाग से हसुआ से उसका कटाई करके और हरा चारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लगभग जो एक कटिंग वाली हमारी फसलें हैं उससे लगभग हम 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा बहु कटाई वाली जिनसे हम 3 से 4 कटिंग एक सीजन में ले सकते हैं तो उससे हम लगभग 600 क्विंटल हरा चारा एक मौसम में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सामान्य परिस्थितियों में ये हम बरसीम, रिजका और जई की बात किए हैं। इसी के साथ साथ हम मक्का है, जैसे अफ्रीकन टाल है जो बहुत अधिक तीव्र वृद्धि करती है, उसका भी चयन करके और लगभग उसका अगर हम रबी में उसका चुनाव कर रहे हैं तो भी उसको आसानी से मध्य अक्टूबर से लेकर के और मध्य नवंबर के बीच में उसकी बुवाई कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, अभी देखा गया कि बिहार क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र में आसपास जो हैं वो बाढ़ आए हुए हैं और हमारे कई किसान भाइयों के खेतों में भी पानी जो है वो घुस गए हैं, उस वजह से फसल और जो हरा चारा उन्होंने लगाए होंगे वो बर्बाद हो चुके हैं। तो अब वो नए तरीके से बीजों की बुआई करके हरा चारा उत्पादन करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या कुछ सलाह या सुझाव देना चाहेंगे?
0: देखिए, ये जो बाढ़ का प्रकोप है, जैसा कि सभी जानते हैं प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इससे बचाव जो हमारी आकस्मिक योजना है, जो कंटीजेंट प्लानिंग है, उसको हम कर सकते हैं। क्योंकि भारतवर्ष में ही नहीं, हमारे राज्य में, अनेक सभी राज्यों में कृषि के साथ साथ पशुपालन एक हमारा दूसरा बड़ा व्यवसाय है, तो उसके लिए इसको हम क्या करते हैं कि जो फसल बाढ़ के चलते हुए किसान की हरे चारे की बर्बाद हो गई है, तो वो इस समय या तो जो कम अवधि के हैं, है जी, जो रबी मौसम में कम अवधि के कुछ ऐसी प्रभेद हैं, जैसे एक गोभी सरसों है, इसकी चाइनीज कैबेज है, जापानी सरसों है, अगर किसी नज़दीकी किसी संस्थान से या कहीं से प्राप्त हम कर सकते हैं तो इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसका जो हमारी मिट्टी है उसमें अगर हम बंड बना करके, जो अड्डा है उस पर बना करके बहुवर्षीय घासों की रोपाई भी कर सकते हैं। और अगर जल जमाव की स्थिति ख़त्म हो गई है तो वहाँ हम बेड उसका बना करके, जैसे अभी हम बता रहे थे कि जैसे बरसीम है, है जी, और लूसर्न है, या इसके अलावा रेज बेड पर जो पंक्तियों में उसकी अड्डा बना करके मेंढों पर उनकी बुवाई कर सकते हैं। बस यही उसमें ध्यान रहना चाहिए कि जो जल जमाव है उसमें तो किसी भी फसल को उगाना संभव नहीं है। जहां जल निकास हो चुका है, पानी नहीं है, तो हम गीली अवस्था में भी हम उसका बुवाई कर सकते हैं और हरा चारा के लिए ऐसी काफ़ी अच्छी संभावनाएं हो सकती हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने डॉक्टर साहब से विस्तार में जाना रबी मौसम में हरा चारा उत्पादन तकनीक के बारे में, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि रबी मौसम में हरे चारे के लिए कौन कौन सी फसलों का हम चयन करें, और आप सभी ने ये जानकारी ली, और आशा करते हैं कि आप डॉक्टर साहब के बताए गए सुझावों को अपनाएंगे, और किस तरीके से कैसे सिंचाई और बीज उपचार के बारे में भी आपने जाना तो उसे अपनाएंगे, और जो भी आप हरे चारे का उत्पादन करना चाहते हैं तो उसमें इस बातों को शामिल करेंगे और ध्यान रखेंगे। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आगे आपसे मुलाकातें होंगी अगले विषय के साथ, अगली चर्चा के साथ हम हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं अनु, और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम रबी सब्जियों के बारे में बात करेंगे, और इसकी नर्सरी हमें कैसे तैयार करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो इस विषय के साथ हमारे बीच हैं डॉक्टर ममता मैडम। मैं आप सभी को बता दूं, मैडम वैज्ञानिक हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम, आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद अनु।
1: सबसे पहले तो मैडम, रबी सब्जियों में कौन कौन सी जो सब्जियों की फसल है वो आते हैं?
2: ये जो रबी सब्जियां हैं, मुख्यतः पूरे साल को रबी, खरीफ और गर्मा में तीन भागों में बांटा गया है, और आने वाले दिनों में 15 अक्टूबर से हमारा रबी का सीजन प्रारंभ हो जाएगा। तो इसके लिए रबी में बहुत सारी सब्जियां आती हैं। आपका गोभी आता है, पत्ता गोभी आता है, टमाटर आता है, पालक है, मेथी के पत्ते हैं, शलजम है, बीट रूट है, सारे सब्जी इस तरह के, गाजर है, मटर है, ये सारी सब्जियां आपको रबी फसल में ही आती हैं।
1: विषय है वो है नर्सरी कैसे तैयार करना रबी सब्जियों का। तो सबसे पहले तो नर्सरी क्या होता है इसके बारे में बता दें।
2: नर्सरी पौधशाला को कहते हैं। नर्सरी एक बहुत ही बड़ा बृहद शब्द है। नर्सरी सिर्फ पौध का नहीं होता है, जो भी छोटे चीज होते हैं, जैसे एक माँ है जो अपने बच्चों को, शिशु को पालती है, पालने में रख करके उसको धीरे धीरे एक एक दिन करके बड़ा करती है, उसी तरह से पौधा में जब पौधा तैयार करते हैं तो पौधशाला भी उसी तरह से तैयार किया जाता है, उसी तरह से नर्चर किया जाता है। तो नर्सरी में पौधों को धीरे धीरे और स्वस्थ तरीके से उसे बढ़ाया जाता है ताकि उसमें किसी प्रकार की बीमारी ना हो, पौधा स्वस्थ हो, ताकि आने वाले दिन में उत्पादन को में अच्छा प्राप्त कर सकें। इसीलिए नर्सरी में हमेशा पौधे को स्वस्थ रखना चाहिए
1: जी। और जब हम नर्सरी में सब्जियों के बीज डालते हैं तो किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए?
2: सर्वप्रथम अभी गर्मी सितंबर का माह है और सितंबर में साधारणतः अगर क्लाइमेट चेंज की बात ना करें तो बहुत कड़ा धूप निकलता है, गर्मी का धूप रहता है, इस धूप में बहुत गर्मी रहती है। तो इसमें हमारे किसान जो भी हैं नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, जहाँ पे भी पौधशाला तैयार करना चाहते हैं, उसकी मिट्टी को वो खोल दें। मिट्टी को खोल करके उस मिट्टी में 1% फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्यूशन डाल करके उसे उजली पन्नी से मिट्टी को ढक दें, ढक करके उसे एक सप्ताह लगभग छोड़ दें। इससे क्या होगा कि जो उन्होंने घोल डाला है 1% फॉर्मल्डिहाइड का, उसमें ईचिंग का टेंडेंसी होता है, वो लगता है उसमें। इससे क्या होगा कि वो जैसे जैसे आपका घोल नीचे की तरफ जाएगा, नीचे से आपका जितना भी कीड़ा मकोड़ा होगा वो बाहर की तरफ भागेंगे, और बाहर में आपने उसे ज़मीन को पन्नी से ढक करके रखा है। पन्नी से ढकने की वजह से एक तो कीड़ा आपका बाहर भाग नहीं सकेगा, दूसरा क्या होगा कि धूप की गर्मी उस पन्नी को में प्रवेश करके अंदर की तरफ जाएगा और उस गर्मी को लंबे समय तक बनाए रखेगा, जिसमें सतह पर जितने भी कीड़े मकोड़े या फफूंद रहेंगे वो लगभग 50% तक के समाप्त हो जाएंगे। इस तरह से एक सप्ताह आप अपनी ज़मीन की तैयारी कर लें या इस तरह से मिट्टी की तैयारी कर लें, और तैयारी करने के बाद पुनः ज़मीन को खोल करके आप ज़मीन की अच्छे से जुताई करें, उसे महीन करें ताकि नर्सरी उसमें डाला जा सके। और अभी नर्सरी डालने के लिए बहुत सारे प्लास्टिक का प्रो ट्रे आ गया है अलग अलग साइज में, आकार में, तो उस मिट्टी का प्रयोग वो वर्मी कंपोस्ट और 1 ग्राम DAP प्रति स्क्वायर मीटर के दर से मिला करके वो मिट्टी को तैयार में डालें और तैयारी करें। साथ में नर्सरी जहाँ भी तैयार करनी है वहाँ पर नर्सरी वाले मिट्टी में बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की मात्रा को नहीं डालना है। अगर कंपोस्ट की मात्रा को वो ज़्यादा डालते हैं तो पौधा लंबा हो जाता है, पौधा मोटा होने की बजाय पौधा लंबा हो जाता है। अब हम लोगों ने मिट्टी की तैयारी की, मिट्टी हमारा तैयार हो गया है। आप प्रोट्रे ले लें, प्रोट्रे में उन मिट्टी को भर दें। प्रोट्रे में मिट्टी भरने से पहले प्रोट्रे के जो बेस होता है, जो कटोरी नुमा संरचना होता है, उसके बेस पर हल्का बालू डाल दें। बालू डालने से क्या होगा कि आपका वो मिट्टी है जो आपके कप में सटेगा नहीं, और उस प्रत्येक में मिट्टी डाल दें और बीज की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जब तक हम लोग नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं तब तक हमें गुणवत्ता युक्त बीज का व्यवस्था करना चाहिए, टमाटर में भी, बैगन, इसका गोभी का, पत्ता गोभी का, शिमला मिर्च का, इन सब का बीज का हम लोगों को तैयारी कर लेना चाहिए। और बीज को तैयारी करके बीज को उपचारित कर दें, रात में बीज को फूलने दे दें और बीज को कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल करके और क्लोरोपायरीफॉस 6 ml 1 लीटर पानी में डाल करके आप उस बीज को अच्छे से उपचारित कर लें। और अगर बीज को उपचारित करना, अगर पानी में नहीं फुलाना चाहते हैं हमारे किसान भाई, तो क्या करें कि कार्बेंडाजिम में किसी अलग रंग को मिला दें, कार्बेंडाजिम में अलग रंग का मतलब गुलाबी मिला दें या पीला मिला दें, और बीज को किसी प्लास्टिक वाले सतह पर फैला लें, और फैलाने के बाद उसमें हल्का सा पानी का छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के बाद दवा का भुरकाव करके उसे अच्छी तरह से मिलाएं ताकि बीज एक एक बीज पर कुछ ना कुछ दवा लग जाए। रंग मिलाने से क्या होता है कि बीज पर जब रंग दिखाई देता है तो लगता है कि हाँ इस पे दवा मिल गया है। उसी प्रकार से अगले दिन क्लोरोपाइरीफॉस से कर लें। दूसरा चीज़ है कि किसान भाई बीज को उपचारित करते समय उसमें गुड़ की मात्रा थोड़ा मिला देते हैं, तो गुड़ का एक कोट बन जाता है बीज पर जो बीज को स्वस्थ रखता है और न्यूट्रिशन पोषण देने का काम करता है। तो बीज इस न्यूट्रिशन जब पोषण उसको मिलता है तो बीज की अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार से किसान हमारे बीज एक एक बीज करके प्रोट्रे में डालें, और अगर नर्सरी में बीज वो डाल रहे हैं जमीन में डाल रहे हैं तो छिट्टा विधि को से नहीं डालना चाहिए हमारे किसानों को। छिट्टा विधि से क्या होता है कि कभी कभी बीज का फैलाव एक तरीके से नहीं होता है, कुछ बीज एक जगह ज़्यादा पड़ जाते हैं, कुछ जगह एक बीज कम पड़ते हैं। तो आप गौर करेंगे कि जहाँ पे कम बीज पड़ता है वहाँ पे पौधा बौना और मोटा होता है, और जहाँ पर घना बीज पड़ता है वहाँ पर नर्सरी है जो आपका पौधा है जो लंबा और उसका जो तना होता है वो पतला हो जाता है, जिसकी वजह से जब उसे हम मुख्य भूमि में देते हैं तो उस समय हमें गुणवत्तापूर्ण पौध नहीं तैयार होता है। तो किसान भाई इसको नर्सरी में अगर जमीन में भी डाल रहे हैं तो बीज को हमेशा 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर दें ताकि उनको पौधा अच्छा प्राप्त हो। दूसरा, किसान हमारे सावधानी बरतें कि लगाते समय वो कोशिश करें कि लगाने के एक दिन पहले उसमें सिंचाई करेंगे तो उसमें किसी कीटनाशक को अवश्य पानी में डाल करके उसका पटवन कर दे ताकि प्रत्येक पौधा में कुछ न कुछ कीटनाशक का अंश आ जाए। दूसरा चीज़ है कि अगर वो लगाने जा रहे हैं पौधे को तो ऊपर की पत्तियों को काट दें, जो बहुत सारी पत्तियां निकली रहती हैं लगाने में, सिर्फ उसके एपिकल कली का भाग को छोड़ दें और बाकी पत्तियों को हटा दें वो नर्सरी में ही। इससे क्या होगा कि जब आप उसे मुख्य भूमि में लगाएंगे तो लगाते समय आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि पत्तियाँ ही खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, और जब पत्तियों को सूर्य की रोशनी में जाएंगे तो पत्तियाँ हैं जो जड़ से आपको खाना मांगना, पानी मांगना प्रारंभ कर देगा, और आपका जड़ जो है अभी ज़मीन में स्थापित नहीं हुआ है। तो अपनी लगाए गए पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने के लिए किसान भाइयों को अग्रभाग को छोड़कर बाकी की पत्तियों को हटा दें, और इससे क्या होगा, पत्तियों को हटाने से आपका मुख्य तना ही निकलना प्रारंभ हो जाएगा। तना निकलना प्रारंभ हो जाएगा जहाँ जहाँ से आपने पत्तियाँ छोड़ी हैं, तो कलिका है जो तना में परिवर्तित हो जाएंगी। इससे पौधों में शाखाएँ की संख्या बढ़ जाएंगी, शाखाओं की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि फल लगने वाले कल्ले भी बढ़ेंगे। इस प्रकार से अगर किसान अपने पौधों का प्रबंधन करते हैं नर्सरी अवस्था में ही तो वो उत्पादन में एक नया आयाम को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए मैडम। और श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आज की इस जानकारी से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अगले दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन, और मैं आप सभी को बता दूं कि अभी आप उन्नत कृषि कार्यक्रम सुन रहे हैं, और इस कार्यक्रम में हम खेती से जुड़ी बातें करते हैं। किसान भाइयों के खेती में आने वाली दिक्कतों के समाधान को हमारे वैज्ञानिक बताते हैं। तो आज हम विषय लेकर आए हैं रबी तिलहनी, राई, सरसों, तोरियां, इसके बारे में, और प्रमुख किस्में क्या क्या हैं इसकी, और इसकी प्रारंभिक तैयारी आप कैसे करेंगे, इस विषय पर आज हम आपको जानकारी देंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है।
3: किसान भाई नमस्कार। अभी हाल के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि बढ़िया मुनाफा के चलते किसानों के बीच जो हमारी रबी तिलहनी फसलों को लेकर काफ़ी दिलचस्पी बढ़ रही है। जैसा कि बाज़ार में तिलहन की फसल से निकाले गए खाद तेलों की मांग ज़्यादा हो रही है, यही वजह है कि जैसे कि अभी राई, तोरी, सरसों और मूँगफली के तेलों की कीमत में काफ़ी उछाल दिखाई पड़ रहा है।
1: जी।
3: यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में सरकार की भी तरफ से तिलहन फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी बहुत सा योजना चलाई जा रही है। परिणाम के तौर पर हम देख रहे हैं कि तिलहन की खेती का रकबा में भी बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है।
1: जी, तो इसमें से तिलहन की किन फसलों की खेती कर किसान भाई जो है आसानी से बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं सर?
3: जैसे कि जैसे तिलहन जो है हमारी अर्थव्यवस्था में अनाज के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तिलहन के फसल से जो हम लोग तेल जो निकलता है उसको तेल में आहार कप में प्रयोग करते हैं। बहुत सारे अन्य उत्पाद भी बनते हैं जैसे पेंट में वर्निशेस, वनस्पति तेल, साबुन, इत्र, ये सब के प्रयोग में कच्चे माल के रूप में हम लोग जानते हैं कि इसका इस्तेमाल होता है। तेलहन में तेल निकालने के उपरांत बची हुई खली का प्रयोग पशुओं को चारे और खाद के रूप में भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तिलहन फसल में जैसे अभी रबी मौसम है तो राई, सरसों, तिल, अलसी जिसको हम लोग तीसी बोलते हैं का महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हम जानते हैं कि तिलहन के उत्पादन में हमारा जो भारत है विश्व में तीसरा स्थान है। बिहार के रबी मौसम में उगाई जाने वाली तिलहनी फसलों में राई, तुरिया और सरसों का ही प्रमुख स्थान है। इसका उपयोग मुख्य रूप से खाद्य तेल या जानवरों के लिए खली के रूप में किया जाता है। किसान भाई, अधिक एवं गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि इसकी खेती हम वैज्ञानिक ढंग से करें जिससे कि अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राई, तोरी, सरसों के उन्नत प्रभेद और कौन कौन सी है और खेत की विधि क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम तोरी के अनुशंसित प्रभेद उसके बारे में बात करेंगे। तोरी के का बुआई का समय मुख्य रूप से 25 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच है। तो इसके लिए जो अनुशंसित बिहार के जलवायु के अनुकूल जो हमारे लिए अनुशंसित प्रभेद है उसमें RUTS 17, ये इसकी परिपक्वता अवधि 90 से 95 दिनों की होती है। इसका औसत उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसमें तेल की मात्रा इसके बीज में 43% पाई गई है। इसी तरह दूसरा प्रभेद है पंचाली, यह 95 से 105 दिनों की प्रभेद है। इसका भी औसत उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और तेल की मात्रा 40% है। इसी तरह PT 303 और भवानी किस्म है जो 95 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी भी औसत उपज काफ़ी अच्छी है, 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और तेल की मात्रा 43% पाई गई है। इसी तरह किसानों के बीच में पीली सरसों बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो पीली सरसों के लिए जो उन्नत अनुशंसित प्रजातियां हैं उसमें राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो पहले था उसके द्वारा ये विकसित की गई थी उसमें 66-197-3 और इसका राजेंद्र सरसों 1 और स्वर्णा, इसके बुआई का समय 10 से 20 अक्टूबर है जिसमें अच्छा उपज किसान भाई ले सकते हैं और परिपक्वता अवधि 120 से 125 दिनों की होती है। औसत उपज जैसे 66-197-3 की 14 से 16 क्विंटल है और राजेंद्र सरसों अभी वहां से अधिसूचित विमोचित हुई है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से, तो उसमें 15 से 16 क्विंटल इसका औसत उपज है और तेल की मात्रा 46% पाई गई है। और भी बहुत से अच्छे प्रभेद हैं जैसे पीली सरसों के लिए अभी जो हाल के दिनों में जो प्रभेद विकसित की गई है उसमें NRCYS 0510, यह प्रभेद का औसत उपज 1317 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा इसका परिपक्वता अवधि जिसको हम मैच्योरिटी ड्यूरेशन कहते हैं वो 94 से 125 दिनों की है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें तेल की मात्रा 38.2 से 46.5% पाई गई है। ये वैरायटी 2009 में नोटिफाई की गई। इसी तरह दूसरी प्रभेद अच्छी प्रभेद है YSHO 401, इसका इस प्रभेद का भी औसत उपज 12 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा परिपक्वता अवधि 115 से 120 दिनों की होती है। इसमें तेल की मात्रा बहुत अच्छी पाई गई है जो 43 से 45% है। इसी तरह जैसे हम लोग पीली सरसों के बारे में बात किए उसी तरह राई के जो उन्नत और अनुशंसित प्रभेद है उसमें वरुणा, बूसा बोल्ड, क्रांति, राजेंद्र राई पिछात और राजेंद्र अनुकूल, राजेंद्र सुफलाम। तो वरुणा जो है उसको बुआई का उपयुक्त समय जो है 15 से 25 अक्टूबर है। इसकी परिपक्वता अवधि 135 से 140 दिनों की है और उपज बहुत अच्छी है, 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और इसको 42% इसमें तेल की मात्रा पाई गई है। उसी तरह अभी राजेंद्र इसे अभी धान कटने में लेट हो जाती है तो इसके लिए जो किसी किन्हीं किसान बंधुओं को लगाना है तो इसके लिए राजेंद्र राई पिछात जो 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक हम लोग इसकी बुआई कर सकते हैं और इसकी परिपक्वता अवधि 105 से 115 दिनों की होती है और औसत उपज 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें तेल की मात्रा 41% पाई गई है। इसी के अनुरूप राजेंद्र अनुकूल ये भी पिछात किस्म है और इसको लोग किसान भाई 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक लगा सकते हैं। उसी तरह राजेंद्र सुफलाम ये भी बहुत अच्छी प्रभेद है राई की और इसको 15 नवंबर से 25 दिसंबर इसको लेट बहुत लेट तक भी किसान भाई इसको ले सकते हैं। यदि विलंब से भी बुआई करें तो अच्छा उपज दे देती है 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और इसमें तेल की मात्रा 40% पाई गई है। इसी तरह पूसा IRI संस्था से पूसा मस्टर्ड 27 2011 में अधिसूचित विमोचित की गई। इसका औसत उपज 1417 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है जो तेल की मात्रा 40 से 45% पाई गई है। उसी तरह पूसा मस्टर्ड 26 पूसा मस्टर्ड 28 अभी हाल के दिनों में 2020 में एक बहुत अच्छी प्रभेद आई है पूसा महक। इसका औसत उपज 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा तेल की मात्रा इसमें 42% पाई गई है
1: जी। और सर अभी यहाँ पर सरसों तोरी और राय की बात हम कर रहे हैं तो वैज्ञानिक ढंग से कैसे खेती कर हमारे किसान भाई मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं?
3: सरसों का जैसे हम लोग जानते हैं कि बीज दर इसका 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है तो किसानों भाइयों को एकदम बीज दर हिसाब से लगाना चाहिए। ज़्यादा बीज दर रखने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो पंक्ति में बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति दूरी एक ही दूरी हम लोग को 30 सेंटीमीटर रखनी है तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी है। इकाई क्षेत्रफल में जैसे पर्याप्त पौधों की संख्या होती है तो उपज भी अच्छी प्राप्त होती है और बीज को सबसे बड़ा है कि 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोने से जो जर्मिनेशन होता है बीज का जमाव होता है वह समान रूप से होता है, यह ध्यान देना चाहिए। और बीज उपचार के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कार्मेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज के दर से हिसाब से हम लोग करें तो बहुत अच्छा रहता है। जो भी मृदा जनित जो फंगस है उससे बचाव करता है। इसके बाद हम लोग आते हैं खाद उर्वरक का प्रयोग। खेत की तैयारी करते समय किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि 10 टन कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें तथा 60 किलोग्राम नेत्रजन 40 किलोग्राम सफोर जिसको फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास खेत में डालने से फसल के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता पूरी हो जाती है। जैसा कि नेत्रजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा जैसे कि हम लोग जुताई अंतिम जुताई करते हैं उस समय खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए और जो शेष नेत्रजन की आधी मात्रा है उसमें फूल आने के समय हम लोग को उपरिवेशन के रूप में दे देना ज़्यादा उपज देती है। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर यदि गंधक जिंक और बोरोन का भी प्रयोग करना चाहिए। यदि कमी हो तो असिंचित अवस्था जैसे होती है तो उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन 20-20 किलोग्राम फॉस्फोरस तथा पोटास के रूप में प्रयोग करना चाहिए और पौधे की बछनी हम लोग को करना चाहिए। यदि बीज बुआई के 15 दिनों बाद बछनी की आवश्यकता यदि आपको दिखाई पड़ रही हो तो कर देना चाहिए। प्रत्येक पंक्ति में 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्वस्थ पौधे को छोड़कर अन्य सभी पौधे को निकाल देना चाहिए क्योंकि प्रॉपर पौधे को सनलाइट मिलना सूरज की प्रकाश मिलना अति आवश्यक है। कतार में सही दूरी पर पौधे में होने से उपज में वृद्धि होती है, ये हम लोग को ध्यान देना है तथा इसमें जो निकोनी और कमौनी होती है तो बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद निकोनी अवश्य करनी चाहिए। खेत में खरपतवार मुक्त होना चाहिए। साथ ही साथ पौधों के जड़ों के पास प्रकाश एवं हवा ज़्यादा प्राप्त होनी चाहिए जिससे कि फसल की बढ़वार काफ़ी अच्छी होती है। सिंचाई को यदि हम देखें तो राई और सरसों में 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई फूल लगने के समय करनी चाहिए तथा दूसरी सिंचाई फलियां बनते समय करनी चाहिए। खेत में पर्याप्त नमी न हो तो हल्की सिंचाई कर देना ज़्यादा हितकर होता है
1: जी। और अब इसमें लगने वाले रोग और कीटों के प्रबंधन के बारे में बताएं।
3: जो प्रमुख कीट और रोग इसमें सरसों में लगते हैं उसमें प्रमुख रूप से है जिसको हम लोग सफ़ेद रोली रोग या सफ़ेद रतुआ रोग हम लोग कहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो सिम्टम्स होता है या सरसों का अति इससे सफ़ेद रतुआ जो रोग है वह बहुत भयंकर रोग है। यह बीज और भूमि जनित रोग है। इस रोग के कारण बुआई के 30 से 40 दिनों के बाद जैसा कि हम लोग देखते हैं पत्तियां की निचली सतह पर सफ़ेद रंग का उभरे हुए फफोले दिखाई देने लगते हैं। फफोले को ऊपरी सतह पर पत्तियां पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। उग्र अवस्था में सफ़ेद रंग के उभरे हुए फफोलों पत्तियाँ के दोनों सतह पर फैल जाती है और फफोलों को देखिएगा तो फट जाने पर सफ़ेद चून बाहर की तरफ फैलता है और पीले रंग के धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को पूरी तरह से ढक लेते हैं। और फूल लगने और फलियां पूरी तरह से विकृत हो जाती है, जिसमें बीज नहीं बन पाता है और काफ़ी क्षति होती है। तो इसके नियंत्रण के उपाय है कि सरसों की बुआई हम लोग को हमेशा अक्टूबर के पहले पखवाड़े में करना चाहिए, और बीजों को जैव नियंत्रक आजकल बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है, तो ट्राइकोडर्मा पाउडर को पाउडर 8 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम या फफूदनाशी मेटालेक्सिल की 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करके बुआई करें, और फसल के बुआई के 55 से 60 दिनों के बाद या रोग के लक्षण दिखाई देने पर रिडोमिल एमजेड 2% का छिड़काव करें, और आवश्यकता अनुसार 10 दिनों के अंतराल पर पुनः छिड़काव कर दोहरा दें। एक सरसों में अंगमारी रोग लगता है। इस रोग के पत्तियों पर कथई भूरे रंग के उभरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं, जिनके किनारे पीले रंग के होते हैं। देखने में ये धब्बे आँख की तरह प्रतीत होते हैं, और उग्र अवस्था में ये धब्बे आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं, जिससे कि सरसों की पत्तियाँ पीली होकर झड़ने लगती हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए थायराम 75 WP 3 ग्राम या ट्राइकोडर्मा पाउडर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम की बीज दर से किसान भाई इसको बीज को उपचारित कर लगाएं, और तो ये समस्या से निजात पा सकते हैं। यह 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम मिलाकर 15 दिनों तक रखें, और बुआई के पहले खेत में छिड़क कर हल्की सिंचाई कर दें। और दूसरा सबसे प्रमुख रोग है सरसों का तुला सीता रोग, जिसको डाउनमिल्डी भी कहते हैं। इस रोग के कारण पत्तियां के निचली सतह में ये रोग दिखाई देता है। निचली सतह पर कपास की तरह उभरी हुई सफ़ेद भूरियां दिखाई देती है, जिसमें पत्तियां के निचली सतह पर हल्के भूरे बैंगनी धब्बे पड़ जाते हैं, जिनका ऊपरी भाग पीला पड़ जाता है, और उग्र अवस्था आने पर तना और पुष्प अतिवृद्धि के कारण फूल जाते हैं और फलियां में दाना नहीं बनते, जिसके कारण काफ़ी हानि होती है। इस रोग का प्रकोप सफ़ेद रोली के साथ दिखाई देता है, तो फसल में ज़्यादा नुकसान होता है। इसका नियंत्रण के लिए किसान भाई को चाहिए कि सरसों की बुआई अक्टूबर के पहले पखवाड़े में कर दें, और बीजों को मेटालेक्सिल 6 ग्राम या ट्राइकोडर्मा 10 किलोग्राम प्रति किलोग्राम के बीज की दर से बीजोपचार कर दें, और फसल बुआई के 2 माह बाद या रोग के लक्षण दिखाई पड़े तो रिडोमिल एमजेड 2% का छिड़काव करें। और सरसों का जो प्रमुख जैसे जो कीट है वो माहू कीट है, और सरसों का माहू कीट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छोटा लंबा और कोमल शरीर वाला कीट है। प्रौढ़ माहू 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, पहला पंख रहित, दूसरा पंख सहित। पंख रहित प्रौढ़ 2 मिलीमीटर लंबा गोलाकार और हरे रंग या हल्के पीले रंग का होता है। तो इसमें जो माहू कीट लग जाने पर हम लोग किसान भाई को काफ़ी हानि पड़ती लगती है होती है। तो हानि के ये कीट प्रायः दिसंबर के अंतिम सप्ताह में प्रकट होता है और मार्च के अंत तक सक्रिय रहता है, और मार्च के अंत तक विभिन्न भाग जैसे सबसे पहले पुष्पक्रम, पत्तियां, टहनी, तना, फलियों में रस चूसकर नुकसान पहुँचाते हैं। यह कीट समूहों में रहते हैं और तीर्थों जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वंश वृद्धि करते हैं। माहू पहले फसल की वनस्पतिक कलिका को प्रकट होते हैं और धीरे धीरे पूरे पौधे को ढक लेते हैं। ये कीट मधुस्राव निकलता है और पौधे को काले कवक का आक्रमण हो जाता है, जैसा कि किसान भाई पहचानते हैं। तना और पत्तियां काली हो जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण में बाधा जाती है। यह कीट उपज और तेल की मात्रा में कमी होती है। बादल युक्त और ठंडा मौसम में वंश वृद्धि के अत्यंत उपयुक्त होता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि रोग और कीट के लिए हम लोग को समन्वित कीट प्रबंधन अपनाएं। जहाँ तक संभव हो सरसों की बुआई 15 अक्टूबर तक कर देनी चाहिए, जिससे कि फसल माहों के प्रकोप से बच जाए। उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा का ही प्रयोग करना चाहिए, और माहों के प्राथमिक आक्रमण पर 10 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार माहों ग्रसित टहनियों को तोड़कर नष्ट कर दें, या माहों के ब्रश वृद्धि को जिससे कि कम किया जा सकता है। फसल में कम से कम 10% पौधे माहों से ग्रसित हों तो प्रत्येक पौधे पर 26 से 28 माहों हो तभी छिड़काव कर देना चाहिए। जैसा कि इमिडाक्लोपीड 17.8 SL को 5 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी की दर से घोल बना लें और छिड़काव करें। यदि दोबारा से कीट का प्रकोप आ जाए तो 15 दिनों के अंतराल पर पुनः छिड़काव कर देना चाहिए। इस प्रकार यदि किसान भाई एक वैज्ञानिक ढंग से यदि खेती करें तो राई सरसों का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बाजार में भी अच्छा अभी मुनाफा देखा जा रहा है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रबी तिलहनी के प्रमुख किस्में और इसकी प्रारंभिक तैयारी खेती के लिए। तो अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आम की सघन बागवानी एवं छत्रक प्रबंधन। और इस विषय के साथ हमारे बीच हैं आज डॉक्टर कुमारी करुणा मैडम, और मैडम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उद्यान विभाग फल बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैडम, सघन बागवानी के बारे में थोड़ा बात करते हैं, तो किसे कहते हैं सघन बागवानी, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
4: सघन बागवानी जैसे नाम से ही है कि सघन मतलब घना, घना करना है, यानी कि जो परंपरागत तरीके से बागवानी की जाती है उससे और घना करना है। यानी कि आम का हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो आम के केस में 10 मीटर 10 मीटर में हम लोग कहते हैं लगाने की, ये परंपरागत विधि है लगाने का कि 10 मीटर पौधा से पौधा और 10 मीटर कतार से कतार की दूरी होनी चाहिए। जब सघन की हम बात करते हैं तो उससे नीचे जब हम डिस्टेंस लेते हैं, दूरी लेते हैं 8 मीटर 8 मीटर 7 मीटर 7 मीटर 6 मीटर 5 मीटर, तो ये सघन होते जाता है। सघन में भी बहुत तरह का है, जैसे कि कहते हैं कि कम सघन, मध्यम सघन, अति सघन, मतलब जब बहुत नंबर ऑफ संख्या जब बढ़ाते जाते हैं पौधा को, उस तरह से उसका नामकरण होते जाता है सघन का। तो इसको हम लोग नॉर्मल से जब हम कम दूरी पर पौधा को लगाते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं सघन बागवानी जी। इसकी उपयोगिता ये है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है क्योंकि नंबर ऑफ पौधा बढ़ जाता है, फलों की गुणवत्ता भी अच्छी हो जाती है। इसमें अच्छी इसलिए हो जाती है कि इसमें छत्रक प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है, छत्रक प्रबंधन किया जाता है और प्रॉपर फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, सिंचाई, निकाई, गुड़ाई करने से इसकी गुणवत्ता अच्छी हो जाती है
1: जी। अगर सघन बागवानी की बात करें तो हम ज़मीन की तैयारी कैसे करेंगे, गड्ढा बनाना, गड्ढा भरना, इसमें कैसे किया जाता है?
4: ज़मीन की तैयारी जैसे परंपरागत तरीके से करते हैं, 3 बार जुताई करते हैं, उसके बाद पाटा चलाते हैं। इसी तरह से सघन बागवानी के लिए भी अगर शुरुआत में हमको बगीचा लगाना है, किसान भाई को बगीचा लगाना है सघन बागवानी में, तो उसी तरह से ज़मीन की तैयारी करनी होगी, पाटा चला के उसके बाद लेआउट करना होगा जिस विधि में किसान भाई लगाना चाहेंगे, जिस दूरी में लगाना चाहेंगे, 5 मीटर 5 मीटर में लगाना चाहेंगे या 6 मीटर 6 मीटर में लगाना चाहेंगे। सबसे अच्छा जो डिस्टेंस होता है, जो हम बिहार सरकार से भी प्रेस्क्राइब है और हम लोग भी कहते हैं कि 5 मीटर 5 मीटर की दूरी पर आम को लगाना चाहिए सघन में। और उसके बाद पाटा चलाकर जो दूरी हम लिए हैं, जो पौधा से पौधा और कतार से कतार की दूरी लिए हैं, उसमें खूंटी बीच में लगा देना चाहिए उस डिस्टेंस पर। उसके बाद 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर गहरा 1 मीटर ऊंचाई पर उसका मिट्टी मतलब गड्ढे की खुदाई करनी चाहिए। फिर गड्ढे को भरने के लिए ये काम, गड्ढे खुदाई का काम अप्रैल में करना चाहिए, अप्रैल मई में जब बहुत गर्मी रहती है उस समय करना चाहिए, जिससे कि जो ज़मीन में कीड़ा मकोड़ा होता है वो सब मर जाए। और उसके बाद फिर गड्ढा भरने का जो समय है उसके 15 दिन, जुताई के 15 दिन बाद, या गड्ढा जो बनाए हैं गड्ढा खुदाई के 15 दिन बाद उसको भरना चाहिए। गड्ढे में 70 से 80 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद और सिंगल सुपर फॉस्फेट 1.5 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर भर देना चाहिए। ऊपर की मिट्टी पहले भरना चाहिए और नीचे की मिट्टी को उसमें खाद और कंपोस्ट मिलाकर ऊपर में भरना चाहिए। इस तरह मॉनसून आने से पहले गड्ढे को भर देना चाहिए
1: जी। आम का कौन कौन सा किस्म सघन बागवानी के लिए उपयुक्त है?
4: देखिए सघन बागवानी के लिए हम लोग कहते हैं कि जो छोटा पौधा है जिसका स्ट्रक्चर छोटा होता है उसको लगाने से मेंटेन करने में सुविधा होती है, इसलिए सघन बागवानी के लिए जो वैरायटी प्रिस्क्राइब है वो है आम्रपाली है, मल्लिका है, दशहरी है, जरदालू है। ये सबका स्ट्रक्चर जो है, ढांचा शरीर का थोड़ा छोटा होता है तो इसको मेंटेन करने में थोड़ा सुविधा होती है, जल्दी से इसका ग्रोथ उतना फैलता नहीं है, तो ये सब वैरायटी लगा सकते हैं किसान भाई
1: जी। आम के अगात, मध्य एवं पिछात में पकने वाली किस्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें।
4: हाँ, अगात किस्म में किसान भाई भी जानते होंगे, बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि गुलाब खास है, ये अर्ली में आ जाता है, शुरू में आ जाता है और मार्केट में लाल लाल दिखाई भी देने लगता है कि गुलाब खास, गुलाबी गुलाबी रंग का। बम्बई है, जरदालू है, अल्फांजो है, ये सब मई के अंत में पकने वाली वैरायटी है, ये अर्ली है। और मध्यम, मध्यम में तो जो हम लोग का चॉइसेस्ट वैरायटी है लंगड़ा, लंगड़ा ये बीच में ही पकता है, जून के बीच में पकता है, तो लंगड़ा है, हुसनारा है, अमन दशहरी है, कृष्णभोग है, ये सब मध्य में पकने वाली वैरायटी है। और जुलाई में लास्ट में जाएंगे तो चौसा है, फजली है, सुकुल है, सिपिया है, ये सब लेट वैरायटी है
1: जी। पौधरोपण कब और कैसे करना चाहिए?
4: बिहार में हम लोग के कंडीशन में रोपण का मुख्य समय हम लोग जुलाई अगस्त है, इसमें मॉनसून आ जाता है तो किसान भाई को सिंचाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इस तरह लेबर का भी बचत हो जाता है और पौधे अच्छी तरह लग जाता है। उच्च गुणवत्ता युक्त पौधा हम लोग कहते हैं किसान भाई को पहले से खरीद लेना चाहिए या फिर अच्छे संस्था में बुक करा लेना चाहिए कि मुझे इतना पौधा चाहिए गड्ढे के अनुसार से, और उसे जुलाई के मध्य में सावधानी पूर्वक जहाँ गड्ढा बनाए थे पहले वहाँ पर खोद कर, बस अब उतना खोदना नहीं है, जितना बड़ा बॉल है पौधा का जिसमें कि मिट्टी लगा रहता है उतना ही बड़ा गड्ढा खोद कर उसमें बैठा देना चाहिए बीच में, और 50 से 60 सेंटीमीटर की गोलाई का थाला बना देना चाहिए, उसके बाद फिर उसमें तुरंत सिंचाई कर देना चाहिए।
1: सघन बागवानी में छत्रक प्रबंधन कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे मैडम।
4: हाँ, सही कहा, आज तो ये टॉपिक ही है कि आम की सघन बागवानी एवं छत्रक प्रबंधन। जब सघन बागवानी की बात करते हैं तो उसमें छत्रक प्रबंधन तो होना ही चाहिए और बहुत ही ज़रूरी है छत्रक प्रबंधन। तो कटाई छटाई का काम जो है, जब हम पहली साल लगाते हैं पौधा को तो उसका पहला कटिंग हम लोग कहते हैं कि दिसंबर में, दिसंबर जनवरी में करना चाहिए। पौधा कितना भी बड़ा हो उसको 90 सेंटीमीटर ऊंचाई का छोड़कर ऊपर से काट देना चाहिए। तनों की कटी सतह पर फफूंदनाशक दवा का पानी में लेप बनाकर उसके ऊपर लगा देना चाहिए। कटाई के बाद तो ठंडा आ जाएगा, जैसे कि दिसंबर में हम कह रहे हैं कि काटना चाहिए तो फिर जनवरी में ठंडा आ जाता है, लेकिन फरवरी मार्च अप्रैल में बहुत सारा उससे कल्ला निकलने लगता है, तो उस कल्ला से चार कल्ला चारों दिशाओं में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में छोड़कर और जितने भी कल्ले शेष रहेंगे उसको काटकर अप्रैल महीने में हटा देना चाहिए। अब उन चार कल्लों को, चार जो बच गए उसको 30 सेंटीमीटर छोड़कर उसका भी फिर हेडबैक कर देना चाहिए आगे से। हेडबैक मतलब कि आगे जितना पुंछी टाइप का रहता है आगे उसको काट देना चाहिए, यानी 30 सेंटीमीटर छोड़कर बाकी जो है उसको काट देना चाहिए। फिर वो 30 सेंटीमीटर के नीचे से बहुत सारे कल्ले निकलेंगे, उसमें से दो या तीन कल्ले को छोड़कर फिर शेष जो कल्ले एक्स्ट्रा रहेंगे उसको हटा देना चाहिए। ये प्रक्रिया दो तीन साल, तीन साल तो करना ही चाहिए, करने से पौधे का आकार एकदम से छतरी नुमान तैयार हो जाता है। ये करना अत्यंत आवश्यक है सघन बागवानी में, जिससे कि पौधे का ढांचा जो है बहुत ही मजबूत तैयार होता है। इस तरह करने से फलन का जो गुणवत्ता है वो बहुत ही अच्छा होगा और 20 से 25 वर्ष तक इससे अच्छी क्वालिटी का फसल तैयार हो सकता है। और 20-25 साल के बाद फिर इसमें हेडबैक की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो सूट था, जो टहनी था, टहनी को एक से डेढ़ मीटर छोड़कर पुनः बैक प्रूनिंग इसको बोलते हैं, यानी कि फिर से कटिंग करना। आम में 20-25 वर्ष के बाद शाखाओं की वांछित हेडबैक दिसंबर में करने के फलस्वरूप अप्रैल से स्वस्थ कलमों का सृजन होता है। सभी वृक्षों में एक बार यह हेडबैक की प्रक्रिया करना आवश्यक है। इसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फफूंदनाशक का पानी में घोल बनाकर लेप लगाना चाहिए या घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। प्रारंभ में 4 से 5 स्वस्थ कल्ले प्रति टहनी रखकर जुलाई में विधिवत विरलीकरण करना चाहिए, यानी जो एक्स्ट्रा सूट है उसको निकाल देना चाहिए। इस प्रकार कटे हुए वृक्ष में हवा और रोशनी आदि के समावेश से स्वस्थ कलों का सृजन होता है। कटे हुए वृक्षों में सभी सस्य क्रियाएँ विशेषकर खाद और जल प्रबंधन, मल्चिंग आदि सामयिक करना चाहिए। फिर इन्हीं वृक्षों से गुणवत्ता युक्त भरपूर फसल 20 वर्षों तक पुनः ली जा सकती।
1: तो श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे आम की सघन बागवानी एवं छत्रक प्रबंधन, और आपको इस वार्ता से जरूर कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं आपसे कल एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ यानी एफएम ग्रीन। मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तो आज हम पशुपालक भाइयों के लिए कुछ खास लेकर आए हैं। जी हां, पशुपालक भाइयों और साथ ही हमारे किसान भाइयों, आज जो हमारा विषय है वो है अजोला द्वारा पशु पोषण का प्रबंधन। तो आज इसके बारे में विशेष जानकारी के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ए के झा, जो कि मृदा वैज्ञानिक है सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
5: बहुत बहुत धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो अजोला क्या है, भारत में पाए जाने वाली विभिन्न इसके प्रजातियों के बारे में जानना चाहेंगे।
5: अजोला, जैसा कि ये नाम ही बताता है, दो शब्दों से बना है, एजो और एलायो। एजो मतलब ड्राई और एलायो मतलब मर जाना, यानी एक खास प्रकार का जलीय फर्न है जो सूखे में मर जाता है। यानी कि ये सिर्फ आपको पानी के ऊपर ही पैदा होता है और ये बड़ा ही फायदेमंद है। आप इसको पशुपालन में भी प्रयोग कर सकते हैं, खेती के लिए प्रयोग कर सकते हैं, इवन जो मत्स्य पालन है उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ये बहुत सारी जो कृषि की विधाएं हैं उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये काफी फायदेमंद जलीय फर्न है और इसके पोषक मान भी काफी होते हैं, जिसके विषय में हम आगे जिक्र करेंगे कि पोषक मान के कारण ये यदि पशुपालन में प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूपेण जो हमारा पशु का स्वास्थ्य है वो भी ठीक होगा और साथ ही साथ जो दुग्ध उत्पादन है उसमें भी काफी वृद्धि होगी। अब आपका जो दूसरा प्रश्न था कि इसकी कितनी प्रजातियां हैं जो हमारे भारतवर्ष में पाई जाती हैं, तो भारतवर्ष में यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से 7 प्रजातियां हैं जो यहां पर पाई जाती हैं, लेकिन आजकल 6 ही प्रजातियां इसमें मिलती हैं। पहला है अजोला कैरोलिनियाना, दूसरा है अजोला फेलिकुलाइट्स, तीसरा है आपका अजोला मैक्सिकाना, चौथा है अजोला माइक्रोफिला और अजोला पिन्नाटा पांचवा हुआ, अजोला रुब्रा छठा हुआ, और पहले कहीं कहीं हमें मिलता था अजोला निलोटिका, लेकिन आजकल अजोला निलोटिका मिल नहीं पा रहा है। तो ये 6 प्रजातियां हैं जो कि आपको पाई जाती हैं भारतवर्ष में।
1: जी जी, और डॉक्टर साहब इसके बाद एक सवाल और आता है कि अजोला का पोषक मान जानना चाहते हैं सभी लोग।
5: बिल्कुल, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अजोला की बात हम पशु पोषण के लिए इसलिए करते हैं कि इसमें यदि हम प्रोटीन की बात करें तो इसमें 25-35% प्रोटीन पाया जाता है।
1: जी।
5: यदि हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस भी लगभग 1% जो यहाँ टेस्ट किया गया CFTRI में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में, तो इसमें देखा गया कि 0.86% इसमें फास्फोरस पाया गया, यानी मोटे तौर पर 1% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। 4.5% तक इसमें पोटेशियम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप देखें तो इसमें विटामिन B12 भी काफी मात्रा में है, 1.14 मिलीग्राम 100 ग्राम में यदि आप देखते हैं तो 1.14 मिलीग्राम इसमें विटामिन B12 पाया जाता है। कैल्शियम भी 100 ग्राम में 67 मिलीग्राम पाया गया। इसके बाद मैग्नीशियम 4.3 मिलीग्राम, गंधक भी 2.7 मिलीग्राम, जस्ता 4.1 मिलीग्राम, लोहा ये 7.3 मिलीग्राम, तांबा 0.9 मिलीग्राम। तो कहने का मतलब यह है इसके अतिरिक्त इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है, और इसमें रेशे की बात करें तो रेशा भी इसमें आपको जो है वो 13-14% इसमें रेशा यानी शुष्क भार आधारित यदि हम बात करते हैं तो रेशा भी पाया जाता है। तो इसीलिए चूंकि इससे प्रोटीन काफी ज्यादा है तो यहां पर विदेशों में इसको मानव आहार में भी यूज करने की बात क्या है।

0: तो ये कुछ फ़ायदे हैं और पोषक मान जो डॉक्टर साहब ने बताया आपको पशुपालक भाइयों। और इसके बाद अगर डॉक्टर साहब पशुपालन के लिए अजोला का उत्पन्न करना चाहते हैं, पैदा करना चाहते हैं अजोला को, तो कैसे करेंगे?
1: अब देखिए, अजोला को किसान खुद पैदा करता है। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो किसान खुद पैदा करके उसका प्रयोग कर सकता है। अब पहली बात हम आपको बताएं कि यदि आप पैदा करना चाहते हैं तो लगभग 10-11 मीटर चौड़ा गड्ढा खोद लीजिए, और उसकी चौड़ा नहीं लंबा, 10-11 मीटर लंबा, और चौड़ाई इसकी 5 फीट के आसपास रखिए, और गहराई आप 1.5 फीट इसमें रख सकते हैं। अब क्या है कि इस गड्ढे को आपने बना लिया, तो चूंकि इसमें पानी में पैदा होता है तो पानी डालेंगे तो पानी रिस जाएगा, इसलिए नीचे आप प्लास्टिक बिछा दीजिए। अब प्लास्टिक बिछा के इसके ऊपर 3-4 इंच उपजाऊ मिट्टी की परत बना दीजिए। अब इसमें जब मिट्टी की परत आपने बना दिया, उसके बाद अब क्या है कि इसके ऊपर लगभग 3-4 इंच ये सेलोफंड है। सेलोफंड कहने का मतलब कि कम पानी रहेगा, बहुत गहरा पानी रहेगा वहां पर ये अजोला नहीं चलेगा, तो आप वहां पर 3-4 इंच पानी मेंटेन कीजिए। और 3-4 इंच पानी मेंटेन करने के बाद उसके बाद आपको करना ये है कि 5-6 किलोग्राम जो गोबर है, जो 4-5 दिन 6 दिन पुराना गोबर है, उसको लगभग 10-15 लीटर पानी में घोल लीजिए, और पानी में घोल करके वहां पर जो बालू चालने वाली जाली है उसी से छान करके उसमें आप मिला दीजिए। ये मिला देने के बाद, लेकिन बहुत जगह पर यह भी होता है जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है वहां पर कीड़े की समस्या होती है, तो आप नहीं भी गोबर डालना चाहे, या पशु भी खाने में थोड़ी सी दिक्कत करता है, तो बिना गोबर डाले भी आप पैदा कर सकते हैं। और ऊपर में जो झाग है उसको एक चलनी से उसको छान करके इस झाग को हटा दीजिए, उसके बाद आप इसमें 1 किलोग्राम लगभग अजोला एक गड्ढे में डाल दीजिए। अब क्या होगा कि पानी का लेवल आपको हर समय मेंटेन करना है, 3-4 इंच पानी हर समय मेंटेन रहे, इसके लिए आपको बीच बीच में पानी डालने की जरूरत पड़ेगी। ये कर देने के बाद अब क्या है कि इसमें ये बढ़वार होता रहेगा। आप तेज बढ़वार चाहते हैं तो थोड़ा फॉस्फोरस, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है, वो 2-2.5 ग्राम प्रत्येक हफ्ता 10 दिन के अंतराल पर 2-2.5 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसमें आप सिंगल सुपर फॉस्फेट मिला दीजिए, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पशु पोषण के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें एक चीज है कि यदि आप 10 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट ले लीजिए और उसमें लगभग ये जो है 1.5 किलोग्राम ये जो आपका म्यूरेट ऑफ पोटास आता है, सॉरी मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट को मिला दीजिए, और उसमें 0.5 किलो या 1 पाव उसमें आप म्यूरेट ऑफ पोटास को मिला लीजिए। अब पशु को जो दिया जाता है मिनरल मिक्सचर, वो भी थोड़ा सा आप उसमें मिला करके, और उसके बाद उसमें से 2-2.5 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे दीजिए तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि उसका अवशोषण पौधा ये करेगा, अजोला करेगा, तो जो जानवर को मिलेगा वह ज़्यादा पोषण वाला अजोला मिलेगा, तो उससे उसका स्वास्थ्य और ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस ढंग से आप इसका प्रयोग कीजिए। अब ये जो है क्या कहते हैं, जब पैदा हो गया तो पैदा हो जाने के बाद उसको आप आराम से छान सकते हैं। देखिए, चलनी जो लीजिएगा लोहे की चलनी नहीं लीजिएगा, तांबे की या पीतल की चलनी लीजिए, क्योंकि लोहा वाला बार बार जंग खा जाएगा, तो उसी चलनी से आप चाल लीजिए, और चाल करके उसके बाद उसको मतलब छान लीजिए, कहने का मतलब छान करके इसको साफ पानी में 2-3 बार आप इसको धो करके, और उसके बाद जो कुछ भी इसे आहार देते हैं उस आहार में मिला करके इसको दे दीजिए। ये है तरीका आपको इसको पैदा करने का।
0: जी डॉक्टर साहब, अब इसके उत्तम बढ़वार के लिए जो अपेक्षित परिस्थितियां हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे।
1: अब देखिए, एक चीज है कि ये बड़ा ही सेंसिटिव क्रॉप है, टेम्परेचर सेंसिटिव क्रॉप है। यदि बहुत ठंडक है उस समय भी ये लाल हो जाएगा, पिगमेंटेशन हो जाएगा, एंथोसिन पिगमेंट इसमें आ जाता है, तो न इसको बहुत ठंडक चाहिए, यानी 3-4-5 डिग्री टेम्परेचर यदि है तो उस समय आपका बढ़वार नहीं हो पाएगा, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40-45 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर है उस समय भी इसके बढ़वार में दिक्कत आती है। तो टेम्परेचर इसका यदि 25 डिग्री के आसपास है, 25-30 डिग्री टेम्परेचर, वहाँ पर इसका बढ़वार बढ़िया होता है। और यह है कि हमने पानी का तो स्तर बता ही दिया कि 5-10 सेंटीमीटर 3-4 इंच पानी जो है वो हर समय मेंटेन रहे, यह देखने की बात है। साथ ही साथ इसको जो है यदि छनी हुई धूप दी जाए यानी 60% 70% यदि आप छनी हुई धूप दें, यानी आप सेडनेट बना लीजिए, जहां 60% जाली वाला जो सेडनेट है उससे ढक करके यदि आप बनाते हैं तो उसमें अजोला का बढ़वार ज़्यादा बढ़िया होगा। तो आप इस ढंग की परिस्थितियां इसको देते हैं, और मिट्टी भी जो प्रयोग कर रहे हैं, यदि आप न्यूट्रल पीएच वाला आपका है, यानी उदासीन पीएच मान वाला यदि आपकी मिट्टी है उसमें यदि आप दीजिए तो उसमें बढ़वार ज़्यादा बढ़िया होगा। तो इस ढंग की चीज़ें यदि आप दे रहे हैं तो उसमें आपका अजोला तेज़ी से बढ़ेगा।

0: ये फायदा होगा
1: जी। तो ये पशुओं को हम कैसे खिला सकते हैं और इसके फायदे क्या होंगे?
0: अब जैसे हमने अभी बताया था कि अजोला आपने पैदा कर लिया, अब अजोला पैदा कर लिया उसको क्योंकि थोड़ा सा स्मेल, यदि खास करके गोबर डाले हैं तो थोड़ा सा स्मेल रहेगा, तो इसको क्या करना है, साफ पानी आप ले लीजिए और साफ पानी में आप उसको धो दीजिए 3 बार 4 बार या 2 बार, कम से कम 2-3 बार तो जरूर धोएं। वो धो करके उसके बाद आप जानवर को दीजिए 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम, क्योंकि ये हम लोगों ने काम करके देखा है कि यदि हम 1 किलो सुबह 1 किलो शाम देते हैं तो 8 से लेकर 15.6% तक दुग्ध उत्पादन बढ़ जाता है। तो यह यदि आप करते हैं तो यह आपको निश्चित रूप में जो दुग्ध उत्पादन है वो दुग्ध उत्पादन आपका बढ़ेगा। हाँ, प्रोटीन फैट SNF ये नहीं बहुत बढ़ता है, क्योंकि जो प्रोटीन फैट SNF है वह ब्रीड का कैरेक्टर होता है, लेकिन टोटल यदि प्रोडक्शन देखिएगा तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है। तो इसीलिए आप इसको जो है क्या कहते हैं, इस ढंग से यदि करते हैं तो आपको जो दुग्ध उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन में काफी वृद्धि होती है, तो वह आपको सुबह में और शाम में खिलाना है, ये इसका तरीका है। तो फायदा तो मैंने बताया है कि दुग्ध उत्पादन में आपकी वृद्धि हो रही है, तो सबसे बड़ा फायदा यही होता है
1: जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष जानकारी के लिए, हमारे श्रोता जरूर लाभान्वित होंगे इस जानकारी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से इसी कार्यक्रम और इसी फ्रिक्वेंसी पर हाजिर होंगी मैं, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर हमारा ये खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम, और आप सुनते हैं इसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन पर हर रोज। और हर रोज हम आपके लिए एक नए विषय के साथ हाजिर होते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत देश को, जी हाँ, मसालों का खजाना भी कहा जाता है प्राचीन काल से ही। और मसालों की बात करें और मेथी की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेथी की खेती के बारे में आज हम जानेंगे, बहुत ही ये नई जानकारी आप सभी के लिए आज होंगी, और शुरू से लेकर अंत तक जो वैज्ञानिक तरीके से आप इसकी खेती कैसे कर सकते हैं, कौन से उन्नत प्रभेद आपको अपनाने चाहिए, और खेत की तैयारी आप कैसे करें, खाद और उर्वरक किसमें कितना देना होगा आपको, कितने बीज की आवश्यकता होगी, सिंचाई के बारे में और बीज उत्पादन के बारे में, साथ ही जो कीट और रोग व्याधि हैं, यानी कि पूरी की पूरी खेती की जानकारी आपको आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में मिलेंगी। हमारे साथ आज इस विषय को लेकर हैं डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह, और सर वैज्ञानिक हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। तो सर आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार मैम।
1: सर सबसे पहले तो हम अगर अपने दैनिक जीवन की बात करें, और मसालों का उपयोग तो हमारे दैनिक जीवन में सब्जियों को बनाने में या फिर अन्य जो रेसिपीज हैं उसे बनाने में यूज होता ही है, तो थोड़ा इसके उपयोग के बारे में, इसके महत्व के बारे में बताएं।
2: किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि किसान भाइयों और बहनों जानते हैं कि मेथी महत्वपूर्ण पत्ती वाली सब्जी के साथ साथ बीज मसाले फसलों की फसल है। मेथी को कोमल पत्तियाँ तनों के साथ सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है, और यह मेथी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है देसी मेथी और एक होता है कसूरी मेथी। देसी मेथी का जनरली यूज ज़्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि कसूरी मेथी का ज़्यादातर योग उपयोग सुगंधित पदार्थों को बनाने और उसका यूज करने में ही किया जाता है। देसी मेथी के सूखे दाने का उपयोग मसाला, सब्जियों के छौंकने, अचार तथा औषधियों में किया जाता है। मेथी का सेवन मधुमेह से ग्रसित रोगी के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। जैसा कि किसान भाई जानते होंगे कि जब मधुमेह होता है तो उस मेथी का छोटा एक मुट्ठा दाना लेकर के एक गिलास पानी में डाल करके सुबह उसका सेवन करने से मधुमेह कम होता है, इसलिए मेथी का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में ज़्यादा उपयोगी है। मेथी की खेती मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कुछ हद तक हमारे बिहार में भी किया जाता है। मेथी दो भागों में बांटा गया है, सामान्य मेथी और कसूरी मेथी। सामान्य मेथी का जो फल की साइज होती है वो 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है, और कसूरी मेथी का जो फल का साइज होता है वो होता है 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसका उपयोग ज़्यादातर हम मसालों में ही करते हैं
1: जी। अगर हम जलवायु और मिट्टी की बात करें तो किस प्रकार की जलवायु और किस प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती हम कर सकते हैं?
2: जलवायु की बात करें तो मेथी ठंडी जलवायु की फसल है तथा उसकी खेती रबी के मौसम में की जाती है। इसकी प्रारंभिक बढ़वार के लिए मध्य आर्द्र जलवायु तथा कम तापमान उपयुक्त होती है, विशेषकर फूल बनते समय। अगर अवकाश बादलों में आच्छादित हो तथा वायु में नमी बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में रोग एवं कीट के प्रकोप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसकी फसल पहले से पति काफ़ी सहनशील होता है जी। और मिट्टी की बात करें तो मेथी हर प्रकार के मिट्टी में उगाई जाती है, परंतु अच्छी उपज के लिए दोमट बलुई मिट्टी मृदा जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो वह उपयोगी होता है।
1: अगर मेथी के उन्नत प्रभेदों की हम बात करें तो जो उचित प्रभेद है उसका चुनाव हमारे किसान भाई करना चाहेंगे तो कौन कौन से उन्नत प्रभेद हो सकते हैं जिससे कि वो अधिक लाभ उठा सके इसकी खेती करके?
2: मेथी के उन्नत प्रभेद तो बहुत सारे हैं मैम। कुछ ऐसे उन्नत प्रभेद हैं जो हमारे विश्वविद्यालय से निकाले गए हैं, अलग अलग विश्वविद्यालय से निकाले गए हैं। उसमें से पहला है राजेंद्र क्रांति, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित ढोली केंद्र से निकाला गया है। इसकी फसल को 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है तथा इसका बीज उपज 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। दूसरी वैरायटी की बात करें तो नरेंद्र मेथी 19, जो नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या से निकाली गई है। इसका बुआई के 144 दिन में यह पककर तैयार हो जाता है, जिसका उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। इसमें एक बात करें तो कसूरी मेथी जो IRI नई दिल्ली से निकाली गई है, इसका उपज 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। यह बुआई के 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। और एक और वैरायटी है जो काफ़ी पॉपुलर और अच्छी वैरायटी है, पूसा अर्ली बंच, ये भी IRI नई दिल्ली से निकाली गई है। यह 120 से 125 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इसका उपज 14 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है
1: जी। मेथी की खेती के लिए खेत की तैयारी, खाद और उर्वरक की मात्रा और बुआई के समय के बारे में भी बताएं।
2: खेत की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा शेष 2-3 जुताई कल्टीवेटर से करते हैं। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं ताकि खेत समतल एवं मिट्टी भुरभुरी हो जाए। ठीक ढंग से निकाई गुड़ाई तथा सिंचाई के लिए सुविधाजनक आकार का 5 से 6 मीटर लंबी तथा 2 से 2.5 मीटर चौड़ी क्यारी बना ले, जिससे किसान भाइयों को उसके प्रोडक्शन लेने में आसानी होगी। और खाद उर्वरक की बात करें तो कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद 25 टन प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 50 किग्रा, फास्फोरस 40 किग्रा तथा पोटास 30 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। और इसमें मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि नाइट्रोजन की पूरी मात्रा खेत तैयार करते समय नहीं देना चाहिए। उसकी कुछ मात्रा, जैसे नाइट्रोजन की शेष मात्रा 2 किस्तों में बुआई के 30 से 60 दिनों के बाद देनी चाहिए। हरी पत्ती के लिए उगाई जाने वाली फसल में हर कटाई के बाद नाइट्रोजन देना चाहिए
1: जी। कितने बीज की आवश्यकता होगी इसमें और बीज बोने का तरीका और सिंचाई के बारे में जानकारी दें।
2: बुआई का समय उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में मेथी बुआई लगभग मध्य सितंबर से मध्य नवंबर के बीच करते हैं जी। पत्तियों के लिए इसमें फरवरी माह में भी बुआई की जा सकती है। इसका बीज दर है, सामान्य मेथी का बीज दर 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। असामान्य मेथी जो इसका बीज दर, जिस जो बीज के लिए हम उपयोग करते हैं, जिसको कहते हैं हम सीड प्रोडक्शन के लिए हम जो यूज करते हैं, उसका बीज दर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और कसूरी मेथी की बात करें तो पत्ती के लिए जो साग बनाने के लिए हम करते हैं उसमें 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है। और इसमें बीज बोने का तरीका की आप बात कर रही थी मैम, तो हरी पत्तियों के लिए मेथी की बुआई तैयार क्यारियों में छिटकवा विधि से करते हैं तथा मेथी के जब सीड प्रोडक्शन के लिए हम मेथी की बुआई करते हैं तो उसको कतार में पक्ती से पक्ती में करते हैं। कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं। बीज 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए। मेथी के पौधों की वृद्धि एक बीज की अधिकतम उपज के लिए राइजोबियम FL 18 तथा FL 14 द्वारा बुआई के पूर्व बीज और मृदा उपचार के उपयोग में 15-20% की वृद्धि पाई जा सकती है। और यहाँ इसकी सिंचाई के बारे में बात करें तो मेथी के अंकुरण के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। अगर खेत में नमी कम हो तो खेत की हल्की सिंचाई करके बीज की बुआई करें ताकि खेत में नमी बनी रहे
1: जी। और अब बारी आती है निकाई गुड़ाई, फसल की कटाई और बीज उत्पादन के बारे में जानकारी।
2: बीज फसल के लिए पौधे के विरलीकरण बुआई के 25 से 30 दिनों के अंदर करते हैं। बुआई के 30 से 60 दिनों पर दो निकाई गुड़ाई अवश्य करनी चाहिए। फसल की कटाई, साधारण मेथी की पहली कटाई बुआई के लगभग 4 सप्ताह बाद की जानी चाहिए। उसके बाद 15 दिनों के अंतराल पर 4 से 5 कटाई करें। अगर बीज लेनी हो तो 2 से 3 कटाई के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग उस पत्ती के साथ साथ बाद में सीड प्रोडक्शन भी करना चाहते हैं। जब आप सीड प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो बीज 2 से 3 कटाई करने के बाद उसको छोड़ देना चाहिए ताकि उसका हम सीड भी ले सकें।
1: और अंत में इसमें लगने वाले जो कीट हैं और रोगों के बारे में जानना चाहेंगे और उन रोगों को का रोकथाम हम कैसे करेंगे उनके बारे में बताएं।
2: मेथी में रोग और रोकथाम जो है मैम 2 से 3 हैं। जैसे कि हमको पता है कि चुरड़िर आसिता, मृदरूप आसिता और एक है मूल गलन। इस मेथी में मूल गलन गंभीर बीमारी है जिसमें जड़ों के पास सड़न तथा बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद पौधा पीला होकर सूख जाता है। इससे हमें इस बीमारी से सुरक्षा हेतु कार्बेंडाजीम दवा का 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचारित बुआई करें। ये दूसरा है चुरड़िल आसिता। इस रोग का लक्षण ये है कि रोग के प्रारंभ में पत्तियों पर सफ़ेद चुरड़िल पुंज दिखाई देते हैं और उग्र रूप होने पर पूरे पौधों के ऊपर ये फैल जाते हैं। इससे किसान भाइयों को बचने के लिए इसमें दवा के लिए एक कैराथान दवा 0.1% या सल्फेक्ट 0.2% घोल कर छिड़काव करें। और इसमें कीट की बात करें तो 2 है, एक माहो दूसरा दीमक। फर्स्ट जो माहो है इसके कीट फूल एवं पत्तियों के रस चूसकर पौधों को हानि पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाफ्लोर कीटनाशी दवा का 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर 10 दिनों के अंतर पर छिड़काव करें। दूसरा है दीमक, यह पौधों की जड़ों को काटकर फसल को हानि पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए खेत की जुताई के समय क्लोरिडा पाइराफास कीटनाशी दवा का 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर पूरे खेत में इसका छिड़काव करें।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मेथी की अवैज्ञानिक खेती, इसके बारे में आपने पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त की आज के इस वार्ता से। आशा करते हैं आपको आज का यह वार्ता जरूर पसंद आया होगा। अगले दिन मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।
3: 24 घंटे

0: कि निर्धारित पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, वैसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार पशुओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि संतुलित आहार पशुओं को सिर्फ दूध उत्पादन की क्षमता को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि पशु स्वस्थ भी रहता है, इसका शारीरिक बढ़वार भी मेंटेन रहता है। ज़्यादातर पशुपालक अपने पशुओं को भरपूर पोषण नहीं देते हैं, ऐसी स्थिति में शरीर का विकास तो रुकता ही है पशु का, उसका मिल्क प्रोडक्शन भी पूरा नहीं हो पाता है, उसके शरीर की प्रतिरोध क्षमता भी नहीं बढ़ पाती है और धीरे धीरे पशु बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए पशुओं के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसको संतुलित आहार मिलना चाहिए, तभी उसका प्रोडक्शन मेंटेन रहेगा।
1: जी जी, तो ये संतुलित आहार क्या है आपने जाना श्रोताओं। और डॉक्टर साहब, ये जो पशुओं का आहार है, ये वर्गीकरण यानी पशुओं के आहार वर्गीकरण क्या होता है, और जो अलग अलग पशु हैं, पशु वर्ग हैं, उनके लिए अलग अलग आहार प्रणाली भी है, तो ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी।
0: हाँ बिल्कुल, जैसे आप पूछेंगे कि एक गाय कितना खाना खाएगी, तो ये यही सब चीज़ समझने के लिए हम इसके आहार का वर्गीकरण कहते हैं, कि इसकी आवश्यकता के अनुसार इसको जो हम अलग अलग राशन तैयार करते हैं, अलग अलग आहार, उसको हम वर्गीकरण में समझते हैं। सबसे पहले आता है मेंटेनेंस राशन। अगर कोई पशु ना दूध देता हो, ना उसका शरीर बढ़ रहा हो, ना वो कोई काम कर रहा हो, तो उसके शरीर के नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए जो खाने की मात्रा की आवश्यकता होती है, उसको मेंटेनेंस राशन कहते हैं। इसमें शरीर ना बढ़ रहा है ना कमज़ोर हो रहा है, जैसी स्थिति है वैसी संतुलित अवस्था में बनी रहे, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। एक पशु को मिलने वाला वह आहार की आवश्यकता है जिसमें उसका शरीर का फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो और वो शरीर को मेंटेन रख पाए। इसके अलावा आता है, जैसे कोई दूध दे रही है पशु, तो निश्चित रूप से वो दूध हर रोज़ उसके शरीर से न्यूट्रिएंट निकलता है। गाय का दूध खा के हम मजबूत हो जाएंगे, तो क्या गाय दूध दे रही है तो वो कमज़ोर नहीं हो जाएगी अगर उसकी पोषण की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाए तो? तो निश्चित रूप से जो दूध, जो मेंटेनेंस राशन है, उसके अतिरिक्त जो हम उसको दूध उत्पादन के लिए देंगे राशन, जो आहार देंगे, उसको प्रोडक्शन राशन या लैक्टेशन राशन में रखते हैं। और कभी कभी पशु प्रेग्नेंट होती है, तो निश्चित रूप से उसके शरीर में एक और जीव है, फीटस जो है, वो बच्चा बढ़ रहा है, तो एक तो गाय गर्भवती है, दूध भी दे रही है, तो एक तो निकल रहा है न्यूट्रिएंट्स मेमोरी ग्लैंड से, दूध से हमारे प्लेट में आ रहा है, और दूसरा जो बच्चा पेट में बढ़ रहा है उसकी भी आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से जो गर्भवती गाय है उसको हम प्रेग्नेंट हो तो 1 से 1.5 किलो 2 किलो तक अलग से कंसंट्रेट राशन, मेंटेनेंस राशन की अतिरिक्त देते हैं, तो वो उसका रिक्वायरमेंट पूरा करता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी राशन कहते हैं।
1: जी।
0: और कुछ पशु आप काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, गांव में किसान खेत जोतते हैं, बैलगाड़ी चलाते हैं, तो वैसे एनिमल को वर्क एनिमल कहते हैं, और उसको वर्क राशन एक तरह से उसके काम के अनुसार, जितना आप काम लेते हैं उसके अनुसार उसको भोजन कंसंट्रेट की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। और एक कैटेगरी आती है उसको कहते हैं सिक एनिमल राशन। सिक यदि पशु बीमार है, हम लोग में ही अगर पेट खराब हो जाए तो हम वो सारा चीज़ नहीं खा पाते हैं जो डेली खाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है अधिक पाचनशील खाना हम दें, ऐसा आहार जो शीघ्र ही पाचन हो जाए, शरीर में आसानी से पच जाए, तो बीमार पशुओं के लिए अलग से राशन तैयार करने की ज़रूरत होती है।
1: जी, तो ये थे जो पशुओं के आहार वर्गीकरण के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि कैसे कैसे आहार का वर्गीकरण किया गया है, कौन कौन से बेसिस पर। और डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि जो दुधारू पशु हैं, ऐसे तो जो गर्भवती पशुएं होती हैं उनके बाद भी हम दूध लेते हैं उनसे, तो उनके न्यूट्रिएंट्स निकल ही जाते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी बात करते हैं जो आमतौर पर जो हमारे पशु हैं उनमें अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो क्या कुछ बीमारी हो सकते हैं?
0: निश्चित रूप से जैसे हम इंसान खाना खाते हैं, यदि खाने में बहुत पोषक तत्व की कमी होती है तो वो बीमारी लगभग पशुओं में भी बहुत बीमारियां होती है। जैसे कि कैल्शियम, आप दूध लेते हैं पशु से तो दूध में कैल्शियम निकलता है, तो जो बहुत अधिक दूध देने वाली गाय है उसमें अक्सर मिल्क फीवर जैसी बीमारी देखी जाती है।
1: अच्छा।
0: बच्चा देने के बाद जब आप उससे लगातार दूध ले रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें कैल्शियम की कमी होते जाती है। ऐसी स्थिति में पशुओं का खाना पीना बंद हो जाता है, वो बैठ जाती है, और एक तरह से वो एक बीमारी की अवस्था है, तो आपको उसको कैल्शियम अलग से इंट्राभीनस या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देना पड़ता है, इसलिए ये मिल्क फीवर जैसी बीमारी होती है,

0: इसके अलावा है, यदि उसको फास्फोरस की कमी हो जाए, तो आप सुने होंगे गांव में किसान कहते हैं कि पशु मिट्टी खाती है या ईटा खाने लगी है, खपड़ा खाने लगी है, तो वो उसकी बुरी आदत भाइसेस नहीं है, वो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी को बताता है, जो उसे आपके दिया हुआ खाना से नहीं मिलता है, वो मिट्टी से सीधा लेकर के पूरा करना चाहता है। तो अगर पशु मिट्टी खा रहा हो तो उसमें फास्फोरस की कमी होती है, और इस बीमारी को पाइका कहते हैं। और जनरली पशुओं में इनफर्टिलिटी जैसी बांझपन की समस्या का भी ये कारण होता है, जो फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो इसके बाद है, यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी हो, एनर्जी की कमी हो, तो उस केस में हम कीटोसिस देखते हैं। एनिमल के मुंह से मीठा स्मेल आ रहा हो और वो बीमार पड़ा हुआ हो, निश्चित रूप से ऐसी स्थिति को कीटोसिस कहते हैं। और खास करके शीप गोट में एक बीमारी होती है, उसको प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया कहते हैं। एनर्जी की कमी हो जाए और एनिमल प्रेग्नेंट हो, तो उसमें एक कंडीशन, बॉडी कंडीशन होता है, उसको कहते हैं प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। इसके बाद एक मैग्नीशियम है, उसकी कमी से अगर खाने में मैग्नीशियम की कमी हो तो ग्रास टिटानी नाम की बीमारी होती है। आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया होता है। आयोडीन की कमी हो जाए तो ग्वाइटर होता है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी होता है। इसी तरह हम देखते हैं विटामिन ए का कमी हो तो नाइट ब्लाइंड जैसी बीमारियां होती है। तो सेलेनियम, विटामिन ई, ये सारी चीज़ न्यूट्रिएंट में निश्चित रूप से होना चाहिए, ताकि उसके डेफिशिएंसी डिजीज़ को दूर किया जा सके।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं कि क्या कमी से, पोषक तत्वों की कमी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारे ग्रामीण किसान हैं, वो अपने मवेशियों के लिए घर पर ही संतुलित पशु आहार तैयार करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे?
0: निश्चित रूप से हर किसान को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि उनके पास जो दुधारू पशु है, जो उनके पास बछड़े हैं, गाय है, बाछी है, सबके लिए उनको खाना तैयार करने की विधि आनी चाहिए कि कैसे हम खाना तैयार करें। तो सामान्य जो उसका नियम है, सबसे पहले कि 2.5 से 3% बॉडी वेट का उसको ड्राई मैटर, शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। जैसे 100 kg का बाछी है तो उसके लिए हम कितना खाना की ज़रूरत होती है, तो निश्चित रूप से 2.5 से 3% बॉडी वेट का है, मतलब 2.5 से 3 kg, ये शुष्क पदार्थ है। ये ऐसा खाना है जिसमें कि बिल्कुल पानी की मात्रा नहीं है। अब ये टोटल ड्राई मैटर में 1/3 कंसनट्रेट देते हैं, अनाज दाना मिश्रण देते हैं, और 2/3, 2/3 हिस्सा इसका हम चारा देते हैं। चारा में भी हम 1/3 देते हैं हरा चारा, और 2/3 देते हैं सूखा चारा। और हरा चारा जो देते हैं उसमें भी 1/3 देते हैं लेगुमिनस और 2/3 देते हैं नॉन लेगुमिनस। तो इस तरह से हम उसका बैलेंस राशन घर पर बनाना सीख जाएंगे, हमारे लोकल अवेलेबल मटेरियल से। तो हम देखते हैं मक्का हो, चोकर हो, गेहूं हो, खल्ली हो, खनिज मिश्रण हो, ये सब को मिला करके हम प्रतिदिन पशु के लिए अपने स्तर पर खाना तैयार कर सकते हैं। और बछड़े या बछड़ियों के लिए कम से कम 1 किलो से लेकर के 1.5-2 किलो तक प्रतिदिन उसके बढ़ते उम्र के अनुसार उसके आहार में हम दाना डाल सकते हैं। ऐसा बनाना सीखिए कि अगर 100 किलो अनाज का दाना मिश्रण तैयार कर रहे हैं तो इसमें मक्का, जौ, गेहूं, बाजरा, ये सब की मात्रा लगभग 50% हो, और एक अनाज अगर डालना हो तो वो आप 35%, कभी कभी मक्का बहुत कम रेट पे मिलता है तो उसको ज़्यादा डाला जाता है, कभी गेहूं का ही दाम कम हो जाता है तो गेहूं को भी आप अधिक मात्रा में डाल सकते हैं। इसके बाद आता है कुछ प्रोटीन का सोर्स। प्रोटीन के सोर्स में हम जनरली खल्ली डालते हैं या दाल डालते हैं, तो ये कम से कम 25 से 30% हिस्सा होना चाहिए। और इसके बाद हम चोकर है, जो गेहूं का राइस ब्रान, व्हीट ब्रान, ये सब आता है, इसको भी 15 से 20% तक हम पशु के खाने में डाल सकते हैं। इसके बाद सबसे आवश्यक चीज़ है, उसमें मिनरल मिक्सर की मात्रा 2 से 3% तक देनी चाहिए, और 1% नमक की मात्रा ज़रूर होनी चाहिए। और जब गाय दूध दे रही है तो एक गाय के लिए प्रति 3 किलो दूध में वृद्धि के लिए हम 1 किलो अनाज डाल सकते हैं, और भैंस के लिए प्रति 2.5 किलो दूध में वृद्धि के लिए 1 किलो अनाज की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इस तरह हम पशु का खाना अपने घर पर तैयार कर सकते हैं।
1: जी, तो ये विधि हो गई संतुलित आहार आप कैसे बना सकते हैं पशुओं के लिए घर पर, और संतुलित आहार के फायदे के बारे में जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब।
0: बिल्कुल, जब आप अपनाएंगे संतुलित आहार पशुओं के लिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको एक सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि कम लागत पर स्थानीय रूप से उपलब्ध फीड संसाधनों का आप सही सही इस्तेमाल कर पाएंगे। होता क्या है, हमारे पास जब भूसा अधिक हो तो हम भूसा ही सिर्फ खिलाते हैं, दूसरा चीज़ नहीं खिलाते हैं, तो पशु का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। लेकिन भूसा में कुछ आप अनाज मिला करके, भूसा को पानी में भिंगा करके ऐसे खिलाएंगे तो निश्चित रूप से पशु को फ़ायदा होगा। इसके बाद है कि अधिक वसा और SNF की मात्रा को मेंटेन किया जा सकता है। जो दूध देते हैं पशु, उसमें दूध में वसा की मात्रा के अनुसार कभी कभी उसका दाम निर्धारित किया जाता है, तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद है आपके आय में वृद्धि होती है निश्चित रूप से। अगर आपका प्रोडक्शन अधिक होगा तो आपको आय अधिक होगा। और पशुओं में एक समस्या देखी जाती है अक्सर बांझपन की। पशु एक बच्चा देता है तो दूसरे बार उसको गर्म होना और उसको कंसीव कराना एक मुसीबत सी होती है। लेकिन अगर आप संतुलित आहार देते हैं, संतुलित आहार अपने पशुओं को खिलाते हैं, तो ये प्रजनन क्षमता में सुधार होता है और पशु में जो बांझपन की समस्या है उसको दूर करता है। इसके बाद है अंतर ब्याने की अवधि, अंतर ब्यांत अवधि, दो बच्चा देने के बीच की अवधि को यह कम करता है। पशुओं में सामान्य सुधार होता है, स्वास्थ्य का सुधार होता है और जो बछड़ा है, जो बाछी है नए, उसके शरीर में वृद्धि होती है, तेजी से उसका शरीर विकसित होता है।
1: जी, तो ये कुछ फ़ायदे हैं संतुलित आहार के पशुओं के लिए। और तो सभी श्रोताओं से मैं आग्रह करूँगी, आप अपने पशुओं को संतुलित आहार, पशु आहार ज़रूर दें, उनके अच्छी वृद्धि के लिए, उनके शरीर के अच्छे विकास के लिए, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। उन्नत कृषि कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच एक खास विषय को लेकर मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर AK झा सर हैं और आज का जो टॉपिक है, हमारा विषय है, वो है रबी फसलों की जैविक खेती। तो आज इससे संबंधित बहुत सारी बातें जानेंगे हम। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। जैविक खेती की हम बात कर रहे हैं तो क्यों ना सबसे पहले ये जैविक खेती होता क्या है उसके बारे में जान लें।
2: बिल्कुल सही। ऐसा है कि जैविक खेती का अभिप्राय होता है विषमुक्त खेती, यानी ऐसी खेती जिसमें है किसी तरह के ऐसे रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे पशु के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। एक्चुअली देखिए, हरित क्रांति के बाद हम उत्पादन निश्चित रूप से हमारा बढ़ा है, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे अन्य फसलें हैं, उसमें हमारा उत्पादन बढ़ा है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा रासायनिक उर्वरक है या कीटनाशी है या व्याधिनाशक रसायन है, इनका प्रयोग भी काफ़ी बढ़ा है और इसके चलते हुआ ये है कि हम बीमारियों का बड़ा ही प्रकोप बढ़ा है। यहाँ पर मैं बताऊँ कि कैंसर जैसी बीमारियाँ भी इन रसायनों के कारण होता है। यहाँ से पंजाब से एक ट्रेन चलती है, लोग उसको कैंसर ट्रेन कहते हैं क्योंकि वहां पर रसायनों का बहुत प्रयोग किया जाता है। तो रसायन के ज्यादा प्रयोग के कारण उसके जो हमारे खाद्यान्न हैं या यहां तक कह लें कि जो चारा है, जो जानवर हमारा खाता है, उसमें उसकी काफी मात्रा आ जाती है, काफी अंश आ जाता है और उसको जब हम खाते हैं तो कई तरह की बीमारियां, चाहे नस संबंधी बीमारी हो, मस्तिष्क संबंधी बीमारी हो, हृदय संबंधी हो, किडनी संबंधी हो, बहुत तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसीलिए आज एक बार पुनः लोगों को ध्यान इस बार आया है कि क्यों नहीं हम रसायन विहीन खेती करें और ऐसी चीजें खाएं जिससे कि हमें बीमार न होना पड़े। अब मैं बताऊं कि हमारे देश में तो ठीक है, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, हम उतना खर्चा नहीं कर पाते हैं जैविक के उत्पाद पर, लेकिन आज जो हमारे दूसरे देश हैं जहां पर पैसा है, वह चाहते हैं कि हमें काफी मिले। तो जो किसान हमारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकें उतने ही उत्पादन करके, तो वो यदि जैविक खेती की तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो अब मैं, आपका प्रश्न था कि जैविक खेती है क्या, तो हम इसको बड़ा संक्षेप में किसान की भाषा में ये कहें कि जो रसायन विहीन या विष विहीन खेती है, यानी हम उसमें पोषक तत्व का प्रबंधन भी करेंगे, तो ऐसे चीजों के माध्यम से करेंगे कि जिससे कि किसी तरह का उसको हानि ना पहुंचे। हम कीट का भी प्रबंधन करेंगे तो ऐसे ही चीजों के माध्यम से करेंगे जिससे हमें हानि ना पहुंचे। साथ ही साथ हम यदि कीट प्रबंधन भी करते हैं तो उसी ढंग से करेंगे। यदि हम खरपतवार नियंत्रण ही करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण भी चाहे मैनुअल करें चाहे ऐसे विधि से करेंगे जिससे कि उसका दुष्प्रभाव, उस रसायन का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं हो। क्योंकि आप जानती हैं आजकल खरपतवार नाश करने के लिए बहुत तरह के रसायन का प्रयोग होता है, कीट के नियंत्रण के लिए, व्याधि के नियंत्रण के लिए बहुत तरह के रसायन बाजार में उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उसके प्रयोग को रोकने की आवश्यकता है।
1: जी, तो अगर इसके वैश्विक बाजार की हम बात करें तो जैविक खेती का वैश्विक बाजार अभी कितना बड़ा है और आगे इसके बढ़ने की कितनी संभावना है?
2: बहुत समसामयिक आपने प्रश्न किया। ऐसा है, देखिए यदि वैश्विक बाजार की बात करें तो ये अभी लगभग 64 खरब रुपए का बाजार यहाँ पर है, वैश्विक बाजार। अच्छा। और उम्मीद ये की जाती है कि 2025 तक 164 खरब रुपए का बाजार हो जाएगा। अच्छा। यानी कि काफी स्कोप है कि हम अपने उत्पाद को बेच सकें और उससे हम पैसा कमा सकें। देखिए यदि आप सिंपल एक लौकी की ही बात ले लें, कद्दू की बात ले लें, तो लौकी कद्दू यदि आप सीधे रासायनिक विधि से पैदा करते हैं, यदि उसका 10 रुपया कीमत है, तो उसी को यदि आप जैविक विधि से उत्पादन करते हैं तो आप उसका 2 गुना 3 गुना यहां तक 10 गुने तक आप उसका फायदा कमा सकते हैं। लेकिन अब दो तरह से आप बेचते हैं, एक तो लोकल बाजार में बेचते हैं तो वहां पर उतना पैसा नहीं मिलता है, लेकिन यदि आप सर्टिफिकेशन करवा लिए हुए हैं कि आपको यह है कि हाँ भाई ये सर्टिफाइड है, जैसे एपडा या बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको इसका सर्टिफिकेशन करती है, तो आपको सर्टिफिकेशन यदि हो गया हुआ है तो उससे आप और ज्यादा कमाई प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप काफी ज्यादा इसका वैश्विक बाजार है। यदि हम 15-16 की बात करें तो हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो 2.63 लाख टन जैविक उत्पाद निर्यात किया गया और जिसकी कीमत लगभग 298 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। यानी कहने का मतलब यह है कि यह हम अभी ही इतना ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं। यदि

0: जीव होते हैं और ये लाभदायक सूक्ष्म जीव जब मिट्टी में जाते हैं तो अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा पौधों को
1: पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग
2: पोषण को हम अपने जीवन में हर एक प्रकार से उपयोग करते हैं, जैसे मसूर दाल, फल सब्जियां, साबुत अनाज इत्यादि।
1: जी, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति सही से पोषण आहार ना ले तो उन्हें क्या क्या समस्याएं हो सकती है?
2: अगर सही से पोषण आहार ना ले तो उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे शरीर में थकान, कमजोरी, खून की कमी, डायबिटीज़ इत्यादियों का संक्रमण बढ़ जाता है।
1: और भी कोई समस्या हो सकती है अगर सही से पोषण
2: हो सकती है? रतौंधी हो सकती है, बौनापन हो सकता है, बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं।
1: जी, महिलाओं को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो महिलाओं को क्या क्या समस्याएं हो सकती है?
2: महिलाओं को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो महिलाओं में खून की कमी, एनीमिया, थकान, कमजोरी, बार बार चक्कर आना, ये सब लक्षण पाए जाते हैं।
1: अगर बच्चों को सही से पोषण आहार ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती है?
2: बच्चे को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो बहुत सारी समस्याएं हैं सर उसके साथ। शारीरिक विकास में वृद्धि नहीं होगी, बच्चे बौनेपन के होंगे, खून की कमी, रतौंधी बीमारी, ये सब बहुत सारी संक्रमण और रोग प्रतिरोध की क्षमता घट जाती है सर।
1: जी, तो अगर आदमी को सही से पोषण आहार लेना है तो क्या व्यक्ति अपनी क्यारी, अपनी थाली का प्रयोग कर सकता है?
2: हाँ, बिल्कुल कर सकता है।
1: तो अपनी क्यारी, अपनी थाली के बारे में आप कुछ जानकारियाँ दे सकते हैं जो कि व्यक्ति या समुदाय सही से क्या कहता है अपना पोषण ग्रहण कर सके और वह स्वस्थ रह सके?
2: देखिए, अपनी क्यारी अपनी थाली ये बिहार राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया एक सरकारी सामुदायिक अभियान है जिसमें बहुत से लोग जुड़े हुए भी हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कुपोषण दूर करना। और यह कार्यक्रम अधिकतर आंगनवाड़ी केंद्रों पर चलाए जा रहे हैं ऑलरेडी। इस योजना के तहत स्कूलों में या घर के आसपास आंगनवाड़ी के जितने भी अथी हैं वो सब इनकी जानकारियां दे रहे हैं। और इनको दूर करने के लिए सबसे अच्छा है बच्चों को फल, मतलब मनुष्यों को फल सब्जियां, हरेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज ज़्यादा कोशिश करें ये सब खाने की, जिससे लोग तंदुरुस्त रह सकें।
1: जी, तो आज आपने देखा कि प्रशांत कुमार ने पोषण के बारे में और साथ साथ अपनी क्यारी अपनी थाली के बारे में भी अच्छी जानकारियां दी। तो धन्यवाद प्रशांत जी, आपने 90.8 FM ग्रीन को अपना कीमती टाइम और अपना कीमती ज्ञान को प्रदान किया। धन्यवाद।
3: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
4: नमस्कार, मैं अजय कुमार, रेडियो प्रतिनिधि 90.8 FM ग्रीन से। मैं आज इब्राहिमपुर की ओर हूं और इब्राहिमपुर में व्यक्तियों को पोषण से संबंधित क्या क्या जानकारियां हैं ये जानकारी एकत्रित करने का कोशिश कर रहा हूं। तो मैं आज एक भैया जी से पोषण से संबंधित जानकारी लेने की कोशिश करता हूं। तो भैया जी, आप पोषण के बारे में?
5: पोषण वह है जिसके द्वारा भोजन ग्रहण कर अपना लोग अपना पाचन, अपना शारीरिक वृद्धि और ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, जिससे आदमी को काम करने में मदद मिले।
1: तो पोषण को हम किस किस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं?
5: पोषण को हम बहुत सारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हम फल, हरी सब्जी, फिर साबुत अनाज, प्रोटीन, वसा, इसे सब खाकर हम उसे हम अपने उपयोग कर सकते हैं उस सबका।
1: अच्छा, मान लिया जाए कोई व्यक्ति कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो व्यक्ति दवाई वगैरह से भी अपना पोषण को प्राप्त करता है। अगर व्यक्ति मान लिया जाए पोषण को दवाई के अलावा वो किन माध्यम से प्राप्त कर सकते?
5: पोषण

0: दवाई के माध्यम दवाई के अलावा मनुष्य को अपना फल वल फल खाए, सब्जी खाए, और फिर आपका दाल दूध पिए, और फिर उसके बाद वो प्रतिदिन सुबह सुबह योगा करे, तो उससे उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, उसे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: अच्छा भैया जी, आप ये बताएं कि मान लिया जाए अगर व्यक्ति को सही से पोषण ना मिले, आम व्यक्ति को, मान लिया जाए जो भी हमारे ग्रामीण हैं, अगर ग्रामीणों को या फिर व्यक्तियों को सही से पोषण ना मिले तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है?
0: हृदय रोग हो सकता है, थकान हो सकती है, कमजोरी हो सकता है, कुपोषित हो सकता है वो, जैसे इसी तरह के कई भी कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है उसके शरीर में।
1: जी, मान लिया जब महिलाओं को अगर सही से पोषा आहार ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती है?
0: वो उन्हें खून की कमी हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, महिलाओं को उन्हें खून की कमजोरी हो सकती है, थकान हो सकता है, बराबर संक्रमित हो सकती है वो, हार्मोनल उसका असंतुष्ट हो सकता है, जिससे वो जिससे गर्भाशय या माँ दोनों बच्चों का उस पर दोनों का बुरा असर पड़ेगा, उनके अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके अंदर जो पल रहे बच्चे हैं उन पर भी उनका असर पड़ेगा।
1: जी, मान लिया जाए इसी तरह से अगर मान लिया जाए पोषण आहार सही से बच्चों को ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती हैं?
0: बच्चों को ना मिले तो फिर उसे कई प्रकार के रोग, बौनापन, जैसे मानसिक रोग हो सकते हैं उन्हें, और उन्हें कठिनाइयाँ बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत सारे कुपोषित हो सकते हैं रोग, जैसे एनीमिया, रतौंधी, सब ये सब, जैसे ये सब बढ़ सकते हैं उन लोगों।
1: तो अगर मान लिया जाए ये सब तो आपको पता है कि मान लिया जाए ऐसा ऐसा होता है, अगर बच्चों को सही से पोषण आहार ना मिले, स्त्रियों को ना मिले या फिर आम व्यक्तियों को ना मिले, तो ये समस्याएं होती है, ये जानकारी आपको है, तो इसी बीच आप अपना परिचय देंगे क्या?
0: जी हाँ, मैं सबौर बड़ी इब्राहिमपुर का रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरा नाम मानव है।
1: जी, तो मानव जी आपसे ये तो आपने पोषण के बारे में बहुत अच्छा बताया, लेकिन कि इस पोषण को सही से हम प्राप्त करते रहें इसके लिए हमारे कृषि कॉलेज भी एक मुहिम चलाई है, उस मुहिम के अंतर्गत अपनी क्यारी अपनी थाली एक मुहिम है, उसके बारे में आप लोगों को क्या पता है? इब्राहिमपुर से एग्रीकल्चर कॉलेज की ज़्यादा दूरी भी नहीं है, 2 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो आपको अपनी क्यारी अपनी थाली के बारे में क्या जानकारियाँ हैं ये बताएं।
0: अपनी क्यारी अपनी थाली का उसका कहना है कि जैसे अभी आपके पास अगर ज़मीन है तो वहाँ पे अपना कुछ रोप दिए, अपना उगाइए, अपना खाइए, तो जिससे कि अनाज की कमी नहीं होगी, जिससे आदमी को बराबर पोषण मिलता रहेगा।
1: ये तो मान लिया जाए कि वृहत पैमाने पे आपने बताया, मान लिया जाए ग्रामीण हो या फिर शहरी हो, उनको सभी को मान लिया जाए बहुत सारा जमीन नहीं होती है।
0: हाँ।
1: जब जमीन नहीं होती है तो वो अपना खेती तो नहीं कर सकती है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करे और कैसे अपनी क्यारी अपनी थैली को यूज कर सकता है? मान लिया जाए वो घर के आगे गार्डनिंग के लिए क्या करे या फिर क्या उनके बारे में जानकारी है?
0: वो क्या अपने बारे वो क्या करे अगर जो वो नहीं कर सके, अगर जो उनके पास अपना जमीन नहीं है तो वो दूसरे के अथी पे डिपेंड कर सकता है। अगर वो उगा रहा है तो अगर वो उसके पास है कि वो एक दूसरे
1: नहीं, नहीं, अपनी क्यारी अपनी थाली का एक सीधा सा उदाहरण ये है कि जैसे कि आपके आगे आंगन हो, बाड़ी हो, उसमें आप एक क्यारी के रूप में आप लगा सकते हैं, उस क्यारी में लगाएं और अपना जैसे कि सब्जी हो, फल हो, वो अपने आप आंगन में अगर उपजाते हैं तो वो आपको ऑर्गेनिक मिलती है, पूर्ण रूपेण आपको रासायनिक रहित मिलती है, ठीक है, उसमें रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, जो कि आपके शरीर के लिए क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो आपने 90.8 FM ग्रीन को अपना कीमती टाइम दिया, इनके लिए 90.8 FM ग्रीन आपका धन्यवाद करती है। मैं

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 MHz पर। मैं हूँ अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं खास विषय, और गर्मा मूंग की हम बात करते हैं इस समय। तो गर्मा मूंग में कीट प्रबंधन आप कैसे करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आज के वैज्ञानिक आप सभी को देंगे। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर पवन कुमार, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं KVK सबौर। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू अनु जी।
0: मूंग में कौन कौन से कीट लगते हैं, पहले तो इसकी जानकारी दें हमारे श्रोताओं को।
2: मूंग में जैसे हम मूंग लगाते हैं, तो मूंग में मुख्यतः जो है वो फली बेदक है, सफ़ेद मक्खी है, फिर उसमें हरा फुदका कीट है, थ्रिप्स है, बहुत सारे कीट हैं, जो पॉड बग हैं जो अभी इस समय बहुत तेज़ी से जो लग रहे हैं, फिर उसके बाद जो सफ़ेद मक्खी है जो मोज़ेक वायरस फैलाती है, तो इन तमाम तरह के कीट हैं। लाल बालदार सुंडी है, बालदार सुंडी है, ये सब कीट मूंग में लगते हैं
0: जी। अब कौन कौन सी बीमारियां इसमें लगती हैं?
2: बीमारियां मुख्यतः एक बीमारी है जो जड़ का सड़न बोलते हैं, जड़ सड़ जाती है और पत्तियों में भी उसके मतलब सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं। फिर सरकोस्पोरा लीफ स्पॉट है, एक ब्राउन कलर का, एक जैसे सरसों के दाने की तरह उसमें वो हो जाते हैं, लीफ में स्पॉट पड़ जाता है सरसों के दाने की तरह, वो बीमारी है। एंथ्रेक्नोज है, पाउडरी मैल्यू है, तो ये सब बीमारियाँ उसमें गर्मा मूंग में लगती हैं
0: जी। अभी के समय की हम बात करते हैं, तो अभी के समय में कौन कौन से कीट लग सकते हैं इसमें?
2: तो अभी के समय में जो हम देख रहे हैं कि फूल कुछ फूल लगते जा रहे हैं और उसमें पॉड भी लग गए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अभी प्रकोप में है, जो ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, तो वो है आपका फली वेदक कीट, और इसका फली वेदक कीट के बाद फली बग, जो फली वृक्ष जिसको बोलते हैं, वो फली बग, उसमें अभी ये दो तरह के कीट बहुत तेज़ी से गर्मा मूंग में लगते हैं
0: जी। कौन कौन सी बीमारियां इस समय की बात अगर हम करें तो लग सकती?
2: इस समय की बीमारियां जो हमने बताया पहले आपको, कि जो सरकोस्पोरा लीफ स्पॉट है, एंथ्रेक्नोज है, पाउडरी मैल्यू है, ये अभी ये बहुत ज़्यादा फैलती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा जैसे 10%, जैसे हम कोई एक एरिया लेते हैं, अगर उसमें देख रहे हैं कि दिखने लगा है कि मुझे पाउडरी टाइप का दिखने लगा है, तो उसमें उसका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है
0: जी। अभी के समय की हम बात करते हैं, तो अभी जो गर्मा मूंग में जो कीट लगेंगे, तो उनकी रोकथाम हमें कैसे करनी चाहिए?
2: गर्मा मूंग में कीट अभी जो मुख्यतः है वो पॉड बग और फली बोरर है, तो इनको हम मैनेज जनरली पहले से अगर हम कुछ उपचार करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कंट्रोल हो पाए हैं, अभी ज़्यादा उसमें लग रहे हैं, तो हम जो पॉड बग है, जो फली बग जिसको बोलते हैं, उसका जो सिम्टम है वो क्या करता है कि फली के अंदर, जैसे फली के अंदर जो दाना होता है, तो उसके फली से, फली के ऊपर बैठ के उसमें अपना मुखांग उसके अंदर डाल के और उसके दाने से रस चूस लेता है, तो वो फली खराब हो जाती है और पिचक जाती है, उसमें कोई दाना नहीं पड़ता है। तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग उसमें क्यूनाल फोस एक दवा है 25 EC में जो आता है, तो 2 ml प्रति लीटर में उसको मिला के छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आप पॉड बग को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं।
0: और इस समय जो रोग लगते हैं, उनकी रोकथाम कैसे करें?
2: इस समय जो रोग लग रहे हैं, हाँ, जो रोग मैंने बताए हैं आपको कि सरकोस्पोरा लीफ स्पॉट है और पाउडरी मैल्यू है और ये सब हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए हम कार्बेंडाजिम, एक पाउडर आता है बाविस्टिन के नाम से आता है, तो उसको 1 gram पानी में हम मिलाते हैं, 1 gram पानी में मिला के, 1 gram 1 liter पानी में मिला के, और हम प्रति हेक्टेयर की वजह से उसको छिड़काव कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि 1 gram 1 liter पानी में मिलाना है।
0: तो यहाँ पर कीटों की बात हो गई, यहाँ पर खासतौर पर हमने गर्मा मुंग में कीट प्रबंधन की बात की थी, लेकिन आपने रोगों के बारे में भी जाना, रोकथाम कैसे कर सकते हैं, कीटों से रोकथाम कैसे कर सकते हैं, अपने गर्मा मुंग को बचा सकते हैं। तो यहाँ तक ही ये बातें थी। अगले दिन हम आप सभी को एक और विषय लेकर आएंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। उन्नत कृषि, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश। आइए सबसे पहले सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत विचार।
1: रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं।
2: जी,
1: शुक्रिया अदा करना, तारीफ करना और माफी मांगना, ये तीन गुण जिस व्यक्ति के पास हैं वो सबके करीब और सबके लिए अजीज होता है।
2: क्या बात है, ये विचार हमें भेजा था बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन जी का।
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुटी बुलंदशहर से निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अबान अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
1: और ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया और श्रीमती कल्पना चंसोलिया।
2: ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से
1: राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। आपने लिखा है
2: अजीत जी और विमलेश जी, आप दोनों आदरणीय हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: उमंग कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और जानकारियों से भरपूर होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सादर प्रणाम और नमस्कार।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक अच्छे संदेश के लिए। आशुतो, अब हमेशा की तरह एक बार फिर से प्रस्तुत है ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी। तो विमलेश जी, आपसे शुरू करें, क्या जानेंगे आज हम?
2: जी अजीत जी, एक प्रश्न से शुरू करती हूँ। अजीत जी, जब हम किसी ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ अंधेरा हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं?
1: बड़ी स्वाभाविक सी बात है, हम सबसे पहले तुरंत उजाला करते हैं, उदाहरण के लिए बल्ब जलाते हैं।
2: तो श्रोताओं, कभी आपने गंभीरता से सोचा है कि जब हम किसी अंधेरे कमरे को उजाले में बदलते हैं तो उसमें एक छोटा सा बल्ब बड़ी भूमिका निभाता है?
1: जी बिल्कुल सही, छोटे से बल्ब की बड़ी भूमिका तो है।
2: जी वो तो है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि उस छोटे से बल्ब के अंदर एक बहुत महीन छोटा पतला सा एक तार होता है? असल कमाल तो उस तार का है। अब प्रश्न उठता है कि वो तार आखिर किस धातु से बना होता है जो इतना ज्यादा ताप सहकर भी पिघलता नहीं। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी विमलेश जी, बल्ब के अंदर जो पतला सा तार होता है उसे हम फिलामेंट कहते हैं और वह टंगस्टन नामक धातु से बना होता है।
2: जी,
1: लेकिन अब अगला प्रश्न मेरी ओर से, क्यों टंगस्टन ही चुना गया?
2: अजीत जी, इसका उत्तर मैं बस एक वाक्य में दूंगी। उसका उत्तर है टंगस्टन धातु की बेजोड़ गर्मी सहने की क्षमता। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस। यानी इतनी भयंकर गर्मी में भी वो धातु न पिघलती है न टूटती है।
1: श्रोताओं, बल्ब के फिलामेंट को 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर जब गर्म किया जाता है तो वो चमकने लगता है। ऐसे में टंगस्टन के अलावा कोई और धातु उतने तापमान को सह नहीं सकती।
2: श्रोताओं, टंगस्टन में जब बिजली प्रवाहित की जाती है तो बहुत कम समय में अत्यधिक गर्म हो जाने से वो चमकने लगता है बिना टूटे या झुलसे। और जबकि टंगस्टन की तुलना में एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा या कोई भी अन्य धातु ठहर ही नहीं सकती।
1: जी,
2: क्योंकि जब कोई धातु बहुत गर्म होती है तो वो धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ सकती है।
1: तो यही कारण है कि यह धातु यानी टंगस्टन बल्ब में लंबे समय तक नष्ट नहीं होती। टंगस्टन को संस्कृत में टुंग कहा जाता है, जिसका अर्थ है ऊंचा या श्रेष्ठ।
2: जी,
1: सच में यह धातु अपने गुणों के कारण अपने नाम को सार्थक करती है।
2: तो सुना आपने श्रोताओ, छोटा सा बल्ब, उसमें बहुत ही पतला, बारीक, लगभग नहीं दिखाई पड़ने वाला टंगस्टन का फिलामेंट। वो इसलिए इतनी रोशनी दे पाता है कि उसमें सहने की क्षमता बहुत अधिक होती है। क्यों अजीत जी?
1: जितनी सहन शक्ति होगी प्रकाश उतना ही होगा। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है, टंगस्टन धातु का गलनांक यानी गलने या पिघलने का तापमान कितना होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: टंगस्टन धातु का गलनांक यानी गलने या पिघलने का तापमान कितना होता है?

0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800044055 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारे ईमेल का पता है
1: audio@cit.nic.in।
0: अब आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम हमने लिया है कक्षा 3 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित एक खूबसूरत और हास्य प्रधान लोक कथा।
1: आइए जानते हैं इस कथा में अंगूर और तरबूज के बारे में,
0: और जानते हैं कि क्या थी किसान की उलझन।
1: तो सुनते हैं कार्यक्रम थैंक गॉड।

प्रारंभिक मानव अपनी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या तो शिकार किया करता था या फिर कंद मूल फल इत्यादि का संग्रह किया करता था, और इस तरह से वो अपने और अपने समूह की भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करता था। शिकार और भोजन की तलाश में उसे दूर दूर तक घूमना पड़ता था। जब एक जगह का भोजन समाप्त हो जाता था, कंद मूल फल समाप्त हो जाते थे, तो वह और नए नए जंगलों की तलाश में निकल पड़ता था। खेती के आविष्कार ने उसके इस घुमंतु जीवन में परिवर्तन ला दिया। अब वो एक जगह रहकर ही खेती कर सकता था और अपनी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता था। खेती की खोज कब और किन परिस्थितियों में हुई होगी, इस कविता में इसी बात का वर्णन है।

0: जमीन पर
1: भरी बालियां थी उससे ही
0: देख फसल, तब उन्होंने सोचा

0: खेती की शुरुआत।
1: अभी आप सुन रहे थे ये गीत। विषय संयोजन आलेख एवं वाचन डॉक्टर इंदु कुमार, संगीतकार हरभजन सिंह, गायन स्वर अनुजा बिसारिया और विनीत, ध्वनियांकन बटी लैंगडिंगडो, निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी, निर्देशन एवं निर्माण

0: फोरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली। अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत इतिहास गीत, और आइए अब सुनते हैं एक और कार्यक्रम जो बताता है बड़ी अनोखी मित्रता के बारे में।
1: आप कहेंगे भला ऐसी दोस्ती भी हो सकती है?
0: हम कहेंगे बिल्कुल हो सकती है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम चींटी और हाथी।

जंगल में एक चींटी रहती थी। वो रोज सुबह भोजन की तलाश में चल पड़ती थी। परिवार की सभी चींटियां उसके पीछे पीछे चलती।

जंगल के पेड़ पौधों को तोड़ता। कभी कभी हाथी अपने सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता।

जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान रहते। हाथी की एक बुरी आदत और भी थी, जहाँ कहीं भी वो चींटियों को देखता कुचल देता। चींटी ये सब देखती और दुखी होती।

0: हाथी बोला,
1: चुप रहो, मैं चाहे जो करूं, तुम बहुत छोटी हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। हाँ।
0: चींटी चुप हो गई और घास में जाकर छिप गई।

हाथी इधर उधर घूम रहा था। तभी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी।

0: पर उसकी परेशानी किसी तरह भी कम न हुई। तब चींटी बोली,
1: परेशान क्यों हो रहे हो? तुम भी तो दूसरों को बहुत सताते हो।
0: हाथी बहुत दुखी हो गया। वो बोला,
2: मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को कभी नहीं सताऊंगा।
0: चींटी को दया आ गई। वो हाथी की सूंड से बाहर निकल आई।

0: एक दिन
1: जब चंचल अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रही थी तो उसने देखा एक आदमी साइकिल पर सवार अपनी धुन में ट्रिन ट्रिन घंटी बजाते हुए उसके घर की तरफ आ रहा है। कौन हो सकता है ये? इतने में अचानक उसका एक दोस्त बोल पड़ा, देखो डाकिया आया। चंचल सोचने लगी, डाकिया? ये कौन? बस चंचल तो खेलना वेलना सब भूल गई, खेलना छोड़कर घर की तरफ गई। फिर क्या था, डाकिया अंकल के साथ बातूनी चंचल शुरू हो गई।
2: डाकिया अंकल,
3: आओ बेटा।
2: अरे मेरा नाम बेटा नहीं है, मेरा नाम चंचल है, चंचल। और आपको पता है मैं उस सामने वाले घर में रहती हूँ।
3: अच्छा चंचल, बेटे ये तुम्हारा पत्र है।
2: लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये चिट्ठी हमारे घर पहुँचानी है?
3: इस पे बेटे आपका नाम और पता लिखा है, पता मतलब एड्रेस लिखा है आपका, उससे पता चलता है कि ये आपका पत्र है।
2: तो सब जगह आप ही चिट्ठी पहुंचाते हो?
3: नहीं, हर शहर में हमारे कर्मचारी हैं, हम यहाँ से उनके पास डाक मोटर से ट्रेन से हम उनके पास भेजेंगे, वहाँ वो आपको जिस एड्रेस पे चिट्ठी जानी हो उस एड्रेस पे वो चिट्ठी पहुँचाएंगे। हम सब जगह अपने देश में नहीं विदेश तक भी हम चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं। बेटे हमारा ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, सारी दुनिया में फैला हुआ है, कहीं पे एरोप्लेन से कहीं पे ट्रेन से हम सब जगह चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं।
2: नेटवर्क क्या होता है अंकल? मुझे कुछ समझ नहीं आया।
3: नेटवर्क हमारा विभाग जिसमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं, गांव-गांव शहर शहर सब जगह हमारे कर्मचारी हैं जो कि आपकी चिट्ठी हर जगह पहुंचा देते हैं।
2: लाखों कर्मचारी सब लोग कैसे काम करते हैं?
3: ये बेटा हर जगह से डाक इकट्ठी करके और उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, वहाँ से छटाई करके जिस जगह की वो डाक हो उस जगह के बैग में उसको बंद करके जहाँ रेल से जानी हो वहाँ रेल से भेजते हैं, जहाँ जहाज से जानी हो वहाँ जहाज से, हर जगह की डाक हम वहीं उसके एड्रेस पर भिजवाते हैं।
2: तो आप पूरी दुनिया में चिट्ठी पहुंचाते हो?
3: हाँ बेटे, आप चिट्ठी कहीं भी भेज सकते हो, हम हर जगह आपकी चिट्ठी पहुंचा देंगे, आपका उसमें नाम पता साफ साफ लिखा हो, शहर का नाम पिन कोड वगैरह अगर आप सही लिखते हैं साफ लिखते हैं तो आपका पत्र हर जगह पहुंच जाएगा।
2: आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी।
3: जी हाँ बेटे, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस काम के लिए, चाहे कैसा भी मौसम हो। आपकी चिट्ठी जिस दिन भी आपने लेटर बॉक्स में डाली उसी दिन से उस पे काम शुरू हो जाता है, चाहे धूप हो बारिश हो तूफान हो, हमें हर मौसम में ही काम करना होता है, आपकी चिट्ठी समय पर पहुंचाना ही हमारा काम है।
2: डाकिया अंकल आप तो बहुत अच्छे हैं, तो फिर आज से हम दोनों दोस्त हुए, ठीक है?
3: हाँ बेटे, जब अगली चिट्ठी आएगी हम फिर मिलेंगे, अच्छे दोस्त हैं हम।
2: हाँ हाँ जरूर मिलेंगे, धन्यवाद डाकिया अंकल।
3: धन्यवाद चंचल।
4: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत को
5: और विमलेश को तकनीकी टीम यानी
4: कुसुमलता
5: जगबंधु
4: चेतना
5: शमीम
4: मंजू कुमारी
5: और वीरेंद्र के साथ आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
0: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ अनु और आज एक बार फिर एक खास विषय लेकर मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ। हम बात कर रहे हैं अजोला की और साथ ही इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज आप सभी को बताई जाएंगी जो किसान भाइयों के लिए, खेत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, मिट्टी के लिए फायदेमंद होगी। आज हम बात करेंगे खेती, पशुपालन एवं वर्मी कंपोस्ट समृद्धिकरण में अजोला की उपयोगिता के बारे में, साथ ही उत्पादन और प्रयोग विधि आप कैसे अजोला का करेंगे इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। इस विषय के साथ हमारे बीच है मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर ए के झा, अमृता विज्ञान विभाग बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
7: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप अजोला के बारे में बताएं।
7: एक्चुअली अजोला एक उच्च पोषक मान वाला जलीय फर्न है जिनके पत्तियों में एनाबिना अजोली नाम का एक नीलहरित शैवाल पाया जाता है। भारत के कई भूभागों में इसका उपयोग पशु आहार, मानव आहार, जैव उर्वरक और हरी खाद के रूप में किया जाता है, लेकिन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में इसका प्रयोग वर्मी कंपोस्ट के समृद्धिकरण के लिए भी किया जाता है।
0: जी, अगर प्रजातियों की बात करें तो भारत में अजोला की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं एवं कहां कहां मिल सकती है, साथ ही बिहार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो प्रजाति है वो कौन सी है?
7: देखिए, मुख्य रूप से 7 प्रजातियां हैं जो अजोला की जो कि पाई जाती हैं। उसमें है अजोला कैरोलिनियाना, अजोला फेलिकुलाइड्स, अजोला मैक्सिकाना, अजोला माइक्रोफिला, अजोला पिन्नाटा, अजोला रुब्रा। लेकिन देखिए, पहले अजोला निलोटिका भी पाया जाता था, लेकिन अब अजोला निलोटिका सामान्यतः नहीं मिलता है। तो ये जो 6 प्रजातियां हैं, ये 6 प्रजाति हमारे भारतवर्ष में पाई जाती है। भारतवर्ष क्या कहिए कि विश्व में पाई जाती है, यही 6 प्रजाति मुख्य रूप से भारतवर्ष में पाई जाती है। और जहां तक बात है बिहार की, तो यहां पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने यह शोध करके देखा है कि यहां के वातावरण के हिसाब से जो अजोला माइक्रोफिला है यह सबसे बढ़िया है। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, हो सकता है किसी 10-15 दिन अजोला कैरोलिनियाना बहुत अच्छा कर जाए, अगले 10-15 दिन हो सकता है रुब्रा अच्छा कर जाए, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो अजोला माइक्रोफिला का सबसे बढ़िया है। साथ ही साथ एक जो लोकल कलेक्शन है यहाँ पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का BAUAS1, वह भी बहुत बढ़िया ये परफॉर्म करता है, खास करके माइक्रोफिला के बाद सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसी का देखा गया है।
0: जी, पोषक मान क्या है अजोला का?
7: देखिए, अब एक चीज है कि अजोला, मैंने कहा ही कि उच्च पोषक मान वाला है, इसमें 25 से

0: 35% प्रोटीन है। अब देखिए 25 से 35% प्रोटीन है, यानी कह लीजिए कि अंडा मछली मुर्गा इस सबसे भी कुछ मामले में ये ज्यादा प्रोटीन वाला है, तो इसमें 25 से 35% प्रोटीन पाया जाता है। जहां तक नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी 4 से लेकर 5.5% तक पाया जाता है। फॉस्फोरस भी इसमें 0.85% के आसपास पाया जाता है। पोटास की बात करें तो पोटास आपको 2.5% से 4.5% के बीच में इसमें पोटास पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे आप विटामिन B12 की बात करें तो 100 ग्राम में 0.14 मिलीग्राम पाया जाता है। कैल्शियम भी 67 मिलीग्राम पाया जाता है। मैग्नीशियम भी 4-3 मिलीग्राम पाया जाता है। गंधक भी पाया जाता है 2.7 मिलीग्राम। जस्ता भी पाया जाता है 4.1 मिलीग्राम। लोहा की बात करें तो 7.3 मिलीग्राम पाया जाता है। तांबा इसमें 0.9 मिलीग्राम पाया जाता है। मैग्नीज 102 मिलीग्राम पाया जाता है। सोडियम भी 0.26 मिलीग्राम पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें लगभग लगभग जो हमारे लिए जरूरी है वो सारे के सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको उच्च पोषक मान वाला जलीय फर्न कहते हैं।
1: जी, अगर अजोला का प्रयोग किसान भाई खेती में करते हैं तो क्या फायदे मिल सकते हैं उन्हें?
0: देखिए ऐसा है, इसका प्रयोग खेती में आज से नहीं होता है, इसका प्रयोग काफी पहले से किया जाता है। तो यहाँ पर अभी तक जो दूसरे भागों में था, विश्व के दूसरे भागों में हम कहें तो ज्यादा बढ़िया है, उसका प्रयोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किया जाता था, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। चूंकि हमने बताया कि इसके पत्ती में नीलहरी शैवाल पाया जाता है, तो ये लोग अभी यही करते थे कि धान की फसल में नाइट्रोजन का इसमें फायदा होता है, नाइट्रोजन की बचत होती है, इसी के लिए करता है। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय ने शोध करके इस पर टेक्नोलॉजी भी रिलीज किया है कि हम यदि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास की मात्रा यदि आधी कर दें लेकिन हम इसका हरी खाद के रूप में प्रयोग करें तो हम देखें हैं कि हमारे उत्पादन में कोई अंतर नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि इसका प्रयोग करके हम 50% नाइट्रोजन, 50% फॉस्फोरस और 50% पोटास जो हम धान में देते हैं उसकी बचत कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ शोध करके हम लोगों ने यह भी देखा है कि जो ये प्याज है, खास करके खरीफ प्याज, बिहार में इसका काफी क्षेत्रफल है, तो ये जो खरीफ प्याज है, खरीफ प्याज सड़ता बहुत है, तो यदि अजोला की सिर्फ आप मल्चिंग कर दीजिए तो मल्चिंग करने के बाद यह देखा गया है कि इसमें इसकी स्टोरेबिलिटी बढ़ जाती, यानी सड़ता कम है, साथ ही साथ इसका उत्पादन भी बढ़ता है। तो यह सारी चीजें यहां पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने यह देखा है कि यदि हम इसका प्रयोग प्याज में करते हैं तो सड़ता कम है, उत्पादन ज्यादा बढ़िया होता है। धान में यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारा जो रेकमेंडेड अनुशंसित नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास की मात्रा है वह भी आधी बच जाती है। यदि हम ग्रीन मैन्योरिंग ना करें, यदि डुअल क्रॉपिंग करें धान के साथ, तब भी हमारे उत्पादन में खास करके नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास में बचत होती है, यह चीज हम लोगों ने देखा है।
1: जी, अगर पशुपालन की हम बात करें तो क्या पशुपालन में अजोला का प्रयोग हो सकता है, और अगर हाँ तो क्यों, कैसे, इसके फायदे क्या हैं, इसके बारे में बताइए।
0: बड़ा बढ़िया है, बड़ा आपने समचीन प्रश्न पूछा। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे किसान भाई हैं वह खेती में तो कम प्रयोग कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ बिहार में भी या दूसरे जगहों पर भी पशुपालन में इसका जरूर प्रयोग कर रहे हैं। जो पशु पोषण है, पशु को जो हम चारा देते हैं, चारा मिल नहीं पा रहा है, और चारा नहीं मिल पा रहा, साथ ही साथ यदि चारा मिलता भी है तो चारा में उतना पोषक मान नहीं होता जितना अजोला में। यदि हम देखें अजोला को तो 100 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष हम सिर्फ अजोला को पैदा कर सकते हैं यदि सही ढंग से व्यवस्था की जाए, उतना कोई भी चारा आपको उत्पादन करके नहीं दे सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक जो ज्यादा पोषक मान वाला है वह ज्यादा मात्रा में यह उत्पादन करके आपको दे सकता है। अब यह बात है कि पशु पोषण में, यह तो हम लोगों ने यहां शोध करके भी देखा था, जो हमारे पशु वैज्ञानिक हैं वह भी हमारे साथ थे इस प्रयोग में, तो यह करके हम लोगों ने देखा कि यदि हम 1 kg सुबह और 1 kg शाम यदि हम जानवर को देते हैं खाने के लिए, जो भी आप दाना चारा देते हैं उसी के साथ मिला करके 1 kg सुबह में 1 kg शाम में देते हैं, तो हमारा जो दूध का उत्पादन है वो 8 से लेकर 15.6% तक, यानी 8 से 16% तक लगभग हमारा दूध का उत्पादन बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम सिर्फ यदि 1 kg सुबह 1 kg शाम यदि हम खिला देते हैं, और आपका मान लीजिए गाय है वो 10 लीटर दे रही है, तो 10 लीटर के स्थान पर यदि आपको 1.5 लीटर दूध बढ़ जा रहा है तो सोचिए कि कितना फायदा हो जा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आप यदि 300 लीटर दूध यदि उत्पादन कर रहा है तो उसके हिसाब से किसान को काफी हजारों रुपए का फायदा उसको हो सकता है, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। साथ ही साथ देखिए इसका आप जो उपयोग है वह आपको मुर्गी पालन में भी कर सकते हैं, बकरी पालन में भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि बकरी पालन में जब आप करेंगे उसमें ज्यादा मात्रा नहीं दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा देने से 10% से ऊपर यदि आप दे रहे हैं तो वहां पर आपको उसको डिसेंट्री होने की संभावना होती है, तो इसलिए ज्यादा नहीं करते हैं। मुर्गी में तो आप 25% तक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जितना आप दाना दे रहे हैं उसका 25% सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं, बकरी में नहीं। तो कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के पशुओं के पोषण के लिए आप अजोला का प्रयोग कर सकते हैं
1: जी। तो वर्मी कंपोस्ट के समृद्धिकरण में क्या अजोला का प्रयोग किया जा सकता है?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हम लोगों ने करके देखा है कि सिर्फ वर्मी कंपोस्ट के समृद्धिकरण में ही इसका प्रयोग नहीं हो सकता है, बल्कि केचुआ की तेजी से आप उत्पादन करना चाहते हैं, उसकी ब्रीडिंग जल्दी से करना चाहते हैं, उसमें भी अजोला आपका बड़ा उपयोगी है। कारण यह है कि अभी हमने बताया कि इसके पोषक मान बहुत अच्छे हैं, तो अब केचुआ भी इसको खा रहा है तो नेचुरल सी बात है कि उसमें जो है बढ़िया उसका वृद्धि होता है। इवन 200 से 250% तक 3 महीने में उसकी जनसंख्या बढ़ गई है, यह हम लोगों ने शोध करके देखा है। अब प्रश्न उठता है कि जो समृद्धिकरण है क्यों हो जाता है? अब अभी आपने को हमने बताया कि नाइट्रोजन 4.5% से 5.5% है, कहीं से केचुआ बाहर से तो पोषक मान लाएगा नहीं। अब इसमें चूंकि नाइट्रोजन ज्यादा है इसीलिए उससे जो वर्मी कंपोस्ट बनता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा स्वतः ज्यादा होती है। अब मान लीजिए हम 25% तक उसमें मिला रहे हैं, तो 25% तक यदि मिला रहे हैं तो अब समझ लीजिए कि कम से कम 1/4 तो मामला उसमें जा ही रहा है, तो नाइट्रोजन निश्चित रूप से बढ़ेगा। पोटास ही हमने बताया 2.5 से लेकर 4.5% तक है, तो आपका जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा उसमें पोटास की मात्रा ज्यादा होगी, या अन्य पोषक तत्व ही जो इसमें है वो पोषक तत्व के कारण आपका जो वर्मी कंपोस्ट है वह गुणवत्तापूर्ण बनेगा। और इतना ही नहीं, केचुए की वृद्धि विकास यह भी बढ़िया होगा, तो इसके समृद्धिकरण में भी आप अजोला का प्रयोग कर सकते हैं
1: जी। अजोला की उत्पादन विधि के बारे में थोड़ा बताएं।
0: अब जहां तक अजोला के उत्पादन विधि की बात है, तो यदि आप ये पशुपालन के लिए करते हैं, तो पशुपालन के लिए कर रहे हैं तो जो आप बगल में जो फार्म है जहां पर पानी की व्यवस्था है वहां पर गड्ढा आप बना लें। गड्ढा ऐसा है कि आप 2×2 मीटर का भी बना सकते हैं, या 2×1 मीटर का भी बना सकते हैं, या 2.25×1.5 मीटर का भी बना सकते हैं। हाँ, गहराई इसका 30 सेंटीमीटर से लेकर के 0.5 मीटर तक गहराई रखें। अब क्या है कि जो गड्ढा आपने बना लिया तो गड्ढे के नीचे कोई पॉलीथीन बिछा दीजिए, जैसे पानी रिसे नहीं, उसका कोई मकसद नहीं। इसके ऊपर आप उपजाऊ मिट्टी डाल देते हैं। यदि आपने 30 सेंटीमीटर का बनाया हुआ है तो नेचुरल सी बात है कि आप कम मिट्टी की ऊंचाई रखेंगे, यदि 0.5 मीटर का रखे हुए हैं तो मिट्टी की ऊंचाई थोड़ा ज्यादा आप रख सकते हैं। तो अब आपने मिट्टी कर दिया, इसके ऊपर ये जो है आप 2 से 4 इंच कम से कम पानी रहना चाहिए, स्टैंडिंग वाटर रहना चाहिए, तो वह आपने वहां पर पानी डाल दिया। जब पानी डालेंगे तो नेचुरल सी बात है वहां झाग वाग होगा, तो जो भी आपके पास तांबे की या प्लास्टिक की जो भी जाली रखते हैं तो उसके जो स्कम है, उसके जो झाग है, उसको आप चाल करके वहां से हटा दिए। हटा देने के बाद उसमें जो है आपको ये डाल देना है, क्या कहते हैं, अजोला। तो अजोला को कभी कभी जैसे बरसात के दिनों में यूज करते हैं तो उसमें कीड़े की भी समस्या आती है, तब आपको कार्बाफिरान 3G से ट्रीट करके डालना है। लेकिन यदि आप जानवर को खिला रहे हैं तो कार्बाफिरान 3G से ट्रीट नहीं कीजिए। आपको कार्बाफिरान 3G से ट्रीट करके डालना है, लेकिन यदि आप जानवर को खिला रहे हैं तो कार्बाफिरान 3G से ट्रीट नहीं कीजिएगा। इतना ही नहीं, जो आप पानी डाले हैं उस पानी में गोबर भी मिलाया जाता है, जो एक आपका स्क्वायर मीटर में है 1 से 1.5 केजी जो गोबर है उसको पानी में 10-15 मिलीलीटर पानी में घोल करके, जो बालू चालने वाला चलनी है उस चलनी से चाल करके उस स्लरी को उसमें डाल सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप गोबर मिलाते हैं तो बहुत सारा जानवर खाने में नाटक करता है, तो आप नहीं भी डालेंगे तब भी आप पैदा कर सकते हैं। हाँ, वहां पर आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट कैसे डालेंगे भैया? तो इसमें आप ये कीजिए कि आप 10 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट ले लीजिए, 1.5 किलोग्राम उसमें मैग्नीशियम सल्फेट मिलाइए, और उसमें 0.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास मिलाइए, और इसको मिला करके जो उसका 5 ग्राम है, 10 ग्राम भी कर सकते हैं लेकिन 5 ग्राम अनुशंसित है, कम से कम 5 ग्राम होना चाहिए, तो 5 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप उसमें डालते रहे हफ्ता 10 दिन के बाद। तो आप इस ढंग से करेंगे, कारण ये है जो अजोला है उसको फास्फोरस का रिक्वायरमेंट उसका ज्यादा है, तो जो फास्फोरस का रिक्वायरमेंट है वह उसको मिल रहा है और फास्फोरस का रिक्वायरमेंट उसको मिल रहा है तो तेजी से वृद्धि करेगा। लेकिन अब आपके मन में ये

0: प्रश्न होगा कि भैया इतना ज्यादा यदि हम को अजोला वहां पर चाहिए धान के लिए, वहां पर हम क्या करेंगे? तो देखिए, वहां पर आपको करना यह है कि यदि हरी खाद के लिए करते हैं तो खेत में ही क्यारी बना लीजिए, वहां 10 मीटर गुने 2 मीटर का या 10 मीटर गुने 1 मीटर का क्यारी बना लीजिए। अब यह क्यारी बना करके उसमें वही गोबर डाल करके, गोबर का घोल डाल करके, अब उसमें आप अजोला डाल करके अब उसके बाद उसकी वृद्धि करवाते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आप डुअल क्रॉपिंग के लिए करते हैं, जैसे धान का और अजोला का एक ही साथ वृद्धि करवाना चाहते हैं, तो वहां पर जितना आप ग्रीन मैन्योरिंग में डालते हैं उसका दसवां हिस्सा ही वहां पर आप प्रयोग कीजिए। जब धान आपको 5-7 दिन 10 दिन का हो गया रोपा हुआ, तो उसी में पानी थोड़ा सा 2-4 इंच जरूर रहना चाहिए, उसमें अजोला आपने छिड़क दिया, और जितना आपने फॉस्फोरस डाला था वो कम से कम 20 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से फॉस्फोरस की मात्रा को बढ़ा दीजिए, और उसकी मात्रा को बढ़ा करके आपने डाल दिया, और 15 से 21 दिन तक जो पानी का स्तर है 2 से 4 इंच आप बरकरार करके रखेंगे, तो देखेंगे कि पूरा खेत अजोला से भर गया। अब उसके बाद पानी के स्तर को कम कर दीजिए, अब पानी के स्तर को कम करके छोड़ देंगे तो वह जितना अजोला है वह आपके मिट्टी को पकड़ लेगा, और उसके बाद वह खुद वहां पर ये खत्म हो करके वो हो जाएगा। हाँ, एक बात जरूर मैं बताना चाहता हूं जो मैं भूल गया था, कि जब आप अजोला पैदा कर रहे हैं पशु के लिए, तो वहां पर हरेक 15-20 दिन के बाद आप 1/3 पानी को जरूर निकालते रहिए, नए पानी से उसको प्रतिस्थापित करते रहिए, और जब मिट्टी काली हो जाए तो अब उसकी स्थिति में आप मिट्टी को हटा करके, फिर जब काली मिट्टी हो गई तो फिर नई मिट्टी डालना पड़ेगा, ये करेंगे तभी आपका अजोला चलेगा। तो ये सब तरीके हैं, इन सब तरीकों को आप जान करके अजोला का उत्पादन करके अपने पशुपालन में भी फायदा कमा सकते हैं, खेती में फायदा कमा सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, लेकिन फिर और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सबौर में आइए। हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, यहाँ पर यूनिट बना हुआ है, यहाँ आकर के सीखें और जरूर इसका उपयोग करें।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेती पशुपालन एवं वर्मी कंपोस्ट समृद्धिकरण में अजोला की उपयोगिता, उत्पादन और प्रयोग विधि के बारे में। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे कल एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि, सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कई सारी धारणाएं बनाता है और उन्हीं धारणाओं के हिसाब से अपने जीवन की प्लानिंग करता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि हमारी पुरानी धारणाएं टूटती नजर आती है या पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, और नई धारणाएं बनाने में हमें बहुत समय लग जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति में हमने जो रास्ता अपने लिए तय किया था वो रास्ता अंधेरों से भर जाता है, और फिर हमें हाथ लगती है निराशा। और जब बार बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है तो हम घोर निराशा में चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्लेटो के जीवन में निराशा ने दस्तक दी पर उन्होंने हार नहीं मानी। आपने महान दार्शनिक प्लेटो का नाम तो सुना ही होगा। प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से वो घोर निराशा में चले गए, लेकिन वो हर बार नई राह तलाशते रहे, नई धारणाएं बनाते रहे और आगे बढ़ते रहे। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक धनी और प्रभावशाली परिवार में हुआ था। अपने समय के अधिकांश युवकों की तरह उनका भी सपना था राजनीति में प्रवेश करने का। प्लेटो को लोकतांत्रिक परंपराएं एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए उपयुक्त लगती थी। हालांकि इतिहास की घटनाओं ने उनके विश्वास को तोड़ दिया। पेलोपोनेशियन युद्ध में एथेंस की हार के बाद सत्ता 30 टायरेंट्स के हाथों में चली गई। ये शासन बहुत ही क्रूरता और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात था, और इसके कुछ नेता प्लेटो के अपने रिश्तेदार थे। ये बात प्लेटो के लिए और भी ज्यादा पीड़ादायक थी। जब हम अपनों को गलत राह पर चलते देखते हैं तो हमें ज्यादा पीड़ा होती है। उन्होंने देखा उनके अपने भी अन्याय और हिंसा के रास्ते पर चल पड़े हैं। देश में अन्याय, हिंसा और नैतिक पतन ने नागरिक मूल्यों की जगह ले ली थी। जब लोकतंत्र पुनः स्थापित हुआ तो एक बार प्लेटो के मन में फिर ये आश जगी कि अब एथेंस अपनी गलतियों को सुधारेगा। लेकिन ठीक इसके उलट लोकतांत्रिक सरकार ने प्लेटो को एक और झटका दिया। 399 ईसा पूर्व में प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया गया। सुकरात पर नास्तिकता और युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप लगाए गए थे, जिन्हें जाहिर सी बात है प्लेटो ने झूठा और राजनीतिक रूप से प्रेरित माना। इस घटना ने प्लेटो को समझाया कि जब सत्ता अज्ञान के हाथों में होती है तो लोकतंत्र भी गंभीर अन्याय कर सकता है। निराश होकर प्लेटो ने राजनीति से भी दूरी बना ली। उन्होंने एक और नई राह तलाश की। प्लेटो का मानना था कि कोई भी शासन व्यवस्था तब तक न्यायपूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसे नैतिक विवेक का मार्गदर्शन न मिले। उन्होंने गहन अध्ययन किया और अंततः एथेंस में प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना की, जो पश्चिम का पहला उच्च शिक्षण संस्थान मानी जाती है। प्लेटो का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि समाज तभी न्यायपूर्ण होगा जब दार्शनिक शासक बनेंगे या शासक दार्शनिक। प्लेटो ने अपने इसी उद्देश्य में सफलता पाई। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी विपदाएं आई, उनकी बहुत सारी धारणाएं टूटी। प्लेटो राजनीति में जाना चाहते थे लेकिन राजनीति की कठोरता उन्हें रास नहीं आई। लेकिन फिर भी प्लेटो ने हार नहीं मानी, अपने लिए नित्य नए राह तलाशते रहे और आज विश्व के महान दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। तो ये थी प्लेटो की कहानी। दोस्तों, उम्मीद है आपको प्लेटो की कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो ये थी आज की मोटिवेशनल बातें। हम आपके लिए ऐसी ही कुछ जरूरी और मोटिवेशनल बातें लाते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ये कहावत हमारे यहाँ बहुत मशहूर है। इसका मतलब होता है कि अकेले रहकर हम कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम संगठित हो जाएं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसान अगर संगठित हो जाए, यानी कि अगर हम किसानों का संगठन बना ले, जिसे कि हम FPO कहते हैं, तो फिर किसानों की कमाई बढ़ सकती है और बहुत तरह के उन्हें लाभ भी मिल सकते हैं। तो आज हम FPO के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि किसान संगठन के बारे में बात करने वाले हैं। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा पांडे जी। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, आप हैं सहायक प्राध्यापक। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार मैडम।
1: मैम, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है कि किसान संगठन या फिर जिसे हम FPO भी कहते हैं, वो क्या है और हमारे किसान भाई बहन अभी भी इससे अनजान कैसे हैं?
3: जी, ये आपका बहुत ही बुनियादी सवाल है। देखिए, बिहार में अधिकतर किसान छोटे या सीमांत हैं, उनके पास ज़मीन कम है। अब जब वे अकेले खाद, बीज ये सब खरीदने जाते हैं तो उन्हें महंगा मिलता है, और जब फसल बेचने जाते हैं तो बिचौलिए उनके बहुत ही कम दाम देते हैं। किसान उत्पादक संगठन इन्हीं छोटे किसानों का एक समूह है। यह एक कंपनी की तरह काम करता है, लेकिन इसके मालिक खुद किसान ही होते हैं। जब 100 से 200 किसान एक साथ मिलते हैं तो उनकी सौदेबाजी, जिसे हम बार्गेनिंग पावर कहते हैं, वो काफी बढ़ जाती है।
1: तो मैम, FPO में सस्ते बीज भी मिलते हैं। सस्ते बीज के साथ क्या संगठन से जुड़ने के बाद कोई और भी फायदा होता है? खेती के तरीकों में भी क्या बदलाव आता है या आया है?
3: जी, इन संगठनों से जुड़ने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि कस्टम हायरिंग सेंटर खोला जाता है जिसके तहत किसानों को हम बड़ी जो उपकरणें होती हैं कृषि से संबंधित, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रोन, इन जैसी महंगी मशीनें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, संगठन से बहुत कम किराए पर ये ले सकते हैं। इससे मजदूरी का खर्च भी कम हो जाता है और समय की भी बचत होती है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार FPO को नई मशीनें खरीदने के लिए भारी सब्सिडी भी देती है। इसके अलावा संगठन के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों से सीधे जानकारी मिलना आसान हो जाता है।
4: जी मैम, तो जैसे कि आपने बताया बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बाज़ार की। जैसे कि हम जानते हैं, किसान भाई बहन भी इस बात से रूबरू होंगे कि खेत में जो टमाटर 2 रुपए किलो मिलता है वो बाज़ार पहुंचते ही 40 रुपए किलो हो जाता है। इसमें किसान भाई बहनों को बहुत फ़ायदा तो नहीं होता है, लेकिन अगर वो किसान संगठन से जुड़ जाएँ तो किसान संगठन उनकी कैसे मदद कर सकता है?
3: जी, यही तो पूरा खेल है, फ़ायदा तो होता ही नहीं है, बल्कि उनका जो कॉस्ट है, जो पैदावार करने की कॉस्ट है, कभी कई बार ऐसा होता है कि वो भी नहीं निकल पाता है। तो अकेले किसान के पास अपनी फसल को भंडारण करने की जगह नहीं होती है, इसीलिए वह उसे औने पौने दाम में बेच देता है। लेकिन संगठन के पास अपना गोदाम या कोल्ड स्टोरेज, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिससे कि वो उसे जब बाज़ार में इसका मूल्य ज़्यादा हो तब बेच करके अधिक मुनाफा कमा सके। दूसरी बात ये है इसका प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग। अगर आप केवल मखाना बेचेंगे तो कम पैसे मिलेगा, लेकिन अगर संगठित होकर मिलकर मखाना की ग्रेडिंग करें, उसे पैकेजिंग करें, ब्रांडिंग करें, तो मुनाफा 2 गुना 3 गुना तक हो सकता है।
4: जी मैम, तो मुनाफा हो सकता है अगर हमारे किसान भाई बहन संगठन से जुड़े, लेकिन अब सवाल यह है कि वो संगठन से कैसे जुड़े, या फिर अगर वो आपस में संगठन बनाना चाहें तो उसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से वो सरकार से मदद ले सकते हैं?
3: जी, तो सबसे पहले तो जो किसान भाई बहन हैं उन्हें अपने क्षेत्र में कम से कम 10 से 20 जागरूक किसान जो हैं उनके साथ एक बैठक करने की ज़रूरत है। अपने ज़िले के कृषि विभाग या कि नाबार्ड, उनके कार्यालय में संपर्क करने की ज़रूरत है। सरकार भी FPO बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देता है और विशेषज्ञों की मदद भी देती है। बिहार में जीविका के माध्यम से भी कई महिला किसान संगठन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
4: मैम, अब मैं चाहूँगी कि आप विस्तार से बताएं कि इसकी प्रक्रिया क्या है, और चरण दर चरण अगर कोई किसान भाई बहन चाहें FPO बनाना तो किस तरीके से बना सकते हैं?
3: जी ज़रूर, तो इसका जो तैयार होने का प्रक्रिया है ये मुख्यतः 3 चरणों में होता है। किसान संगठन मुख्य रूप से एक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। तो पहली प्रक्रिया में क्षेत्र और फसल का चयन किया जाता है। सबसे पहले एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जाता है जहाँ किसान एक जैसी फसलें उगाते हों। जैसे आम उगा रहे हैं तो सारे किसान आम उगाएंगे, मखाना की खेती हो रही है तो सारे किसान मखाना की खेती करेंगे, या सब्जी की वो FPO होने वाला तो सारे किसान सिर्फ सब्जी ही लगाएंगे अपने खेत में। फिर कम से कम 10 या उससे अधिक प्राथमिक जो किसान हैं, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी आवश्यकता होती है। हालांकि एक सफल FPO के लिए कम से कम 300 से 500 किसानों का लक्ष्य रखा जाता है। उसके बाद बारी आती है पंजीकरण कराने की, तो इसके लिए कम से कम 5 निदेशक जो कि बनाए जाते हैं किसानों के बीच से ही, उनका डिजिटल हस्ताक्षर जिसे DSC कहते हैं और DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वो बनवाना होता है। उसके बाद उस संगठन की नाम की स्वीकृति ली जाती है। अपने जो कंपनी बनाई है इसके लिए एक बहुत ही यूनिक सा नाम चुना जाता है और फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC के से वो स्वीकृत कराया जाता है। उसके बाद बारी आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करने की, जिसमें कंपनी के नियम लिखे जाते हैं। उसके बाद आपको पंजीकरण का प्रमाण पत्र ROC के द्वारा जांच के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके बाद आप इसके प्रबंधन और संचालन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि किसानों के बीच से ही चुना जाता हो वो चुनने की आवश्यकता है। उसके बाद उसमें CEO व्यावसायिक कार्यों के लिए एक सीईओ और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की नियुक्ति की जाती है।
4: मैम

0: एफपीओ बनाने के लिए ऋण की जरूरत हो, वित्तीय सहायता की जरूरत हो, तो वो किसान भाई बहनों को कैसे मिलते हैं और क्या क्या सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ?
1: जी, पूंजी के लिए भारत सरकार और नाबार्ड विशेष मदद देते हैं। जैसे कि पहला है इक्विटी ग्रांट स्कीम। इसके तहत यदि किसानों ने मिलकर 5 लाख रुपए जमा किए हैं तो सरकार भी संस्था को 5 लाख रुपए का अनुदान देगी। उसके बाद इसका अधिकतम 15 लाख रुपए तक इसकी सीमा हो सकती है। दूसरा तरीका है क्रेडिट गारंटी फंड, जिसमें अक्सर बैंकों को बिना गारंटी के लोन देने में डर लगता है। इसके समाधान के लिए SFAC स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम और नाबार्ड क्रेडिट गारंटी देते हैं। इससे इसके तहत FPO जो है उसको बिना किसी जमीन या संपत्ति को गिरवी रखते हुए 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। और इसकी सुरक्षा, यदि FPO लोन नहीं चुका पाते हैं तो सरकार उस लोन को एक बड़े हिस्से की भरपाई बैंक को करनी पड़ती है। तीसरा है प्रबंधन लागत सहायता, जिसमें कि CEO का वेतन, ऑफिस का किराया, बिजली बिल और अन्य खर्चों के लिए 18 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है।
0: तो मैम, इसके अलावा किसानों को, किसान भाई बहनों को और कौन कौन से लाभ मिलते हैं?
1: जी, इसके अलावा जैसे कि FPO में संगठित होने से इनको सबसे पहले कि सस्ता इनपुट मिल जाता है। थोक में खरीदने के कारण बीज, खाद, कीटनाशी बाजार से करीबन 10-15% सस्ते दामों में मिल सकते हैं। इसके अलावा मशीनरी बैंक्स जैसे FPO अपना कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं, जिससे किसानों को सस्ते दामों में ट्रैक्टर या ड्रोन किराए पर मिल सकता है। और साथ ही मूल्य संवर्धन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर किसान अपने फसल को ब्रांड बनाकर ऊंचे दामों पर शहरों में बेच सकते हैं। और एक आपको चौथा मुख्य लाभ है, सीधा बाजार मिल जाएगा। बिचौलियों को हटाकर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को आप अपना माल बेच सकते हैं।
0: मैम, अब किसान भाई बहन उनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि FPO बनाने के लिए किसान भाई बहन कहाँ से सहायता लें?
1: जी, FPO बनाने के लिए सरकार ने CBBO क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नियुक्त किए हैं। ये विशेषज्ञ संस्थाएं 5 साल तक किसानों को पंजीकरण से लेकर बाजार दिलाने तक में मदद करती हैं। आप अपने जिले के कृषि विभाग, नाबार्ड कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। बिहार में जीविका भी महिला किसानों को FPO बनाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है।
0: बहुत ही अच्छी ये चर्चा रही। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप किसान भाई बहनों को अंत में कोई संदेश दें।
1: जी, किसान भाई बहन, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि संगठन में ही शक्ति है। अपने गांव में छोटे छोटे समूह बनाइए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए। और याद रखिए, उन्नत बीज, उचित बाजार, किसान संगठन है खुशहाली का आधार। धन्यवाद।
0: मैम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई बहनों, अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और ये विषय है खास तौर से उन महिलाओं के बारे में जो कामकाजी हैं। और आज के समय में हर दूसरी महिला कामकाजी हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है। लेकिन कई बार उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, और ख़ास तौर से ये उसी जगह पर होता है जहां वो काम करने जाती हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी महिलाओं के एक बेहद ही अच्छे साथी के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जो उन्हें उनके कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। और उनका ये साथी है, या फिर कहें कि उनकी ये दोस्त है, शी बॉक्स। शी बॉक्स क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों कई बार ना क्या होता है कि महिला अपने काम पे निकली, बहुत ही अच्छे से निकली, लेकिन वहां पर उन्हें असहज महसूस होता है क्योंकि उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर देता है या फिर कोई उनसे ऐसी अभद्र बातें कह देता है कि महिला को बहुत बुरा लगता है या फिर किसी लड़की को बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसे में वो परेशान हो जाती है कि किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें, इसका क्या निदान निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं का साथी या फिर कामकाजी महिलाओं की दोस्त कौन है, शी बॉक्स ये क्या है। अगर मैं आपको शी बॉक्स का पूरा नाम बताऊं तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप यौन उत्पीड़न के बारे में बातें बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और एक ये ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रखना। पता है सबसे जरूरी बात ये है कि अब चुप रहना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप अपनी आवाज उठाएं और आप इसे संबंधित विभाग तक पहुंचें, तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। और सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, वो सिर्फ आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा गलत, और लड़कियों के साथ भी वो गलत व्यवहार ही करेगा। इसलिए जरूरी होता है कि वैसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए। और आप आवाज उठाएंगी तो यकीन मानिए कि आपका डर खत्म होगा, लेकिन उस इंसान के अंदर डर जरूर आ जाएगा कि अब हमें ऐसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं देना है जिससे किसी महिला को परेशानी। शी बॉक्स कैसे काम करता है और ये कानून से कैसे जुड़ा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम शी बॉक्स के कानून के बारे में बात करें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट यानी कि पॉश एक्ट 2013 में आया था और इसी के तहत शी बॉक्स को लाया गया था। और अगर हम बात करें कि इस कानून के अनुसार क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हर संस्था के अंदर शिकायत की जांच 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और इसके साथ ही ये भी जरूरी होता है कि महिला अपनी पहचान को गोपनीय रख सकती है। अगर वो शिकायत कराती भी है तो ऐसे में उनकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहती है। और कौन शिकायत कर सकता है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी है या फिर प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप काम कर रही हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आप इंटर्न हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं या फिर आप अस्थाई कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है, आपको सुरक्षित करने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि आप अपने घर के बाहर, आप अपने वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। अगर हम शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में आपको बताएं तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है shebox.wcd.gov.in यानी कि shebox.wcd.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और आपकी जो भी शिकायत है आप दर्ज कराइए और यकीन मानिए 90 दिनों के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी जो भी शिकायत है उसके बारे में बिल्कुल काम किया जाएगा और साथ ही आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। आप जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं वहां पर आपसे आपका जो भी विवरण है वो पूछा जाएगा और आपके साथ जो घटना हुई है उसका भी विवरण वहां पर आपसे पूछा जाएगा और ये सारी चीजें आप वहां पर सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें छोटी सी छोटी जो डिटेल होती है ना वो भी बहुत जरूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी परेशानी का समाधान मिले तो जो भी वहां पर पूछा जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से लिख दीजिए, भले ही वो थोड़ा लंबा हो पर लिखिए जरूर। और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसे आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है वो अब कहाँ तक पहुंची है। दोस्तों आखिर शी बॉक्स जरूरी क्यों है ये तो बिल्कुल आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं डर के कारण चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल होता है वो ये होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत नाटक कर रही है, इनके तो बहुत नखरे हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी जाती है कि महिलाएं ये सारी बातें सोचकर ही चुप रह जाती है और उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी, जी नहीं, याद रखिए कि अगर आप बात करेंगे तो बात रुकेगी और आप

ये हम क्यों सोचे, बस इतना सोचिए कि आप खुद को सुरक्षित रखिए, और जब आप अपनी जगह पर सही होती हैं तो उसका परिणाम भी सही ही आता है। ध्यान रखिए कि कोई भी चुप्पी समस्या को खत्म नहीं करती है, बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। इसलिए शी बॉक्स महिलाओं को ये भरोसा देता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों, कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है। दोस्तों, यौन उत्पीड़न के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं आ सकती है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने अनुचित टिप्पणी कर दी, मोबाइल पर आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है, या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है, या फिर आपको कोई बिना अनुमति के छूता भी है, तो ये भी यौन उत्पीड़न का मामला होता है। अगर आपको किसी ने ऐसी कोई बात कह दी, आपके शरीर पर कोई टिप्पणी कर दी, तो ये भी यौन उत्पीड़न ही है। और कई जगहों पर ये देखा जाता है कि प्रमोशन के बदले गलत प्रस्ताव दिए जाते हैं, प्रमोशन के बदले गलत फेवर मांगे जाते हैं, तो ये भी यौन उत्पीड़न का ही मामला है। और आप बहुत विश्वास के साथ बिना डरे शी बॉक्स पर इन बातों के कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डरा रहा है, आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है किसी चीज के लिए, तो भी आप शी बॉक्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है आपके साथ, तो ध्यान रखिए कि ये मजाक नहीं है, ये अपराध है। अगर कोई मजाक में भी आपसे कुछ अश्लील बातें कर रहा है या कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है, अगर उसे आपको असहज महसूस हो रहा है, तो उसे कहिए, रोकिए कि मुझे बुरा लग रहा है। और अगर इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और अपनी हरकतों को जारी रखता है, तो आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। और दोस्तों, जब तक हमारी नारी बोलेंगी नहीं ना, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जब नारी बोलती है, तो सबसे जरूरी होता है कि हम नारी ही उनका साथ दें, डटकर उनका साथ दें, तभी अन्याय खत्म होगा। क्योंकि आज लगभग हर जगह पर जहां भी महिलाएं काम कर रही है, वहां कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके इरादे गलत होते हैं, जिसकी सोच गलत होती है। और कई बार ऐसे लोग मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको बिल्कुल असहज कर देता है, और कुछ पल के लिए नहीं, बल्कि वो बातें बहुत लंबे समय तक हमारे मन में रह जाती है, और हम उस बारे में सोचते रहते हैं और खुद को समझाते रहते हैं कि मजाक ही तो था। जी नहीं, ये मजाक नहीं था। अगर आपको कोई बात असहज कर रही है, तो आप साफ साफ कहिए कि मुझे ये बात नहीं पसंद है। अगर सामने वाला समझदार है और वो उसने जानबूझकर आपके साथ वो मजाक नहीं किया है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ, इससे नहीं पसंद है, तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया है और आपको असहज महसूस कराने के लिए ही किया है, तो वो नहीं रुकेगा और वो सिलसिला दोहराएगा, तो फिर आपको उसे रोकना होगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, जो भी हमारी महिला मित्र सुन रही हैं, या फिर जो पुरुष भी सुन रहे हैं, क्या आपके कार्यस्थल पर कोई इंटरनल कमिटी है जहां पर ऐसे परेशानियों का समाधान किया जाता है? क्या आप जिस संस्था में काम करते हैं, वहां पर पोष की, यानी कि POSH की ट्रेनिंग होती है? इस ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, यौन उत्पीड़न क्या है, और क्या क्या व्यवहार अनुचित माना जाता है, मजाक और उत्पीड़न में क्या फर्क होता है। क्योंकि कई बार लोग मजाक और उत्पीड़न में फर्क भूल जाते हैं, और कई बार लोग जानबूझकर ही ऐसी हरकतें करते हैं और उसे मजाक का नाम दे देते हैं। शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, ये भी पोष की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और IC की भूमिका क्या है, यानी कि इंटरनल कमिटी की भूमिका क्या है, ये भी आपको पोष की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और महिलाओं के बारे में तो हमने बात कर ली, उनके लिए शी बॉक्स है और महिलाएं खुद भी उनके लिए हैं, लेकिन पुरुषों का साथ भी बहुत जरूरी होता है। पुरुषों के लिए बस एक छोटा सा संदेश ये है कि ये जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। सम्मान देना दोस्तों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप दूसरी महिला को सम्मान देंगे, तो आपके घर के जो लड़के हैं ना, वो भी यही सीखेंगे कि महिलाओं को कैसे सम्मान देना है। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर समाज बनाने के लिए आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाते हैं, तो आपके घर की लड़कियां भी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ महिलाओं की नहीं, पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके सामने कोई दूसरा पुरुष ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि उचित नहीं है, तो आप उसे रोकिए। पता है, आपके ऐसा करने से जिस महिला के साथ ये हो रहा है, उसके मन में आपके लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही वो और भी ज्यादा सशक्त महसूस करेंगी। उनके अंदर एक विश्वास आएगा कि कोई है जो उनका साथ देने के लिए है, एक समाज है जो बेहतर है। उन्हें ये विश्वास होगा कि समाज में आज भी कुछ बेहतर लोग मौजूद हैं। दोस्तों, तो जो जागरूक पुरुष हैं, जो एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, वो ज़रूर अपने आसपास गलत होते हुए देखते होंगे, तो रोकते होंगे। और दोस्तों, शी बॉक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है, और ये एक कदम है महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए।

0: अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए, क्योंकि लेडीज फर्स्ट का मतलब ही है महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, सम्मान पहले और अधिकार बराबर की। तो दोस्तों, इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट, आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप चुप नहीं रहेंगी अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो, और जो पुरुष भी सुन रहे हैं वो भी ये समझेंगे कि अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं अपने आप के लिए, अपने घर की औरतों के लिए, तो फिर आपको भी आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। आवाज़ उठाइए क्योंकि आपकी आवाज़ ही आपकी ताकत है। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
1: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं अधिक फलन के लिए अमरूद के बागों में छत्र प्रबंधन कैसे करें और इसका महत्व क्या है। इस बारे में हमें विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ममता कुमारी, आप हैं SMS हॉर्टिकल्चर KVK सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू उमा। नमस्कार किसान भाइयों।
0: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि छत्र प्रबंधन है क्या?
2: अमरूद में मुख्यतः लोग अमरूद को, अभी तक हमारे किसान जो अमरूद है बागवानी फसल में घर के पिछवाड़े तक ही रखे थे, लेकिन अभी व्यवसायीकरण का समय है, अमरूद की लोग सघन बागवानी लगाते हैं। जो दूरी अनुशंसित की गई है उस दूरी से कम दूरी पर जब अमरूद को लगाया जाता है तो उसको सघन बागवानी कहते हैं। तो जब सघन बागवानी लगाते हैं तो उसमें सबसे पहला चीज है प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाना, फलन के उपयोग के लायक बनाना, ज्यादा से ज्यादा कलों को क्रिएट करना। तो जब बाग आम अमरूद के पौधों को लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है, शुरू के 2 साल तक उसमें प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, प्लांट की संरचना को बनाया जाता है, और जिसमें प्लांट को हम अपने पौधों को अपने अनुसार काटते छाटते हैं और इस प्रकार बनाते हैं कि उसका जो पेरीमीटर होता है, ऊपरी परिधि जो होती है वो 2 मीटर का हो जाए और जो उसका केंद्र वाला भाग हो वो खुला रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धूप उसमें जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण हो। तो जब अमरूद की सघन बागवानी लगाते हैं, कम दूरी पे लगाते हैं, और अगर उसकी कटाई छटाई ना की गई तो अमरूद का बगीचा नहीं जंगल हो जाएगा और हमेशा उसमें सूट जो होते हैं कल्ले ही आते रहेंगे, फलन कम होगा। तो इसके लिए समय समय पर उसकी कटाई छटाई अति आवश्यक।
0: मैम, हमने छत्र प्रबंधन के बारे में जान तो लिया लेकिन हमें इस काम को कब करना चाहिए?
2: अमरूद में 3 फलन होता है, मृग बहार जो अभी हमारे यहाँ अमरूद के फलों में लगा हुआ है, मृग बहार इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें बहुत ज्यादा फलन होता है और बहुत ज्यादा फलन होने से जब मृग एक ग्रुप में रहता है तो कभी अकेले नहीं रहता है, बहुत सारा मृग एक साथ रहते हैं, मृग बहार। दूसरा जो फलन होता है वो अक्टूबर में होता है जिसको अम्बे बहार कहा जाता है, और जब तीसरा फलन होता है इसका फरवरी मार्च में होता है जिसे शरद बहार कहते हैं। तो आप गौर करेंगे कि जो अमरूद रहता है उसमें अमरूद में एक फूल लगता रहता है, हमेशा अमरूद में एक फूल दो फूल आपके पौधों के अनुसार लगा रहेगा, उसमें छोटा छोटा फल लगा रहता है, उसमें धीरे धीरे धीरे फूल आने की प्रक्रिया चलते रहती है और उसमें फल आने की प्रक्रिया चलते रहती है। तो अमरूद में कटाई छटाई जो मुख्यतः किया जाता है वो मई के अंत में पहला होता है, दूसरा होता है अक्टूबर में होता है, अक्टूबर नवंबर के प्रारंभ तक कर सकते हैं, तीसरा होता है जनवरी के अंत और फरवरी तक आप कर सकते हैं। सकते हैं। आप कौन सा फलन लेना चाहते हैं उस पर मुख्यतः निर्भर करता है। अगर आप इसको फल तोड़ाई के बाद, हमारे यहाँ तीन फलन नहीं प्राप्त हो पाता है, क्योंकि हम लोग बहुत ठंडे वाले प्रदेश में रहते हैं, जब इसमें नवंबर से लेकर के जनवरी तक काफ़ी ठंड पड़ती है तो उसमें पौधों का जो बढ़वार है वो धीमा हो जाता है और फलन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो उसमें हम लोग को बिहार में कंडीशन में ये एक फलन नहीं तो दो ही फलन हमारे किसान ले पाते हैं। इसके लिए कटाई छटाई फरवरी वाला कटाई छटाई मुख्यतः किया जाता है, और फरवरी के बाद आप अक्टूबर में काटते छाटते हैं। अगर इसको छत्रक बनाने के लिए हमारे किसानों को करना चाहिए तो मई में करना चाहिए, और फिर अक्टूबर में करना चाहिए, और अक्टूबर के बाद फिर जनवरी फरवरी में करना चाहिए।
0: और मैम कैसे करना चाहिए कटाई छटाई?
2: कटाई छटाई का एक खास प्रक्रिया है, जैसे आप अमरूद का पौधा लगाते हैं जून के महीने में, तो अक्टूबर में इसको पहला कटाई करना है। कटाई करने में पहले नीचे से 50 सेंटीमीटर एकदम तना को साफ सुथरा कर लेना है, कोई उस पर कल्ला नहीं रहेगा। दूसरा करना है कि ऊपर से चार तना को चयनित कर लेना है जो चारों दिशा में हो, या पांच तना को चयनित कर लेना है, और पांच तना को फिर आधे भाग से काट देना है। और कटाई के उपरांत इसको सबसे पहले सारी पत्तियों को हटा देना चाहिए। पत्तियों को हटाने के बाद जो कटा भाग है उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को लगाना चाहिए, कटे भाग को उसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ, तना के नीचे की तरफ ला करके उसको लेप को लगा देना चाहिए ताकि किसी प्रकार का फफूंद का आक्रमण ना हो। और पत्तों को बगीचा में ही रहने देना चाहिए, पत्तों को बगीचा के बाहर नहीं करना चाहिए, और कटाई के उपरांत एक पटवन निश्चित कर देना चाहिए।
0: तो इन तरीकों से कटाई छटाई करनी चाहिए।
2: मुख्यतः कटाई छटाई अमरूद में इतनी क्यों आवश्यक है? क्योंकि अमरूद जो होता है नए कल्लों पर ही फलता है, नया कल्ला उसमें क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फूल उसमें लगे और फल बन सके।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने जो बातें बताई उम्मीद है कि उससे हमारे किसान भाई बहन या फिर जिनके भी घर में अमरूद के पेड़ हैं वो प्रबंधन करके अधिक फलन पा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
3: CIET NCERT presents ऑडियो बुक मैथ्स मेला, टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 5,
4: पेज 42, चैप्टर 4, वी द ट्रैवलर्स पार्ट 2। ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पेज देयर इज अ QR कोड वेयर यू कैन फाइंड द एडिशनल रिसोर्सेस। यू कैन स्कैन द QR कोड बाय दीक्षा ऐप। मेकिंग सम्स इक्वल, देयर आर टू ग्रुप ऑफ नंबर्स। लिसन केयरफुली एट द नंबर्स इन ईच ग्रुप and their sums. Interchange pair of numbers between the two groups to make their sums equal. Try to do this using the least number of moves. You could write each number on a small piece of paper. Each problem shows two neat columns of numbers with shaded boxes. Their total is written at the bottom and the challenge is to swap numbers to make the two sums equal. Part A. Left group of numbers are 1, 2, 7 and 9. Their sum is written as 19. Right group of numbers are 3, 4, 5 and 9. Their sum is written as 21. The picture, an arrow is pointing from 2 to 5, suggesting an interchange. In Part B. Left group numbers are 5, 7, 12 and 15. Their sum is written as 39. Right group numbers are 9, 11, 13, 14. Their sum is written as 47. In part C, left group numbers are 11, 15, 19, 23. Their sum is written as 68. Right group numbers are 13, 17, 21, 25. Their sum is written as 76. And in part D, left group numbers are 77, 78, 79 and 80. Their sum is written as 314. Right group numbers are 81, 82, 83 and 84. Their sum is written as 330. Think what will happen to the sum if we interchange the digits. Try interchanging other pair of numbers and find the one that will make the sums equal. Page 43. Fuel arithmetic. A short note explains different vehicles need different quantities of fuel. This quantity can vary from 5 to 15 liters in the case of motorbikes, 15 to 50 liters in case of cars, 150 to 500 liters in case of lorries and trucks, and 5000 liters in the case of train. There is a reminder box that says, we must save fuel as it is a limited resource. Reducing fuel usage also helps in cutting down pollution. Electric vehicles are now available that help conserve natural fuel and reduce pollution. First question. A lorry has 28 liters of fuel in its tank. An additional 75 liters is filled. What is the total quantity of fuel in the lorry? The numbers 28 and 75 are there in a table of 100, tens and ones. The total quantity of fuel in the tank is 28 liters plus 75 liters. Do you remember how to add two numbers using place value of numbers? The ones column has 8 plus 5 regrouped as 13. The tens column has 2 plus 7 plus 1 making 10. The total is written as 103 liters. Let us try one more. Second question. Find the sum of 49 and 89. There is a table of hundreds, tens and ones. The numbers 49 and 89 are placed inside, ready to be added. The answer box at the bottom are left empty for you to complete. Let us solve. Add the following numbers. Wherever possible, find easier way to add the pair of numbers. First, 15 plus 79. Second, 46 plus 99. Third, 38 plus 35. Fourth, 5 plus 89. Fifth, 76 plus 28. Sixth, 69 plus 20. Page 44. Relationship between addition and subtraction. First, find the relationship between the numbers in the statements and fill in the blanks appropriately. Part A. If 46 plus 21 equals to 67, then 67 minus 21 equals to blank. 67 minus 46 equals to blank. Part B. If 198 minus 98 equals to 100, then 100 plus dash equals to 198. 198 minus dash equals to 98. Part C. If 189 plus 98 equals to 287, then 287 minus 98 equals to dash. 287 minus 189 equals to dash. Part D. If 872 minus 672 equals to 200, then 200 plus dash equals to 872. 872 minus dash equals to 672. You have to fill all these blanks. Second, in each of the following, write the subtraction and addition sentences that follow from the given sentence. Part A. If 78 plus 164 equals to 242, then blank. Part B. If 462 plus 839 equals to 1301, then blank. Part C. If 921 minus 137 equals to 780,

0: एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8

0: जाता है, साथ साथ में जो है कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये भी बहुत सारा पाया जाता है। और हमारा देश भारतवर्ष जो है भिंडी के जो है इसका फलन के लिए बहुत इस हमारा जो जलवायु है इसके अनुकूल है, और इसीलिए जो है हमारा देश अभी पूरे विश्व में जो है भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। और भिंडी जो है पूरे साल में दो बार से लेके तीन बार भी हम उगा सकते हैं, गर्मियों में भी उगा सकते हैं, तथा जो मुख्य फसल भिंडी का है वो खरीफ मौसम का है, यानी कि बरसाती जो फसल है वही भिंडी का मुख्य फसल है। और इसमें जो है भिंडी को उगाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे उन्नत किस्म हैं, जैसे IIVR वाराणसी से डेवलप किया गया जो किस्म है काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति, इसके साथ साथ में काशी सहिष्णु, काशी वर्धन, काशी सातधारी, काशी पराक्रम, काशी उत्कर्ष, काशी चमन, काशी लीला, ये जो है ये सारे जो है हरे रंग में जो हमारा भिंडी है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हरे रंग में मिलता है, तो ये सारे किस्म हरे रंग की है। साथ साथ में एक नई किस्म काशी लालिमा भी जो है वो लाल रंग में उन्नत किस्म तैयार किया गया है IIVR द्वारा। ये इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे संकर किस्म हैं जो कि काशी वैरव है, काशी सृष्टि, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, सोनाक्षी, शक्ति, ये सारे महत्वपूर्ण संकर किस्म हैं।
1: मैम, बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें?
0: खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सब्जी के फलन के लिए। तो सर्वप्रथम भिंडी के लिए खेत की प्रारंभिक जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, और उसके बाद में दो से तीन जुताई कल्टीवेटर से कर लेते हैं, और दूसरी जुताई जिस समय किया जाता है उस समय पर जो है 150 से 200 क्विंटल अच्छे से सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट जो है खेत में अच्छे से मिलाया जाता है, और अंतिम जुताई के बाद में जो है पाटा चलाकर खेत को अच्छे से समतल बनाया जाता है।
1: बुआई का तरीका क्या है और बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
0: जो गर्मा भिंडी है जिसको कि हम लोग फरवरी के महीने में सामान्यतः लगाते हैं, उसके लिए बीज का दर लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए ज़रूरी होता है। और अभी जो बरसाती मौसम के जो भिंडी है, जो खरीफ भिंडी अभी लगने वाली है, उसके लिए जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। और यहीं पर अगर भिंडी का संकर किस्म हम लोग लगाते हैं तो लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीज से ही वो काफी होता है एक हेक्टेयर लगाने के लिए। और साथ साथ में जो है खरीफ जो फसल है जो अभी हम लोग लगाने वाले हैं, तो ये मई के लास्ट जो है मई महीने के अंत से लेके जुलाई महीना भर हम लगा सकते हैं। और जो गर्मा भिंडी है उस भिंडी को जो है हम लोग लगभग फरवरी महीना भर लगाते हैं। और जो हम लोग बीज जब लगाएंगे तो बीज से लगाने के पहले जो है बीज को उपचार कर लेना चाहिए, और 2 से 3 ग्राम का कैप्टान या फिर 1 ग्राम बविस्टिन दवा जो है प्रति किलोग्राम बीज के दर से हम लोग अगर इसका उपचार कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। साथ साथ में जो भिंडी जो हमारा फसल है ये सीधी बुवाई करते हैं हम खेत में, तो बुवाई के पहले बीज को 24 घंटा के लिए हम पानी में भिगो कर रखते हैं और बीज जो है फूल जाते हैं, तो उस फूले हुए बीज को हम खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने से पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि खेत में हल्की हम सिंचाई देके जब नमी रहेगा उसी खेत में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, तो इसको कतारों में लगाते हैं। जो खरीफ की भिंडी फसल है इसको कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी बना के हम लोग कतार बनाते हैं, और कतारों में जो है 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं और वैसे करके भिंडी लगाते हैं। और अगर यही गर्मा भिंडी का फसल होता है तो उस समय पे हम लोग लगभग 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं, और भिंडी के जो दोनों पौधा है उस पौध के बीच का दूरी उस समय पे गर्मा के समय पे 30 सेंटीमीटर लगता रखते हैं। खास करके गर्मा के समय पे हम देखते हैं अंकुरण थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए एक स्थान पर जो है 2 से 3 बीज की बुवाई करते हैं, परंतु संकर किस्मों का बीज क्योंकि महंगा होता है इसीलिए एक स्थान पर एक ही बीज की बुवाई किया जाता है।
1: मैम, खाद और उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए?
0: भिंडी के फसल के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा जो है अच्छे से मिट्टी जांच करने के उपरांत ही करना चाहिए। सामान्यतः जो हम देखते हैं अच्छी फसल लेने के लिए 150 से 200 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट या फिर 60 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर में हम लोग उसको उपयोग करते हैं।

0: साथ साथ में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फेट एवं 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसके आधी मात्रा तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय पे खेत पे मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन है उसका जो आधा शेष रहता है वो पौध जमने के बाद में 25 से 30 दिन पे, और दूसरी बार जो है बाकी आधा शेष जो है 50 से 55 दिनों के बाद में पौध में जड़ के पास में टॉप ड्रेसिंग के तहत से हम लोग उसको डालते हैं। इसके अलावा में जो है भिंडी में सूक्ष्म पोषक तत्व का भी महत्व है, और इसमें जो है कैल्शियम और बोरोन का अगर हम लोग पर्णीय छिड़काव करते हैं तो इससे उपज का क्षमता बढ़ता है, और पादप वृद्धि नियामक का भी हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं, और इसमें जो है जिबरेलिक एसिड और ट्राई कैंटनॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे जो है अधिक उपज प्राप्त हो सकता है। और खास करके ट्राई कैंटनॉल का उपयोग गर्मा भिंडी में अगर हम लोग करते हैं तो इसमें उपज काफ़ी बढ़ता है।
1: मैम, निकाई गुड़ाई और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
0: सामान्यतः जो है हम लोग भिंडी को जब लगाते हैं तो थोड़ा बहुत नमी जब रहेगा खेत में, एक हल्का सिंचाई देके जब जिस खेत में नमी रहेगा उसी में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, बुआई करेंगे, और उसके बाद में जो है भिंडी का जो सिंचाई है वो लगभग हम लोगों को अगर बरसाती मौसम है तो देखना पड़ेगा कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके हिसाब से पानी देना पड़ेगा। लगभग 10 से 12 दिन में एक बार पानी देना चाहिए, लेकिन बारिश को देखते हुए। और अगर गर्मा भिंडी है तो उसमें जो है हफ्ते में एक बार तो पानी देना बहुत आवश्यक हो जाता है, और सामान्यतः हम देखते हैं सिंचाई करने के 3 से 4 दिनों बाद में जब नमी अच्छा रहता है उस समय पे निराई गुड़ाई करने से सारा खरपतवार नष्ट हो जाती है। और शुरुआती फेज में जैसे जो फसल जब 40 से 45 दिन तक रहता है उस समय तक अगर हम लोग खरपतवार से अच्छे से फसल को बचा लेते हैं तब जो है उपज इसमें अच्छा मिलता है।
1: मैम, अब बात करते हैं फल की तुड़ाई की, तो तुड़ाई कैसे करनी चाहिए और उपज कितनी होती है?
0: जब भिंडी का फल लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और फल जो है कोमल रहता है और हल्के हरे रंग से या फिर गहरे हरे रंग जैसे उसका कलर जो रंग है वैरायटी वाइज जैसे रंग है उस रंग का होता है उस समय पे फल की तुड़ाई किया जाता है। और ज़्यादा दिन अगर हम फसल को खेत में छोड़ देते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा हो जाता है तो उसको खाने लायक नहीं रहता है। और ऐसे देखा जाता है जब फूल खिलता है तो उसके 3 से 4 दिन के भीतर ही भिंडी तोड़ने लायक हो जाता है, और जब फसल में तोड़ाई शुरू होता है एक बार तो हर दूसरे से तीसरे दिन में भिंडी तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो हम लोग जो है हर दूसरे से तीसरे दिन हम भिंडी तोड़ते रहेंगे ताकि इसमें जो है ज़्यादा जो है इसमें फाइबर ना डेवलप करे और खाने लायक योग्य रहे और बहुत अच्छा सा रहे। और अगर हम लोग उचित देखभाल करते हैं, अच्छा किस्म का उपयोग करते हैं, सही से खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो प्रति हेक्टेयर से 120 से 150 क्विंटल हरे फल की उपज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यही अगर संकर किस्म है तो उसमें 170 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी उपज का हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भिंडी की खेती के बारे में बहुत सी उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप अपना और अपनी फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। सही और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही तो लाभ कई। दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक हमने बहुत सारी बातें की है और बहुत सारी बीमारियों के बारे में आपको बताया है, पर आज हम बातें करने वाले हैं टीबी के बारे में। इसके पीछे खास वजह यही है कि आज पूरे विश्व में वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है और वर्ल्ड टीबी डे को मनाने की शुरुआत क्यों की गई और इसके बारे में बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। और टीबी कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है, इसे कैसे बचा जा सकता है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, इन सब के बारे में आपको आज बताने वाले हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मिथिलेश कुमार झा। सर, आप हैं STLS। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और कब इस वर्ल्ड टीबी डे मनाने की शुरुआत हुई थी?
2: 1882 में रॉबर्ट कोच वैज्ञानिक के द्वारा जो है सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की गई। तब से लेकर के एक हम लोग सेलिब्रेशन के तौर पर 24 मार्च को विश्व यक्ष्मा दिवस के रूप में मनाते हैं, जहाँ पर हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुए, अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुए, SWC सेंटर हुआ, सदर अस्पताल में जो डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर होते हैं वहाँ पर हम लोग जो है सो अनेक प्रकार की रैली, झांकियाँ और अनेक तरह के कार्यक्रम को चला करके या लोगों को बताते हैं कि टीबी क्या है।
1: सर, इस साल वर्ल्ड टीबी डे का थीम क्या है?
2: इस बार का स्लोगन है यस वी कैन इन टीबी, लीड बाय भारत, पावर्ड बाय पीपल ऑफ भारत। यह संदेश स्पष्ट करता है कि टीबी के खिलाफ जंग केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह जन आंदोलन बनना चाहिए, जिससे कि जो भी NGO हैं, जो भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सबकी भागीदारी है कि इस बीमारी को समाप्त किया जाए।
1: बिल्कुल सर, लेकिन जब हम बीमारी को समाप्त करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उस बीमारी को समझना चाहिए कि वो बीमारी है क्या। तो सबसे पहले बताइए कि टीबी क्या है और ये कैसे फैलती है?
2: टीबी बीमारी एक संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे से फैलती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी कि बलगम को एक जगह से दूसरे जगह फेंकने पर जो है सो आदमी को इन्फेक्शन हो सकता है।
1: और अभी हमारे क्षेत्र में टीबी की वर्तमान स्थिति क्या है?
2: अभी हमारे जो क्षेत्र में है, लगभग में प्रत्येक PSC में लगभग 100 जांच होती है, जिसमें कि 5 से 7 टीबी पेशेंट जो है स्पुटम पॉजिटिव जो है सो मिलता है, जिसके कि फेफड़े की टीबी होती है और कुछ अन्य है जो कि लिम्फ नोड्स हुए शरीर के। सबसे बड़ा चीज़ है कि शरीर टीबी बीमारी किसी शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर फेफड़े की जो टीबी होती है उसको बहुत अच्छे से केयर करके जो है सो हम लोग दवा चलाते हैं।
1: मतलब टीबी जिसे हम समझते हैं कि सिर्फ फेफड़ों में होता है, ये सही नहीं है, वो किसी भी अंग में हो सकता है।
2: नहीं, 70% जो है फेफड़े की टीबी होती है, 30% जो है शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, या लिम्फ नोड्स बन के, या एब्डोमिनल कॉक्स हो सकता है, यूट्रस में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जेनेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है।
1: अच्छा, तो सर टीबी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? और कई बार लक्षण बहुत सामान्य होते हैं, शायद हम उन्हें नज़रअंदाज भी कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में शुरुआती लक्षण को कैसे पहचानना चाहिए?
2: 2 सप्ताह से ऊपर खांसी हो रहा हो, भूख नहीं लग रहा है, हेमोपोटाइसिस यानी कि बलगम के साथ में खून आ रहा हो, शाम के समय में जो है सो बुखार लग रहा हो, ऐसे परिस्थितियाँ में जो है सो हमें नज़दीक के किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जांच एवं दवा की सारी व्यवस्था उपलब्ध है।
1: सर, अभी आपने जांच की बात की, तो किसी भी व्यक्ति को जांच कब करवानी चाहिए? उसे क्या, जैसे कि आपने बताया कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, तो और भी कोई ऐसे लक्षण जो समझ आए? तो कई बार हमें लगता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, मौसम की वजह से होगा, लेकिन और क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिसे हम समझ कर जाँच करवाने जाते?
2: अभी हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के नीचे स्तर से लेकर के मैंने JLMCS तक में जो व्यवस्थाएं हैं कि कम से कम जो है सो खांसी हो जाए, बुखार हो रहा हो, भूख नहीं लगे, तो लगभग सारे जो है सो डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पर जरूर लिख देते हैं स्पुटम 4 APऔर एक्सरे लिखने की व्यवस्था सब जगह उपलब्ध है।
1: और जांच के बाद अगर किसी को टीबी निकल जाता है तो उसके बाद वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब शायद कोई रास्ता नहीं है, तो क्या इसका इलाज है और क्या टीबी पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? और अगर टीबी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है तो कितना समय लगता है इलाज में?
2: टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, मात्र दवा प्रत्येक दिन खाना है, समय पर खाना है, और यह दवा 6 महीना की इलाज है। 6 महीना तक जो है सो निरंतर कुछ काम करें या न करें, लेकिन दवाइयाँ जरूर खाएं तो बीमारी समाप्त हो सकती है।
1: सर, कई बार होता है कि हम दवाई खाना शुरू करते हैं और हमें सुधार महसूस होने लगता है, 6 महीने पूरे भी नहीं हुए, हम महसूस करने लगते हैं कि हम स्वस्थ हो गए, और ऐसे में मरीज बीच में दवा छोड़ देता है, तो अगर ऐसा वो करता है तो इससे क्या खतरा हो सकता है?
2: जो व्यक्ति बीच में दवाइयाँ छोड़ते हैं उसको जो है सो MDR होने की संभावना होती है, कि जो भी हम दवाइयाँ रिफाम्पिसिन, इथोम्बुटोल, पैराजिनामाइड या किसी जो दवाइयाँ खिला रहे हैं वो रजिस्ट जो है सो करेगा तो वह जो है सो पेशेंट को MDR होने की संभावना होती है। इसीलिए हमें दवाइयाँ नहीं छोड़नी है, हमें 6 महीना तक दवाइयाँ पूरी तरह खानी है। उसके लिए सरकार या जो भी जन भागीदारी जिनकी है वो सारे लोग लगे हुए हैं कि हमें हर रोगी के लिए सुपरविजन की व्यवस्था है, पर्यवेक्षण की व्यवस्था है, उसके घर तक की जाने की व्यवस्था है। सब लोग जाते हैं और जाने के बाद उसे जो है सो मरीज को ठीक करने का प्रयास करते हैं।
1: सर, ये भी मैंने सुना है कि अगर दवाई छोड़ दे तो ड्रग रेजिस्टेंट TB हो जाता है, तो ये अगर किसी को ड्रग रेजिस्टेंट TB हो गया तो उसके बाद क्या किया जा सकता है?
2: उसके लिए भी सरकार ने सारी व्यवस्था करके किया हुआ है कि मायागंज है, JLMCH जो है, JLMCH में भी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। वहां पर जो है सो TRUNET, CVNET की जांच की व्यवस्था है, और वहां पर जो है जांच किया जाता है। जांच करने के बाद में उसमें भी 9 महीना की जो दवाइयां हैं वो सरकार के द्वारा जो है सो उपलब्ध हैं, जिसमें बहुत सारी दवाइयां हैं।
1: तो मतलब दवाएं तो मुफ्त हैं ही, कई बार लोग इसलिए भी जांच नहीं कराते कि पैसे लग जाएंगे।
2: जो भी जैसे 6 महीना की दवाइयाँ देना, उसका जांच कराना, MDR है या नहीं है, दवा रजिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, सारी दवाइयाँ सरकार में उपलब्ध हैं, सारी जांच की व्यवस्थाएं सरकार में उपलब्ध हैं।
1: सर, MDR के बारे में आप बोल रहे हैं, MDR क्या है?
2: जो भी दवाइयाँ हम लोग जो खाते हैं, जिसमें कि 4 प्रकार की दवाइयाँ चलती हैं, रिफाम्पिसिन, इथोम्बुटोल, पैराजिनामाइड, जो दवाइयाँ चलती हैं वो क्या होता है कि हमारे शरीर पर जो है रजिस्ट कर जाती है। रजिस्ट का मतलब होता है वो काम करना बंद कर देता है। इसीलिए जो है हम लोग जो है सो उसे CVNET करवाते हैं, उसके बाद रजिस्ट है एसोनियाजाइड या रिफाम्पिसिन, यदि रजिस्ट होता है कि उसके प्रतिरोधक क्षमता उसके शरीर पर कोई काम नहीं कर रही है, तब हम लोग जो है सो उसे MDR के लिए जो है सो प्रिस्क्राइब करते हैं।
1: क्या लक्षण होते हैं इस बारे में जान लिया, इलाज किस तरीके से है ये जान लिया, लेकिन सबसे बेहतर होता है कि हम किसी भी बीमारी से खुद को बचा कर रखें, तो TB से बचाव के लिए आम लोग क्या सावधानियां बरत सकते हैं?
2: जो भी TB मरीज हैं उसका जांच सभी समय पर होना, उसके परिवार के जितने फैमिली मेंबर हैं उसका भी जांच करवा लेना है। जो भी स्पुटम इधर उधर खखार जो फेंकते हैं वो इधर उधर नहीं फेंकना है, किसी एक जाकर के घर के कोने के किसी सिरे में फेंकना है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि यदि किसी मरीज को यदि TB हो गया है तो उसके सारे परिवार का उसका जो है सो जाँच हो जाना चाहिए। जांच के लिए जो है सो फिर वही PSC में आना है, उसको जो है सो सारी जांच करानी है।
1: जांच में TB निकल गया, मान लिया कि घर वाले भी साथ दे रहे हैं, लेकिन कई बार हम बाहर बताने से डरते हैं कि लोग भेदभाव करने लग, क्या ये सही है कि TB मरीज के साथ रहने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, या फिर उनके साथ उठने बैठने से भी किसी को TB हो सकता है, क्या ये सही है?
2: अब यह भ्रामक बिल्कुल गलत है कि TB मरीज के साथ में हम रहेंगे तो हमें TB हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये सब नहीं है। मात्र है कि उस TB मरीज को हमें 6 महीना तक सब लोग मिल करके दवा खिलानी है। जितना जल्दी हम लोग दवा खिलाएंगे उतना जल्दी जो है सो रोगी ठीक होगा। और ख़ास करके ये रखना है कि जो भी TB के मरीज के घर वाले हैं उसका जाँच जो है सो सबसे बड़ा चीज़ ज़रूरी चीज़ है, जो कि निःशुल्क है।
1: तो एक मरीज से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक TB फैल सकता है?
2: TB फैल सकता है, कम से कम जो है सो 10 आदमी को जो है सो एक मरीज से फैल सकता है।
1: तो मतलब किस तरीके से, मतलब उसका जूठा हमने खा लिया?
2: जूठा कुछ नहीं है, उसके जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं, जो बलगम है, वो जहाँ तहाँ यदि फेंक देगा तो फेंकने के बाद में शुरुआती दौर में 1-2 महीना बहुत जो है सो हम लोग हमारे सारे फैमिली को प्रिकॉशन के साथ में रखना है कि वो बलगम कहाँ फेंक रहा है, ये सब सारी सावधानी करनी होगी।
1: और सर, पोषण से भी क्या TB का कोई संबंध है?
2: सबसे बड़ा चीज़ है पोषण, दवाइयाँ और दवाई और पोषण दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। पोषण के लिए सरकार ने घोषणा कर रखी है 6,000 रुपया जो है सो प्रत्येक मरीज को मिलता है 6 महीना में, यानी कि 1,000 पर महीना जो है सो सरकार के द्वारा जो है सो सरकारी योजनाएं में मिलता है। कुछ पोषण के लिए जो है सो खाना पीने की भी सामग्री जो है सो लोग देते हैं और वह रोगी को जो है सो दिया जाता है।
1: सर अभी आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि टीबी कई प्रकार के होता है और शरीर के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है, तो टीबी कितने प्रकार का होता है?
2: टीबी प्रायः शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, पाल और नाखून छोड़ करके कहीं भी हो सकता है। टीबी मूलतः हमारे समाज में अभी दो प्रकार का है, एक पुलमोनरी है एक एक्स्ट्रा पुलमोनरी है। जो कि एक्स्ट्रा पुलमोनरी जो है सो क्या होता है कि ग्लैंड टीबी हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट अटैक हो गया, यूट्रस में भी टीबी हो सकता है, और ग्लैंड टीबी हो गया, एब्डोमिनल कॉक्स हो गया, फिर बोन टीबी हो गया, बहुत सारी टीबियाँ हैं। लेकिन प्रायः 70% जो है सो हमारे फेफड़े की टीबी होती है, 30% जो है सो ये एक्स्ट्रा पुलमोनरी टीबी होती है।
1: तो अभी आप योजना के बारे में भी बता रहे थे कि सरकार 6,000 रुपये देती है, तो इसके अलावा भी और कोई योजना है जो चलाई जा रही है टीबी मरीजों के लिए?
2: टीबी मरीजों के लिए जो है सो एक निश्चय पोषण योजना है जिसके तहत में जो है सो भोजन प्लस 6,000 रुपया देने की जो है सो सरकार की योजना है। ये काफ़ी अच्छे वर्षों से चल रहा है जो रोगी तक पहुँच भी रहा है।
1: और निक्षय पोषण के अलावा हमने निक्षय मित्र के बारे में भी सुना है।
2: जो भी रोगी किसी को दान कर सकते हैं, सबसे बड़ा दान है यह कि अब 5 रोगी 10 रोगी 1 रोगी 2 रोगी जिस जो है वह जो है सो रोगी को जो है सो दान के रूप में जो है सो आप यदि 500 रुपया का कम से कम जो है सो से अनाज देना है और 6 महीना तक वह अनाज देना है। यह सरकार का जो है सो स्कीम है।
1: यानी कि अगर हम चाहें तो किसी टीबी मरीज की मदद कर सकते हैं, अगर हमारी नज़र में कोई है जो सक्षम नहीं है।
2: हाँ, सरकार को यदि आपकी इच्छा है कि हम टीबी मरीज को जो है सो गोद लिए हैं, तो उसको गोद लेने के बाद में उसे कम से कम 500 रुपया की जो है सो राशि का चावल का दाल गेहूँ सोयाबीन जो भी है या चना है इस टाइप का इस तरह का जो है सो भोजन उसे दे करके जो है सो सेवा आप टीबी मरीज का कर सकते हैं।
1: तो अगर कोई निक्षय मित्र बनता है तो क्या उन्हें किसी तरीके का सर्टिफिकेट मिलता है या सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रोत्साहन?
2: हाँ, वह जो है सो जिला डिस्ट्रिक्ट सदर अस्पताल के द्वारा जो है सो से जो है सो सर्टिफिकेट दिया जाता है।
1: तो सर टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें।
2: टीबी मुक्त भारत जो है सो जो भी हमने बताया है इससे सारे जो है सो टीबी मुक्त भारत योजनाएं में है जिसको कि हम लोग के पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है।
1: और आज सर विश्व क्षय रोग दिवस है यानी कि वर्ल्ड टीबी डे है, तो इस पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि
2: संदेश विश्व यक्षमा दिवस के अंदर दिवस पर हम लोग यह संदेश देना चाह रहे हैं, कुछ नहीं करना है हम लोगों को, मात्र जो भी रोगी हैं कहीं भी हैं वह कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जा करके, और कुछ नहीं कहना है आपको, पुर्जा जैसे आप पुर्जा कटाते हैं कटाने के बाद में वो उसके आप मात्र कह देंगे कि 2 सप्ताह से ऊपर खांसी है, उसके बाद आपको एक अतिथि के रूप में जो है सो आपका सम्मान के साथ में जो है आपका जांच करा देंगे, आपको दवाइयां दे देंगे, आपकी सारी देख रेख जो है सरकार के जो सहकर्मी हैं जो कर्मचारी हैं वो आपकी मदद करेंगे।
1: सर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम तो चलाया ही जा रहा है, टीबी मुक्त भारत भी चलाया जा रहा है, तो एक और योजना है या कार्यक्रम कहें कि टीबी मुक्त पंचायत, ये क्या है?
2: टीबी मुक्त पंचायत है, इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि क्राइटेरिया के साथ में टीबी मुक्त पंचायत है जो कि उसका जांच दर सालाना क्या है, उसको मैंने ये पोषण योजना का क्या हालत है, उसका जो है सो MDR की क्या स्थिति है, उसका जो है कॉलम है उसको पूरा करके यदि जो है वह उसमें जांच जो है सो कम से कम 30 जांच 1,000 की आबादी पर करनी है, और यदि उतना हो जाता है तो उस पंचायत को जो है सो पंचायत मुक्त माना जाएगा।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी सारी बातें आपने बताई। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी लगा होगा, और ध्यान रखें कि अगर किसी को भी टीबी के लक्षण दिखें तो तुरंत जाकर जांच कराइए, और अगर किसी को टीबी हो गया है तो ऐसे में उनसे भेदभाव नहीं करना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ परहेज करना है, और ख़ास तौर से ध्यान ये रखना है कि आप उस टीबी मरीज की मदद करें, जितनी मदद हो सके आप उनकी मदद करें, उनकी दवाइयों का ध्यान रखें, उनके पोषण का ध्यान रखें, क्योंकि टीबी को अगर ठीक करना है तो ज़रूरी है कि वो दवाई सही समय पर खाएं, पूरी दवाई जो पूरी दवाई का कोर्स है 6 महीने का वो करें, और साथ ही पौष्टिक खाना भी खाएं, तभी कोई भी टीबी मरीज ठीक हो सकता है। और कहते हैं कि इलाज से बेहतर है बचाव, तो कोशिश करें कि आप

0: इस बीमारी से बचे रहें कुछ सावधानियों को अपनाकर। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें।
1: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बात
1: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
1: डॉक्टर खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश।

0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम बात करने वाले हैं तिल की फसल में कीट प्रबंधन के बारे में, और इस बारे में हमारे साथ आज बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ऋचा कुमारी। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं कीट विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा जी।
0: तिल की फसल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और तिल के फसल में कौन कौन से प्रमुख कीट लगते हैं इसके बारे में आप पहले बताइए।
2: जी नमस्कार किसान बंधु। तो आज जो तिल की जो बात हो रही है उनके प्रमुख कीट में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जो तिल की खेती होती है वो कम लागत में अधिक लाभ देने वाली होती है। तो इसमें क्या होता है कि कई कीट व्याधियां जो है वो गंभीर रूप से इनको प्रभावित भी करते हैं, इसीलिए इनकी जो पहचान है वो बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहले मैं पत्ती मोड़क की बात करूं, जिनको कि पत्तिया एवं फली छेदक भी कहते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम एंटीगैस्ट्रा कैटालुनालिस है। और उसके बाद एक गौल मक्खी आती है जिसको तिलकई मक्खी भी कहेंगे। फिर तिल का लीफ हॉपर या जो जिसे हम पत्ती फुदका कहते हैं, इसके अलावा माहू और लाही, फिर सफ़ेद मक्खी, बिहार हेरी कैटल पीरल जिसको कि हम रोमिल कीट भी कहते हैं, एवं हॉक मॉथ, ये सारी कीटें फसल के अलग अलग अवस्था में आती है।
0: तो मैम, अभी आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया, तो इन कीटों की पहचान कैसे करेंगे?
2: देखिए, अगर हम पत्ती मोड़क की बात करें तो इसे हम तिल का सबसे घातक कीट कह सकते हैं। तो इसके लिए इसकी पहचान तो बहुत ही आवश्यक हो जाती है। इसका जो सुंडी है जिसको कि हम पिल्लू भी कहते हैं, सामान्य बात जो सामान्य बोलचाल की भाषा है, तो उसमें देखेंगे तो इल्ली का जो रंग होता है वो हरे पीले से लेकर गहरे हरे रंग तक का होता है, और इसके शरीर पे छोटे काले धब्बे पाए जाते हैं। अगर हम इसके वयस्क की बात करें तो यह पतंगा जो है ये बहुत छोटा होता है, और इनके जो आगे के पंख होते हैं वो भूरे रंग के, एवं जो पिछले पंख हैं वो हल्के रंग के होते हैं, इससे इनकी पहचान होती है। एक और बात इसमें बहुत प्रमुख है, इसके जो इल्ली हैं वो रेशमी धागे बनाते हैं जिनका उपयोग वो स्वयं को और अपने भोजन स्रोत को ढकने के लिए करते हैं। गौल मक्खी की अगर मैं बात करूं तो इसके कीट बिल्कुल मच्छर जैसे होते हैं, और इनके जो शिशु हैं उनकी शिशु अवस्था कलियों के भीतर रहकर भोजन करते हैं, जिससे कि क्या होती है, एक गांठ सी बन जाती है। तिल का पत्ती फुदका जो है वो एक कीट होता है जो बहुत ही छोटे एवं हरे पीले रंग का होता है। ये पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये फाइलोडी रोग के वाहक होते हैं जो तिल की सबसे गंभीर रोगों में से एक है। फिर लाही की बात करूं, ये काले या हरे रंग का होता है, बहुत ही छोटा होता है, और ये काफी नरम होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो पत्तों पौधों की जो कोमल सतहों हैं उन सतह होती हैं उसमें झुंड के रूप में पाए जाते हैं। सफ़ेद मक्खी जो है वो बेमेसिया टैबेकी भी हम इसे कहते हैं, इनके जो पंख हैं वो काफ़ी सफ़ेद होते हैं, और ये भी पत्तियों के निचली सतह पर पाई जाती है। सफ़ेद मक्खी कई वायरस रोग का वाहक होता है। तो पत्ती फुदका और ये सफ़ेद मक्खी, ये क्या है कि रोगों का वाहक हम इसको मान सकते हैं। इसके अलावा इसमें छेदक हैं, और फिर एक रेड स्पाइडर माइट के नाम से एक बहुत ही सूक्ष्म कीट जो है वो भी पाए जाते हैं जो लाल रंग के होते हैं। इस तरह से हम इन कीटों की पहचान कर सकते हैं।
0: मैम, कीटों की पहचान तो हो गई, तो अलग अलग तरह के कीट अलग अलग तरीके से क्षति पहुंचाते होंगे फसलों को, तो फसलों में किस तरीके से क्षति पहुंचे हैं, उनका लक्षण क्या होता है?
2: जी ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जब इसके लक्षण को देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसमें क्षति हुई है, और फिर उसी के अनुसार हम इसके रोकथाम कर पाएंगे। तो मैं किसान बंधु को बता दूं कि अगर आप सही समय पर रोकथाम करें तो उसके लिए ये लक्षण बहुत ही आवश्यक हैं पहचानने। सबसे पहले मैं पत्ती मोड़क की बात करूंगी, जिसमें जो इसके पिल्लू हैं वो पौधों की कुछ ऊपरी पत्तियों को एक साथ जाल बनाकर जोड़ लेते हैं और फिर अंदर से उन पत्तियों को ये खाते हैं। उससे क्या होता है कि जो पौधे की प्रारंभिक अवस्था में ही उसका बढ़वाड़ बंद हो जाता है। फूल आने के बाद जो पिल्लू हैं वो फूलों को खाती हैं और फिर बाद में ये फलियों में क्या करते हैं, छेद कर देते हैं और फिर जो दाना होता है उसको नष्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, बीज की पैदावार में काफ़ी कमी आ जाती है। फिर हम गौल मक्खी की बात करेंगे, इसकी जो लक्षण है नुकसान के, तो इसमें क्या होता है, इसमें कलियां जो होती है वो फूल में परिवर्तित ही नहीं हो पाती है और ये सूखकर गिर जाती है। इससे पौधों में फली बनने की जो क्षमता है वो अत्यधिक प्रभावित हो जाती है और इससे क्या होता है, वो कम बनती है फलियां, जिसके फलस्वरूप तिल की उपज काफ़ी प्रभावित होती है। तिल के पत्ती फुदका की अगर मैं बात करूं तो इनकी वजह से क्या होता है कि पौधे पीले पड़ जाते हैं और उनकी जो उनका फिर से बढ़ना रुक जाता है। फाइलोडी की स्थिति में फूल हरे पत्तेनुमा संरचना में बदल जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप फली बनना बंद हो जाता है। लाही है और माहू भी हम इसे कहते हैं, तो ये पौधों के रस चूस कर उसे बिल्कुल कमजोर बना देते हैं एवं इसमें क्या होता है, सहज जैसा चिपचिपे अस्त्राव से काले रंग की फफूंदी विकसित हो जाती है। जो लाल माइट है उसके आक्रमण के कारण पत्तियां बिल्कुल पीली पड़ जाती है और सिकुड़ जाती है और अंततः वो सूखकर गिर जाती है। बिहार हेरी कैटरपिलर ये बहुत ही प्रमुख है, इसमें क्या होता है, पत्तियां पूरी तरह से ये चट कर जाते हैं और इससे क्या होता है कि बिल्कुल कंकाल जैसा संरचना इसमें बन जाता है पौधों में।
0: तो मैम, जो भी कीटों से क्षति होंगे उनके लक्षण को हम पहचान लेंगे, लेकिन उसके बाद कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाए?
2: जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। तिल की जो फसल है उसमें कीट प्रबंधन केवल कीटनाशकों के प्रयोग से ही नहीं होता है बल्कि विभिन्न तकनीकों के संयुक्त प्रयोग से होता है। इसके तहत हम चार विधि अपनाते हैं जिसमें सबसे पहले व्यवहारिक नियंत्रण आता है। इसमें हम क्या करते क्या है कि सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि प्रतिरोधी किस्म का हमें क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए और इसके अलावा जो फसल चक्र है उन्हें किसान बंधु जरूर से जरूर अपनाएं। समय पर बुआई भी बहुत जरूरी है ताकि कीटों का जो चरम प्रकोप है उसे रोका जा सके। लंबे समय तक खेतों में पानी का ठहराव ना होने दें, ये गर्मा तिल के लिए तो बहुत ही नुकसानदेह होता है जो अभी चल रहा है। इसके बाद मैं यांत्रिक विधि की बात करूंगी। इसमें हम करते क्या है कि जो भी संक्रमित पत्तियां हैं, फलियां हैं या फिर कलियां हैं उन्हें तोड़कर हम नष्ट कर देते हैं और जो खेतों में इसके अलावा हमें निराई गुड़ाई ये भी करनी चाहिए। इसके अलावा हम एक सबसे ज़रूरी बात मैं बताऊंगी, पक्षी आश्रय ये खेतों में ज़रूर से ज़रूर प्रयोग करें। इससे होता क्या है कि जो भी पक्षी हैं वो पिल्लुओं को खा लेते हैं तो आपका इससे भी बचाव हो जाएगा। इसके अलावा पीले चिपचिपे फंदे का प्रयोग अगर किसान मित्र करें तो उससे सफ़ेद मक्खी एवं माहू को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद जैविक नियंत्रण आता है। इसमें है क्या, ये परभक्षी कीट की बात करता है। परभक्षी कीट में टिकुलिया है, मकड़ी है, डाकू मक्खी है, ग्रीन लेसविंग है, ये सारी जो भी मैं कीट का नाम बता रही हूँ वो मित्र कीट हैं, इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा नीम तेल का हम प्रयोग कर सकते हैं, 5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से इनका भी छिड़काव किया जा सकता है और नीम बीज खली अर्क 5% इनका भी छिड़काव अगर हम करें तो वो भी उपयोगी माना जाएगा। सबसे अंत में हम ब्रह्मास्त्र की बात करेंगे जिसको रासायनिक विधि भी कहेंगे, ये तुरंत नहीं करना चाहिए, इन सब के बाद ही हम प्रयोग करेंगे इनका। तो ये हम दरअसल तब करते हैं जब कीट आर्थिक क्षति स्तर पर पहुंच जाता है, तो उस समय किसान बंधु स्पाइनोसेट 45% SC 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से, दूसरा जो कीटनाशक है वो है फ्लुबेंडामाइट 480% SC 0.3 मिलीलीटर पर लीटर की दर से एवं इसके अलावा क्लोरेन ट्रेनली प्रॉल 18.5% SC 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से इन सब का इस्तेमाल वो कर सकते हैं और इनसे क्या होता है, इन कीटों का बचाव संभव हो जाता है। इसके अलावा किसान बंधु जो निगरानी की मैं बात करूंगी, तो सर्वेक्षण करते रहें, निगरानी करते रहें अपने खेतों की समय पे समय, ताकि इन सब कीटों से आप रोकथाम आराम से कर सकते हैं और पैदावार भी फिर उससे अच्छी आएगी।
0: जी मैम, अगर निगरानी करेंगे तो कीटों के बारे में वो पहले पता लगा पाएंगे और
2: जी बिल्कुल
0: प्रबंधन आसान हो जाएगा। मैम आपने बहुत उपयोगी बातें बताई और उम्मीद है कि हमारी आज की ये वार्ता उन किसान भाई बहनों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी जिनके खेतों में अभी तिल लगे हुए हैं, और अगर वो कीट प्रबंधन करेंगे तो जैसे कि आपने बताया बहुत आय में वृद्धि होगी उनकी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी।
0: किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें खूब प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।
3: तन लागे बूंदिया
4: थोड़ा जान के बढ़े।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए विषय लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में, फल वर्गीय सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन। इस विषय के साथ हमारे बीच हैं आज डॉक्टर प्रीति सिंह, जो कि वैज्ञानिक हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम, स्वागत है आपका।
1: सबसे पहले मैं अपने किसान भाई को बताना चाहूँगी कि नर्सरी की उपयोगिता क्यों क्या है और हमें ये करना ही क्यों चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि जो फल है, फलों की नर्सरी है, वहाँ ग्राफ्ट, शायन के मात्र पौधे, रूटस्टॉक और पपीता जैसे बीज प्रवर्धित फसल की पौध के उत्पादन के लिए आवश्यक है। युवा पौधों को चाहे बीज से या वनस्पतिक प्रजनन द्वारा प्रवर्धित किया गया हो, विशेष रूप से विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्हें प्रतिकूल तापमान, भारी वर्षा, सूखा हवा, विभिन्न प्रकार के कीट और बीमारियों से बचाना होता है। यदि बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं तो अंकुरण अक्सर खराब होता है और युवा पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं और परिपक्व होने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए फल की फसलों को खेत में रोपने से पहले नर्सरी में प्रचारित और किया जाना चाहिए और उगाया जाना चाहिए। तो जो हमारी नर्सरी है, उस जो ये फलों की नर्सरी है, इसको हम तीन भाग में इस टॉपिक को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो सकता है कि नर्सरी की साइट का चयन कैसे करें, दूसरा नर्सरी की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और तीसरा कि नर्सरी की तैयारी करें कैसे। तो सबसे पहले बिंदु पे आते हैं कि नर्सरी प्रबंधन के लिए साइट सिलेक्शन कैसे करें। तो नर्सरी के लिए साइट का चयन काफ़ी सावधानी और सोच विचार के बाद किया जाना चाहिए, क्योंकि नर्सरी के स्थान का उसकी समग्र सफलता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नर्सरी के लिए स्थान और स्थान के चयन के लिए विचार किए जाने वाले 5 महत्वपूर्ण कारक हैं: जलवायु, स्थान पर मध्यम जलवायु और लंबे समय तक बढ़ने वाला मौसम होना चाहिए, विशेष रूप से तेज़ जलवायु, उतार चढ़ाव या तेज़ हवा का वेग या ओलावृष्टि की घटनाओं के साथ अत्यधिक तापमान का अनुभव करने वाले स्थानों से बचना चाहिए। दूसरा है स्थलाकृति, जिसे हम टॉपोग्राफी भी कह सकते हैं। अगर जो सबसे कुशल उपयोग के लिए नर्सरी के लिए भूमि को समतल किया जाना चाहिए, बाढ़ या पाले की आशंका वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए, नर्सरी के लिए निचले इलाकों का चयन नहीं करना चाहिए। तीसरा है मिट्टी। मिट्टी जो हो, हमारी गहरी बलुई दोमट से चिकनी दोमट बनावट वाली और पर्याप्त जल धारण क्षमता करने वाली होनी चाहिए, और ये कंकरीला या पथरीला नहीं होना चाहिए। अधिकांश फल पौधों के लिए इष्टतम जो मिट्टी का पीएच मान है वो 5 से 7.2 के आसपास है। 7.5 से अधिक अगर पीएच मान है तो इस साइट को चुनने से बचना चाहिए। चौथा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पानी। एक आदर्श नर्सरी साइट में रोपण और बढ़ते मौसम के दौरान वर्षा का वितरण अच्छा होना चाहिए। नर्सरी के निकट या भीतर एक स्थायी जल का स्रोत होना चाहिए, जिससे हम सिंचाई सफलतापूर्वक कर सकें, और नई पौधे के लिए सिंचाई का पानी लवण रहित होना चाहिए। जो पांचवा और इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि कीट पतंगों और रोग पैदा करने वाले जीवों की व्यापकता। गंभीर कीटों या बीमारियों, निमटोड या खरपतवारों की उपस्थिति को पहले ही जांच लेना चाहिए, और अगर किसी मिट्टी में इन सब की बहुत व्यापकता है तो हमें इस साइट को नहीं चुनना चाहिए। अब हम आते हैं कि फल नर्सरी की स्थापना के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी नर्सरी साइट को सेलेक्ट करते हैं या चुनते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके चारों बगल फेंसिंग या बाड़ लगा लेना चाहिए। फेंसिंग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पोल बना बना के उसके ऊपर वायर या तार चढ़ा सकते हैं, या फिर आजकल एक नेचुरल फेंसिंग वाला भी पॉइंट है जहाँ पर आप करौंदा जैसे फलों को नेचुरल फेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। सड़क और रास्ते होने चाहिए आपके नर्सरी में, ताकि जो आपके जो भी प्रवर्धित पौधे हैं उनको जल्दी से मार्केट तक लेके जाया जा सके। और तीसरा कार्यालय या फिर सह भंडार, जहाँ से आप सारे चीज़ों को मैनेज कर सकें। उसके बाद आता है मदर प्लांट ब्लॉक। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो फल का प्रवर्धन होता है वो या तो ग्राफ्ट से होता है, या तो लेयरिंग से होता है, या बडिंग या कटिंग से होता है। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा मदर प्लांट का ब्लॉक हो या शायन बैंक का ब्लॉक हो। इस और ये जो मदर प्लांट है हमारा, ये डिपेंड करता है कि हमारे बाज़ार में किस वैरायटी की मांग ज़्यादा है। जिस वैरायटी की भी मांग ज़्यादा हो उसी वैरायटी का मदर ब्लॉक एस्टैब्लिश करना चाहिए हमें नर्सरी में। किसी भी नर्सरी की सफलता काफ़ी हद तक आगे के गुणन के लिए मात्र पौधों के प्रारंभिक चयन पर निर्भर करती है, और इसे अनुसंधान संस्थान या प्रतिष्ठित नर्सरी से ही खरीदा जाना चाहिए। फिर बात करते हैं सिंचाई प्रणाली की। फल नर्सरी में पौधों को सिंचाई के लिए पानी की प्रचुर आपूर्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें सीमित मात्रा में पॉटिंग मिक्सचर के साथ पॉली बैग में उगाया जाता है। अतः ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का होना पानी की बर्बादी को कम करता है, और साथ ही साथ पौधे को आवश्यक मात्रा में जल भी प्रदान करता है। छठी जो बात है वो है सीड बेड तैयार करना। जो बीज की क्यारियां तैयार करते हैं नर्सरी में, यह घटक पौध और रूट स्टॉक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इन्हें जल स्रोत के पास बिछाया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें बार बार पानी देने की आवश्यकता होती है। सुविधाजनक लंबाई के साथ इनकी जो चौड़ाई हो है वो 1 से 1.5 मीटर के आसपास होनी चाहिए, और दो बेड के बीच में जो स्पेस है वो लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। ये जो 60 सेंटीमीटर का जो स्पेस है, इसे बीज बोने, निराई करने, पानी देने, छिड़काव करने और पौधे उठाने में आसानी होती है। अगर दूसरा जो तरीका है नर्सरी में पौधे तैयार करने का, एक तो सीड बेड हो गया और दूसरा है पॉली बैग। पॉली बैग में पौध और रूट स्टॉक उगाने के लिए नर्सरी बेड की तुलना में अधिक जगह की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधों की वृद्धि में एकरूपता के साथ साथ मृत्यु दर भी काफ़ी कम हो जाती है। प्रत्येक बेड 500 के आसपास ग्राफ्ट या गूटी रखा जा सकता है, और इसको अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। सेवेंथ पॉइंट जो है वो है पॉटिंग मिश्रण या पॉटिंग यार्ड। तो जो भी हमारा नर्सरी का एरिया है वहाँ पे हमारा एक पॉटिंग यार्ड होना चाहिए, जहाँ पे टाइम टू टाइम जो हमारा पॉटिंग मिक्सर है वो तैयार होते रहना चाहिए। पॉटिंग एक अच्छा पॉटिंग मिश्रण में एक भाग मिट्टी, एक भाग नदी के किनारे का रेत और एक भाग FYM होना चाहिए। इसका अनुपात 2:1:1 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि दो भाग मिट्टी, एक भाग रेत और एक भाग FYM, इनको मिला के या इनको जो आपका पॉटिंग यार्ड है वहाँ पे मिला करके आप पॉली बैग में भर सकते हैं, और इसमें बाद में आप जो भी बीज डालना चाहें वो आप डाल के तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आठवां पॉइंट है कि जो ये पौधे हैं नर्सरी के, ये कभी कभी हम पॉली हाउस में भी तैयार कर सकते हैं। तो जो पॉली हाउस में तैयार हुए पौधे होते हैं वो थोड़े से नाजुक होते हैं, तो उनको डायरेक्ट फील्ड में ले जाने से पहले अगर आपके पास शेड नेट की फैसिलिटी है तो आप उसको शेड नेट में लेके जाइए, क्योंकि शेड नेट में क्या होता है कि जो आपके पौधे होते हैं उनको थोड़ा सख्त होने का टाइम मिलता है। वरना पॉली हाउस से तुरंत बाहर ले जाने पे, फील्ड में लेके जाने पे उनमें बहुत ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ सकती है। इसीलिए अगर पॉली हाउस में आप पौधे उगा रहे हैं तो उसको पहले आप शेड नेट में लेके जाइए, वहाँ पे 1.5 महीना रखिए, और फिर 1.5 महीने के बाद आप उसको फील्ड कंडीशन में लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब नर्सरी की तैयारी करें कैसे। तो नर्सरी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें करनी है क्यारी की तैयारी। जहाँ पे भी हम क्यारी की तैयारी करेंगे वहाँ पे खरपतवार का उन्मूलन, मिट्टी को समतल करना और खेत को जोतना शामिल है। खेत की 2 बार गहरी जुताई करने से मिट्टी को ढीला करने और खरपतवार तथा अन्य वनस्पतियों को नष्ट करने में मदद मिलती है। जुताई करते समय मिट्टी में पाए जाने वाले पत्थरों और जड़ों को हटा देना चाहिए, क्योंकि वे पौधे के विकास में बाधा डालते हैं। सूखी घास और झाड़ी सामग्री को जलाने से कीड़े और खरपतवार की समस्या को कम करने में मदद मिलती है, और बची हुई खनिज समृद्ध राख बीज बिस्तरों की उर्वरता को में सुधार करती है। अब जब हमने खेत की तैयारी कर ली है तो हम जो हमारा बेड है, सीड बेड है, उसको उसका लेआउट करना और समतलीकरण करना हम कर सकते हैं। अन्य आकारों की तुलना में आयतकार बेड्स को प्राथमिकता दी जाती है। बीज शैया की चौड़ाई इतनी रखनी चाहिए कि बीज शैया में प्रवेश करने किए बिना निराई गुराई का कार्य किया जा सके। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो इसकी चौड़ाई होनी चाहिए वो 1 से 1.5 मीटर ही होनी चाहिए, और आप इसकी लंबाई 12.5 मीटर तक कर सकते हैं, लेकिन 12.5 मीटर से ज़्यादा करना उचित नहीं होगा। नर्सरी में उपयोग की जाने वाली बीज क्यारियों के 3 प्रकार होते हैं, और ये डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे वर्षा कितनी होती है। अगर बहुत अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पे ऊंचे बिस्तर बनाने चाहिए, मतलब 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची सीड बेड बनाइए। जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है वहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर नीचे सीड बेड बना सकते हैं, और जहाँ पे ठीक ठाक बारिश होती है वहाँ पे समतल क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। देन फिर अब क्यारियों में बुआई कैसे करें? तो क्यारियों में बुआई करने के लिए जो आपका सीड बेड तैयार हुआ है, जो जिसके लिए आपका सीड बेड के लिए आपका जो भी फार्मयार्ड मैन्योर या पॉटिंग मिक्सर का जो तैयार मिश्रण था उसको डाल के आपने क्यारियाँ जो तैयार की हैं उसमें आपने बीज को बोना है। बीज को बहुत गहरा नहीं बोना है, जब बहुत छोटे बीज होते हैं तो उनको 1 या 1.5 सेंटीमीटर की ही गहराई में बोना चाहिए, और अगर थोड़े बड़े सीड्स हैं, बड़े बीज हैं, तो उनको थोड़ा गहरा रोपा जा सकता है। पॉली बैग अगर आप क्यारियों में नहीं कर रहे हैं तो इसको आप पॉली बैग में करेंगे। तो पॉली बैग में करने के फ़ायदा यही है कि जब भी आप इसमें से पौधे को निकाल के फील्ड में लेके जाते हैं या फिर आपसे कोई खरीद के लेके जाता है तो क्या होता है कि जो इसकी जड़ होती है उसको बहुत कम डैमेज होता है, जिसकी वजह से इसका जो हेल्थ रहता है वो बढ़िया बना रहता है, और जब हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं फील्ड में तब भी इसका जो एस्टैब्लिशमेंट होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। फिर हम करते हैं बुआई का समय। बुआई का समय जनरली जो होता है वो 3 समय हम बुआई कर सकते हैं। एक तो फरवरी मार्च का महीना हो जाता है, एक जुलाई अगस्त का महीना हो जाता है, और एक सितंबर अक्टूबर का महीना हो जाता है। तो सबसे बढ़िया समय जो हमारे हमारे रीजन के लिए है वो अगस्त जुलाई अगस्त का महीना है, जब वर्षा ऋतु होती है। और अगर हम नर्सरी में बडिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग या लेयरिंग की भी बात करें तो इन सबको वर्षा ऋतु के समय ही करना चाहिए। एक जो प्रैक्टिस है जो नर्सरी में की जाती है वो प्रिकिंग होती है। इससे क्या होता है कि बेहतर जड़ और अंकुर के विकास के लिए पौधे को एक नर्सरी बेड से दूसरे नर्सरी बेड या पॉली बैग या गमले में स्थानांतरित किया जाता है। इससे क्या होता है कि प्रिकिंग से जड़ की वृद्धि बढ़ती है और कई प्रजातियों में बेहतर और कुशल जड़ प्रणाली तैयार हो जाती है। अब हम बात करते हैं सिंचाई की। तो बुआई के तुरंत बाद बीज क्यारियों में पानी देना चाहिए। पॉली बैग गमलों को गुलाब के सिर के डिब्बे से सिंचित किया जा सकता है, या पॉली बैग या गमलों में लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर गहरे धंसे हुए बिस्तरों में रखा जाना चाहिए ताकि बाढ़ सिंचाई को अपनाया जा सके। और जहाँ पे आपके पास स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी है वहाँ पे आप स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी को यूज़ करके पानी के बर्बादी को बचा सकते हैं। फिर बात आती है निराई गुड़ाई। नियमित रूप से निराई गुड़ाई करनी चाहिए इससे पहले कि वो पानी और मिट्टी के पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करना शुरू करें और उनके बढ़ने से निराई गुड़ाई करना मुश्किल हो जाए। इससे पहले ही खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए, फूल आने से पहले खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए ताकि उनके पुनर्जनन को नियंत्रित किया जा सके। अब हम बात करते हैं खाद और उर्वरक की। नर्सरी की मिट्टी में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाने से उसकी उर्वरता बनी रहती है। मिट्टी की पोषक तत्व स्थिति और उगाई जा रही प्रजातियों की आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों और सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि नर्सरी से पौधे उठाना कैसे है। नर्सरी से पौधे हटाने के लिए सबसे पहले जो पौधे की मिट्टी है, आसपास की मिट्टी है, उसको ढीला करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसको हम आप किसी को बेच सकें या फिर आप इसको मार्केट तक भेज सकें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वहाँ पे अच्छे से थोड़ा सिंचाई देना होगा, पानी देना होगा। इससे क्या होगा, पौधे के जड़ों, विशेषकर बारीक जड़ों को कोई नुकसान पहुँचाए बिना सावधानी से इन पौधों को उठाया जा सकता है। मिट्टी की गेंद को विभाजित होने से बचाने के लिए जड़ों को मिट्टी की गेंद के साथ घास या अन्य सामग्री में लपेटना चाहिए। पौधों को नर्सरी से उठाने के बाद और खेत में रोपने से पहले छाया में रखना चाहिए और परिवहन के दौरान उन पर पानी छिड़कते रहना चाहिए।
0: उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: लेडीज फर्स्ट।

आज उन धारणाओं को तोड़ने वाले हैं, उन धारणाओं को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पीरियड्स होता क्या है। पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि किसी भी महिला के शरीर के अंदर जो गर्भाशय है उसकी अंदरूनी परत वो बाहर निकलती है। ये पूरी तरीके से एक नेचुरल प्रोसेस है और बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होती है कि पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत ही अशुद्ध होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। इसे अशुद्ध कहना बिल्कुल एक सामाजिक सोच है और साइंस यानी कि ज्ञान बिल्कुल इससे सहमत नहीं होता है कि पीरियड्स अशुद्ध है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो गर्भाशय होता है उसके अंदर खून का एक परत बनता है और वही अंदरूनी परत बाहर निकलता है और ये नेचुरल है। और इसके साथ ही एक मिथ ये भी होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो पीरियड्स है वो अशुद्ध है तो मंदिर में या फिर धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान ना महिलाएं पवित्र नहीं होती है, अपवित्र हो जाती है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बल्कि ये एक ना बिगड़ी हुई सोच है। बिगड़ी हुई सोच यानी कि हो सकता है पुराने जमाने में ये कहा गया होगा कि महिलाएं जब पीरियड्स होता है उनका तो वो किचन नहीं जा सकती है या खाना नहीं बना सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अशुद्ध हो गई हैं, अपवित्र हो गई हैं, वो घर के अंदर भी नहीं रह सकती हैं, मंदिर में नहीं जा सकती हैं या फिर किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, उन्हें घर से बिल्कुल अलग रहना होगा, दूर रहना होगा। उस वक्त लोगों ने सोचा होगा कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को थोड़ी आराम की ज़रूरत होती है और वो ऐसे में किचन का काम पहले बहुत भारी हुआ करता था ना, घर पे आटा पीसना होता था। अभी जितनी सुविधाएं हैं, आपको मसाले पीसना है आपके पास उसके लिए भी एक मशीन है, लेकिन पहले के ज़माने में मसाले पीसने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और उस वक्त ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे आपके पेट पर असर पड़े। और इसी वजह से कहा गया होगा कि उस वक्त किचन का काम नहीं करना चाहिए, अचार नहीं निकालना चाहिए। तो पुराने ज़माने में अचार को बड़े बड़े बर्तनों में रखा जाता होगा जो कि बहुत भारी हो सकता होगा शायद, इस वजह से कहा गया होगा कि चलो इन सारी चीज़ों को आप नहीं निकालेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। पर लोगों ने इसका मतलब क्या समझा बीतते वक्त के साथ कि हमें परेशानी हो जाएगी अगर वो किचन जाएंगे या फिर वो अगर अचार छुएंगे तो अचार खराब हो जाएगा। नहीं, महिलाओं को परेशानी ना हो इसकी वजह से ये सारी बातें कही गई थी। और अगर मंदिर और धार्मिक स्थान की बात करें तो हो सकता है कि पुराने जमाने में हाइजीन इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं की जा सकती थी, तो उस वक्त ये सोचा गया होगा कि जब हाइजीन को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है तो फिर मंदिर या धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए। पर बदलते वक्त के साथ हम धारणाएं बदलते हैं ना, बदलते वक्त के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को बदलते हैं। अब हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारी बहुत सारी चीज़ें बदल गई है ना, हमारा खान पान बदल गया बदलते वक्त के साथ। तो बदलते वक्त के साथ ये सारी बातें और बिगड़ क्यों गई, ये भी तो बदलनी चाहिए थी ना। किचन में नहीं जाना था क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था एक पुराने जमाने में, पर आपका तो किचन बहुत ही मॉडिफाइड हो गया है, बहुत ही बेहतर हो गया है, वो शारीरिक परिश्रम नहीं रहा जो पहले किया जाता था। तो ये सोचना कि महिलाएं किचन में नहीं जा सकती हैं, मंदिर नहीं जा सकती हैं, धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब महिलाएं मंदिर भी जा सकती है क्योंकि वो अपने हाइजीन को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकती है ना। और इसके अलावा ये भी एक धारणा होती है कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बल्कि रिसर्च बताती है कि हल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग या फिर योगा आपको क्रैम्प या फिर बैक पेन में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, काफ़ी कम होते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको जो पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानी है वो कम होती है। इसके अलावा आपके मूड भी काफ़ी इंप्रूव होते हैं क्योंकि बॉडी ना एक हार्मोन रिलीज करती है, इस हार्मोन को हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स को कहते हैं ना फील गुड हार्मोन्स। ये क्या होते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो दर्द हो रहा होता है उसे कम करते हैं, इसके साथ ही आपके मूड को भी बेहतर बनाते हैं। जैसे एक्सरसाइज के बाद अच्छा फील होता है ना, इसी वजह से एक्सरसाइज करना चाहिए, पर हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके पेट के निचले हिस्से पर दबाव महसूस हो। तो अगर वैसे एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एक्सरसाइज कीजिए, बस वैसे एक्सरसाइज से बचना होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो और एक और धारणा होती है कि पीरियड्स का खून गंदा होता है या फिर टॉक्सिक होता है, ऐसा नहीं है। ये खून ना एक्चुअली नॉर्मल ब्लड होता है, उसमें म्यूकस मिला होता है और चूंकि ये खून गर्भाशय से निकला होता है तो उसमें गर्भाशय की लाइनिंग का भी मिक्सचर होता है।
इसमें कोई भी हार्मफुल या फिर कोई टॉक्सिक चीज नहीं होती है, बहुत नॉर्मल खून होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के समय नहाना नहीं चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। अरे बाबा, उस वक्त हाइजीन बहुत जरूरी होता है, नहाना चाहिए। आप नहाएंगे तो आपको बिल्कुल आपकी बॉडी फ्रेश लगेगी। और जो पीरियड्स से गुजरती है ना लड़कियां, महिलाएं, वो जानती है कि उस वक्त नहाना, उस वक्त खुद को साफ रखना

इतना फ्रेशिंग होता है, कितना अच्छा महसूस कराता है। आप जब नहाते हैं आपकी बॉडी फ्रेश होती है, तो इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होता है। और हाँ, हो सकता है कि आप उस वक्त पीरियड्स के दौरान, कुछ महिलाओं में ये परेशानी होती है कि उनके शरीर का तापमान थोड़ा कम ज्यादा होता है, यानी कि उस वक्त थोड़ा तापमान फ्लक्चुएट करता है, तो जो फ्लक्चुएशन होता है इस वजह से आपको थोड़ा लगेगा कि थोड़ा बुखार आ गया या ऐसी कुछ बात होती है। तो आप उस वक्त सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि आप गुनगुने पानी से नहाइए, पर नहाइए जरूर, क्योंकि साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। अगर आप पीरियड्स में हैं तो भी, तब तो बहुत ज्यादा, और अगर आप पीरियड्स में नहीं है तो भी साफ सफाई जरूरी होती है ना, इसलिए नहाइए। पर अगर पॉसिबल है, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आपको बुखार है या ऐसा कुछ, तो आप गुनगुने पानी से नहाइए। और गुनगुने पानी से नहाना पीरियड्स के टाइम पे कहा जाता है कि बेहतर होता है। इसके अलावा एक और मिथ है कि पीरियड्स में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। चांसेस कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। अगर ओव्यूलेशन जल्दी हो जाए या फिर साइकिल इरेगुलर है तो फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल होता है। अब पीरियड्स में हाँ, प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। इसके साथ ही कहते हैं कि कुछ लोग ये भी मानने लगे हैं, जिस तरीके से सैनिटरी पैड को मार्केटिंग उसकी की गई है, लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी पैड ही सेफ है। ऐसा नहीं है, आज आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टेम्पॉन्स है, मेंस्ट्रुअल कप्स है, रीयूजेबल पैड्स है। तो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और हाइजीन मेंटेन किया जाए तो ये सभी सेफ होते हैं। इसके अलावा अगर आप कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सेफ हो सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप साफ कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, उसे आपने अच्छी तरीके से धोया है, धूप में सुखाया है, उसके बाद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अच्छे से यूज कर सकते हैं, सेफ रहता है। लेकिन उसे रीयूज करना वो रिस्की होता है, और खास तौर से बिना उससे अच्छी तरीके से साफ किए रीयूज करना रिस्की होता है। कपड़े होते हैं जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, उसे रीयूज करने की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन वो भी सेफ है। पर अगर आप उसे अच्छी तरीके से साफ करके इस्तेमाल करते हैं, धूप में सुखाकर इस्तेमाल करते हैं तो। इसके अलावा कुछ लोगों को ये लगता है कि PMS सिर्फ एक बहाना है। PMS की बात करें, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लड़कियों के अंदर ऐसा होता है कि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उसके थोड़े दिन पहले उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ऐसे में उनका मूड स्विंग होता है, इरिटेशन होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा, सिर में दर्द होता है या बहुत ज़्यादा थकान उन्हें महसूस होता है, तो ये होता है PMS। कुछ लोगों को ऐसी परेशानी होती है और कुछ लोगों को नहीं होती है। अब जिन्हें नहीं होती है वो इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि जिन्हें PMS है वो सिर्फ ना बना रहे हैं या फिर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सबका शरीर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है ना, सबका शरीर अलग अलग तरीके का होता है। तो पीरियड्स में कुछ लोगों को PMS होता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता है, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होता है। तो अगर किन्हीं को PMS की परेशानी है और आपको नहीं है, या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो उन्हें नकार मत दीजिए कि ये बहाना है या फिर ओवर रिएक्ट कर रही है। आप देख नहीं सकते हैं ना, पर वो महसूस कर सकते हैं अपने मूड स्विंग्स को, अपने इरिटेशन को, अपने सिर दर्द को। आपको उन्हें समझने की ज़रूरत होती है ऐसे वक्त पे खास तौर से। और इसके अलावा कुछ होता है कि कुछ खास तरह के खाने इस वक्त पे अवॉइड करने चाहिए। पीरियड्स के लिए ना कोई भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस यही है जो हमें नॉर्मली भी सलाह दी जाती है कि बैलेंस्ड डाइट लीजिए, जिसमें आयरन हो, आप भरपूर पानी पीजिए, फलों का सेवन कीजिए, सब्जियों का सेवन कीजिए, यानी कि नॉर्मल बात कहें तो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। और इसके साथ ही जंक फूड कम लेना चाहिए, बेहतर होता है, ये तो हमें नॉर्मली भी कहा ही जाता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने इरेगुलर पीरियड्स को भी इग्नोर करते हैं, या फिर कुछ लोग सलाह देते हैं कि अरे ठीक है, पीरियड्स है, आ तो रहे हैं ना, इरेगुलर है तो क्या हुआ, इग्नोर कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कभी कभी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, यानी कि क्या होता है ना कि कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स इसलिए भी होते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल अचानक से चेंज हो गई है, तो ऐसे में आपके इरेगुलर पीरियड्स नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन एकाध दो महीने, इससे ज्यादा नहीं। हो सकता है कि पीरियड्स आने के पहले वाले महीने में आपने बहुत मानसिक तनाव झेला है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गई है, आपके सोने जागने का समय या फिर आपका डाइट बिल्कुल बदल गया है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो आने वाला पीरियड्स है वो लेट आएगा या पहले आएगा, लेकिन ये एक महीने के लिए होगा, दो महीने के लिए होगा, इससे ज्यादा नहीं होता ऐसा। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है और आपने लाइफस्टाइल में भी कोई चेंज नहीं किया, आपको मानसिक तनाव भी नहीं था,
तो फिर आपका शरीर आपसे कह रहा है कि आपको PCOS है या फिर कोई आपके अंदर हार्मोनल इश्यूज है, उसका ये संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर लगातार ऐसी परेशानी आपको हो रही है तो। इरेगुलर पीरियड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि किसी को पहला पीरियड आ गया, किसी लड़की को पहला पीरियड उसका आया है तो वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गई है। पहली बात तो कि ये जो पहला पीरियड होता है ना, वो बस प्यूबर्टी की शुरुआती लक्षण है, वो साइन दिखाते हैं कि हाँ अब लड़की अपने प्यूबर्टी स्टेज में प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनली फिजिकली बिल्कुल डेवलप हो चुकी है, अब वो बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स में महिलाएं कमजोर होती हैं, वो होती हैं जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो अच्छे से आराम नहीं करती हैं, तो ऐसे महिलाएं कमजोर होती हैं। लेकिन अगर आप सही खान पान रखते हैं, आप आराम का भी ध्यान रखते हैं, आप सब कुछ आपने अपने डाइट को मेंटेन किया हुआ है, तो आपको पीरियड्स के दौरान आप कमजोर नहीं होंगी। आप अपने नॉर्मल लाइफ के जैसे आप बाकी के दिनों में अपने जीवन को जीती हैं वैसे ही जी पाएंगी। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल लाइफ पीरियड्स की वजह से बाधित हो रही है, आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आप कामकाजी महिला हैं तो काम पे नहीं जा पा रही हैं, तो फिर ये कंसर्न की बात है। आपको फिर इसके बारे में सोचना चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए। कई बार होता है कि कुछ महिलाएं इतनी ज्यादा परेशान होती हैं कि उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना दर्द कि वो स्कूल कॉलेज या फिर काम पे नहीं जा पाती हैं, और हर महीने ऐसा दर्द उन्हें होता है, उल्टी आती है, चक्कर आता है, या फिर बहुत ज्यादा उन्हें कमजोरी होती है, पेन किलर्स लेने पर भी उन्हें आराम नहीं होता है, तो ये फिर और ये लगातार हो रहा है, हर पीरियड्स में हो रहा है, तो फिर ये एक किसी सीरियस कंडीशन का संकेत हो सकता है। आपको हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी हो। ऐसे में इसे नॉर्मल मत समझे कि हाँ पीरियड्स में तो इतना होता ही है, 2 दिन की छुट्टी मिल जाए, 3 दिन की छुट्टी मिल जाए, नहीं मिलनी चाहिए। आपको परेशानी हो रही है मिलनी चाहिए, पर डॉक्टर से दिखाने के लिए आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि पीरियड्स आते हैं, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, आपको अपने खान पान को बदलने की जरूरत है, आपको अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे पीरियड्स में तो इतना सा नॉर्मल है, चलता है, पीरियड्स में इतनी ज्यादा परेशानी होनी आम बात है। नहीं है आम बात, ये किसी सीरियस कंडीशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। हो सकता है कि आप एंडोमेट्रियोसिस जैसी परेशानी से आप जूझ रही हो, हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड्स हो, या फिर आपके अंदर हार्मोनल इंबैलेंस हो, तो ऐसी कोई भी परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप पीरियड्स में बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं, आप बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हैं, उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको उस वक्त आराम की जरूरत होती है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप अगर डॉक्टर से मिलेंगी, वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके पीरियड्स भी नॉर्मल होने लग गए हैं। थोड़ी परेशानी होती है, पर इतनी परेशानी नहीं होगी फिर आपको कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, या फिर काम पे नहीं जा पा रहे हैं। अभी अगर हम बात करें ना, तो पीरियड्स के दौरान ना साफ सफाई बहुत जरूरी होती है, हाइजीन मेंटेन करना होता है, इससे आप इन्फेक्शन से बचते हैं, और अवेयरनेस तो बहुत बहुत जरूरी है। मैंने बातचीत के शुरुआत में ही कहा था कि पीरियड्स के बारे में जानते सब है, पर बात कोई नहीं करना चाहता। पीरियड्स के बारे में लड़कियों को तो बात करने की जरूरत होती ही है, पर लड़कों को भी समझना चाहिए कि पीरियड्स क्या है, क्यों है, और जब लड़के समझेंगे तो लड़कियों की जिंदगी भी थोड़ी आसान हो जाती है, और पीरियड्स पर चुप्पी रखने से ना मिथ्स बढ़ते हैं, इसलिए बात करनी जरूरी है। तो पीरियड्स के बारे में बात कीजिए, और कोई परेशानी है तो उसे भी खुलकर बताइए, और पीरियड्स के दौरान जो दर्द होते हैं, जो परेशानी होती है, उसे आप हल्के में मत लीजिए, जो भी मिथ्स हैं उसे खत्म कीजिए। और पीरियड्स के दौरान कोई भी अपवित्र नहीं होता है, अशुद्ध नहीं होता है, थोड़े आराम की जरूरत होती है, थोड़े ध्यान रखने की जरूरत होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डेली लाइफ को जीना बंद कर दे। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और हाइजीन मेंटेन रखिए, तो आप इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। अपना और अपने अपनों का रखिए खास ख्याल, और इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन,
1: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
1: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
1: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सच्चाई की राह पर चलने वाले इंसान को 100 मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, परंतु सच्चाई में वो ताकत है कि 100 मुसीबतों का मुकाबला करके सच्चे और अच्छे हजारों मार्ग निकल आते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। ये विचार हमें भेजा था मेन रोड तेल्हारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर जी ने।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं अजीत। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देश देवदास का। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत साहू और बेबी आराध्या साहू का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
3: उमंग कार्यक्रम के प्यार में हम इतना डूब गए हैं कि बस पूछो मत।
2: इसके अलावा हमें संदेश प्राप्त हुआ है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसी जी का।
3: तो विमलेश जी, अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। तो हमारा पहला प्रश्न था NCERT का आदर्श वाक्य क्या है और उसका अर्थ क्या है?
2: इसका उत्तर है साथियों, NCERT का आदर्श वाक्य है विद्यायामृत मश्नुते, अर्थात विद्या से ही अमृतत्व प्राप्त होता है।
3: जी, अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था सिंधु घाटी की सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थल राखीगढ़ी के बारे में। प्रश्न था, राखीगढ़ी की सभ्यता धीरे धीरे क्यों विलुप्त हो गई?
2: तो इसका उत्तर है साथियों, राखीगढ़ी की सभ्यता के विलुप्त होने के पीछे मुख्य रूप से दो सिद्धांत बताए जाते हैं। पहला, शायद उस क्षेत्र में बहने वाली सरस्वती नदी के सूखने के कारण, या बहुत संभव है उस क्षेत्र में आए भयानक भूकंप के कारण।
3: अब आइए सुनते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न था, यदि मील के पत्थर के शीर्ष पर नारंगी रंग हो तो इसका क्या अर्थ है?
2: इसका अर्थ है साथियों, ये रंग ग्रामीण सड़क का संकेत होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों में मील के पत्थर का शीर्ष नारंगी रंग का होता है।
3: जी, और अब आइए सुनते हैं हमारा चौथा प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न था, क्या सांप दूध पीते हैं?
2: इसका वैज्ञानिक उत्तर है साथियों, सांप दूध नहीं पीते हैं।
3: जी,
2: क्योंकि उनका पाचन तंत्र किसी भी डेयरी उत्पाद को नहीं पचा सकता है और उनमें लैक्टोज एंजाइम नहीं होते हैं।
3: जी, और आइए सुनते हैं हमारा अंतिम प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, हंस कैसी जगहों पर पाए जाते हैं और उनका आहार क्या है?
2: हंस दलदली घास के मैदानों, झीलों, नदियों, तालाबों और जलधाराओं के पास पाए जाते हैं। हंस पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। ये मुख्यतः पौधों की जड़ें, नरम तने, कलियां, पत्ते और छोटे छोटे फल खाते हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओं, टेलीफोन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने फोन पर बोलने के लिए हेलो शब्द के बजाय किस शब्द का सुझाव दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: टेलीफोन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने फोन पर बोलने के लिए हेलो शब्द के बजाय किस शब्द का सुझाव दिया था?
3: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर
2: और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप हमारे IVRS नंबर और ईमेल पर प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के कार्यक्रमों की।
3: तो श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, उमंग रेडियो प्रसारण में हम सबसे पहले सुनते हैं NCERT की पाठ्य पुस्तकों के पाठों पर आधारित कार्यक्रम। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम थाथु और मैं।
4: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथु बुलाती हूँ। कभी कभी थाथु मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। थाथु, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो था था खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
5: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
4: थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं, मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थातू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थातू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थातू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
5: अब सो जाओ।
4: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थातू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
1: तो बच्चों, अभी आपने सुना कि दादाजी को थाथा कहते हैं, और यदि बहुत प्यार आ जाए दादाजी पर तो थाथू भी कहते हैं। तो अब आप बताइए कि दादा दादी नाना नानी को आपकी भाषा में क्या कहते हैं? अब आपसे एक छोटा सा सवाल, क्या आप दादा दादी नाना नानी और घर के बड़ों के साथ समय बिताते हैं? थातू और मैं अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, और आइए अब सुनते हैं एक बेहद सुंदर रहस्यों से भरा प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक ओ हेनरी की प्रसिद्ध कहानी द लास्ट लीफ का हिंदी नाट्य प्रस्तुतीकरण।
2: शीर्षक है वो आखिरी पत्ता।
6: साथियों नमस्कार।
7: नमस्कार साथियों।
6: साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता।
7: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
6: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है, इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
7: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने

0: कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
2: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
3: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
2: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
0: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हाँ हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
4: सू
2: जी,
4: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
2: जी हाँ।
4: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
2: जी डॉक्टर साहब।
4: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
2: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
5: 15, 40
2: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
5: 13, 12, 11 ओह
2: जॉन्सी,
5: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
2: क्या गिन रही हो?
5: 11, 10, 9 उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए।
2: क्या कम हो गए?
5: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा, बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
2: जॉन्सी, उस दिन क्या सौ थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
5: 6, 5, 4.
2: जॉन्सी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है। तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
5: Only four.
2: मेरी तरफ देखो।
5: Sue, only four. Oh, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
2: क्या 3 बचे हैं? What's 3, dear?
5: 3 पत्तियां।
2: पत्तियां?
5: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
2: हाँ, हाँ।
5: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
2: क्या लगता है?
5: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
2: क्या जॉन्सी?
5: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
2: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
5: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
2: हाँ
5: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
2: जॉन्सी,
1: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
1: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
6: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
1: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
5: अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
1: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
6: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
1: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र 2 पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम 1 पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ 1 ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
5: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
1: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया।

0: आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
2: सू मेरी दोस्त।
3: हाँ जॉन्सी।
2: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल सरक खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
3: सू।
2: हाँ जॉन्सी।
3: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी।
2: मैं नहीं मरूंगी।
3: हाँ बिल्कुल,
2: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
3: बिल्कुल जॉन्सी।
2: हाँ, हाँ इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
3: पत्ता?
2: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
3: हाँ,
2: हाँ,
3: मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
2: देखो अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
3: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
2: हाँ,
1: हाँ। दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
1: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
3: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
2: बेहतर।
3: ये लो कॉफी पियो।
2: थैंक यू
3: जॉन्सी।

0: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है? सू
1: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
2: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बैरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
0: पेंटिंग?
2: हाँ।
0: कैसी पेंटिंग?
2: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बैरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
0: ओह, तो वो पेंटिंग है?
2: हाँ।
0: असली पत्ता नहीं है?
2: नहीं।
0: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
2: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस।
0: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
2: हाँ जॉन्सी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस। सू,
2: हाँ, उन्होंने बना दिया।
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली। सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे। सू, मास्टरपीस, मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
3: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
1: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, कथा नाट्य आलेख और परामर्श अजीत होरो, कलाकार कीमती आनंद, शमाइला परवेज, बाबला कोचर, सुषमा शर्मा और हरप्रीत कौर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहायक अमित कुमार और कुसुम लता, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS टोल फ्री नंबर है 8800440559। आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। वो आखिरी पत्ता, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को तकनीकी टीम यानी
4: कुसुमलता,
5: जगबंधु,
4: चेतना,
5: शमीम,
4: मंजू कुमारी
5: और वीरेंद्र के साथ आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।

0: आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और आप सभी के साथ है आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु। दोस्तों और किसान भाइयों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप सभी के बीच उन्नत कृषि कार्यक्रम में। और आप सोच रहे हैं भाई कि आज कौन से विषय के साथ मैं हाजिर हूं, तो बता दूं मैं आपको, आज का हमारा विषय है कृषि में जैव उर्वरक का महत्व एवं उपयोग। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं आजकल रासायनिक खादों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस वजह से हमारी ज़मीन, हमारी जो मृदा है, मिट्टी है, उसकी उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। और अभी फ़िलहाल तो ज़रूरी है, अगर आप उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो जैव उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर लगातार बार बार इन रासायनिक खादों का आप इस्तेमाल करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आएगा कि आपकी जो वो मिट्टी है, ज़मीन है, वो बंजर हो जाएगी और आप उस जगह पर कोई भी फसल नहीं उगा पाओगे। तो चलिए आज महत्व के बारे में जानेंगे, जैव उर्वरक के महत्व के बारे में, साथ ही इसके उपयोग के बारे में। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसा कि किसान भाइयों, मैंने कहा कि जैव उर्वरक और इसका नाम भी लिया है मैंने, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, और हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई, हमारे श्रोतागण ये जान लें कि जैव उर्वरक क्या होता है।
1: देखिए, जैव उर्वरक को हम बायो फर्टिलाइजर भी बोलते हैं, और ये एक ऐसे सम्मिश्रण होते हैं जिनके अंदर लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं, और ये लाभदायक सूक्ष्म जीव जब मिट्टी में जाते हैं तो अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं कि वायुमंडल में 79% या 78.6% नाइट्रोजन होता है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं मिट्टी में जो कि उसको वायुमंडल से मिट्टी के अंदर लेकर के आते हैं और उस अवस्था में लेकर के आते हैं जिसमें कि पौधा लेता है। तो इस तरह से हम यदि इनका प्रयोग करते हैं तो बाहर से जो रासायनिक खाद से हम नाइट्रोजन देते हैं, जैसे कि यूरिया से देते हैं या DAP से देते हैं, उसकी देने की ज़रूरत बहुत कम हो जाएगी। इसी तरह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं मिट्टी के अंदर जो कि अनुपलब्ध होते हैं पौधों के लिए, तो जब बायोफर्टिलाइजर या जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो वो उपलब्ध हो जाते हैं उस अवस्था में जिसमें पौधा लेता है। तो ये इनका मुख्य रोल है, और साथ ही साथ जैव उर्वरकों का प्रयोग करने से रोगों पौधों में रोग भी कम लगते हैं, उनमें रोग लड़ने की क्षमता ज़्यादा आ जाती है। तो ये जैव उर्वरकों का परिचय था।
0: तो जैव उर्वरक के महत्व के बारे में, या फिर जैसे कि परिचय है, उसके महत्व से ही हम उसके परिचय को जोड़ सकते हैं। और इसके बाद डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैव उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं।
1: देखिए, जैव उर्वरक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक तो नंबर एक पर आता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले या पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले, तो उसमें सबसे पहला जो नंबर है वो है राइजोबियम। तो जैसा कि सब किसान भाई भी जानते हैं, राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें होती हैं, और गांठों के अंदर ये बैक्टीरिया या जीवाणु होता है। ये जीवाणु जड़ों की गांठों के अंदर ही वायुमंडल की नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और पौधों को वो उपलब्ध होने लगता है। तो ये राइजोबियम का प्रयोग केवल हम दलहनी फसलों में ही कर सकते हैं, बाकी किसी और फसलों में इसको वो नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये नाइट्रोजन राइजोबियम हो गया दलहनी फसलों के लिए। इसी तरह से एक बैक्टीरिया होता है एजोटोबैक्टर, इस बायोफर्टिलाइजर का नाम होता है एजोटोबैक्टर। इसका काम होता है वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करना, और इसको जो रिकमेंड करते हैं सभी फसलों में कर सकते हैं सिवाय दाल वाली फसलों के, लेकिन सबसे अच्छा जो काम करता है ये सब्जी वाली फसलों में करता है। और इससे यदि पौधों में सही से अप्लाई करा जाए तो 20 से 25 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टर एक साल में मिल जाता है। और सब्जी वाली फसलों में ज़्यादा प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया की खासियत होती है कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या रेगुलर्स का सिक्रेशन ज़्यादा करता है, जो कि सब्जी वाली फसलों को उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। तीसरा नाइट्रोजन वाला बायोफर्टिलाइजर होता है एजोस्पाइलम। एजोस्पाइलम एक ऐसा जीवाणु है जो कि सहजीवी तरह से काम करता है, जैसे कि धान्य फसल जैसे धान है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, तो उनमें किसान भाई इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इसके प्रयोग करने से भी 20 से 30 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टर फसलों को मिल जाता है। तो ये सारा मैंने बताया नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर। नंबर दो पे आता है स्फुर या फास्फोरस को उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर। तो ये एक ऐसे बायो फर्टिलाइजर होते हैं या जीवाणु होते हैं जो कि मिट्टी में जाते हैं। तो हम जानते हैं कि मिट्टी का जो 45% भाग होता है वो खनिज पदार्थ से बना होता है। ये खनिज पदार्थ बहुत सारे न्यूट्रिएंट के सोर्स होते हैं, अभी उनके अंदर विद्यमान होते हैं, लेकिन उस अवस्था में होते हैं जिसमें कि पौधे के लिए बेकार होता है। तो ये जीवाणु क्या करता है, जब मिट्टी में जाता है तो अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा जो फिक्स या स्थिर अवस्था में फास्फोरस था पड़ा हुआ या मिनरल फॉर्म में फास्फोरस था पड़ा हुआ, उसको अपनी प्रतिक्रियाओं से मृदा घोल में लेकर के आता है और उस घोल उस अवस्था में लेकर आता है। हम जानते हैं कि आयनिक फॉर्म में लेता है प्लांट, तो आयनिक फॉर्म में लेकर के आ जाता है, पौधा उसको प्रयोग करने लगता है। तो ये दूसरे प्रकार का मैंने जो उर्वरक बताया फास्फोरस के लिए। तीसरा होता है इसी तरह से पोटेशियम सोलिबिलाइजर होते हैं, जो कि पोटास को सोलिबिलाइज करते हैं मिट्टी के अंदर। तो जनरली क्या होता है कि मिट्टी के अंदर लगभग 94-96% तक पोटास अस्थिर होता है या अघुलनशील होता है, बेकार होता है पौधों के लिए। तो जब हम इन जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, स्पेशली पोटेशियम सोलिबिलाइजिंग बैक्टीरिया का, तो वो उस अवस्था में लेकर आते हैं उससे जिसमें कि पौधा लेता है। तो हमको बाहर से रासायनिक खादों पर जो निर्भरता है वो कम हो जाती है। तीसरा टाइप के बायो फर्टिलाइजर होते हैं मोबिलाइजर। जनरली मिट्टी के अंदर ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कर पाते या जा नहीं पाते। तो जब वो जा नहीं पाते हैं तो पौधे के आसपास में, पौधे की जड़ों के आसपास में जो भी पोषक तत्व होता है वो पौधा ले लेता है, लेकिन जो उसकी जड़ के दूर था वो उसके पास आ नहीं सकता, क्योंकि उसका वो कैरेक्टर ऐसा होता है, विशेषता ऐसी होती है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच नहीं पाता। तो उसमें एक बायोफर्टिलाइजर होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है कि ये सहजीवी संबंध होता है पौधों की जड़ों के साथ में, एक जो कवक होता है मिट्टी में पाया जाता है उसका। तो ये क्या करता है, अपनी हाइफी या माइसेलियम का एक जाल तैयार कर लेता है, जड़ों के साथ में मिट्टी में फैल जाता है और जहाँ जड़ें नहीं पहुंच पाती, ये जाल पहुंच करके और वहाँ पर उपस्थित जो अगतिशील पोषक तत्व था जैसे कि फॉस्फोरस है या जिंक है, आयरन है, तो उनको ये पौधों की जड़ों के तक लेकर के आता है और पौधों की जड़ों के अंदर भी प्रवेश करा देता है। तो ये तीन मुख्यतः जैव उर्वरक मैंने बताए जो कि फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके अंदर सबसे खासियत ये होती है कि इनके अंदर कोई भी रासायनिक तत्व नहीं होता, सारे नहीं के सारे ही ये जैवीय हैं या बायोलॉजिकल बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं।
0: तो बायोलॉजिकल जो बायो फर्टिलाइजर हैं वो फसलों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और जो इन रासायनिक खादों से हमें बार बार कहा जाता है कि हमें अपने फसलों में इसे नहीं देना चाहिए क्योंकि बहुत नुकसान है इसकी वजह से। तो ये बात हमारे किसान भाइयों को समझनी चाहिए। और इसके अलावा जब विशेषता की बात आती है, तो डॉक्टर साहब आपने जब इसका परिचय दिया तभी इसकी विशेषता की बातें हमने समझ ली थी थोड़ी, लेकिन अगर विस्तार में इसके विशेषता को जानना चाहे हमारे किसान भाई तो क्या हो सकती है वो विशेषताएँ?
1: देखिए, जब हम रासायनिक खाद मिट्टी में देते हैं फसलों के लिए, तो सब लोग जानते हैं, किसान भाई सब लोग जानते हैं कि ये हानिकारक है, उससे मृदा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, और सबसे बड़ी बात है कि हम जो उसका भाग खाते हैं, मान लीजिए धान गेहूं मक्का कोई भी फल खाएं सब्जी खाएं, तो वो तो खेतों से ही आती है, और खेतों के अंदर हम केमिकल्स ज़्यादा देते हैं, रासायनिक खाद ज़्यादा देते हैं या पेस्टिसाइड ज़्यादा देते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ अंश हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। आजकल बहुत सारे डिजीज, बहुत सारे रोग हम लोगों में हो रहे हैं, कैंसर, सबसे ज़्यादा कैंसर्स हैं, पेट में दर्द है, तो सब ये प्रॉब्लम होती हैं जो कि केमिकल्स का कहीं ना कहीं इसमें भाग होता है।
0: या देखा जाता है बाजार में कि बड़े बड़े जो सब्जियां हैं वो केमिकल से इंजेक्शन वगैरह दे के उगा लिए जाते हैं, और लोग समझते हैं कि ये तो बहुत बड़ा है, चलो इसे घर लेकर जाते हैं, तो मतलब जितने भी लोग हैं फैमिली मेंबर्स के लिए वो बनकर तैयार हो जाएंगे खाने के रूप में, लेकिन उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि जो आप देख रहे हैं इतने बड़े सब्जियां जो हैं वो कहीं ना कहीं जो रासायनिक जो खाद है या फिर इंजेक्शंस वगैरह हैं उससे बनाए गए हैं। तो इसलिए उन सारे चीज़ों से मुझे लगता है कि जो लोग हैं आसपास के हमारे लोग हैं उन्हें भी अवॉइड उन सारे सब्जियों को करना चाहिए।
1: जो बाजार में सब्जियां आती हैं तो आजकल तो मैक्सिमम रासायनिक खादों के थ्रू ही आ रही हैं, तो रासायनिक खादों के या जो भी पेस्टिसाइड अप्लाई करते हैं किसान, तो उनका अंश उनके अंदर आ जाता है। तो अब ये जैव उर्वरक क्या होते हैं कि इसके अंदर कोई भी रासायनिक तत्व नहीं होता, इसमें केवल उसकी जगह रसायन, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन फास्फोरस, उसमें कुछ नहीं होता ऐसा, उसके अंदर बैक्टीरिया होता है जो कि लाभदायक बैक्टीरिया होता है, अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा पौधों को न्यूट्रिएंट उपलब्ध कराता है और उनके रोगों से प्रतिरोधकता क्षमता भी इंक्रीज करता है या बढ़ाता है। तो इसमें और ये तो हो गया एक पार्ट की हम जो फसल का आपसे फसल खाते हैं, मान लीजिए धान या गेहूँ सब्जी खाते हैं तो वो अच्छी होगी, स्वस्थ होगी। दूसरा सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम हो रहा है मिट्टी के साथ में हो रहा है कि जब हम रासायनिक खाद या पेस्टिसाइड देते हैं तो उसकी उर्वरता क्षमता कम होती चली जा रही है। उसमें उर्वरता क्षमता कम कैसे हो रही है कि हम लोगों ने क्या करा, किसान भाइयों ने क्या करा कि रासायनिक खादों पर ही हम डिपेंड हो गए, उसके अंदर जैविक खाद या कंपोस्ट का हमने प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दिया या बहुत ही कम कर दिया। कोई किसान है 3 साल में एक बार डालता है, कोई 5 साल में डालता है, कोई कभी कभी डालता ही नहीं है, उसका मतलब ऐसा ही वो चल रहा है, खेती हो रही है रासायनिक खाद के भरोसे। तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं और हमने जैविक खादों का प्रयोग करना छोड़ दिया। मान लीजिए घरी खाद का प्रयोग नहीं करते, कंपोस्ट का खाद का प्रयोग नहीं करते, गोबरी खाद का प्रयोग बहुत कम करते हैं, तो इससे जमीन के अंदर कार्बन की मात्रा कम हो गई। कार्बन की मात्रा, कार्बन क्या होता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है मिट्टी का, जो कि सभी पोषक तत्वों को प्रदान करने की क्षमता रखता है कार्बन के अंदर। तो कार्बन कम होने से और मृदा का कार्बनिक पदार्थ कम होने से मृदा में सूक्ष्म जीवों की कमी हो गई। सूक्ष्म जीवों की कमी होने का मतलब मृदा की हेल्थ बहुत खराब हो गई है। तो अब हम ये चाहते हैं कि मृदा की कार्बन कंटेंट बढ़ जाए, तो किसान भाइयों को हम रिकमेंड करेंगे, बोलेंगे कि आप लोग अपने खेत के अंदर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कोई भी हरी खाद दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर, क्योंकि उसमें उसकी मात्रा कम हो गई है और जीवाणुओं की संख्या भी बहुत कम हो गई है। तो ये इसके मुख्य लाभ हैं कि जब हम जीवाणु खाद देते हैं तो जीवाणु ही बैक्टीरिया या फंगस जीवाणु जो होते हैं लाभदायक, ये मिट्टी की लाइफ होती है या उसका जीवन होता है, इसके द्वारा ही सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं उसके द्वारा ही होते हैं मिट्टी के अंदर में। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके अंदर कोई रसायन नहीं होता, दूसरा ये होता है कि मिट्टी का ना तो वायु प्रदूषण होता है, ना ही मिट्टी प्रदूषण होता है, और ना ही हमारे स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव दुष्परिणाम पड़ता है इसके प्रयोग करने से। और सबसे बड़ा यह है कि यदि कोई किसान सही तरह से इसका प्रयोग करता है तो उपज में 10-12% तक वृद्धि हो जाती है। और साथ ही साथ रासायनिक खाद का प्रयोग जो किसान करते हैं उसमें कम से कम 20-25% तक कट शॉर्ट हो जाएगा या कमी हो जाएगी। मान लीजिए कोई किसान अपने खेत में यूरिया नाइट्रोजन 100 किलोग्राम देता है, तो यदि वो एजोटोबैक्टर या एजोस्पर्म का प्रयोग करता है तो उसमें वो 100 किलोग्राम की जगह 75 या 80 किलो ही देगा, बाकी 20-25 किलोग्राम उसका सेव हो जाएगा। तो हमारा पर्पज था कि किस तरह से हम मिट्टी के अंदर को रासायनिक खाद को जाने से रोकें, तो इस तरह से हम इसके प्रयोग से मिट्टी के अंदर रासायनिक खाद को जाने से रोक सकते हैं और मिट्टी की उर्वरता क्षमता को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिससे कि और साथ ही साथ उसकी उपज भी अच्छी मिलती रहती है, ऐसा नहीं है कि उपज कम मिलती है।
0: तो ये विशेषताएं हुई जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उपज अच्छी होती है और इसमें कोई भी रसायन नहीं होता है और जिसकी वजह से हमें कोई बीमारियां भी नहीं होती, क्योंकि कई बार देखा गया है कि केमिकल्स की वजह से हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट हैं वो डैमेज होते हैं और कई बीमारियां भी होती हैं हमें। तो यहां पर इस बात का खास ख्याल रखें कि आप अगर किसान भाई हैं तो आप जैव उर्वरक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें अपने खेतों में। और इसके बाद यहां पर बातें हो गई विशेषताओं की, कितने प्रकार हैं उसकी बातें हो गई हैं, तो डॉक्टर साहब अब प्रयोग विधि के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे।
1: हाँ, ये प्रयोग विधि बहुत ही महत्वपूर्ण वो है, इसका अवयव है या पहलू है। किसान भाई रासायनिक खादों का प्रयोग विधि जानते हैं, कैसे यूरिया देना है, कैसे DAP देना है, कैसे SSP देना है, लेकिन जैव उर्वरकों का प्रयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसका एक्चुअली प्रयोग करना भी बड़ा आसान है नहीं, बड़ा ध्यान देना होता है इसका ट्रीटमेंट करते समय या उपचार करते समय। तो जैव उर्वरकों के प्रयोग करने के मुख्यतः 3 मेथड होते हैं, 3 टेक्नोलॉजी होती हैं या विधियाँ होती हैं। तो नंबर 1 इसमें आता है बीज उपचार। तो बीज उपचार के लिए जो हम बायोफर्टिलाइजर की दर लेते हैं वो 20-30 ग्राम प्रति KG ऑफ सीड लेते हैं। और यहाँ पर हम उदाहरण लेंगे, यदि किसी किसान के पास में 10 किलोग्राम बीज है तो 10 किलोग्राम बीज के लिए 200-300 ग्राम बायोफर्टिलाइजर जैव उर्वरक लेंगे और उसकी दुगनी मात्रा में हम पानी लेते हैं। तो मान लीजिए 200 ग्राम कल्चर था, बायोफर्टिलाइजर था, तो 400 मिलीलीटर पानी ले लेंगे। 400 मिलीलीटर का हम 10% गुड़ या जैगरी लेते हैं, लो क्वालिटी का गुड़ होगा या जैगरी होगा, तो 400 का 10% 40 ग्राम हो गया। 40 ग्राम गुड़ लेकर के हम उसको पानी में घोल लेंगे और यदि घुलता नहीं है तो उसको हम स्टोव पे या गैस पे हीट कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं। गर्म करने का मकसद है हमको हमारा कि गुड़ अच्छी तरह से पानी में घुल जाए। जब पानी में गुड़ घुल जाता है तो हम उसको ठंडा कर लेंगे, इतना ठंडा कर लेते हैं कि उसका टेम्परेचर, उसका तापमान रूम तापमान पर आ जाए। जब वो ठंडा हो जाता है अच्छी तरह से तो उसके अंदर जो 200 ग्राम बायोफर्टिलाइजर था उसको हम मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद में ये सारा का सारा काम हम छाया में करते हैं। ध्यान देते हैं कि

जिससे कि रगड़ना खाए वो उसका सरफेस जो होता है बीज का, तो इस तरह से बीज के ऊपर उसका एक बायोफर्टिलाइजर का जरूरत का लेप आ जाता है। फिर इसको हम उस प्लास्टिक शीट जो अपने बिछाई थी उसके ऊपर इसको हम शीट को पूरा स्प्रेड कर देते हैं, बिछा देते हैं। बिछाने के बाद में उसको लगभग 1 घंटे तक छोड़ देते हैं छाया में ही, और 1 घंटे में वो लगभग पूरी तरह से सूख जाता है। सूखने के बाद में हम उसको जिस खेत में बिजाई करनी होती, बोना होता, उसमें जाकर के हम बो देते, चाहे लाइन में बोना है या बखेरना है, आपको जैसे आपकी सुविधा के अनुसार उसको खेत में हम यूज़ कर लेंगे, बो देंगे। तो ये मैंने बताया आपको बीज उपचार, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ईजी है, सरल है और सबसे अफेक्टिव ये बीज उपचार होता है। नंबर 2 आता है मृदा उपचार। मृदा उपचार भी बड़ा अच्छा है और आसान है तरीका है होता है। इसके लिए हम 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम बायोफर्टिलाइजर लेते हैं। जैसे कि बायोफर्टिलाइजर आपको पहले बताए जा चुके हैं, जराइजियम एजिटोबैक्टर PSB, एजोस्पाइलम KSB आदि इत्यादि को हम 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हिसाब से लेते हैं, और 100 किलोग्राम बर्मी कंपोस्ट लेंगे या उपलब्ध है तो, नहीं तो 100 किलोग्राम अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद ले लेते हैं। इस गोबर की खाद में या वर्मी कंपोस्ट में हम उसको 5 किलोग्राम कल्चर को मिक्स कर लेते हैं और पूरी रात के लिए हम 12 घंटे लगभग छोड़ देते हैं। फिर सुबह को जिस खेत में हमको इसको यूज़ करना होता है, उपयोग करना होता है, उसमें जाकर के बखेर देंगे या ब्रॉडकास्ट कर देंगे, और फिर उसके बाद में हल्की हैरो से जुताई कर देते हैं जिससे कि वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाए। ध्यान रखें कि इसका जो छिड़काव हमने करा है सुबह सुबह होना चाहिए या फिर शाम को, ऐसा ना हो कि दिन में 12-1 बज रहा है और बहुत तेज धूप है, तो उस धूप में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया था, जो जीवाणु था, वो मर जाएगा और सूर्य की किरणें होती हैं उनसे, तो बखेरने के तुरंत बाद ही आपको इसको मिक्स करना होता है। तो ये मृदोपचार हो गया। और तीसरा तरह से आता है, कुछ किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं या धान लगाते हैं, तो सब्जी की खेती में तो बिछड़ा लगाते हैं या पौध लगाते हैं, तो नंबर 3 आता है पौध उपचार। पौध उपचार बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है उन फसलों में जिनमें कि हम पौध का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मिर्च लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, बैंगन लगाते हैं या गोभी है, तो इन सबको हम बीज के बिछड़ा के द्वारा लगाते हैं या सीडलिंग के द्वारा लगाते हैं, तो उसके लिए जो दर होती है वो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उस 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बायोफर्टिलाइजर लेकर के हम डालते हैं, 100 लीटर पानी में घोल लेंगे बड़ा बर्तन लेकर के, और घोलने के बाद में एक घोल बन जाता है 100 लीटर का। इस 100 लीटर के घोल में जो आपकी पौध है उस पौध को उखाड़ेंगे या बिछड़ा को उखाड़ेंगे और मिट्टी साफ करके उसकी जड़ को कम से कम 45 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और वो पानी के अंदर सॉल्यूशन में छोड़ दिया 45 मिनट तक, और 45 मिनट के बाद में उसको निकाल करके जिस खेत में रोपाई करनी थी वहाँ पर जा करके हम उसको रोप देते हैं। तो ये तीसरा प्रकार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है स्पेशली सब्जियों के लिए, ये मैंने बताया आपको। और होता है कि हमने जानते हैं, किसान भाई नहीं जानते किस फसल में कौन सा बायोफर्टिलाइजर दें, कौन से पे प्रयोग करें, तो इस थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। दलहनी फसलों के लिए जैसा कि मैंने बताया था केवल राइजोबियम का प्रयोग करते हैं, और राइजोबियम के साथ में हमेशा संशोधित किया जाता है, रिकमेंड कराया जाता है PSB फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, तो राइजोबियम के साथ में मिक्स करके हमेशा PSB को अप्लाई करना होता है। इससे क्या होगा कि राइजोबियम की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी और पौधों की जड़ों के अंदर गांठों का विकास ज़्यादा होगा, जड़ों का विकास भी ज़्यादा होगा और गांठों का विकास ज़्यादा होगा। जब जड़ों का विकास और गांठों का विकास ज़्यादा होगा तो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप इसमें राइजोबियम के साथ में हमेशा PSP का प्रयोग करें। प्रयोग विधि जैसे मैंने बताया था पहले वही होती है। इसी तरह से एजिटोबैक्टर या PSB होता है, तो उसमें उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, PSB का प्रयोग सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो दलहनी फसलें हो या सब्जी वाली हो या धान्य हो या फल हो या फूल हो, तो PSB का प्रयोग मैंने बता दिया किस किस फसलों में कर सकते हैं। तीसरा आता है एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर का प्रयोग हम कर सकते हैं दलहनी फसलों को छोड़कर बाकी सभी में कर सकते हैं, और इसका इस प्रयोग स्पेशली सब्जी वाली फसलों में करते हैं जो कि बहुत ही लाभदायक होता है। तीसरा है एजोस्पाइलम, एजिटोबैक्टर और राइजोबियम तीनों ही ये नाइट्रोजन को उपलब्ध कराते हैं पौधों को, और एजोस्पाइलम का प्रयोग हम धान्य वाली फसलों में रिकमेंड करते हैं। और तीसरा चौथा होता है KSB या पोटेशियम सोलराइजिंग बैक्टीरिया, इसका प्रयोग सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो धान्य हो, गेहूँ हो, धान हो, ज्वार हो या सब्जी हो या फल फूल जो भी हो, सब में प्रयोग कर सकते हैं इसका हम। चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है माइकोराइजा का प्रयोग हम सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो दलहनी हो, धान्य हो, फूल हो, सब्जी हो, फल हो।
तो ये सब मैंने बताया आपको किन किन फसलों में किन किन जानवरों का प्रयोग कर सकते हैं और कैसे करें।

0: ये भी मैंने आपको बताया।
1: तो किसान भाइयों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको पूरे अच्छे तरीके से विस्तार में बताया कि आप जैव उर्वरक का प्रयोग कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से दलहनी फसलों के लिए कौन कौन से जैव उर्वरक हैं उनके बारे में बताया डॉक्टर साहब ने आपको। और अंत में जाते जाते डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, और वो ये है कि आप एक ही लाइन में बता दें हमारे किसान भाइयों की कि रासायनिक खादों की अपेक्षा क्या लाभ है जैव उर्वरक का।
0: हाँ देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये कि रासायनिक खाद की अपेक्षा में जैव उर्वरक क्यों अच्छे होते हैं। इसका एक ही उत्तर है या दो उत्तर हो सकते हैं कि रासायनिक खाद हम देते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, रासायनिक खाद देने से मृदा प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है और वायु प्रदूषण हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ भी प्रभावित हो रही है, स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। तो ये उसके हानि है रासायनिक खादों की। और जैव उर्वरक को जब हम प्रयोग करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उससे मृदा के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है, जल भी उसका कहीं कहीं हद तक अच्छा रहता है। और जो हम उत्पाद खाते हैं, जहाँ जो प्रोड्यूस खाते हैं, चाहे सब्जी हो, फल हो, धान हो, तो वो सभी एकदम सेफ होते हैं, उसके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं होता, क्योंकि जैव उर्वरक खुद अपने आप में कोई रसायन तो है नहीं। इसमें एक जैव उर्वरक में जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं जो कि पूरी तरह से सेफ होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं।
1: तो यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या लाभ है जैव उर्वरक का रासायनिक खादों की अपेक्षा। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कृषि में जैव उर्वरक के महत्व एवं उपयोग के बारे में बताया। आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे किसान भाइयों को भी धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुना। लेकिन सुनने के बाद आप इसे अपने जो प्रयोग विधि है, जो आप खाद इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, आप इसे अपनाएं तो आपके लिए लाभकारी होगा, आपके फसलों के लिए लाभकारी होगा। और फिलहाल तो आपसे मुलाकातें होती रहेंगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज अंग उमंग में हम बात करने वाले हैं भागलपुर के बारे में। जी हाँ, भागलपुर के नामों के बारे में। आपको पता तो होगा ही कि भागलपुर को अंग प्रदेश, अंग देश जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी भागलपुर के कई सारे नाम हैं, और आज हम उन सारे नामों के बारे में बातें करने वाले हैं। बहुत सारी बातें होने वाली है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। तो चलिए हम बातें शुरू करते हैं भागलपुर के बारे में, भागलपुर के नामों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम भागलपुर के बारे में कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं। भागलपुर बिहार के पूर्वी भाग में बसता है और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये तो सभी को पता है, यहाँ गंगा माता को कितना पूजा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रमुख नदी है वो गंगा नदी ही है। इसके अलावा कुछ छोटी नदियाँ और नाले हैं, लेकिन बात करें कोशी की, हालांकि ये सीधे भागलपुर से नहीं गुजरती है, पर कोशी का प्रभाव भागलपुर पे जरूर पड़ता है। और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि भागलपुर के अलग अलग नामों के बारे में। सबसे पहले तो हम जो भागलपुर आज के समय में इस नाम का इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे एक बड़ी अच्छी सी कहानी मानी जाती है कि है ये एक लोक मान्यता है। इस नाम को समझे तो इसका मतलब होता है भाग्य का नगर, समृद्धि का नगर। और अभी यानी कि आधुनिक दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अगर कोई नाम है तो वो भागलपुर ही है। इसके अलावा देशों में हम एक और नाम से जाने जाते हैं, वो है सिल्क सिटी। जी हाँ, सिल्क सिटी बहुत ही प्यारा सा नाम है। और सिल्क सिटी इस नाम से क्यों जाना जाता है ये तो आप सभी को पता होगा ही, क्योंकि यहाँ पर सिल्क से जुड़े हुए जो बहुत सारे व्यवसाय हैं वो हैं। और यहाँ के जो सिल्क के बने कपड़े होते हैं अपने देश भर में तो जाते ही हैं, साथ ही विदेशों में भी भागलपुरी सिल्क की बड़ी डिमांड रहती है, इसी वजह से भागलपुर को लोग सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम बात करें एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम की, तो वो है चंपापुरी, चंपा नगरी, चंपावती। जी हाँ, एक समय ऐसा था जब यहाँ पर चंपा के पेड़ बहुत सारे हुआ करते थे, जिसकी वजह से इस जगह को चंपावती या चंपा भी कहा जाता था। अगर हम बहुत सारी किताबों में, लिटरेचर में देखें, तो चंपावती नाम से भी इस जगह को जाना गया था। और अगर हम जैन साहित्य की बात करें, तो जैन साहित्य में चंपापुरी को एक बहुत ही पवित्र जगह माना गया है, और साथ ही संस्कृत की कविताओं में और कालिदास के लेखों में अक्सर इस जगह को अक्सर मालिनी स्थित चंपा भी कहा गया है। तो ये कुछ जो नाम है, बहुत ही रिलीजियस से नाम है, धार्मिक, सांस्कृतिक और साथ ही लिटरेचर से जुड़े हुए नाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो अंग देश के नाम से भी भागलपुर को जाना जाता है, और अभी भी कई जगहों पर हम भागलपुर को अंग प्रदेश के नाम से संबोधित करते हैं। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जो पहले 16 प्राचीन महाजनपद थे, उनमें से एक हमारा ये अंग देश था, और यहाँ पर राज कौन करते थे? जी हाँ, यहाँ पर राज करते थे कर्ण, और इन्हीं के राज से जो अभी हमारे भागलपुर का नाम है ना, वो पनपा था, वो बना था। आप सभी को ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि राजा कर्ण कितने बड़े दानवीर थे, मतलब उनसे उनका कवच मांग लिया गया था तो उन्होंने वो भी दे दिया था, वो भी युद्ध से पहले। जो भी राजा कर्ण के देश में यानी कि अंग देश में आता था, उसके भाग्य उदय हो जाते थे, इसी वजह से तब इस जगह का नाम पड़ गया था। जो कुछ बाहर की नगरी से, बाहर के देशों से आकर यहाँ बसे, अंग देश में बसे या उनका यहाँ पर उद्धार हुआ, तो उन्होंने अंग प्रदेश को भगदत्तपुरम कहना शुरू कर दिया। भगदत्तपुरम यानी कि जो जहाँ पर किसी का भाग्य उदय हो जाए, भाग्य बन जाए, तो भगदत्तपुरम से बाद में ये भगदत्तपुरम थोड़ा बिगड़ता हुआ, थोड़ा बनता हुआ भागलपुर बन गया, और अब हम इसे भागलपुर कहते हैं, यानी कि जहाँ लोगों के भाग्य उदय हो जाते हैं, भाग्य बन जाते हैं। इसके अलावा हम और कुछ नामों की बात करें ना, तो वो जो कुछ नाम है वो मालिनी है। जी हाँ, ये बहुत ही पोएटिक सा नाम है, कवि अपनी कविताओं में भागलपुर को, अंग प्रदेश को मालिनी नाम से संबोधित करते थे। मालिनी एक नदी का नाम है और जिसके किनारे चंपा बसता था, तो इसी वजह से संस्कृत की कविताओं में, ग्रंथों में पोएटिक रेफरेंस के तौर पर मालिनी नाम का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि मालिनी कभी भी ऑफिशियल नाम नहीं बना, लेकिन कुछ कवियों ने मालिनी नाम से भी भागलपुर को संबोधित किया। इसके अलावा हम बात करें तो भागीरथपुर, जी हाँ, भागीरथपुर नाम से भी भागलपुर को जाना गया था एक वक्त पे। अगर हम बात करें ना, तो अभी हमारे पवित्र धरती को जो पवित्र बनाती है यानी कि गंगा नदी को धरती पर लाने का अगर श्रेय दिया जाता है लोक मान्यताओं में, पौराणिक कथाओं में, तो वो भागीरथ ऋषि को दिया जाता है, और इसी वजह से लोक कथाओं और पुरानी मान्यताओं में भागलपुर के आसपास के जो क्षेत्र है ना, उन्हें कभी कभी भागीरथपुर भी कहा गया, क्योंकि हमारा जो भागलपुर है वो गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और कई बार होता है ना कि हम किसी शब्द को किसी और तरीके से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन कोई और उसी शब्द को किसी और तरीके से बोलता है, लिखता है, उसी का एक उदाहरण है भोगलपुर। जी हाँ, जिसे हम भागलपुर के नाम से जानते हैं ना, मुगलकालीन दस्तावेजों को आप अगर देखेंगे तो कुछ जगहों पर इसे भोगलपुर के नाम से संबोधित किया गया है, भोगलपुर लिखा गया है, जो कह सकते हैं कि उच्चारण करने का सिर्फ एक भिन्न तरीका है। कुछ मुगल के लेखकों ने भागलपुर को भोगलपुर बोला और भोगलपुर लिखा, तो कुछ दस्तावेजों में आप भोगलपुर भी देखेंगे, पढ़ेंगे। और इसके साथ ही बात करें ना, तो एक ऐसा भी वक्त था जब भागलपुर को प्राची देश भी कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि भागलपुर का जो क्षेत्र था ना, वो प्राची देश के पूर्वी भाग में आता था। इसके साथ ही अगर हम बात करें ना, अंग प्रदेश के नाम के पीछे अगर हम कुछ पौराणिक कथाओं को समझें, मान्यताओं को समझें, तो प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अंग, और वो इस जगह पर राज किया करते थे, जिसकी वजह से इस जगह का नाम पड़ गया अंग प्रदेश, यानी कि राजा अंग का प्रदेश। हमने आपको बताया कि कुछ कवियों ने, लेखकों ने हमारे इस अंग प्रदेश को मालिनी नाम से भी संबोधित किया है। मालिनी नगर का ही मतलब होता है, जहाँ पर सौंदर्य हो, फूल हो, वृक्ष हो। रामायण और महाभारत में भी भागलपुर अंग प्रदेश का बहुत जिक्र मिलता है, तो हमारी ये लिए जो अपनी धरती है, भागलपुर की धरती है, और इसका जो नाम है भागलपुर, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग कहानियों में, अलग अलग मान्यताओं में, अलग अलग दस्तावेजों में भागलपुर के नाम को दिखाया गया है, लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपने भागलपुर के लगभग, जी हाँ, या तो फिर कह सकते हैं कि सारे नामों के पीछे की वजह को समझ लिया होगा। अगली बार अगर कोई पूछे कि तुम्हारे शहर का नाम अजीब सा क्यों है भागलपुर, तो उसे बहुत अच्छे से बताइएगा, भागलपुर का मतलब होता है जहाँ लोगों के भाग्य उदय होते हैं। आज के अंग उमंग कार्यक्रम में इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि, नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जी हाँ, 90.8 FM ग्रीन, जो आपको ले जाता है हरियाली से खुशहाली तक। और बातें होती है यहाँ पर हरियाली से खुशहाली तक की, और आज भी हम बहुत ही अच्छी बातें करेंगे, और आज पशुपालक भाइयों के लिए खास बातें होंगी उनके पशुओं के लिए। और गर्मी का मौसम है, आप सभी देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है मार्च महीने से ही बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारे जो पशुपालक भाई हैं, उनकी चिंता बढ़ती जाती है कि उनके पशुओं की वो देखभाल करें, गर्मी के इस कहर से उन्हें कैसे बचाया जाए, क्या कुछ उचित देखरेख उन्हें करनी चाहिए, रखरखाव करनी चाहिए। तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए इसी विषय पर, यानी गर्मियों के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल हम कैसे करें, इस विषय पर आपको जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर राजेश कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। तो आज सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: जी धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय ही है, तो सबसे पहले जो गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए जो खास रखरखाव की ध्यान देने योग्य बातें हैं, वो हमारे सभी पशुपालक भाइयों को बताएं।
3: वातावरण में तापक्रम अधिक होने से हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही कठिनाइयों का दौर इस गर्मी में झेलना पड़ता है, क्योंकि खास करके शहरी और अर्बन और पेरी अर्बन, जो शहरी इलाका है या शहर से सटे हुए जो इलाके हैं, वहाँ पर क्रॉस ब्रीड का पालन ज़्यादा किया जाता है, या संकर नस्ल की गायों का, या प्योर हॉस्टन फ्रीजियन का, या जर्सी नस्ल की गायें हैं। तो इन गायों में गर्मी में समस्या अधिक आती है, क्योंकि ये ठंडे प्रदेश की गायें हैं, और हमारे यहाँ का तापक्रम अभी 40 से 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ऐसी स्थिति में उन इन क्रॉसब्रीड पशुओं के लिए खास ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ जैसे ही समर स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस के चलते पशुओं में हाँफने की समस्या, उनके बॉडी का जो शरीर का तापक्रम है वो सामान्य जो पशुओं का तापक्रम 101.6 से 102 डिग्री फारेनहाइट तक है, उससे बढ़ के ये 103, 104, 105 डिग्री फारेनहाइट तक चला जाता है। ऐसी स्थिति में जो सीधा प्रभाव पशुओं पर पड़ता है, वो उनकी उत्पादन क्षमता पर पड़ता है, और जहाँ दूध में प्रतिदिन 5 लीटर तक की कमी हो जाती है, जो कि हमारे जो वैसे फार्मर्स जो दूध उत्पादन करके अपना व्यवसाय करके जो अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उससे मुनाफा कमा रहे हैं, तो सीधा उनके उत्पादकता पर असर पड़ता है और नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए सबसे पहले तो अपने पशुशाला के निर्माण में ही आपको ध्यान देना है कि छत की ऊंचाई बढ़ानी होगी
1: जी,
3: ताकि सीधा जो ऊपर से जो टेम्परेचर जो गर्म होता है वातावरण में, गर्म टेम्परेचर की अधिकता के चलते, उसका कम प्रभाव आपके पशुओं पर पड़े। हो सके तो या तो अगर आपने पशुशाला के निर्माण में जो आपने एस्बेस्टस दिया है या टीन का छत दिया है, तो उसके नीचे अगर आपने खर का एक मोटा लेयर दिया है तो ठीक है, अन्यथा आप अपने जो छत है उसके ऊपर भी एक लेयर खस का या पुआल का देके और उसे भिंगाने का प्रयास करें, जिससे कि अंदर का तापक्रम सामान्य तापक्रम बना रहे। दूसरी बात है कि क्रॉस ब्रीड में जितना नस्ल प्योर होता जाएगा उनको तापक्रम मैनेजमेंट उतना ज़्यादा ध्यान देना होगा। अपने पशुशाला में पंखा लगाएं, अगर हवा का आदान प्रदान हो रहा है तो ठीक है, अन्यथा पंखा या कूलर के माध्यम से वहाँ आप टेम्परेचर मेंटेन करें। अगर सीधा गर्म हवा का प्रवेश आपके पशुशाला में करता है, या जो अभी तो लू उस तरह का नहीं चल रहा है लेकिन जब लू चलेगी तो उससे बचने के लिए अपने पशुशाला में जो भी उसके दरवाजे हैं खिड़कियां हैं उस पर जूट का बैग टांगे या खसकी चट्टी टांग के उसको भिंगा के रखें, जिसके चलते कि सीधा गर्म हवा का प्रवेश आपके पशुशाला में न हो। और हो सके तो अपने पशुओं को सवेरे शाम नहलाने का प्रयास करें और प्रचुर मात्रा में पानी या स्वच्छ जल पीने को अवश्य दें, जिससे कि आपके पशुओं में गर्मी का जो सीधा जो असर है उससे आप अपने पशुओं को बचा के और अपने उत्पादकता बढ़ाए रखें।
4: जी, तो डॉक्टर साहब ये तो बातें हो गई हैं कि क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए गर्मी के मौसम में, खासतौर पर पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए। अब बात करते हैं बीमारियों की, तो इस मौसम में खास तौर पर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं पशुओं में?
3: जी, जैसा कि अभी एक तो तापक्रम के बढ़ने से समर स्ट्रेस या हीट स्ट्रेस जी जो आम है आप पशुओं में देखेंगे कि खास करके हीट स्ट्रोक या समर स्ट्रेस, जिसके चलते कि पशुओं में के शरीर का तापक्रम बढ़ता है और पशु हांफते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए पहला चीज तो है कि दोनों टाइम अपने पशुओं को स्नान कराएं, स्वच्छ जल पीने के को दें, साथ ही साथ जो उनके शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है उससे बचाव के लिए इंटालाइट ओरल या जो भी नमक चीनी का प्रयोग करें, या इंटालाइट ओरल आता है या जो भी इलेक्ट्रोलाइट पाउडर्स आते हैं उसका इस्तेमाल उसके पीने के जल के साथ दें, ताकि उनके शरीर का में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस नहीं हो। दूसरा चीज़ है कि इस मौसम में खास करके जब हमारे पशुशाला के आसपास जल जमाव होता है तो हॉट और ह्यूमिड वेदर, हॉट ह्यूमिड वेदर जो है गर्म और नमी वाली जो वेदर है, ये खास करके जितने भी मक्खी मच्छर या चमोकन इसके प्रकोप को बढ़ाता है, और इसके चलते पशुओं में खासकर क्रॉसब्रिड पशुओं में बबेसिएसिस या रेड वाटर थलरिएसिस या आपका ट्रिप्नोसोमेसिस या सर्रा, इन बीमारियों का जो ब्लड प्रोटोजोआ के चलते होते हैं इनकी काफ़ी अधिकता पाई जाती है। तो खास करके अपने पशुशाला को नमी रहित बनाएं और जित हो सके तो अपने पशुशाला में कहीं भी क्रैक्स अर्थात चिकना रखें फर्श दीवाल को, जहाँ की ये जो चमोकन है, ये जो लाइस माइस्टिक्स हैं जो अपने अंडा और जिसका रिप्रोडक्टिव फेज उस दीवाल में पूरा होता है जहाँ छिद्र रहता है या गैप्स रहता है, तो अगर आप इसका प्रयोग करेंगे उससे बचाएंगे तो आप अपने पशुओं को बचाने, इस चमोकन से बचाने के लिए, मक्खी मच्छर से बचाने के लिए शाम के समय धुआं का प्रयोग करें, और अगर चमोकन है तो आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगवाएं, या साथ ही साथ जो एक्टोपैरासाइट्स यूज करने के लिए हम लोग एमिट्राज का सॉल्यूशन 1-2% आप अपने पशुओं को उससे धुला धो के और अपने पशुशाला को इससे चमोकन और जो अठैल होता है या जो इस प्रकार के लाइस माइस्टिक्स हैं इससे फ्री रखें। अगर इनसे आप अपने पशुओं को बचाएंगे तो ये जो रक्त के द्वारा, रक्त परजीवी के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं इनसे, और लेकिन इसके बावजूद अगर आपके पशुओं में बवेसिएसिस या लाल पेशाब की समस्या है, या खाना कम खा रही हैं और तापक्रम बहुत ज़्यादा रह रहा है, तो फिर आप चिकित्सक की सलाह लेकर इसकी चिकित्सा करवा सकते हैं।
4: जी जी, डॉक्टर साहब अब ये तो बातें हो गई बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, लेकिन और कुछ बातें उचित ध्यान रखने के लिए इस गर्मी से बचाने के लिए, गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए पशुओं को?
3: हाँ, ये जो ये सबसे प्रमुख बात है कि हम लोग इस समय वातावरण, पहला चीज है कि नस्ल के चुनाव के समय से ही और अपने पशुशाला के निर्माण के समय से ही प्रारंभिक अवस्था से इस पर अगर ध्यान देंगे तो हमारा डेयरी फार्मिंग या गोट फार्मिंग जिसके लिए भी जो हम लोग पशुपालन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो शेड का निर्माण है ऊंची जगह पर हो जहां जल जमाव ना हो, इसका ध्यान रखें। पशुशाला के निर्माण के समय आप जो आजकल जो मॉडर्न टेक्निक्स है हेड टू हेड या टेल टू टेल विधि से जो हम लोग नाद का निर्माण करते हैं या स्टैंडिंग, जो उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है उसका, उसके अनुसार अपने पशुशाला का निर्माण करें। साथ ही साथ हम लोग जो आजकल मॉडर्न डेयरी में हम लोग या तो पानी पीने की, स्वच्छ जल पीने की व्यवस्था, दो खाने के नाद के बीच एक पानी का नाद अवश्य रखें, जिससे आपके पशुओं को स्वच्छ जल जितना भी जरूरत हो, अर्थात एक स्वस्थ पशु को जो 15 से 20 लीटर दूध करती हैं उनको प्रतिदिन 80 से 100 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्वच्छ जल प्रबंधन और जो NDDB के द्वारा या डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा जो न्यू प्रोटोकॉल्स है कि अगर आपके आपके यहाँ तापक्रम बहुत अधिक रह रहा है तो पशुशाला के निर्माण के समय ऊपर में हम लोग वाटर सप्लाई का पाइप देते हैं जिसमें झरना लगा होता है और जिसको कि हर 2-3 घंटे के अंतराल पर हम लोग 10 मिनट के लिए अगर खोल देते हैं और आपके पशुओं के शरीर पर हल्का हल्का पानी का फव्वारा आता है तो उससे पशुओं को जो स्वास्थ्य प्रबंधन है, खास करके जो समर स्ट्रेस है और जो तापक्रम बढ़ता है, इससे आप आसानी बॉडी टेम्परेचर मैनेजमेंट में आपको बहुत सहायता मिलती है और आपका आपके पशुओं में आप देखेंगे अगर इस प्रकार जल प्रबंधन और टेम्परेचर प्रबंधन दो चीज पर आप ध्यान देते हैं तो समर स्ट्रेस से आप अपने पशुओं को बचा के रखेंगे। दूसरी बात है कि उनके खाने में खासकर फाइबर का की मात्रा बढ़ानी पड़ती है और अगर हरा चारा आपके पशुओं का, हालांकि गर्मी के मौसम में हरा चारे का अभाव होता है लेकिन अभी जो राउंड द ईयर ग्रीन फॉडर प्रोडक्शन पर हम लोग बल जोड़ देते हैं तो इस मौसम में सुडान है और या फिर जो हाइड्रोपोनिक विधि से चारा आप उत्पादित करते हैं तो ट्रे के माध्यम से आप अपने कमरे में भी हरा चारा उत्पादित करके पशुओं को फाइबर युक्त अगर भोजन अधिक देंगे तो आपके पशुओं में स्वस्थ रहेंगे और उनमें बीमारियां कम होंगी, उत्पादकता बनी रहेगी और आप पशुपालन से खासकर गर्मी के मौसम में भी आप अपने पशुओं से परेशान नहीं होंगे।
4: जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही जानकारी युक्त बातें थी और गर्मी के मौसम में ऐसे आप अपने पशुओं का ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल आपके पशु स्वस्थ होंगे, कोई भी बीमारी उससे नहीं होगी और आप अगर आय के लिए उनका पालन कर रहे हैं तो आपकी आय में भी बिल्कुल हानि नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे और भी बातें होंगी इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
5: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
6: खुद भी बचे देश भी बचाएं।
7: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
4: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अनु और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संगीता श्री मैडम जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में और आज हमें बताएंगी सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन के बारे में, तो क्या महत्व है और कैसे स्थान का चुनाव करना चाहिए, बीज बुआई और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्या समय होना चाहिए, सारी बातें आज मैडम से जानेंगे हम। मैडम स्वागत है आपका।
9: धन्यवाद अनु।
4: मैडम तो सबसे पहले सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन का क्या महत्व है इसके बारे में जानकारी दें।
9: किसान भाइयों, मैं आपको जैसा कि अनु बता रहे थे कि इसका क्या महत्व होना चाहिए तो मैं आपको सबसे पहले महत्व के बारे में बताती हूँ। सब्जी की नर्सरी तैयार करना सब्जी उत्पादक के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। पौध तैयार करते समय अनेक बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। प्रायः देखा जाता है कि नर्सरी में पौध तैयार करते समय उचित सावधानी व उन्नत विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे तैयार होने वाली पौध व उससे प्राप्त होने वाला उत्पादन प्रभावित होता है। टमाटर, मिर्च आदि फसलों की पौध तैयार करते समय कृषकों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान नहीं रखने से तैयार होने वाली पौध में विषाणु जनित बीमारियों का प्रवेश हो जाता है, जिससे मुख्य खेत में पौधरोपण के बाद बार बार कीटनाशी रसायनों का छिड़काव करने के बावजूद कृषकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अतः कृषकों को पौध तैयार करते समय कई बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि स्थान का चुनाव। स्थान का चुनाव करते समय यह ध्यान रहे कि नर्सरी के लिए ऊंचाई वाला स्थान उपयुक्त रहता है। समतल व अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ भूमि श्रेष्ठ होती है, जहां सिंचाई का साधन भी समीप हो एवं सूर्य का पर्याप्त प्रकाश मिलता हो। चयनित स्थान यथासंभव प्रतिकूल मौसम जैसे लू, शीतलहर एवं पाले से सुरक्षा प्रदान करने वाला होना चाहिए। भूमि की तैयारी पौधशाला के लिए बहुत महत्व रखता है। भूमि की अच्छी तैयारी के लिए नर्सरी क्षेत्र की गहराई जुताई करें, मिट्टी को ढेले रहित एवं भुरभुरी बनावें व कंकर, पत्थर, खरपतवार आदि अलग करें। अच्छी स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए नर्सरी क्षेत्र में 8 से 10 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से सरी हुई गोबर की खाद भूमि की तैयारी करते समय ऊपरी सतह में मिलावें। पौध तैयार करने के लिए जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई छोटी छोटी क्यारियां उपयुक्त रहती है। सामान्यतः 3 मीटर लंबी व 1 मीटर चौड़ी आकार की क्यारियां उपयुक्त रहती है, लेकिन ध्यान रहे नर्सरी बेड्स की चौड़ाई 1 मीटर से अधिक नहीं हो, ताकि सिंचाई, खरपतवार हटाने एवं पौध संरक्षण आदि क्यार करने में सुविधा रहे। सामान्यतः सब्जी लगाने वाले क्षेत्र 1/20 भाग में नर्सरी लगाई जाती है। टमाटर की संकर किस्मों की 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए 100 से 125 वर्ग मीटर तैयार क्षेत्र में पौध लगाई जाती है, जबकि 1 हेक्टेयर प्याज, बैंगन, मिर्च व गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए 500 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त होता है। तैयार क्यारियों में बीज की बुआई से पूर्व भूमि जनित बीमारियों व कीटों आदि से पौधों को बचाने के लिए 4 से 5 ग्राम थायराम या कप्तान व 8 से 10 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3% कण प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिलाएं। नर्सरी में बुआई हेतु बीज में आनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए एवं सही किस्म का स्वस्थ बीज होना चाहिए। अतः बीज की गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए क्षेत्र विशेष के लिए उद्यान विभाग व कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश की गई किस्मों के बीज को ही बुआई के काम में लें। साथ ही बीज कृषि विभाग, राष्ट्रीय बीज निगम एवं अन्य विश्वसनीय स्थान से ही खरीदें। बीज की बुआई ठीक समय पर करें। विभिन्न सब्जियों के लिए बीज की बुआई का समय अलग अलग होता है, जैसे कि टमाटर फसल के लिए वर्षा मौसम में बुआई हेतु जून जुलाई में करना चाहिए, तथा 150 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। वसंतकालीन टमाटर हेतु बुआई का समय नवंबर दिसंबर होता है, तथा 150 से 250 ग्राम संकर बीज की आवश्यकता होती है। वर्षाकालीन बैंगन हेतु बुआई जून से जुलाई में करें, तथा 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। वर्षाकालीन तथा वसंतकालीन मिर्च की बुआई का समय मई जून होता है, तथा 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगेती फूलगोभी की बुआई का समय मई जून तथा बीज की आवश्यकता 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की होगी। प्रति हेक्टेयर मध्य फूल गोभी बुआई हेतु 350 से 400 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी तथा बुआई का समय जुलाई अगस्त होना चाहिए। पछेतु फूल गोभी के लिए बुआई का समय अक्टूबर नवंबर रखें तथा 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। पत्ता गोभी का बुआई का समय सितंबर दिसंबर है तथा 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। रबी प्याज की बुआई अक्टूबर नवंबर में करें तथा इसके लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। खरीफ प्याज की बुआई जून माह में करें तथा इसके लिए 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। बीज की बुआई से पहले उसे उपचारित करना आवश्यक होता है। उन्नत किस्म का बीज लेकर बुआई से पूर्व 3 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कप्तान प्रति किलो बीज की दर से मिलाकर उपचारित करें। तैयार नर्सरी बेड्स में बीजों की बुआई कतारों में करनी चाहिए जिससे निराई गुराई उर्वरक प्रयोग एवं पौध संरक्षण कार्य आसानी से किए जा सके व अच्छी स्वस्थ पौध तैयार हो। ध्यान रहे बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होवे। बहुत छोटे बीजों का उनकी मात्रा से दुगनी रेत मिलाकर बोना चाहिए ताकि क्यारियों में इनका वितरण सामान्य रूप से होए। भारी मिट्टी में बीजों को बहुत हल्का ढकना चाहिए। इसके लिए बीज बोने के पश्चात उनके ऊपर खाद एवं रेत 1:1 के मिश्रण की हल्की परत बिछा दी जाती है ताकि सिंचाई करते समय बीज इधर उधर नहीं फैल पाए। बीज बुआई के तुरंत बाद झारे से सिंचाई करें। सर्दियों में कम तापक्रम के समय बीजों के शीघ्र अंकुरण के लिए क्यारियों को हल्के घास फूस से ढक देना चाहिए, परंतु अंकुरण होते ही इसे तुरंत हटा देना अच्छा होता है। सिंचाई की बात करें तो सब्जी नर्सरियों की क्यारियों में सिंचाई सामान्य रूप से तथा धीरे धीरे फुहारे से करना चाहिए जिससे मिट्टी बहे नहीं। पौध बड़ी होने पर नर्सरी बेड्स के चारों तरफ छोड़ी हुई खाली जगह में सिंचाई के लिए पानी को नर्सरी क्षेत्र से बाहर रोककर क्यारियों में पानी धीरे धीरे जाने दें। तेज हवा बहाव के साथ सिंचाई ना करें। सिंचाई करते समय नर्सरी बेड्स के ऊपर पानी नहीं भरना चाहिए। सिंचाई के बाद मिट्टी में पपड़ी आने पर गुराई करें, इससे जड़ों में वायु संचार बढ़ता है व खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। पौध संरक्षण की बात करें तो नर्सरी में बीजों की बुआई के 10 से 12 दिन बाद जड़ गलन बीमारियों से पौधों को बचाने के लिए कप्तान 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर पौधों की जड़ों के पास झाड़े से छिड़काव करें। बीज बुआई के 18 से 20 दिन बाद रस चूसने वाले कीड़ों से पौध को बचाने के लिए डाइमेथेट 30 ईसी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर पौधों पर छिड़काव करें। टमाटर मिर्च आदि में विषाणु रोग के से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। यह रोग सफ़ेद मक्खी रस चूसने वाले कीटों के माध्यम से फैलते हैं, अतः नर्सरी तैयार करते समय पौध को इसके प्रकोप से बचने के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा रोगों का संक्रमण होने पर बार बार कीटनाशी रसायनों का छिड़काव करने के बाद भी इन रोगों से काफ़ी नुकसान होता है। इनका प्रकोप कम करने हेतु नर्सरी में नायलॉन जाली का उपयोग प्रभावी पाया जाता है जिससे बेड्स को बीज की बुआई उपरांत 50 मैश की नायलॉन नेट से ढक दिया जाता है। इसके लिए नर्सरी के दोनों तरफ अर्धचंद्रकार तार लगाकर उस पर 50 मैश का नायलॉन जाली से नर्सरी की बेड्स को ढक लेते हैं या फिर नर्सरी के चारों कोनों पर खूंटे गाड़कर उन पर 50 मैश की जाली बिछाकर ढकने से ऐसी व्यवस्था करें कि जाली उड़े नहीं व हमेशा पौध क्षेत्र को ढकी रहे, तथा यह भी सुनिश्चित करें कि जाली चारों तरफ से जमीन में दबी रहे, ताकि रस चूसने वाले कीट जो उपरोक्त विषाणु जनित रोग फैलाते हैं का प्रवेश ना हो सके। अब पौध का स्थानांतरण। पौध लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर या फिर 4 से 6 पत्तियों की हो जावे, तब इसे मुख्य खेत में लगाएं। टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च व गोभी वर्गीय सब्जी जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी आदि में यह अवस्था सामान्यतः 4 से 6 सप्ताह में आ जाती है, जबकि प्याज की पौध लगभग 8 सप्ताह में तैयार होती है। पौधे को मुख्य खेत में लगाने से पूर्व उसकी हार्डनिंग करना आवश्यक होता है। इससे पौधे मजबूत हो जाते हैं व उनमें विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके लिए पौध तैयार होने के 4 से 5 दिन पहले नर्सरी में पानी बंद कर दें, लेकिन पौध उखाड़ने से 24 घंटे पहले बेड में अच्छी तरह पानी देवे, जिससे पौधे उखाड़ने समय जड़ों को कम से कम नुकसान हो। रोपाई से पूर्व पौध की जड़ों को फसल की सिफारिश अनुसार कीटनाशी रसायन में 15 से 20 मिनट तक डुबाएं। तैयार पौधे को मुख्य खेत की बनी हुई क्यारियों में फसल विशेष की सिफारिश के अनुसार निर्धारित फसलों पर कतारों में लगाएं व पौध लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करें। पौध रोपाई का कार्य शाम के समय करना ठीक रहता है, जिससे रात की ठंडक में पौध स्थापित हो जाए। इस प्रकार कुशल नर्सरी प्रबंधन से अच्छे गुणवत्ता वाले पौधों व अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
4: जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इस जानकारी के लिए। और श्रोताओं, यहाँ पर आपने आज जाना कि सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन आपको किस प्रकार करना चाहिए। तो आशा करते हैं आज का यह वार्ता आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।
8: उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार अनुमान है कि 27 मई से 31 मई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में अगले कुछ दिनों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, इन जिलों में 28 मई को लू चलने की यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है। 27 से 31 मई के दौरान अनुमान है कि अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें, साथ ही खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जिनके खेत में गर्मा मूंग और उड़द है उन्हें बता दे, देर से बोई गई गर्मा मूंग और उड़द की फसलों में हियरी कैटरपिलर का प्रकोप होता है। ऐसे में उनकी निगरानी करना जरूरी है। प्रकोप अगर दिखाई दे तो मिथाइल पैराथियन 50 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जिनके खेत में सब्जियां हैं उन्हें बता दे, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप होता है, इसलिए उनकी नियमित निगरानी की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियन 50 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को या फिर डाइमेथोएट 30 इसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, आम के बागानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि आम के बागानों में रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप

रिपोर्ट दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में या फिर लैम्बडा साहिलोथ्रीन की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। बगानों में पर्याप्त और निरंतर नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। जिनके बगानों में लीची है उन्हें बता दें लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसी वजह से किसान भाई बहन किसी भी प्रकार का छिड़काव शाही लीची में अभी नहीं करें। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्बडा साहिलोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और जो पशु दूध देते हैं उन्हें खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। वहीं गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए। साथ ही पशुओं को हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

उस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: कोलेरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। श्रोताओं, आप सभी को आरजी अनु का प्यार भरा नमस्कार। तो आइए, आज फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ खास बातें आप सभी के लिए उन्नत कृषि में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमेशा हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे साथ एक एक्सपर्ट, और आज फिर से हमारे एक खास विषय के लिए हमारे पास है एक खास एक्सपर्ट, और उनका नाम है डॉक्टर गिरीश चंद, और ये है एसोसिएट प्रोफेसर पौधा रोग विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
4: और जैसा कि हम अपने लिसनर्स को बता दें, हमारे श्रोताओं को बता दें कि आज का हमारा विषय है केला के प्रमुख रोग एवं उपचार। वैसे अगर बिहार की बात करें तो बिहार में केले बहुत सस्ते मिलते हैं, लेकिन वहीं मेट्रो सिटीज़ की बात करें, महानगरों की बात करें, आप जाएंगे तब आपको केले का जो महत्व है वो समझ में आएगा कि वहाँ पर केले कितने महंगे मिलते हैं। क्योंकि केला अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फल है। हमारा सौभाग्य है कि हम बिहारी हैं और बिहार में बहुत ही अच्छे तरीके से इसके लिए उपयुक्त जलवायु मिलती है और यहाँ उपजता है और हमारे किसान भाई इसे उपजाते हैं हमारे लिए। लेकिन जब हम इसकी खेती करते हैं, जब हम इसे अपने बागानों में लगाते हैं, तब जरूरी होता है कि हम इसका रखरखाव करें। जो कीट पतंगे होते हैं वो इस पर नजर टिकाए बैठे रहते हैं, और अगर हम इस समय में इनकी सुरक्षा का खास ख्याल ना रखें तो इन्हें कई रोगों से गुजरना पड़ता है, और इस वजह से हमारे जो केले के जो कई जो गाछ हैं, वृक्ष हैं, वो खराब हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को घाटा भी पड़ जाता है। तो आइए, सबसे पहले ज़रूरत होता है कि आप सभी को रोगों का पहचान होना। तो आज डॉक्टर साहब हमारे साथ इसीलिए यहाँ पर हैं, आप सभी को बताएंगे केले के प्रमुख रोगों के बारे में और साथ ही उसके इलाज के बारे में भी जानेंगे हम। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, यहाँ पर बहुत सारे रोग हैं जैसे कि पनामा मिल्ट, सिगाटोका, एंथ्रेक्नोज, बांची टॉक और भी बहुत सारे जो रोग हैं वो केले के वृक्षों में लगते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर पनामा मिल्ट की बात करें तो ये कैसा रोग है और इसे कैसे उपचार हो सकता है, हमारे किसान भाई कैसे उपचार कर सकते हैं इसका?
5: किसान भाइयों, केला अपने बिहार का एक प्रमुख फल वाला पौधा होता है। इसके उत्पादन में हमारे बिहार का बहुत बड़ा योगदान है, और हमारा जो बिहार का एक तरह से कह सकते हैं कि जो आर्थिक कृषि की आर्थिक स्थिति है इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। और उत्पादन के साथ साथ हमें ये ध्यान देना होगा, जब हम बाग को लगाते हैं, बाग लगाने से या केले के पौधे लगाने से लेकर कटाई तक, इसमें बहुत ढेर सारी क्रियाएं होती हैं, और ये लगभग 12 से लेकर 13 महीने तक का इसमें टाइम लग जाता है, तब जाकर इसमें कहीं हम फल को काट पाते हैं। तो पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि लगभग एक साल पूरा लग जाता है। तो एक साल का ये पौधा होता है, और इसमें अगर समय समय पर हम ध्यान नहीं देते हैं और लगातार एक ही खेत में अगर हम किसी फसल को लेते हैं तो इसमें कई तरह से मिट्टी का, मृदा का क्षरण होता है, ह्रास होता है, और धीरे धीरे इसमें कुछ ऐसे जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं जो नुकसान हमारी फसलों को पहुँचाते हैं। तो इसमें ये पहचान करना बहुत ही आवश्यक होता है कि हमारा जो केला का फसल है इसमें कौन कौन से प्रमुख रोग हैं और इनका क्या पहचान है, इनका क्या लक्षण है, और इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं। जब तक हम लक्षण को अच्छी तरह से नहीं पहचान पाएंगे तब तक उसका निदान या सही दवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो किसान भाइयों आइए हम लोग जानते हैं कि ये जो केला है केला में कितने प्रकार के रोग लग जाते हैं। तो प्रमुख रूप से जो इसमें रोग लगता है उसमें उठा रोग लगता है और उसके बाद दूसरा रोग लगता है वो सीगा टोका रोग लगता है या पत्रलांछन रोग कह सकते हैं। केला का एक तीसरा रोग है उसे हम कह सकते हैं कि श्याम बर्ण रोग या एंथ्रेक्नोज रोग लग जाता है। और एक चौथा रोग होता है जिसे हम बंची टाप या पौधा छोटा हो जाता है, ये विषाणुओं द्वारा होता है। तो इस तरह से जो हमने चार प्रमुख रूप के रोग बता रहे हैं इसको जान लेना है। पांचवा एक और रोग लगता है वो होता है सूत्रकृमि या जड़ ग्रंथि रोग होता है, जो जड़ों में गांठे बन जाती हैं, पौधा खुराक लेना बंद कर देता है या खुराक ले भी लेता है तो जड़ में जो सूत्रकृमि होता है वो उसमें गांठ में जमा करते रहता है और पौधा धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और उत्पादक क्षमता घट जाता है। तो आइए सबसे पहले जो केला में प्रमुख रोग है वो है उकठा रोग, और उकठा रोग का पहचान करना बहुत आवश्यकता है। ऐसे भी आप यदि खेत में देखते हैं और ये बहुत ही अच्छा समय है, ये जब रोग का लक्षण अपने कह सकते हैं कि एकदम चरम पे होता है, जो हमारा अक्टूबर का महीना होता है वो बहुत ही चरम पे होता है, उसके बाद धीरे धीरे हमारा फसल ख़त्म हो जाता है और अगला फिर हम फसल लेने की तैयारी करने शुरू कर देते हैं। तो उकठा में दो तरह का उकठा होता है, और एक तो होता है पनामा बिल्ट जिसे हम फ्यूजेरियल बिल्ट कहते हैं, ये फफूंद जनित रोग होता है, ये सबसे ज़्यादा आजकल हमारे बिहार में देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचा रहा है, लगभग हमारे पूरे उत्पादन का 30-40% तक नुकसान पहुंचा रहा है और बाकी सब और दूसरे रोग हैं वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा इसमें जो उकठा का ही रूप होता है वो जीवाणु उकठा होता है या बैक्टीरियल बिल्ट कहते हैं। अब इसमें देखना है कि लक्षण क्या है, यदि फफूंद जनित लक्षण आते हैं तो फफूंदनाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे, यदि बैक्टीरिया जनित रोग दिखाई देता है लक्षण तो आप बैक्टीरिया नाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे, तभी केले के जो रोग लगते हैं उससे आप निदान पा सकते हैं। तो फफूंद जनित रोग में जो लक्षण होता है, शुरुआत इसका जब पहला बारिश होता है जून के प्रथम सप्ताह में या जून के मध्य में, उसी समय इसका जो फफूंद होता है उसके जो बीजाणु होते हैं, हम एक तरह से कह सकते हैं उसके जो अंडे होते हैं, उसी समय इसका जमाव शुरू हो जाता है। और ये इतना खतरनाक कह सकते हैं रोग होता है, इतना भयंकर रोग होता है कि इसके जो अंडे होते हैं यदि मिट्टी में रहता है तो वो 25-30 साल तक इसके अंडे जीवित रहते हैं, और यदि हम फसल का मतलब लेने के बाद खेती का उत्पादन करना केले का बंद कर देते हैं, दूसरी फसलों को अगर हम समावेश कर लेते हैं, फिर अगर हम 10-20-25 साल बाद भी यदि केले की खेती करेंगे फिर पुनः ये रोग जागृत हो जाता है, उग्र रूप में आ जाता है। तो ये फफूंद जनित रोग का लक्षण कैसा होगा, लक्षण इसका जैसे ही पहला बारिश होता है फफूंद इसका जागृत हो जाता है, बीजाणु जमने शुरू हो जाते हैं, इसका जो जड़ तंत्र होता है जड़ तंत्र में प्रवेश करता है और जड़ तंत्र प्रवेश करने में उसमें अपना संख्या बढ़ा लेता है और इसमें जो ऊंस बनता है घाव बनाता है और जड़ को खुराक लेने से रोकता है, इसका जो जाइलम होता है वो चोक कर जाता है, यानी जिससे हमारा पौधा खुराक लेता है, पानी लेता है, तत्व लेता है, न्यूट्रिएंट लेता है और पौधे में ले जाता, पत्ती तक पहुंचाता, फिर फोटोसिंथेसिस करके नीचे तक इस तरह से हमारी जो क्रिया होता है पौधे का वो पूरा ब्लॉक कर देता है, चोक कर देता है। और जैसे ही चोक करता है उसके तुरंत बाद इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, इसमें जो पुरानी पत्तियां होती हैं, ओल्डर लीव्स होते हैं, उस पर पीले पीले कलर के धब्बे दिखाई देते हैं पत्तियों के किनारे से शुरू होते हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा पीला हो जाता है। और जब ये रोग उग रूप में आता है तो इसका जो तना होता है, इसके तने तो हम कह सकते हैं कि ये आभासी तना होता है, सीडो स्टेम होता है, और खानी सहित यानी पुष्पावस्था में है, तो पुष्पावस्था

0: या फल वाली अवस्था में, फल अवस्था में, या ये नहीं भी हुआ है तब भी ये जैसे ही रोग लक्षण दिखाई देता है तो एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंतर पर ये जाकर गिर जाता है।
1: अच्छा,
0: तो पूरा पूरा हमारा जो उत्पादन होता है कह लीजिए खत्म हो जाता है। जिस पौधे में ये रोग लग गया उसका उत्पादन जीरो शून्य हो जाता है। तो इस तरह से इसका लक्षण होता है। इसका लक्षण पहचान करने के बाद आप कैसे इसका उपचार करेंगे, तो उपचार करने के लिए ये है कि आप इसमें जो फफूंद नाशक दवाएं हैं उसका आप शुरुआती अवस्था में जरूर ध्यान दें। जब इसका गड्ढा बनाते हैं तो गड्ढे में कार्बेंडाजिम या बविस्टीन कम से कम 10 ग्राम पर गड्ढा इस तरह से हम दे देंगे, तो इसमें जो दूसरे हानिकारक फफूंद होते हैं खासतौर से फ्यूजेरियम, वो उसका संख्या खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो इस तरह से पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा। यदि किसान भाई ऐसा नहीं कर पाते हैं और शुरुआत में नहीं ध्यान देते हैं तो ये जो सकर्स ले आते हैं, इसका जो बच्चा ले आते हैं केले का, वो ध्यान देंगे कि वो किसी टिशू कल्चर प्रयोगशाला से ले आएं या जो हमारा सर्टिफाइड प्लांटिंग मटेरियल्स होता है, नर्सरी होता है, वहाँ से ले आएं, या दूसरे खेत से या अपने खेत से दूसरा नया इसका सकर्स लगाना चाहते हैं, नए खेत में या बगान नया तैयार करना चाहते हैं, तो इसका सकर्स जो होता है उसको उपचार करके लगाएं। उपचार करने के लिए जो मैंने विपुर में दवा बताया कार्बेंडाजिम या बेविस्टीन, उसे आप 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना लीजिए, या टाइकोड्रमा आप ले सकते हैं, बायोएजेंट होता है, जैव जीवनाशी होता है जो फफूंद नाशक के तौर पे काम करता है, दूसरे फफूंद को खा जाता है, खासतौर से फ्यूजेरियम को खूब खाता है। तो इस तरह से हम बायोएजेंट में टाइकोड्रमा लेंगे, तो टाइकोड्रमा का अगर लेते हैं तो 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाएंगे। इस तरह से आप चाहे फफूंद नाशक रसायन का प्रयोग कर रहे हैं कार्बेंडाजिम बविस्टीन का या टाइकोडर्मा का, घोल जब बनाएंगे तो आधे घंटे तक सकर्स को यानी केले के बच्चे को उसमें रखेंगे, फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद छायेदार जगह में रखेंगे, घोल में रखकर फिर उसको घोल से निकालेंगे और छायेदार जगह में रख देंगे ताकि इसमें जितना मतलब पानी है एक्सेस ज़्यादा वो निथर जाए, निकल जाए, फिर उसके बाद आप देख लीजिए पानी निकल गया है तब जाकर रोपड़ी करने के लिए तैयार रहता है, तो गड्ढे में आप रोपाई करेंगे। तो इस तरह से पूरे जीवन भर टाइकोडर्मा इसके साथ रहता है और कभी इस तरह से जो हानिकारक बैक्टीरिया होता है या जीवाणु होता है या फफूंद होता है या सूत्रकृमि होता है इसको कभी आने नहीं देता है, तो हमारा पौधा स्वस्थ रहता है। आप अगर ये भी क्रिया नहीं कर पाए हैं और खरीफ फसल में आपको जुलाई में इसका लक्षण पूरा पौधे दिखाई देता है, पौधा पीला पीला हो जाता है, अगस्त में खानी सहित गिर जाता है, सितंबर में और भयंकर रूप हो जाता है, अक्टूबर में जाते जाते पूरा बागान खत्म कर देता है, तो आप शुरुआत में जब बारिश होता है जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई के शुरुआत में, तो उसी समय बारिश के ठीक बाद आप एक बार कार्बेंडाजिम या बविस्टीन का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ क्षेत्र में इसका खूब अच्छी तरह से भिगो दें, और ऐसा अगर नहीं है तो आप टाइकोडर्मा को भी आप ले लीजिए 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ क्षेत्र में इसको भिगो दें। तो इस तरह से भिगोने की जो प्रक्रिया होता है वो 15 दिन के अंतर पर कम से कम 2 बार करते हैं। तो इस तरह से खड़ी फसल में भी हम जो रोग लग जाता है उसे रोक सकते हैं, और पनामा रोग या इस तरह से कह सकते हैं कि जो पीलिया रोग है यहाँ अपने क्षेत्र में जो लोकल क्षेत्र बिहार आजकल बहुत जोरों पे है कि हमारे केला के फसल में पीलिया रोग लग गया है, तो पीलिया रोग हो या अगूठा रोग हो या पनामा रोग हो सब एक ही तरह के हैं, तो ये फफूंद जनित रोग है जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मास्पिसिस क्यूबेंस नामक फफूंद से होता है। तो इसके रोकथाम के लिए भी मैंने आपको बताया वो इस तरह से लक्षण दिखाई देता है तो आप रोकथाम इस तरह से करेंगे। दूसरा एक और इसी तरह का रोग होता है वो जीवाणु से होता है, उसे हम बैक्टीरियल बिल्ट कहते हैं। तो बैक्टीरियल बिल्ट रोग के रोकथाम के पहले आप ये देख लीजिए कि इसका लक्षण किस तरह का है, बैक्टीरियल की तरह से है या फफूंद की तरह से। तो फफूंद को मैंने बताया, बैक्टीरियल का इसका थोड़ा अंतर है, इसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो किनारे वाला ना सूख कर बीच वाला सूखता है। इसका जो लक्षण ये भी बारिश होने पर जब ज़्यादा गर्मी होता है और ज़्यादा उमस होता है और ज़्यादा नमी होता है वातावरण में, इस समय ये भी जो जीवाणु होता है वो भी उग्र फार्म में आ जाता है। तो जीवाणु आएगा तो ये भी साथ साथ में लक्षण दिखाई देता है पौधे के ऊपर। तो जैसे बताया आपको इसका लक्षण इस तरह दिखाई देता है, तो आप इसमें पुरानी पत्तियों पर ना ध्यान देकर नई पत्तियां जो आती है उस पर देखिए, सबसे पहले वही पीला होना शुरू हो जाता है। तो इसमें यह ध्यान देना है कि उसे बहुत पौधे पर अंतर हम नहीं कर पाते हैं, तो उसको जहाँ से पौधा प्रभावित होता है, एक दो पौधे में अगर इस तरह से लक्षण दिखाई देता है तो जहाँ से जड़ और तने का लगाव होता है उसे हम कॉलर रीजन कहते हैं, उसे ले लीजिए और काट दीजिए। काटने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा गोल आकार छल्ला होता है, तो ये जो गोल आकार छल्ला होता है इसमें से बहुत बैक्टीरियल ऊजिंग होता है, जिसे हम कह सकते हैं हल्का पीले रंग का, पहले शुरुआत में तो सफ़ेद सफ़ेद रंग का ये दूध की तरह से पदार्थ लसलसा दिखाई देगा, फिर ये दो तीन घंटे के बाद काटने के बाद ये हल्का पीले पीले रंग में हो जाता है। ये सबसे अच्छा पहचान करने का तरीका है जो बैक्टीरियल विल्ट होता है। अगर ऐसा काट देते हैं, ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देता है, यदि उसमें जो जहाँ से काटे हैं बीच वाला पोर्शन में इसलिए लसलसा पदार्थ या दूध की तरह पदार्थ नहीं निकल रहा है और वो सूखा है और इसका जो बीच वाला पोर्शन हल्का भूरे रंग का है, तो ये समझ जाइए कि ये फफूंद वाला रोग है जिसे हम पनामा विल्ट कह रहे हैं। और यदि इसमें लसलसा पदार्थ निकलता है तो समझ जाइए कि जीवाणु है। और दूसरा एक और लक्षण हम जीवाणु का बता देते हैं कि जब काट देंगे तो वहाँ से बहुत तेज सड़ा हुआ जिसे मछली होता है या अंडा होता है, इस तरह बदबू तीक्ष्ण गंध आता है, ये बैक्टीरियल विल्ट जो होता है केला में, ये सबसे बड़ा दूसरा लक्षण होता है। तो इस तरह से लक्षण का अगर पहचान हो जाता है तो आप बैक्टीरियल नाशक दवाओं में आप स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लीजिए, इसके साथ थोड़ा कापर ऑक्सीक्लोराइड ले लीजिए, दोनों को मिक्स करके एक साथ 15 दिन के अंतर में 2 बार प्रयोग करते हैं तो निश्चित है कि ये जो बैक्टीरियल विल्ट की समस्या है वो नहीं होगा। एक और आपसे रोग की चर्चा हम करना चाहेंगे, वो है सीगाटोका। सीगाटोका ये किसी भी समय आ सकता है, लेकिन जो विल्ट का समस्या दिखाई दे रहा है अपने इस बिहार क्षेत्र में वो जून के आखिरी सप्ताह से शुरू होता है और अक्टूबर तक पूरा खूब रहता है खेत में। इस समय आप जाएंगे तो खूब आपको उकठा रोग का लक्षण दिखाई देगा और इस समय आपको दूसरे रोग भी दिखाई देंगे।
1: यानी कि जून से अक्टूबर के बीच में जो रोग हैं वो केले के पेड़ में या फिर वृक्ष में लगते
0: हैं। जी जी जी, वृक्ष में लगते हैं। और एक और आपको अलग से रोग बताना हम चाहेंगे जो सीगाटोका है, वो सीगाटोका इस समय तो लगता है और ज्यादातर इसका जो आक्रमण होता है वो देखते हैं कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में खूब होता है।
1: अच्छा।
0: इस समय भी होता है लेकिन इसका उग्र रूप उसमें ज्यादा दिखाई देता है। तो ये किसी भी अवस्था में और किसी भी समय आ सकता है सीगाटोका। तो इसके जो लक्षण होते हैं पत्तियों के ऊपर गोल गोल आकार के पीले पीले शुरुआत में धब्बे बनते हैं, बाद में भूरे भूरे और काले काले रंग के हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर लक्षण बनते हैं तो पत्तियों के चारों तरफ भूरे भूरे काले काले रंग के धब्बे बनते हैं तो ये पत्र लांछन केला का रोग होता है जिसे हम सीगाटोका रोग कहते हैं। इसके रोकथाम के लिए डाइथेमम 45 नामक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 12 दिन के अंतर पे कम से कम 3 बार छिड़काव करेंगे और छिड़काव करते समय ये ध्यान देंगे कि जो केला का पत्ता होता है वो बहुत चिकना होता है, इसमें हम किसी स्टीकर का या जो डिटर्जेंट्स पाउडर होते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो दवाएँ जो हमारी हैं केले के पत्ते के ऊपर चिपकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमको पौधे में जो रोग लगे हुए हैं सीगाटोका को उससे बचाएंगे। लक्षण इसका हमने आपको बताया और किसान भाइयों एक मैं पुनः एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि इसके जो पत्ती होता है पत्ती के एकदम किनारे नहीं, किनारे से थोड़ा ऊपर उठ के देखिए तो एकदम एक तार एक लाइन से कभी कभी इधर उधर मतलब छिटफुट इधर उधर आपको पत्तियों के ऊपर धब्बे शुरुआत में पीले रंग के रहेंगे, बाद में वो काले भूरे और काले रंग बदल जाते हैं।
1: तो ये लक्षण थे
0: जी, इस तरह से लक्षण होता है।
1: तो ये जो सारे रोग हैं आपने उपचार के बारे में बताया तो सारे रोग जून से लेकर के अक्टूबर माह तक लगते हैं या फिर कोई
0: उकठा रोग है? उकठा रोग से जून से लेकर अक्टूबर तक रहता है, लेकिन ये जो आपको हम अभी बताए हैं ये सीगाटोका ये पौधे के छोटे अवस्था में वो जनवरी फरवरी में भी लग जाएगा, वो इस समय भी अक्टूबर नवंबर में भी लग जाएगा।
1: तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले से कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कार्बेंडाजिम आप अगर गड्ढे खोद कर लगा रहे हैं उसके पौधों को तो पहले कार्बेंडाजिम डाल दें और उसके बाद लगाएं। तो कुछ बातों का आप खास ध्यान रखेंगे तो आप इन अपने केले के वृक्षों को इन रोगों से बचा सकते हैं। तो बस इसका खास ख्याल रखें। वैसे डॉक्टर साहब ने आपको बड़े विस्तार में बताया और उपचार के बारे में भी बताया, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा जो एक वक्ता है वो कह सकता है। और डॉक्टर साहब यहाँ पर कुछ और बातें हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: इसमें अभी चर्चा जो इस तरह दो तीन रोग का हो गया, एक और है श्याम बर्ड रोग जो एंथ्रेक्नोज कहते हैं। हाँ। ज्यादातर वर्षा ऋतु में आता है। वर्षा ऋतु में जैसे आता है तो इसका जो बीजाणु होता है ज्यादा फैलने लगता है, तो इसका जो लक्षण होता है पत्तियों के ऊपर, फलों के ऊपर, तने के ऊपर, इस तरह से जो ऊपर भाग होता है, ये जो एरियल भाग होता है उसके ऊपर काले काले रंग का धब्बा बनाता है। तो इससे जो हमारा फल का गुणवत्ता खराब होता है, बाजार भाव कम हो जाता है या खराब कर देता है, और धीरे धीरे फल को या तने को सड़ा भी देता है। अच्छा। और पत्तियों के ऊपर इसका जितना काला काला धब्बा हो जाता है, क्योंकि खुराक लेना बंद कर देती हैं और पौधा कमजोर हो जाता है और उत्पादन घट जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए आप कापर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्टीकर मिलाकर इस तरह से 10 से 12 दिन के अंतर पे कम से कम छिड़काव करेंगे तो जो श्याम बर्ड रोग है इससे भी केला की फसल को बचाया जा सकता है।
1: कॉपर ऑक्सीक्लोराइड
0: जी। एक और इसमें रोग लग जाता है वह है बंची टॉप। ये तो पहले बहुत लगता था, लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों ने और किसान भाइयों के थोड़ा खेती करने का तरीके में नए तरीके से खेती कर रहे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं फसलों का, तो उसमें ये रोग अब आता है लेकिन कम आता है। लेकिन फिर भी अगर ये रोग आ जाता है तो ध्यान देंगे, शुरुआती अवस्था में ही इसका लक्षण दिखाई देता है। जैसे पौधा आप ले आए 2 महीने का 3 महीने का बच्चा है, लगाते हैं, जब पौधा पकड़ लेता है तो इसका लक्षण शुरुआत में ही 3-4 महीने का सकर्ष होता है, उसी के ऊपर ही इसका लक्षण दिखाई देता है। पौधा छोटा रह जाएगा और उसमें जो पत्तियां ढेर सारी निकलेंगे लेकिन छोटी छोटी रहेंगी और पौधे का विकास रुक जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं बंची टॉप रोग है केला का। अच्छा। ये विषाणु वाला रोग है, विषाणु जनित रोग है, और एक पौधे से दूसरे पौधे या एक खेत से दूसरे खेत में जो फैलाने का काम करता है, इसमें कुछ हमारे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होता है, वेक्टर होता है, जिससे हम कहते हैं पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा होता है। ये कीड़ा एक खेत से दूसरे खेत, एक पौधे से दूसरे खेत में फैलाने काम करता है। तो यहाँ आवश्यकता है कि विषाणु नाशक दवा के जगह पे आप कीटनाशक दवाओं में इमिडा क्लोरोपीड 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इस तरह से एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंतर पे छिड़काव 2 बार कर देंगे, तो इस तरह से जो कीड़ा लगता है वो खत्म हो जाएगा, तो जो बंची टॉप रोग है अपने आप खत्म हो जाएगा।
1: तो किसान भाइयों, आपने सुना केले के प्रमुख रोगों के बारे में और उसके उपचार के बारे में। हमारे साथ यहाँ पर हैं डॉक्टर गिरीश चंद जी और इनसे विशेष बातें हो रही थी इस विषय पर, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है डॉक्टर साहब ने, और ज़रूरत है कि आप इनकी बातों को समझें, इसे अपनाएं, और जो भी अगर रोग हैं उनको पहचान कर उन्हें जो भी कीटनाशक दवा या फिर और भी जो दवाएं डॉक्टर साहब ने आप सभी को यहाँ पर आप सभी के सामने कहा, प्रेस्क्राइब किया, तो आप उसे लेकर छिड़काव कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आगे आपसे और मुलाकातें होंगी और हमारे किसान भाइयों से भी मेरी मुलाकातें होती रहेंगी उन्नत कृषि में। तो सुनते रहें 90.8 FM ग्रीन हमेशा, और सुनते रहें उन्नत कृषि। उन्नत कृषि
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
6: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
5: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
7: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे उमा। दोस्तों, आज की शुरुआत मैं करूँगी एक कहानी के साथ। हमारे ही पास के गांव में रामकिशोर नाम के किसान हैं, मेहनती आदमी। पिछले कई महीनों से उन्हें खांसी थी, वजन घट रहा था, कमजोरी भी रहती थी। परिवार ने कहा डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन उन्होंने सोचा अरे ये तो मौसमी खांसी है, अपने आप ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे हालत बिगड़ती गई। एक दिन जब उन्हें खून की उल्टी हुई तब परिवार घबरा गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जांच हुई, पता चला टीबी है। अगर रामकिशोर समय पर जांच करवा लेते तो बीमारी इतनी नहीं बढ़ती। आज हम इसी बीमारी पर खुलकर बात करेंगे ताकि कोई और रामकिशोर जैसी गलती ना करे। टीबी यानी क्षय रोग, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में सबने सुना है लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। और इसी श्रृंखला सेहत सही लाभ कई को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गांव के जाने माने स्वास्थ्य साथी सेहतिया सिंह। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद आरजे जी, और हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि आज हम एक बार फिर से टीबी जैसे जरूरी मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे।
7: सेहतिया भैया, सबसे पहले तो यही बताइए कि टीबी आखिर होती क्या है?
4: बहुत अच्छा सवाल है आरजे उमा। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रमित बीमारी है जो एक कीटाणु से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यह बीमारी ज्यादातर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन यह शरीर के और हिस्सों में भी हो सकती है, जैसे हड्डी, दिमाग, पेट, ग्रंथियां आदि।
7: सेहतिया भैया, ये बताइए कि आज भारत में टीबी की क्या स्थिति है?
4: आरजे उमा, आज भी टीबी एक बड़ी बीमारी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में लगभग 28 लाख नए टीबी मरीज सामने आए। लगभग 3,30,000 लोगों की मौत टीबी से हुई। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2015 से अब तक टीबी के मामलों में लगातार कमी आई है।
7: तो क्या टीबी बहुत आम बीमारी है?
4: हाँ उमा, अभी भी हमारे देश में यह एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। भारत में हर साल लाखों नए मरीज सामने आते हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार और समाज मिलकर इसे खत्म करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं।
7: अच्छा सेहतिया भैया, लोग अक्सर डरते हैं कि कहीं खान पान से तो टीबी नहीं फैलती।
4: नहीं आरजी उमा, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। टीबी हवा से फैलती है, खाना या पानी से नहीं। जब कोई टीबी का मरीज बिना इलाज के खांसता है, छींकता है या थूकता है तो कीटाणु हवा में फैल जाते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सांस के जरिए अपने अंदर ले सकता है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि इलाज शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद मरीज दूसरों को संक्रमित नहीं करता।
7: सेहतिया भैया, आम तौर पर लोग सोचते हैं कि सिर्फ खांसी ही टीबी का लक्षण है, क्या ये सही है?
4: नहीं आरजे उमा, सिर्फ खांसी ही नहीं, टीबी के कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार, रात में पसीना आना, वजन कम होना, कमजोरी और थकान, सांस फूलना, छाती में दर्द और गर्दन या शरीर में कहीं सूजन। इनमें से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत जांच करानी चाहिए।
7: अच्छा भैया, क्या टीबी किसी को भी हो सकती है?
4: हाँ, किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को खतरा ज्यादा होता है। जो कुपोषित हैं, जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें HIV है, जो धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं, जिनको पहले टीबी हो चुकी है, या जो टीबी मरीज के संपर्क में रहते हैं, इन लोगों को नियमित रूप से जांच करवानी चाहिए, भले लक्षण हो या ना हो।
7: अच्छा सेहतिया भैया, अगर किसी को शक हो कि उसे टीबी है तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए?
4: सबसे पहले डरना नहीं है, छिपाना नहीं है, नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करानी चाहिए। सरकार ने आधुनिक जांच

0: सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जैसे एक्सरे, खांसी की जांच। अगर टीबी निकलती है तो इलाज पूरी तरह से मुफ्त है।
1: और भैया, ये इलाज कितना लंबा चलता है?
0: आमतौर पर 6 महीने या उससे थोड़ा ज्यादा। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि इलाज बीच में छोड़ना नहीं, बीच में छोड़ने से बीमारी और खतरनाक हो जाती है।
1: सेहतिया भैया, आपने कहा कि कुपोषण टीबी से जुड़ा हुआ है।
0: हाँ बिल्कुल, कमजोर शरीर में टीबी जल्दी पकड़ लेती है और ठीक होने में समय लगता है। इसलिए सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की है, जिसमें हर टीबी मरीज को इलाज के दौरान 1,000 रुपया प्रति माह मिलता है। इसके अलावा निक्षय मित्र योजना है, जहां समाज के लोग आगे आकर मरीज को पोषण और भावनात्मक सहयोग देते हैं।
1: अच्छा भैया, आपने लक्षण, जांच और इलाज की बातें तो साफ कर दी, लेकिन गांव में टीबी को लेकर बहुत सारी गलत बातें भी चलती रहती है, क्या हम उन पर भी थोड़ी बात कर सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल आरजी उमा, गलत फहमियाँ ही तो सबसे बड़ा रोड़ा बनती है इलाज के रास्ते में।
1: अच्छा भैया, बहुत लोग कहते हैं कि टीबी वाले के साथ खाना मत खाओ, उसके पास मत बैठो, ये कितना सही है?
0: यह बिल्कुल गलत है आरजे उमा। टीवी छूने से, हाथ मिलाने से, कपड़े साझा करने से या खाना साझा करने से नहीं फैलती। टीवी सिर्फ हवा से फैलती है। जब कोई बिना इलाज वाला मरीज खांसता या छींकता है, इलाज शुरू होने के कुछ हफ्ते बाद, मरीज दूसरों के लिए खतरा नहीं रहता।
1: भैया, कुछ लोगों के मन में ये भी भ्रम रहता है कि ये तो गरीबों की बीमारी है, ये भी सही है क्या?
0: यह भी गलत है। टीबी किसी को भी हो सकती है, अमीर, गरीब, जवान, बुजुर्ग, किसी को भी। हाँ, कमजोर और कम प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग ज्यादा और जल्दी प्रभावित होते हैं। इसलिए कुपोषण एक जोखिम है, लेकिन यह सिर्फ गरीबों तक सीमित नहीं है।
1: भैया, ये बात तो आपने साफ कर दी कि ये बीमारी सिर्फ गरीबों की बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के मन में ये भी रहता है कि अगर किसी को टीबी हो गया है तो वो भगवान की सजा है, ये ऐसा कुछ होता है?
0: यह बहुत खतरनाक सोच है आरजे उमा। टीबी एक बीमारी है, जैसे बुखार, मलेरिया या डायबिटीज। यह किसी की गलती, पाप या कर्म का फल नहीं है। ऐसी सोच मरीज को शर्मिंदा करती है और वह इलाज से दूर हो जाते हैं।
1: भैया, और जो लोग इलाज कराते भी हैं, उन वो क्या करते हैं कि उन्हें लगता है अब तो खांसी ठीक हो गई, दवा क्यों खाएं, पूरी इलाज नहीं करवाते हैं।
0: यही सबसे खतरनाक गलती है। अगर दवा बीच में छोड़ दी जाए तो बीमारी और खतरनाक रूप से लौट सकती है, जिसे ड्रग रेसिस्टेंट टीबी भी कहते हैं। फिर इलाज लंबा, मुश्किल और दर्दनाक हो जाता है। इसलिए पूरा कोर्स करना बहुत जरूरी है।
1: भैया, लोग पूरा कोर्स करने की सोचते भी हैं, लेकिन उनके मन में डर का कारण ये होता है कि उन्हें लगता है इलाज बहुत महंगा होगा, पैसे बहुत खर्चे हो जाएंगे।
0: सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से इलाज मुफ्त देती है। जांच, दवा, फॉलो अप सब मुफ्त है। ऊपर से 1,000 रुपया प्रति माह पोषण सहायता भी मिलती है।
1: पर भैया, कुछ लोग तो ये ही मान चुके हैं कि टीबी से बचा ही नहीं जा सकता, टीबी हो गया मतलब अब कुछ नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल, यह सबसे गलत सोच है। हम फिर से कह रहे हैं, टीबी पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है, अगर समय पर जांच हो और इलाज पूरा किया जाए।
1: तो सेहतिया भैया, अगर हम एक लाइन में कहें तो
0: मैं यही कहूंगा कि टीबी से डरिए नहीं, टीबी से लड़िए।
1: और भैया, टीबी से लड़ने के लिए समाज क्या कर सकता है?
0: बहुत कुछ कर सकता है। मरीज से भेदभाव नहीं करना है, उन्हें हिम्मत देना है, इलाज पूरी करने में मदद करना है, गांव में जागरूकता लाना है, स्वास्थ्य शिविरों में लोगों को पहुंचाना है, खुद निक्षय मित्र बनना है। टीबी को छिपाने से नहीं, लड़ने से खत्म किया जा सकता है।
1: अच्छा सेहतिया भैया, लोगों के मन में कोई बात तब अच्छे से बैठती है जब उन्हें कोई उदाहरण दिया जाए। आप कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जो लोगों को हिम्मत दे।
0: हाँ उमा, हमारे जिले में शबनम नाम की एक महिला थी, उन्हें पहले टीबी हुआ था। उन्होंने बीच में दवा छोड़ दी क्योंकि उन्हें ठीक लगने लगा। कुछ महीनों बाद बीमारी ज्यादा खतरनाक रूप से लौटी, जिसे हम ड्रग रेसिस्टेंट टीबी कहते हैं। शुरू में बहुत डर लगा, लंबा इलाज, ज्यादा दवाइयां, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सरकार ने उन्हें मुफ्त दवा दी, पोषण सहायता मिली, एक निक्षय मित्र ने उनका साथ दिया। आज शबनम पूरी तरह से ठीक है और खुद लोगों को प्रेरित करती हैं कि इलाज पूरा करो।
1: यानी कि इलाज अगर पूरा किया जाए तो टीबी ठीक हो जाता है। अच्छा सेहतिया भैया, अंत में श्रोताओं के लिए आपका कुछ संदेश?
0: हाँ आरजी उमा, ऐसे ही एक और मिसाल है हमारी टीवी चैंपियन रेखा। रेखा को जब टीवी हुआ तब उन्हें इस बीमारी और इसके इलाज के बारे में कुछ पता नहीं था। बीमारी इतनी बढ़ गई कि वह खुद भी देखभाल नहीं कर पा रही थी। पति ने उनका साथ दिया, लेकिन घर और समाज से उन्हें ताने मिलने लगे। यहां तक कि अपने ही लोग उनसे दूरी बनाने लगे। इस सब ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने जीवन खत्म करने तक के बारे में सोचा, लेकिन बच्चों का चेहरा और उनका भविष्य उन्हें हिम्मत देता रहा। रेखा ने इलाज की तलाश में पहले प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लिया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिर उन्हें सरकार की टीबी उन्मूलन योजना के बारे में पता चला। उन्होंने पूरा इलाज नियम से किया, समय पर दवाइयां ली और 6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गई। लेकिन रेखा यही नहीं रुकी। उन्होंने सोचा, जो दर्द मैंने सहा वह और कोई न सहे। आज वह एक टीबी चैंपियन है। उन्होंने 1200 से ज्यादा टीबी मरीजों का मार्गदर्शन किया है, उन्हें हौसला दिया है और समाज में फैले डर और गलतफहमियों को तोड़ने का काम किया है। वह लोगों को निक्षय मित्र बनने के लिए प्रेरित करती रहती हैं और खुद भी मरीजों के साथ खड़ी रहती हैं।
1: सच में सेहतिया भैया, शबनम और रेखा जैसी कहानियां ये साबित करती है कि टीबी से डरने की नहीं, सही समय पर पूरा इलाज करने की जरूरत है।
0: हाँ उमा, बिल्कुल। मेरा संदेश यही है कि टीबी ठीक होने वाली बीमारी है, बस इलाज पूरा करें, हिम्मत न हारें और एक दूसरे का साथ दें। और मेरा यह कहना भी है कि टीबी कोई शर्म की बात नहीं, यह इलाज योग्य बीमारी है। जांच कराएं, इलाज पूरी करें, सही पोषण लें और एक दूसरे का साथ दें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया भैया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छी कहानियां भी सुनाई, जिससे लोगों को प्रेरणा तो मिलेगी ही, साथ ही सीख भी मिलेगी। तो साथियों, याद रखिए, न शर्माना न घबराना, टीबी की जाँच करवाना, सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: साथियों, आपने सुना, टीबी को लेकर जितनी गलत बातें हैं उतनी ही जरूरी बातें जानना जरूरी है। तो गलत फहमी छोड़िए, जानकारी अपनाइए, क्योंकि जानकारी ही सुरक्षा है। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नई सेहत भरी बात के साथ। पर जाने से पहले हम लेंगे सेहत की शपथ।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार अनुमान है कि 27 मई से 31 मई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में अगले कुछ दिनों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा इन जिलों में 28 मई को लू चलने की यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है। 27 से 31 मई के दौरान अनुमान है कि अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें, साथ ही खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जिनके खेत में गर्मा मूंग और उड़द है, उन्हें बता दें, देर से बोई गई गर्मा मूंग और उड़द की फसलों में हेयरी कैटरपिलर का प्रकोप होता है, ऐसे में उनकी निगरानी करना जरूरी है। प्रकोप अगर दिखाई दे तो मिथाइल पैराथियन 50 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जिनके खेत में सब्जियां हैं, उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप होता है, इसलिए उनकी नियमित निगरानी की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियन 50 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को या फिर डाइमेथोएट 30 इसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं, उन्हें बता दें, आम के बागानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि आम के बागानों में रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में या फिर लैम्बडा साहिलोथ्रीन की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। बागानों में पर्याप्त और निरंतर नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। जिनके बागानों में लीची है, उन्हें बता दें, लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसी वजह से किसान भाई बहन किसी भी प्रकार का छिड़काव शाही लीची में अभी नहीं करें। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्बडा साहिलोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं, उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और जो पशु दूध देते हैं उन्हें खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। वहीं गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए। साथ ही पशुओं को हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: नमस्कार किसान भाइयों, लॉकडाउन का समय है, विगत एक साल से हम इससे जूझ रहे हैं। ऐसे में खेती जो है कभी रुकती नहीं है, तो हमने भी जो सलाह है वो न रोकने का फैसला किया और हर सलाह हम आपको डिजिटल माध्यम से दे रहे हैं। तो ऐसे में अभी जो समय है, समसामयिक समय है, वो है धान की बिजाई के लिए। तो खरीफ मौसम की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जो धान की जो बिजाई है, बहुत सारे किसान भाइयों को अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशन के लिए उनको अलग अलग बीजों की ज़रूरत होती है कि कैसे क्या हम लगाएं, हमारी ज़मीन ऊंची है, हमारी ज़मीन नीची है। साथ ही किसी को महीन धान, किसी को मोटा धान, किसी को सुगंधित धान, इस तरह से ज़रूरत होती है। तो ऐसे में कन्फ्यूज़न रहता है कि हम बिजाई के समय कौन सा किस्म का चयन करें जिसकी दर हमें अच्छा जाए, जिसका कि हमें आगे चल करके उसकी क्वालिटी अच्छी मिले। तो इसी सब पे बात करने के लिए हम आज हैं हम डॉक्टर सत्येंद्र जी के साथ। रक्षा, आपका स्वागत है हमारा FM ग्रीन के इस प्रोग्राम में और साथ ही यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए। साथ ही श्रोताओं को बता दें कि अगर आप हमारा FM ग्रीन का जो प्रोग्राम सुनना चाहते हैं रेगुलर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारा जो एप्लीकेशन है उस लिंक से क्लिक करके आप रेडियो का एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि जो जिसमें कॉमर्शियल वैल्यू ज़्यादातर किसान करते हैं कि जिसमें दर ज़्यादा जाए, तो ऐसे में एक आइडियल कंडीशन के लिए एक बेहतर जो वैरायटी है वो कौन सा आप सजेस्ट करते हैं?
1: किसान भाइयों नमस्कार। जैसे कि आपने सुना, अभी खरीफ का सीजन स्टार्ट हो गया है। खरीफ में जो हमारी फसलें हम लोग लगाते हैं, बिहार में जो फसलें लगाई जाती हैं, किसान भाई जिन फसलों का उत्पादन करते हैं, उनमें धान सबसे प्रमुख है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार के लिए 90% से ज़्यादा जनसंख्या के लिए धान जो है वो किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है। और जहाँ तक बिहार में खेती योग्य कृषि भूमि की बात है, तो उसके लगभग 60% क्षेत्रफल पे, लगभग 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पे धान की खेती बिहार में की जाती है। और सभी जिलों में लगभग धान की खेती होती है। तो इसमें जहाँ तक किस्मों के चयन की बात है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। बीज को, अगर आपके पास अच्छा बीज है, तो बीज के केस में बीज के लिए कहा गया है कि बीज कृषि का आधार है। तो कृषि, अगर हमारे पास बीज अच्छा होगा तो हमारा उत्पादन वहीं से शुरुआती दौर में ही हमारा, हमें डिसाइड हो जाएगा, कुछ ना कुछ हम ये कर सकते, अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी उपज जो हमें मिलेगी वो कैसी होगी। बाकी उसके बाद जो

है, जो भूमि है उसकी उसकी प्रकृति कैसी है, उसके आधार पे हम लोग स्पेशली धान की प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ किस्में ऐसी हैं जो अगात किस्में जिनको हम बोलते हैं, जो कि कम दिन में पक जाती हैं, जो लगभग 100 दिन या 110 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, वो अगात किस्में होती हैं। और इनको इन किस्मों को किसान भाइयों को चाहिए कि जो ऊपरी ज़मीन है, जो जहाँ पे पानी नहीं जमता है, पानी कम जमता है, ऐसी ज़मीन पे इन किस्मों को लगाएं। इसके साथ साथ कुछ किस्में मध्यम अवधि की होती हैं, जो जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है और ज़मीन उर्वर है, उस जगह पे मध्यम अवधि की किस्मों को किसान भाई लगाएं। उनमें ये किस्में लगभग 135-40 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और इनकी उपज भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा बहुत सारी कुछ ज़िले हमारे यहाँ हैं जो जहाँ पे पानी देर तक रहता है, तो वहाँ हम कम अवधि की किस्में वहाँ नहीं लगा सकते। तो वहाँ पे जो लंबी अवधि की किस्में हैं, ज़्यादा देर से पकने वाली, लगभग 150-155 दिन में पकने वाली किस्में हैं, वो लगाई जाती हैं। तो उस जगह पे जहाँ पे आपको देर तक पानी उपलब्ध रहता है, वैसी जगह पे वो लंबी अवधि की किस्में लगानी चाहिए। तो हम अब इनको एक एक करके इनकी बात करेंगे अलग अलग किस्मों की। तो अगात किस्मों में मैं बात करूँ तो सबसे पहले एक किस्म है प्रभात। तो प्रभात जो किस्म है वो लगभग 95-100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये अवधि जो फसल की जो अवधि बोली जाती है वो बीज से बीज तक की होती है, यानी जब आप बिजाई करते हैं खेत में, उस दिन से लेके जिस दिन आप काट रहे हैं, काट के घर पकने के बाद फसल को काट रहे हैं, उस टाइम तक की ये अवधि दिनों में ये गिनी जाती है। तो ये 95-100 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी 30-35 कुंटल उपज आराम से किसानों को मिल जाती है। तो इसके अलावा अगात किस्म में ऊपरी ज़मीन के लिए दूसरी किस्म है सहभागी धान। सहभागी धान किस्म में मैं बता दूं, जो प्रभात ये किस्म मैंने बताई, इसका धान थोड़ा मोटा होता है और ये चूड़ा के काम में स्पेशली आता है। इसी तरह से जो सहभागी धान है उसका भी धान थोड़ा मोटा होता है, गहरे सुनहरे रंग का होता है और ये किस्म भी 110 दिन में लगभग पककर तैयार हो जाती है। और इसमें इसकी उपज लगभग 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज किसान भाई आसानी से ले सकते हैं। और इसकी एक ख़ास बात है सहभागी धान किस्म की कि इसमें जो सूखा सहन करने की क्षमता के लिए इसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र किया गया है। तो वैज्ञानिकों ने इसमें जीन्स डाले हैं जिससे कि वो सूखा सहन करने की क्षमता इसमें ज़्यादा है। तो जहाँ तक सूखे की बात है धान के लिए, तो वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि धान की जो फसल है वो शुरुआती दौर में बाढ़ के लिए, और उसके बाद जब पुष्पन का समय आता है, फूल आने का समय आता है, तो उस स्टेज पे सूखे के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम अगर ऐसी हमारी भूमि है जहाँ पे हमें लगता है कि शुरुआत में हमारे यहाँ बाढ़ आ जाएगी या पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें किस्मों का उस हिसाब से चयन करना चाहिए जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा। और अगर ऐसा लगता है कि पुष्पन के समय, फूल आने के समय पे हमारा सूखा पड़ने की संभावना है और हमें पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वैसी जगह पे वैसी किस्मों का चुनाव करें जो कि सूखा सहन करने वाली हो। क्योंकि जो सूखा सहन करने वाली जो किस्में मैं बता रहा हूँ वो पुष्पन के समय ही स्पेशली उनमें ये ताकत होती है कि वो कम पानी की स्थिति में भी खड़ी रह सके। तो इसमें सहभागी धान जैसे मैंने बताया। इसके बाद एक किस्म है शुष्क सम्राट।
ये किस्म भी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 35 से 40 कुंटल इसकी

0: आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा सबोर दीप एक किस्म है जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। इसका दाना लंबा होता है, लंबा पतला दाना है और बहुत ही अच्छा इसका चावल बनता है। इसका इसकी जो अवधि है ये किस्म 110-15 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इसके अलावा राजेंद्र भगवती एक किस्म है जो मुजफ्फरपुर की तरफ के जो किसान हैं वहाँ ये आसानी से मिल जाएगी, राजेंद्र भगवती, तो किसान भाई इसको लगा सकते हैं। ये भी 110-15 दिन की किस्म है और लगभग 40 क्विंटल उपज इसमें आसानी से मिल जाती है। इसका दाना भी लंबा पतला होता है। इसके अलावा मध्यम कुछ किस्में हैं जो मध्यम अगात इसके श्रेणी में आती हैं, तो मध्यम अगात श्रेणी वाली है जो 115 से लेके 125 दिन में जो पक के तैयार हो जाती हैं, ऐसी किस्में हैं। और उसमें एक किस्म बहुत ही अच्छी मैं बताऊं आपको, नई विकसित की है बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है, सबोर हर्षित धान। तो मैं किसान भाइयों को विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि सबोर हर्षित धान जो है एक बार आप ज़रूर लगाएं। ये नई किस्म है, क्योंकि किसान भाइयों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि किसान भाई आप लोग जो नई किस्में हैं उनको ज़रूर, जो भी आपकी परंपरागत किस्में हैं जो आप लगाते आ रहे हैं उनके अलावा आप नई किस्मों को ज़रूर अपने यहाँ ट्राई करें। तो ज़्यादा अगर क्षेत्रफल में नहीं लगा रहे हैं तो कम क्षेत्रफल में लगा के देखें, उसी भूमि की जो श्रेणी है, जैसी आपकी प्रकृति है भूमि की खेत की, उस हिसाब से ही यूज करें, लेकिन नई प्रजातियों को ज़रूर यूज करें। तो इसी क्रम में सबोर हर्षित धान बहुत ही अच्छी एक नई प्रजाति है और ये लगभग 120-125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका दाना मध्यम पतला होता है, जैसे जो कि बहुत ही पसंद किया जाता है और मार्केट में इसकी वैल्यू भी ज़्यादा मिलती है, इसका दाम भी ज़्यादा मिलता है। तो इसके अलावा इसी श्रेणी में, मध्यम अगात श्रेणी में एक किस्म है सबोर अर्धजल, लंबे पतले दाने की ये किस्म है। सबोर अर्धजल भी बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित है और इसका ये भी सूखा सहन करने की भी क्षमता इसमें है। इस किस्म को हम सीधी बुवाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी उपज 40-45 क्विंटल आसानी से मिल जाती है, 120-125 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है।
1: तो ये थे किसान भाइयों की जो आपने भी जो बताया कि जो 110 से के बराबर जो है दिनों में तैयार हो जाने वाली किस्म है, ये डॉक्टर सत्येंद्र तोमर जी जानकारी दे रहे हैं, ये प्लांट ब्रीडिंग से ही हैं। तो हम अगले भाग में बात करेंगे कि किसान भाइयों की हम बीजों के चयन में और क्या क्या सतर्कता अपनाएं। इस भाग के लिए हम इतना ही आज के लिए हम रख रहे हैं, अगले भाग में हम फिर से एक बार आपके साथ हाजिर होंगे बीजों के बारे में नई नई जानकारियों के साथ।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं के बारे में जो घर से दूर अकेली रहती हैं या फिर कई बार उन्हें अकेले यात्रा करनी पड़ती है। एक जमाना हुआ करता था जब महिलाएं लड़कियां घर पर रहती थी, लेकिन बदलते समय के साथ महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसे में उन्हें बाहर निकलकर काम भी करना पड़ता है और कई बार स्थिति ऐसी भी होती है कि उन्हें बाहर अकेले यात्रा भी करनी पड़ती है। तो ऐसे में उनकी प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर आप घर से दूर अकेली रह रही हैं तो आपने अपने लिए कोई घर जरूर देखा होगा, कोई फ्लैट देखा होगा। तो सबसे पहली चीज का जो आप ध्यान रखें, एक ऐसे सुरक्षित जगह पर फ्लैट लें जहां सुरक्षित वातावरण हो। आप एक बार अपने आसपास जरूर देख लें कि वहां कैसे लोग रहते हैं। अब आपने अपना घर ले लिया है, आसपास के लोगों को भी देख लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप अभी जिस घर में रहने जा रही हैं उस घर में आपसे पहले कौन रहता था। आप उन्हें ना जानती हो, लेकिन अभी आपके घर के लॉक को शायद वो जानते हैं। तो जैसे ही आप अपने नए घर को तय कर लेती हैं तो दूसरा काम ये करें कि आप अपने घर के लॉक को बदलें। इससे होता ये है कि आपके पहले जो भी किराएदार वहां रहते थे उनका एक्सेस वहां खत्म हो जाता है और हो सकता है कि इसके पहले जो लॉक लगा हुआ था उसके बारे में किसी को जानकारी हो या फिर उसके एक चाबी किसी के पास हो। तो इसलिए आप जैसे ही नए घर में जाते हैं उसका लॉक बदलना जरूरी हो जाता है। इसके आगे ये कोशिश करें कि अगर हो सके जिस एरिया में आप रहती हैं वहाँ अगर कोई कैमरा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो अपने घर के एंट्री पॉइंट पर कैमरा लगवा सकती हैं तो जरूर लगवाएं। अगर आपने अपने घर के एंट्री पॉइंट पर कैमरा नहीं लगवाया है या फिर ये अलाउड नहीं है तो एक और काम आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक पीप होल लगाएं या तो फिर वीडियो डोरबेल लगाएं। सबसे पहले जानते हैं कि पीप होल क्या होता है। आपके घर के मेन दरवाजे पर एक छोटा सा छिद्र बना होता है जिसे आप देख सकते हैं कि आपके दरवाजे पर कौन खड़ा है, या तो फिर वीडियो डोरबेल लगवाएं। जैसे ही आपके घर पर कोई घंटी बजाएगा आप अपने कमरे में बैठे बैठे ये देख पाएंगे कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। ये जानना बहुत जरूरी होता है जब आप अकेली रह रही होती हैं कि आपके घर के अंदर कौन आ रहा है। किसी भी अजनबी को घर के अंदर बुलाने से पहले एक बार जरूर सोचें। और कई बार ये होता है कि आपके घर पर कोई परेशानी हो गई और किसी अजनबी को, किसी मैकेनिक को या ऐसे ही किसी और को बुलाना पड़ जाता है। तो इस वक्त आप ध्यान रखें कि आपने किसे बुलाया है, कब बुलाया है, इस बात की जानकारी अपने किसी परिचित को जरूर दें। आप एक काम और कर सकती हैं, कुछ ऐसे पालतू जानवर आप पाल सकती हैं जो आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता हो। जैसे कि अगर आप कुत्ता पालती हैं तो वो किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर शोर करने लगता है। ये खास तौर से रात के लिए फायदेमंद होता है। रात को अगर कोई आपके घर के अंदर चोरी चुपके से घुसने की कोशिश करता है तो कुत्ता शोर करने लगता है और ऐसे में आप बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही कुत्ता पालने का एक और फायदा होता है कि ये आपके मूड को बहुत अच्छा बनाए रखता है। आप अकेली रहती है, अकेले रहने वाले लोगों को डिप्रेशन का ज्यादा खतरा होता है। अगर ऐसे में आपके पास कोई क्यूट सा पालतू जानवर होगा तो आपका मूड भी अच्छा बना रहेगा। ये तो बातें हो गई घर के अंदर की। आपके घर के आसपास कैसे लोग हैं ये आपने घर लेने से पहले देख लिया था। अब आपको ये भी करना होता है कि आप अपने घर के आसपास के लोगों से अच्छे रिश्ते बना कर रखें। इससे ये होगा कि वो भी आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, वो भी आपका ध्यान रखेंगे। आप जब घर पर रहती हैं तब की सुरक्षा की बात तो हो गई, लेकिन जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम घर की सुरक्षा की बात करते हैं। कई बार आप घर से बाहर जाते हैं और आपके पीछे घर से बहुत कीमती सामान की चोरी हो जाती है। इससे बचने के लिए आप क्या करें कि आपने तो अगर कैमरा लगवाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्मार्ट होम डिवाइसेस खरीद सकते हैं, स्मार्ट लाइट्स खरीद सकते हैं। ये शाम होते ही जल जाएंगे और लोगों को लगेगा कि आप घर पर ही हैं और चोर उचक्के आपके घर से दूर रहेंगे। घर से निकलने से पहले आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपने घर का दरवाजा अच्छे से बंद किया है और एक स्पेयर की जो आप रखते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा चाबी जो आप रखते हैं, उसे आपने अच्छे से छुपाया है या नहीं, इस बात का भी आप ध्यान रखें कहीं ये किसी और के हाथ में न लग जाए। ये सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को सोशल मीडिया पर अपडेट करता है। ऐसे में आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप कहाँ जा रही हैं। इसे सोशल मीडिया पर तुरंत अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं गई हैं, घूमने गई हैं, तो वहां से आने के बाद आपको जो भी अपडेट करना है वो करें, लेकिन वहां होते हुए आप अपडेट करने से बचें।
बाहर वालों को अपडेट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन घर वालों को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किन के साथ हैं। ये आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। इसके लिए आप अपने फोन की लोकेशन भी हमेशा ऑन रखें, जिससे कि आपके परिवार को आपके लोकेशन की जानकारी मिलती रहे। और खास तौर से अगर आप किसी नई जगह जा रही हैं तो ये जरूर करें, किसी करीबी के साथ अपने लोकेशन साझा कर दे और किसी एक करीबी को ये जरूर बता दे कि आप कहाँ और कब जा रही हैं। अपने पास कुछ इमरजेंसी नंबर लिखकर जरूर रखें। आजकल हमारे पास सब कुछ फोन में होता है, लेकिन कई बार हमारा फोन गुम हो जाता है। ऐसे में आप अपने कुछ करीबियों का नंबर याद करके रखें या फिर नोट करके रखें, और कुछ ऐसे इमरजेंसी नंबर्स भी रखें जो आपको तुरंत सहायता पहुंचाती है। जैसे हमारे बिहार में 112 है, अगर आप किसी परेशानी में फंसती हैं तो 112 पर कॉल करने से आपको जल्दी से जल्दी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। आपको अपने साथ पर्स में कुछ सेफ्टी टूल्स भी रखने चाहिए, जैसे कि आप पेपर स्प्रे रखें, फोल्डिंग चाकू रखें। ऐसी ही कुछ छोटी छोटी चीजें आप अपने साथ जरूर रखें, ये आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। ये आपकी परेशानी में आपका सबसे बड़ा साथी साबित होता है। अगर आप रात को कैब से ट्रैवल कर रही हैं तो अपने किसी करीबी को अपना लोकेशन जरूर शेयर करें, और साथ ही कैब की जानकारी अगर हो सके तो किसी के साथ शेयर करके रखें। और साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि कैब वाला आपको किस रास्ते से लेकर जा रहा है, ये कोई अनजान या सुनसान रास्ता तो नहीं है। और अगर सुनसान रास्ता है और यही एक रास्ता है आपके मंजिल तक पहुंचने का, तो आप उस दौरान अपने किसी परिचित से हो सके तो बात करते रहें, ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाता है। और ये भी ध्यान रखें कि देर रात आप घर लौट रही हैं या कहीं जा रही हैं तो कोई अनजान रास्ता चुनने से जितना हो सके बचें, और मोबाइल फोन को पर्स में रखने की जगह अपने हाथ में रखें ताकि कोई परेशानी हो तो फटाक से आप किसी को फोन कर सकते हैं। अगर हो सके तो अपने फोन में आप वुमेन सेफ्टी ऐप भी इंस्टॉल करके रखें। अगर इन सारी चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो बाहर आप अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो लेडीज फर्स्ट में आज इतना ही, आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और साथ ही हम हमारे किसान भाई हमारे श्रोताओं का स्वागत करते हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में, और आप सभी जानते हैं कि इसका प्रबंधन करना हमारे किसान भाइयों के लिए अभी कितना ज़रूरी है। आज जो प्रदूषण जो चारों ओर फैल रहा है, उसका एक कारण फसल अवशेष को जलाना भी है। तो दोस्तों, कंबाइन हार्वेस्टर से धान कटाई के बाद अगली फसल जैसे कि गेहूं बुआई संभव नहीं होने के कारण किसान भाई अक्सर फसल अवशेषों में आग लगा देना ही ठीक समझते हैं, लेकिन इससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके लिए हम बहुत सारी बात जो है आज इंजीनियर पंकज कुमार सर से जानेंगे कि क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे किसान भाई फसल अवशेष को जलाने की बजाय और कुछ करें और हमारे पर्यावरण जो है वो प्रदूषित ना हो। तो क्या कुछ करें हम जो ये सारी चीज़ें, तो आज मैं आपको बता दूं कि कृषि विज्ञान केंद्र से आज इंजीनियर पंकज कुमार सर हमारे साथ हैं और ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद।
5: तो पंकज जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि फसल अवशेषों को जलाने से मिट्टी या पर्यावरण को क्या क्या हानि पहुँचता है?
6: देखिए, फसल अवशेषों को जलाने में मिट्टी का तापमान बढ़ने के कारण मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवाणु केचुआ आदि मर जाते हैं
5: जी।
6: साथ ही साथ जैविक कार्बन जो पहले से ही हमारी मिट्टी में कम से कम है और भी जलकर नष्ट हो जाता है
5: जी।
6: फलस्वरूप मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है।
5: बिल्कुल सही कहा आपने कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। और अगर हम नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं तो एक टन पुआल जलाने से वातावरण को होने वाले नुकसान के बारे में भी आप बता दें हमारे श्रोताओं को।
6: देखिए, एक टन पुआल जलाने से वातावरण में जो नुकसान होता है वो जैसे कि 3 किलोग्राम पार्टिकुलर मैटर, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 199 किलोग्राम राख और 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। पुआल जलाने से मानव स्वास्थ्य को होने वाले जो नुकसान होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, आंखों में जलन, नाक में तकलीफ, गले में समस्या।
5: तो श्रोताओं, आपने जाना कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं और ये सारी बीमारी जो है आजकल आम हो चुकी है, और इसका एक कारण भी है कि हमारे जो किसान भाई जो है पुआल जलाते हैं, जिस वजह से प्रदूषण फैलता है और उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल जो है हमारे श्रोता जानना चाहते हैं। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एक टन अगर हम पुआल नहीं जलाते हैं तो उसे अगर हम मिट्टी में मिलाते हैं जलाने की बजाय, तो कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं हमारे मिट्टी को, वो भी बता दें।
6: एक टन पुआल नहीं जलाकर अगर उसको मिट्टी में मिलाते हैं तो उसमें जो निम्नलिखित हम जो अभी बता रहे हैं
5: जी,
6: जैसे कि नाइट्रोजन 20 से 30 किलोग्राम, पोटास 60 से 100 किलोग्राम, सल्फर 5 से 7 किलोग्राम, ऑर्गेनिक कार्बन 600 किलोग्राम हमको मिलता है।
5: तो ये कुछ पोषक तत्व जो है ना, आपको सर ने बताया कि ये सारे मात्रा में मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हुए एक सवाल और आता है कि अगर हम पुआल नहीं जलाना चाहते हैं और उसका प्रबंधन करना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए कोई उपयोगी कृषि यंत्र भी मौजूद है?
6: हाँ, इसके लिए उपयोगी यंत्र बहुत सारे हैं, जैसे कि आप अगर आपको पुआल को मवेशी के लिए अगर उठाना है तो स्ट्रॉ बेलर का प्रयोग करें।
5: अच्छा।
6: अगर आपको उसी में मिला देना है, जो कि हम आप पहले भी फायदा बताए हैं कि क्या क्या फायदा होता है, तो उसके लिए आप हैप्पी सीडर का प्रयोग करें
5: जी।
6: अगर स्ट्रॉ रीपर से आप उठा सकते हैं जो भूसा बना सकते हैं, रोटरी मल्चर जिसे है कि उस पुआल कंबाइन हार्वेस्टर से कटे हुए पुआल को फिर से काट करके छोटा छोटा टुकड़ा में खेत खेत के ऊपर बिछा देना। कंबाइन हार्वेस्टर में SMS और सुपर SMS लगवाना।
5: अच्छा।
6: जैसे SMS का मतलब होता है स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, और सुपर SMS में होता है कि हम वहीं जहां पर कंबाइन हार्वेस्टर का जहां पर पुआल गिरता है वहीं एक थ्रेसर लगा करके हम उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट करके खेत में बिछा देना। इससे हमारा जो हैप्पी सीडर मशीन है उस पर थोड़ा लोड कम पड़े, इसी को हम सुपर SMS करते हैं
5: जी।
6: अब स्ट्रॉ बेलर जो होता है इसके उपयोग से खेतों में फसल अवशेष को उठाने में हेतु काम में आता है। तो हैप्पी सीडर धान की कटाई के तुरंत बाद गेहूं की बुआई करने के लिए उपयोग में आने वाला एक कृषि यंत्र है। यह पुआल या पराली को खेतों से बिना निकाले गेहूं की सीधी बुआई करने के लिए काम में लाया जाता है। जैसे कंबाइन हार्वेस्टर से फसलों की कटाई करने से फसलों का अवशिष्ट पराली खेतों में ही रह जाती है, जिससे किसानों को फसलों के अवशिष्ट और पराली की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसका निपटारण के लिए किसान पराली में आग लगा देते हैं, इसी जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्याओं का

0: समाधान करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हैप्पी सीडर यंत्र का निर्माण किया गया है। रोटरी मल्चर से आप पहले भी हम बता चुके हैं कि आप पुआल को छोटे छोटे टुकड़े में करके आप वहाँ पर मल्च कर सकते हैं, और थोड़ा कंबाइन हार्वेस्टर के बाद जो आप हैप्पी सीडर चलाएंगे, हैप्पी सीडर को चलाने में जो सावधानियां होती है उसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है, क्योंकि हैप्पी सीडर मशीन को चलाने से पहले आप ध्यान दें कि ट्रैक्टर डबल क्लच होना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी भी मशीन को चलते हुए अगर पीटीओ से पावर देते हैं तो आपको डबल क्लच ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर सिंगल क्लच रहेगा तो जब भी आप ट्रैक्टर को रोकेंगे, ट्रैक्टर रुकते ही हमारा उस पर जो ब्लेड चल रहा है, जो हमारे ट्राइन पर ब्लेड चल रहा है, वो भी रुकता है, और बार बार रुकने से मशीन में गड़बड़ी आ सकती है। इसीलिए आप डबल क्लच का प्रयोग करें, और पीटीओ का जो स्पीड है, जो वहाँ पर जो हमारा शाफ्ट पर स्पीड आना चाहिए, वो 540 के लगभग होना चाहिए। इसमें आपको अच्छा कैपेसिटी और इफिशेंसी मशीन का मिलेगा। तो ये और हैप्पी सीडर में जो पीटीओ जहां लगाते हैं वहां पर एक गियर वाइल रहता है, उसका भी लेवल आपको बीच बीच में मापते रहना चाहिए कि वो मिनिमम से कम, न्यूनतम से कम ना हो, और जो उसके ऊपर जो ब्लेड है तो ब्लेड में थोड़ा सा धार होना चाहिए, और जहाँ जहाँ वायलिंग करने की का है वहाँ वायलिंग, और जहाँ पर बेयरिंग है वहाँ ग्रीस गन से ग्रीसिंग समय समय पर करते रहें।
1: जी, तो जो भी बातें यहाँ पर सर ने आपको बताई हैं उन निर्देशों का अगर आप पालन करते हैं तो आप आराम से उन यंत्रों का उपयोग करके फसल अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं। तो और कुछ जानकारी सर आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे?
0: किसान भाइयों, आपको एक हम संदेश देना चाहेंगे कि फसल ये जो आपको यांत्रिकरण से जो फसल अवशेष प्रबंधन का जो मशीन अभी उपलब्ध है उस पर सरकार ज़्यादा सब्सिडी दे रखी है, लगभग 80-90% तक सब्सिडी उस पर दे रखा गया है, ताकि किसान उसको सहूलियत से ले सके, और जो खेतों में जो आप पुआल जलाते हैं उसको ना जला करके आप अपने खेतों में उसका सही प्रबंधन कर उसको उत्पादन को आप बढ़ा सकते हैं।
1: जी, तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे फिर से मुलाकात होगी उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए 90.8 MHz FM ग्रीन। उन्नत कृषि
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: नमस्कार, मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से। मैं आज बड़ी इब्राहिमपुर ग्राम में हूं, और आज हमारे साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन को पोषण से संबंधित कुछ जानकारियां देंगे प्रशांत कुमार, जो कि स्वास्थ्य कर्मी के साथ ही रहना होता है इनका, और ये स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखते हैं। तो प्रशांत जी, आप हमें ये बताएंगे कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर आप पब्लिक को क्या जानकारी दे सकते हैं?
6: मनुष्य द्वारा खाए गए सभी चीज़ें पोषण के रूप में काम करती हैं, जैसे दाल, सब्जी, चावल, मांस, मछली इत्यादि सभी पोषण के रूप में कार्य आते हैं।
5: जी, पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग
6: पोषण को हम अपने जीवन में हर एक प्रकार से उपयोग करते हैं, जैसे मसूर दाल, फल, सब्जियां, साबुत अनाज इत्यादि।
5: जी, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति सही से पोषण आहार ना ले तो उन्हें क्या क्या समस्याएं हो सकती है?
6: अगर सही से पोषण आहार ना ले तो उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे शरीर में थकान, कमजोरी, खून की कमी, डायबिटीज़ इत्यादियों का संक्रमण बढ़ जाता है।
5: और भी कोई समस्या हो सकती है अगर सही से पोषण
6: हो सकती है? रतौंधी हो सकती है, बौनापन हो सकता है, बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं।
5: जी, महिलाओं को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो महिलाओं को क्या क्या समस्याएं हो सकती है?
6: महिलाओं को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो महिलाओं में खून की कमी, एनीमिया, थकान, कमजोरी, बार बार चक्कर आना, ये सब लक्षण पाए जाते हैं।
5: अगर बच्चों को सही से पोषण आहार ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती है?
6: बच्चे को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो बहुत सारी समस्याएं हैं सर उसके साथ। शारीरिक विकास में वृद्धि नहीं होगी, बच्चे बौनेपन के होंगे, खून की कमी, रतौंधी बीमारी, ये सब बहुत सारी संक्रमण और रोग प्रतिरोध की क्षमता घट जाती है सर।
5: जी, तो अगर आदमी को सही से पोषण आहार लेना है तो क्या व्यक्ति निचारी अपनी थाली का प्रयोग कर सकता है?
6: हाँ, बिल्कुल कर सकता है।
5: तो अपनी क्यारी, अपनी थाली के बारे में आप कुछ जानकारियाँ दे सकते हैं जो कि व्यक्ति या समुदाय सही से क्या कहते हैं अपना पोषण ग्रहण कर सके और वह स्वस्थ रह सके?
6: देखिए, अपनी क्यारी, अपनी थाली, ये बिहार राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया एक सरकारी सामुदायिक अभियान है, जिसमें बहुत से लोग जुड़े हुए भी हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कुपोषण दूर करना। और यह कार्यक्रम अधिकतर आंगनवाड़ी केंद्रों पर चलाए जा रहे हैं ऑलरेडी। इस योजना के तहत स्कूलों में या घर के आसपास आंगनवाड़ी के जितने भी अथी हैं वो सब इनकी जानकारियां दे रहे हैं। और इनको दूर करने के लिए सबसे अच्छा है बच्चों को फल, मतलब मनुष्यों को फल, सब्जियां, हरेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज ज़्यादा कोशिश करें ये सब खाने की, जिससे लोग तंदुरुस्त रह सकें।
5: जी, तो आज आपने देखा कि प्रशांत कुमार ने पोषण के बारे में और साथ साथ अपनी क्यारी, अपनी थाली के बारे में भी अच्छी जानकारियां दी। तो धन्यवाद प्रशांत जी, आपने 90.8 FM ग्रीन को अपना कीमती टाइम और अपना कीमती ज्ञान को प्रदान किया। धन्यवाद।
7: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
8: खुद भी बचे देश भी बचाए।
9: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
5: नमस्कार, मैं अजय कुमार, रेडियो प्रतिनिधि 90.8 FM ग्रीन से। मैं आज इब्राहिमपुर की ओर हूँ और इब्राहिमपुर में व्यक्तियों को पोषण से संबंधित क्या क्या जानकारियां हैं, ये जानकारी एकत्रित करने का कोशिश कर रहा हूं। तो मैं आज एक भैया जी से पोषण से संबंधित जानकारी लेने की कोशिश करता हूं। तो भैया जी, आप पोषण के बारे में?
11: पोषण वह है जिसके द्वारा भोजन ग्रहण कर अपना लोग अपना पाचन अपना शारीरिक वृद्धि और ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, जिससे आदमी को काम करने में मदद मिले।
5: तो पोषण को हम किस किस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं?
11: पोषण को हम बहुत सारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हम फल, हरी सब्जी सब्जी, फिर साबुत अनाज, प्रोटीन, वसा, ऐसे सब खाकर हम उसे हम अपने उपयोग कर सकते हैं। हो सकता
5: अच्छा, मान लिया जाए कोई व्यक्ति कभी कभी जरूरत पड़ती है तो व्यक्ति दवाई वगैरह से भी अपना पोषण को प्राप्त करता है। अगर व्यक्ति मान लिया जाए पोषण को दवाई के अलावा, वो किन माध्यम से प्राप्त कर सकते?
11: पोषण दवाई के माध्यम, दवाई के अलावा मनुष्य को अपना फल वल फल खाए, सब्जी खाए, और फिर आपका दाल दूध पिए, और फिर उसके बाद वो प्रतिदिन सुबह सुबह योगा करे, तो उससे उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, उसे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
5: अच्छा भैया जी, आप ये बताएं कि मान लिया जाए अगर व्यक्ति को सही से पोषण ना मिले, आम व्यक्ति को मान लिया जाए जो भी हमारे ग्रामीण हैं, अगर ग्रामीणों को या फिर व्यक्तियों को सही से पोषण ना मिले तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है?
11: हृदय रोग हो सकता है, थकान हो सकती है, कमजोरी हो सकता है, कुपोषित हो सकता है वो, जैसे इसी तरह कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है उसके शरीर में।
5: जी, मान लिया जब महिलाओं को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती है?
11: वो उन्हें खून की कमी हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, महिलाओं को उन्हें खून की कमजोरी हो सकती है, थकान हो सकता है, बराबर संक्रमित हो सकती है, वो हार्मोनल उसका असंतुष्ट हो सकता है, जिससे गर्भाशय या माँ दोनों बच्चों का उस पर दोनों का बुरा असर पड़ेगा। उनके अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके अंदर जो पल रहे बच्चे हैं उन पर भी उनका असर पड़ेगा।
5: जी, मान लिया जाए इसी तरह से अगर मान लिया जाए पोषण आहार सही से बच्चों को ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती हैं?
11: बच्चों को ना मिले तो फिर उसे कई प्रकार के रोग, बौनापन, जैसे मानसिक रोग हो सकते हैं उन्हें, और उन्हें कठिनाइयाँ बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत सारे कुपोषित हो सकते हैं रोग, जैसे एनीमिया, रतौंधी, सब ये सब जैसे ये सब बढ़ सकते हैं उन लोगों को।
5: तो अगर मान लिया जाए ये सब तो आपको पता है कि मान लिया जाए ऐसा होता है अगर बच्चों को सही से पोषण आहार ना मिले, स्त्रियों को ना मिले या फिर आम व्यक्तियों को ना मिले, तो ये समस्याएं होती है, ये जानकारी आपको है। तो इसी बीच आप अपना परिचय देंगे क्या?
11: जी हाँ, मैं सबौर बड़ी इब्राहिमपुर का रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरा नाम मानव है।
5: जी, तो मानव जी आपसे ये तो आपने पोषण के बारे में बहुत अच्छा बताया, लेकिन कि इस पोषण को सही से हम प्राप्त करते रहें इसके लिए हमारे कृषि कॉलेज भी एक मुहिम चलाई है, उस मुहिम के अंतर्गत अपनी क्यारी अपनी थाली एक मुहिम है, उसके बारे में आप लोगों को क्या पता है? इब्राहिमपुर से एग्रीकल्चर कॉलेज की ज़्यादा दूरी भी नहीं है, 2 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो आपको अपनी क्यारी अपनी थाली के बारे में क्या जानकारियाँ हैं ये बताएँ।
11: अपनी क्यारी अपनी थाली का उसका कहना है कि जैसे अभी आपके पास अगर ज़मीन है तो वहाँ पे अपना कुछ रोप दिए, अपना उगाइए, अपना खाइए, तो जिससे कि अनाज की कमी नहीं होगी, जिससे आदमी को बराबर पोषण मिलता रहेगा।
5: ये तो मान लिया जाए कि वृहत पैमाने पे आपने बताया, मान लिया जाए ग्रामीण हो या फिर शहरी हो, उनको सभी को मान लिया जाए बहुत सारा ज़मीन नहीं होती है।
11: हाँ।
5: जब ज़मीन नहीं होती है तो वो अपना खेती तो नहीं कर सकती है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करे और कैसे अपनी क्यारी अपनी थैली को यूज कर सकता है? मान लिया जाए वो घर के आगे गार्डनिंग के लिए क्या करे, या फिर क्या उनके बारे में जानकारी है?
11: वो क्या? अपने बारे वो क्या करे, अगर जो वो नहीं कर सको, अगर जो उनके पास अपना ज़मीन नहीं है तो वो दूसरे के अथी पे डिपेंड कर सकता है। अगर वो उगा रहा है तो अगर वो इसके पास है कि वो एक दो
5: नहीं नहीं अपनी क्यारी अपनी थाली का एक सीधा सा उदाहरण ये है कि जैसे कि आपके आगे आंगन हो बाड़ी हो उसमें आप एक क्यारी के रूप में आप लगा सकते हैं, उस क्यारी में लगाएं और अपना जैसे कि सब्जी हो फल हो वो अपने आप आंगन में अगर उपजाते हैं तो वो आपको ऑर्गेनिक मिलती है, पूर्ण रूपेण आपको रासायनिक रहित मिलती है। ठीक है, उसमें रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है जो कि आपके शरीर के लिए क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, तो आपने 90.8 एफएम ग्रीन को अपना कीमती टाइम दिया, इनके लिए 90.8 एफएम ग्रीन आपका धन्यवाद करती है। मैं

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 MHz पर। मैं हूँ अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं खास विषय, और गर्मा मूंग की हम बात करते हैं इस समय। तो गर्मा मूंग में कीट प्रबंधन आप कैसे करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आज के वैज्ञानिक आप सभी को देंगे। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर पवन कुमार, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं KVK सबौर। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: थैंक यू अनु जी।
4: मूंग में कौन कौन से कीट लगते हैं, पहले तो इसकी जानकारी दें हमारे श्रोताओं को।
6: मूंग में जैसे हम मूंग लगाते हैं, तो मूंग में मुख्यतः जो है वो फली बेदक है, सफ़ेद मक्खी है, फिर उसमें हरा फुदका कीट है, थ्रिप्स है, बहुत सारे कीट हैं, जो पॉड बग हैं जो अभी इस समय बहुत तेज़ी से जो लग रहे हैं, फिर उसके बाद जो सफ़ेद मक्खी है जो मोज़ेक वायरस फैलाती है, तो इन तमाम तरह के कीट हैं। लाल बालदार सुंडी है, ये सब कीट मूंग में लगते हैं
4: जी। अब कौन कौन सी बीमारियां इसमें लगती हैं?
6: बीमारियां मुख्यतः एक बीमारी है जो जड़ का सड़न बोलते हैं, जड़ सड़ जाती है, और पत्तियों में भी उसके मतलब सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं। फिर सरकोस्पोरा लीफ स्पॉट है, एक ब्राउन कलर का, एक जैसे सरसों के दाने की तरह उसमें वो हो जाते हैं, लीफ में स्पॉट पड़ जाता है सरसों के दाने की तरह, वो बीमारी है। एंथ्रेक्नोज है, पाउडरी मैल्यू है, तो ये सब बीमारियां उसमें गर्मा मूंग में लगती हैं
4: जी। अभी के समय की हम बात करते हैं, तो अभी के समय में कौन कौन से कीट लग सकते हैं इसमें?
6: तो अभी के समय में जो हम देख रहे हैं कि फूल कुछ फूल लगते जा रहे हैं और उसमें पॉड भी लग गए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अभी प्रकोप में है, जो ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, तो वो है आपका फली वेदक कीट, और इसका फली वेदक कीट के बाद फली बग, जो फली वृक्ष जिसको बोलते हैं, वो फली बग, उसमें अभी ये दो तरह के कीट बहुत तेज़ी से गर्मा मूंग में लगते हैं
4: जी। कौन कौन सी बीमारियां इस समय की बात अगर हम करें तो लग सकती?
6: इस समय की बीमारियां जो हमने बताया पहले आपको, कि जो सरकोस्पोरा लीफ स्पॉट है, एंथ्रेक्नोज है, पाउल्ड्री मैल्यू है, ये अभी ये बहुत ज़्यादा फैलती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा जैसे 10%, जैसे हम कोई एक एरिया लेते हैं, अगर उसमें देख रहे हैं कि दिखने लगा है कि मुझे पाउडरी पाउडरी टाइप का दिखने लगा है, तो उसमें

0: उसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी हो जाता है।
1: अभी के समय की हम बात करते हैं तो अभी जो गर्मा मूंग में जो कीट लगेंगे तो उनकी रोकथाम हमें कैसे करनी चाहिए?
0: गर्मा मूंग में कीट अभी जो मुख्यतः है वो पॉड बग और फली बोरर है, तो इनको हम मैनेज जनरली पहले से अगर हम कुछ उपचार करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कंट्रोल हो पाए हैं अभी ज़्यादा उसमें लग रहे हैं तो हम जो पॉड बग है जो फली बग जिसको बोलते हैं उसका जो सिम्टम है वो क्या करता है कि फली के अंदर, जैसे फली के अंदर जो दाना होता है तो उसके फली से फली के ऊपर बैठ के उसमें अपना मुखांग उसके अंदर डाल के और उसके दाने से रस चूस लेता है, तो वो फली खराब हो जाती है और पिचक जाती है, उसमें कोई दाना नहीं पड़ता है। तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग उसमें क्यूनाल फॉस एक दवा है 25 EC में जो आता है, तो 2 ml प्रति लीटर में उसको मिला के छिड़काव कर सकते हैं जिससे आप पॉड बग को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं।
1: और इस समय जो रोग लगते हैं उनकी रोकथाम कैसे करें?
0: इस समय जो रोग लग रहे हैं, हाँ जो रोग मैंने बताए हैं आपको कि सरकोस्पोरा लीफ स्पॉट है और पाउडरी माइल्ड्यू है और ये सब हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए हम कार्बेंडाजिम एक पाउडर आता है बाविस्टिन के नाम से आता है, तो उसको 1 ग्राम पानी में हम मिलाते हैं, 1 ग्राम पानी में मिला के 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के और हम प्रति हेक्टेयर की वजह से उसको छिड़काव कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाना है।
1: तो यहाँ पर कीटों की बात हो गई, यहाँ पर खासतौर पर हमने गर्मा मूंग में कीट प्रबंधन की बात की थी, लेकिन आपने रोगों के बारे में भी जाना, रोकथाम कैसे कर सकते हैं, कीटों से रोकथाम कैसे कर सकते हैं, अपने गर्मा मूंग को बचा सकते हैं, तो यहाँ तक ही ये बातें थी। अगले दिन हम आप सभी को एक और विषय लेकर आएंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। कृषि

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार अनुमान है कि 27 मई से 31 मई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में अगले कुछ दिनों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, इन जिलों में 28 मई को लू चलने की यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है। 27 से 31 मई के दौरान अनुमान है कि अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें, साथ ही खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जिनके खेत में गर्मा मूंग और उड़द है, उन्हें बता दें देर से बोई गई गर्मा मूंग और उड़द की फसलों में हेयरी कैटरपिलर का प्रकोप होता है, ऐसे में उनकी निगरानी करना जरूरी है। प्रकोप अगर दिखाई दे तो मिथाइल पैराथियन 50 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जिनके खेत में सब्जियां हैं, उन्हें बता दें भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप होता है, इसलिए उनकी नियमित निगरानी की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियन 50 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को या फिर डाइमेथोएट 30 इसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं, उन्हें बता दें आम के बागानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि आम के बागानों में रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में या फिर लैम्बडा साहेलोथ्रीन की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। बागानों में पर्याप्त और निरंतर नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। जिनके बागानों में लीची है, उन्हें बता दें लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसी वजह से किसान भाई बहन किसी भी प्रकार का छिड़काव शाही लीची में अभी नहीं करें। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्बडा साहेलोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं, उन्हें बता दें ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और जो पशु दूध देते हैं उन्हें खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। वहीं गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए। साथ ही पशुओं को हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
1: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
1: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को आज हम किस फूल की बात करेंगे।
1: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
1: हाँ विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है
2: जी।
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
1: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
1: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
1: जैसे
2: जैसे लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
1: जी,
2: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
1: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
1: अविमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
1: जी श्रोताओं, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
2: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ, वो क्या?
2: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
2: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे

0: श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
1: जी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
3: मश्क,
2: होशियार,
3: समझदार,
2: पेंसिल तराश,
3: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
3: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल।

0: आधुनिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
1: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
3: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
4: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
3: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
4: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाए हो नहीं सकता।
3: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
5: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
6: क्या बात है,
5: सुनकर ही जोश आ गया।
6: हाँ
5: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
6: युद्ध में तो जाने ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
2: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा।

0: विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परम वीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा। पिता,
1: प्यारे कुशो, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशो, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999, स्थान 0.5140, 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे 2 हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: 1 घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था? उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
4: हमला करो! दुर्गा माता की!
0: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
5: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
1: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
6: क्या बात कही है?
5: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
1: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो
2: संभल कर
1: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
2: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
2: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
2: जी सर।
3: हमला करो दुर्गा माता की जय। माता की जय। चलो चलो भाई चलो।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबरा कर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
4: साम जी, साम जी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नारायण तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
4: नहीं लेकिन साहब जी
1: मैंने कहा ना पीछे हट जाओ।
4: मैं जा रहा हूं।
1: साहब जी साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें?

तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात, जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि
2: नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं हूँ अनु और आज एक बार फिर एक खास विषय लेकर मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ। हम बात कर रहे हैं अजोला की और साथ ही इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज आप सभी को बताई जाएंगी जो किसान भाइयों के लिए, खेत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, मिट्टी के लिए फायदेमंद होगी। आज हम बात करेंगे खेती, पशुपालन एवं वर्मी कंपोस्ट समृद्धिकरण में अजोला की उपयोगिता के बारे में, साथ ही उत्पादन और प्रयोग विधि, आप कैसे अजोला का करेंगे इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। इस विषय के साथ हमारे बीच है मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर AK झा, मृदा विज्ञान विभाग बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप अजोला के बारे में बताएं।
3: एक्चुअली अजोला एक उच्च पोषक मान वाला जलीय फर्न है जिनके पत्तियों में एनाबिना अजोली नाम का एक नील हरी शैवाल पाया जाता है। भारत के कई भूभागों में इसका उपयोग पशु आहार, मानव आहार, जैव उर्वरक और हरी खाद के रूप में किया जाता है, लेकिन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में इसका प्रयोग वर्मी कंपोस्ट के समृद्धिकरण के लिए भी किया जाता है।
2: जी, अगर प्रजातियों की बात करें तो भारत में अजोला की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं एवं कहां कहां मिल सकती है, साथ ही बिहार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो प्रजाति है वो कौन सी है?
3: देखिए, मुख्य रूप से 7 प्रजातियां हैं जो अजोला की जो कि पाई जाती हैं। उसमें है अजोला कैरोलिनियाना, अजोला फेलिकुलाइड्स, अजोला मैक्सिकाना, अजोला माइक्रोफिला, अजोला पिन्नाटा, अजोला रूब्रा। लेकिन देखिए, पहले अजोला निलोटिका भी पाया जाता था, लेकिन अब अजोला निलोटिका सामान्यता नहीं मिलता है। तो ये जो 6 प्रजातियां हैं, ये 6 प्रजाति हमारे भारतवर्ष में पाई जाती है। भारतवर्ष क्या कहिए कि विश्व में पाई जाती है, यही 6 प्रजाति मुख्य रूप से भारतवर्ष में पाई जाती है। और जहां तक बात है बिहार की, तो यहां पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने यह शोध करके देखा है कि यहां के वातावरण के हिसाब से जो अजोला माइक्रोफिला है यह सबसे बढ़िया है। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, हो सकता है किसी 10-15 दिन अजोला कैरोलिनियाना बहुत अच्छा कर जाए, अगले 10-15 दिन हो सकता है रूब्रा अच्छा कर जाए, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो अजोला माइक्रोफिला का सबसे बढ़िया है। साथ ही साथ एक जो लोकल कलेक्शन है यहाँ पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का BAUAS1, वह भी बहुत बढ़िया ये परफॉर्म करता है। खास करके माइक्रोफिला के बाद सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसी का देखा गया है।
2: जी, पोषक मान क्या है अजोला का?
3: देखिए, अब एक चीज है कि अजोला, मैंने कहा ही कि उच्च पोषक मान वाला है, इसमें 25-35% प्रोटीन है। अब देखिए, 25-35% प्रोटीन है, यानी कह लीजिए कि अंडा, मछली, मुर्गा, इस सबसे भी कुछ मामले में ये ज्यादा प्रोटीन वाला है। तो इसमें 25-35% प्रोटीन पाया जाता है। जहां तक नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी 4-5% तक पाया जाता है। फॉस्फोरस भी इसमें 0.85% के आसपास पाया जाता है। पोटास की बात करें तो पोटास आपको 2.5% से 4.5% के बीच में इसमें पोटास पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे आप विटामिन B12 की बात करें तो 100 ग्राम में 0.14 मिलीग्राम पाया जाता है। कैल्शियम भी 67 मिलीग्राम पाया जाता है। मैग्नीशियम भी 4-3 मिलीग्राम पाया जाता है। गंधक भी पाया जाता है 2.7 मिलीग्राम। जस्ता भी पाया जाता है 4.1 मिलीग्राम। लोहा की बात करें तो 7.3 मिलीग्राम पाया जाता है। तांबा इसमें 0.9 मिलीग्राम पाया जाता है। मैग्नीज 102 मिलीग्राम पाया जाता है। सोडियम भी 0.26 मिलीग्राम पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें लगभग लगभग जो हमारे लिए जरूरी है वो सारे के सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको उच्च पोषक मान वाला जलीय फर्न कहते हैं।
2: जी, अगर अजोला का प्रयोग किसान भाई खेती में करते हैं तो क्या फायदे मिल सकते हैं उन्हें?
3: देखिए ऐसा है, इसका प्रयोग खेती में आज से नहीं होता है, इसका प्रयोग काफी पहले से किया जाता है। तो यहाँ पर अभी तक जो दूसरे भागों में था, विश्व के दूसरे भागों में हम कहें तो ज्यादा बढ़िया है, उसका प्रयोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किया जाता था, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। चूंकि हमने बताया कि इसके पत्ती में नीलहरित शैवाल पाया जाता है, तो ये लोग अभी यही करते थे कि धान की फसल में नाइट्रोजन का इसमें फायदा होता है, नाइट्रोजन की बचत होती है, इसी के लिए करता है। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय ने शोध करके इस पर टेक्नोलॉजी भी रिलीज किया है कि हम यदि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा यदि आधी कर दें, लेकिन हम इसका हरी खाद के रूप में प्रयोग करें, तो हम देखे हैं कि हमारे उत्पादन में कोई अंतर नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि इसका प्रयोग करके हम 50% नाइट्रोजन, 50% फास्फोरस और 50% पोटास जो हम धान में देते हैं उसकी बचत कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ शोध करके हम लोगों ने यह भी देखा है कि जो ये प्याज है, खास करके खरीफ प्याज, बिहार में इसका काफी क्षेत्रफल है, तो ये जो खरीफ प्याज है, खरीफ प्याज सड़ता बहुत है, तो यदि अजोला की सिर्फ आप मल्चिंग कर दीजिए, तो मल्चिंग करने के बाद यह देखा गया है कि इसमें इसकी स्टोरेबिलिटी बढ़ जाती, यानी सड़ता कम है, साथ ही साथ इसका उत्पादन भी बढ़ता है। तो यह सारी चीजें यहां पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने यह देखा है कि यदि हम इसका प्रयोग प्याज में करते हैं तो सड़ता कम है, उत्पादन ज्यादा बढ़िया होता है, धान में यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारा जो रेकमेंडेड अनुशंसित नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास की मात्रा है वह भी आधी बच जाती है। यदि हम ग्रीन मैन्योरिंग ना करें, यदि डुअल क्रॉपिंग करें धान के साथ, तब भी हमारे उत्पादन में खास करके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास में बचत होती है, यह चीज हम लोगों ने देखा है।
2: जी, अगर पशुपालन की हम बात करें तो क्या पशुपालन में अजोला का प्रयोग हो सकता है, और अगर हाँ तो क्यों, कैसे, इसके फायदे क्या हैं, इसके बारे में बताइए।
3: बड़ा बढ़िया है, बड़ा आपने समचीन प्रश्न पूछा। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे किसान भाई हैं वह खेती में तो कम प्रयोग कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ बिहार में भी और दूसरे जगहों पर भी पशुपालन में इसका जरूर प्रयोग कर रहे हैं। जो पशु पोषण है, पशु को जो हम चारा देते हैं, चारा मिल नहीं पा रहा है, और चारा नहीं मिल पा रहा, साथ ही साथ यदि चारा मिलता भी है तो चारा में उतना पोषक मान नहीं होता जितना अजोला में। यदि हम देखें अजोला को, तो 100 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष हम सिर्फ अजोला को पैदा कर सकते हैं यदि सही ढंग से व्यवस्था की जाए, उतना कोई भी चारा आपको उत्पादन करके नहीं दे सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक जो ज्यादा पोषक मान वाला है वह ज्यादा मात्रा में यह उत्पादन करके आपको दे सकता है। अब यह बात है कि पशु पोषण में, यह तो हम लोगों ने यहां शोध करके भी देखा था, जो हमारे पशु वैज्ञानिक हैं वह भी हमारे साथ थे इस प्रयोग में, तो यह करके हम लोगों ने देखा कि यदि हम 1 kg सुबह और 1 kg शाम यदि हम जानवर को देते हैं खाने के लिए, जो भी आप दाना चारा देते हैं उसी के साथ मिला करके 1 kg सुबह में 1 kg शाम में देते हैं, तो हमारा जो दूध का उत्पादन है वो 8 से लेकर 15.6% तक, यानी 8 से 16% तक लगभग हमारा दूध का उत्पादन बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम सिर्फ यदि 1 kg सुबह 1 kg शाम यदि हम खिला देते हैं, और आपका मान लीजिए गाय है वो 10 लीटर दे रही है, तो 10 लीटर के स्थान पर यदि आपको 1.5 लीटर दूध बढ़ जा रहा है, तो सोचिए कि कितना फायदा हो जा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आप यदि 300 लीटर दूध यदि उत्पादन कर रहा है, तो उसके हिसाब से किसान को काफी हजारों रुपए का फायदा उसको हो सकता है, तो यह बहुत बढ़िया चीज है। साथ ही साथ देखिए, इसका आप जो उपयोग है वह आपको मुर्गी पालन में भी कर सकते हैं, बकरी पालन में भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि बकरी पालन में जब आप करेंगे उसमें ज्यादा मात्रा नहीं दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा देने से 10% से ऊपर यदि आप दे रहे हैं तो वहां पर आपको उसको डिसेंट्री होने की संभावना होती है, तो इसलिए ज्यादा नहीं करते हैं। मुर्गी में तो आप 25% तक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जितना आप दाना दे रहे हैं उसका 25% सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं, बकरी में नहीं। तो कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के पशुओं के पोषण के लिए आप अजोला का प्रयोग कर सकते हैं।
2: जी, तो वर्मी कंपोस्ट के समृद्धिकरण में क्या अजोला का प्रयोग किया जा सकता है?
3: जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हम लोगों ने करके देखा है कि सिर्फ वर्मी कंपोस्ट के समृद्धिकरण में ही इसका प्रयोग नहीं हो सकता है, बल्कि केचुआ की तेजी से आप उत्पादन करना चाहते हैं, उसकी ब्रीडिंग जल्दी से करना चाहते हैं, उसमें भी अजोला आपका बड़ा उपयोगी है। कारण यह है कि अभी हमने बताया कि इसके पोषक मान बहुत अच्छे हैं, तो अब केचुआ भी इसको खा रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि उसमें जो है बढ़िया उसका वृद्धि होता है। इवन 200 से 250% तक 3 महीने में उसकी जनसंख्या बढ़ गई है, यह हम लोगों ने शोध करके देखा है। अब प्रश्न उठता है कि जो समृद्धिकरण है क्यों हो जाता है? अब अभी आपने को हमने बताया कि नाइट्रोजन 4.5% है, कहीं से केचुआ बाहर से तो पोषक माल लाएगा नहीं। अब इसमें चूंकि नाइट्रोजन ज्यादा है इसीलिए उससे जो बर्मी कंपोस्ट बनता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा स्वतः ज्यादा होती है। अब मान लीजिए हम 25% तक उसमें मिला रहे हैं, तो 25% तक यदि मिला रहे हैं तो अब समझ लीजिए कि कम से कम 1/4 तो मामला उसमें जा ही रहा है, तो नाइट्रोजन निश्चित रूप से बढ़ेगा। पोटाश ही हमने बताया 2.5 से लेकर 4.5% तक है, तो आपका जो बर्मी कंपोस्ट बनेगा उसमें पोटाश की मात्रा ज्यादा होगी, या अन्य पोषक तत्व ही जो इसमें है वो पोषक तत्व के कारण आपका जो वर्मी कंपोस्ट है वह गुणवत्तापूर्ण बनेगा। और इतना ही नहीं, केचुए की वृद्धि विकास यह भी बढ़िया होगा, तो इसके समृद्धिकरण में भी आप अजोला का प्रयोग कर सकते हैं।
2: जी, अजोला की उत्पादन विधि के बारे में थोड़ा बताएं।
3: अब जहां तक अजोला के उत्पादन विधि की बात है, तो यदि आप ये पशुपालन के लिए करते हैं, तो पशुपालन के लिए कर रहे हैं तो जो आप बगल में जो फार्म है जहां पर पानी की व्यवस्था है वहां पर गड्ढा आप बना लें। गड्ढा ऐसा है कि आप 2×2 मीटर का भी बना सकते हैं, या 2×1 मीटर का भी बना सकते हैं, या 2.25×1.5 मीटर का भी बना सकते हैं। हाँ, गहराई इसका 30 सेंटीमीटर से लेकर के 0.5 मीटर तक गहराई रखें। अब क्या है कि जो गड्ढा आपने बना लिया तो गड्ढे के नीचे कोई पॉलीथीन बिछा दीजिए, जैसे पानी रिसे नहीं, उसका कोई मकसद नहीं। इसके ऊपर आप उपजाऊ मिट्टी डाल देते हैं। यदि आपने 30 सेंटीमीटर का बनाया हुआ है तो नेचुरल सी बात है कि आप कम मिट्टी की ऊंचाई रखेंगे, यदि 0.5 मीटर का रखे हुए हैं तो मिट्टी की ऊंचाई थोड़ा ज्यादा आप रख सकते हैं। तो अब आपने मिट्टी कर दिया, इसके ऊपर ये जो है आप 2 से 4 इंच कम से कम पानी रहना चाहिए, स्टैंडिंग वाटर रहना चाहिए, तो वह आपने वहां पर पानी डाल दिया। जब पानी डालेंगे तो नेचुरल सी बात है वहां झाग वाग होगा, तो जो भी आपके पास तांबे की या प्लास्टिक की जो भी जाली रखते हैं तो उसके जो स्कम है, उसके जो झाग है, उसको आप चाल करके वहां से हटा दिए। हटा देने के बाद उसमें जो है आपको ये डाल देना है, क्या कहते हैं, अजोला। तो अजोला को कभी कभी जैसे बरसात के दिनों में यूज करते हैं तो उसमें कीड़े की भी समस्या आती है, तब आपको कार्बाफिरान 3G से ट्रीट करके डालना है। लेकिन यदि आप जानवर को खिला रहे हैं तो कार्बाफिरान 3G से ट्रीट नहीं कीजिएगा। इतना ही नहीं, जो आप पानी डाले हैं उस पानी में गोबर भी मिलाया जा सकता है, मिलाया जाता है, जो एक आपका स्क्वायर मीटर में है 1 से 1.5 kg जो गोबर है उसको पानी में 10-15 मिलीटर पानी में घोल करके, जो बालू चालने वाला चलनी है उस चलनी से चाल करके उस स्लरी को उसमें डाल सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप गोबर मिलाते हैं तो बहुत सारा जानवर खाने में नाटक करता है, तो आप नहीं भी डालेंगे तब भी आप पैदा कर सकते हैं। हाँ, वहां पर आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट कैसे डालेंगे भैया? तो इसमें आप ये कीजिए कि आप 10 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट ले लीजिए, 1.5 किलोग्राम उसमें मैग्नीशियम सल्फेट मिलाइए, और उसमें 0.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास मिलाइए, और इसको मिला करके जो उसका 5 ग्राम है, 10 ग्राम भी कर सकते हैं लेकिन 5 ग्राम अनुशंसित है, कम से कम 5 ग्राम होना चाहिए, तो 5 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप उसमें डालते रहें हफ्ता 10 दिन के बाद। तो आप इस ढंग से करेंगे, कारण ये है जो अजोला है उसको फास्फोरस का रिक्वायरमेंट उसका ज्यादा है, तो जो फास्फोरस का रिक्वायरमेंट है वह उसको मिल रहा है, और फास्फोरस का रिक्वायरमेंट उसको मिल रहा है तो तेजी से वृद्धि करेगा। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि भैया इतना ज्यादा यदि हमको अजोला वहां पर चाहिए धान के लिए, वहां पर हम क्या करेंगे? तो देखिए, वहां पर आपको करना यह है कि यदि हरी खाद के लिए करते हैं तो खेत में ही क्यारी बना लीजिए, वहां 10×2 मीटर का या 10×1 मीटर का क्यारी बना लीजिए। अब यह क्यारी बना करके उसमें वही गोबर डाल करके, गोबर का घोल डाल करके, और उसमें आप अजोला डाल करके और उसके बाद उसकी वृद्धि करवाते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आप डुअल क्रॉपिंग के लिए करते हैं, जैसे धान का और अजोला का एक ही साथ वृद्धि करवाना चाहते हैं, तो वहां पर जितना आप ग्रीन मैन्योरिंग में डालते हैं उसका 1/10 हिस्सा ही वहां पर आप प्रयोग कीजिए। जब धान आपको 5-7 दिन 10 दिन का हो गया रोपा हुआ, तो उसी में पानी थोड़ा सा 2-4 इंच जरूर रहना चाहिए, उसमें अजोला आपने छिड़क दिया, और जितना आपने फॉस्फोरस डाला था वो कम से कम 20 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से फॉस्फोरस की मात्रा को बढ़ा दीजिए, और उसकी मात्रा को बढ़ा करके आपने डाल दिया, और 15 से 21 दिन तक जो पानी का स्तर है 2 से 4 इंच आप बरकरार करके रखेंगे तो देखेंगे कि पूरा खेत अजोला से भर गया। अब उसके बाद पानी के स्तर को कम कर दीजिए, अब पानी के स्तर को कम करके छोड़ देंगे तो वह जितना अजोला है वह आपके मिट्टी को पकड़ लेगा, और उसके बाद वह खुद वहां पर ये खत्म हो करके वो हो जाएगा। हाँ, एक बात जरूर मैं बताना चाहता हूं जो मैं भूल गया था कि जब आप अजोला पैदा कर रहे हैं पशु के लिए तो वहां पर हरेक 30 जो है 15-20 दिन के बाद आप एक तिहाई पानी को जरूर निकालते रहिए, नए पानी से उसको प्रतिस्थापित करते रहिए, और जब मिट्टी काली हो जाए तो अब उसकी स्थिति में आप मिट्टी को हटा करके फिर जब काली मिट्टी हो गई तो फिर नई मिट्टी डालना पड़ेगा, ये करेंगे तभी आपका अजोला चलेगा। तो ये सब तरीके हैं, इन सब तरीकों को आप जान करके अजोला का उत्पादन करके अपने पशुपालन में भी फायदा कमा सकते हैं, खेती में फायदा कमा सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, लेकिन

0: और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सबौर में आइए। हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, यहाँ पर यूनिट बना हुआ है, यहाँ आकर के सीखें और जरूर इसका उपयोग करें।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेती पशुपालन एवं वर्मी कंपोस्ट समृद्धिकरण में अजोला की उपयोगिता, उत्पादन और प्रयोग विधि के बारे में। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे कल एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि,
2: attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कई सारी धारणाएं बनाता है और उन्हीं धारणाओं के हिसाब से अपनी जीवन की प्लानिंग करता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि हमारी पुरानी धारणाएं टूटती नजर आती है या पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, और नई धारणाएं बनाने में हमें बहुत समय लग जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति में हमने जो रास्ता अपने लिए तय किया था, वो रास्ता अंधेरों से भर जाता है और फिर हमें हाथ लगती है निराशा। और जब बार बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है तो हम घोर निराशा में चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्लेटो के जीवन में निराशा ने दस्तक दी पर उन्होंने हार नहीं मानी। आपने महान दार्शनिक प्लेटो का नाम तो सुना ही होगा। प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से वो घोर निराशा में चले गए, लेकिन वो हर बार नई राह तलाशते रहे, नई धारणाएं बनाते रहे और आगे बढ़ते रहे। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक धनी और प्रभावशाली परिवार में हुआ था। अपने समय के अधिकांश युवकों की तरह उनका भी सपना था राजनीति में प्रवेश करने का। प्लेटो को लोकतांत्रिक परंपराएं एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए उपयुक्त लगती थी। हालांकि इतिहास की घटनाओं ने उनके विश्वास को तोड़ दिया। पेलोपोनेशियन युद्ध में एथेंस की हार के बाद सत्ता 30 टायरेंट्स के हाथों में चली गई। ये शासन बहुत ही क्रूरता और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात था और इसके कुछ नेता प्लेटो के अपने रिश्तेदार थे। ये बात प्लेटो के लिए और भी ज्यादा पीड़ादायक थी। जब हम अपनों को गलत राह पर चलते देखते हैं तो हमें ज्यादा पीड़ा होती है। उन्होंने देखा उनके अपने भी अन्याय और हिंसा के रास्ते पर चल पड़े हैं। देश में अन्याय, हिंसा और नैतिक पतन ने नागरिक मूल्यों की जगह ले ली थी। जब लोकतंत्र पुनः स्थापित हुआ तो एक बार प्लेटो के मन में फिर ये आश जगी कि अब एथेंस अपनी गलतियों को सुधारेगा। लेकिन ठीक इसके उलट लोकतांत्रिक सरकार ने प्लेटो को एक और झटका दिया। 399 ईसा पूर्व में प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया गया। सुकरात पर नास्तिकता और युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप लगाए गए थे, जिन्हें जाहिर सी बात है प्लेटो ने झूठा और राजनीतिक रूप से प्रेरित माना। इस घटना ने प्लेटो को समझाया कि जब सत्ता अज्ञान के हाथों में होती है तो लोकतंत्र भी गंभीर अन्याय कर सकता है। निराश होकर प्लेटो ने राजनीति से भी दूरी बना ली। उन्होंने एक और नई राह तलाश की। प्लेटो का मानना था कि कोई भी शासन व्यवस्था तब तक न्यायपूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसे नैतिक विवेक का मार्गदर्शन न मिले। उन्होंने गहन अध्ययन किया और अंततः एथेंस में प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना की, जो पश्चिम का पहला उच्च शिक्षण संस्थान मानी जाती है। प्लेटो का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि समाज तभी न्यायपूर्ण होगा जब दार्शनिक शासक बनेंगे या शासक दार्शनिक। प्लेटो ने अपने इसी उद्देश्य में सफलता पाई। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी विपदाएं आई, उनकी बहुत सारी धारणाएं टूटी। प्लेटो राजनीति में जाना चाहते थे लेकिन राजनीति की कठोरता उन्हें रास नहीं आई, लेकिन फिर भी प्लेटो ने हार नहीं मानी, अपने लिए नित्य नए राह तलाशते रहे और आज विश्व के महान दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। तो ये थी प्लेटो की कहानी। दोस्तों, उम्मीद है आपको प्लेटो की कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो ये थी आज की मोटिवेशनल बातें। हम आपके लिए ऐसी ही कुछ जरूरी और मोटिवेशनल बातें लाते रहेंगे, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ।
5: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
6: खुद भी बचे देश भी बचाए।
7: टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ये कहावत हमारे यहाँ बहुत मशहूर है। इसका मतलब होता है कि अकेले रहकर हम कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम संगठित हो जाएं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसान अगर संगठित हो जाए, यानी कि अगर हम किसानों का संगठन बना ले, जिसे कि हम FPO कहते हैं, तो फिर किसानों की कमाई बढ़ सकती है और बहुत तरह के उन्हें लाभ भी मिल सकते हैं। तो आज हम FPO के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि किसान संगठन के बारे में बात करने वाले हैं। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा पांडे जी। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, आप हैं सहायक प्राध्यापक। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: नमस्कार मैडम।
4: मैम, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है कि किसान संगठन या फिर जिसे हम FPO भी कहते हैं, वो क्या है और हमारे किसान भाई बहन अभी भी इससे अनजान कैसे हैं?
6: जी, ये आपका बहुत ही बुनियादी सवाल है। देखिए, बिहार में अधिकतर किसान छोटे या सीमांत हैं, उनके पास ज़मीन कम है। अब जब वे अकेले खाद बीज ये सब खरीदने जाते हैं तो उन्हें महंगा मिलता है, और जब फसल बेचने जाते हैं तो बिचौलिए उनके बहुत ही कम दाम देते हैं। किसान उत्पादक संगठन इन्हीं छोटे किसानों का एक समूह है। यह एक कंपनी की तरह काम करता है, लेकिन इसके मालिक खुद किसान ही होते हैं। जब 100 से 200 किसान एक साथ मिलते हैं तो उनकी सौदेबाजी, जिसे हम बार्गेनिंग पावर कहते हैं, वो काफ़ी बढ़ जाती है।
4: तो मैम, FPO में सस्ते बीज भी मिलते हैं, सस्ते बीज के साथ क्या संगठन से जुड़ने के बाद कोई और भी फायदा होता है? खेती के तरीकों में भी क्या बदलाव आता है या आया है?
6: जी, इन संगठनों से जुड़ने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि कस्टम हायरिंग सेंटर खोला जाता है, जिसके तहत किसानों को हम बड़ी जो उपकरणें होती हैं कृषि से संबंधित, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रोन, इन जैसी महंगी मशीनें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। संगठन से बहुत कम किराए पर ये ले सकते हैं। इससे मजदूरी का खर्च भी कम हो जाता है और समय की भी बचत होती है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार FPO की नई मशीनें खरीदने के लिए भारी सब्सिडी भी देती है। इसके अलावा संगठन के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों से सीधे जानकारी मिलना आसान हो जाता है।
4: जी मैम, तो जैसे कि आपने बताया बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बाज़ार की। जैसे कि हम जानते हैं, किसान भाई बहन भी इस बात से रूबरू होंगे कि खेत में जो टमाटर 2 रुपये किलो मिलता है, वो बाज़ार पहुंचते ही 40 रुपये किलो हो जाता है। इसमें किसान भाई बहनों को बहुत फ़ायदा तो नहीं होता है, लेकिन अगर वो किसान संगठन से जुड़ जाए तो किसान संगठन उनकी कैसे मदद कर सकता है?
6: जी, यही तो पूरा खेल है। फ़ायदा तो होता ही नहीं है, बल्कि उनका जो कॉस्ट है, जो पैदावार करने की कॉस्ट है, कभी कई बार ऐसा होता है कि वो भी नहीं निकल पाता है। तो अकेले किसान के पास अपनी फसल को भंडारण करने की जगह नहीं होती है, इसीलिए वह उसे औने पौने दाम में बेच देता है। लेकिन संगठन के पास अपना गोदाम या कोल्ड स्टोरेज, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिससे कि वो उसे जब बाजार में इसका मूल्य ज़्यादा हो तब बेच करके अधिक मुनाफा कमा सके। दूसरी बात ये है इसका प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग। अगर आप केवल मखाना बेचेंगे तो कम पैसे मिलेगा, लेकिन अगर संगठित होकर मिलकर मखाना की ग्रेडिंग करें, उसे पैकेजिंग करें, ब्रांडिंग करें, तो मुनाफा दोगुना तीन गुना तक हो सकता है।
4: जी मैम, तो मुनाफा हो सकता है अगर हमारे किसान भाई बहन संगठन से जुड़े, लेकिन अब सवाल यह है कि वो संगठन से कैसे जुड़े, या फिर अगर वो आपस में संगठन बनाना चाहें तो उसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से वो सरकार से मदद ले सकते हैं।
6: जी, तो सबसे पहले तो जो किसान भाई बहन हैं उन्हें अपने क्षेत्र में कम से कम 10 से 20 जागरूक किसान जो हैं उनके साथ एक बैठक करने की ज़रूरत है। अपने ज़िले के कृषि विभाग या कि नाबार्ड, उनके कार्यालय में संपर्क करने की ज़रूरत है। सरकार भी FPO बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देता है और विशेषज्ञों की मदद भी देती है। बिहार में जीविका के माध्यम से भी कई महिला किसान संगठन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
4: मैम, अब मैं चाहूँगी कि आप विस्तार से बताएं कि इसकी प्रक्रिया क्या है, और चरण दर चरण अगर कोई किसान भाई बहन चाहें FPO बनाना तो किस तरीके से बना सकते हैं।
6: जी ज़रूर, तो इसका जो तैयार होने का प्रक्रिया है ये मुख्यतः तीन चरणों में होता है। किसान संगठन मुख्य रूप से एक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। तो पहली प्रक्रिया में क्षेत्र और फसल का चयन किया जाता है। सबसे पहले एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जाता है जहां किसान एक जैसी फसलें उगाते हों। जैसे आम उगा रहे हैं तो सारे किसान आम उगाएंगे, मखाना की खेती हो रही है तो सारे किसान मखाना की खेती करेंगे, या सब्जी की वो FPO होने वाला तो सारे किसान सिर्फ सब्जी ही लगाएंगे अपने खेत में। फिर कम से कम 10 या उससे अधिक प्राथमिक जो किसान हैं, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी आवश्यकता होती है। हालांकि एक सफल FPO के लिए कम से कम 300 से 500 किसानों का लक्ष्य रखा जाता है। उसके बाद बारी आती है पंजीकरण कराने की। तो इसके लिए कम से कम 5 निदेशक जो कि बनाए जाते हैं किसानों के बीच से ही, उनका डिजिटल हस्ताक्षर जिसे DSC कहते हैं, और DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो बनवाना होता है। उसके बाद उस संगठन की नाम की स्वीकृति ली जाती है। अपने जो कंपनी बनाई है इसके लिए एक बहुत ही यूनिक सा नाम चुना जाता है, और फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC के से वो स्वीकृत कराया जाता है। उसके बाद बारी आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करने की, जिसमें कंपनी के नियम लिखे जाते हैं। उसके बाद आपको पंजीकरण का प्रमाण पत्र ROC के द्वारा जांच के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके बाद आप इसके प्रबंधन और संचालन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि किसानों के बीच से ही चुना जाता हो, वो चुनने की आवश्यकता है। उसके बाद उसमें CEO, व्यावसायिक कार्यों के लिए एक CEO और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की नियुक्ति की जाती है।
4: मैम, अगर FPO बनाने के लिए ऋण की ज़रूरत हो, वित्तीय सहायता की ज़रूरत हो, तो वो किसान भाई बहनों को कैसे मिलते हैं और क्या क्या सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ?
6: जी, पूंजी के लिए भारत सरकार और नाबार्ड विशेष मदद देते हैं। जैसे कि पहला है इक्विटी ग्रांट स्कीम। इसके तहत यदि किसानों ने मिलकर 5 लाख रुपए जमा किए हैं तो सरकार भी संस्था को 5 लाख रुपए का अनुदान देगी। उसके बाद इसका अधिकतम 15 लाख रुपए तक इसकी सीमा हो सकती है। दूसरा तरीका है क्रेडिट गारंटी फंड, जिसमें अक्सर बैंकों को बिना गारंटी के लोन देने में डर लगता है। इसके समाधान के लिए SFAC, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम और नाबार्ड क्रेडिट गारंटी देते हैं। इससे इसके तहत FPO जो है उसको बिना किसी जमीन या संपत्ति को गिरवी रखते हुए 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है, और इसकी सुरक्षा, यदि FPO लोन नहीं चुका पाते हैं तो सरकार उस लोन को एक बड़े हिस्से की भरपाई बैंक को करनी पड़ती है। तीसरा है प्रबंधन लागत सहायता, जिसमें कि सीईओ का वेतन, ऑफिस का किराया, बिजली बिल और अन्य खर्चों के लिए 18 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है।
4: तो मैम, इसके अलावा किसानों को, किसान भाई बहनों को और कौन कौन से लाभ मिलते हैं?
6: जी, इसके अलावा जैसे कि एफपीओ में संगठित होने से इनको सबसे पहले कि सस्ता इनपुट मिल जाता है। थोक में खरीदने के कारण बीज, खाद, कीटनाशी बाजार से करीबन 10-15% सस्ते दामों में मिल सकते हैं। इसके अलावा मशीनरी बैंक्स जैसे एफपीओ अपना कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं, जिससे किसानों को सस्ते दामों में ट्रैक्टर या ड्रोन किराए पर मिल सकता है। और साथ ही मूल्य संवर्धन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर किसान अपने फसल को ब्रांड बनाकर ऊंचे दामों पर शहरों में बेच सकते हैं। और एक आपको चौथा मुख्य लाभ है, सीधा बाजार मिल जाएगा। बिचौलियों को हटाकर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को आप अपना माल बेच सकते हैं।
4: मैम, अब किसान भाई बहन उनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि एफपीओ बनाने के लिए किसान भाई बहन कहाँ से सहायता लें?
6: जी, एफपीओ बनाने के लिए सरकार ने सीबीबीओ, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नियुक्त किए हैं। ये विशेषज्ञ संस्थाएं 5 साल तक किसानों को पंजीकरण से लेकर बाजार दिलाने तक में मदद करती हैं। आप अपने जिले के कृषि विभाग, नाबार्ड कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। बिहार में जीविका भी महिला किसानों को एफपीओ बनाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है।
4: बहुत ही अच्छी ये चर्चा रही। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप किसान भाई बहनों को अंत में कोई संदेश दें।
6: जी, किसान भाई बहन, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि संगठन में ही शक्ति है। अपने गांव में छोटे छोटे समूह बनाइए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए। और याद रखिए, उन्नत बीज, उचित बाजार, किसान संगठन है खुशहाली का आधार। धन्यवाद
4: मैम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई बहनों, अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
7: उन्नत कृषि।
8: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
9: खुद भी बचे देश भी बचाए।
10: टीबी हारेगा देश।

जिलों में अगले कुछ दिनों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, इन जिलों में 28 मई को लू चलने की यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है। 27 से 31 मई के दौरान अनुमान है कि अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें, साथ ही खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जिनके खेत में गर्मा मूंग और उड़द है, उन्हें बता दें, देर से बोई गई गर्मा मूंग और उड़द की फसलों में हेयरी कैटरपिलर का प्रकोप होता है, ऐसे में उनकी निगरानी करना जरूरी है। प्रकोप अगर दिखाई दे तो मिथाइल पैराथियन 50 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जिनके खेत में सब्जियां हैं, उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप होता है, इसलिए उनकी नियमित निगरानी की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियन 50 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को या फिर डाइमेथोएट 30 इसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं, उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि आम के बगानों में रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में या फिर लैम्बडा साहिलोथ्रीन की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। बगानों में पर्याप्त और निरंतर नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। जिनके बगानों में लीची है, उन्हें बता दें, लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसी वजह से किसान भाई बहन किसी भी प्रकार का छिड़काव शाही लीची में अभी नहीं करें। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्बडा साहिलोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं, उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और जो पशु दूध देते हैं उन्हें खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। वहीं गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए। साथ ही पशुओं को हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना?

लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और ये विषय है खास तौर से उन महिलाओं के बारे में जो कामकाजी हैं। और आज के समय में हर दूसरी महिला कामकाजी हैं और होना भी चाहिए क्योंकि ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है, लेकिन कई बार उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और ख़ास तौर से ये उसी जगह पर होता है जहां वो काम करने जाती हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी महिलाओं के एक बेहद ही अच्छे साथी के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जो उन्हें उनके कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। और उनका ये साथी है या फिर कहें कि उनकी ये दोस्त है शी बॉक्स। शी बॉक्स क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों कई बार ना क्या होता है कि महिला अपने काम पे निकली, बहुत ही अच्छे से निकली, लेकिन वहाँ पर उन्हें असहज महसूस होता है क्योंकि उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर देता है या फिर कोई उनसे ऐसी अभद्र बातें कह देता है कि महिला को बहुत बुरा लगता है या फिर किसी लड़की को बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसे में वो परेशान हो जाती है कि किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें, इसका क्या निदान निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं का साथी या फिर कामकाजी महिलाओं की दोस्त कौन है, शी बॉक्स ये क्या है। अगर मैं आपको शी बॉक्स का पूरा नाम बताऊं तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप यौन उत्पीड़न के बारे में बातें बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और एक ये ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रखना। पता है सबसे जरूरी बात ये है कि अब चुप रहना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप अपनी आवाज उठाएं और आप इसे संबंधित विभाग तक पहुंचें, तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगी। और सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, वो सिर्फ आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा गलत, और लड़कियों के साथ भी वो गलत व्यवहार ही करेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि वैसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए। और आप आवाज़ उठाएंगी तो यकीन मानिए कि आपका डर ख़त्म होगा, लेकिन उस इंसान के अंदर डर ज़रूर आ जाएगा कि अब हमें ऐसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं देना है जिससे किसी महिला को परेशानी। शी बॉक्स कैसे काम करता है और ये कानून से कैसे जुड़ा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम शी बॉक्स के कानून के बारे में बात करें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट यानी कि पॉश एक्ट 2013 में आया था और इसी के तहत शी बॉक्स को लाया गया था। और अगर हम बात करें कि इस कानून के अनुसार क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हर संस्था के अंदर शिकायत की जांच 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और इसके साथ ही ये भी जरूरी होता है कि महिला अपनी पहचान को गोपनीय रख सकती है। अगर वो शिकायत कराती भी है तो ऐसे में उनकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहती है। और कौन शिकायत कर सकता है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी है या फिर प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप काम कर रही हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आप इंटर्न हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं या फिर आप अस्थाई कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है, आपको सुरक्षित करने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि आप अपने घर के बाहर, आप अपने वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको शी बॉक्स की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। अगर हम शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में आपको बताएं तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है shebox.wcd.gov.in यानी कि shebox.wcd.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और आपकी जो भी शिकायत है आप दर्ज कराइए और यकीन मानिए 90 दिनों के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी जो भी शिकायत है उसके बारे में बिल्कुल काम किया जाएगा और साथ ही आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। आप जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं वहां पर आपसे आपका जो भी विवरण है वो पूछा जाएगा और आपके साथ जो घटना हुई है
उसका भी विवरण वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें छोटी सी छोटी जो डिटेल होती है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी परेशानी का समाधान मिले, तो जो भी वहाँ पर पूछा जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से लिख दीजिए, भले ही वो थोड़ा लंबा हो पर लिखिए ज़रूर। और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है, जिसे आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है वो अब कहाँ तक पहुँची है। दोस्तों, आखिर शी बॉक्स ज़रूरी क्यों है, ये तो बिल्कुल आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई महिलाएँ डर के कारण चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल होता है वो ये होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत नाटक कर रही है, इनके तो बहुत नखरे हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी जाती है कि महिलाएं ये सारी बातें सोचकर ही चुप रह जाती है और उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। जी नहीं, याद रखिए कि अगर आप बात करेंगे तो बात रुकेगी और आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षित करेंगे, क्योंकि आज जो आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना, तो वो कल दूसरों के साथ भी गलत करेगा और उसका मन लगातार बढ़ता जाएगा। और आज वो छोटी सी घटना को अंजाम दे रहा है, कल किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा, और कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपके साथ बहुत कम लोग खड़े हों, लेकिन आपका साथ देने के लिए शी बॉक्स है। और ध्यान रखिए कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। और लोग क्या कहेंगे ये हम क्यों सोचें, बस इतना सोचिए कि आप खुद को सुरक्षित रखिए। और जब आप अपनी जगह पर सही होती हैं तो उसका परिणाम भी सही ही आता है। ध्यान रखिए कि कोई भी चुप्पी समस्या को ख़त्म नहीं करती है, बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। इसलिए शी बॉक्स महिलाओं को ये भरोसा देता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों, कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है। दोस्तों, यौन उत्पीड़न के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं आ सकती है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने अनुचित टिप्पणी कर दी, मोबाइल पर आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है, या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है, या फिर आपको कोई बिना अनुमति के छूता भी है, तो ये भी यौन उत्पीड़न का मामला होता है। अगर आपको किसी ने ऐसी कोई बात कह दी, आपके शरीर पर कोई टिप्पणी कर दी, तो ये भी यौन उत्पीड़न ही है। और कई जगहों पर ये देखा जाता है कि प्रमोशन के बदले गलत प्रस्ताव दिए जाते हैं, प्रमोशन के बदले गलत फेवर मांगे जाते हैं, तो ये भी यौन उत्पीड़न का ही मामला है। और आप बहुत विश्वास के साथ बिना डरे शी बॉक्स पर इन बातों के कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डरा रहा है, आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है किसी चीज़ के लिए, तो भी आप शी बॉक्स पे

0: तो आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। और दोस्तों, जब तक हमारी नारी बोलेंगी नहीं ना, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जब नारी बोलती है तो सबसे जरूरी होता है कि हम नारी ही उनका साथ दें, डटकर उनका साथ दे, तभी अन्याय खत्म होगा। क्योंकि आज लगभग हर जगह पर जहां भी महिलाएं काम कर रही है, वहां कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके इरादे गलत होते हैं, जिसकी सोच गलत होती है। और कई बार ऐसे लोग मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको बिल्कुल असहज कर देता है। और कुछ पल के लिए नहीं, बल्कि वो बातें बहुत लंबे समय तक हमारे मन में रह जाती है और हम उस बारे में सोचते रहते हैं और खुद को समझाते रहते हैं कि मजाक ही तो था। जी नहीं, ये मजाक नहीं था। अगर आपको कोई बात असहज कर रही है तो आप साफ साफ कहिए कि मुझे ये बात नहीं पसंद है। अगर सामने वाला समझदार है और वो उसने जानबूझकर आपके साथ वो मजाक नहीं किया है तो वो समझ जाएगा कि हाँ, इससे नहीं पसंद है तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया है और आपको असहज महसूस कराने के लिए ही किया है तो वो नहीं रुकेगा और वो सिलसिला दोहराएगा। तो फिर आपको उसे रोकना होगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, जो भी हमारी महिला मित्र सुन रही हैं या फिर जो पुरुष भी सुन रहे हैं, क्या आपके कार्यस्थल पर कोई इंटरनल कमिटी है जहां पर ऐसे परेशानियों का समाधान किया जाता है? क्या आप जिस संस्था में काम करते हैं वहां पर पोश की, यानी कि POSH की ट्रेनिंग होती है? इस ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, यौन उत्पीड़न क्या है और क्या क्या व्यवहार अनुचित माना जाता है, मजाक और उत्पीड़न में क्या फर्क होता है। क्योंकि कई बार लोग मजाक और उत्पीड़न में फर्क भूल जाते हैं और कई बार लोग जानबूझकर ही ऐसी हरकतें करते हैं और उसे मजाक का नाम दे देते हैं। शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं ये भी पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और IC की भूमिका क्या है, यानी कि इंटरनल कमिटी की भूमिका क्या है, ये भी आपको पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और महिलाओं के बारे में तो हमने बात कर ली, उनके लिए शी बॉक्स है और महिलाएं खुद भी उनके लिए हैं, लेकिन पुरुषों का साथ भी बहुत जरूरी होता है। पुरुषों के लिए बस एक छोटा सा संदेश ये है कि ये जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। सम्मान देना दोस्तों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप दूसरी महिला को सम्मान देंगे तो आपके घर के जो लड़के हैं ना, वो भी यही सीखेंगे कि महिलाओं को कैसे सम्मान देना है। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर समाज बनाने के लिए आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाते हैं तो आपके घर की लड़कियां भी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ महिलाओं की नहीं, पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके सामने कोई दूसरा पुरुष ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि उचित नहीं है, तो आप उसे रोकिए। पता है, आपके ऐसा करने से जिस महिला के साथ ये हो रहा है उसके मन में आपके लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही वो और भी ज्यादा सशक्त महसूस करेंगी। उनके अंदर एक विश्वास आएगा कि कोई है जो उनका साथ देने के लिए है, एक समाज है जो बेहतर है। उन्हें ये विश्वास होगा कि समाज में आज भी कुछ बेहतर लोग मौजूद हैं। दोस्तों, तो जो जागरूक पुरुष हैं, जो एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, वो ज़रूर अपने आसपास गलत होते हुए देखते होंगे तो रोकते होंगे। और दोस्तों, शी बॉक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है और ये एक कदम है महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए। दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए, क्योंकि लेडीज फर्स्ट का मतलब ही है महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, सम्मान पहले और अधिकार बराबर की। तो दोस्तों, इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे, यानी कि आपकी होस्ट, आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप चुप नहीं रहेंगी अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो। और जो पुरुष भी सुन रहे हैं वो भी ये समझेंगे कि अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं अपने आप के लिए, अपने घर की औरतों के लिए, तो फिर आपको भी आवाज उठाना ही पड़ेगा। आवाज उठाइए, क्योंकि आपकी आवाज ही आपकी ताकत है। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। TB के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। TB रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी।

0: में भरे कीटाणु रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं अधिक फलन के लिए अमरूद के बागों में छत्र प्रबंधन कैसे करें और इसका महत्व क्या है। इस बारे में हमें विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ममता कुमारी। आप हैं SMS हॉर्टिकल्चर KVK सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
5: थैंक यू उमा। नमस्कार किसान भाइयों।
3: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि छत्र प्रबंधन है क्या?
5: अमरूद में मुख्यतः लोग अमरूद को, अभी तक हमारे किसान जो अमरूद है बागवानी फसल में घर के पिछवाड़े तक ही रखे थे, लेकिन अभी व्यवसायीकरण का समय है, अमरूद की लोग सघन बागवानी लगाते हैं। जो दूरी अनुशंसित की गई है उस दूरी से कम दूरी पर जब अमरूद को लगाया जाता है तो उसको सघन बागवानी कहते हैं। तो जब सघन बागवानी लगाते हैं तो उसमें सबसे पहला चीज है प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाना, फलन के उपयोग के लायक बनाना, ज्यादा से ज्यादा कलों को क्रिएट करना। तो जब बाग आम अमरूद के पौधों को लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है, शुरू के 2 साल तक उसमें प्लांट के स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, प्लांट की संरचना को बनाया जाता है, और जिसमें प्लांट को हम अपने पौधों को अपने अनुसार काटते छाटते हैं और इस प्रकार बनाते हैं कि उसका जो पेरीमीटर होता है, ऊपरी परिधि जो होती है वो 2 मीटर का हो जाए और जो उसका केंद्र वाला भाग हो वो खुला रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धूप उसमें जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण हो। तो जब अमरूद की सघन बागवानी लगाते हैं, कम दूरी पे लगाते हैं, और अगर उसकी कटाई छटाई ना की गई तो अमरूद का बगीचा नहीं जंगल हो जाएगा और हमेशा उसमें सूट जो होते हैं कल्ले ही आते रहेंगे, फलन कम होगा। तो इसके लिए समय समय पर उसकी कटाई छटाई अति आवश्यक।
3: मैम, हमने छत्र प्रबंधन के बारे में जान तो लिया, लेकिन हमें इस काम को कब करना चाहिए?
5: अमरूद में 3 फलन होता है, मृग बहार जो अभी हमारे यहाँ अमरूद के फलों में लगा हुआ है, मृग बहार इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा फलन होता है, और बहुत ज़्यादा फलन होने से जब मृग एक ग्रुप में रहता है तो कभी अकेले नहीं रहता है, बहुत सारा मृग एक साथ रहते हैं, मृग बहार। दूसरा जो फलन होता है वो अक्टूबर में होता है, जिसको अम्बी बहार कहा जाता है, और जब तीसरा फलन होता है इसका फरवरी मार्च में होता है, जिसे शरद बहार कहते हैं। तो आप गौर करेंगे कि जो अमरूद रहता है उसमें अमरूद में एक फूल लगता रहता है, हमेशा अमरूद में एक फूल दो फूल आपके पौधों के अनुसार लगा रहेगा, उसमें छोटा छोटा फल लगा रहता है, उसमें धीरे धीरे धीरे फूल आने की प्रक्रिया चलते रहती है और उसमें फल आने की प्रक्रिया चलते रहती है। तो अमरूद में कटाई छटाई जो मुख्यतः किया जाता है वो मई के अंत में पहला होता है, दूसरा होता है अक्टूबर में होता है, अक्टूबर नवंबर के प्रारंभ तक कर सकते हैं, तीसरा होता है जनवरी के अंत और फरवरी तक आप कर सकते हैं। आप कौन सा फलन लेना चाहते हैं उस पे मुख्यतः निर्भर करता है। अगर आप इसको फल तोड़ाई के बाद, हमारे यहाँ 3 फलन नहीं प्राप्त हो पाता है क्योंकि हम लोग बहुत ठंडे वाले प्रदेश में रहते हैं, जब इसमें नवंबर से लेकर के जनवरी तक काफ़ी ठंड पड़ती है तो उसमें पौधों का जो बढ़वार है वो धीमा हो जाता है और फलन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो उसमें हम लोग को बिहार में कंडीशन में ये 1 फलन नहीं तो 2 ही फलन हमारे किसान ले पाते हैं। इसके लिए कटाई छटाई फरवरी वाला कटाई छटाई मुख्यतः किया जाता है, और फरवरी के बाद आप अक्टूबर में काटते छाटते हैं। अगर इसको छत्रक बनाने के लिए हमारे किसानों को करना चाहिए तो मई में करना चाहिए और फिर अक्टूबर में करना चाहिए और अक्टूबर के बाद फिर जनवरी फरवरी में करना चाहिए।
3: और मैम कैसे करना चाहिए कटाई छटाई?
5: कटाई छटाई का एक खास प्रक्रिया है, जैसे आप अमरूद का पौधा लगाते हैं जून के महीने में, तो अक्टूबर में इसको पहला कटाई करना है। कटाई करने में पहले नीचे से 50 सेंटीमीटर एकदम तना को साफ सुथरा कर लेना है, कोई उस पर कल्ला नहीं रहेगा। दूसरा करना है कि ऊपर से चार तना को चयनित कर लेना है जो चारों दिशा में हो, या पांच तना को चयनित कर लेना है और पांच तना को फिर आधे भाग से काट देना है। और कटाई के उपरांत इसको सबसे पहले सारी पत्तियों को हटा देना चाहिए। पत्तियों को हटाने के बाद जो कटा भाग है उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को लगाना चाहिए, कटे भाग को उसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ, तना के नीचे की तरफ ला करके उसको लेप को लगा देना चाहिए ताकि किसी प्रकार का फफूंद का आक्रमण ना हो। और पत्तों को बगीचा में ही रहने देना चाहिए, पत्तों को बगीचा के बाहर नहीं करना चाहिए। और कटाई के उपरांत एक पटवन निश्चित कर देना चाहिए।
3: तो इन तरीकों से कटाई छटाई करनी चाहिए।
5: मुख्यतः कटाई छटाई अमरूद में इतनी क्यों आवश्यक है? क्योंकि अमरूद जो होता है नए कल्लों पर ही फलता है, नया कल्ला उसमें क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा फूल उसमें लगे और फल बन सके।
3: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने जो बातें बताई उम्मीद है कि उससे हमारे किसान भाई बहन या फिर जिनके भी घर में अमरूद के पेड़ हैं वो प्रबंधन करके अधिक फलन पा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार अनुमान है कि 27 मई से 31 मई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में अगले कुछ दिनों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा इन जिलों में 28 मई को लू चलने की यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है। 27 से 31 मई के दौरान अनुमान है कि अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें, साथ ही खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जिनके खेत में गर्मा मूंग और उड़द है, उन्हें बता दें, देर से बोई गई गर्मा मूंग और उड़द की फसलों में हेयरी कैटरपिलर का प्रकोप होता है, ऐसे में उनकी निगरानी करना जरूरी है। प्रकोप अगर दिखाई दे तो मिथाइल पैराथियन 50 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जिनके खेत में सब्जियां हैं, उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप होता है, इसलिए उनकी नियमित निगरानी की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियन 50 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को या फिर डाइमेथोएट 30 इसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं, उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि आम के बगानों में रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में या फिर लैम्बडा साहिलोथ्रीन की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। बगानों में पर्याप्त और निरंतर नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। जिनके बगानों में लीची है, उन्हें बता दें, लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसी वजह से किसान भाई बहन किसी भी प्रकार का छिड़काव शाही लीची में अभी नहीं करें। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं, उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और जो पशु दूध देते हैं उन्हें खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। वहीं गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए। साथ ही पशुओं को हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। तो आज हम भिंडी की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सी जानकारी हमें मिलने वाली है डॉक्टर शिरीन अख्तर से, जो है सब्जी विज्ञान विभाग से। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद उमा। भिंडी एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है। भिंडी जो है टमाटर, बैंगन, मिर्च आदि के जैसे वर्ष भर हो सकती है। वर्ष में हम लोग इसको दो बार तो आसानी से उगा सकते हैं, कभी कभार तीन बार भी उगा सकते हैं। और भिंडी हम लोग देखते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, इसका भरपूर मात्रा में ये सब पाया जाता है।

0: पूरे विश्व में जो है भिंडी का सबसे बड़ा बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, और भिंडी जो है पूरे साल में दो बार से लेके तीन बार भी हम उगा सकते हैं, गर्मियों में भी उगा सकते हैं, तथा जो मुख्य फसल भिंडी का है वो खरीफ मौसम का है, यानी कि बरसाती जो फसल है वही भिंडी का मुख्य फसल है। और इसमें जो है भिंडी को उगाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे उन्नत किस्म है, जैसे IIVR वाराणसी से डेवलप किया गया जो किस्म है, काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति, इसके साथ साथ में काशी सहिष्णु, काशी वर्धन, काशी सातधारी, काशी पराक्रम, काशी उत्कर्ष, काशी चमन, काशी लीला, ये जो है ये सारे जो है हरे रंग में, जो हमारा भिंडी है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हरे रंग में मिलता है, तो ये सारे किस्म हरे रंग की है। साथ साथ में एक नई किस्म काशी लालिमा भी जो है वो लाल रंग में उन्नत किस्म तैयार किया गया है IIVR द्वारा। ये इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे संकर किस्म हैं, जो कि काशी वैरव है, काशी सृष्टि, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, सोनाक्षी, शक्ति, ये सारे महत्वपूर्ण संकर किस्म हैं।
1: मैम, बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें?
0: खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सब्जी के फलन के लिए। तो सर्वप्रथम भिंडी के लिए खेत की प्रारंभिक जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, और उसके बाद में दो से तीन जुताई कल्टीवेटर से कर लेते हैं, और दूसरी जुताई जिस समय किया जाता है उस समय पे जो है 150 से 200 क्विंटल अच्छे से सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट जो है खेत में अच्छे से मिलाया जाता है, और अंतिम जुताई के बाद में जो है पाटा चलाकर खेत को अच्छे से समतल बनाया जाता है।
1: बुआई का तरीका क्या है और बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
0: जो गर्मा भिंडी है जिसको कि हम लोग फरवरी के महीने में सामान्यतः लगाते हैं, उसके लिए बीज का दर लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए ज़रूरी होता है। और अभी जो बरसाती मौसम के जो भिंडी है, जो खरीफ भिंडी अभी लगने वाली है, उसके लिए जो है 8

सकते हैं। और जो गर्मा भिंडी है उस भिंडी को जो है हम लोग लगभग लगभग फरवरी महीना भर लगाते हैं। और जो हम लोग बीज जब लगाएंगे तो बीज से लगाने के पहले जो है बीज को उपचार कर लेना चाहिए और 2 से 3 ग्राम का कैप्टान या फिर 1 ग्राम बविस्टिन दवा जो है प्रति किलोग्राम बीज के दर से हम लोग अगर इसका उपचार कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। साथ साथ में जो भिंडी जो हमारा फसल है ये सीधी बुवाई करते हैं हम खेत में, तो बुवाई के पहले बीज को 24 घंटा के लिए हम पानी में भिगो कर रखते हैं और बीज जो है फूल जाते हैं, तो उस फूले हुए बीज को हम खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने से पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि खेत में हल्की हम सिंचाई देके जब नमी रहेगा उसी खेत में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, तो इसको कतारों में लगाते हैं। जो खरीफ की भिंडी फसल है इसको कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी बना के हम लोग कतार बनाते हैं और कतारों में जो है 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं और वैसे करके भिंडी लगाते हैं। और अगर यही गर्मा भिंडी का फसल होता है तो उस समय पे हम लोग लगभग 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं और भिंडी के जो दोनों पौधा है उस पौध के बीच का दूरी उस समय पे गर्मा के समय पे 30 सेंटीमीटर लगता रखते हैं। खास करके गर्मा के समय पे हम देखते हैं अंकुरण थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए एक स्थान पर जो है 2 से 3 बीज की बुवाई करते हैं, परंतु संकर किस्मों का बीज क्योंकि महंगा होता है इसीलिए एक स्थान पर एक ही बीज की बुवाई किया जाता है।

फॉस्फेट एवं 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी आधी मात्रा तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय पे खेत पे मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन है उसका जो आधा शेष रहता है वो पौध जमने के बाद में 25 से 30 दिन पे, और दूसरी बार जो है बाकी आधा शेष जो है 50 से 55 दिनों के बाद में पौध में जड़ के पास में टॉप ड्रेसिंग के तहत से हम लोग उसको डालते हैं। इसके अलावा में जो है भिंडी में सूक्ष्म पोषक तत्व का भी महत्व है, और इसमें जो है कैल्शियम और बोरोन का अगर हम लोग पर्णीय छिड़काव करते हैं तो इससे उपज का क्षमता बढ़ता है, और पादप वृद्धि नियामक का भी हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं, और इसमें जो है जिबरेलिक एसिड और ट्राई कैंटनॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे जो है अधिक उपज प्राप्त हो सकता है।

0: जो फसल जब 40 से 45 दिन तक रहता है उस समय तक अगर हम लोग खरपतवार से अच्छे से फसल को बचा लेते हैं तब जो है उपज इसमें अच्छा मिलता है।
1: मैम अब बात करते हैं फल की तुड़ाई की, तो तुड़ाई कैसे करनी चाहिए और उपज कितनी होती है?
0: जब भिंडी का फल लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और फल जो है कोमल रहता है और हल्के हरे रंग से या फिर गहरे हरे रंग, जैसे उसका कलर जो रंग है वैरायटी वाइज जैसे रंग है उस रंग का होता है, उस समय पे फल की तुड़ाई किया जाता है। और ज़्यादा दिन अगर हम फसल को खेत में छोड़ देते हैं तो उसमें फाइबर ज़्यादा हो जाता है, तो उसको

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही तो लाभ कई। दोस्तों इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक हमने बहुत सारी बातें की है और बहुत सारी बीमारियों के बारे में आपको बताया है पर आज हम बातें करने वाले हैं टीबी के बारे में। इसके पीछे खास वजह यही है कि आज पूरे विश्व में वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है और वर्ल्ड टीबी डे को मनाने की शुरुआत क्यों की गई और इसके बारे में बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं और टीबी कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है, इसे कैसे बचा जा सकता है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, इन सब के बारे में आपको आज बताने वाले हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मिथिलेश कुमार झा सर, आप हैं STLS। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और कब इस वर्ल्ड टीबी डे मनाने की शुरुआत हुई थी?
1: 1882 में रॉबर्ट कोच वैज्ञानिक के द्वारा जो है सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की गई। तब से लेकर के एक हम लोग सेलिब्रेशन के तौर पर 24 मार्च को विश्व यक्ष्मा दिवस के रूप में मनाते हैं, जहाँ पर हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुए, अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुए, SWC सेंटर हुआ, सदर अस्पताल में जो डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर होते हैं वहाँ पर हम लोग जो है सो अनेक प्रकार की रैली, झांकियाँ और अनेक तरह के कार्यक्रम को चला करके या लोगों को बताते हैं कि टीबी क्या है।
0: सर इस साल वर्ल्ड टीबी डे का थीम क्या है?
1: इस बार का स्लोगन है यस वी कैन इन टीवी, लीड बाय भारत, पावर्ड बाय पीपुल ऑफ भारत। यह संदेश स्पष्ट करता है कि टीबी के खिलाफ जंग केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि यह जन आंदोलन बनना चाहिए, जिससे कि जो भी NGO हैं, जो भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सबकी भागीदारी है कि इस बीमारी को समाप्त किया जाए।
0: बिल्कुल सर, लेकिन जब हम बीमारी को समाप्त करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उस बीमारी को समझना चाहिए कि वो बीमारी है क्या। तो सबसे पहले बताइए कि टीबी क्या है और ये कैसे फैलती है?
1: टीबी बीमारी एक संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे से फैलती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी कि बलगम को एक जगह से दूसरे जगह फेंकने पर जो है सो आदमी को इन्फेक्शन हो सकता है।
0: और अभी हमारे क्षेत्र में टीबी की वर्तमान स्थिति क्या है?
1: अभी हमारे जो क्षेत्र में है लगभग में प्रत्येक PSC में लगभग 100 जांच होती है, जिसमें कि 5 से 7 टीबी पेशेंट जो है स्पुटम पॉजिटिव जो है सो मिलता है, जिसके कि फेफड़े की टीबी होती है और कुछ अन्य है जो कि लिम्फ नोड्स हुए शरीर के। सबसे बड़ा चीज़ है कि शरीर टीबी बीमारी किसी शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर फेफड़े की जो टीबी होती है उसको बहुत अच्छे से केयर करके जो है सो हम लोग दवा चलाते हैं।
0: मतलब टीबी जिसे हम समझते हैं कि सिर्फ फेफड़ों में होता है ये सही नहीं है, वो किसी भी अंग में हो सकता है।
1: नहीं, 70% जो है फेफड़े की टीबी होती है, 30% जो है शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, या लिम्फ नोड्स बन के या एब्डोमिनल कॉक्स हो सकता है, यूट्रस में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जेनेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है।
0: अच्छा, तो सर टीबी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और कई बार लक्षण बहुत सामान्य होते हैं, शायद हम उन्हें नज़रअंदाज भी कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में शुरुआती लक्षण को कैसे पहचानना चाहिए?
1: 2 सप्ताह से ऊपर खांसी हो रहा हो, भूख नहीं लग रहा है, हेमोपोटाइसिस यानी कि बलगम के साथ में खून आ रहा हो, शाम के समय में जो है सो बुखार लग रहा हो, ऐसे परिस्थितियाँ में जो है सो हमें नज़दीक के किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जांच एवं दवा की सारी व्यवस्था उपलब्ध है।
0: सर अभी आपने जांच की बात की तो किसी भी व्यक्ति को जांच कब करवानी चाहिए? उसे क्या, जैसे कि आपने बताया कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो और भी कोई ऐसे लक्षण जो समझ आए, तो कई बार हमें लगता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, मौसम की वजह से होगा, लेकिन और क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिसे हम समझ कर जाँच करवाने जाते?
1: अभी हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के नीचे स्तर से लेकर के मैंने JLMCS तक में जो व्यवस्थाएं हैं कि कम से कम जो है सो खांसी हो जाए, बुखार हो रहा हो, भूख नहीं लगे, तो लगभग सारे जो है सो डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पर जरूर लिख देते हैं स्पुटम 4 APऔर एक्सरे लिखने की व्यवस्था सब जगह उपलब्ध है।
0: और जांच के बाद अगर किसी को टीबी निकल जाता है तो उसके बाद वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब शायद कोई रास्ता नहीं है, तो क्या इसका इलाज है और क्या टीबी पूरी तरीके से ठीक हो सकता है और

0: अगर टीबी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है तो कितना समय लगता है इलाज में?
1: टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, मात्र दवा प्रत्येक दिन खाना है, समय पर खाना है, और यह दवा 6 महीना की इलाज है। 6 महीना तक जो है सो निरंतर कुछ काम करें, कुछ काम करें या न करें, लेकिन दवाइयाँ जरूर खाएं तो बीमारी समाप्त हो सकती है।
0: सर, कई बार होता है कि हम दवाई खाना शुरू करते हैं और हमें सुधार महसूस होने लगता है, 6 महीने पूरे भी नहीं हुए, हम महसूस करने लगते हैं कि हम स्वस्थ हो गए, और ऐसे में मरीज बीच में दवा छोड़ देता है, तो अगर ऐसा वो करता है तो इससे क्या खतरा हो सकता है?
1: जो व्यक्ति बीच में दवाइयाँ छोड़ते हैं उसको जो ऐसो MDR होने की संभावना होती है, कि जो भी हम दवाइयाँ रिफाम्पिसिन, इथोम्बुटोल, पैराजिनामाइड या किसी जो दवाइयाँ खिला रहे हैं वो रजिस्ट जो है सो करना करेगा, तो वह जो है सो पेशेंट को MDR होने की संभावना होती है। इसीलिए हमें दवाइयाँ नहीं छोड़नी है, हमें 6 महीना तक दवाइयाँ पूरी तरह खानी है। उसके लिए सरकार या जो भी जन भागीदारी जिनकी है वो सारे लोग लगे हुए हैं कि हमें हर रोगी के लिए सुपरविजन की व्यवस्था है, पर्यवेक्षण की व्यवस्था है, उसके घर तक की जाने की व्यवस्था है, सब लोग जाते हैं और जाने के बाद उसे जो है सो मरीज को ठीक करने का प्रयास करते हैं।
0: सर, ये भी मैंने सुना है कि अगर दवाई छोड़ दे तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है, तो ये अगर किसी को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गया तो उसके बाद क्या किया जा सकता है?
1: उसके लिए भी सरकार ने सारी व्यवस्था करके किया हुआ है कि मायागंज है, JLMCH जो है, JLMCH में भी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, वहां पर जो है सो TRUNET CVNET की जांच की व्यवस्था है, और वहां पर जो है जांच किया जाता है, जांच करने के बाद में उसमें भी 9 महीना की जो दवाइयां हैं वो सरकार के द्वारा जो है सो उपलब्ध हैं, जिसमें बहुत सारी दवाइयां हैं।
0: तो मतलब दवाएं तो मुफ्त हैं ही, कई बार लोग इसलिए भी जांच नहीं कराते कि पैसे लग जाएंगे।
1: जो भी जैसे 6 महीना की दवाइयाँ देना, उसका जांच कराना, MDR है या नहीं है, दवा रजिस्टर कर रहा है या नहीं कर रहा है, सारी दवाइयाँ सरकार में उपलब्ध हैं, सारी जांच की व्यवस्थाएं सरकार में उपलब्ध हैं।
0: सर, MDR के बारे में आप बोल रहे हैं, MDR क्या है?
1: जो भी दवाइयाँ हम लोग जो खाते हैं, जिसमें कि 4 प्रकार की दवाइयाँ चलती हैं, रिफाम्पिसिन, इथोम्बुटोल, पैराजिनामाइड, जो दवाइयाँ चलती हैं वो क्या होता है कि हमारे शरीर पर जो है रजिस्ट कर जाती है। रजिस्ट का मतलब होता है वो काम करना बंद कर देता है, इसीलिए जो है हम लोग जो है सो उसे सीविनेट करवाते हैं, उसके बाद रजिस्ट है एसोनियाजाइड या रिफाम्पिसिन, यदि रजिस्ट होता है कि उसके प्रतिरोधक क्षमता उसके शरीर पर कोई काम नहीं कर रही है, तब हम लोग जो है सो उसे MDR के लिए जो है सो प्रिस्क्राइब करते हैं।
0: क्या लक्षण होते हैं इस बारे में जान लिया, इलाज किस तरीके से है ये जान लिया, लेकिन सबसे बेहतर होता है कि हम किसी भी बीमारी से खुद को बचा कर रखें, तो टीबी से बचाव के लिए आम लोग क्या सावधानियां बरत सकते हैं?
1: जो भी टीबी मरीज हैं उसका जांच सभी समय पर होना, उसके परिवार के जितनी फैमिली मेंबर हैं उसका भी जांच करवा लेना है, जो भी स्पुटम इधर उधर खखार जो फेंकते हैं वो इधर उधर नहीं फेंकना है, किसी एक जाकर के घर के कोने के किसी सिरे में फेंकना है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि यदि किसी को किसी मरीज घर में किसी मरीज को यदि टीबी हो गया है तो उसके सारे परिवार का उसका जो है सो जाँच हो जाना चाहिए। जांच के लिए जो है सो फिर वही PSC में आना है, उसको जो है सो सारी जांच करानी है।
0: जांच में टीबी निकल गया, मान लिया कि घर वाले भी साथ दे रहे हैं, लेकिन कई बार हम बाहर बताने से डरते हैं कि लोग भेदभाव करने लग, क्या ये सही है कि टीबी मरीज के साथ रहने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, या फिर उनके साथ उठने बैठने से भी किसी को टीबी हो सकता है, क्या ये सही है?
1: अब यह भ्रामक बिल्कुल गलत है कि टीबी मरीज के साथ में हम रहेंगे तो हमें टीबी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये सब नहीं है, मात्र है कि उस टीबी मरीज को हमें 6 महीना तक सब लोग मिल करके दवा खिलानी है, जितना जल्दी हम लोग दवा खिलाएंगे उतना जल्दी जो है सो रोगी ठीक होगा, और ख़ास करके ये रखना है कि जो भी टीबी के मरीज के घर वाले हैं उसका जाँच जो है सो सबसे बड़ा चीज़ ज़रूरी चीज़ है, जो कि निःशुल्क है।
0: तो एक मरीज से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक टीबी फैल सकता है?
1: टीबी फैल सकता है, कम से कम जो है सो 10 आदमी को जो है सो एक मरीज से फैल सकता है।
0: तो मतलब किस तरीके से, मतलब उसका जूठा हमने खा लिया?
1: जूठा कुछ नहीं है, उसके जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं, जो बलगम है वो जहाँ तहाँ यदि फेंक देगा, तो फेंकने के बाद में शुरुआती दौर में 1-2 महीना बहुत जो है सो हम लोग हमारे सारे फैमिली को प्रिकॉशन के साथ में रखना है कि वो

0: योजनाएं में मिलता है। कुछ पोषण के लिए जो है सो खाना पीने की भी सामग्री जो है सो लोग देते हैं और वह रोगी को जो है सो दिया जाता है।
1: सर अभी आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि टीबी कई प्रकार के होता है और शरीर के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है, तो टीबी कितने प्रकार का होता है?
0: टीबी प्रायः शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, पाल और नाखून छोड़ करके कहीं भी हो सकता है। टीबी मूलतः हमारे समाज में अभी दो प्रकार का है, एक पुलमोनरी है एक एक्स्ट्रा पुलमोनरी है। जो कि एक्स्ट्रा पुलमोनरी जो है सो क्या होता है कि ग्लैंड टीबी हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट अटैक हो गया, यूट्रस में भी टीबी हो सकता है, और ग्लैंड टीबी हो गया, एब्डोमिनल कॉक्स हो गया, फिर बोन टीबी हो गया, बहुत सारी टीबियाँ हैं। लेकिन प्रायः 70% जो है सो हमारे फेफड़े की टीबी होती है, 30% जो है सो ये एक्स्ट्रा पुलमोनरी टीबी।

0: के अलावा हमने निक्षय मित्र के बारे में भी सुना है।
1: जो भी रोगी किसी को दान कर सकते हैं, सबसे बड़ा दान है या कि अब 5 रोगी, 10 रोगी, 1 रोगी, 2 रोगी, जिस जो है वह जो है 100 रोगी को जो है सो दान के रूप में जो है सो आप यदि 500 रुपया का कम से कम जो है सो से अनाज देना है और 6 महीना तक वह अनाज देना है, यह सरकार का जो है सो स्कीम है।
0: यानी कि अगर हम चाहें तो किसी टीवी मरीज की मदद कर सकते हैं अगर हमारी नज़र में कोई है जो सक्षम नहीं है।
1: हाँ, सरकार को यदि आपकी इच्छा है कि हम टीवी मरीज को जो है सो गोद लिए हैं तो उसको गोद लेने के बाद में उसे कम से कम 500 रुपया की जो है सो राशि का चावल का दाल गेहूँ सोयाबीन जो भी है या चना है इस टाइप का इस तरह

0: और आज सर विश्व क्षय रोग दिवस है, यानी कि वर्ल्ड टीवी डे है, तो इस पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि
1: संदेश विश्व यक्ष्मा दिवस के अंदर दिवस पर हम लोग यह संदेश देना चाह रहे हैं, कुछ नहीं करना है हम लोगों को, मात्र जो भी रोगी हैं, कहीं भी हैं, वह कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जा करके, और कुछ नहीं कहना है आपको, पुर्जा जैसे आप पुर्जा कटाते हैं, कटाने के बाद में वो उसके आप मात्र कह देंगे कि 2 सप्ताह से ऊपर खांसी है, उसके बाद आपको एक अतिथि के रूप में जो है सो आपका सम्मान के साथ में जो है आपका जांच करा देंगे, आपको दवाइयां दे देंगे, आपकी सारी देखरेख जो है सरकार के जो सहकर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो आपकी मदद करेंगे।
0: सर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम तो चलाया ही जा रहा है, टीबी मुक्त भारत भी चलाया जा रहा है, तो एक और योजना है या कार्यक्रम कहें कि टीबी मुक्त पंचायत, ये क्या है?
1: टीबी मुक्त पंचायत है, इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि क्राइटेरिया के साथ में टीबी मुक्त पंचायत है, जो कि उसका जांच दर सालाना क्या है, उसको मैंने ये पोषण योजना का क्या हालत है, उसका जो है सो MDR की क्या स्थिति है, उसका जो है कॉलम है उसको पूरा करके, यदि जो है वह उसमें जांच जो है सो कम से कम 30 जांच 1000 की आबादी पर करनी है, और यदि उतना हो जाता है तो उस पंचायत को जो है सो पंचायत मुक्त माना जाएगा।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी सारी बातें आपने बताई। दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी लगा होगा, और ध्यान रखें कि अगर किसी को भी टीबी के लक्षण दिखें तो तुरंत जाकर जांच कराइए, और अगर किसी को टीबी हो गया है तो ऐसे में उनसे भेदभाव नहीं करना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ परहेज करना है, और ख़ास तौर से ध्यान ये रखना है कि आप उस टीबी मरीज़ की मदद करें, जितनी मदद हो सके आप उनकी मदद करें, उनकी दवाइयों का ध्यान रखें, उनके पोषण का ध्यान रखें, क्योंकि टीबी को अगर ठीक करना है तो ज़रूरी है कि वो दवाई सही समय पर खाएं, पूरी दवाई जो पूरी दवाई का कोर्स है 6 महीने का वो करें, साथ ही पौष्टिक खाना भी खाएं, तभी कोई भी टीबी मरीज ठीक हो सकता है। और कहते हैं कि इलाज से बेहतर है बचाव, तो कोशिश करें कि आप इस बीमारी से बचे रहें कुछ सावधानियों को अपनाकर। आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी? हाँ। इसको तो 1-2 महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को 1-2 महीने हो गए हैं, और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश।

0: से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम बात करने वाले हैं तिल की फसल में कीट प्रबंधन के बारे में और इस बारे में हमारे साथ आज बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ऋचा कुमारी। मैम आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं कीट विज्ञान विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा जी।
1: तिल की फसल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और तिल के फसल में कौन कौन से प्रमुख कीट लगते हैं इसके बारे में आप पहले बताइए।
2: जी नमस्कार किसान बंधु। तो आज जो तिल की जो बात हो रही है उनके प्रमुख कीट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जो तिल की खेती होती है वो कम लागत में अधिक लाभ देने वाली होती है। तो इसमें क्या होता है कि कई कीट व्याधियां जो है वो गंभीर रूप से इनको प्रभावित भी करते हैं, इसीलिए इनकी जो पहचान है वो बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहले मैं पत्ती मोड़क की बात करूं जिनको कि पत्तियां एवं फली छेदक भी कहते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम एंटीगैस्ट्रा कैटालुनालिस है। और उसके बाद एक गौल मक्खी आती है जिसको तिलकई मक्खी भी कहेंगे। फिर तिल का लीफ हॉपर या जो जिसे हम पत्ती फुदका कहते हैं, इसके अलावा माहू और लाही, फिर सफ़ेद मक्खी, बिहार हेरी कैटल पीरल जिसको कि हम रोमिल कीट भी कहते हैं, एवं हॉक मॉथ, ये सारी कीटें फसल के अलग अलग अवस्था में आती है।
1: तो मैम अभी आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया तो इन कीटों की पहचान कैसे करेंगे?
2: देखिए अगर हम पत्ती मोड़क की बात करें तो इसे हम तिल का सबसे घातक कीट कह सकते हैं। तो इसके लिए इसकी पहचान तो बहुत ही आवश्यक हो जाती है। इसका जो सुंडी है जिसको कि हम पिल्लू भी कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा है, तो उसमें देखेंगे तो इल्ली का जो रंग होता है वो हरे पीले से लेकर गहरे हरे रंग तक का होता है और इसके शरीर पे छोटे काले धब्बे पाए जाते हैं। अगर हम इसके वयस्क की बात करें तो यह पतंगा जो है ये बहुत छोटा होता है और इनके जो आगे के पंख होते हैं वो भूरे रंग के एवं जो पिछले पंख हैं वो हल्के रंग के होते हैं, इससे इनकी पहचान होती है। एक और बात इसमें बहुत प्रमुख है, इसके जो इल्ली हैं वो रेशमी धागे बनाते हैं जिनका उपयोग वो स्वयं को और अपने भोजन स्रोत को ढकने के लिए करते हैं। गौल मक्खी की अगर मैं बात करूं तो इसके कीट बिल्कुल मच्छर जैसे होते हैं और इनके जो शिशु हैं उनकी शिशु अवस्था कलियों के भीतर रहकर भोजन करते हैं जिससे कि क्या होती है एक गांठ सी बन जाती है। तिल का पत्ती फुदका जो है वो एक कीट होता है जो बहुत ही छोटे एवं हरे पीले रंग का होता है। ये पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये फाइलोडी रोग के वाहक होते हैं जो तिल की सबसे गंभीर रोगों में से एक है। फिर लाही की बात करूं, ये काले या हरे रंग का होता है, बहुत ही छोटा होता है और ये काफी नरम होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो पत्तों पौधों की जो कोमल सतह होती है उसमें झुंड के रूप में पाए जाते हैं। सफेद मक्खी जो है वो बेमेसिया टैबेकी भी हम इसे कहते हैं, इनके जो पंख हैं वो काफी सफेद होते हैं और ये भी पत्तियों के निचली सतह पर पाए जाते हैं। सफेद मक्खी कई वायरस रोग का वाहक होता है। तो पत्ती फुदका और ये सफेद मक्खी ये क्या है कि रोगों का वाहक हम इसको मान सकते हैं। इसके अलावा इसमें छेदक हैं और फिर एक रेड स्पाइडर माइट के नाम से एक बहुत ही सूक्ष्म कीट जो है वो भी पाए जाते हैं जो लाल रंग के होते हैं। इस तरह से हम इन कीटों की पहचान कर सकते हैं।
1: मैम कीटों की पहचान तो हो गई, तो अलग अलग तरह के कीट अलग अलग तरीके से क्षति पहुंचाते होंगे फसलों को, तो फसलों में किस तरीके से क्षति पहुंचे हैं उनका लक्षण क्या होता है?
2: जी ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम जब इसके लक्षण को देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसमें क्षति हुई है और फिर उसी के अनुसार हम इसके रोकथाम कर पाएंगे। तो मैं किसान बंधु को बता दूं कि अगर आप सही समय पर रोकथाम करें तो उसके लिए ये लक्षण बहुत ही आवश्यक हैं पहचानने। सबसे पहले मैं पत्ती मोड़क की बात करूंगी जिसमें जो इसके पिल्लू हैं वो पौधों की कुछ ऊपरी पत्तियों को एक साथ जाल बनाकर जोड़ लेते हैं और फिर अंदर से उन पत्तियों को ये खाते हैं। उससे क्या होता है कि जो पौधे की प्रारंभिक अवस्था में ही उसका बढ़वाड़ बंद हो जाता है। फूल आने के बाद जो पिल्लू हैं वो फूलों को खाती हैं और फिर बाद में ये फलियों में क्या करते हैं छेद कर देते हैं और फिर जो दाना होता है उसको नष्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है बीज की पैदावार में काफ़ी कमी आ जाती है। फिर हम गौल मक्खी की बात करेंगे, इसकी जो लक्षण है नुकसान के, तो इसमें क्या होता है, इसमें कलियां जो होती है वो फूल में परिवर्तित ही नहीं हो पाती है और ये सूखकर गिर जाती है। इससे पौधों में फली बनने की जो क्षमता है वो अत्यधिक प्रभावित हो जाती है और इससे क्या होता है, वो कम बनती है फलियां, जिसके फलस्वरूप तिल की उपज काफ़ी प्रभावित होती है। तिल के पत्ती फुदका की अगर मैं बात करूं तो इनकी वजह से क्या होता है कि पौधे पीले पड़ जाते हैं और उनकी जो उनका फिर से बढ़ना रुक जाता है। फाइलोडी की स्थिति में फूल हरे पत्तेनुमा संरचना में बदल जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप फली बनना बंद हो जाता है। लाही है और माहू भी हम इसे कहते हैं, तो ये पौधों के रस चूसकर उसे बिल्कुल कमजोर बना देते हैं एवं इसमें क्या होता है, सहज जैसा चिपचिपे अस्त्राव से काले रंग की फफूंदी विकसित हो जाती है। जो लाल माइट है उसके आक्रमण के कारण पत्तियां बिल्कुल पीली पड़ जाती है और सिकुड़ जाती है और अंततः वो सूखकर गिर जाती है। बिहार हेरी कैटरपिलर ये बहुत ही प्रमुख है, इसमें क्या होता है पत्तियां पूरी तरह से ये चट कर जाते हैं और इससे क्या होता है कि बिल्कुल कंकाल जैसा संरचना इसमें बन जाता है पौधों में।
1: तो मैम जो भी कीटों से क्षति होंगे उनके लक्षण को हम पहचान लेंगे, लेकिन उसके बाद कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाए?
2: जी ये बहुत अच्छा सवाल है। तिल की जो फसल है उसमें कीट प्रबंधन केवल कीटनाशकों के प्रयोग से ही नहीं होता है बल्कि विभिन्न तकनीकों के संयुक्त प्रयोग से होता है। इसके तहत हम चार विधि अपनाते हैं जिसमें सबसे पहले व्यवहारिक नियंत्रण आता है। इसमें हम क्या करते क्या है कि सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि प्रतिरोधी किस्म का हमें क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए और इसके अलावा जो फसल चक्र है उन्हें किसान बंधु जरूर से जरूर अपनाएं। समय पर बुवाई भी बहुत जरूरी है ताकि कीटों का जो चरम प्रकोप है उसे रोका जा सके। लंबे समय तक खेतों में पानी का ठहराव ना होने दें, ये गर्मा तिल के लिए तो बहुत ही नुकसानदेह होता है जो अभी चल रहा है। इसके बाद मैं यांत्रिक विधि की बात करूंगी। इसमें हम करते क्या है कि जो भी संक्रमित पत्तियां हैं, फलियां हैं या फिर कलियां हैं उन्हें तोड़कर हम नष्ट कर देते हैं और जो खेतों में, इसके अलावा हमें निराई गुड़ाई ये भी करनी चाहिए। इसके अलावा हम एक सबसे जरूरी बात मैं बताऊंगी, पक्षी आश्रय ये खेतों में जरूर से जरूर प्रयोग करें। इससे होता क्या है कि जो भी पक्षी हैं वो पिल्लुओं को खा लेते हैं तो आपका इससे भी बचाव हो जाएगा। इसके अलावा पीले चिपचिपे फंदे का प्रयोग अगर किसान मित्र करें तो उससे सफ़ेद मक्खी एवं माहू को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद जैविक नियंत्रण आता है। इसमें है क्या, ये परभक्षी कीट की बात करता है। परभक्षी कीट में टिकुलिया है, मकड़ी है, डाकू मक्खी है, ग्रीन लेसविंग है, ये सारी जो भी मैं कीट का नाम बता रही हूँ वो मित्र कीट हैं, इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा नीम तेल का हम प्रयोग कर सकते हैं, 5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से इनका भी छिड़काव किया जा सकता है और नीम बीज खाली अर्घ 5% इनका भी छिड़काव अगर हम करें तो वो भी उपयोगी माना जाएगा। सबसे अंत में हम ब्रह्मास्त्र की बात करेंगे जिसको रासायनिक विधि भी कहेंगे, ये तुरंत नहीं करना चाहिए, इन सब के बाद ही हम प्रयोग करेंगे इनका। तो ये हम दरअसल तब करते हैं जब कीट आर्थिक क्षति स्तर पर पहुंच जाता है, तो उस समय किसान बंधु स्पाइनोसेट 45% 80 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से, दूसरा जो कीटनाशक है वो है फ्लुबेंडामाइट 480% 80 0.3 मिलीलीटर पर लीटर की दर से एवं इसके अलावा क्लोरेन ट्रेनली प्रॉल 18.5% 80 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से इन सब का इस्तेमाल वो कर सकते हैं और इनसे क्या होता है, इन कीटों का बचाव संभव हो जाता है। इसके अलावा किसान बंधु जो निगरानी की मैं बात करूंगी, तो सर्वेक्षण करते रहें, निगरानी करते रहें अपने खेतों की समय पे समय, ताकि इन सब कीटों से आप रोकथाम आराम से कर सकते हैं और पैदावार भी फिर उससे अच्छी आएगी।
1: जी मैम, अगर निगरानी करेंगे तो कीटों के बारे में वो पहले पता लगा पाएंगे और जी उनका प्रबंधन आसान हो जाएगा। मैम आपने बहुत उपयोगी बातें बताई और उम्मीद है कि हमारी आज की ये वार्ता उन किसान भाई बहनों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी जिनके खेतों में अभी तिल लगे हुए हैं और अगर वो कीट प्रबंधन करेंगे तो जैसे कि आपने बताया बहुत आय में वृद्धि होगी उनकी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी।
1: किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, आप अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें खूब प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: आप जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
5: तन लागे बुंदिया,
6: हाँ थोड़ा जान के बढ़े।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार अनुमान है कि 27 मई से 31 मई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में अगले कुछ दिनों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, इन जिलों में 28 मई को लू चलने की यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है। 27 से 31 मई के दौरान अनुमान है कि अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें, साथ ही खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जिनके खेत में गर्मा मूंग और उड़द है, उन्हें बता दें, देर से बोई गई गर्मा मूंग और उड़द की फसलों में हेयरी कैटरपिलर का प्रकोप होता है, ऐसे में उनकी निगरानी करना जरूरी है। प्रकोप अगर दिखाई दे तो मिथाइल पैराथियन 50 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जिनके खेत में सब्जियां हैं, उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप होता है, इसलिए उनकी नियमित निगरानी की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियन 50 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को या फिर डाइमेथोएट 30 इसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं, उन्हें बता दें, आम के बागानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि आम के बागानों में रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में या फिर लैम्बडा साहिल लोथ्रीन की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। बागानों में पर्याप्त और निरंतर नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। जिनके बागानों में लीची है, उन्हें बता दें, लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसी वजह से किसान भाई बहन किसी भी प्रकार का छिड़काव शाही लीची में अभी नहीं करें। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्बडा साहिल लोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं, उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और जो पशु दूध देते हैं उन्हें खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। वहीं गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए। साथ ही पशुओं को हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

नमस्कार, कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब होता है प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, और इस बारे में जागरूकता होना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में मातृ मृत्यु का सबसे बड़ा कारण जो है वो PPH है, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज है, जिसे कि हम प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव, जिसे कि हम आम भाषा में कहते हैं प्रसव के बाद बहुत अधिक खून का बहना। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मातृ मृत्यु का, यानी कि गर्भवती महिलाओं के मौत का सबसे बड़ा कारणों में से एक PPH है। ये माँ के जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, लेकिन अगर समय पर पहचान की जाए और सही से इलाज हो तो माँ की जान बचाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि PPH होता क्या है। अगर आम भाषा में कहें तो प्रसव के बाद ज्यादा खून बहना, और मेडिकल भाषा में कहें तो पोस्टपार्टम हेमरेज। ये डिलीवरी के तुरंत बाद या कुछ दिन बाद भी हो सकता है, और इसीलिए कहते हैं कि जिन माताओं की, जिन औरतों की अभी अभी डिलीवरी हुई है, उन्हें 24 घंटे के लिए, कम से कम 24 घंटे के लिए अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि ये आखिर होता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। PPH होने के 4 बड़े कारण होते हैं, जिनमें से एक है गर्भाशय का ढीला पड़ जाना। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद गर्भाशय को सख्त होना चाहिए, लेकिन इसके उलट गर्भाशय कई बार ढीला रह जाता है, और अगर वो ढीला रह जाता है तो जो खून होता है वो रुकता नहीं और लगातार बहता रहता है। और इसका जो दूसरा कारण है वो ये है कि डिलीवरी के दौरान माता को चोट लग जाना। कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी, योनि या तो फिर बाहर के हिस्से में चोट की वजह से ये हिस्से फट जाते हैं और खून बहुत ज्यादा बहने लग जाता है। तीसरा कारण ये है कि नाल या उसके टुकड़े अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से भी खून लगातार बहता रहता है। और कुछ महिलाओं में खून जमने की भी दिक्कत होती है, उन्हें अगर आम से भी कोई चोट लग जाए तो उनका खून जमता नहीं है, और प्रसव के दौरान जब खून बहता है तो ऐसे बीमारियों में जिन्हें खून जमने की पहले से दिक्कत है उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनका खून लगातार बहता रहता है। आइए अब हम बात करते हैं कि किस माँ को ज्यादा खतरा होता है। जिन गर्भवती महिलाओं को पहले प्रसव में भी ज्यादा खून बहा हो उन्हें दूसरी डिलीवरी में भी ज्यादा खतरा रहता है, और जिनका डिलीवरी बहुत लंबा चला हो उन्हें भी ज्यादा खतरा होता है। जिनके पेट में ज्यादा पानी हो या फिर 2 बच्चे हों तो उन्हें भी इस बात का, यानी कि PPH का खतरा रहता है। वहीं जिन महिलाओं को पहले से खून की कमी है, यानी कि एनेमिक है, उन्हें भी PPH का खतरा रहता है। और वहीं आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि किसी को भी बार बार बार बार मां नहीं बनना चाहिए, यानी कि बार बार डिलीवरी के प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहिए। जिन महिलाओं को बार बार डिलीवरी होती है उन्हें भी PPH होने का खतरा होता है। जिन भी महिलाओं की बार बार डिलीवरी होती है उनका शरीर वैसे भी काफी कमजोर हो जाता है, ऐसे में उन्हें PPH का खतरा भी काफी ज्यादा रहता है। अब तक हमने ये जान लिया कि किन्हें खतरा हो सकता है, किस स्थिति में खतरा हो सकता है, लेकिन अब जानते हैं कि आखिर आप कैसे खतरे के लक्षण को पहचान सकते हैं, ताकि सही समय पर अगर लक्षण की पहचान हो जाए माँ को सुरक्षित रखा जा सके। कुछ बातें जो ध्यान देने वाली है, अगर डिलीवरी के बाद खून से कपड़े या पैड बार बार भीग जाए, खून के साथ बड़े बड़े थक्के निकले और माँ बहुत कमजोर दिखे, उन्हें चक्कर आए या वो बार बार बेहोश हो तो ये बहुत बड़े खतरे की निशानी है। ये संकेत देती है कि उस माँ को PPH हो सकता है। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि क्या उनके हाथ पैर बार बार ठंडे पड़ रहे हैं या फिर उन्हें पेशाब बहुत कम आए, तो ये सारे लक्षण बिल्कुल भी इग्नोर करने वाले नहीं हैं। ऐसी महिलाओं को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत होती है। वहीं सबसे जरूरी बात कि देर बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि प्रसव के बाद तो खून बहता ही है, पर बार बार बहुत ज्यादा थक्के के साथ खून बहना बहुत बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको एक एक मिनट की कीमत को समझना होगा। ऐसे में बिल्कुल भी घर पर नहीं रुकना है, झाड़ फूंक में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, इंतजार नहीं करना है, क्योंकि ये स्थिति जानलेवा हो सकती है। तुरंत हॉस्पिटल जाएं। और हॉस्पिटल में आगे का क्या प्रोसेस होता है

0: भी हम थोड़ा समझते हैं, जब ऐसी महिलाओं को, ऐसी माँ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पर उसे तुरंत ऑक्सीजन और ड्रिप लगाया जाता है, गर्भाशय को सिकुड़ने वाली दवा दी जाती है, क्योंकि एक वजह तो इसका ये भी होता है ना कि गर्भाशय ढीले रह जाते हैं, तो गर्भाशय को सिकुड़ने वाली दवा दी जाती है। अगर चोट की वजह से कोई हिस्सा अंदर फट गया है या फिर किसी भी वजह से हिस्सा कोई फट गया है तो अंदर फटे हुए हिस्से को सिला जाता है और ज़रूरत पड़ने पर खून भी चढ़ाया जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब कोई महिला गर्भवती हुई है तो शुरुआत में ही उसके खून की जांच करा लेनी चाहिए, वो एनेमिक है या नहीं, यानी कि उन क्या उनमें खून की कमी है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है। बाद में ब्लड ग्रुप अगर हमें पता होता है तो बाद में बहुत आसान होता है ऐसी माँ को खून चढ़ाना। और अगर ये सारी प्रक्रिया करने के बाद भी माँ की जान खतरे में रहती है तो अंतिम स्थिति में माँ की जान बचाने के लिए ऑपरेशन तक किया जा सकता है। आपके मन में ये सवाल भी होगा कि क्या ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है, क्या PPS से बचा जा सकता है। जी हाँ, बचा जा सकता है कुछ बातों का ध्यान रख के। सबसे पहले तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डिलीवरी हॉस्पिटल या फिर किसी ट्रेंड स्टाफ के पास ही हो। कई बार महिलाएं हॉस्पिटल नहीं जाती हैं और घर में ही उनकी डिलीवरी हो जाती है, ऐसे में उनकी देख रेख करने वाला कोई भी स्पेशलिस्ट वहाँ पर या फिर ट्रेंड स्टाफ वहाँ पर नहीं होता है, इसलिए डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना ही बेहतर है। इसके साथ ही जब डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है तो डॉक्टर इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चा के पैदा होते ही उस गर्भवती महिला के गर्भाशय को सिकुड़ने वाली दवाई दी जाती है। और इसके साथ ही जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि डिलीवरी के बाद माँ को कम से कम 24 घंटे की निगरानी में रखना ज़रूरी है और डॉक्टर जो भी बताते हैं उस चीज़ का पालन करना भी ज़रूरी है। गर्भावस्था में पूरा ANC चेकअप और खून की कमी का इलाज भी ज़रूरी होता है। डॉक्टर जो भी आपको चेकअप बता रहे हैं वो सारे चेकअप कराना ज़रूरी है, वो आगे माँ की जान को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके साथ ही घर के लोग पहले से ही ट्रांसपोर्ट और खून की व्यवस्था सोच लें, यानी कि अगर अचानक गर्भवती महिला को दर्द हुआ, प्रसव पीड़ा हुई तो ऐसी स्थिति में उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। और अगर PPH की समस्या आ जाती है और खून चढ़ाने की नौबत आती है तो खून की व्यवस्था पहले से ही हो तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि तब का हर मिनट कीमती होता है। और कई सारे लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि प्रसव के बाद तो खून बहता ही है। याद रखें कि प्रसव के बाद ज़्यादा खून बहना आम बात नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत खून बहता है, लेकिन ज़्यादा खून बहना, बड़े बड़े थक्के के साथ खून बहना, बार बार ये जो फ्लो है वो रुकना ही नहीं, ये एक इमरजेंसी स्थिति है। ऐसे में माँ की जान को खतरा हो सकता है और ऐसी स्थिति में समय पर हॉस्पिटल पहुंचकर ही माँ की जान बचाई जा सकती है। कोई भी गलती माँ की जान के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। और माता का विशेष ध्यान रखें, और आप इन सारी बातों का उम्मीद है कि ध्यान रखेंगे और उम्मीद है कि आपके लिए ये बातें काम की रही होगी। हम मिलते हैं अगले लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में, अभी के लिए नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
1: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
2: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए विषय लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में फल वर्गीय सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन। इस विषय के साथ हमारे बीच हैं आज डॉक्टर प्रीति सिंह, जो कि वैज्ञानिक हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम स्वागत है आपका।
3: सबसे पहले मैं अपने किसान भाई को बताना चाहूँगी कि नर्सरी की उपयोगिता क्यों क्या है और हमें ये करना ही क्यों चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि जो फल है, फलों की नर्सरी है, वहाँ ग्राफ्ट, शायन के मात्र पौधे, रूटस्टॉक और पपीता जैसी बीज प्रवर्धित फसल की पौध के उत्पादन के लिए आवश्यक है। युवा पौधों को चाहे बीज से या वनस्पतिक प्रजनन द्वारा प्रवर्धित किया गया हो, विशेष रूप से विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्हें प्रतिकूल तापमान, भारी वर्षा, सूखा हवा, विभिन्न प्रकार के कीट और बीमारियों से बचाना होता है। यदि बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं तो अंकुरण अक्सर खराब होता है और युवा पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं और परिपक्व होने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए फल की फसलों को खेत में रोपने से पहले नर्सरी में प्रचारित और किया जाना चाहिए और उगाया जाना चाहिए। तो जो हमारी नर्सरी है, उस जो ये फलों की नर्सरी है, इसको हम तीन भाग में इस टॉपिक को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो सकता है कि नर्सरी की साइट का चयन कैसे करें, दूसरा नर्सरी की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और तीसरा कि नर्सरी की तैयारी करें कैसे। तो सबसे पहले बिंदु पे आते हैं कि नर्सरी प्रबंधन के लिए साइट सिलेक्शन कैसे करें। तो नर्सरी के लिए साइट का चयन काफ़ी सावधानी और सोच विचार के बाद किया जाना चाहिए, क्योंकि नर्सरी के स्थान का उसकी समग्र सफलता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नर्सरी के लिए स्थान और स्थान के चयन के लिए विचार किए जाने वाले 5 महत्वपूर्ण कारक हैं: जलवायु, स्थान पर मध्यम जलवायु और लंबे समय तक बढ़ने वाला मौसम होना चाहिए, विशेष रूप से तेज जलवायु, उतार चढ़ाव या तेज हवा का वेग या ओलावृष्टि की घटनाओं के साथ अत्यधिक तापमान का अनुभव करने वाले स्थानों से बचना चाहिए। दूसरा है स्थलाकृति, जिसे हम टॉपोग्राफी भी कह सकते हैं। अगर जो सबसे कुशल उपयोग के लिए नर्सरी के लिए भूमि को समतल किया जाना चाहिए, बाढ़ या पाले की आशंका वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए, नर्सरी के लिए निचले इलाकों का चयन नहीं करना चाहिए। तीसरा है मिट्टी। मिट्टी जो हो, हमारी गहरी बलुई दोमट से चिकनी दोमट बनावट वाली और पर्याप्त जल धारण क्षमता करने वाली होनी चाहिए, और ये कंकरीला या पथरीला नहीं होना चाहिए। अधिकांश फल पौधों के लिए इष्टतम जो मिट्टी का पीएच मान है वो 5 से 7.2 के आसपास है। 7.5 से अधिक अगर पीएच मान है तो इस साइट को चुनने से बचना चाहिए। चौथा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पानी। एक आदर्श नर्सरी साइट में रोपण और बढ़ते मौसम के दौरान वर्षा का वितरण अच्छा होना चाहिए। नर्सरी के निकट या भीतर एक स्थायी जल का स्रोत होना चाहिए, जिससे हम सिंचाई सफलतापूर्वक कर सकें, और नई पौधे के लिए सिंचाई का पानी लवण रहित होना चाहिए। जो पांचवा इम्पोर्टेंट बात है वो है कि कीट पतंगों और रोग पैदा करने वाले जीवों की व्यापकता। गंभीर कीटों या बीमारियों, निमटोड या खरपतवारों की उपस्थिति को पहले ही जांच लेना चाहिए, और अगर किसी मिट्टी में इन सब की बहुत व्यापकता है तो हमें इस साइट को नहीं चुनना चाहिए। अब हम आते हैं कि फल नर्सरी की स्थापना के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी नर्सरी साइट को सेलेक्ट करते हैं या चुनते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके चारों बगल फेंसिंग या बाड़ लगा लेना चाहिए। फेंसिंग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पोल बना के उसके ऊपर वायर या तार चढ़ा सकते हैं, या फिर आजकल एक नेचुरल फेंसिंग वाला भी पॉइंट है जहाँ पर आप करूंदा जैसे फलों को नेचुरल फेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। सड़क और रास्ते होने चाहिए आपके नर्सरी में, ताकि जो आपके जो भी प्रवर्धित पौधे हैं उनको जल्दी से मार्केट तक लेके जाया जा सके। और तीसरा, कार्यालय या फिर सह भंडार, जहाँ से आप सारे चीज़ों को मैनेज कर सके। उसके बाद आता है मदर प्लांट ब्लॉक। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो फल का प्रवर्धन होता है वो या तो ग्राफ्ट से होता है, या तो लेयरिंग से होता है, या बडिंग या कटिंग से होता है। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा मदर प्लांट का ब्लॉक हो या शायन बैंक का ब्लॉक हो। इस और ये जो मदर प्लांट है हमारा, ये डिपेंड करता है कि हमारे बाज़ार में किस वैरायटी की मांग ज़्यादा है। जिस वैरायटी की भी मांग ज़्यादा हो उसी वैरायटी का मदर ब्लॉक एस्टैब्लिश करना चाहिए हमें नर्सरी में। किसी भी नर्सरी की सफलता काफ़ी हद तक आगे के गुणन के लिए मात्र पौधों के प्रारंभिक चयन पर निर्भर करती है, और इसे अनुसंधान संस्थान या प्रतिष्ठित नर्सरी से ही खरीदा जाना चाहिए। फिर बात करते हैं सिंचाई प्रणाली की। फल नर्सरी में पौधों को सिंचाई के लिए पानी की प्रचुर आपूर्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें सीमित मात्रा में पॉटिंग मिक्सचर के साथ पॉली बैग में उगाया जाता है। अतः ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का होना पानी की बर्बादी को कम करता है और साथ ही साथ पौधे को आवश्यक मात्रा में जल भी प्रदान करता है। छठी जो बात है वो है सीड बेड तैयार करना। जो बीज की क्यारियाँ तैयार करते हैं नर्सरी में, यह घटक पौध और रूट स्टॉक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इन्हें जल स्रोत के पास बिछाया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें बार बार पानी देने की आवश्यकता होती है। सुविधाजनक लंबाई के साथ इनकी जो चौड़ाई हो है वो 1 से 1.5 मीटर के आसपास होनी चाहिए, और दो बेड के बीच में जो स्पेस है वो लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। ये जो 60 सेंटीमीटर का जो स्पेस है इसे बीज बोने, निराई करने, पानी देने, छिड़काव करने और पौधे उठाने में आसानी होती है। अगर दूसरा जो तरीका है नर्सरी में पौधे तैयार करने का, एक तो सीड बेड हो गया और दूसरा है पॉली बैग। पॉली बैग में पौध और रूट स्टॉक उगाने के लिए नर्सरी बेड की तुलना में अधिक जगह की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधों की वृद्धि में एकरूपता के साथ साथ मृत्यु दर भी काफ़ी कम हो जाती है। प्रत्येक बेड 500 के आसपास ग्राफ्ट या गूटी रखा जा सकता है और इसको अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। सेवेंथ पॉइंट जो है वो है पॉटिंग मिश्रण या पॉटिंग यार्ड। तो जो भी हमारा नर्सरी का एरिया है वहाँ पे हमारा एक पॉटिंग यार्ड होना चाहिए, जहाँ पे टाइम टू टाइम जो हमारा पॉटिंग मिक्सर है वो तैयार होते रहना चाहिए। पॉटिंग एक अच्छा पॉटिंग मिश्रण में एक भाग मिट्टी, एक भाग नदी के किनारे का रेत और एक भाग FYM होना चाहिए। इसका अनुपात 2:1:1 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि दो भाग मिट्टी, एक भाग रेत और एक भाग FYM, इनको मिला के या इनको जो आपका पॉटिंग यार्ड है वहाँ पे मिला करके आप पॉली बैग में भर सकते हैं और इसमें बाद में आप जो भी बीज डालना चाहें वो आप डाल के तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आठवां पॉइंट है कि जो ये पौधे हैं नर्सरी के, ये कभी कभी हम पॉली हाउस में भी तैयार कर सकते हैं। तो जो पॉली हाउस में तैयार हुए पौधे होते हैं वो थोड़े से नाजुक होते हैं, तो उनको डायरेक्ट फील्ड में ले जाने से पहले अगर आपके पास शेड नेट की फैसिलिटी है तो आप उसको शेड नेट में लेके जाइए, क्योंकि शेड नेट में क्या होता है कि जो आपके पौधे होते हैं उनको थोड़ा सख्त होने का टाइम मिलता है। वरना पॉली हाउस से तुरंत बाहर ले जाने पे, फील्ड में लेके जाने पे उनमें बहुत ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ सकती है। इसीलिए अगर पॉली हाउस में आप पौधे उगा रहे हैं तो उसको पहले आप शेड नेट में लेके जाइए, वहाँ पे 1-1.5 महीना रखिए और फिर 1-1.5 महीने के बाद आप उसको फील्ड कंडीशन में लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब नर्सरी की तैयारी करें कैसे। तो नर्सरी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें करनी है क्यारी की तैयारी। जहाँ पे भी हम क्यारी की तैयारी करेंगे वहाँ पे खरपतवार का उन्मूलन, मिट्टी को समतल करना और खेत को जोतना शामिल है। खेत की 2 बार गहरी जुताई करने से मिट्टी को ढीला करने और खरपतवार तथा अन्य वनस्पतियों को नष्ट करने में मदद मिलती है। जुताई करते समय मिट्टी में पाए जाने वाले पत्थरों और जड़ों को हटा देना चाहिए, क्योंकि वे पौधे के विकास में बाधा डालते हैं। सूखी घास और झाड़ी सामग्री को जलाने से कीड़े और खरपतवार की समस्या को कम करने में मदद मिलती है, और बची हुई खनिज समृद्ध राख बीज बिस्तरों की उर्वरता को की में सुधार करती है। अब जब हमने खेत की तैयारी कर ली है तो हम जो हमारा बेड है, सीड बेड है, उसको उसका लेआउट करना और समतलीकरण करना हम कर सकते हैं। अन्य आकारों की तुलना में आयतकार बेड्स को प्राथमिकता दी जाती है। बीज शय्या की चौड़ाई इतनी रखनी चाहिए कि बीज शय्या में प्रवेश करने किए बिना निराई गुराई का कार्य किया जा सके। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो इसकी चौड़ाई होनी चाहिए वो 1 से 1.5 मीटर ही होनी चाहिए, और आप इसकी लंबाई 12.5 मीटर तक कर सकते हैं, लेकिन 12.5 मीटर से ज़्यादा करना उचित नहीं होगा। नर्सरी में उपयोग की जाने वाली बीज क्यारियों के 3 प्रकार होते हैं, और ये डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे वर्षा कितनी होती है। अगर बहुत अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पे ऊंचे बिस्तर बनाने चाहिए, मतलब 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची सीड बेड बनाइए। जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है वहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर नीचे सीड बेड बना सकते हैं, और जहाँ पे ठीक ठाक बारिश होती है वहाँ पे समतल क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। देन फिर अब क्यारियों में बुआई कैसे करें? तो क्यारियों में बुआई करने के लिए जो आपका सीड बेड तैयार हुआ है, जो जिसके लिए आपका सीड बेड के लिए आपका जो भी फार्मयार्ड मैन्योर या पॉटिंग मिक्सर का जो तैयार मिश्रण था उसको डाल के आपने क्यारियाँ जो तैयार की हैं उसमें आपने बीज को बोना है। बीज को बहुत गहरा नहीं बोना है, जब बहुत छोटे बीज होते हैं तो उनको 1 या 1.5 सेंटीमीटर की ही गहराई में बोना चाहिए, और अगर थोड़े बड़े सीड्स हैं, बड़े बीज हैं, तो उनको थोड़ा गहरा रोपा जा सकता है। पॉली बैग अगर आप क्यारियों में नहीं कर रहे हैं तो इसको आप पॉली बैग में करेंगे। तो पॉली बैग में करने के फ़ायदा यही है कि जब भी आप इसमें से पौधे को निकाल के फील्ड में लेके जाते हैं या फिर आपसे कोई खरीद के लेके जाता है तो क्या होता है कि जो इसकी जड़ होती है उसको बहुत कम डैमेज होता है, जिसकी वजह से इसका जो हेल्थ रहता है वो बढ़िया बना रहता है, और जब हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं फील्ड में तब भी इसका जो एस्टैब्लिशमेंट होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। फिर हम करते हैं बुआई का समय। बुआई का समय जनरली जो होता है वो 3 समय हम बुआई कर सकते हैं। एक तो फरवरी मार्च का महीना हो जाता है, एक जुलाई अगस्त का महीना हो जाता है, और एक सितंबर अक्टूबर का महीना हो जाता है। तो सबसे बढ़िया समय जो हमारे हमारे रीजन के लिए है वो अगस्त जुलाई अगस्त का महीना है, जब वर्षा ऋतु होती है। और अगर हम नर्सरी में बडिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग या लेयरिंग की भी बात करें तो इन सबको वर्षा ऋतु के समय ही करना चाहिए। एक जो प्रैक्टिस है जो नर्सरी में की जाती है वो प्रिकिंग होती है। इससे क्या होता है कि बेहतर जड़ और अंकुर के विकास के लिए पौधे को एक नर्सरी बेड से दूसरे नर्सरी बेड या पॉली बैग या गमले में स्थानांतरित किया जाता है। इससे क्या होता है कि प्रिकिंग से जड़ की वृद्धि बढ़ती है और कई प्रजातियों में बेहतर और कुशल जड़ प्रणाली तैयार हो जाती है। अब हम बात करते हैं सिंचाई की। तो बुआई के तुरंत बाद बीज क्यारियों में पानी देना चाहिए। पॉली बैग गमलों को गुलाब के सिर के डिब्बे से सिंचित किया जा सकता है, या पॉली बैग या गमलों में लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर गहरे धंसे हुए बिस्तरों में रखा जाना चाहिए ताकि बाढ़ सिंचाई को अपनाया जा सके। और जहाँ पे आपके पास स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी है वहाँ पे आप स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी को यूज़ करके पानी के बर्बादी को बचा सकते हैं। फिर बात आती है निराई गुड़ाई। नियमित रूप से निराई गुड़ाई करनी चाहिए इससे पहले कि वो पानी और मिट्टी के पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करना शुरू करें और उनके बढ़ने से निराई गुड़ाई करना मुश्किल हो जाए। इससे पहले ही खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। फूल आने से पहले खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए ताकि उनके पुनर्जनन को नियंत्रित किया जा सके। अब हम बात करते हैं खाद और उर्वरक की। नर्सरी की मिट्टी में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाने से उसकी उर्वरता बनी रहती है। मिट्टी की पोषक तत्व स्थिति और उगाई जा रही प्रजातियों की आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों और सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि नर्सरी से पौधे उठाना कैसे है। नर्सरी से पौधे हटाने के लिए सबसे पहले जो पौधे की मिट्टी है, आसपास की मिट्टी है, उसको ढीला करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसको आप किसी को बेच सके या फिर आप इसको मार्केट तक भेज सके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वहाँ पे अच्छे से थोड़ा सिंचाई देना होगा, पानी देना होगा। इससे क्या होगा, पौधे के जड़ों विशेषकर बारीक जड़ों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना सावधानी से इन पौधों को उठाया जा सकता है। मिट्टी की गेंद को विभाजित होने से बचाने के लिए जड़ों को मिट्टी की गेंद के साथ घास या अन्य सामग्री में लपेटना चाहिए। पौधों को नर्सरी से उठाने के बाद और खेत में रोपने से पहले छाया में रखना चाहिए और परिवहन के दौरान उन पर पानी छिड़कते रहना चाहिए।
1: उन्नत कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज बातें एक ऐसे विषय पर होने वाली है जिसके बारे में जानते सब हैं लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता। आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में, यानी कि महावारी के बारे में। पीरियड्स के बारे में बातें खासतौर से वो बातें होने वाली है जो हमारे मन में गलत धारणाएं बनी होती है। जी हाँ, हम आज उन धारणाओं को तोड़ने वाले हैं, उन धारणाओं को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पीरियड्स होता क्या है। पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि किसी भी महिला के शरीर के अंदर जो गर्भाशय है उसकी अंदरूनी परत वो बाहर निकलती है। ये पूरी तरीके से एक नेचुरल प्रोसेस है और बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होती है कि पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत ही अशुद्ध होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। इसे अशुद्ध ना बिल्कुल एक सामाजिक सोच है और साइंस यानी कि विज्ञान बिल्कुल इससे सहमत नहीं होता है कि पीरियड्स अशुद्ध है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो गर्भाशय होता है उसके अंदर खून का एक परत बनता है और वही अंदरूनी परत बाहर निकलता है और ये नेचुरल है। और इसके साथ ही एक मिथ ये भी होता है कि क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो पीरियड्स है वो अशुद्ध है तो मंदिर में या फिर धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान ना महिलाएं पवित्र नहीं होती है, अपवित्र हो जाती है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है बल्कि ये एक ना बिगड़ी हुई सोच है। बिगड़ी हुई सोच यानी कि हो सकता है पुराने जमाने में ये कहा गया होगा कि महिलाएं जब पीरियड्स होता है उनका तो वो किचन नहीं जा सकती है या खाना नहीं बना सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अशुद्ध हो गई हैं, अपवित्र हो गई हैं, वो घर के अंदर भी नहीं रह सकती हैं, मंदिर में नहीं जा सकती हैं, फिर किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, उन्हें घर से बिल्कुल अलग रहना होगा, दूर रहना होगा। उस वक्त लोगों ने सोचा होगा कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को थोड़ी आराम की जरूरत होती है और वो ऐसे में किचन का काम पहले बहुत भारी हुआ करता था ना, घर पे आटा पीसना होता था। अभी जितनी सुविधाएं हैं, आपको मसाले पीसना है आपके पास उसके लिए भी एक मशीन है, लेकिन पहले के जमाने में मसाले पीसने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और उस वक्त ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे आपके पेट पर असर पड़े। और इसी वजह से कहा गया होगा कि उस वक्त किचन का काम नहीं करना चाहिए, अचार नहीं निकालना चाहिए। तो पुराने जमाने में अचार को बड़े बड़े बर्तनों में रखा जाता होगा जो कि बहुत भारी हो सकता होगा, शायद इस वजह से कहा गया होगा कि चलो इन सारी चीज़ों को आप नहीं निकालेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। पर लोगों ने इसका मतलब क्या समझा बीतते वक्त के साथ कि हमें परेशानी हो जाएगी अगर वो किचन जाएंगे या फिर वो अगर अचार छुएंगे तो अचार खराब हो जाएगा। नहीं, महिलाओं को परेशानी ना हो इसकी वजह से ये सारी बातें कही गई थी। और अगर मंदिर और धार्मिक स्थान की बात करें तो हो सकता है कि पुराने जमाने में हाइजीन इतनी अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं की जा सकती थी, तो उस वक्त ये सोचा गया होगा कि जब हाइजीन को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है तो फिर मंदिर या धार्मिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए। पर बदलते वक्त के साथ हम धारणाएं बदलते हैं ना, बदलते वक्त के साथ हम बहुत सारी चीजों को बदलते हैं। अब हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारी बहुत सारी चीजें बदल गई है ना, हमारा खान पान बदल गया बदलते वक्त के साथ। तो बदलते वक्त के साथ ये सारी बातें और बिगड़ क्यों गई, ये भी तो बदलनी चाहिए थी ना। किचन में नहीं जाना था क्योंकि वहां पर उन्हें बहुत शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था एक पुराने जमाने में, पर आपका तो किचन बहुत ही मॉडिफाइड हो गया है, बहुत ही बेहतर हो गया है, वो शारीरिक परिश्रम नहीं रहा जो पहले किया जाता था। तो ये सोचना कि महिलाएं किचन में नहीं जा सकती हैं, मंदिर नहीं जा सकती हैं, धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकती हैं, ये बिल्कुल गलत है। अब महिलाएं मंदिर भी जा सकती है क्योंकि वो अपने हाइजीन को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकती है ना। और इसके अलावा ये भी एक एक धारणा होती है कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बल्कि रिसर्च बताती है कि हल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग या फिर योगा आपको क्रैम्प या फिर बैक पेन में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, काफ़ी कम होते हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको जो पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानी है वो कम होती है। इसके अलावा आपके मूड भी काफ़ी इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि बॉडी ना एक हार्मोन रिलीज करती है, इस हार्मोन को हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स को कहते हैं ना फील गुड हार्मोन्स। ये क्या होते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो दर्द हो रहा होता है उसे कम करते हैं, इसके साथ ही आपके मूड को भी बेहतर बनाते हैं। जैसे एक्सरसाइज के बाद अच्छा फील होता है ना, इसी वजह से एक्सरसाइज करना चाहिए, पर हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए। वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके पेट के निचले हिस्से पर दबाव महसूस हो। तो अगर वैसे एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एक्सरसाइज कीजिए, बस वैसे एक्सरसाइज से बचना होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो और एक और धारणा होती है कि पीरियड्स का खून गंदा होता है या फिर टॉक्सिक होता है, ऐसा नहीं है। ये खून ना एक्चुअली नॉर्मल ब्लड होता है, उसमें म्यूकस मिला होता है, और चूंकि ये खून गर्भाशय से निकला होता है तो उसमें गर्भाशय की लाइनिंग का भी मिक्सचर होता है। इसमें कोई भी हार्मफुल या फिर कोई टॉक्सिक चीज नहीं होती है, बहुत नॉर्मल खून होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स के समय नहाना नहीं चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए। अरे बाबा, उस वक्त हाइजीन बहुत ज़रूरी होता है, नहाना चाहिए। आप नहाएंगे तो आपको बिल्कुल आपकी बॉडी फ्रेश लगेगी, और जो पीरियड्स से गुजरती है ना लड़कियाँ, महिलाएँ, वो जानती है कि उस वक्त नहाना, उस वक्त खुद को साफ रखना कितना फ्रेशिंग होता है, कितना अच्छा महसूस कराता है। आप जब नहाते हैं आपकी बॉडी फ्रेश होती है, तो इन्फेक्शन का रिस्क भी कम होता है। और हाँ, हो सकता है कि आप उस वक्त पीरियड्स के दौरान, कुछ महिलाओं में ये परेशानी होती है कि उनके शरीर का तापमान थोड़ा कम ज्यादा होता है, यानी कि उस वक्त थोड़ा तापमान फ्लक्चुएट करता है, तो जो फ्लक्चुएशन होता है इस वजह से आपको थोड़ा लगेगा कि थोड़ा बुखार आ गया या ऐसी कुछ बात होती है। तो आप उस वक्त सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि आप गुनगुने पानी से नहाइए, पर नहाइए जरूर, क्योंकि साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। अगर आप पीरियड्स में हैं तो भी, तब तो बहुत ज्यादा, और अगर आप पीरियड्स में नहीं है तो भी साफ सफाई जरूरी होती है ना, इसलिए नहाइए। पर अगर पॉसिबल है, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आपको बुखार है या ऐसा कुछ, तो आप गुनगुने पानी से नहाइए, और गुनगुने पानी से नहाना पीरियड्स के टाइम पे कहा जाता है कि बेहतर होता है। इसके अलावा एक और मिथ है कि पीरियड्स में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। चांसेस कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। अगर ओव्यूलेशन जल्दी हो जाए या फिर साइकिल इरेगुलर है तो फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल होता है। अब पीरियड्स में हाँ, प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। इसके साथ ही कहते हैं कि कुछ लोग ये भी मानने लगे हैं, जिस तरीके से सैनिटरी पैड को मार्केटिंग उसकी की गई है, लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी पैड ही सेफ है, ऐसा नहीं है। आज आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टेम्पॉन्स है, मेंस्ट्रुअल कप्स है, रीयूजेबल पैड्स है, तो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और हाइजीन मेंटेन किया जाए तो ये सभी सेफ होते हैं। इसके अलावा अगर आप कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सेफ हो सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप साफ कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, उसे आपने अच्छी तरीके से धोया है, धूप में सुखाया है, उसके बाद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अच्छे से यूज कर सकते हैं, सेफ रहता है। लेकिन उसे रीयूज करना वो रिस्की होता है, और खास तौर से बिना उससे अच्छी तरीके से साफ किए रीयूज करना रिस्की होता है। कपड़े होते हैं जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, उसे रीयूज करने की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन वो भी सेफ है। पर अगर आप उसे अच्छी तरीके से साफ करके इस्तेमाल करते हैं, धूप में सुखाकर इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अलावा कुछ लोगों को ये लगता है कि PMS सिर्फ एक बहाना है। PMS की बात करें, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लड़कियों के अंदर ऐसा होता है कि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उसके थोड़े दिन पहले उनके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ऐसे में उनका मूड स्विंग होता है, इरिटेशन होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा, सिर में दर्द होता है या बहुत ज़्यादा थकान उन्हें महसूस होता है, तो ये होता है PMS। कुछ लोगों को ऐसी परेशानी होती है और कुछ लोगों को नहीं होती है। अब जिन्हें नहीं होती है वो इस बात को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं कि जिन्हें PMS है वो सिर्फ ना बना रहे हैं या फिर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सबका शरीर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है ना, सबका शरीर अलग अलग तरीके का होता है। तो पीरियड्स में कुछ लोगों को PMS होता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता है, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होता है। तो अगर किन्हीं को PMS की परेशानी है और आपको नहीं है, या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो उन्हें नकार मत दीजिए कि ये बहाना है या फिर ओवर रिएक्ट कर रही है। आप देख नहीं सकते हैं ना, पर वो महसूस कर सकते हैं अपने मूड स्विंग्स को, अपने इरिटेशन को, अपने सिर दर्द को। आपको उन्हें समझने की जरूरत होती है ऐसे वक्त पे खास तौर से। और इसके अलावा कुछ होता है कि कुछ खास तरह के खाने इस वक्त पे अवॉइड करने चाहिए। पीरियड्स के लिए ना कोई भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस यही है जो हमें नॉर्मली भी सलाह दी जाती है कि बैलेंस्ड डाइट लीजिए जिसमें आयरन हो, आप भरपूर पानी पीजिए, फलों का सेवन कीजिए, सब्जियों का सेवन कीजिए, यानी कि नॉर्मल बात कहें तो बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। और इसके साथ ही जंक फूड कम लेना चाहिए, बेहतर होता है, ये तो हमें नॉर्मली भी कहा ही जाता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने इरेगुलर पीरियड्स को भी इग्नोर करते हैं, या फिर कुछ लोग सलाह देते हैं कि अरे ठीक है पीरियड्स है, आ तो रहे हैं ना, इरेगुलर है तो क्या हुआ, इग्नोर कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कभी कभी आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, यानी कि क्या होता है ना कि कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स इसलिए भी होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल अचानक से चेंज हो गई है, तो ऐसे में आपके इरेगुलर पीरियड्स नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन एकाध दो महीने, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि पीरियड्स आने के पहले वाले महीने में आपने बहुत मानसिक तनाव झेला है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गई है, आपके सोने जागने का समय या फिर आपका डाइट बिल्कुल बदल गया है, तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो आने वाला पीरियड्स है वो लेट आएगा या पहले आएगा, लेकिन ये एक महीने के लिए होगा, दो महीने के लिए होगा, इससे ज्यादा नहीं होता है ऐसा। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है और आपने लाइफस्टाइल में भी कोई चेंज नहीं किया, आपको मानसिक तनाव भी नहीं था, तो फिर आपका शरीर आपसे कह रहा है कि आपको PCOS है या फिर कोई आपके अंदर हार्मोनल इश्यूज है, उसका ये संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर लगातार ऐसी परेशानी आपको हो रही है, तो इरेगुलर पीरियड्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि किसी को पहला पीरियड आ गया, किसी लड़की को पहला पीरियड उसका आया है, तो वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गई है। पहली बात तो कि ये जो पहला पीरियड होता है ना, वो बस प्यूबर्टी की शुरुआती लक्षण है, वो साइन दिखाते हैं कि हाँ, अब लड़की अपने प्यूबर्टी स्टेज में प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनली फिजिकली बिल्कुल डेवलप हो चुकी है, अब वो बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पीरियड्स में महिलाएं कमजोर होती हैं, वो होती हैं जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो अच्छे से आराम नहीं करती हैं, तो ऐसे महिलाएं कमजोर होती हैं। लेकिन अगर आप सही खान पान रखते हैं, आप आराम का भी ध्यान रखते हैं, आप सब कुछ आपने अपने डाइट को मेंटेन किया हुआ है, तो आपको पीरियड्स के दौरान आप कमजोर नहीं होंगी, आप अपने नॉर्मल लाइफ के जैसे आप बाकी के दिनों में अपने जीवन को जीती हैं वैसे ही जी पाएंगी। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल लाइफ पीरियड्स की वजह से बाधित हो रही है, आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आप कामकाजी महिला हैं तो काम पे नहीं जा पा रही हैं, तो फिर ये कंसर्न की बात है, आपको फिर इसके बारे में सोचना चाहिए, डॉक्टर से दिखाना चाहिए। कई बार होता है कि कुछ महिलाएं इतनी ज्यादा परेशान होती हैं कि उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना दर्द कि वो स्कूल कॉलेज या फिर काम पे नहीं जा पाती हैं, और हर महीने ऐसा दर्द उन्हें होता है, उल्टी आती है, चक्कर आता है, या फिर बहुत ज्यादा उन्हें कमजोरी होती है, पेन किलर्स लेने पर भी उन्हें आराम नहीं होता है, तो ये फिर और ये लगातार हो रहा है, हर पीरियड्स में हो रहा है, तो फिर ये एक किसी सीरियस कंडीशन का संकेत हो सकता है, आपको हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी हो। ऐसे में इसे नॉर्मल मत समझे कि हाँ पीरियड्स में तो इतना होता ही है, दो दिन की छुट्टी मिल जाए, तीन दिन की छुट्टी मिल जाए, नहीं मिलनी चाहिए, आपको परेशानी हो रही है मिलनी चाहिए, पर डॉक्टर से दिखाने के लिए आपको छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि पीरियड्स आते हैं, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, आपको अपने खान पान को बदलने की जरूरत है, आपको अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे पीरियड्स में तो इतना सा नॉर्मल है, चलता है, पीरियड्स में इतनी ज्यादा परेशानी होनी आम बात है। नहीं है आम बात, ये किसी सीरियस कंडीशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। हो सकता है कि आप एंडोमेट्रियोसिस जैसी परेशानी से आप जूझ रही हो, हो सकता है कि आपको फाइब्रॉइड्स हो, या फिर आपके अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस हो, तो ऐसी कोई भी परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आप पीरियड्स में बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं, आप बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही हैं, उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको उस वक्त आराम की जरूरत होती है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप अगर डॉक्टर से मिलेंगी, वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, तो आप बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके पीरियड्स भी नॉर्मल होने लग गए हैं, थोड़ी परेशानी होती है, पर इतनी परेशानी नहीं होगी फिर आपको कि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं या फिर काम पे नहीं जा पा रहे हैं। अभी अगर हम बात करें ना, तो पीरियड्स के दौरान ना साफ सफाई बहुत जरूरी होती है, हाइजीन मेंटेन करना होता है, इससे आप इन्फेक्शन से बचते हैं। और अवेयरनेस तो बहुत बहुत जरूरी है। मैंने बातचीत के शुरुआत में ही कहा था कि पीरियड्स के बारे में जानते सब है पर बात कोई नहीं करना चाहता। पीरियड्स के बारे में लड़कियों को तो बात करने की जरूरत होती ही है, पर लड़कों को भी समझना चाहिए कि पीरियड्स क्या है, क्यों है। और जब लड़के समझेंगे तो लड़कियों की जिंदगी भी थोड़ी आसान हो जाती है। और पीरियड्स पर

0: चुप भी रखने से ना मिथ्स बढ़ते हैं, इसलिए बात करनी जरूरी है। तो पीरियड्स के बारे में बात कीजिए और कोई परेशानी है तो उसे भी खुलकर बताइए, और पीरियड्स के दौरान जो दर्द होते हैं, जो परेशानी होती है, उसे आप हल्के में मत लीजिए। जो भी मिथ्स हैं उसे खत्म कीजिए, और पीरियड्स के दौरान कोई भी अपवित्र नहीं होता है, अशुद्ध नहीं होता है। थोड़े आराम की जरूरत होती है, थोड़े ध्यान रखने की जरूरत होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डेली लाइफ को जीना बंद कर दे। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हाइजीन मेंटेन रखिए, तो आप इन्फेक्शन से भी बचे रहेंगे। अपना और अपने अपनों का रखिए खास ख्याल, और इन्हीं कुछ बातों के साथ तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसका गर्मियों में सभी को इंतजार रहता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लीची के बारे में। और लीची अपने स्वाद और अपने रूप के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और ख़ास तौर से किसान भाई बहन जो लीची उत्पादन करते हैं उन्हें काफ़ी अच्छी आय मिलती है लीची उत्पादन से। लेकिन अगर उनके लीची पर कीटों का प्रकोप हो तो उनके आय पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में किसान भाई बहनों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि लीची के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। सर आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, आप हैं कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: सर लीची के सबसे प्रमुख कीट कौन कौन से हैं?
5: अच्छा, तो ये बहुत ही एक ससमय कार्यक्रम है और लीची के प्रमुख जो कीट बिहार में हम लोग फेस करते हैं, किसान भाइयों फेस करते हैं, उनमें तीन कीट बहुत महत्वपूर्ण है। एक है लीची का फल छेदक, जो जिसका सुंडी विकसित हो रहे फलों में छेद करके अंदर प्रवेश करती है। दूसरा है लीची का पत्ती मोड़क, इसका सुंडी कोमल पत्तियों को मोड़कर भीतर से खाती है। और तीसरा है रस चूसने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं लीची माइट। ये बहुत सूक्ष्म एक कीट है जो पत्तियों पर आक्रमण करता है और रस चूस के नुकसान पहुंचाता है। और ये तीनों कीड़ों को अगर ससमय हम लोग प्रबंधन ना करें तो ये सारे कीट गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचा सकते हैं।
4: तो सर जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर इनका सही समय पर प्रबंधन ना

0: धन का क्षेत्र कम हो जाता है और नई वृद्धि बहुत भारी रूप से प्रभावित होते हैं। और जो लास्ट वाला कीट के बारे में जिक्र किया जिसका नाम है लीची माइट, ये कुमूल पत्तियों पर आक्रमण करता है और पत्तियों के निचली सतह पर भूरे रंग की मखमली परत बन जाती है जिसके वजह से पत्तियों विकृत होकर मुड़ जाती है और पौधे की बढ़-बढ़ कम हो जाती है।
1: सर, जैसे कि आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया तो वो अलग अलग कीट अलग अलग अवस्था में दिखते होंगे, तो कौन से कीट कौन से अवस्था में देखे जा सकते हैं?
0: जी, तो ये जो पत्ती मोड़क कीट है उसका अगर एग्जाम्पल ले और माइट का भी एग्जाम्पल ले तो ये दोनों कीट नई शाकीय वृद्धि के समय दिखाई देते हैं। फल छेदक मुख्यतः पुष्पन और फल विकास की अवस्था में दिखाई देता है। इसके लिए किसानों को फूल आने, फल बनने और नई पत्ते के समय बाग की नियमित निगरानी बहुत अच्छे से करना चाहिए।
1: सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि नए बाग की निगरानी करनी चाहिए, तो ऐसे में ये भी जरूरी होता है कि जो निगरानी लगातार करते हैं वो शुरुआती अवस्था में ही कीट के प्रकोप को पहचान लेते हैं। तो अगर किन्हीं को नहीं पता है, किसान भाई बहन इस बात से अनजान है कि शुरुआती अवस्था में कैसे कीट के प्रकोप को पहचान करें, तो कैसे कर सकते?
0: तो जैसे हर एक कीट का जो प्रारंभिक पहचान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये किसान भाइयों को भी अच्छे से मालूम है। तो कुछ संकेत हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे मुड़ी हुई अगर कमूल पत्तियों को किसान भाइयों को दिखाई देता है तो वो बिल्कुल पत्ती मोड़ो कीट का संकेत होता है। पत्तियों पर भूरे मखमली धब्बे जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र किया और सिकुड़ना, ये माइट का प्रकोप का लक्षण होता है। और फल पर बहुत ही छोटा छेद या कीट का अगर मल भी दिखाई देता है तो फल के ऊपर, तो ये फल छेदक का संकेत होता है। तो इसके लिए बाग का नियमित रूप से निरीक्षण करना जरूरी होता है ताकि सारे कीट का प्रकोप शुरू हुआ है कि नहीं इसके बारे में किसान भाइयों को अच्छे से मालूम पड़े।
1: सर, पहचान के बाद जरूरी होता है कि उनका प्रबंधन किया जाए।
0: जी,
1: तो इन कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाए?
0: तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रबंधन समेकित कीट के आधार पर ही करना चाहिए। तो बहुत सारे व्यावहारिक और प्रभावी उपाय हैं लीची के बगीचे में लीची का जो क्षति करने वाला जो कीट है उसको नियंत्रण करने के लिए। जैसे बाग की स्वच्छता, ये किसान भाइयों को मालूम है कि ये हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, संक्रमित पत्तियों, नई टहनियों तथा गिरे हुए जो फल होता है उस फल को हटाना चाहिए और इससे कीट का प्रभाव बहुत हद तक कम होता है। छाटाई बहुत महत्वपूर्ण होता है लीची में। फल तुड़ाई के बाद अधिक घनी और संक्रमित शाखाओं को छटाई करना जरूरी है। उचित धूप और वायु संचार से कीट का वृद्धि इसके वजह से कम होती है। संतुलित पोषण का जो प्रयोग वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिक नाइट्रोजन का अगर उपयोग करेंगे किसान भाई तो इसका लीची का जो है वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोमल वृद्धि, उसका बढ़ती है और कीट का प्रकोप बढ़ सकता है। नियमित निगरानी, मतलब लीची का बगीचा का नियमित निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैविक और वनस्पतिक कुछ उपाय है, जैसे नीम तेल, उसका 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से नियमित रूप से छिड़काव करना चाहिए। ये एक पर्यावरण के अनुकूल एक उपाय है और इससे रस चूसने वाले कीट तथा छोटी सुंडिया, ये सब जो है इनके अगेंस्ट में ये बहुत कारगर होता है। कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो आपका क्षति पहुंचाने वाला कीट है उसको खा जाते हैं, जैसे मकड़िया, लेडीबर्ड बिटल, लेस विंग, तो इसको बचा के रखना चाहिए, हम कहे कि संरक्षण करना जरूरी है।
1: सर, अगर प्रकोप अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में किसान भाई बहन क्या करें?
0: जी, तो यदि कीटों का संख्या आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर पहुंच जाए तो स्थानीय जो कृषि विशेषज्ञ है उसका सलाह लेना चाहिए। फिर भी मैं 2-3 केमिकल का नाम यहाँ पे जिक्र करूंगा। जैसे फल छेदक और फली पत्ती मोड़क के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट बोल के एक दवा आता है जिसका 5 SG, मतलब सोल्यूबल ग्रैन्यूल, उसका 0.4 g प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और माइट के लिए फेनाजाक्विन 10% इसी आता है, मतलब इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट, उसका 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना जरूरी है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छिड़काव उचित अवस्था में हो रहा है और पूरे वृक्ष का जो पत्तियां हैं और फल है उसके ऊपर बढ़िया से स्प्रे हो रहा है।
1: तो उम्मीद है कि सर ने जो भी बातें बताई उन बातों का ध्यान रख के आप लीची

0: के उत्पादन से अच्छी आय कमा पाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर किसान भाई बहनों को इतनी उपयोगी बातें बताई।
1: धन्यवाद आपको भी।
0: आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपने फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया। योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
3: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
3: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल,
3: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
3: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
3: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
2: बिल्कुल सही, जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
3: विमलेश जी आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा,
2: जी
3: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
2: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
3: विमलेश जी एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
2: जी बिल्कुल सही, और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी अब आपकी बारी।
3: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
2: जी
3: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
2: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि
3: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
2: जी
3: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
2: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं।
3: जी
2: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
3: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
2: जी।
3: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
2: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसके पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
3: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
2: जी।
3: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
2: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
3: जी।
2: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
3: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
2: जी।
3: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
2: जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
3: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
3: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
2: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम।
3: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू। सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।

0: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
1: वीर जोरावर की
2: जय।
1: वीर जोरावर की
2: जय।
1: जय जेरापुर जय भारत।
2: जय जेरापुर जय भारत।
3: राजा जोरावर सिंह हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
4: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
3: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
4: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
5: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमाने का कोई मौका ही ना मिले।
6: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
5: जी।
6: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
5: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
6: बिल्कुल,
5: आपके सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
6: जी मंत्री जी।
5: जी महाराज।
3: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
7: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
8: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह,
9: आइए हमारे दोस्त। तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
6: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
9: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
6: देखिए निजाम साहब।
9: जी फरमाइए।
6: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
9: जी।
6: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
9: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
6: जी।
9: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
10: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
3: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक
9: हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वही निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
4: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
10: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
8: बिल्कुल।
10: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
11: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
10: लेकिन जरा होशियारी से।
11: जो हुकुम सरकार।

0: तरफ से गिर चुके हो।
1: ये क्या है?
0: You are under arrest।
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ, आओ सामने।
0: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियों,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी
3: हाँ। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश सालार जंग, मैं खुश हुआ। मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: जाओ, चलो इसको, चलो
3: मुझे, चलो, छोड़ो मुझे।
4: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
5: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
6: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
1: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
6: देखो देखो, तो मैं हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
1: ये नामुमकिन है।
6: वाय,
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
6: तो नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
1: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
6: एक्चुअली यू आर

0: फूल।
1: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
2: काला पानी की सजा?
1: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
2: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
1: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
3: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
2: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार अनुमान है कि 27 मई से 31 मई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में अगले कुछ दिनों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा इन जिलों में 28 मई को लू चलने की यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है। 27 से 31 मई के दौरान अनुमान है कि अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें, साथ ही खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जिनके खेत में गर्मा मूंग और उड़द है, उन्हें बता दें, देर से बोई गई गर्मा मूंग और उड़द की फसलों में हेयरी कैटरपिलर का प्रकोप होता है, ऐसे में उनकी निगरानी करना जरूरी है। प्रकोप अगर दिखाई दे तो मिथाइल पैराथियन 50 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जिनके खेत में सब्जियां हैं, उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप होता है, इसलिए उनकी नियमित निगरानी की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियन 50 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को या फिर डाइमेथोएट 30 इसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं, उन्हें बता दें, आम के बागानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि आम के बागानों में रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में या फिर लैम्बडा साहेलोथ्रीन की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। बागानों में पर्याप्त और निरंतर नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। जिनके बागानों में लीची है, उन्हें बता दें, लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसी वजह से किसान भाई बहन किसी भी प्रकार का छिड़काव शाही लीची में अभी नहीं करें। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्बडा साहेलोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं, उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और जो पशु दूध देते हैं उन्हें खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। वहीं गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए। साथ ही पशुओं को हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों

दोस्त आर्जेनु, दोस्तों और किसान भाइयों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच उन्नत कृषि कार्यक्रम में। और आप सोच रहे भाई कि आज कौन से विषय के साथ मैं हाजिर हूँ, तो बता दूं मैं आपको, आज का हमारा विषय है कृषि में जैव उर्वरक का महत्व एवं उपयोग। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं आजकल रासायनिक खादों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस वजह से हमारी ज़मीन, हमारी जो मृदा है, मिट्टी है, उसकी उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। और अभी फ़िलहाल तो ज़रूरी है, अगर आप उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो जैव उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर लगातार बार बार इन रासायनिक खादों का आप इस्तेमाल करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आएगा कि आपकी जो वो

0: हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, और हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई, हमारे श्रोतागण ये जान लें कि जैव उर्वरक क्या होता है।
1: देखिए, जैव उर्वरक को हम बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं, और ये एक ऐसे सम्मिश्रण होते हैं जिनके अंदर लाभदायक सूक्ष्मजीव होते हैं, और ये लाभदायक सूक्ष्मजीव जब मिट्टी में जाते हैं तो अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं कि वायुमंडल में 79% या 78%

पौधों को वो उपलब्ध होने लगता है। तो ये राइजोबियम का प्रयोग केवल हम दलहनी फसलों में ही कर सकते हैं, बाकी किसी और फसलों में इसको वो नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये नाइट्रोजन एक राइजोबियम हो गया दलहनी फसलों के लिए। इसी तरह से एक बैक्टीरिया होता है एजोटोबैक्टर, इस बायोफर्टिलाइजर का नाम होता है एजोटोबैक्टर। इसका काम होता है वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करना, और इसको जो रिकमेंड करते हैं सभी फसलों में कर सकते हैं सिवाय दाल वाली फसलों के, लेकिन सबसे अच्छा जो काम करता है ये सब्जी वाली फसलों में करता है। और इससे यदि पौधों में सही से अप्लाई करा जाए तो 20 से 25 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टर एक साल में मिल जाता है। अच्छा। और सब्जी वाली फसलों में ज़्यादा प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया की खासियत होती है कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या रेगुलर्स का सिक्रेशन ज़्यादा करता है, जो कि सब्जी वाली फसलों को उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। तीसरा नाइट्रोजन वाला बायोफर्टिलाइजर होता है एजोस्पाइलम। एजोस्पाइलम एक ऐसा जीवाणु है जो कि सहजीवी तरह से काम करता है, जैसे कि धान्य फसल जैसे धान है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, तो उनमें किसान भाई इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके प्रयोग करने से भी 20 से 30 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टर फसलों को मिल जाता है। तो ये सारा मैंने बताया नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक या बायोफर्टिलाइजर। नंबर दो पे आता है स्फुरा या फास्फोरस को उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक या बायोफर्टिलाइजर। तो ये एक ऐसे बायोफर्टिलाइजर होते हैं या जीवाणु होते हैं जो कि मिट्टी में जाते हैं। तो हम जानते हैं कि मिट्टी का जो 45% भाग होता है वो खनिज पदार्थ से बना होता है। ये खनिज पदार्थ बहुत सारे न्यूट्रिएंट के सोर्स होते हैं, अभी अब उनके अंदर विद्यमान होते हैं, लेकिन उस अवस्था में होते हैं जिसमें कि पौधे के लिए बेकार होता है। तो ये जीवाणु क्या करता है, जब मिट्टी में जाता है तो अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा जो फिक्स या स्थिर अवस्था में फास्फोरस था पड़ा हुआ या मिनरल फॉर्म में फास्फोरस था पड़ा हुआ, उसको अपनी प्रतिक्रियाओं से मृदा घोल में लेकर के आता है। और उस अवस्था में लेकर आता है, हम जानते हैं कि आयनिक फॉर्म में लेता है प्लांट, तो आयनिक फॉर्म में लेकर के आता है, पौधा उसको प्रयोग करने लगता है। तो ये दूसरे प्रकार का मैंने जैव उर्वरक बताया फास्फोरस के लिए। तीसरा होता है इसी तरह से पोटेशियम सोल्युबिलाइजर होते हैं, जो कि पोटास को सोल्युबिलाइज करते हैं मिट्टी के अंदर। तो जनरली क्या होता है कि मिट्टी के अंदर लगभग 94 से लेकर 96% तक पोटास अस्थिर होता है या अघुलनशील होता है, बेकार होता है पौधों के लिए। तो जब हम इन जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं स्पेशली पोटेशियम सोल्युबिलाइजिंग बैक्टीरिया का, तो वो उस अवस्था में लेकर आते हैं उससे जिसमें कि पौधा लेता है। तो हमको बाहर से रासायनिक खादों पर जो निर्भरता है वो कम हो जाती है। तीसरा टाइप के बायोफर्टिलाइजर होते हैं मोबिलाइजर। जनरली मिट्टी के अंदर ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कर पाते या जा नहीं पाते। तो जब वो जा नहीं पाते हैं तो पौधे के आसपास में, पौधे की जड़ों के आसपास में जो भी पोषक तत्व होता है वो पौधा ले लेता है, लेकिन जो उसकी जड़ के दूर था वो उसके पास आ नहीं सकता, क्योंकि उसका वो कैरेक्टर ऐसा होता है, विशेषता ऐसी होती है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच नहीं पाता। तो उसमें एक बायोफर्टिलाइजर होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है कि ये सहजीवी संबंध होता है पौधों की जड़ों के साथ में, एक जो कवक होता है मिट्टी में पाया जाता है उसका। तो ये क्या करता है, अपनी हाइफी या माइसेलियम का एक जाल तैयार कर लेता है, जड़ों के साथ में मिट्टी में फैल जाता है, और जहाँ जड़ों तक नहीं पहुँच पाती, ये जाल पहुँच करके और वहाँ पर उपस्थित जो अगतिशील पोषक तत्व था जैसे कि फॉस्फोरस है या जिंक है, आयरन है, तो उनको ये पौधों की जड़ों के तक लेकर आता है और पौधों की जड़ों के अंदर भी प्रवेश करा देता है। तो ये तीन मुख्यतः

0: ऐसा, उसके अंदर बैक्टीरिया होता है जो कि लाभदायक बैक्टीरिया होता है, अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा पौधों को न्यूट्रिएंट उपलब्ध कराता है और उनके रोगों से प्रतिरोधकता क्षमता भी इंक्रीज करता है या बढ़ाता है। तो इसमें और ये तो हो गया एक पार्ट की हम जो फसल का आपसे फसल खाते हैं, मान लीजिए धान या गेहूँ सब्जी खाते हैं तो वो अच्छी होगी, स्वस्थ होगी। दूसरा सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम हो रहा है मिट्टी के साथ में हो रहा है कि जब हम रासायनिक खाद या पेस्टिसाइड देते हैं तो उसकी उर्वरता क्षमता कम होती चली जा रही है। उसमें उर्वरता क्षमता कम कैसे हो रही है कि हम लोगों ने क्या करा, किसान भाइयों ने क्या करा कि रासायनिक खादों पर ही हम डिपेंड हो गए, उसके अंदर जैविक खाद या कंपोस्ट का हमने प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दिया या बहुत ही कम कर दिया। कोई किसान है 3 साल में एक बार डालता है, कोई 5 साल में डालता है, कोई कभी कभी डालता ही नहीं है, उसका मतलब ऐसा ही वो चल रहा है, खेती हो रही है रासायनिक खाद के भरोसे। तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं और हमने जैविक खादों का प्रयोग करना छोड़ दिया। मान लीजिए घर की खाद का प्रयोग नहीं करते, कंपोस्ट का खाद का प्रयोग नहीं करते, गोबर की खाद का प्रयोग बहुत कम करते हैं, तो इससे जमीन के अंदर कार्बन की मात्रा कम हो गई। कार्बन की मात्रा, कार्बन क्या होता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है मिट्टी का, जो कि सभी पोषक तत्वों को प्रदान करने की क्षमता रखता है कार्बन के अंदर। तो कार्बन कम होने से और मृदा का कार्बन पदार्थ कम होने से मृदा में सूक्ष्म जीवों की कमी हो गई। सूक्ष्म जीवों की कमी होने का मतलब मृदा की हेल्थ बहुत खराब हो गई है। तो अब हम ये चाहते हैं कि मृदा की कार्बन कंटेंट बढ़ जाए, तो किसान भाइयों को हम रिकमेंड करेंगे, बोलेंगे कि आप लोग अपने खेत के अंदर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कोई भी हरी खाद दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर, क्योंकि उसमें उसकी मात्रा कम हो गई है और जीवाणुओं की संख्या भी बहुत कम हो गई है। तो ये इसके मुख्य लाभ हैं कि जब हम जीवाणु खाद देते हैं तो जीवाणु ही बैक्टीरिया या फंगस जीवाणु जो होते हैं लाभदायक, ये मिट्टी की लाइफ होती है या उसका जीवन होता है, इसके द्वारा ही सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं उसके द्वारा ही होते हैं मिट्टी के अंदर में। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके अंदर कोई रसायन नहीं होता। दूसरा ये होता है कि मिट्टी का ना तो वायु प्रदूषण होता है, ना ही मिट्टी प्रदूषण होता है, और ना ही हमारे स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव दुष्परिणाम पड़ता है इसके प्रयोग करने से। और सबसे बड़ा यह है कि यदि कोई किसान सही तरह से इसका प्रयोग करता है तो उपज में 10-12% तक वृद्धि हो जाती है। और साथ ही साथ रासायनिक खाद का प्रयोग जो किसान करते हैं उसमें कम से कम 20-25% तक कट शॉर्ट हो जाएगा या कमी हो जाएगी। मान लीजिए कोई किसान अपने खेत में यूरिया नाइट्रोजन 100 किलोग्राम देता है, तो यदि वो एजोटोबैक्टर या एजोस्पर्म का प्रयोग करता है तो उसमें वो 100 किलोग्राम की जगह 75 या 80 किलो ही देगा, बाकी 20-25 किलोग्राम उसका सेव हो जाएगा। तो हमारा पर्पज था कि किस तरह से हम मिट्टी के अंदर को रासायनिक खाद को जाने से रोकें, इस तरह से हम इसके प्रयोग से मिट्टी के अंदर रासायनिक खाद को जाने से रोक सकते हैं और मिट्टी की उर्वरता क्षमता को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिससे कि और साथ ही साथ उसकी उपज भी अच्छी मिलती रहती है, ऐसा नहीं है कि उपज कम मिलती है।
1: तो ये विशेषताएं हुई जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उपज अच्छी होती है और इसमें कोई भी रसायन नहीं होता है और जिसकी वजह से हमें कोई बीमारियां भी नहीं होती, क्योंकि कई बार देखा गया है कि केमिकल्स की वजह से हमारे जो इंटरनल बॉडी पार्ट हैं वो डैमेज होते हैं और कई बीमारियां भी होती हैं हमें। तो यहां पर इस बात का खास ख्याल रखें कि आप अगर किसान भाई हैं तो आप जैव उर्वरक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें अपने खेतों में। और इसके बाद यहां पर बातें हो गई विशेषताओं की, कितने प्रकार हैं उसकी बातें हो गई हैं, तो डॉक्टर साहब अब प्रयोग विधि के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे।
0: हाँ, ये प्रयोग विधि बहुत ही महत्वपूर्ण वो है, इसका अवयव है या पहलू है। किसान भाई रासायनिक खादों का प्रयोग विधि जानते हैं, कैसे यूरिया देना है, कैसे DAP देना है, कैसे SSP देना है, लेकिन जैव उर्वरकों का प्रयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसका एक्चुअली प्रयोग करना भी बड़ा आसान है नहीं, बड़ा ध्यान देना होता है इसका ट्रीटमेंट करते समय या उपचार करते समय। तो जैव उर्वरकों के प्रयोग करने के मुख्यतः 3 मेथड होते हैं, 3 टेक्नोलॉजी होती हैं या विधियाँ होती हैं। तो नंबर 1 इसमें आता है बीज उपचार। तो बीज उपचार के लिए जो हम बायोफर्टिलाइजर की दर लेते हैं वो 20 से 30 ग्राम प्रति KG ऑफ सीड लेते हैं। और यहाँ पर हम उदाहरण लेंगे, यदि किसी किसान के पास में 10 किलोग्राम बीज है तो 10 किलोग्राम बीज के लिए 200 से 300 ग्राम बायोफर्टिलाइजर जैव उर्वरक लेंगे और उसकी दुगनी मात्रा में हम पानी लेते हैं। तो मान लीजिए 200 ग्राम कल्चर था, बायोफर्टिलाइजर था, तो 400 मिलीलीटर पानी ले लेंगे। 400 मिलीलीटर का हम 10% गुड़ या जैगरी लेते हैं, लो क्वालिटी का गुड़ होगा या जैगरी होगा। तो 400 का 10% 40 ग्राम हो गया, 40 ग्राम गुड़ लेकर के हम उसको पानी में घोल लेंगे और यदि

नहीं है तो उसको हम स्टोव पे या गैस पे हीट कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं। गर्म करने का मकसद है हमको हमारा कि गुड़ अच्छी तरह से पानी में घुल जाए। जब पानी में गुड़ घुल जाता है तो हम उसको ठंडा कर लेंगे, इतना ठंडा कर लेते हैं कि उसका टेम्परेचर, उसका तापमान रूम तापमान पर आ जाए। जब वो ठंडा हो जाता है अच्छी तरह से, तो उसके अंदर जो 200 ग्राम बायो फर्टिलाइजर था उसको हम मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद में ये सारा का सारा काम हम छाया में करते हैं। ध्यान देते हैं कि छाया होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि धूप हो, धूप के नीचे हम कर रहे हैं। तो किसी पेड़ के नीचे या किसी रूम के अंदर में हम ये काम कर सकते हैं। तो अब नीचे फर्श फर्श साफ होना चाहिए। फर्श पे हम एक प्लास्टिक की शीट बिछा लेंगे। प्लास्टिक की शीट के ऊपर जो 10 किलोग्राम बीज था उस बीज को डाल लेते हैं, और उस पर जो सॉल्यूशन आपने बनाया था 400 ml का, 400 मिलीलीटर पानी के साथ में कल्चर का, उसको हम उसके ऊपर मिक्स कर देते हैं, डाल देते हैं। और हाथ से हथेली से नहीं करेंगे मिक्स, उसको उंगलियों की सहायता से मिक्स करते हैं, जिससे कि रगड़ ना खाए वो उसका सरफेस जो होता है बीज का। तो इस तरह से बीज के ऊपर उसका एक बायो फर्टिलाइजर का जरूरत का लेप आ जाता है। फिर इसको हम उस प्लास्टिक शीट जो अपने बिछाई थी उसके ऊपर इसको हम शीट को पूरा स्प्रेड कर देते हैं, बिछा देते हैं। बिछाने के बाद में उसको लगभग 1 घंटे तक छोड़ देते हैं छाया में ही, और 1 घंटे में वो लगभग

0: किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट लेंगे या उपलब्ध है तो, नहीं तो 100 किलोग्राम अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद दे देते हैं। इस गोबर की खाद में या वर्मी कंपोस्ट में हम उसको 5 किलोग्राम कल्चर को मिक्स कर लेते हैं और पूरी रात के लिए हम 12 घंटे लगभग छोड़ देते हैं। फिर सुबह को जिस खेत में हमको इसको यूज़ करना होता है, उपयोग करना होता है, उसमें जाकर के बखेर देंगे या ब्रॉडकास्ट कर देंगे और फिर उसके बाद में हल्की हैरो से जुताई कर देते हैं जिससे कि वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाए। ध्यान रखें कि इसका जो छिड़काव हमने करा है सुबह सुबह होना चाहिए या फिर शाम को, ऐसा ना हो कि दिन में 12-1 बज रहा है और बहुत तेज धूप है तो उस धूप में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया था, जो जीवाणु था, वो मर जाएगा और सूर्य की किरणें होती है उनसे। तो बखेरने के तुरंत बाद ही आपको इसको मिक्स करना होता है। तो ये मृदोपचार हो गया। और तीसरा तरह से आता है, कुछ किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं या धान लगाते हैं, तो सब्जी की खेती में तो बिछड़ा लगाते हैं या पौध लगाते हैं। तो नंबर तीसरा आता है पौधोपचार। पौधोपचार बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है उन फसलों में जिनमें कि हम पौध का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मिर्च लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, बैंगन लगाते हैं या गोभी है, तो इन सबको हम बीज के बिचड़ा के द्वारा लगाते हैं या सीडलिंग के द्वारा लगाते हैं। तो उसके लिए जो दर होती है वो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उस 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बायोफर्टिलाइजर लेकर के हम डालते हैं, 100 लीटर पानी में घोल लेंगे बड़ा बर्तन लेकर के, और घोलने के बाद में एक घोल बन जाता है 100 लीटर का। इस 100 लीटर के घोल में जो आपकी पौध है उस पौध को उखाड़ेंगे या बिचड़ा को उखाड़ेंगे और मिट्टी साफ करके उसकी जड़ को कम से कम 45 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और वो पानी के अंदर सॉल्यूशन में छोड़ दिया 45 मिनट तक, और 45 मिनट के बाद में उसको निकाल करके जिस खेत में रोपाई करनी थी वहाँ पर जा करके हम उसको रोप देते हैं। तो ये तीसरा प्रकार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है स्पेशली सब्जियों के लिए, ये मैंने बताया आपको। और होता है कि हम नहीं जानते, किसान भाई नहीं जानते किस फसल में कौन सा बायोफर्टिलाइजर दें, कौन से पे प्रयोग करें, तो इस थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। दलहनी फसलों के लिए जैसे कि मैंने बताया था केवल राइजोबियम का प्रयोग करते हैं, और राइजोबियम के साथ में हमेशा संशोधित किया जाता है, रिकमेंड कराया जाता है PSB, फॉस्फोरस सोलिडाइजिंग बैक्टीरिया। तो राइजोबियम के साथ में मिक्स करके हमेशा PSB को अप्लाई करना होता है। इससे क्या होगा कि राइजोबियम की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी और पौधों की जड़ों के अंदर गांठों का विकास ज़्यादा होगा, जड़ों का विकास भी ज़्यादा होगा और गांठों का विकास ज़्यादा होगा। जब जड़ों का विकास और गांठों का विकास ज़्यादा होगा तो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप इसमें राइजोबियम के साथ में हमेशा PSP का प्रयोग करें। प्रयोग विधि जैसे मैंने बताया था पहले वही होती है। इसी तरह से एजोटोवेक्टर या PSB होता है, तो उसमें उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, PSB का प्रयोग सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो दलहनी फसलें हो या सब्जी वाली हो या धान्य हो या फल हो या फूल हो। तो PSB का प्रयोग मैंने बता दिया किस किस फसलों में कर सकते हैं। तीसरा आता है एजोटोवेक्टर। एजोटोवेक्टर का प्रयोग हम कर सकते हैं दलहनी फसलों को छोड़कर बाकी सभी में कर सकते हैं, और इसका इस प्रयोग स्पेशली सब्जी वाली फसलों में करते हैं जो कि बहुत ही लाभदायक होता है। तीसरा है एजोस्पाइलम, एजोटोवेक्टर और राइजोबियम तीनों ही ये नाइट्रोजन को उपलब्ध कराते हैं पौधों को, और एजोस्पाइलम का प्रयोग हम धान्य वाली फसलों में रिकमेंड करते हैं। और तीसरा चौथा होता है KSB या पोटेशियम सोलिडाइजिंग बैक्टीरिया। इसका प्रयोग सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो धान्य हो, गेहूँ हो, धान हो, ज्वार हो या सब्जी हो या फल फूल जो भी हो, सब में प्रयोग कर सकते हैं इसका हम। चौथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा का प्रयोग हम सभी फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो दलहनी हो, धान्य हो, फूल हो, सब्जी हो, फल हो। तो ये सब मैंने बताया आपको किन किन फसलों में किन किन जड़ों का प्रयोग कर सकते हैं और कैसे करें, ये भी मैंने आपको बताया।
1: तो किसान भाई, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको पूरे अच्छे तरीके से विस्तार में बताया कि आप जैव उर्वरक का प्रयोग कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से दलहनी फसलों के लिए कौन कौन से जैव उर्वरक हैं उनके बारे में बताया डॉक्टर साहब ने आपको। और अंत में जाते जाते डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, और वो ये है कि आप एक ही लाइन में बता दें हमारे किसान भाइयों की कि रासायनिक खादों की अपेक्षा क्या लाभ है जैव उर्वरक का।
0: देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये कि रासायनिक खाद की अपेक्षा में जैव उर्वरक क्यों अच्छे होते हैं। इसका एक ही उत्तर है या दो उत्तर हो सकते हैं कि रासायनिक खाद हम देते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, रासायनिक खाद देने से मृदा प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है और वायु प्रदूषण हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ भी प्रभावित हो रही है, स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। तो ये उसके हानि है रासायनिक खादों की। और जैव उर्वरक को जब हम प्रयोग करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उससे मृदा के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है, जल भी उसका कहीं कहीं हद तक अच्छा रहता है।

0: है, और जो हम उत्पाद खाते हैं, चाहे जो प्रोड्यूस खाते हैं, चाहे सब्जी हो, फल हो, धान हो, तो वो सभी एकदम सेफ होते हैं, उसके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं होता, क्योंकि जैव उर्वरक खुद अपने आप में कोई रसायन तो है नहीं, इसमें एक जैव उर्वरक में जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं जो कि पूरी तरह से सेफ होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं।
1: तो यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या लाभ है जैव उर्वरक का रासायनिक खादों की अपेक्षा। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कृषि में जैव उर्वरक के महत्व एवं उपयोग के बारे में बताया। आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे किसान भाइयों को भी धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुना। लेकिन सुनने के बाद आप इसे अपने जो प्रयोग विधि है, जो आप खाद इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, आप इसे अपनाएं तो आपके लिए लाभकारी होगा, आपके फसलों के लिए लाभकारी होगा। और फिलहाल तो आपसे मुलाकातें होती रहेंगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि,
2: अटेंशन अटेंशन अटेंशन ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज टू रिमाइंड यू ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। इफ योर किड्स आर 5 और लेस हु हैव मिस्ड अ वैक्सीन, हियर दिस अपील। गेटिंग देम वैक्सीनेटेड इमीडिएटली इज द की फॉर देयर सेफ्टी एंड हेल्थ। इट इज अ वाइज रिक्वेस्ट, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम इलनेस टू बी देयर बेस्ट। And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज अंग उमंग में हम बात करने वाले हैं भागलपुर के बारे में। जी हाँ, भागलपुर के नामों के बारे में। आपको पता तो होगा ही कि भागलपुर को अंग प्रदेश, अंग देश जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी भागलपुर के कई सारे नाम हैं, और आज हम उन सारे नामों के बारे में बातें करने वाले हैं। बहुत सारी बातें होने वाली है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। तो चलिए हम बातें शुरू करते हैं भागलपुर के बारे में, भागलपुर के नामों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम भागलपुर के बारे में कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं। भागलपुर बिहार के पूर्वी भाग में बसता है और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये तो सभी को पता है, यहाँ गंगा माता को कितना पूजा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रमुख नदी है वो गंगा नदी ही है। इसके अलावा कुछ छोटी नदियाँ और नाले हैं, लेकिन बात करें कोशी की, हालांकि ये सीधे भागलपुर से नहीं गुजरती है, पर कोशी का प्रभाव भागलपुर पे जरूर पड़ता है। और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि भागलपुर के अलग अलग नामों के बारे में। सबसे पहले तो हम जो भागलपुर आज के समय में इस नाम का इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे एक बड़ी अच्छी सी कहानी मानी जाती है कि है, ये एक लोक मान्यता है। इस नाम को समझे तो इसका मतलब होता है भाग्य का नगर, समृद्धि का नगर। और अभी यानी कि आधुनिक दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अगर कोई नाम है तो वो भागलपुर ही है। इसके अलावा देशों में हम एक और नाम से जाने जाते हैं, वो है सिल्क सिटी। जी हाँ, सिल्क सिटी बहुत ही प्यारा सा नाम है। और सिल्क सिटी इस नाम से क्यों जाना जाता है, ये तो आप सभी को पता होगा ही, क्योंकि यहाँ पर सिल्क से जुड़े हुए जो बहुत सारे व्यवसाय हैं वो हैं। और यहाँ के जो सिल्क के बने कपड़े होते हैं अपने देश भर में तो जाते ही हैं, साथ ही विदेशों में भी भागलपुरी सिल्क की बड़ी डिमांड रहती है। इसी वजह से भागलपुर को लोग सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम बात करें एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम की, तो वो है चंपापुरी, चंपा नगरी, चंपावती। जी हाँ, एक समय ऐसा था जब यहाँ पर चंपा के पेड़ बहुत सारे हुआ करते थे, जिस की वजह से इस जगह को चंपावती या चंपा भी कहा जाता था। अगर हम बहुत सारी किताबों में लिटरेचर में देखें तो चंपावती नाम से भी इस जगह को जाना गया था। और अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य में चंपापुरी को एक बहुत ही पवित्र जगह माना गया है, और साथ ही संस्कृत की कविताओं में और कालिदास के लेखों में अक्सर इस जगह को अक्सर मालिनी स्थित चंपा भी कहा गया है। तो ये कुछ जो नाम है बहुत ही रिलीजियस नाम है, धार्मिक, सांस्कृतिक और साथ ही लिटरेचर से जुड़े हुए नाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना तो अंग देश के नाम से भी भागलपुर को जाना जाता है, और अभी भी कई जगहों पर हम भागलपुर को अंग प्रदेश के नाम से संबोधित करते हैं। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जो पहले 16 प्राचीन महाजनपद थे उनमें से एक हमारा ये अंग देश था, और यहाँ पर राज कौन करते थे? जी हाँ, यहाँ पर राज करते थे कर्ण, और इन्हीं के राज से जो अभी हमारे भागलपुर का नाम है ना वो पनपा था, वो बना था। आप सभी को ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि राजा कर्ण कितने बड़े दानवीर थे, मतलब उनसे उनका कवच मांग लिया गया था तो उन्होंने वो भी दे दिया था, वो भी युद्ध से पहले। जो भी राजा कर्ण के देश में यानी कि अंग देश में आता था उसके भाग्य उदय हो जाते थे, इसी वजह से तब इस जगह का नाम पड़ गया था। जो कुछ बाहर की नगरी से, बाहर के देशों से आकर यहाँ बसे, अंग देश में बसे या उनका यहाँ पर उद्धार हुआ तो उन्होंने अंग प्रदेश को भगदत्तपुरम कहना शुरू कर दिया। भगदत्तपुरम यानी कि जो जहाँ पर किसी का भाग्य उदय हो जाए, भाग्य बन जाए, तो भगदत्तपुरम से बाद में ये भगदत्तपुरम थोड़ा बिगड़ता हुआ, थोड़ा बनता हुआ भागलपुर बन गया, और अब हम इसे भागलपुर कहते हैं, यानी कि जहाँ लोगों के भाग्य उदय हो जाते हैं, भाग्य बन जाते हैं। इसके अलावा हम और कुछ नामों की बात करें ना तो वो जो कुछ नाम है वो मालिनी है। जी हाँ, ये बहुत ही पोएटिक सा नाम है, कवि अपनी कविताओं में भागलपुर को, अंग प्रदेश को मालिनी नाम से संबोधित करते थे। मालिनी एक नदी का नाम है और जिसके किनारे चंपा बसता था, तो इसी वजह से संस्कृत की कविताओं में, ग्रंथों में पोएटिक रेफरेंस के तौर पर मालिनी नाम का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि मालिनी कभी भी ऑफिशियल नाम नहीं बना, लेकिन कुछ कवियों ने मालिनी नाम से भी भागलपुर को संबोधित किया। इसके अलावा हम बात करें तो भागीरथपुर, जी हाँ, भागीरथपुर नाम से भी भागलपुर को जाना गया था एक वक्त पे। अगर हम बात करें ना तो अभी हमारे पवित्र धरती को जो पवित्र बनाती है यानी कि गंगा नदी को धरती पर लाने का अगर श्रेय दिया जाता है लोक मान्यताओं में, पौराणिक कथाओं में, तो वो भागीरथ ऋषि को दिया जाता है, और इसी वजह से लोक कथाओं और पुरानी मान्यताओं में भागलपुर के आसपास के जो क्षेत्र है ना उन्हें कभी कभी भागीरथपुर भी कहा गया, क्योंकि हमारा जो भागलपुर है वो गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और कई बार होता है ना कि हम किसी शब्द को किसी और तरीके से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन कोई और उसी शब्द को किसी और तरीके से बोलता है, लिखता है, उसी का एक उदाहरण है भोगलपुर। जी हाँ, जिसे हम भागलपुर के नाम से जानते हैं ना, मुगलकालीन दस्तावेजों को आप अगर देखेंगे तो कुछ जगहों पर इसे भोगलपुर के नाम से संबोधित किया गया है, भोगलपुर लिखा गया है, जो कह सकते हैं कि उच्चारण करने का सिर्फ एक भिन्न तरीका है। कुछ मुगल के लेखकों ने भागलपुर को भोगलपुर बोला और भोगलपुर लिखा, तो कुछ दस्तावेजों में आप भोगलपुर भी देखेंगे, पढ़ेंगे। और इसके साथ ही बात करें ना तो एक ऐसा भी वक्त था जब भागलपुर को प्राची देश भी कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि भागलपुर का जो क्षेत्र था ना वो प्राची देश के पूर्वी भाग में आता था। इसके साथ ही अगर हम बात करें ना अंग प्रदेश के नाम के पीछे, अगर हम कुछ पौराणिक कथाओं को समझे, मान्यताओं को समझे, तो प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अंग, और वो इस जगह पर राज किया करते थे, जिसकी वजह से इस जगह का नाम पड़ गया अंग प्रदेश, यानी कि राजा अंग का प्रदेश। हमने आपको बताया कि कुछ कवियों ने, लेखकों ने हमारे इस अंग प्रदेश को मालिनी नाम से भी संबोधित किया है। मालिनी नगर का ही मतलब होता है, जहाँ पर सौंदर्य हो, फूल हो, वृक्ष हो। रामायण और महाभारत में भी भागलपुर अंग प्रदेश का बहुत जिक्र मिलता है। तो हमारी ये जो अपनी धरती है, भागलपुर की धरती है, और इसका जो नाम है भागलपुर, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग कहानियों में, अलग अलग मान्यताओं में, अलग अलग दस्तावेजों में भागलपुर के नाम को दिखाया गया है, लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपने भागलपुर के लगभग, जी हाँ, या तो फिर कह सकते हैं कि सारे नामों के पीछे की वजह को समझ लिया होगा। अगली बार अगर कोई पूछे कि तुम्हारे शहर का नाम अजीब सा क्यों है भागलपुर, तो उसे बहुत अच्छे से बताइएगा भागलपुर का मतलब होता है जहाँ लोगों के भाग्य उदय होते हैं। आज के अंग उमंग कार्यक्रम में इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जी हाँ 90.8 FM ग्रीन, जो आपको ले जाता है हरियाली से खुशहाली तक। और बातें होती है यहाँ पर हरियाली से खुशहाली तक की, और आज भी हम बहुत ही अच्छी बातें करेंगे। और आज पशुपालक भाइयों के लिए खास बातें होंगी उनके पशुओं के लिए। और गर्मी का मौसम है, आप सभी देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है मार्च महीने से ही बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनकी चिंता बढ़ती जाती है कि उनके पशुओं की वो देखभाल करें, गर्मी के इस कहर से उन्हें कैसे बचाया जाए, क्या कुछ उचित देखरेख उन्हें करनी चाहिए, रखरखाव करनी चाहिए। तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए इसी विषय पर, यानी गर्मियों के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल हम कैसे करें, इस विषय पर आपको जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर राजेश कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। तो आज सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: जी धन्यवाद।
4: डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय ही है, तो सबसे पहले जो गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए जो खास रखरखाव की ध्यान देने योग्य बातें हैं वो हमारे सभी पशुपालक भाइयों को बताएं।
6: वातावरण में तापक्रम अधिक होने से हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही कठिनाइयों का दौर इस गर्मी में झेलना पड़ता है, क्योंकि खास करके शहरी और अर्बन और पेरी अर्बन जो शहरी इलाका है या शहर से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ पर क्रॉस ब्रीड का पालन ज़्यादा किया जाता है, या संकर नस्ल की गायों का, या प्योर हॉस्टन फ्रीजियन का, या जर्सी नस्ल की गायें हैं। तो इन गायों में गर्मी में समस्या अधिक आती है
4: जी।
6: क्योंकि ये ठंडे प्रदेश की गायें हैं और हमारे यहाँ का तापक्रम अभी 40 से 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ऐसी स्थिति में इन क्रॉसब्रीड पशुओं के लिए खास ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ जैसे ही समर स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस के चलते पशुओं में हाँफने की समस्या, उनके बॉडी का जो शरीर का तापक्रम है वो सामान्य जो पशुओं का तापक्रम 101.6 से 102 डिग्री फारेनहाइट तक है, उससे बढ़ के ये 103, 104, 105 डिग्री फारेनहाइट तक चला जाता है। ऐसी स्थिति में जो सीधा प्रभाव पशुओं पर पड़ता है वो उनके उत्पादन क्षमता पर पड़ता है, और जहाँ दूध में प्रतिदिन 5 लीटर तक की कमी हो जाती है, जो कि हमारे जो वैसे फार्मर्स जो दूध उत्पादन करके अपना व्यवसाय करके जो अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं उससे मुनाफा कमा रहे हैं, तो सीधा उनके उत्पादकता पर असर पड़ता है
4: और
6: नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए सबसे पहले तो अपने पशुशाला के निर्माण में ही आपको ध्यान देना है कि छत की ऊंचाई बढ़ानी होगी
4: जी,
6: ताकि सीधा जो ऊपर से जो टेम्परेचर जो गर्म होता है वातावरण में टेम्परेचर की अधिकता के चलते उसका कम प्रभाव आपके पशुओं पर पड़े। हो सके तो या तो अगर आपने पशुशाला के निर्माण में जो आपने एस्बेस्टस दिया है या टीन का छत दिया है तो उसके नीचे अगर आपने खर का एक मोटा लेयर दिया है तो ठीक है, अन्यथा आप अपने जो छत है उसके ऊपर भी एक लेयर खसका या पुआल का देके और उसे भिंगाने का प्रयास करें, जिससे कि अंदर का तापक्रम सामान्य तापक्रम बना रहे। दूसरी बात है कि क्रॉस ब्रीड में जितना नस्ल प्योर होता जाएगा उनको तापक्रम मैनेजमेंट उतना ज़्यादा ध्यान देना होगा। अपने पशुशाला में पंखा लगाएं, अगर हवा का आदान प्रदान हो रहा है तो ठीक है, अन्यथा पंखा या कूलर के माध्यम से वहाँ आप टेम्परेचर मेंटेन करें। अगर सीधा गर्म हवा का प्रवेश आपके पशुशाला में करता है, या जो अभी तो लू उस तरह का नहीं चल रहा है, लेकिन जब लू चलेगी तो उससे बचने के लिए अपने पशुशाला में जो भी उसके दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उस पर जूट का बैग टांगे या खसकी चट्टी टांग के उसको भिंगा के रखें, जिसके चलते कि सीधा गर्म हवा का प्रवेश आपके पशुशाला में न हो। और जी जी। हो सके तो अपने पशुओं को सवेरे शाम नहलाने का प्रयास करें, और प्रचुर मात्रा में पानी या स्वच्छ जल पीने को अवश्य दें, जिससे कि आपके पशुओं में गर्मी का जो सीधा जो असर है उससे आप अपने पशुओं को बचा के और अपने उत्पादकता बढ़ाए रखें।
1: जी, तो डॉक्टर साहब ये तो बातें हो गई हैं कि क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए गर्मी के मौसम में, खास तौर पर पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए। अब बात करते हैं बीमारियों की, तो इस मौसम में खास तौर पर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है पशुओं में?
6: जी, जैसा कि अभी एक तो तापक्रम के बढ़ने से समर स्ट्रेस या हीट स्ट्रेस जी, जो आम है, आप पशुओं में देखेंगे कि खास करके हीट स्ट्रोक या समर स्ट्रेस, जिसके चलते कि पशुओं में के शरीर का तापक्रम बढ़ता है और पशु हांफते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए पहला चीज तो है कि दोनों टाइम अपने पशुओं को स्नान कराएं, स्वच्छ जल पीने के को दें, साथ ही साथ जो उनके शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है उससे बचाव के लिए इंटालाइट ओरल या जो भी नमक चीनी का प्रयोग करें, या इंटालाइट ओरल आता है या जो भी इलेक्ट्रोलाइट पाउडर्स आते हैं उसका इस्तेमाल उसके पीने के जल के साथ दें, ताकि उनके शरीर का में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस नहीं हो। दूसरा चीज है कि इस मौसम में खास करके जब हमारे पशुशाला के आसपास जल जमाव होता है, तो हॉट और ह्यूमिड वेदर, हॉट ह्यूमिड वेदर जो है, गर्म और नमी वाली जो वेदर है, ये खास करके जितने भी मक्खी मच्छर या चमोकन इसके प्रकोप को बढ़ाता है, और इसके चलते पशुओं में खासकर क्रॉसब्रिड पशुओं में बबेसिएसिस या रेड वाटर थलेरिएसिस या आपका ट्रिप्नोसोमेसिस या सर्रा, इन बीमारियों का जो ब्लड प्रोटोजोआ के चलते होते हैं, इनकी काफ़ी अधिकता पाई जाती है। तो खास करके अपने पशुशाला को नमी रहित बनाएं, और जित हो सके तो अपने पशुशाला में कहीं भी क्रैक्स अर्थात चिकना रखें फर्श दीवार को, जहाँ की ये जो चमोकन है, ये जो लाइस माइस्टिक्स हैं, जो अपने अंडा और जिसका रिप्रोडक्टिव फेज उस दीवार में पूरा होता है, जहाँ छिद्र रहता है या गैप्स रहता है, तो अगर आप इसका प्रयोग करेंगे, उससे बचाएंगे, तो आप अपने पशुओं को बचाने, इस चमोकन से बचाने के लिए, मक्खी मच्छर से बचाने के लिए शाम के समय धुआं का प्रयोग करें, और अगर चमोकन है तो आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगवाएं, या साथ ही साथ जो एक्टोपैरासाइट्स यूज करने के लिए हम लोग एमिट्राज का सॉल्यूशन 1-2% आप अपने पशुओं को उससे धुला धो के और अपने पशुशाला को इससे चमोकन और जो अठैल होता है या जो इस प्रकार के लाइस माइस्टिक्स हैं इससे फ्री रखें। अगर इनसे आप अपने पशुओं को बचाएंगे तो ये जो रक्त के द्वारा, रक्त परजीवी के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं इनसे, और लेकिन इसके बावजूद अगर आपके पशुओं में बवेसिएसिस या लाल पेशाब की समस्या है, या खाना कम खा रही हैं और तापक्रम बहुत ज़्यादा रह रहा है, तो फिर आप चिकित्सक की सलाह लेकर इसकी चिकित्सा करवा सकते हैं।
1: जी जी, डॉक्टर साहब, अब ये तो बातें हो गई बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, लेकिन और कुछ बातें उचित ध्यान रखने के लिए इस गर्मी से बचाने के लिए, गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए पशुओं को?
6: हाँ, ये जो ये सबसे प्रमुख बात है कि हम लोग इस समय वातावरण, पहला चीज है कि नस्ल के चुनाव के समय से ही और अपने पशुशाला के निर्माण के समय से ही प्रारंभिक अवस्था से इस पर अगर ध्यान देंगे तो हमारा डेयरी फार्मिंग या गोट फार्मिंग, जिसके लिए भी जो हम लोग पशुपालन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो शेड का निर्माण है ऊंची जगह पर हो, जहां जल जमाव ना हो, इसका ध्यान रखें। पशुशाला के निर्माण के समय आप जो आजकल जो मॉडर्न टेक्निक्स है, हेड टू हेड या टेल टू टेल विधि से जो हम लोग नाद का निर्माण करते हैं, या स्टैंडिंग, जो उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है उसका, उसके अनुसार अपने पशुशाला का निर्माण करें। साथ ही साथ हम लोग जो आजकल मॉडर्न डेयरी में हम लोग या तो पानी पीने की, स्वच्छ जल पीने की व्यवस्था, दो खाने के नाद के बीच एक पानी का नाद अवश्य रखें, जिससे आपके पशुओं को स्वच्छ जल जितना भी ज़रूरत हो, अर्थात एक स्वस्थ पशु को जो 15 से 20 लीटर दूध करती हैं, उनको प्रतिदिन 80 से 100 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्वच्छ जल प्रबंधन और जो NDDB के द्वारा या डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा जो न्यू प्रोटोकॉल्स है कि अगर आपके आपके यहाँ तापक्रम बहुत अधिक रह रहा है तो पशुशाला के निर्माण के समय ऊपर में हम लोग वाटर सप्लाई का पाइप देते हैं जिसमें झरना लगा होता है और जिसको कि हर 2-3 घंटे के अंतराल पर हम लोग 10 मिनट के लिए अगर खोल देते हैं और आपके पशुओं के शरीर पर हल्का हल्का पानी का फव्वारा आता है तो उससे पशुओं को जो स्वास्थ्य प्रबंधन है, खास करके जो समर स्ट्रेस है और जो तापक्रम बढ़ता है, इससे आप आसानी बॉडी टेम्परेचर मैनेजमेंट में आपको बहुत सहायता मिलती है और आपका आपके पशुओं में आप देखेंगे अगर इस प्रकार जल प्रबंधन और टेम्परेचर प्रबंधन दो चीज़ पर आप ध्यान देते हैं तो समर स्ट्रेस से आप अपने पशुओं को बचा के रखेंगे। दूसरी बात है कि उनके खाने में खासकर फाइबर का की मात्रा बढ़ानी पड़ती है और अगर हरा चारा आपके पशुओं को, हालांकि गर्मी के मौसम में हरा चारे का अभाव होता है लेकिन अभी जो राउंड द ईयर ग्रीन फॉडर प्रोडक्शन पर हम लोग बल जोड़ देते हैं तो इस मौसम में सुडान है और या फिर जो हाइड्रोपोनिक विधि से चारा आप उत्पादित करते हैं तो ट्रे के माध्यम से आप अपने कमरे में भी हरा चारा उत्पादित करके पशुओं को फाइबर युक्त अगर भोजन अधिक देंगे तो आपके पशुओं में स्वस्थ रहेंगे और उनमें बीमारियां कम होंगी, उत्पादकता बनी रहेगी और आप पशुपालन से खासकर गर्मी के मौसम में भी आप अपने पशुओं से परेशान नहीं होंगे।
1: जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही जानकारी युक्त बातें थी और गर्मी के मौसम में ऐसे आप अपने पशुओं का ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल आपके पशु स्वस्थ होंगे, कोई भी बीमारी उससे नहीं होगी और आप अगर आय के लिए उनका पालन कर रहे हैं तो आपकी आय में भी बिल्कुल हानि नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे और भी बातें होंगी इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
7: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
8: खुद भी बचे देश भी बचाए।
9: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अनु और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संगीता श्री मैडम जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में और आज हमें बताएंगी सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन के बारे में। तो क्या महत्व है और कैसे स्थान का चुनाव करना चाहिए, बीज बुआई और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्या समय होना चाहिए, सारी बातें आज मैडम से जानेंगे हम। मैडम स्वागत है आपका।
10: धन्यवाद अनु।
1: मैडम तो सबसे पहले सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन का क्या महत्व है इसके बारे में जानकारी दें।
10: किसान भाइयों, मैं आपको जैसा कि अनु बता रहे थे कि इसका क्या महत्व होना चाहिए तो मैं आपको सबसे पहले महत्व के बारे में बताती हूँ। सब्जी की नर्सरी तैयार करना सब्जी उत्पादक के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। पौध तैयार करते समय अनेक बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। प्रायः देखा जाता है कि नर्सरी में पौध तैयार करते समय उचित सावधानी व उन्नत विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है जिससे तैयार होने वाली पौध व उससे प्राप्त होने वाला उत्पादन प्रभावित होता है। टमाटर, मिर्च आदि फसलों की पौध तैयार करते समय कृषकों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान नहीं रखने से तैयार होने वाली पौध में विषाणु जनित बीमारियों का प्रवेश हो जाता है, जिससे मुख्य खेत में पौधरोपण के बाद बार बार कीटनाशी रसायनों का छिड़काव करने के बावजूद कृषकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अतः कृषकों को पौध तैयार करते समय कई बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि स्थान का चुनाव। स्थान का चुनाव करते समय यह ध्यान रहे कि नर्सरी के लिए ऊंचाई वाला स्थान उपयुक्त रहता है। समतल व अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ भूमि श्रेष्ठ होती है, जहां सिंचाई का साधन भी समीप हो एवं सूर्य का पर्याप्त प्रकाश मिलता हो। चयनित स्थान यथासंभव प्रतिकूल मौसम जैसे लू, शीतलहर एवं पाले से सुरक्षा प्रदान करने वाला होना चाहिए। भूमि की तैयारी पौधशाला के लिए बहुत महत्व रखता है। भूमि की अच्छी तैयारी के लिए नर्सरी क्षेत्र की गहराई जुताई करें, मिट्टी को ढेले रहित एवं भुरभुरी बनावें व कंकर, पत्थर, खरपतवार आदि अलग करें। अच्छी स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए नर्सरी क्षेत्र में 8 से 10 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद भूमि की तैयारी करते समय ऊपरी सतह में मिलावें। पौध तैयार करने के लिए जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई छोटी छोटी क्यारियां उपयुक्त रहती है। सामान्यतः 3 मीटर लंबी व 1 मीटर चौड़ी आकार की क्यारियां उपयुक्त रहती है, लेकिन ध्यान रहे नर्सरी बेड्स की चौड़ाई 1 मीटर से अधिक नहीं हो, ताकि सिंचाई, खरपतवार हटाने एवं पौध संरक्षण आदि क्यार करने में सुविधा रहे। सामान्यतः सब्जी लगाने वाले क्षेत्र 1/20 भाग में नर्सरी लगाई जाती है। टमाटर की संकर किस्मों की 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए 100 से 125 वर्ग मीटर तैयार क्षेत्र में पौध लगाई जाती है, जबकि 1 हेक्टेयर प्याज, बैंगन, मिर्च व गोभी वर्गीय सब्जियों के लिए 500 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त होता है। तैयार क्यारियों में बीज की बुआई से पूर्व भूमि जनित बीमारियों व कीटों आदि से पौधों को बचाने के लिए 4 से 5 ग्राम थायराम या कप्तान व 8 से 10 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3% कण प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिलाएं। नर्सरी में बुआई हेतु बीज में आनुवांशिक शुद्धता होनी चाहिए एवं सही किस्म का स्वस्थ बीज होना चाहिए। अतः बीज की गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए क्षेत्र विशेष के लिए उद्यान विभाग व कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश की गई किस्मों के बीज को ही बुआई के काम में लें। साथ ही बीज कृषि विभाग, राष्ट्रीय बीज निगम एवं अन्य विश्वसनीय स्थान से ही खरीदें। बीज की बुआई ठीक समय पर करें। विभिन्न सब्जियों के लिए बीज की बुआई का समय अलग अलग होता है, जैसे कि टमाटर फसल के लिए वर्षा मौसम में बुआई हेतु जून जुलाई में करना चाहिए तथा 150 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। वसंतकालीन टमाटर हेतु बुआई का समय नवंबर दिसंबर होता है तथा 150 से 250 ग्राम संकर बीज की आवश्यकता होती है। वर्षाकालीन बैंगन हेतु बुआई जून से जुलाई में करें तथा 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। वर्षाकालीन तथा वसंतकालीन मिर्च की बुआई का समय मई जून होता है तथा 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगेती फूलगोभी की बुआई का समय मई जून तथा बीज की आवश्यकता 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की होगी। प्रति हेक्टेयर मध्य फूलगोभी बुआई हेतु 350 से 400 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी तथा बुआई का समय जुलाई अगस्त होना चाहिए। पछेतु फूल गोभी के लिए बुआई का समय अक्टूबर नवंबर रखें तथा 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। पत्ता गोभी का बुआई का समय सितंबर दिसंबर है तथा 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। रबी प्याज की बुआई अक्टूबर नवंबर में करें तथा इसके लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। खरीफ प्याज की बुआई जून माह में करें तथा इसके लिए 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। बीज की बुआई से पहले उसे उपचारित करना आवश्यक होता है। उन्नत किस्म का बीज लेकर बुआई से पूर्व 3 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कप्तान प्रति किलो बीज की दर से मिलाकर उपचारित करें। तैयार नर्सरी बेड्स में बीजों की बुआई कतारों में करनी चाहिए, जिससे निराई गुराई, उर्वरक प्रयोग एवं पौध संरक्षण कार्य आसानी से किए जा सके व अच्छी स्वस्थ पौध तैयार हो। ध्यान रहे, बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होवे। बहुत छोटे बीजों का उनकी मात्रा से दुगनी रेत मिलाकर बोना चाहिए ताकि क्यारियों में इनका वितरण सामान्य रूप से होए। भारी मिट्टी में बीजों को बहुत हल्का ढकना चाहिए। इसके लिए बीज बोने के पश्चात उनके ऊपर खाद एवं रेत 1:1 के मिश्रण की हल्की परत बिछा दी जाती है ताकि सिंचाई करते समय बीज इधर उधर नहीं फैल पाए। बीज बुआई के तुरंत बाद झारे से सिंचाई करें। सर्दियों में कम तापक्रम के समय बीजों के शीघ्र अंकुरण के लिए क्यारियों को हल्के घास फूस से ढक देना चाहिए, परंतु अंकुरण होते ही इसे तुरंत हटा देना अच्छा होता है। सिंचाई की बात करें तो सब्जी नर्सरियों की क्यारियों में सिंचाई सामान्य रूप से तथा धीरे धीरे फुहारे से करना चाहिए, जिससे मिट्टी बहे नहीं। पौध बड़ी होने पर नर्सरी बेड्स के चारों तरफ छोड़ी हुई खाली जगह में सिंचाई के लिए पानी को नर्सरी क्षेत्र से बाहर रोककर क्यारियों में पानी धीरे धीरे जाने दें। तेज हवा बहाव के साथ सिंचाई ना करें। सिंचाई करते समय नर्सरी बेड्स के ऊपर पानी नहीं भरना चाहिए। सिंचाई के बाद मिट्टी में पपड़ी आने पर गुराई करें, इससे जड़ों में वायु संचार बढ़ता है व खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। पौध संरक्षण की बात करें तो नर्सरी में बीजों की बुआई के 10 से 12 दिन बाद जड़ गलन बीमारियों से पौधों को बचाने के लिए कप्तान 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर पौधों की जड़ों के पास झाड़े से छिड़काव करें। बीज बुआई के 18 से 20 दिन बाद रस चूसने वाले कीड़ों से पौध को बचाने के लिए डाइमेथेट 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर पौधों पर छिड़काव करें। टमाटर, मिर्च आदि में विषाणु रोग के से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। यह रोग सफ़ेद मक्खी, रस चूसने वाले कीटों के माध्यम से फैलते हैं, अतः नर्सरी तैयार करते समय पौध को इसके प्रकोप से बचने के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा रोगों का संक्रमण होने पर बार बार कीटनाशी रसायनों का छिड़काव करने के बाद भी इन रोगों से काफ़ी नुकसान होता है। इनका प्रकोप कम करने हेतु नर्सरी में नायलॉन जाली का उपयोग प्रभावी पाया जाता है, जिससे बेड्स को बीज की बुआई उपरांत 50 मैश की नायलॉन नेट से ढक दिया जाता है। इसके लिए नर्सरी के दोनों तरफ अर्धचंद्रकार तार लगाकर उस पर 50 मैश का नायलॉन जाली से नर्सरी की बेड्स को ढक लेते हैं, या फिर नर्सरी के चारों कोनों पर खूंटे गाड़ कर उन पर 50 मैश की जाली बिछाकर ढकने से ऐसी व्यवस्था करें कि जाली उड़े नहीं व हमेशा पौध क्षेत्र को ढकी रहे, तथा यह भी सुनिश्चित करें कि जाली चारों तरफ से जमीन में दबी रहे ताकि रस चूसने वाले कीट जो उपरोक्त विषाणु जनित रोग फैलाते हैं का प्रवेश ना हो सके। अब पौध का स्थानांतरण। पौध लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर या फिर 4 से 6 पत्तियों की हो जावे तब इसे मुख्य खेत में लगाएं। टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च व गोभी वर्गीय सब्जी जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी आदि में यह अवस्था सामान्यतः 4 से 6 सप्ताह में आ जाती है, जबकि प्याज की पौध लगभग 8 सप्ताह में तैयार होती है। पौधे को मुख्य खेत में लगाने से पूर्व उसकी हार्डनिंग करना आवश्यक होता है। इससे पौधे मजबूत हो जाते हैं व उनमें विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके लिए पौध तैयार होने के 4 से 5 दिन पहले नर्सरी में पानी बंद कर दें, लेकिन पौध उखाड़ने से 24 घंटे पहले बेड्स में अच्छी तरह पानी देवे, जिससे पौधे उखाड़ने समय जड़ों को कम से कम नुकसान हो। रोपाई से पूर्व पौध की जड़ों को फसल की सिफारिश अनुसार कीटनाशी रसायन में 15 से 20 मिनट तक डुबाएं। तैयार पौधे को मुख्य खेत की बनी हुई क्यारियों में फसल विशेष की सिफारिश के अनुसार निर्धारित फसलों पर कतारों में लगाएं व पौध लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करें। पौध रोपाई का कार्य शाम के समय करना ठीक रहता है, जिससे रात की ठंडक में पौध स्थापित हो जाएं। इस प्रकार कुशल नर्सरी प्रबंधन से अच्छे गुणवत्ता वाले पौधों व अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
11: जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम इस जानकारी के लिए। और श्रोताओं, यहाँ पर आपने आज जाना कि सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन आपको किस प्रकार करना चाहिए। तो आशा करते हैं आज का यह वार्ता आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।
2: उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
11: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार अनुमान है कि 27 मई से 31 मई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में अगले कुछ दिनों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, इन जिलों में 28 मई को लू चलने की यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है। 27 से 31 मई के दौरान अनुमान है कि अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें, साथ ही खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जिनके खेत में गर्मा मूंग और उड़द है, उन्हें बता दें देर से बोई गई गर्मा मूंग और उड़द की फसलों में हेयरी कैटरपिलर का प्रकोप होता है, ऐसे में उनकी निगरानी करना लेना जरूरी है। प्रकोप अगर दिखाई दे तो मिथाइल पैराथियन 50 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जिनके खेत में सब्जियां हैं उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप होता है, इसलिए उनकी नियमित निगरानी की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियन 50 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को या फिर डाइमेथोएट 30 इसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि आम के बागानों में रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में या फिर लैम्बडा साहिल लोथ्रीन की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। बागानों में पर्याप्त और निरंतर

नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। जिनके बगानों में लीची है उन्हें बता दें, लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसी वजह से किसान भाई बहन किसी भी प्रकार का छिड़काव शाही लीची में अभी नहीं करें। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा शाही लोथरीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और जो पशु दूध देते हैं उन्हें खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। वहीं गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए। साथ ही पशुओं को हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। श्रोताओं, आप सभी को आरजी अनु का प्यार भरा नमस्कार। तो आइए, आज फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ खास बातें आप सभी के लिए उन्नत कृषि में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमेशा हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे साथ एक एक्सपर्ट, और आज फिर से हमारे एक खास विषय के लिए हमारे पास है एक खास एक्सपर्ट, और उनका नाम है डॉक्टर गिरीश चंद, और ये है एसोसिएट प्रोफेसर पौधा रोग विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
4: और जैसा कि हम अपने लिसनर्स को बता दें, हमारे श्रोताओं को बता दें कि आज का हमारा विषय है केला के प्रमुख रोग एवं उपचार। वैसे अगर बिहार की बात करें तो बिहार में केले बहुत सस्ते मिलते हैं, लेकिन वहीं मेट्रो सिटीज़ की बात करें, महानगरों की बात करें, आप जाएंगे तब आपको केले का जो महत्व है वो समझ में आएगा कि वहाँ पर केले कितने महंगे मिलते हैं। क्योंकि केला अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फल है। हमारा सौभाग्य है कि हम बिहारी हैं और बिहार में बहुत ही अच्छे तरीके से इसके लिए उपयुक्त जलवायु मिलती है और यहाँ उपजता है और हमारे किसान भाई इसे उपजाते हैं हमारे लिए। लेकिन जब हम इसकी खेती करते हैं, जब हम इसे अपने बागानों में लगाते हैं, तब जरूरी होता है कि हम इसका रखरखाव करें। जो कई जो कीट पतंगे होते हैं वो इस पर नज़र टिकाए बैठे रहते हैं, और अगर हम इस समय में इनकी सुरक्षा का खास ख्याल ना रखें तो इन्हें कई रोगों से गुजरना पड़ता है, और इस वजह से हमारे जो केले के जो कई जो गाछ हैं, वृक्ष हैं, वो ख़राब हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को घाटा भी पड़ जाता है। तो आइए, सबसे पहले ज़रूरत होता है कि आप सभी को रोगों का पहचान होना। तो आज डॉक्टर साहब हमारे साथ इसीलिए यहाँ पर हैं, आप सभी को बताएंगे केले के प्रमुख रोगों के बारे में और साथ ही उसके इलाज के बारे में भी जानेंगे हम। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, यहाँ पर बहुत सारे रोग हैं जैसे कि पनामा मिल्ट, सिगाटोका, एंथ्रेक्नोज, बांचीटॉक और भी बहुत सारे जो रोग हैं वो केले के वृक्षों में लगते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर पनामा मिल्ट की बात करें तो ये कैसा रोग है और इसे कैसे उपचार हो सकता है, हमारे किसान भाई कैसे उपचार कर सकते हैं इसका?
5: किसान भाइयों, केला अपने बिहार का एक प्रमुख फल वाला पौधा होता है। इसके उत्पादन में हमारे बिहार का बहुत बड़ा योगदान है, और हमारा जो बिहार का एक तरह से कह सकते हैं कि जो आर्थिक कृषि की आर्थिक स्थिति है इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। और उत्पादन के साथ साथ हमें ये ध्यान देना होगा, जब हम बाग को लगाते हैं, बाग लगाने से या केले के पौधे लगाने से लेकर कटाई तक, इसमें बहुत ढेर सारी क्रियाएं होती हैं, और ये लगभग 12 से लेकर 13 महीने तक का इसमें टाइम लग जाता है, तब जाकर इसमें कहीं हम फल को काट पाते हैं। तो पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि लगभग एक साल पूरा लग जाता है। तो एक साल का ये पौधा होता है, और इसमें अगर समय समय पर हम ध्यान नहीं देते हैं और लगातार एक ही खेत में अगर हम किसी फसल को लेते हैं तो इसमें कई तरह से मिट्टी का, मृदा का क्षरण होता है, ह्रास होता है, और धीरे धीरे इसमें कुछ ऐसे जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं जो नुकसान हमारी फसलों को पहुँचाते हैं। तो इसमें ये पहचान करना बहुत ही आवश्यक होता है कि हमारा जो केला का फसल है इसमें कौन कौन से प्रमुख रोग हैं और इनका क्या पहचान है, इनका क्या लक्षण है, और इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं। जब तक हम लक्षण को अच्छी तरह से नहीं पहचान पाएंगे तब तक उसका निदान या सही दवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो किसान भाइयों आइए हम लोग जानते हैं कि ये जो केला है केला में कितने प्रकार के रोग लग जाते हैं। तो प्रमुख रूप से जो इसमें रोग लगता है उसमें उठा रोग लगता है और उसके बाद दूसरा रोग लगता है वो सीगा टोका रोग लगता है या पत्रलांछन रोग कह सकते हैं। केला का एक तीसरा रोग है उसे हम कह सकते हैं कि श्याम बर्ण रोग या एंथ्रेक्नोज रोग लग जाता है। और एक चौथा रोग होता है जिसे हम बंची टाप या पौधा छोटा हो जाता है, ये विषाणुओं द्वारा होता है। तो इस तरह से जो हमने चार प्रमुख रूप के रोग बता रहे हैं इसको जान लेना है। पांचवा एक और रोग लगता है वो होता है सूत्रकृमि या जड़ ग्रंथि रोग होता है जो जड़ों में गांठें बन जाती हैं, पौधा खुराक लेना बंद कर देता है या खुराक ले भी लेता है तो जड़ में जो सूत्रकृमि होता है वो उसमें गांठ में जमा करते रहता है और पौधा धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और उत्पादक क्षमता घट जाता है। तो आइए सबसे पहले जो केला में प्रमुख रोग है वो है उकठा रोग, और उकठा रोग का पहचान करना बहुत आवश्यकता है। ऐसे भी आप यदि खेत में देखते हैं और ये बहुत ही अच्छा समय है ये जब रोग का लक्षण अपने कह सकते हैं कि एकदम चरम पे होता है, जो हमारा अक्टूबर का महीना होता है वो बहुत ही चरम पे होता है, उसके बाद धीरे धीरे हमारा फसल ख़त्म हो जाता है और अगला फिर हम फसल लेने की तैयारी करने शुरू कर देते हैं। तो उकठा में दो तरह का उकठा होता है, और एक तो होता है पनामा बिल्ड जिसे हम फ्यूजेरियल बिल्ड कहते हैं, ये फफूंद जनित रोग होता है, ये सबसे ज़्यादा आजकल हमारे बिहार में देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचा रहा है लगभग हमारे पूरे उत्पादन का 30-40% तक नुकसान पहुंचा रहा है, और बाकी सब और दूसरे रोग हैं वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा इसमें जो उकठा का ही रूप होता है वो जीवाणु उकठा होता है या बैक्टीरियल बिल्ट कहते हैं। अब इसमें देखना है कि लक्षण क्या है, यदि फफूंद जनित लक्षण आते हैं तो फफूंदनाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे, यदि बैक्टीरिया जनित रोग दिखाई देता है लक्षण तो आप बैक्टीरिया नाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे, तभी केले के जो रोग लगते हैं उससे आप निदान पा सकते हैं। तो फफूंद जनित रोग में जो लक्षण होता है शुरुआत इसका जब पहला बारिश होता है जून के प्रथम सप्ताह में या जून के मध्य में, उसी समय इसका जो फफूंद होता है उसके जो बीजाणु होते हैं हम एक तरह से कह सकते हैं उसके जो अंडे होते हैं उसी समय इसका जमाव शुरू हो जाता है, और ये इतना खतरनाक कह सकते हैं रोग होता है, इतना भयंकर रोग होता है कि इसके जो अंडे होते हैं यदि मिट्टी में रहता है तो वो 25 से लेकर 30 साल तक इसके अंडे जीवित रहते हैं, और यदि हम फसल का मतलब लेने के बाद खेती का उत्पादन करना केले का बंद कर देते हैं, दूसरी फसलों को अगर हम समावेश कर लेते हैं, फिर अगर हम 10 साल 20 साल 25 साल बाद भी यदि केले की खेती करेंगे फिर पुनः ही रोग जागृत हो जाता है, उग्र रूप में आ जाता है। तो ये फफूंद जनित रोग का लक्षण कैसा होगा, लक्षण इसका जैसे ही पहला बारिश होता है फफूंद इसका जागृत हो जाता है, बीजाणु जमने शुरू हो जाते हैं, इसका जो जड़ तंत्र होता है जड़ तंत्र में प्रवेश करता है और जड़ तंत्र प्रवेश करने में उसमें अपना संख्या बढ़ा लेता है, और इसमें जो ऊंस बनता है घाव बनाता है और जड़ को खुराक लेने से रोकता है, इसका जो जाइलम होता है वो चूक कर जाता है, यानी जिससे हमारा पौधा खुराक लेता है पानी लेता है तत्व लेता है न्यूट्रिएंट लेता है और पौधे में ले जाता पत्ती तक पहुंचाता है, फिर फोटोसिंथेसिस करके नीचे तक इस तरह से हमारी जो क्रिया होता है पौधे का वो पूरा ब्लॉक कर देता है चोक कर देता है, और जैसे ही चोक करता है उसके तुरंत बाद इसकी जो पत्तियाँ होती हैं इसमें जो पुरानी पत्तियां होती हैं ओल्डर लीव्स होते हैं उस पर पीले पीले कलर के धब्बे दिखाई देते हैं पत्तियों के किनारे से शुरू होते हैं, और धीरे धीरे पूरा पौधा पीला हो जाता है, और जब ये रोग उग्र रूप में आता है तो इसका जो तना होता है इसके तने तो हम कह सकते हैं कि ये आभासी तना होता है स्यूडो स्टेम होता है, और खानी सहित यानी पुष्पावस्था में है तो पुष्पावस्था में या फल वाले अवस्था में तो फल अवस्था में, या ये नहीं भी हुआ है तब भी ये जैसे ही रोग लक्षण दिखाई देता है तो एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंतर पर ये जाकर गिर जाता है।
4: अच्छा,
5: तो पूरा हमारा जो उत्पादन होता है कह लीजिए खत्म हो जाता है, जिस पौधे में ये रोग लग गया उसका उत्पादन जीरो शून्य हो जाता है। तो इस तरह से इसका लक्षण होता है। इसका लक्षण पहचान करने के बाद आप कैसे इसका उपचार करेंगे, तो उपचार करने के लिए ये है कि आप इसमें जो फफूंद नाशक दवाएं हैं उसका आप शुरुआती अवस्था में जरूर ध्यान दें। जब इसका गड्ढा बनाते हैं तो गड्ढे में कार्बेंडाजिम या बविस्टीन कम से कम 10 ग्राम पर गड्ढा इस तरह से हम दे देंगे, तो इसमें जो दूसरे हानिकारक फफूंद होते हैं खासतौर से फ्यूजेरियम, वो उसका संख्या खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो इस तरह से पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा। यदि किसान भाई ऐसा नहीं कर पाते हैं और शुरुआत में नहीं ध्यान देते हैं तो ये जो सकर्स ले आते हैं, इसका जो बच्चा ले आते हैं केले का, वो ध्यान देंगे कि वो किसी टिशू कल्चर प्रयोगशाला से ले आएं या जो हमारा सर्टिफाइड प्लांटिंग मटेरियल्स होता है, नर्सरी होता है, वहाँ से ले आएं, या दूसरे खेत से या अपने खेत से दूसरा नया इसका सकर्स लगाना चाहते हैं, नए खेत में या बगान नया तैयार करना चाहते हैं, तो इसका सकर्स जो होता है उसको उपचार करके लगाएं। उपचार करने के लिए जो मैंने विपुर में दवा बताया कार्बेंडाजिम या बेविस्टीन, उसे आप 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना लीजिए, या टाइकोड्रमा आप ले सकते हैं, बायोएजेंट होता है, जैव जीवनाशी होता है, जो फफूंद नाशक के तौर पे काम करता है, दूसरे फफूंद को खा जाता है, खासतौर से फ्यूजेरियम को खूब खाता है। तो इस तरह से हम बायोएजेंट में टाइकोड्रमा लेंगे, तो टाइकोड्रमा का अगर लेते हैं तो 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाएंगे। इस तरह से आप चाहे फफूंद नाशक रसायन का प्रयोग कर रहे हैं कार्बेंडाजिम बविस्टीन का या टाइकोडर्मा का, घोल जब बनाएंगे तो आधे घंटे तक सकर्स को यानी केले के बच्चे को उसमें रखेंगे, फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद छायादार जगह में रखेंगे, घोल में रखकर फिर उसके बाद घोल से निकालेंगे और छायादार जगह में रख देंगे ताकि इसमें जितना मतलब पानी है एक्सेस ज़्यादा वो निथर जाए, निकल जाए, फिर उसके बाद आप देख लीजिए पानी निकल गया है तब जाकर रोपड़ी करने के लिए तैयार रहता है, तो गड्ढे में आप रोपाई करेंगे। तो इस तरह से पूरे जीवन भर टाइकोडर्मा इसके साथ रहता है और कभी इस तरह से जो हानिकारक बैक्टीरिया होता है या जीवाणु होता है या फफूंद होता है या सूत्रकृमि होता है इसको कभी आने नहीं देता है, तो हमारा पौधा स्वस्थ रहता है। आप अगर ये भी क्रिया नहीं कर पाए हैं और खड़ी फसल में आपको जुलाई में इसका लक्षण पूरा पौधे दिखाई देता है, पौधा पीला पीला हो जाता है, अगस्त में खानी सहित गिर जाता है, सितंबर में और भयंकर रूप हो जाता है, अक्टूबर में जाते जाते पूरा बागान खत्म कर देता है, तो आप शुरुआत में जब बारिश होता है जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई के शुरुआत में, तो उसी समय बारिश के ठीक बाद आप एक बार कार्बेंडाजिम या बविस्टीन का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ क्षेत्र में इसका खूब अच्छी तरह से भिगो दें, और ऐसा अगर नहीं है तो आप टाइकोडर्मा को भी आप ले लीजिए 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ क्षेत्र में इसको भिगो दें। तो इस तरह से भिगोने की जो प्रक्रिया होता है वो 15 दिन के अंतर पर कम से कम 2 बार करते हैं, तो इस तरह से खड़ी फसल में भी हम जो रोग लग जाता है उसे रोक सकते हैं, और पनामा रोग या इस तरह से कह सकते हैं कि जो पीलिया रोग है यहाँ अपने क्षेत्र में जो लोकल क्षेत्र बिहार आजकल बहुत जोरों पे है कि हमारे केला के फसल में पीलिया रोग लग गया है, तो पीलिया रोग हो या अगूठा रोग हो या पनामा रोग हो सब एक ही तरह के हैं, तो ये फफूंद जनित रोग है जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मास्पिसिस क्यूबेंस नामक फफूंद से होता है। तो इसके रोकथाम के लिए भी मैंने आपको बताया वो इस तरह से लक्षण दिखाई देता है, तो आप रोकथाम इस तरह से करेंगे। दूसरा एक और इसी तरह का रोग होता है वो जीवाणु से होता है, उसे हम बैक्टीरियल बिल्ट कहते हैं, तो बैक्टीरियल बिल्ट रोग के रोकथाम के पहले आप ये देख लीजिए कि इसका लक्षण किस तरह का है, बैक्टीरियल की तरह से है या फफूंद की तरह से। तो फफूंद का मैंने बताया, बैक्टीरियल का इसका थोड़ा अंतर है, इसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो किनारे वाला ना सूख कर बीच वाला सूखता है, इसका जो लक्षण ये भी बारिश होने पर जब ज़्यादा गर्मी होता है और ज़्यादा उमस होता है और ज़्यादा नमी होता है वातावरण में, इस समय ये भी जो जीवाणु होता है वो भी उग्र फार्म में आ जाता है, तो जीवाणु आएगा तो भी साथ साथ में लक्षण दिखाई देता है पौधे के ऊपर। तो जैसे बताया आपको इसका लक्षण इस तरह दिखाई देता है, तो आप इसमें पुरानी पत्तियों पर ना ध्यान देकर नई पत्तियां जो आती है उस पर देखिए, सबसे पहले वही पीला होना शुरू हो जाता है, तो इसमें यह ध्यान देना है कि उसे बहुत पौधे पर अंतर हम नहीं कर पाते हैं, तो उसको जहाँ से पौधा प्रभावित होता है, एक दो पौधे में अगर इस तरह से लक्षण दिखाई देता है तो जहाँ से जड़ और तने का लगाव होता है उसे हम कॉलर रीजन कहते हैं, उसे ले लीजिए और काट दीजिए, काटने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा गोल आकार छल्ला होता है, तो ये जो गोल आकार छल्ला होता है इसमें से बहुत बैक्टीरियल ऊजिंग होता है, जिसे हम कह सकते हैं हल्का पीले रंग का, पहले शुरुआत में तो सफ़ेद सफ़ेद रंग का ये दूध की तरह से पदार्थ लसलसा दिखाई देगा, फिर ये दो तीन घंटे के बाद काटने के बाद ये हल्का पीले पीले रंग में हो जाता है। ये सबसे अच्छा पहचान करने का तरीका है जो बैक्टीरियल विल्ट होता है। अगर ऐसा काट देते हैं, ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देता है, यदि उसमें जो जहाँ से काटे हैं बीच वाला पोर्शन में इसका लसलसा पदार्थ या दूध की तरह पदार्थ नहीं निकल रहा है और वो सूखा है और इसका जो बीच वाला पोर्शन हल्का भूरे रंग का है, तो ये समझ जाइए कि ये फफूंद वाला रोग है जिसे हम पनामा विल्ट कह रहे हैं। और यदि इसमें लसलसा पदार्थ निकलता है तो समझ जाइए कि जीवाणु है। और दूसरा एक और लक्षण हम जीवाणु का बता देते हैं कि जब काट देंगे तो वहाँ से बहुत तेज सड़ा हुआ जिसे मछली होता है या अंडा होता है इस तरह बदबू तीक्ष्ण गंध आता है, ये बैक्टीरियल विल्ट जो होता है केला में ये सबसे बड़ा दूसरा लक्षण होता है। तो इस तरह से लक्षण का अगर पहचान हो जाता है तो आप बैक्टीरियल नाशक दवाओं में आप स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लीजिए, इसके साथ थोड़ा कापर ऑक्सीक्लोराइड ले लीजिए, दोनों को मिक्स करके एक साथ 15 दिन के अंतर में 2 बार प्रयोग करते हैं तो निश्चित है कि ये जो बैक्टीरियल विल्ट की समस्या है वो नहीं होगा। एक और आपसे रोग की चर्चा हम करना चाहेंगे, वो है सीगाटोका। सीगाटोका ये किसी भी समय आ सकता है, लेकिन जो विल्ट का समस्या दिखाई दे रहा है अपने इस बिहार क्षेत्र में वो जून के आखिरी सप्ताह से शुरू होता है और अक्टूबर तक पूरा खूब रहता है खेत में। इस समय आप जाएंगे तो खूब आपको उकठा रोग का लक्षण दिखाई देगा और इस समय आपको दूसरे रोग भी दिखाई देंगे।
4: यानी कि जून से अक्टूबर के बीच में जो रोग हैं वो केले के पेड़ में या फिर वृक्ष में लगते
5: हैं। जी जी जी, वृक्ष में लगते हैं। और एक और आपको अलग से रोग बताना हम चाहेंगे जो सीगाटोका है, वो सीगाटोका इस समय तो लगता है और ज्यादातर इसका जो आक्रमण होता है वो देखते हैं कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में खूब होता है।
4: अच्छा।
5: इस समय भी होता है लेकिन इसका उग्र रूप उसमें ज्यादा दिखाई देता है। तो ये किसी भी अवस्था में और किसी भी समय आ सकता है सीगाटोका। तो इसके जो लक्षण होते हैं पत्तियों के ऊपर गोल गोल आकार के पीले पीले शुरुआत में धब्बे बनते हैं, बाद में भूरे भूरे और काले काले रंग के हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर लक्षण बनते हैं तो पत्तियों के चारों तरफ भूरे भूरे काले काले रंग के धब्बे बनते हैं तो पत्र लांछन केला का रोग होता है जिसे हम सीगाटोका रोग कहते हैं। इसके रोकथाम के लिए डाइथेमम 45 नामक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 12 दिन के अंतर पे कम से कम 3 बार छिड़काव करेंगे और छिड़काव करते समय ये ध्यान देंगे कि जो केला का पत्ता होता है वो बहुत चिकना होता है, इसमें हम किसी स्टिकर का या जो डिटर्जेंट्स पाउडर होते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो दवाएँ जो हमारी हैं केले के पत्ते के ऊपर चिपकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमको पौधे में जो रोग लगे हुए हैं सीगाटोका को उससे बचाएंगे। लक्षण इसका हमने आपको बताया और किसान भाइयों एक मैं पुनः बताना चाहूँगा कि इसके जो पत्ती होता है पत्ती के एकदम किनारे नहीं, किनारे से थोड़ा ऊपर उठ के देखिए तो एकदम एक तार एक लाइन से कभी कभी इधर उधर मतलब छिटफुट इधर उधर आपको पत्तियों के ऊपर धब्बे शुरुआत में पीले रंग के रहेंगे, बाद में वो काले भूरे और काले रंग बदल जाते हैं।
4: तो ये लक्षण थे
5: जी, इस तरह से लक्षण होता
4: है। तो ये जो सारे रोग हैं आपने उपचार के बारे में बताया तो सारे रोग जून से लेकर के अक्टूबर माह तक लगते हैं या फिर कोई
5: उकठा रोग है? उकठा रोग से जून से लेकर अक्टूबर तक रहता है, लेकिन ये जो आपको हम अभी बताए हैं ये सीगाटोका ये पौधे के छोटे अवस्था में वो जनवरी फरवरी में भी लग जाएगा, वो इस समय भी अक्टूबर नवंबर में भी लग जाएगा।
4: तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले से कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कार्बेंडाजिम आप अगर गड्ढे खोद कर लगा रहे हैं उसके पौधों को तो पहले कार्बेंडाजिम डाल दें और उसके बाद लगाएं। तो कुछ बातों का आप खास ध्यान रखेंगे तो आप इन अपने केले के वृक्षों को इन रोगों से बचा सकते हैं। तो बस इसका खास ख्याल रखें। वैसे डॉक्टर साहब ने आपको बड़े विस्तार में बताया और उपचार के बारे में भी बताया, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा जो एक वक्ता है वो कह सकता है। और डॉक्टर साहब यहाँ पर कुछ और बातें हम आपसे जानना चाहेंगे।
5: इसमें अभी चर्चा जो इस तरह 2-3 रोग का हो गया, एक और है श्याम बर्ड रोग जो एंथ्रेक्नोज कहते हैं। हाँ। ज्यादातर वर्षा ऋतु में आता है, वर्षा ऋतु में जैसे आता है तो इसका जो बीजाणु होता है ज़्यादा फैलने लगता है, तो इसका जो लक्षण होता है पत्तियों के ऊपर फलों के ऊपर तने के ऊपर इस तरह से जो ऊपर भाग होता है, ये जो एरियल भाग होता है उसके ऊपर काले काले रंग का धब्बा बनाता है। तो इससे जो हमारा फल का गुणवत्ता खराब होता है, बाजार भाव कम जाता है या खराब कर देता है, और धीरे धीरे फल को या तने को सड़ा भी देता है। और पत्तियों के ऊपर इसका जितना काला काला धब्बा हो जाता है, क्योंकि खुराक लेना बंद कर देती हैं और पौधा कमजोर हो जाता है और उत्पादन घट जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए आप कापर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्टीकर मिलाकर इस तरह से 10 से 12 दिन के अंतर पर कम से कम छिड़काव करेंगे तो जो श्यामबर्ड रोग है इससे भी केला की फसल को बचाया जा सकता है।
4: कॉपर ऑक्सीक्लोराइड
5: जी। एक और इसमें रोग लग जाता है, वह है बंची टॉप। ये तो पहले बहुत लगता था, लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों ने और किसान भाइयों के थोड़ा खेती करने का तरीके में नए तरीके से खेती कर रहे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं फसलों का, तो इसमें ये रोग अब आता है लेकिन कम आता है। लेकिन फिर भी अगर ये रोग आ जाता है तो ध्यान देंगे, शुरुआती अवस्था में ही इसका लक्षण दिखाई देता है। जैसे पौधा आप ले आए, 2 महीने का 3 महीने का बच्चा है, लगाते हैं, जब पौधा पकड़ लेता है तो इसका लक्षण शुरुआत में ही 3-4 महीने का सकर्स होता है, उसी के ऊपर ही इसका लक्षण दिखाई देता है। पौधा छोटा रह जाएगा और उसमें जो पत्तियां ढेर सारी निकलेंगी लेकिन छोटी छोटी रहेंगी और पौधे का विकास रुक जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं बंची टॉप रोग है केला का। ये विषाणु वाला रोग है, विषाणु जनित रोग है, और एक पौधे से दूसरे पौधे या एक खेत से दूसरे खेत में जो फैलाने का काम करता है, इसमें कुछ हमारे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होता है, वेक्टर होता है, जिसे हम कहते हैं पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा होता है। ये कीड़ा एक खेत से दूसरे खेत, एक पौधे से दूसरे खेत में फैलाने काम करता है। तो यहाँ आवश्यकता है कि विषाणु नाशक दवाओं के जगह पे आप कीटनाशक दवाओं में इमिडा क्लोरोपीड 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इस तरह से एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंतर पर छिड़काव 2 बार कर देंगे, तो इस तरह से जो कीड़ा लगता है वो खत्म हो जाएगा, तो जो बंची टॉप रोग है अपने आप खत्म हो जाएगा।
4: तो किसान भाइयों, आपने सुना केले के प्रमुख रोगों के बारे में और उसके उपचार के बारे में। हमारे साथ यहाँ पर हैं डॉक्टर गिरीश चंद जी और इनसे विशेष बातें हो रही थी इस विषय पर, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है डॉक्टर साहब ने, और ज़रूरत है कि आप इनकी बातों को समझें, इसे अपनाएं, और जो भी अगर रोग हैं उनको पहचान कर उन्हें जो भी कीटनाशक दवा या फिर और भी जो दवाएं डॉक्टर साहब ने आप सभी को यहाँ पर आप सभी के सामने कहा, प्रेस्क्राइब किया, तो आप उसे लेकर छिड़काव कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आगे आपसे और मुलाकातें होंगी और हमारे किसान भाइयों से भी मेरी मुलाकातें होती रहेंगी उन्नत कृषि में। तो सुनते रहें 90.8 FM ग्रीन हमेशा, और सुनते रहें उन्नत कृषि। उन्नत कृषि
6: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
7: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है, और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
10: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
9: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
11: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे उमा। दोस्तों, आज की शुरुआत मैं करूंगी एक कहानी के साथ। हमारे ही पास के गांव में रामकिशोर नाम के किसान हैं, मेहनती आदमी। पिछले कई महीनों से उन्हें खांसी थी, वजन घट रहा था, कमजोरी भी रहती थी। परिवार ने कहा डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन उन्होंने सोचा अरे ये तो मौसमी खांसी है, अपने आप ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे हालत बिगड़ती गई। एक दिन जब उन्हें खून की उल्टी हुई तब परिवार घबरा गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जांच हुई, पता चला टीबी है। अगर रामकिशोर समय पर जांच करवा लेते तो बीमारी इतनी नहीं बढ़ती। आज हम इसी बीमारी पर खुलकर बात करेंगे ताकि कोई और रामकिशोर जैसी गलती ना करे। टीबी यानी क्षय रोग, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में सबने सुना है, लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। और इसी श्रृंखला सेहत सही लाभ कई को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गांव के जाने माने स्वास्थ्य साथी सेहतिया सिंह। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
12: धन्यवाद आरजे जी, और हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि आज हम एक बार फिर से टीबी जैसे जरूरी मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे।
11: सेहतिया भैया, सबसे पहले तो यही बताइए कि टीबी आखिर होती क्या है।
12: बहुत अच्छा सवाल है आरजे उमा। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रमित बीमारी है जो एक कीटाणु से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यह बीमारी ज्यादातर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन यह शरीर के और हिस्सों में भी हो सकती है, जैसे हड्डी, दिमाग, पेट, ग्रंथियां आदि।
11: सेहतिया भैया, ये बताइए कि आज भारत में टीबी की क्या स्थिति है।
12: आरजे उमा, आज भी टीबी एक बड़ी बीमारी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में लगभग 28 लाख नए टीबी मरीज सामने आए। लगभग 3,30,000 लोगों की मौत टीबी से हुई। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2015 से अब तक टीबी के मामलों में लगातार कमी आई है।
11: तो क्या टीबी बहुत आम बीमारी है?
12: हाँ उमा, अभी भी हमारे देश में यह एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। भारत में हर साल लाखों नए मरीज सामने आते हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार और समाज मिलकर इसे खत्म करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं।
11: अच्छा सेहतिया भैया, लोग अक्सर डरते हैं कि कहीं खान पान से तो टीबी नहीं फैलती।
12: नहीं आरजी उमा, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। टीबी हवा से फैलती है, खाना या पानी से नहीं। जब कोई टीबी का मरीज बिना इलाज के खांसता है, छींकता है या थूकता है तो कीटाणु हवा में फैल जाते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सांस के जरिए अपने अंदर ले सकता है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि इलाज शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद मरीज दूसरों को संक्रमित नहीं करता।
11: सेहतिया भैया, आम तौर पर लोग सोचते हैं कि सिर्फ खांसी ही टीबी का लक्षण है, क्या ये सही है?
12: नहीं आरजे उमा, सिर्फ खांसी ही नहीं, टीबी के कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार, रात में पसीना आना, वजन कम होना, कमजोरी और थकान, सांस फूलना, छाती में दर्द और गर्दन या शरीर में कहीं सूजन। इनमें से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत जांच करानी चाहिए।
11: अच्छा भैया, क्या टीबी किसी को भी हो सकती है?
12: हाँ, किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को खतरा ज्यादा होता है। जो कुपोषित हैं, जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें एचआईवी है, जो धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं, जिनको पहले टीबी हो चुकी है, या जो टीबी मरीज के संपर्क में रहते हैं, इन लोगों को नियमित रूप से जांच करवानी चाहिए, भले लक्षण हो या ना हो।
11: अच्छा सेहतिया भैया, अगर किसी को शक हो कि उसे टीबी है तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए?
12: सबसे पहले डरना नहीं है, छिपाना नहीं है, नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करानी चाहिए। सरकार ने आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जैसे एक्सरे, खांसी की जांच। अगर टीबी निकलती है तो इलाज पूरी तरह से मुफ्त है।
11: और भैया, ये इलाज

0: कितना लंबा चलता है?
1: आमतौर पर 6 महीने या उससे थोड़ा ज्यादा। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि इलाज बीच में छोड़ना नहीं, बीच में छोड़ने से बीमारी और खतरनाक हो जाती है।
0: सेहतिया भैया, आपने कहा कि कुपोषण टीबी से जुड़ा हुआ है।
1: हाँ बिल्कुल, कमजोर शरीर में टीबी जल्दी पकड़ लेती है और ठीक होने में समय लगता है। इसलिए सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की है, जिसमें हर टीबी मरीज को इलाज के दौरान 1,000 रुपया प्रति माह मिलता है। इसके अलावा निक्षय मित्र योजना है, जहां समाज के लोग आगे आकर मरीज को पोषण और भावनात्मक सहयोग देते हैं।
0: अच्छा भैया, आपने लक्षण, जांच और इलाज की बातें तो साफ कर दी, लेकिन गांव में टीबी को लेकर बहुत सारी गलत बातें भी चलती रहती है, क्या हम उन पर भी थोड़ी बात कर सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल आरजी उमा, गलत फहमियाँ ही तो सबसे बड़ा रोड़ा बनती है इलाज के रास्ते में।
0: अच्छा भैया, बहुत लोग कहते हैं कि टीबी वाले के साथ खाना मत खाओ, उसके पास मत बैठो, ये कितना सही है?
1: यह बिल्कुल गलत है आरजे उमा। टीवी छूने से, हाथ मिलाने से, कपड़े साझा करने से या खाना साझा करने से नहीं फैलती। टीवी सिर्फ हवा से फैलती है। जब कोई बिना इलाज वाला मरीज खांसता या छींकता है, इलाज शुरू होने के कुछ हफ्ते बाद, मरीज दूसरों के लिए खतरा नहीं रहता।
0: भैया, कुछ लोगों के मन में ये भी भ्रम रहता है कि ये तो गरीबों की बीमारी है, ये भी सही है क्या?
1: यह भी गलत है। टीबी किसी को भी हो सकती है, अमीर गरीब, जवान बुजुर्ग, किसी को भी। हाँ, कमजोर और कम प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग ज्यादा और जल्दी प्रभावित होते हैं। इसलिए कुपोषण एक जोखिम है, लेकिन यह सिर्फ गरीबों तक सीमित नहीं है।
0: भैया, ये बात तो आपने साफ कर दी कि ये बीमारी सिर्फ गरीबों की बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के मन में ये भी रहता है कि अगर किसी को टीबी हो गया है तो वो भगवान की सजा है, ये ऐसा कुछ होता है?
1: यह बहुत खतरनाक सोच है आरजे उमा। टीबी एक बीमारी है, जैसे बुखार, मलेरिया, डायबिटीज। यह किसी की गलती, पाप या कर्म का फल नहीं है। ऐसी सोच मरीज को शर्मिंदा करती है और वह इलाज से दूर हो जाते हैं।
0: भैया, और जो लोग इलाज कराते भी हैं, उन वो क्या करते हैं कि उन्हें लगता है अब तो खांसी ठीक हो गई, दवा क्यों खाएं, पूरी इलाज नहीं करवाते हैं।
1: यही सबसे खतरनाक गलती है। अगर दवा बीच में छोड़ दी जाए तो बीमारी और खतरनाक रूप से लौट सकती है, जिसे ड्रग रेसिस्टेंट टीबी भी कहते हैं। फिर इलाज लंबा, मुश्किल और दर्दनाक हो जाता है। इसलिए पूरा कोर्स करना बहुत जरूरी है।
0: भैया, लोग पूरा कोर्स करने की सोचते भी हैं, लेकिन उनके मन में डर का कारण ये होता है कि उन्हें लगता है इलाज बहुत महंगा होगा, पैसे बहुत खर्चे हो जाएंगे।
1: सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से इलाज मुफ्त देती है। जांच, दवा, फॉलो अप सब मुफ्त है। ऊपर से 1,000 रुपया प्रतिमाह पोषण सहायता भी मिलती है।
0: पर भैया, कुछ लोग तो ये ही मान चुके हैं कि टीबी से बचा ही नहीं जा सकता, टीबी हो गया मतलब अब कुछ नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल, यह सबसे गलत सोच है। हम फिर से कह रहे हैं, टीबी पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है, अगर समय पर जांच हो और इलाज पूरा किया जाए।
0: तो सेहतिया भैया, अगर हम एक लाइन में कहें तो
1: मैं यही कहूंगा कि टीबी से डरिए नहीं, टीबी से लड़िए।
0: और भैया, टीबी से लड़ने के लिए समाज क्या कर सकता है?
1: बहुत कुछ कर सकता है। मरीज से भेदभाव नहीं करना है, उन्हें हिम्मत देना है, इलाज पूरी करने में मदद करना है, गांव में जागरूकता लाना है, स्वास्थ्य शिविरों में लोगों को पहुंचाना है, खुद निक्षय मित्र बनना है। टीबी को छिपाने से नहीं, लड़ने से खत्म किया जा सकता है।
0: अच्छा सेहतिया भैया, लोगों के मन में कोई बात तब अच्छे से बैठती है जब उन्हें कोई उदाहरण दिया जाए। आप कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जो लोगों को हिम्मत दे।
1: हाँ उमा, हमारे जिले में शबनम नाम की एक महिला थी, उन्हें पहले टीबी हुआ था। उन्होंने बीच में दवा छोड़ दी क्योंकि उन्हें ठीक लगने लगा। कुछ महीनों बाद बीमारी ज्यादा खतरनाक रूप से लौटी, जिसे हम ड्रग रेसिस्टेंट टीबी कहते हैं। शुरू में बहुत डर लगा, लंबा इलाज, ज्यादा दवाइयां, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सरकार ने उन्हें मुफ्त दवा दी, पोषण सहायता मिली, एक निक्षय मित्र ने उनका साथ दिया। आज शबनम पूरी तरह से ठीक है और खुद लोगों को प्रेरित करती हैं कि इलाज पूरा करो।
0: यानी कि इलाज अगर पूरा किया जाए तो टीबी ठीक हो जाता है। अच्छा सेहतिया भैया, अंत में श्रोताओं के लिए आपका कुछ संदेश?
1: हाँ आरजी उमा, ऐसे ही एक और मिसाल है हमारी टीवी चैंपियन रेखा। रेखा को जब टीवी हुआ तब उन्हें इस बीमारी और इसके इलाज के बारे में कुछ पता नहीं था। बीमारी इतनी बढ़ गई कि वह खुद भी देखभाल नहीं कर पा रही थी। पति ने उनका साथ दिया, लेकिन घर और समाज से उन्हें ताने मिलने लगे, यहां तक कि अपने ही लोग उनसे दूरी बनाने लगे। इस सब ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने जीवन खत्म करने तक के बारे में सोचा, लेकिन बच्चों का चेहरा और उनका भविष्य उन्हें हिम्मत देता रहा। रेखा ने इलाज की तलाश में पहले प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लिया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिर उन्हें सरकार की टीबी उन्मूलन योजना के बारे में पता चला। उन्होंने पूरा इलाज नियम से किया, समय पर दवाइयां ली और 6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गई। लेकिन रेखा यही नहीं रुकी। उन्होंने सोचा, जो दर्द मैंने सहा वह और कोई न सहे। आज वह एक टीबी चैंपियन है। उन्होंने 1200 से ज्यादा टीबी मरीजों का मार्गदर्शन किया है, उन्हें हौसला दिया है और समाज में फैले डर और गलतफहमियों को तोड़ने का काम किया है। वह लोगों को निक्षय मित्र बनने के लिए प्रेरित करती रहती हैं और खुद भी मरीजों के साथ खड़ी रहती हैं।
0: सच में सेहतिया भैया, शबनम और रेखा जैसी कहानियां ये साबित करती है कि टीबी से डरने की नहीं, सही समय पर पूरा इलाज करने की जरूरत है।
1: हाँ उमा, बिल्कुल। मेरा संदेश यही है कि टीबी ठीक होने वाली बीमारी है, बस इलाज पूरा करें, हिम्मत न हारें और एक दूसरे का साथ दें। और मेरा यह कहना भी है कि टीबी कोई शर्म की बात नहीं, यह इलाज योग बीमारी है। जांच कराएं, इलाज पूरी करें, सही पोषण लें और एक दूसरे का साथ दें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया भैया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अच्छी कहानियाँ भी सुनाई, जिससे लोगों को प्रेरणा तो मिलेगी ही, साथ ही सीख भी मिलेगी। तो साथियों, याद रखिए, न शर्माना न घबराना, टीबी की जांच करवाना, सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: साथियों, आपने सुना, टीबी को लेकर जितनी गलत बातें हैं उतनी ही जरूरी बातें जानना जरूरी है। तो गलत फहमी छोड़िए, जानकारी अपनाइए, क्योंकि जानकारी ही सुरक्षा है। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नई सेहत भरी बात के साथ। पर जाने से पहले हम लेंगे सेहत की शपथ।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार अनुमान है कि 27 मई से 31 मई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में अगले कुछ दिनों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा इन जिलों में 28 मई को लू चलने की यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है। 27 से 31 मई के दौरान अनुमान है कि अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें, साथ ही खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जिनके खेत में गर्मा मूंग और उड़द है, उन्हें बता दें, देर से बोई गई गर्मा मूंग और उड़द की फसलों में हेयरी कैटरपिलर का प्रकोप होता है, ऐसे में उनकी निगरानी करना जरूरी है। प्रकोप अगर दिखाई दे तो मिथाइल पैराथियन 50 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जिनके खेत में सब्जियां हैं, उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप होता है, इसलिए उनकी नियमित निगरानी की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियन 50 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को या फिर डाइमेथोएट 30 इसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं, उन्हें बता दें, आम के बागानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि आम के बागानों में रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में या फिर लैम्बडा साहिल लोथ्रीन की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। बागानों में पर्याप्त और निरंतर नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। जिनके बागानों में लीची है, उन्हें बता दें, लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसी वजह से किसान भाई बहन किसी भी प्रकार का छिड़काव शाही लीची में अभी नहीं करें। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्बडा साहिल लोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं, उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और जो पशु दूध देते हैं उन्हें खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। वहीं गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए। साथ ही पशुओं को हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: नमस्कार किसान भाइयों, लॉकडाउन का समय है, विगत एक साल से हम इससे जूझ रहे हैं। ऐसे में खेती जो है कभी रुकती नहीं है, तो हमने भी जो सलाह है वो न रोकने का फैसला किया और हर सलाह हम आपको डिजिटल माध्यम से दे रहे हैं। तो ऐसे में अभी जो समय है, समसामयिक समय है, वो है धान की बिजाई के लिए। तो खरीफ मौसम की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जो धान की जो बिजाई है, बहुत सारे किसान भाइयों को अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशन के लिए उनको अलग अलग बीजों की ज़रूरत होती है कि कैसे क्या हम लगाएं, हमारी ज़मीन ऊंची है, हमारी ज़मीन नीची है। साथ ही किसी को महीन धान, किसी को मोटा धान, किसी को सुगंधित धान, इस तरह से ज़रूरत होती है। तो ऐसे में कन्फ्यूज़न रहता है कि हम बिजाई के समय कौन सा किस्म का चयन करें जिसकी दर हमें अच्छा जाए, जिसका कि हमें आगे चल करके उसकी क्वालिटी अच्छी मिले। तो इसी सब पे बात करने के लिए हम आज हैं हम डॉक्टर सत्येंद्र जी के साथ। रक्षा, आपका स्वागत है हमारा FM ग्रीन के इस प्रोग्राम में और साथ ही यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए। साथ ही श्रोताओं को बता दें कि अगर आप हमारा FM ग्रीन का जो प्रोग्राम सुनना चाहते हैं रेगुलर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारा जो एप्लीकेशन है उस लिंक से क्लिक करके आप रेडियो का एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि जो जिसमें कॉमर्शियल वैल्यू ज़्यादातर किसान करते हैं कि जिसमें दर ज़्यादा जाए, तो ऐसे में एक आइडियल कंडीशन के लिए एक बेहतर जो वैरायटी है वो कौन सा आप सजेस्ट करते हैं?
1: किसान भाइयों नमस्कार। जैसे कि आपने सुना, अभी खरीफ का सीजन स्टार्ट हो गया है। खरीफ में जो हमारी फसलें हम लोग लगाते हैं, बिहार में जो फसलें लगाई जाती हैं, किसान भाई जिन फसलों का उत्पादन करते हैं उनमें धान सबसे प्रमुख है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार के लिए 90% से ज़्यादा जनसंख्या के लिए धान जो है वो किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है। और जहाँ तक बिहार में खेती योग्य कृषि भूमि की बात है, तो उसके लगभग 60% क्षेत्रफल पे, लगभग 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पे धान की खेती बिहार में की जाती है। और सभी जिलों में लगभग धान की खेती होती है। तो इसमें जहाँ तक किस्मों के चयन की बात है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। बीज को, अगर आपके पास अच्छा बीज है, तो बीज के केस में बीज के लिए कहा गया है कि बीज कृषि का आधार है। तो कृषि, अगर हमारे पास बीज अच्छा होगा तो हमारा उत्पादन वहीं से शुरुआती दौर में ही हमारा, हमें डिसाइड हो जाएगा, कुछ ना कुछ हम ये कर सकते, अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी उपज जो हमें मिलेगी वो कैसी होगी। बाकी उसके बाद जो खेती की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं उन पे वो भी उसमें शामिल होती हैं। तो किस्मों की अगर हम बात करें तो

धान की प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ किस्में ऐसी हैं जो अगात किस्में जिनको हम बोलते हैं, जो कि कम दिन में पक जाती हैं, जो लगभग 100 दिन या 110 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, वो अगात किस्में होती हैं। और इनको, इन किस्मों को किसान भाइयों को चाहिए कि जो ऊपरी ज़मीन है, जो जहाँ पे पानी नहीं जमता है, पानी कम जमता है, ऐसी ज़मीन पे इन किस्मों को लगाएं। इसके साथ साथ कुछ किस्में मध्यम अवधि की होती हैं, जो जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है और ज़मीन उर्वर है, उस जगह पे मध्यम अवधि की किस्मों को किसान भाई लगाएं। उनमें ये किस्में लगभग 135-40 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं और इनकी उपज भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा बहुत सारी कुछ ज़िले हमारे यहाँ हैं जो जहाँ पे पानी देर तक रहता है, तो वहाँ हम कम अवधि की किस्में वहाँ नहीं लगा सकते। तो वहाँ पे जो लंबी अवधि की किस्में हैं, ज़्यादा देर से पकने वाली, लगभग 150-155 दिन में पकने वाली किस्में हैं, वो लगाई जाती हैं। तो उस जगह पे जहाँ पे आपको देर तक पानी उपलब्ध रहता है, वैसी जगह पे वो लंबी अवधि की किस्में लगानी चाहिए। तो हम अब इनको एक एक करके इनकी बात करेंगे अलग अलग किस्मों की। तो अगात किस्मों में मैं बात करूं तो सबसे पहले एक किस्म है प्रभात। तो प्रभात जो किस्म है वो लगभग 95-100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये अवधि जो फसल की जो अवधि बोली जाती है वो बीज से बीज तक की होती है, यानी जब आप बिजाई करते हैं खेत में, उस दिन से लेके जिस दिन आप काट रहे हैं, काट के घर पकने के बाद फसल को काट रहे हैं, उस टाइम तक की ये अवधि दिनों में ये गिनी जाती है। तो ये 95-100 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसकी 30-35 कुंटल उपज आराम से किसानों को मिल जाती है। तो इसके अलावा अगात किस्म में ऊपरी ज़मीन के लिए दूसरी किस्म है सहभागी धान। सहभागी धान किस्म में मैं बता दूं, जो प्रभात ये किस्म मैंने बताई, इसका धान थोड़ा मोटा होता है और ये चूड़ा के काम में स्पेशली आता है। इसी तरह से जो सहभागी धान है उसका भी धान थोड़ा मोटा होता है, गहरे सुनहरे रंग का होता है और ये किस्म भी 110 दिन में लगभग पककर तैयार हो जाती है और इसमें इसकी उपज लगभग 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज किसान भाई आसानी से ले सकते हैं। और इसकी एक ख़ास बात है सहभागी धान किस्म की कि इसमें जो सूखा सहन करने की क्षमता के लिए इसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र किया गया है, तो वैज्ञानिकों ने इसमें जीन्स डाले हैं जिससे कि वो सूखा सहन करने की क्षमता इसमें ज़्यादा है। तो जहाँ तक सूखे की बात है धान के लिए, तो वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि धान की जो फसल है वो शुरुआती दौर में बाढ़ के लिए और उसके बाद जब पुष्पन का समय आता है, फूल आने का समय आता है, तो उस स्टेज पे सूखे के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम अगर ऐसी हमारी भूमि है जहाँ पे हमें लगता है कि शुरुआत में हमारे यहाँ बाढ़ आ जाएगी या पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें किस्मों का उस हिसाब से चयन करना चाहिए जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा। और अगर ऐसा लगता है कि पुष्पन के समय, फूल आने के समय पे हमारा सूखा पड़ने की संभावना है और हमें पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वैसी जगह पे वैसी किस्मों का चुनाव करें जो कि सूखा सहन करने वाली हो, क्योंकि जो सूखा सहन करने वाली जो किस्में मैं बता रहा हूँ वो पुष्पन के समय ही स्पेशली उनमें ये ताकत होती है कि वो कम पानी की स्थिति में भी खड़ी रह सके। तो इसमें सहभागी धान जैसे मैंने बताया। इसके बाद एक किस्म है शुष्क सम्राट। ये किस्म भी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 35-40 कुंटल इसकी उपज आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा सबोरदीप एक

0: किस्म है जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। इसका दाना लंबा होता है, लंबा पतला दाना है और बहुत ही अच्छा इसका चावल बनता है। इसका इसकी जो अवधि है ये किस्म 110-15 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इसके अलावा राजेंद्र भगवती एक किस्म है जो मुजफ्फरपुर की तरफ के जो किसान हैं वहाँ ये आसानी से मिल जाएगी, राजेंद्र भगवती। तो किसान भाई इसको लगा सकते हैं, ये भी 110-15 दिन की किस्म है और लगभग 40 क्विंटल उपज इसमें आसानी से मिल जाती है। इसका दाना भी लंबा पतला होता है। इसके अलावा मध्यम कुछ किस्में हैं जो मध्यम अगात श्रेणी में आती हैं। तो मध्यम अगात श्रेणी वाली है जो 115 से लेके 125 दिन में जो पक के तैयार हो जाती हैं, ऐसी किस्में हैं। और उसमें एक किस्म बहुत ही अच्छी मैं बताऊं आपको, नई विकसित की है बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है, सबोर हर्षित धान। तो मैं किसान भाइयों को विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि सबोर हर्षित धान जो है एक बार आप ज़रूर लगाएं। ये नई किस्म है, क्योंकि किसान भाइयों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि किसान भाई आप लोग जो नई किस्में हैं उनको ज़रूर, जो भी आपकी परंपरागत किस्में हैं जो आप लगाते आ रहे हैं उनके अलावा आप नई किस्मों को ज़रूर अपने यहाँ ट्राई करें। तो ज़्यादा अगर क्षेत्रफल में नहीं लगा रहे हैं तो कम क्षेत्रफल में लगा के देखें, उसी भूमि की जो श्रेणी है, जैसी आपकी प्रकृति है भूमि की खेत की, उस हिसाब से ही यूज करें, लेकिन नई प्रजातियों को ज़रूर यूज करें। तो इसी क्रम में सबोर हर्षित धान बहुत ही अच्छी एक नई प्रजाति है और ये लगभग 120-125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसका दाना मध्यम पतला होता है, जैसे जो कि बहुत ही पसंद किया जाता है और मार्केट में इसकी वैल्यू भी ज़्यादा मिलती है, इसका दाम भी ज़्यादा मिलता है। तो इसके अलावा इसी श्रेणी में, मध्यम अगात श्रेणी में एक किस्म है सबोर अर्धजल, लंबे पतले दाने की ये किस्म है। सबोर अर्धजल भी बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित है और इसका ये भी सूखा सहन करने की भी क्षमता इसमें है। इस किस्म को हम सीधी बुवाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी उपज 40-45 क्विंटल आसानी से मिल जाती है, 120-125 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है।
1: तो ये थी किसान भाइयों की जो आपने भी जो बताया कि जो 110 के बराबर जो है दिनों में तैयार हो जाने वाली किस्म है, ये डॉक्टर सत्येंद्र तोमर जी जानकारी दे रहे हैं, ये प्लांट ब्रीडिंग से ही हैं। तो हम अगले भाग में बात करेंगे कि किसान भाइयों की हम बीजों के चयन में और क्या क्या सतर्कता अपनाएं। इस भाग के लिए हम इतना ही आज के लिए हम रख रहे हैं, अगले भाग में हम फिर से एक बार आपके साथ हाजिर होंगे बीजों के बारे में नई नई जानकारियों के साथ।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

नमस्कार, कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं के बारे में जो घर से दूर अकेली रहती हैं या फिर कई बार उन्हें अकेले यात्रा करनी पड़ती है। एक जमाना हुआ करता था जब महिलाएं लड़कियां घर पर रहती थी, लेकिन बदलते समय के साथ महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसे में उन्हें बाहर निकलकर काम भी करना पड़ता है और कई बार स्थिति ऐसी भी होती है कि उन्हें बाहर अकेले यात्रा भी करनी पड़ती है। तो ऐसे में उनकी प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर आप घर से दूर अकेली रह रही हैं तो आपने अपने लिए कोई घर जरूर देखा होगा, कोई फ्लैट देखा होगा। तो सबसे पहली चीज का जो आप ध्यान रखें, एक ऐसे सुरक्षित जगह पर फ्लैट लें जहां सुरक्षित वातावरण हो। आप एक बार अपने आसपास जरूर देख लें कि वहां कैसे लोग रहते हैं। अब आपने अपना घर ले लिया है, आसपास के लोगों को भी देख लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप अभी जिस घर में रहने जा रही हैं उस घर में आपसे पहले कौन रहता था। आप उन्हें ना जानती हो लेकिन अभी आपके घर के लॉक को शायद वो जानते हैं। तो जैसे ही आप अपने नए घर को तय कर लेती हैं तो दूसरा काम ये करें कि आप अपने घर के लॉक को बदलें। इससे होता ये है कि आपके पहले जो भी किराएदार वहां रहते थे उनका एक्सेस वहां खत्म हो जाता है और हो सकता है कि इसके पहले जो लॉक लगा हुआ था उसके बारे में किसी को जानकारी हो या फिर उसके एक चाबी किसी के पास हो। तो इसलिए आप जैसे ही नए घर में जाते हैं उसका लॉक बदलना जरूरी हो जाता है। इसके आगे ये कोशिश करें कि अगर हो सके जिस एरिया में आप रहती हैं वहाँ अगर कोई कैमरा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो अपने घर के एंट्री पॉइंट पर कैमरा लगवा सकती हैं तो जरूर लगवाएं। अगर आपने अपने घर के एंट्री पॉइंट पर कैमरा नहीं लगवाया है या फिर ये अलाउड नहीं है तो एक और काम आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक पीप होल लगाएं या तो फिर वीडियो डोरबेल लगाएं। सबसे पहले जानते हैं कि पीप होल क्या होता है। आपके घर के मेन दरवाजे पर एक छोटा सा छिद्र बना होता है जिसे आप देख सकते हैं कि आपके दरवाजे पर कौन खड़ा है, या तो फिर वीडियो डोरबेल लगवाएं। जैसे ही आपके घर पर कोई घंटी बजाएगा आप अपने कमरे में बैठे बैठे ये देख पाएंगे कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। ये जानना बहुत जरूरी होता है जब आप अकेली रह रही होती हैं कि आपके घर के अंदर कौन आ रहा है। किसी भी अजनबी को घर के अंदर बुलाने से पहले एक बार जरूर सोचें। और कई बार ये होता है कि आपके घर पर कोई परेशानी हो गई और किसी अजनबी को, किसी मैकेनिक को या ऐसे ही किसी और को बुलाना पड़ जाता है। तो इस वक्त आप ध्यान रखें कि आपने किसे बुलाया है, कब बुलाया है, इस बात की जानकारी अपने किसी परिचित को जरूर दें। आप एक काम और कर सकती हैं, कुछ ऐसे पालतू जानवर आप पाल सकती हैं जो आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता हो। जैसे कि अगर आप कुत्ता पालती हैं तो वो किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर शोर करने लगता है। ये खास तौर से रात के लिए फायदेमंद होता है। रात को अगर कोई आपके घर के अंदर चोरी चुपके से घुसने की कोशिश करता है तो कुत्ता शोर करने लगता है और ऐसे में आप बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही कुत्ता पालने का एक और फायदा होता है कि ये आपके मूड को बहुत अच्छा बनाए रखता है। आप अकेली रहती है, अकेले रहने वाले लोगों को डिप्रेशन का ज्यादा खतरा होता है। अगर ऐसे में आपके पास कोई क्यूट सा पालतू जानवर होगा तो आपका मूड भी अच्छा बना रहेगा। ये तो बातें हो गई घर के अंदर की। आपके घर के आसपास कैसे लोग हैं ये आपने घर लेने से पहले देख लिया था। अब आपको ये भी करना होता है कि आप अपने घर के आसपास के लोगों से अच्छे रिश्ते बना कर रखें। इससे ये होगा कि वो भी आपकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, वो भी आपका ध्यान रखेंगे। आप जब घर पर रहती हैं तब की सुरक्षा की बात तो हो गई, लेकिन जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम घर की सुरक्षा की बात करते हैं। कई बार आप घर से बाहर जाते हैं और आपके पीछे घर से बहुत कीमती सामान की चोरी हो जाती है। इससे बचने के लिए आप क्या करें कि आपने तो अगर कैमरा लगवाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्मार्ट होम डिवाइसेस खरीद सकते हैं, स्मार्ट लाइट्स खरीद सकते हैं। ये शाम होते ही जल जाएंगे और लोगों को लगेगा कि आप घर पर ही हैं और चोर उचक्के आपके घर से दूर रहेंगे। घर से निकलने से पहले आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपने घर का दरवाजा अच्छे से बंद किया है और एक स्पेयर की जो आप रखते हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा चाबी जो आप रखते हैं, उसे आपने अच्छे से छुपाया है या नहीं, इस बात का भी आप ध्यान रखें कहीं ये किसी और के हाथ में न लग जाए। ये सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को सोशल मीडिया पर अपडेट करता है। ऐसे में आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप कहाँ जा रही हैं। इसे सोशल मीडिया पर तुरंत अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं गई हैं, घूमने गई हैं, तो वहां से आने के बाद आपको जो भी अपडेट करना है वो करें, लेकिन वहां होते हुए आप अपडेट करने से बचें।
बाहर वालों को अपडेट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन घर वालों को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं, किन के साथ हैं। ये आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। इसके लिए आप अपने फोन की लोकेशन भी हमेशा ऑन रखें, जिससे कि आपके परिवार को आपके लोकेशन की जानकारी मिलती रहे। और खास तौर से अगर आप किसी नई जगह जा रही हैं तो ये जरूर करें, किसी करीबी के साथ अपने लोकेशन साझा कर दे और किसी एक करीबी को ये जरूर बता दे कि आप कहाँ और कब जा रही हैं। अपने पास कुछ इमरजेंसी नंबर लिखकर जरूर रखें। आजकल हमारे पास सब कुछ फोन में होता है, लेकिन कई बार हमारा फोन गुम हो जाता है। ऐसे में आप अपने कुछ करीबियों का नंबर याद करके रखें या फिर नोट करके रखें, और कुछ ऐसे इमरजेंसी नंबर्स भी रखें जो आपको तुरंत सहायता पहुंचाती है। जैसे हमारे बिहार में 112 है, अगर आप किसी परेशानी में फंसती हैं तो 112 पर कॉल करने से आपको जल्दी से जल्दी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। आपको अपने साथ पर्स में कुछ सेफ्टी टूल्स भी रखने चाहिए, जैसे कि आप पेपर स्प्रे रखें, फोल्डिंग चाकू रखें। ऐसी ही कुछ छोटी छोटी चीजें आप अपने साथ जरूर रखें, ये आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। ये आपकी परेशानी में आपका सबसे बड़ा साथी साबित होता है। अगर आप रात को कैब से ट्रैवल कर रही हैं तो अपने किसी करीबी को अपना लोकेशन जरूर शेयर करें, और साथ ही कैब की जानकारी अगर हो सके तो किसी के साथ शेयर करके रखें। और साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि कैब वाला आपको किस रास्ते से लेकर जा रहा है, ये कोई अनजान या सुनसान रास्ता तो नहीं है। और अगर सुनसान रास्ता है और यही एक रास्ता है आपके मंजिल तक पहुंचने का, तो आप उस दौरान अपने किसी परिचित से हो सके तो बात करते रहें, ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाता है। और ये भी ध्यान रखें कि देर रात आप घर लौट रही हैं या कहीं जा रही हैं तो कोई अनजान रास्ता चुनने से जितना हो सके बचें। और मोबाइल फोन को पर्स में रखने की जगह अपने हाथ में रखें, ताकि कोई परेशानी हो तो फटाक से आप किसी को फोन कर सकते हैं। अगर हो सके तो अपने फोन में आप वुमेन सेफ्टी ऐप भी इंस्टॉल करके रखें। अगर इन सारी चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो बाहर आप अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो लेडीज फर्स्ट में आज इतना ही। आप जुड़े रहिए 90.8 FM।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और साथ ही हम हमारे किसान भाई हमारे श्रोताओं का स्वागत करते हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में, और आप सभी जानते हैं कि इसका प्रबंधन करना हमारे किसान भाइयों के लिए अभी कितना ज़रूरी है। आज जो प्रदूषण जो चारों ओर फैल रहा है, उसका एक कारण फसल अवशेष को जलाना भी है। तो दोस्तों, कंबाइन हार्वेस्टर से धान कटाई के बाद अगली फसल जैसे कि गेहूं बुआई संभव नहीं होने के कारण किसान भाई अक्सर फसल अवशेषों में आग लगा देना ही ठीक समझते हैं, लेकिन इससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके लिए हम बहुत सारी बात जो है आज इंजीनियर पंकज कुमार सर से जानेंगे कि क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे किसान भाई फसल अवशेष को जलाने की बजाय और कुछ करें और हमारे पर्यावरण जो है वो प्रदूषित ना हो। तो क्या कुछ करें हम जो ये सारी चीज़ें, तो आज मैं आपको बता दूं कि कृषि विज्ञान केंद्र से आज इंजीनियर पंकज कुमार सर हमारे साथ हैं और ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद।
5: तो पंकज जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि फसल अवशेषों को जलाने से मिट्टी या पर्यावरण को क्या क्या हानि पहुँचता है?
6: देखिए, फसल अवशेषों को जलाने में मिट्टी का तापमान बढ़ने के कारण मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवाणु केचुआ आदि मर जाते हैं
5: जी।
6: साथ ही साथ जैविक कार्बन जो पहले से ही हमारी मिट्टी में कम से कम है और भी जलकर नष्ट हो जाता है
5: जी।
6: फलस्वरूप मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है।
5: बिल्कुल सही कहा आपने कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। और अगर हम नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो 1 टन पुआल जलाने से वातावरण को होने वाले नुकसान के बारे में भी आप बता दें हमारे श्रोताओं को।
6: देखिए, 1 टन पुआल जलाने से वातावरण में जो नुकसान होता है वो जैसे कि 3 किलोग्राम पार्टिकुलर मैटर, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 199 किलोग्राम राख और 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। पुआल जलाने से मानव स्वास्थ्य को होने वाले जो नुकसान होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, आंखों में जलन, नाक में तकलीफ, गले में समस्या।
5: तो श्रोताओं, आपने जाना कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और ये सारी बीमारी जो है आजकल आम हो चुकी है, और इसका एक कारण भी है कि हमारे जो किसान भाई जो है पुआल जलाते हैं, जिस वजह से प्रदूषण फैलता है और उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल जो है हमारे श्रोता जानना चाहते हैं। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि 1 टन अगर हम पुआल नहीं जलाते हैं, तो उसे अगर हम मिट्टी में मिलाते हैं जलाने की बजाय, तो कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं हमारे मिट्टी को, वो भी बता दें।
6: 1 टन पुआल नहीं जलाकर अगर उसको मिट्टी में मिलाते हैं तो उसमें जो निम्नलिखित हम जो अभी बता रहे हैं
5: जी,
6: जैसे कि नाइट्रोजन 20 से 30 किलोग्राम, पोटास 60 से 100 किलोग्राम, सल्फर 5 से 7 किलोग्राम, ऑर्गेनिक कार्बन 600 किलोग्राम हमको मिलता है।
5: तो ये कुछ पोषक तत्व जो हैं ना, आपको सर ने बताया कि ये सारे मात्रा में मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हुए एक सवाल और आता है कि अगर हम पुआल नहीं जलाना चाहते हैं और उसका प्रबंधन करना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए कोई उपयोगी कृषि यंत्र भी मौजूद है?
6: हाँ, इसके लिए उपयोगी यंत्र बहुत सारे हैं, जैसे कि आप अगर आपको पुआल को मवेशी के लिए अगर उठाना है तो स्ट्रॉ बेलर का प्रयोग करें।
5: अच्छा।
6: अगर आपको उसी में मिला देना है, जो कि हम आप पहले भी फायदा बताए हैं कि क्या क्या फायदा होता है, तो उसके लिए आप हैप्पी सीडर का प्रयोग करें
5: जी।
6: अगर स्ट्रॉ रीपर से आप उठा सकते हैं जो भूसा बना सकते हैं, रोटरी मल्चर जिसे है कि उस पुआल कंबाइन हार्वेस्टर से कटे हुए पुआल को फिर से काट करके छोटा छोटा टुकड़ा में खेत खेत के ऊपर बिछा देना। कंबाइन हार्वेस्टर में SMS और सुपर SMS लगवाना।
5: अच्छा।
6: जैसे SMS का मतलब होता है स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, और सुपर SMS में होता है कि हम वहीं जहां पर कंबाइन हार्वेस्टर का जहां पर पुआल गिरता है वहीं एक थ्रेसर लगा करके हम उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट करके खेत में बिछा देना। इससे हमारा जो हैप्पी सीडर मशीन है उस पर थोड़ा लोड कम पड़े, इसी को हम सुपर SMS करते हैं
5: जी।
6: अब स्ट्रॉ बेलर जो होता है इसके उपयोग से खेतों में फसल अवशेष को उठाने में हेतु काम में आता है। तो हैप्पी सीडर धान की कटाई के तुरंत बाद गेहूं की बुआई करने के लिए उपयोग में आने वाला एक कृषि यंत्र है। यह पुआल या पराली को खेतों से बिना निकाले गेहूं की सीधी बुआई करने के लिए काम में लाया जाता है। जैसे कंबाइन हार्वेस्टर से फसलों की कटाई करने से फसलों का अवशिष्ट पराली खेतों में ही रह जाती है, जिससे किसानों को फसलों के अवशिष्ट और पराली की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसका निपटारण के लिए किसान पराली में आग लगा देते हैं, इसी जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति और ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हैप्पी सीडर यंत्र का निर्माण किया गया है। रोटरी मल्चर से आप पहले भी हम बता चुके हैं कि आप पुआल को छोटे छोटे टुकड़े में करके आप वहां पर मल्च कर सकते हैं, और थोड़ा कंबाइन हार्वेस्टर के बाद जो आप हैप्पी सीडर चलाएंगे, हैप्पी सीडर को चलाने में जो सावधानियां होती है उसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है, क्योंकि हैप्पी सीडर मशीन को चलाने से पहले आप ध्यान दें कि ट्रैक्टर डबल क्लच होना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी भी मशीन को चलते हुए अगर PTO से पावर देते हैं तो आपको डबल क्लच ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर सिंगल क्लच रहेगा तो जब भी आप ट्रैक्टर को रोकेंगे, ट्रैक्टर रुकते ही हमारा उस पर जो ब्लेड चल रहा है, जो हमारे ट्राइन पर ब्लेड चल रहा है, वो भी रुकता है, और बार बार रुकने से मशीन में गड़बड़ी आ सकती है। इसीलिए आप डबल क्लच का प्रयोग करें, और PTO का जो स्पीड है, जो वहाँ पर जो हमारा शाफ्ट पर स्पीड आना चाहिए, वो 540 के लगभग होना चाहिए। इसमें आपको अच्छा कैपेसिटी और इफिशेंसी मशीन का मिलेगा। तो ये और हैप्पी सीडर में जो PTO जहाँ लगाते हैं वहाँ पर एक गियर वाइल रहता है, उसका भी लेवल आपको बीच बीच में मापते रहना चाहिए कि वो मिनिमम से कम न्यूनतम से कम ना हो, और जो उसके ऊपर जो ब्लेड है तो ब्लेड में थोड़ा सा धार होना चाहिए, और जहाँ जहाँ वाइलिंग करने की का है वहाँ वाइलिंग, और जहाँ पर बैरिंग है वहाँ ग्रीस गन से ग्रीसिंग समय समय पर करते रहें।
5: जी, तो जो भी बातें यहाँ पर सर ने आपको बताई हैं उन निर्देशों का अगर आप पालन करते हैं तो आप आराम से उन यंत्रों का उपयोग करके फसल अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं। तो और कुछ जानकारी सर आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे?
6: किसान भाइयों, आपको एक हम संदेश देना चाहेंगे कि फसल ये जो आपको यांत्रिकरण से जो फसल अवशेष प्रबंधन का जो मशीन अभी उपलब्ध है उस पर सरकार ज़्यादा सब्सिडी दे रखी है, लगभग 80-90% तक सब्सिडी उस पर दे रखा गया है, ताकि किसान उसको सहूलियत से ले सके, और जो खेतों में जो आप पुआल जलाते हैं उसको ना जला करके आप अपने खेतों में उसका सही प्रबंधन कर उसको उत्पादन को आप बढ़ा सकते हैं
5: जी। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आपसे फिर से मुलाकात होगी उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए 90.8 MHz FM ग्रीन। कृषि।
0: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
1: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: नमस्कार, मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से। मैं आज बड़ी इब्राहिमपुर ग्राम में हूं और आज हमारे साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन को पोषण से संबंधित कुछ जानकारियां देंगे प्रशांत कुमार, जो कि स्वास्थ्य कर्मी के साथ ही रहना होता है इनका और ये स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखते हैं। तो प्रशांत जी, आप हमें ये बताएंगे कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं या फिर आप पब्लिक को क्या जानकारी दे सकते हैं?
9: मनुष्य द्वारा खाए गए सभी चीज़ें पोषण के रूप में काम करती हैं, जैसे दाल, सब्जी, चावल, मांस, मछली इत्यादि सभी पोषण के रूप में कार्य आते हैं।
8: जी, पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग,
9: पोषण को हम अपने जीवन में हर एक प्रकार से उपयोग करते हैं, जैसे मसूर दाल, फल सब्जियां, साबुत अनाज इत्यादि।
8: जी, अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति सही से पोषण आहार ना ले तो उन्हें क्या क्या समस्याएं हो सकती है?
9: अगर सही से पोषण आहार ना ले तो उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे शरीर में थकान, कमजोरी, खून की कमी, डायबिटीज इत्यादियों का संक्रमण बढ़ जाता है।
8: और भी कोई समस्या हो सकती है अगर सही से पोषण
9: हो सकती है? रतौंधी हो सकती है, बौनापन हो सकता है, बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं।
8: जी, महिलाओं को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो महिलाओं को क्या क्या समस्याएं हो सकती है?
9: महिलाओं को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो महिलाओं में खून की कमी, एनीमिया, थकान, कमजोरी, बार बार चक्कर आना, ये सब लक्षण पाए जाते हैं।
8: अगर बच्चों को सही से पोषण आहार ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती है?
9: बच्चे को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो बहुत सारी समस्याएं हैं सर उसके साथ। शारीरिक विकास में वृद्धि नहीं होगी, बच्चे बौनेपन के होंगे, खून की कमी, रतौंधी बीमारी, ये सब बहुत सारी संक्रमण और रोग प्रतिरोध की क्षमता घट जाती है सर।
8: जी, तो अगर आदमी को सही से पोषण आहार लेना है तो क्या व्यक्ति अपनी क्यारी, अपनी थाली का प्रयोग कर सकता है?
9: हाँ, बिल्कुल कर सकता है।
8: तो अपनी क्यारी, अपनी थाली के बारे में आप कुछ जानकारियाँ दे सकते हैं, जो कि व्यक्ति या समुदाय सही से क्या कहते हैं अपना पोषण ग्रहण कर सके और वह स्वस्थ रह सके?
9: देखिए, अपनी क्यारी, अपनी थाली, ये बिहार राज्य सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया एक सरकारी सामुदायिक अभियान है, जिसमें बहुत से लोग जुड़े हुए भी हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कुपोषण दूर करना। और यह कार्यक्रम अधिकतर आंगनवाड़ी केंद्रों पर चलाए जा रहे हैं ऑलरेडी। इस योजना के तहत स्कूलों में या घर के आसपास आंगनवाड़ी के जितने भी अथी हैं वो सब इनकी जानकारियां दे रहे हैं। और इनको दूर करने के लिए सबसे अच्छा है बच्चों को फल, मतलब मनुष्यों को फल सब्जियां, हरेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज ज़्यादा कोशिश करें ये सब खाने की, जिससे लोग तंदुरुस्त रह सकें।
8: जी, तो आज आपने देखा कि प्रशांत कुमार ने पोषण के बारे में और साथ साथ अपनी क्यारी अपनी थाली के बारे में भी अच्छी जानकारियां दी। तो धन्यवाद प्रशांत जी, आपने 90.8 एफएम ग्रीन को अपना कीमती टाइम और अपना कीमती ज्ञान को प्रदान किया। धन्यवाद।
10: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
11: खुद भी बचे देश भी बचाए।
12: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
8: नमस्कार, मैं अजय कुमार, रेडियो प्रतिनिधि 90.8 एफएम ग्रीन से। मैं आज इब्राहिमपुर की ओर हूँ और इब्राहिमपुर में व्यक्तियों को पोषण से संबंधित क्या क्या जानकारियाँ हैं, ये जानकारी एकत्रित करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आज एक भैया जी से पोषण से संबंधित जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ। तो भैया जी, आप पोषण के बारे में।
13: पोषण वह है जिसके द्वारा भोजन ग्रहण कर अपना लोग अपना पाचन, अपना शारीरिक वृद्धि और ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, जिससे आदमी को काम करने में मदद मिले।
8: तो पोषण को हम किस किस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं?
13: पोषण को हम बहुत सारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हम फल, हरी सब्जी, फिर साबुत अनाज, प्रोटीन, वसा, इसे सब खाकर हम उसे हम अपने उपयोग कर सकते हैं उस सबका।
8: अच्छा, मान लिया जाए कोई व्यक्ति, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो व्यक्ति दवाई वगैरह से भी अपना पोषण को प्राप्त करता है। अगर व्यक्ति मान लिया जाए पोषण को दवाई के अलावा, वो किन माध्यम से प्राप्त कर सकते?
13: पोषण दवाई के माध्यम, दवाई के अलावा मनुष्य को अपना फल खाए, सब्जी खाए, और फिर आपका दाल दूध पिए, और फिर उसके बाद वो प्रतिदिन सुबह सुबह योगा करे, तो उससे उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, उसे दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी।
8: अच्छा भैया जी, आप ये बताएं कि मान लिया जाए अगर व्यक्ति को सही से पोषण ना मिले, आम व्यक्ति को, मान लिया जाए जो भी हमारे ग्रामीण हैं, अगर ग्रामीणों को या फिर व्यक्तियों को सही से पोषण ना मिले तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है?
13: हृदय रोग हो सकता है, थकान हो सकती है, कमजोरी हो सकता है, कुपोषित हो सकता है वो, जैसे इसी तरह के कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है उसके शरीर में।
8: जी, मान लिया जब महिलाओं को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती है?
13: वो उन्हें खून की कमी हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, महिलाओं को उन्हें खून की कमजोरी हो सकती है, थकान हो सकता है, बराबर संक्रमित हो सकती है वो, हार्मोनल उसका असंतुष्ट हो सकता है, जिससे गर्भाशय या माँ दोनों बच्चों का, उस पर दोनों का बुरा असर पड़ेगा। उनके अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके अंदर जो पल रहे बच्चे हैं उन पर भी उनका असर पड़ेगा।
8: जी, मान लिया जाए इसी तरह से अगर मान लिया जाए पोषण आहार सही से बच्चों को ना मिले तो क्या समस्याएं हो सकती हैं?
13: बच्चों को ना मिले तो फिर उसे कई प्रकार के रोग, बौनापन, जैसे मानसिक रोग हो सकते हैं उन्हें, और उन्हें कठिनाइयाँ बहुत सारे, बच्चों के लिए बहुत सारे कुपोषित हो सकते हैं रोग, जैसे एनीमिया, रतौंधी, सब ये सब, जैसे ये सब बढ़ सकते हैं उन लोगों।
8: तो अगर मान लिया जाए, ये सब तो आपको पता है कि मान लिया जाए ऐसा ऐसा होता है, अगर बच्चों को सही से पोषण आहार ना मिले, स्त्रियों को ना मिले या फिर आम व्यक्तियों को ना मिले, तो ये समस्याएं होती है, ये जानकारी आपको है, तो इसी बीच आप अपना परिचय देंगे क्या?
13: जी हाँ, मैं सबौर बड़ी इब्राहिमपुर का रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा नाम मानव है।
8: जी, तो मानव जी, आपसे ये तो आपने पोषण के बारे में बहुत अच्छा बताया, लेकिन कि इस पोषण को सही से हम प्राप्त करते रहें, इसके लिए हमारे कृषि कॉलेज भी एक मुहिम चलाई है। उस मुहिम के अंतर्गत अपनी क्यारी अपनी थाली एक मुहिम है, उसके बारे में आप लोगों को क्या पता है? इब्राहिमपुर से एग्रीकल्चर कॉलेज की ज़्यादा दूरी भी नहीं है, 2 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो आपको अपनी क्यारी अपनी थाली के बारे में क्या जानकारियाँ हैं ये बताएं।
13: अपनी क्यारी अपनी थाली का उसका कहना है कि जैसे अभी आपके पास अगर ज़मीन है तो वहाँ पे अपना कुछ रोप दिए, अपना उगाइए, अपना खाइए, तो जिससे कि अनाज की कमी नहीं होगी, जिससे आदमी को बराबर पोषण मिलता रहेगा।
8: ये तो मान लिया जाए कि बृहद पैमाने पे आपने बताया, मान लिया जाए ग्रामीण हो या फिर शहरी हो, उनको सभी को मान लिया जाए बहुत सारा जमीन नहीं होती है।
13: हाँ।
8: जब जमीन नहीं होती है तो वो अपना खेती तो नहीं कर सकती है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करे और कैसे अपनी क्यारी अपनी थैली को यूज कर सकता है? मान लिया जाए वो घर के आगे गार्डनिंग के लिए क्या करे, या फिर क्या उनके बारे में जानकारी है?
13: वो क्या करे अगर जो वो नहीं कर सके, अगर जो उनके पास अपना जमीन नहीं है तो वो दूसरे के अथी पे डिपेंड कर सकता है। अगर वो उगा रहा है तो अगर वो उसके पास है कि वो एक
8: नहीं, नहीं, अपनी क्यारी अपनी थाली का एक सीधा सा उदाहरण ये है कि जैसे कि आपके आगे आंगन हो, बाड़ी हो, उसमें आप एक क्यारी के रूप में आप लगा सकते हैं, उस क्यारी में लगाएं, और अपना जैसे कि सब्जी हो, फल हो, वो अपने आप आंगन में अगर उपजाते हैं तो वो आपको ऑर्गेनिक मिलती है, पूर्ण रूपेण आपको रासायनिक रहित मिलती है, ठीक है, उसमें रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, जो कि आपके शरीर के लिए क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो आपने 90.8 FM ग्रीन को अपना कीमती टाइम दिया, इनके लिए 90.8 FM ग्रीन आपका धन्यवाद करती है। मैं

0: खसरा कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि, नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 MHz पर। मैं हूँ अनु और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं खास विषय, और गर्मा मूंग की हम बात करते हैं इस समय। तो गर्मा मूंग में कीट प्रबंधन आप कैसे करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आज के वैज्ञानिक आप सभी को देंगे। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर पवन कुमार, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं KVK सबौर। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: थैंक यू अनु जी।
4: मूंग में कौन कौन से कीट लगते हैं, पहले तो इसकी जानकारी दें हमारे श्रोताओं को।
6: मूंग में जैसे हम मूंग लगाते हैं तो मूंग में मुख्यतः जो है वो फली बेदक है, सफ़ेद मक्खी है, फिर उसमें हरा फुदका कीट है, थ्रिप्स है, बहुत सारे कीट हैं, जो पॉड बग हैं जो अभी इस समय बहुत तेज़ी से जो लग रहे हैं, फिर उसके बाद जो सफ़ेद मक्खी है जो मोज़ेक वायरस फैलाती है, तो इन तमाम तरह के कीट हैं। लाल बालदार सुंडी है, बालदार सुंडी है, ये सब कीट मूंग में लगते हैं
4: जी। कौन कौन सी बीमारियां इसमें लगती हैं?
6: बीमारियां मुख्यतः एक बीमारी है जो जड़ का सड़न बोलते हैं, जड़ सड़ जाती है और पत्तियों में भी उसके सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं। फिर सरकोस्पोरा लीफ स्पॉट है, एक ब्राउन कलर का, एक जैसे सरसों के दाने की तरह उसमें वो हो जाते हैं, लीफ में स्पॉट पड़ जाता है सरसों के दाने की तरह, वो बीमारी है। एंथ्रेक्नोज है, पाउडरी मैल्यू है, तो ये सब बीमारियां उसमें गर्मा मूंग में लगती हैं
4: जी। अभी के समय की हम बात करते हैं, तो अभी के समय में कौन कौन से कीट लग सकते हैं इसमें?
6: तो अभी के समय में जो हम देख रहे हैं कि फूल कुछ फूल लगते जा रहे हैं और उसमें पॉड भी लग गए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अभी प्रकोप में है, जो ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, तो वो है आपका फली वेदक कीट, और इसका फली वेदक कीट के बाद फली बग, जो फली वृक्ष जिसको बोलते हैं, वो फली बग, उसमें अभी ये दो तरह के कीट बहुत तेज़ी से गर्मा मूंग में लगते हैं
4: जी। कौन कौन सी बीमारियां इस समय की बात अगर हम करें तो लग सकती?
6: इस समय की बीमारियां जो हमने बताया पहले आपको कि जो सरकोस्पोरा लीफ स्पॉट है, एंथ्रेक्नोज है, पाउल्ड्री मैल्यू है, ये अभी ये बहुत ज़्यादा फैलती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा जैसे 10%, जैसे हम कोई एक एरिया लेते हैं, अगर उसमें देख रहे हैं कि दिखने लगा है कि मुझे पाउडरी टाइप का दिखने लगा है, तो उसमें उसका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है
4: जी। अभी के समय की हम बात करते हैं, तो अभी जो गर्मा मूंग में

0: कीट लगेंगे तो उनकी रोकथाम हमें कैसे करनी चाहिए?
1: गर्मा मूंग में कीट अभी जो मुख्यतः है वो पॉड बग और फली बोरर है, तो इनको हम मैनेज जनरली पहले से अगर हम कुछ उपचार करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कंट्रोल हो पाए हैं और अभी ज़्यादा उसमें लग रहे हैं तो हम जो पॉड बग है, जो फली बग जिसको बोलते हैं, उसका जो सिम्टम है वो क्या करता है कि फली के अंदर, जैसे फली के अंदर जो दाना होता है तो उसके फली से, फली के ऊपर बैठ के उसमें अपना मुखांग उसके अंदर डाल के और उसके दाने से रस चूस लेता है, तो वो फली खराब हो जाती है और पिचक जाती है, उसमें कोई दाना नहीं पड़ता है। तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग उसमें क्यूनाल फॉस एक दवा है 25 EC में जो आता है, तो 2 ml प्रति लीटर में उसको मिला के छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आप पॉड बग को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं।
0: और इस समय जो रोग लगते हैं उनकी रोकथाम कैसे करें?
1: इस समय जो रोग लग रहे हैं, हाँ, जो रोग मैंने बताए हैं आपको कि सरकोस्पोरा लीफ स्पॉट है और पाउडरी माइल्ड्यू है और ये सब हैं, तो इनकी रोकथाम के लिए हम कार्बेंडाजिम एक पाउडर आता है बाविस्टिन के नाम से आता है, तो उसको 1 ग्राम पानी में हम मिलाते हैं, 1 ग्राम पानी में मिला के, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के, और हम प्रति हेक्टेयर की वजह से उसको छिड़काव कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाना है।
0: तो यहाँ पर कीटों की बात हो गई, यहाँ पर खासतौर पर हमने गर्मा मूंग में कीट प्रबंधन की बात की थी, लेकिन आपने रोगों के बारे में भी जाना, रोकथाम कैसे कर सकते हैं, कीटों से रोकथाम कैसे कर सकते हैं, अपने गर्मा मूंग को बचा सकते हैं, तो यहाँ तक ही ये बातें थी। अगले दिन हम आप सभी को एक और विषय लेकर आएंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। कृषि

0: इतनी गंभीर बीमारी है, टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के अनुसार अनुमान है कि 27 मई से 31 मई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में अगले कुछ दिनों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आपको बता दें, आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, इन जिलों में 28 मई को लू चलने की यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है। 27 से 31 मई के दौरान अनुमान है कि अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें, साथ ही खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जिनके खेत में गर्मा मूंग और उड़द है, उन्हें बता दें, देर से बोई गई गर्मा मूंग और उड़द की फसलों में हेयरी कैटरपिलर का प्रकोप होता है, ऐसे में उनकी निगरानी करना जरूरी है। प्रकोप अगर दिखाई दे तो मिथाइल पैराथियन 50 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जिनके खेत में सब्जियां हैं, उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप होता है, इसलिए उनकी नियमित निगरानी की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियन 50 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को या फिर डाइमेथोएट 30 इसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं, उन्हें बता दें, आम के बागानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि आम के बागानों में रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में या फिर लैम्बडा साहिल लोथ्रीन की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। बागानों में पर्याप्त और निरंतर नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। जिनके बागानों में लीची है, उन्हें बता दें, लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसी वजह से किसान भाई बहन किसी भी प्रकार का छिड़काव शाही लीची में अभी नहीं करें। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्बडा साहिल लोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं, उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और जो पशु दूध देते हैं उन्हें खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। वहीं गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए। साथ ही पशुओं को हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
1: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
1: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
1: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
1: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है
2: जी।
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
1: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे टुलिपा कहा जाता था। बाद में यह शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
1: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
1: जैसे
2: जैसे लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
1: जी,
2: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
1: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
1: अविमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
1: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
2: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ, वो क्या?
2: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
2: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओ, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक

0: और फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
1: जी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 33 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
3: मश्क,
2: होशियार,
3: समझदार,
2: पेंसिल तराश,
3: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
3: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक।

0: तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
1: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना, और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
3: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
4: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
3: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
4: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाए, हो नहीं सकता।
3: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
5: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
6: क्या बात है,
5: सुनकर ही जोश आ गया।
6: हाँ।
5: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो, और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
6: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा, या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
2: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे, और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है, और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन वन, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
7: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
2: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999, स्थान 0.5140, 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
8: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
9: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
8: अरे देख लेंगे।
2: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था? उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
10: हमला करो! दुर्गा माता की जय! माता की जय!
2: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
3: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
7: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
11: क्या बात कही है?
3: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
7: धन्यवाद।
2: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की। जय भारत माता की। जय
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबरा कर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नारायण तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जाओ।
4: मैं जा रहा हूं।
5: साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें?

और तभी उन्होंने वीरगति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं।

0: 90.8 ग्रीन FM. उन्नत कृषि. नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़. मैं हूँ अनु और आज एक बार फिर एक खास विषय लेकर मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ. हम बात कर रहे हैं अजोला की और साथ ही इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज आप सभी को बताई जाएंगी जो किसान भाइयों के लिए, खेत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, मिट्टी के लिए फायदेमंद होगी. आज हम बात करेंगे खेती, पशुपालन एवं वर्मी कंपोस्ट समृद्धिकरण में अजोला की उपयोगिता के बारे में, साथ ही उत्पादन और प्रयोग विधि, आप कैसे अजोला का करेंगे इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे. इस विषय के साथ हमारे बीच है मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर ए के झा, अमृता विज्ञान विभाग, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से. डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है.
1: धन्यवाद.
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप अजोला के बारे में बताएं.
1: एक्चुअली अजोला एक उच्च पोषक मान वाला जलीय फर्न है जिनके पत्तियों में एनाविना अजोली नाम का एक नीलहरित शैवाल पाया जाता है. भारत के कई भूभागों में इसका उपयोग पशु आहार, मानव आहार, जैव उर्वरक और हरी खाद के रूप में किया जाता है, लेकिन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में इसका प्रयोग वर्मी कंपोस्ट के समृद्धिकरण के लिए भी किया जाता है.
0: जी, अगर प्रजातियों की बात करें तो भारत में अजोला की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं एवं कहां कहां मिल सकती है, साथ ही बिहार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो प्रजाति है वो कौन सी है?
1: देखिए, मुख्य रूप से 7 प्रजातियां हैं जो अजोला की जो कि पाई जाती हैं. उसमें है अजोला कैरोलिनियाना, अजोला फेलिकुलाइड्स, अजोला मैक्सिकाना, अजोला माइक्रोफिला, अजोला पिन्नाटा, अजोला रुब्रा. लेकिन देखिए, पहले अजोला निलोटिका भी पाया जाता था, लेकिन अब अजोला निलोटिका सामान्यतः नहीं मिलता है. तो ये जो 6 प्रजातियां हैं, ये 6 प्रजाति हमारे भारतवर्ष में पाई जाती है. भारतवर्ष क्या कहिए कि विश्व में पाई जाती है, यही 6 प्रजाति मुख्य रूप से भारतवर्ष में पाई जाती है. और जहां तक बात है बिहार की, तो यहां पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने यह शोध करके देखा है कि यहां के वातावरण के हिसाब से जो अजोला माइक्रोफिला है यह सबसे बढ़िया है. एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, हो सकता है किसी 10-15 दिन अजोला कैरोलिनियाना बहुत अच्छा कर जाए, अगले 10-15 दिन हो सकता है रुब्रा अच्छा कर जाए, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो अजोला माइक्रोफिला का सबसे बढ़िया है. साथ ही साथ एक जो लोकल कलेक्शन है यहाँ पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का BAUAS1, वह भी बहुत बढ़िया ये परफॉर्म करता है. खास करके माइक्रोफिला के बाद सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसी का देखा गया है.
0: जी, पोषक मान क्या है अजोला का?
1: देखिए, अब एक चीज है कि अजोला, मैंने कहा ही कि उच्च पोषक मान वाला है. इसमें 25-35% प्रोटीन है. अब देखिए, 25-35% प्रोटीन है, यानी कह लीजिए कि अंडा, मछली, मुर्गा, इस सबसे भी कुछ मामले में ये ज्यादा प्रोटीन वाला है. तो इसमें 25-35% प्रोटीन पाया जाता है. जहां तक नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी 4-5% तक पाया जाता है. फॉस्फोरस भी इसमें 0.85% के आसपास पाया जाता है. पोटास की बात करें तो पोटास आपको 2.5% से 4.5% के बीच में इसमें पोटास पाया जाता है. इसके अतिरिक्त जैसे आप विटामिन B12 की बात करें तो 100 ग्राम में 0.14 मिलीग्राम पाया जाता है. कैल्शियम भी 0.67 मिलीग्राम पाया जाता है. मैग्नीशियम भी 4-3 मिलीग्राम पाया जाता है. गंधक भी पाया जाता है 2.7 मिलीग्राम. जस्ता भी पाया जाता है 4.1 मिलीग्राम. लोहा की बात करें तो 7.3 मिलीग्राम पाया जाता है. तांबा इसमें 0.9 मिलीग्राम पाया जाता है. मैग्नीज 102 मिलीग्राम पाया जाता है. सोडियम भी 0.26 मिलीग्राम पाया जाता है. कहने का मतलब यह है कि इसमें लगभग लगभग जो हमारे लिए जरूरी है वो सारे के सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं. इसीलिए हम इसको उच्च पोषक मान वाला जलीय फर्न कहते हैं.
0: जी, अगर अजोला का प्रयोग किसान भाई खेती में करते हैं तो क्या फायदे मिल सकते हैं उन्हें?
1: देखिए, ऐसा है, इसका प्रयोग खेती में आज से नहीं होता है, इसका प्रयोग काफी पहले से किया जाता है. तो यहाँ पर अभी तक जो दूसरे भागों में था, विश्व के दूसरे भागों में हम कहें तो ज्यादा बढ़िया है, उसका प्रयोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किया जाता था, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए. चूंकि हमने बताया कि इसके पत्ती में नीलहरित शैवाल पाया जाता है, तो ये लोग अभी यही करते थे कि धान की फसल में नाइट्रोजन का इसमें फायदा होता है, नाइट्रोजन की बचत होती है, इसी के लिए करता है। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय ने शोध करके इस पर टेक्नोलॉजी भी रिलीज किया है कि हम यदि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा यदि आधी कर दें लेकिन हम इसका हरी खाद के रूप में प्रयोग करें तो हम देखे हैं कि हमारे उत्पादन में कोई अंतर नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि इसका प्रयोग करके हम 50% नाइट्रोजन, 50% फास्फोरस और 50% पोटास जो हम धान में देते हैं उसकी बचत कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ शोध करके हम लोगों ने यह भी देखा है कि जो ये प्याज है, खास करके खरीफ प्याज, बिहार में इसका काफी क्षेत्रफल है, तो ये जो खरीफ प्याज है, खरीफ प्याज सड़ता बहुत है। तो यदि अजोला की सिर्फ आप मल्चिंग कर दीजिए तो मल्चिंग करने के बाद यह देखा गया है कि इसमें इसकी स्टोरेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी सड़ता कम है, साथ ही साथ इसका उत्पादन भी बढ़ता है। तो यह सारी चीजें यहां पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने यह देखा है कि यदि हम इसका प्रयोग प्याज में करते हैं तो सड़ता कम है, उत्पादन ज्यादा बढ़िया होता है, धान में यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारा जो रिकमेंडेड अनुशंसित नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास की मात्रा है वह भी आधी बच जाती है। यदि हम ग्रीन मैन्योरिंग ना करें, यदि डुअल क्रॉपिंग करें धान के साथ, तब भी हमारे उत्पादन में खास करके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास में बचत होती है, यह चीज हम लोगों ने देखा है।
0: जी, अगर पशुपालन की हम बात करें तो क्या पशुपालन में अजोला का प्रयोग हो सकता है, और अगर हाँ तो क्यों, कैसे, इसके फायदे क्या हैं, इसके बारे में बताइए।
1: बड़ा बढ़िया है, बड़ा आपने समचीन प्रश्न पूछा। एक्चुअली क्या है कि जो हमारे किसान भाई हैं वह खेती में तो कम प्रयोग कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ बिहार में भी या दूसरे जगहों पर भी पशुपालन में इसका जरूर प्रयोग कर रहे हैं। जो पशु पोषण है, पशु को जो हम चारा देते हैं, चारा मिल नहीं पा रहा है, और चारा नहीं मिल पा रहा है, साथ ही साथ यदि चारा मिलता भी है तो चारा में उतना पोषक मान नहीं होता जितना अजोला में। यदि हम देखें अजोला को तो 100 मेट्रिक टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष हम सिर्फ अजोला को पैदा कर सकते हैं यदि सही ढंग से व्यवस्था की जाए, उतना कोई भी चारा आपको उत्पादन करके नहीं दे सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक जो ज्यादा पोषक मान वाला है वह ज्यादा मात्रा में यह उत्पादन करके आपको दे सकता है। अब यह बात है कि पशु पोषण में, यह तो हम लोगों ने यहां शोध करके भी देखा था, जो हमारे पशु वैज्ञानिक हैं वह भी हमारे साथ थे इस प्रयोग में, तो यह करके हम लोगों ने देखा कि यदि हम 1 kg सुबह और 1 kg शाम यदि हम जानवर को देते हैं खाने के लिए, जो भी आप दाना चारा देते हैं उसी के साथ मिला करके 1 kg सुबह में 1 kg शाम में देते हैं, तो हमारा जो दूध का उत्पादन है वो 8 से लेकर 15.6% तक, यानी 8 से 16% तक लगभग हमारा दूध का उत्पादन बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम सिर्फ यदि 1 kg सुबह 1 kg शाम यदि हम खिला देते हैं, और आपका मान लीजिए गाय है वो 10 लीटर दे रही है, तो 10 लीटर के स्थान पर यदि आपको 1.5 लीटर दूध बढ़ जा रहा है तो सोचिए कि कितना फायदा हो जा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप यदि 300 लीटर दूध यदि उत्पादन कर रहा है तो उसके हिसाब से किसान को काफी हजारों रुपए का फायदा उसको हो सकता है, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। साथ ही साथ देखिए इसका आप जो उपयोग है वह आपको मुर्गी पालन में भी कर सकते हैं, बकरी पालन में भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि बकरी पालन में जब आप करेंगे उसमें ज्यादा मात्रा नहीं दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा देने से 10% से ऊपर यदि आप दे रहे हैं तो वहां पर आपको उसको डिसेंट्री होने की संभावना होती है, तो इसलिए ज्यादा नहीं करते हैं। मुर्गी में तो आप 25% तक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जितना आप दाना दे रहे हैं उसका 25% सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं, बकरी में नहीं। तो कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के पशुओं के पोषण के लिए आप अजोला का प्रयोग कर सकते हैं।
0: जी, तो वर्मी कंपोस्ट के समृद्धिकरण में क्या अजोला का प्रयोग किया जा सकता है?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हम लोगों ने करके देखा है कि सिर्फ वर्मी कंपोस्ट के समृद्धिकरण में ही इसका प्रयोग नहीं हो सकता है, बल्कि केचुआ की तेजी से आप उत्पादन करना चाहते हैं, उसकी ब्रीडिंग जल्दी से करना चाहते हैं, उसमें भी अजोला आपका बड़ा उपयोगी है। कारण यह है कि अभी हमने बताया कि इसके पोषक मान बहुत अच्छे हैं, तो अब केचुआ भी इसको खा रहा है तो नेचुरल सी बात है कि उसमें जो है बढ़िया उसका वृद्धि होता है। इवन 200 से 250% तक 3 महीने में उसकी जनसंख्या बढ़ गई है, यह हम लोगों ने शोध करके देखा है। अब प्रश्न उठता है कि जो समृद्धिकरण है क्यों हो जाता है? अब अभी आपने को हमने बताया कि नाइट्रोजन 4.5% से 5.5% है, कहीं से केचुआ बाहर से तो पोषक मान लाएगा नहीं। अब इसमें चूंकि नाइट्रोजन ज्यादा है इसीलिए उससे जो वर्मी कंपोस्ट बनता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा स्वतः ज्यादा होती है। अब मान लीजिए हम 25% तक उसमें मिला रहे हैं, तो 25% तक यदि मिला रहे हैं तो अब समझ लीजिए कि कम से कम एक चौथाई तो मामला उसमें जा ही रहा है, तो नाइट्रोजन निश्चित रूप से बढ़ेगा। पोटास ही हमने बताया 2.5 से लेकर 4.5% तक है, तो आपका जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा उसमें पोटास की मात्रा ज्यादा होगी, या अन्य पोषक तत्व ही जो इसमें है वो पोषक तत्व के कारण आपका जो वर्मी कंपोस्ट है वह गुणवत्तापूर्ण बनेगा। और इतना ही नहीं, केचुए की वृद्धि विकास यह भी बढ़िया होगा, तो इसके समृद्धिकरण में भी आप अजोला का प्रयोग कर सकते हैं।
0: जी, अजोला की उत्पादन विधि के बारे में थोड़ा बताएं।
1: अब जहां तक अजोला के उत्पादन विधि की बात है, तो यदि आप ये पशुपालन के लिए करते हैं, तो पशुपालन के लिए कर रहे हैं तो जो आप बगल में जो फार्म है जहां पर पानी की व्यवस्था है वहां पर गड्ढा आप बना लें। गड्ढा ऐसा है कि आप 2×2 मीटर का भी बना सकते हैं, या 2×1 मीटर का भी बना सकते हैं, या 2.25×1.5 मीटर का भी बना सकते हैं। हाँ, गहराई इसका 30 सेंटीमीटर से लेकर के 0.5 मीटर तक गहराई रखें। अब क्या है कि जो गड्ढा आपने बना लिया, तो गड्ढे के नीचे कोई पॉलीथीन बिछा दीजिए, जैसे पानी रिसे नहीं, उसका कोई मकसद नहीं। इसके ऊपर आप उपजाऊ मिट्टी डाल देते हैं। यदि आपने 30 सेंटीमीटर का बनाया हुआ है तो नेचुरल सी बात है कि आप कम मिट्टी की ऊंचाई रखेंगे। यदि 0.5 मीटर का रखे हुए हैं तो मिट्टी की ऊंचाई थोड़ा ज्यादा आप रख सकते हैं। तो अब आपने मिट्टी कर दिया, इसके ऊपर ये जो है आप 2 से 4 इंच कम से कम पानी रहना चाहिए, स्टैंडिंग वाटर रहना चाहिए। तो वह आपने वहां पर पानी डाल दिया। जब पानी डालेंगे तो नेचुरल सी बात है वहां झाग वाग होगा, तो जो भी आपके पास तांबे की या प्लास्टिक की जो भी जाली रखते हैं तो उसके जो स्कम है, उसके जो झाग है, उसको आप चाल करके वहां से हटा दिए। हटा देने के बाद उसमें जो है आपको ये डाल देना है, क्या कहते हैं, अजोला। तो अजोला को कभी कभी जैसे बरसात के दिनों में यूज करते हैं तो उसमें कीड़े की भी समस्या आती है, तब आपको कार्बाफिरान 3G से ट्रीट करके डालना है। लेकिन यदि आप जानवर को खिला रहे हैं तो कार्बाफिरान 3G से ट्रीट नहीं कीजिएगा। इतना ही नहीं, जो आप पानी डाले हैं उस पानी में गोबर भी मिलाया जा सकता है, मिलाया जाता है, जो एक आपका स्क्वायर मीटर में है 1 से 1.5 kg जो गोबर है उसको पानी में 10-15 मिलीलीटर पानी में घोल करके, जो बालू चालने वाला चलनी है उस चलनी से चाल करके उस स्लरी को उसमें डाल सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप गोबर मिलाते हैं तो बहुत सारा जानवर खाने में नाटक करता है, तो आप नहीं भी डालेंगे तब भी आप पैदा कर सकते हैं। हाँ, वहां पर आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट कैसे डालेंगे भैया? तो इसमें आप ये कीजिए कि आप 10 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट ले लीजिए, 1.5 किलोग्राम उसमें मैग्नीशियम सल्फेट मिलाइए, और उसमें 0.5 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास मिलाइए, और इसको मिला करके जो उसका 5 ग्राम है, 10 ग्राम भी कर सकते हैं लेकिन 5 ग्राम अनुशंसित है, कम से कम 5 ग्राम होना चाहिए, तो 5 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप उसमें डालते रहे हफ्ता 10 दिन के बाद। तो आप इस ढंग से करेंगे। कारण ये है, जो अजोला है उसको फास्फोरस का रिक्वायरमेंट उसका ज्यादा है, तो जो फास्फोरस का रिक्वायरमेंट है वह उसको मिल रहा है, और फास्फोरस का रिक्वायरमेंट उसको मिल रहा है तो तेजी से वृद्धि करेगा। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि भैया इतना ज्यादा यदि हमको अजोला वहां पर चाहिए धान के लिए, वहां पर हम क्या करेंगे? तो देखिए, वहां पर आपको करना ये है कि यदि हरी खाद के लिए करते हैं तो खेत में ही क्यारी बना लीजिए, वहां 10×2 मीटर का या 10×1 मीटर का क्यारी बना लीजिए। अब यह क्यारी बना करके उसमें वही गोबर डाल करके, गोबर का घोल डाल करके, और उसमें आप अजोला डाल करके, और उसके बाद उसकी वृद्धि करवाते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आप डुअल क्रॉपिंग के लिए करते हैं, जैसे धान का और अजोला का एक ही साथ वृद्धि करवाना चाहते हैं, तो वहां पर जितना आप ग्रीन मैन्योरिंग में डालते हैं उसका 1/10 हिस्सा ही वहां पर आप प्रयोग कीजिए। जब धान आपको 5-7 दिन 10 दिन का हो गया रोपा हुआ, तो उसी में पानी थोड़ा सा 2-4 इंच जरूर रहना चाहिए, उसमें अजोला आपने छिड़क दिया, और जितना आपने फॉस्फोरस डाला था वो कम से कम 20 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से फॉस्फोरस की मात्रा को बढ़ा दीजिए, और उसकी मात्रा को बढ़ा करके आपने डाल दिया, और 15 से 21 दिन तक जो पानी का स्तर है 2 से 4 इंच आप बरकरार करके रखेंगे, तो देखेंगे कि पूरा खेत अजोला से भर गया। अब उसके बाद पानी के स्तर को कम कर दीजिए। अब पानी के स्तर को कम करके छोड़ देंगे तो वह जितना अजोला है वह आपके मिट्टी को पकड़ लेगा, और उसके बाद वह खुद वहां पर ये खत्म हो करके वो हो जाएगा। हाँ, एक बात जरूर मैं बताना चाहता हूं जो मैं भूल गया था, कि जब आप अजोला पैदा कर रहे हैं पशु के लिए, तो वहां पर हर एक 30 जो है 15-20 दिन के बाद आप एक तिहाई पानी को जरूर निकालते रहिए, नए पानी से उसको प्रतिस्थापित करते रहिए, और जब मिट्टी काली हो जाए तो अब उसकी स्थिति में आप मिट्टी को हटा करके फिर जब काली मिट्टी हो गई तो फिर नई मिट्टी डालना पड़ेगा, ये करेंगे तभी आपका अजोला चलेगा। तो ये सब तरीके हैं, इन सब तरीकों को आप जान करके अजोला का उत्पादन करके अपने पशुपालन में भी फायदा कमा सकते हैं, खेती में फायदा कमा सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, लेकिन फिर और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे

0: सबौर में आइए, हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, यहाँ पर यूनिट बना हुआ है, यहाँ आकर के सीखें और जरूर इसका उपयोग करें।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेती पशुपालन एवं वर्मी कंपोस्ट समृद्धिकरण में अजोला की उपयोगिता, उत्पादन और प्रयोग विधि के बारे में। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे कल एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कई सारी धारणाएं बनाता है और उन्हीं धारणाओं के हिसाब से अपने जीवन की प्लानिंग करता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि हमारी पुरानी धारणाएं टूटती नजर आती है या पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, और नई धारणाएं बनाने में हमें बहुत समय लग जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति में हमने जो रास्ता अपने लिए तय किया था वो रास्ता अंधेरों से भर जाता है और फिर हमें हाथ लगती है निराशा। और जब बार बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है तो हम घोर निराशा में चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्लेटो के जीवन में निराशा ने दस्तक दी पर उन्होंने हार नहीं मानी। आपने महान दार्शनिक प्लेटो का नाम तो सुना ही होगा। प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से वो घोर निराशा में चले गए, लेकिन वो हर बार नई राह तलाशते रहे, नई धारणाएं बनाते रहे और आगे बढ़ते रहे। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक धनी और प्रभावशाली परिवार में हुआ था। अपने समय के अधिकांश युवकों की तरह उनका भी सपना था राजनीति में प्रवेश करने का। प्लेटो को लोकतांत्रिक परंपराएं एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए उपयुक्त लगती थी। हालांकि इतिहास की घटनाओं ने उनके विश्वास को तोड़ दिया। पेलोपोनेशियन युद्ध में एथेंस की हार के बाद सत्ता 30 टायरेंट्स के हाथों में चली गई। ये शासन बहुत ही क्रूरता और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात था और इसके कुछ नेता प्लेटो के अपने रिश्तेदार थे। ये बात प्लेटो के लिए और भी ज्यादा पीड़ादायक थी। जब हम अपनों को गलत राह पर चलते देखते हैं तो हमें ज्यादा पीड़ा होती है। उन्होंने देखा उनके अपने भी अन्याय और हिंसा के रास्ते पर चल पड़े हैं। देश में अन्याय, हिंसा और नैतिक पतन ने नागरिक मूल्यों की जगह ले ली थी। जब लोकतंत्र पुनः स्थापित हुआ तो एक बार प्लेटो के मन में फिर ये आश जगी कि अब एथेंस अपनी गलतियों को सुधारेगा, लेकिन ठीक इसके उलट लोकतांत्रिक सरकार ने प्लेटो को एक और झटका दिया। 399 ईसा पूर्व में प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया गया। सुकरात पर नास्तिकता और युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप लगाए गए थे, जिन्हें जाहिर सी बात है प्लेटो ने झूठा और राजनीतिक रूप से प्रेरित माना। इस घटना ने प्लेटो को समझाया कि जब सत्ता अज्ञान के हाथों में होती है तो लोकतंत्र भी गंभीर अन्याय कर सकता है। निराश होकर प्लेटो ने राजनीति से भी दूरी बना ली। उन्होंने एक और नई राह तलाश की। प्लेटो का मानना था कि कोई भी शासन व्यवस्था तब तक न्यायपूर्ण नहीं हो सकती जब तक उसे नैतिक विवेक का मार्गदर्शन न मिले। उन्होंने गहन अध्ययन किया और अंततः एथेंस में प्रसिद्ध अकादमी की स्थापना की, जो पश्चिम का पहला उच्च शिक्षण संस्थान मानी जाती है। प्लेटो का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि समाज तभी न्यायपूर्ण होगा जब दार्शनिक शासक बनेंगे या शासक दार्शनिक। प्लेटो ने अपने इसी उद्देश्य में सफलता पाई। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि प्लेटो के जीवन में भी बहुत सारी विपदाएं आई, उनकी बहुत सारी धारणाएं टूटी। प्लेटो राजनीति में जाना चाहते थे लेकिन राजनीति की कठोरता उन्हें रास नहीं आई। लेकिन फिर भी प्लेटो ने हार नहीं मानी, अपने लिए नित्य नए राह तलाशते रहे और आज विश्व के महान दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। तो ये थी प्लेटो की कहानी। दोस्तों, उम्मीद है आपको प्लेटो की कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो ये थी आज की मोटिवेशनल बातें। हम आपके लिए ऐसी ही कुछ जरूरी और मोटिवेशनल बातें लाते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ।
5: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
6: खुद भी बचे देश भी बचाए।
7: टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ये कहावत हमारे यहाँ बहुत मशहूर है। इसका मतलब होता है कि अकेले रहकर हम कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम संगठित हो जाएं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसान अगर संगठित हो जाए, यानी कि अगर हम किसानों का संगठन बना ले, जिसे कि हम FPO कहते हैं, तो फिर किसानों की कमाई बढ़ सकती है और बहुत तरह के उन्हें लाभ भी मिल सकते हैं। तो आज हम FPO के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि किसान संगठन के बारे में बात करने वाले हैं। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा पांडे जी। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, आप हैं सहायक प्राध्यापक। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: नमस्कार मैडम।
4: मैम, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है कि किसान संगठन या फिर जिसे हम FPO भी कहते हैं, वो क्या है और हमारे किसान भाई बहन अभी भी इससे अनजान कैसे हैं?
6: जी, ये आपका बहुत ही बुनियादी सवाल है। देखिए, बिहार में अधिकतर किसान छोटे या सीमांत हैं, उनके पास ज़मीन कम है। अब जब वे अकेले खाद बीज ये सब खरीदने जाते हैं तो उन्हें महंगा मिलता है, और जब फसल बेचने जाते हैं तो बिचौलिए उनके बहुत ही कम दाम देते हैं। किसान उत्पादक संगठन इन्हीं छोटे किसानों का एक समूह है। यह एक कंपनी की तरह काम करता है, लेकिन इसके मालिक खुद किसान ही होते हैं। जब 100 से 200 किसान एक साथ मिलते हैं तो उनकी सौदेबाजी, जिसे हम बार्गेनिंग पावर कहते हैं, वो काफ़ी बढ़ जाती है।
4: तो मैम, FPO में सस्ते बीज भी मिलते हैं, सस्ते बीज के साथ क्या संगठन से जुड़ने के बाद कोई और भी फायदा होता है? खेती के तरीकों में भी क्या बदलाव आता है या आया है?
6: जी, इन संगठनों से जुड़ने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि कस्टम हायरिंग सेंटर खोला जाता है, जिसके तहत किसानों को हम बड़ी जो उपकरणें होती हैं कृषि से संबंधित, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रोन, इन जैसी महंगी मशीनें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। संगठन से बहुत कम किराए पर ये ले सकते हैं। इससे मजदूरी का खर्च भी कम हो जाता है और समय की भी बचत होती है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार FPO की नई मशीनें खरीदने के लिए भारी सब्सिडी भी देती है। इसके अलावा संगठन के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों से सीधे जानकारी मिलना आसान हो जाता है।
4: जी मैम, तो जैसे कि आपने बताया, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बाज़ार की। जैसे कि हम जानते हैं, किसान भाई बहन भी इस बात से रूबरू होंगे कि खेत में जो टमाटर 2 रुपए किलो मिलता है, वो बाज़ार पहुंचते ही 40 रुपए किलो हो जाता है। इसमें किसान भाई बहनों को बहुत फ़ायदा तो नहीं होता है, लेकिन अगर वो किसान संगठन से जुड़ जाएँ तो किसान संगठन उनकी कैसे मदद कर सकता है?
6: जी, यही तो पूरा खेल है। फ़ायदा तो होता ही नहीं है, बल्कि उनका जो कॉस्ट है, जो पैदावार करने की कॉस्ट है, कभी कई बार ऐसा होता है कि वो भी नहीं निकल पाता है। तो अकेले किसान के पास अपनी फसल को भंडारण करने की जगह नहीं होती है, इसीलिए वह उसे औने पौने दाम में बेच देता है। लेकिन संगठन के पास अपना गोदाम या कोल्ड स्टोरेज, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिससे कि वो उसे जब बाजार में इसका मूल्य ज़्यादा हो तब बेच करके अधिक मुनाफा कमा सके। दूसरी बात ये है इसका प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग। अगर आप केवल मखाना बेचेंगे तो कम पैसे मिलेगा, लेकिन अगर संगठित होकर मिलकर मखाना की ग्रेडिंग करें, उसे पैकेजिंग करें, ब्रांडिंग करें, तो मुनाफा दोगुना तीन गुना तक हो सकता है।
4: जी मैम, तो मुनाफा हो सकता है अगर हमारे किसान भाई बहन संगठन से जुड़े, लेकिन अब सवाल यह है कि वो संगठन से कैसे जुड़े, या फिर अगर वो आपस में संगठन बनाना चाहें तो उसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से वो सरकार से मदद ले सकते हैं।
6: जी, तो सबसे पहले तो जो किसान भाई बहन है उन्हें अपने क्षेत्र में कम से कम 10 से 20 जागरूक किसान जो है उनके साथ एक बैठक करने की ज़रूरत है। अपने ज़िले के कृषि विभाग या कि नाबार्ड, उनके कार्यालय में संपर्क करने की ज़रूरत है। सरकार भी FPO बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देता है और विशेषज्ञों की मदद भी देती है। बिहार में जीविका के माध्यम से भी कई महिला किसान संगठन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
4: मैम, अब मैं चाहूँगी कि आप विस्तार से बताएं कि इसकी प्रक्रिया क्या है, और चरण दर चरण अगर कोई किसान भाई बहन चाहें FPO बनाना तो किस तरीके से बना सकते हैं।
6: जी ज़रूर, तो इसका जो तैयार होने का प्रक्रिया है ये मुख्यतः 3 चरणों में होता है। किसान संगठन मुख्य रूप से एक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। तो पहली प्रक्रिया में क्षेत्र और फसल का चयन किया जाता है। सबसे पहले एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जाता है जहाँ किसान एक जैसी फसलें उगाते हों। जैसे आम उगा रहे हैं तो सारे किसान आम उगाएंगे, मखाना की खेती हो रही है तो सारे किसान मखाना की खेती करेंगे, या सब्जी की वो FPO होने वाला तो सारे किसान सिर्फ सब्जी ही लगाएंगे अपने खेत में। फिर कम से कम 10 या उससे अधिक प्राथमिक जो किसान हैं, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी आवश्यकता होती है। हालांकि एक सफल FPO के लिए कम से कम 300 से 500 किसानों का लक्ष्य रखा जाता है। उसके बाद बारी आती है पंजीकरण कराने की। तो इसके लिए कम से कम 5 निदेशक जो कि बनाए जाते हैं किसानों के बीच से ही, उनका डिजिटल हस्ताक्षर जिसे DSC कहते हैं, और DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो बनवाना होता है। उसके बाद उस संगठन की नाम की स्वीकृति ली जाती है। अपने जो कंपनी बनाई है इसके लिए एक बहुत ही यूनिक सा नाम चुना जाता है, और फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC के से वो स्वीकृत कराया जाता है। उसके बाद बारी आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करने की, जिसमें कंपनी के नियम लिखे जाते हैं। उसके बाद आपको पंजीकरण का प्रमाण पत्र ROC के द्वारा जांच के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके बाद आप इसके प्रबंधन और संचालन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि किसानों के बीच से ही चुना जाता हो, वो चुनने की आवश्यकता है। उसके बाद उसमें CEO, व्यावसायिक कार्यों के लिए एक CEO और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की नियुक्ति की जाती है।
4: मैम, अगर FPO बनाने के लिए ऋण की ज़रूरत हो, वित्तीय सहायता की ज़रूरत हो, तो वो किसान भाई बहनों को कैसे मिलते हैं और क्या क्या सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ?
6: जी, पूंजी के लिए भारत सरकार और नाबार्ड विशेष मदद देते हैं। जैसे कि पहला है इक्विटी ग्रांट स्कीम। इसके तहत यदि किसानों ने मिलकर 5 लाख रुपए जमा किए हैं तो सरकार भी संस्था को 5 लाख रुपए का अनुदान देगी। उसके बाद इसका अधिकतम 15 लाख रुपए तक इसकी सीमा हो सकती है। दूसरा तरीका है क्रेडिट गारंटी फंड, जिसमें अक्सर बैंकों को बिना गारंटी के लोन देने में डर लगता है। इसके समाधान के लिए SFAC, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम और नाबार्ड क्रेडिट गारंटी देते हैं। इससे इसके तहत FPO जो है उसको बिना किसी जमीन या संपत्ति को गिरवी रखते हुए 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है, और इसकी सुरक्षा, यदि FPO लोन नहीं चुका पाते हैं तो सरकार उस लोन को एक बड़े हिस्से की भरपाई बैंक को करनी पड़ती है। तीसरा है प्रबंधन लागत सहायता, जिसमें कि सीईओ का वेतन, ऑफिस का किराया, बिजली बिल और अन्य खर्चों के लिए 18 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है।
4: तो मैम, इसके अलावा किसानों को, किसान भाई बहनों को और कौन कौन से लाभ मिलते हैं?
6: जी, इसके अलावा जैसे कि एफपीओ में संगठित होने से इनको सबसे पहले कि सस्ता इनपुट मिल जाता है। थोक में खरीदने के कारण बीज, खाद, कीटनाशी बाजार से करीबन 10 से 15 प्रतिशत सस्ते दामों में मिल सकते हैं। इसके अलावा मशीनरी बैंक्स जैसे एफपीओ अपना कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं, जिससे किसानों को सस्ते दामों में ट्रैक्टर या ड्रोन किराए पर मिल सकता है। और साथ ही मूल्य संवर्धन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर किसान अपने फसल को ब्रांड बनाकर ऊंचे दामों पर शहरों में बेच सकते हैं। और एक आपको चौथा मुख्य लाभ है, सीधा बाजार मिल जाएगा। बिचौलियों को हटाकर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को आप अपना माल बेच सकते हैं।
4: मैम, अब किसान भाई बहन उनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि एफपीओ बनाने के लिए किसान भाई बहन कहाँ से सहायता ले।
6: जी, एफपीओ बनाने के लिए सरकार ने सीबीबीओ, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नियुक्त किए हैं। ये विशेषज्ञ संस्थाएं 5 साल तक किसानों को पंजीकरण से लेकर बाजार दिलाने तक में मदद करती हैं। आप अपने जिले के कृषि विभाग, नाबार्ड कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। बिहार में जीविका भी महिला किसानों को एफपीओ बनाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है।
4: बहुत ही अच्छी ये चर्चा रही। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप किसान भाई बहनों को अंत में कोई संदेश दें।
6: जी, किसान भाई बहन, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि संगठन में ही शक्ति है। अपने गांव में छोटे छोटे समूह बनाइए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए। और याद रखिए, उन्नत बीज, उचित बाजार, किसान संगठन है खुशहाली का आधार। धन्यवाद।
4: मैम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई बहनों, अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
7: उन्नत कृषि।
8: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
9: खुद भी बचे देश भी बचाए।
10: टीबी हारेगा देश जीतेगा।

संभावना है। आपको बता दें, आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, इन जिलों में 28 मई को लू चलने की यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है। 27 से 31 मई के दौरान अनुमान है कि अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसे में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें, साथ ही खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जिनके खेत में गर्मा मूंग और उड़द है, उन्हें बता दें, देर से बोई गई गर्मा मूंग और उड़द की फसलों में हेयरी कैटरपिलर का प्रकोप होता है, ऐसे में उनकी निगरानी करना जरूरी है। प्रकोप अगर दिखाई दे तो मिथाइल पैराथियन 50 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जिनके खेत में सब्जियां हैं, उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का प्रकोप होता है, इसलिए उनकी नियमित निगरानी की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप अगर दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियन 50 इसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को या फिर डाइमेथोएट 30 इसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 इसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो बागवानी करते हैं, उन्हें बता दें, आम के बागानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। यदि आम के बागानों में रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में या फिर लैम्बडा साहिल लोथ्रीन की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक का छिड़काव कर सकते हैं। बागानों में पर्याप्त और निरंतर नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। जिनके बागानों में लीची है, उन्हें बता दें, लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसी वजह से किसान भाई बहन किसी भी प्रकार का छिड़काव शाही लीची में अभी नहीं करें। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्बडा साहिल लोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं, उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और जो पशु दूध देते हैं उन्हें खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। वहीं गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से देना चाहिए। साथ ही पशुओं को हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों

0: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। और लेडीज फर्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और ये विषय है खास तौर से उन महिलाओं के बारे में जो कामकाजी हैं। और आज के समय में हर दूसरी महिला कामकाजी हैं और होना भी चाहिए क्योंकि ये उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है, लेकिन कई बार उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और ख़ास तौर से ये उसी जगह पर होता है जहां वो काम करने जाती हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी महिलाओं के एक बेहद ही अच्छे साथी के बारे में, एक ऐसे साथी के बारे में जो उन्हें उनके कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। और उनका ये साथी है या फिर कहें कि उनकी ये दोस्त है शी बॉक्स। शी बॉक्स क्या है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों कई बार ना क्या होता है कि महिला अपने काम पे निकली, बहुत ही अच्छे से निकली, लेकिन वहाँ पर उन्हें असहज महसूस होता है क्योंकि उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर देता है या फिर कोई उनसे ऐसी अभद्र बातें कह देता है कि महिला को बहुत बुरा लगता है या फिर किसी लड़की को बहुत अजीब महसूस होता है। ऐसे में वो परेशान हो जाती है कि किससे कहें, क्या कहें और कैसे कहें, इसका क्या निदान निकलेगा, इसका समाधान निकलेगा। और आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि महिलाओं का, कामकाजी महिलाओं का साथी या फिर कामकाजी महिलाओं की दोस्त कौन है, शी बॉक्स ये क्या है। अगर मैं आपको शी बॉक्स का पूरा नाम बताऊं तो वो है सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जहां पर आप यौन उत्पीड़न के बारे में बातें बता सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया है और एक ये ऑनलाइन पोर्टल है, यानी कि आप घर बैठे बैठे या ऑफिस में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रखना। पता है सबसे जरूरी बात ये है कि अब चुप रहना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि जरूरी है कि आप अपनी आवाज उठाएं और आप इसे संबंधित विभाग तक पहुंचें, तभी आप खुद को सुरक्षित रख पाएंगी। और सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है ना, वो सिर्फ आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा गलत, और लड़कियों के साथ भी वो गलत व्यवहार ही करेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि वैसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके रोक दिया जाए। और आप आवाज़ उठाएंगी तो यकीन मानिए कि आपका डर ख़त्म होगा, लेकिन उस इंसान के अंदर डर ज़रूर आ जाएगा कि अब हमें ऐसी कोई भी घटना को अंजाम नहीं देना है जिससे किसी महिला को परेशानी हो। शी बॉक्स कैसे काम करता है और ये कानून से कैसे जुड़ा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम शी बॉक्स के कानून के बारे में बात करें तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस एक्ट यानी कि पॉश एक्ट 2013 में आया था और इसी के तहत शी बॉक्स को लाया गया था। और अगर हम बात करें कि इस कानून के अनुसार क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हर संस्था के अंदर शिकायत की जांच 90 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। और इसके साथ ही ये भी जरूरी होता है कि महिला अपनी पहचान को गोपनीय रख सकती है। अगर वो शिकायत कराती भी है तो ऐसे में उनकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहती है। और कौन शिकायत कर सकता है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी है या फिर प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप काम कर रही हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आप इंटर्न हैं तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हैं या फिर आप अस्थाई कर्मचारी हैं और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो भी आप शिकायत कर सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए ही है, आपको सुरक्षित करने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि आप अपने घर के बाहर, आप अपने वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। अगर हम शी बॉक्स के आधिकारिक वेबसाइट के बारे में आपको बताएं तो इसका आधिकारिक वेबसाइट है shebox.wcd.gov.in यानी कि shebox.wcd.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए और आपकी जो भी शिकायत है आप दर्ज कराइए और यकीन मानिए 90 दिनों के अंदर आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपकी जो भी शिकायत है उसके बारे में बिल्कुल काम किया जाएगा और साथ ही आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी। आप जैसे ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं वहां पर आपसे आपका जो भी विवरण है वो पूछा जाएगा और आपके साथ जो घटना हुई है उसका भी विवरण वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा और ये सारी चीजें आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे। और ध्यान रखें कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनमें छोटी सी छोटी जो डिटेल होती है ना वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी परेशानी का समाधान मिले तो जो भी वहाँ पर पूछा जा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से लिख दीजिए, भले ही वो थोड़ा लंबा हो पर लिखिए जरूर। और इसके बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिसे आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं कि आपने जो शिकायत की है वो अब कहाँ तक पहुंची है। दोस्तों आखिर शी बॉक्स जरूरी क्यों है ये तो बिल्कुल आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई महिलाएं डर के कारण चुप रह जाती है कि लोग क्या कहेंगे, कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। और साथ ही सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल होता है वो ये होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये लड़की बहुत नाटक कर रही है, इनके तो बहुत नखरे हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर दी जाती है कि महिलाएं ये सारी बातें सोचकर ही चुप रह जाती है और उन्हें लगता है कि अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। जी नहीं, याद रखिए कि अगर आप बात करेंगे तो बात रुकेगी और आप अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षित करेंगे, क्योंकि आज जो आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना तो वो कल दूसरों के साथ भी गलत करेगा और उसका मन लगातार बढ़ता जाएगा और आज वो छोटी सी घटना को अंजाम दे रहा है, कल किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा और कोई विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपके साथ बहुत कम लोग खड़े हों लेकिन आपका साथ देने के लिए शी बॉक्स है। और ध्यान रखिए कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी क्योंकि आपकी जो पहचान है वो बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। और लोग क्या कहेंगे ये हम क्यों सोचे, बस इतना सोचिए कि आप खुद को सुरक्षित रखिए और जब आप अपनी जगह पर सही होती हैं तो उसका परिणाम भी सही ही आता है। ध्यान रखिए कि कोई भी चुप्पी समस्या को ख़त्म नहीं करती है बल्कि उसे और मजबूत कर देती है। इसलिए शी बॉक्स महिलाओं को ये भरोसा देता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। दोस्तों कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या होता है। दोस्तों यौन उत्पीड़न के अंतर्गत बहुत सारी घटनाएं आ सकती है। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने अनुचित टिप्पणी कर दी, मोबाइल पर आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई अश्लील संदेश भेजता है या फिर आपको कोई बिना अनुमति के छूता भी है तो ये भी यौन उत्पीड़न का मामला होता है। अगर आपको किसी ने ऐसी कोई बात कह दी, आपके शरीर पर कोई टिप्पणी कर दी तो ये भी यौन उत्पीड़न ही है। और कई जगहों पर ये देखा जाता है कि प्रमोशन के बदले गलत प्रस्ताव दिए जाते हैं, प्रमोशन के बदले गलत फेवर मांगे जाते हैं तो ये भी यौन उत्पीड़न का ही मामला है। और आप बहुत विश्वास के साथ बिना डरे शी बॉक्स पर इन बातों के कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डरा रहा है, आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है किसी चीज के लिए तो भी आप शी बॉक्स पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है आपके साथ तो ध्यान रखिए कि ये मजाक नहीं है, ये अपराध है। अगर कोई मजाक मजाक में भी आपसे कुछ अश्लील बातें कर रहा है या कोई ऐसी टिप्पणी कर रहा है, अगर उसे आपको असहज महसूस हो रहा है तो उसे कहिए, रोकिए कि मुझे बुरा लग रहा है। और अगर इसके बाद भी वो रुकता नहीं है और अपनी हरकतों को जारी रखता है तो आप कंप्लेन करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। और दोस्तों जब तक हमारी नारी बोलेंगी नहीं ना तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जब नारी बोलती है तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम नारी ही उनका साथ दें, डटकर उनका साथ दे, तभी अन्याय खत्म होगा। क्योंकि आज लगभग हर जगह पर जहां भी महिलाएं काम कर रही है वहां कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके इरादे गलत होते हैं, जिसकी सोच गलत होती है। और कई बार ऐसे लोग मजाक मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं जो आपको बिल्कुल असहज कर देता है और कुछ पल के लिए नहीं बल्कि वो बातें बहुत लंबे समय तक हमारे मन में रह जाती है और हम उस बारे में सोचते रहते हैं और खुद को समझाते रहते हैं कि मजाक ही तो था। जी नहीं, ये मजाक नहीं था। अगर आपको कोई बात असहज कर रही है तो आप साफ साफ कहिए कि मुझे ये बात नहीं पसंद है। अगर सामने वाला समझदार है और वो उसने जानबूझकर आपके साथ वो मजाक नहीं किया है तो वो समझ जाएगा कि हाँ इससे नहीं पसंद है तो आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसने जानबूझकर किया है और आपको असहज महसूस कराने के लिए ही किया है तो वो नहीं रुकेगा और वो सिलसिला दोहराएगा, तो फिर आपको उसे रोकना होगा, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं। अच्छा, जो भी हमारी महिला मित्र सुन रही हैं या फिर जो पुरुष भी सुन रहे हैं, क्या आपके कार्यस्थल पर कोई इंटरनल कमिटी है जहां पर ऐसे परेशानियों का समाधान किया जाता है? क्या आप जिस संस्था में काम करते हैं वहां पर पोश की यानी कि POSH की ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में ये समझाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, यौन उत्पीड़न क्या है और क्या क्या व्यवहार अनुचित माना जाता है, मजाक और उत्पीड़न में क्या फर्क होता है, क्योंकि कई बार लोग मजाक और उत्पीड़न में फर्क भूल जाते हैं और कई बार लोग जानबूझकर ही ऐसी हरकतें करते हैं और उसे मजाक का नाम दे देते हैं। शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं ये भी पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है और IC की भूमिका क्या है यानी कि इंटरनल कमिटी की भूमिका क्या है ये भी आपको पोश की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और महिलाओं के बारे में तो हमने बात कर ली, उनके लिए शी बॉक्स है और महिलाएं खुद भी उनके लिए हैं, लेकिन पुरुषों का साथ भी बहुत ज़रूरी होता है। पुरुषों के लिए बस एक छोटा सा संदेश ये है कि ये जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। सम्मान देना दोस्तों हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप दूसरी महिला को सम्मान देंगे तो आपके घर के जो लड़के हैं ना वो भी यही सीखेंगे कि महिलाओं को कैसे सम्मान देना है। कहीं ना कहीं आप एक बेहतर समाज बनाने के लिए आप अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम उठाते हैं तो आपके घर की लड़कियां भी सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों ये सिर्फ महिलाओं की नहीं पुरुषों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके सामने कोई दूसरा पुरुष ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि उचित नहीं है तो आप उसे रोकिए। पता है आपके ऐसा करने से जिस महिला के साथ ये हो रहा है उसके मन में आपके लिए सम्मान तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही वो और भी ज्यादा सशक्त महसूस करेंगी, उनके अंदर एक विश्वास आएगा कि कोई है जो उनका साथ देने के लिए है, एक समाज है जो बेहतर है, उन्हें ये विश्वास होगा कि समाज में आज भी कुछ बेहतर लोग मौजूद हैं। दोस्तों तो जो जागरूक पुरुष हैं जो एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं वो ज़रूर अपने आसपास गलत होते हुए देखते होंगे तो रोकते होंगे। और दोस्तों शी बॉक्स सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है और ये एक कदम है महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बचाने के लिए। दोस्तों अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है तो चुप मत रहिए, शिकायत कीजिए, क्योंकि लेडीज फर्स्ट का मतलब ही है महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले, सम्मान पहले और अधिकार बराबर की। तो दोस्तों इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट आपके दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि आप चुप नहीं रहेंगी अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो, और जो पुरुष भी सुन रहे हैं वो भी ये समझेंगे कि अगर आप एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं अपने आप के लिए, अपने घर की औरतों के लिए, तो फिर आपको भी आवाज उठाना ही पड़ेगा। आवाज उठाइए क्योंकि आपकी आवाज ही आपकी ताकत है। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें।